ओम शांति। बाबा ने आकर अपनी महान आत्माओं को चुनकर इस संसार को पुनः देव युग में परिवर्तन करने का महान कार्य हम सबको सौंप दिया है। ऊपर से जब बाबा ने देखा कौन कौन सी आत्माएं संसार में सबसे अधिक चमक लिए हुए हैं, कौन कौन मेरे काम की हैं, तो उनकी नजर पड़ी हमारे ऊपर। उसने देखा कि संसार में इन आत्माओं की चमक ही सबसे ज्यादा है और ये ही मेरे काम की हैं। कल्प पहले भी इन्होंने ही मुझे मदद की थी और उसने हमें निमित्त बना दिया अपने महान कार्यों के। उसने हमें वो योग्यताएं, टैलेंट, शक्तियां, गुण, धन, संपदा भी दे दी कि हम उनके कार्यों में पूर्णतया सहयोगी बन सकें। तो ये कितने बड़े भाग्य की बात है हम इस स्वमान को बहुत बढ़ा दें कि मैं एक महान आत्मा हूँ और बाबा की मुझ पर नजर है। सारे दिन में कई बार वो वतन से मुझे देखता है कि बच्चे की स्थिति क्या है, विचार कहाँ हैं, बुद्धि कहाँ है, क्या अपने कर्तव्य को कर रहे हैं या भूल गए हैं छोटी मोटी बातों में उलझ कर, क्योंकि उसने हमें महान कार्य सौंपा है युग को बदलने का, इस धरा को भरपूर करने का, प्रकृति को पावन बनाने का, सभी आत्माओं को दुखों से मुक्त करने का और अनेक आत्माओं को मुक्ति और जीवन मुक्ति का वरदान दिलाने का। ये छोटा काम नहीं है, उसकी नजर हम पे रहती है। कोई बड़ी कंपनी हो, उसके जो चेयरमैन होंगे या मालिक होंगे, उनकी नज़र उन लोगों पर जरूर रहेगी जो उनके उस कार्य को चलाने में मुख्य रोल प्ले करते हैं। जो मैनेजर्स होंगे, जो अधिकारी होंगे, जो जनरल मैनेजर या एमडी होंगे, उन पर विशेष नज़र रहेगी, कृपा भी रहेगी, मदद भी करेंगे, उन्हें अपना बनाकर भी रखेंगे। ऐसे ही भगवान की हम पर नजर रहती है, वो हमें बहुत प्यार भी देता है, हमें हर समय मदद भी करता है। हम ये बात भूले नहीं, वो हमें मदद देने के लिए हमेशा ही तैयार रहता है। तभी तो बाबा कहा करते हैं कि बाप जब देखता है ये बच्चे हजार भुजा वाले के पास ना आकर दो भुजा वालों के पास जा रहे हैं तो सोचते हैं अब हम इनके लिए क्या करें। वो बाबा जो हमें बहुत प्यार करता है, हमें कठिनाइयों में देख ही नहीं सकता और संपूर्ण रूप से हमें मदद करने के लिए सदा ही तत्पर रहता है, हम केवल उसके पास पहुँचें, बुद्धि को उन पर एकाग्र करें, उनके वरदानों को याद करें, स्वयं में उनकी शक्तियाँ भरें, तो मदद मिलेगी। मदद के हम स्वरूप ही बन जाएंगे, हमें बल्कि बाबा इतना शक्तिशाली बना देता है कि हमें किसी की भी मदद की जरूरत न पड़े। हम बाबा से मदद लें और संसार को मदद करें तो हम सभी अपने इस स्वरूप को पहचानेंगे, बहुत अच्छी तरह इसका अभ्यास करेंगे और आज सारा दिन फरिश्ता सो देवता की ड्रिल करेंगे। अपने तीनों स्वरूप देखें, लेफ्ट साइड में मेरा संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप है जिसके अंग अंग से किरणें फैल रही हैं। राइट साइड में मेरा सजा सजाया देव स्वरूप, दिव्य स्वरूप है, वो भी संपूर्ण है। सिर पर डबल ताज है, सिर के ऊपर प्रकाश का ताज भी चमक रहा है। फिर मैं ये ब्राह्मण हूं, मोस्ट फॉर्चुनेट, भगवान के द्वारा चुनी हुई महान आत्मा। अब अभ्यास करेंगे, मैं आत्मा इस देह से निकलकर जाती हूं अपने संपूर्ण फरिश्ते स्वरूप में। आत्मा को देखें, चमकती हुई मणि,
वहां से निकलकर पहुंच जाती हूं देव स्वरूप में। कुछ देर उसको एंजॉय करें, फिर उससे निकलकर आ जाती हूं ब्राह्मण शरीर में, और इन तीनों में चक्कर लगा दे 5 बार, बहुत आनंद आएगा और उनके सारे गुण प्योरिटी कलाएं हम में आती रहेंगी। ओम शांति।

0: मैं जानकी हिमलानी, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। हम शपथ लें कि आज के बाद जब कभी भी हम गाड़ी चलाएंगे तो स्पीड का ख्याल रखेंगे, खुद का भी ख्याल रखेंगे और सामने वाले का भी ख्याल रखते हुए हेलमेट पहन करके ही अपनी गाड़ी को चलाएंगे।
1: रेडियो मधुबन।
2: सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सुप्रभात में आपका स्वागत रेडियो मधुबन पर। अगर ऐसा होगा तो वह मेरे कारण होगा, यह एक अद्भुत मंत्र है। करीब 10% जनसंख्या इस बात की शर्त लगा रही है कि वे लॉटरी जीतकर नौकरी से अवकाश लेने के बाद अपने आप को आर्थिक सहायता दे सकेंगे। ऐसा किसी समाचार पत्र में पढ़ने में आया था। बहुत सारे लोग अपने भविष्य की बेहतरीन अवस्था को अपने चुनाव नहीं बल्कि परिस्थितियों पर छोड़ देते हैं। एक व्यक्ति जब वह देखता कि एक गिलास किसी रैक से नीचे गिरने वाला होता तो वह दौड़कर उसे पकड़कर बचाने के बजाय अपने कान बंद कर लेता था, जिससे उसे टूटने

की आवाज न सुनाई पड़े। उसके बाद वह बड़ा हो गया और हार्वर्ड में प्रशिक्षित नेत्र चिकित्सक बना, और इस विशेष आदत का उसकी प्रगति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इस वृत्तांत का सरल ज्ञान न सिर्फ यही है कि हमें अपनी आंख और कान जीवन की वास्तविकता की ओर खोल कर रखनी चाहिए। हमें जीवन जैसे जैसे घट रहा है उसके हिसाब से प्रक्रिया करनी चाहिए, मगर हम प्रक्रिया सिर्फ किसी परिस्थिति को बचाने के लिए करेंगे तो उसका उल्टा असर होगा और शायद हमें उसके वांछित परिणाम न मिले। यह एक स्वाभाविक नियम है जिसने मानवता पर हजारों वर्षों से शासन किया है। आगे के हफ्तों में अधिक प्रगतिशील होने के लिए आप खुद को अपने भाग्य के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में देखना शुरू कर दीजिए। अपने जीवन का सीईओ। सारे प्रभावशाली सीईओ यह समझते हैं कि जो भी होगा तो उनके ऊपर निर्भर होगा। अपने सपनों को पाने के लिए एक निर्णायक की तरह व्यवहार कीजिए। अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो भाग्य के भरोसे बैठे रहने के बजाय तुरंत उस पल पर अमल करना शुरू कर दें। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई ऐसा है जो आपकी परेशानियों को दूर कर देगा, या आप कोई अवसर खोना नहीं चाहते हैं, तो तुरंत फोन उठाकर बात करिए। याद रखिए, आप या तो बहाना बना सकते हैं और या प्रगति कर सकते हैं, परंतु एक ही वक्त में आप दोनों नहीं कर सकते। एक व्यक्ति जो सही रूप से हमारे सैद्धांतिक जीवन के सीईओ बनने के लायक था, रेल में दूसरे अनेक लोगों की तरह सोने या दिवा स्वप्न में डूबे रहने के बजाय इस इंसान ने यह सोचा कि इस 45 मिनट में वह व्यायाम करेगा। जिस पल से वह रेल में बैठता था, उस पल से वह जब तक स्टेशन नहीं पहुंच जाता था, तब तक अपने हाथों को खींचना, गले को घुमाना और इसके अलावा भी अनेक कठिन व्यायाम वह स्वस्थ रहने के लिए करता था। और ऐसे लोगों के साथ न मिलकर जो शिकायत करते थे कि उनके पास व्यायाम करने का समय नहीं है, उसने यह काम अपने हाथ में ले लिया और मौके का सदुपयोग करने लगा। हालांकि वह थोड़ा अजीब लगता था, परंतु आपको इस बात की फिक्र नहीं करनी चाहिए कि लोग क्या कहेंगे, अगर आप जानते हैं कि जो आप कर रहे हैं वह सही है। अपने आप को खुद के जीवन का सीईओ बनाकर आप अपने जीवन के दृष्टिकोण में एक बुनियादी परिवर्तन ला सकते हैं। अपने जीवन में सिर्फ एक यात्री बने रहने के बजाय अपने जहाज का कप्तान बनिए, और समय के प्रवाह के साथ गलत दिशा में जाने के बजाय उसे अपनी मनचाही दिशा में मोड़ दीजिए। और जैसे जैसे आप अपने जीवन का प्रबल नियंत्रण अपने हाथ में लेते हैं, तो उसका असर विलियम जेम्स के इन प्रेरक शब्दों से पता चलता है। इंसान की सहज भावना की वास्तविकता ने हमेशा दुनिया को अनिवार्य रूप से एक वीरता का मंच बनाया है। इंसान की सहज भावना की वास्तविकता ने हमेशा दुनिया को अनिवार्य रूप से एक वीरता

हाय फ्रेंड्स, मैं हूं प्रवीण मंगल, शूद्र का चरना, और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं।

एक गुण जिसको किसी भी इंसान में सबसे ज्यादा आदर के योग्य है वह है विनम्रता। वह वृक्ष जमीन तक झुका होता है जिस पर सबसे ज्यादा फल होते हैं। जो लोग सबसे ज्यादा ज्ञानी होते हैं या जिनके जीवन में सबसे ज्यादा उपलब्धि होती है और जिन्होंने जीवन पूरी पूर्णता के साथ जिया है, ऐसे लोग हमेशा धरातल पर रहते हैं और एक शब्द में कहें तो वह विनम्र होते हैं। ऐसा व्यक्ति जो विनम्र है उसकी उपस्थिति काफी विशिष्ट होती है। विनय भावना का अभ्यास करने वाले लोग यह दर्शाते हैं कि वे दूसरों का आदर करते हैं और हमें याद दिलाते हैं कि अभी भी कितना कुछ सीखने के लिए बाकी है। यह गुण आपके आसपास के लोगों को संदेश देता है कि आप उनके ज्ञान के भंडार को स्वीकार करने और उनकी बातें सुनने के लिए तत्पर हैं। संसार के महारथी बॉक्सर मोहम्मद अली, उनका कहना है कि आप एक इंसान के रूप में जितना संपूर्ण होते हैं आपको अपने आप को साबित करने की उतनी ही कम आवश्यकता होती है। कई बार ऐसा होता है कि जिस भी पुस्तक को हम पढ़ना शुरू करते हैं उसे खत्म करने के लिए हम विवश हो जाते हैं। एक अपराध भावना से मन भर उठता है अगर हम उस पुस्तक की समाप्ति तक नहीं पहुंचते हैं जिसको खरीदने में हमने अपनी मेहनत की कमाई खर्च की होती है। परंतु हर पुस्तक इसलिए नहीं होती है कि उसे संपूर्ण रूप से पढ़कर खत्म कर दिया जाए। जैसा कि फ्रांसिस बेकन का कहना है, कुछ पुस्तकें स्वाद लेने के लिए होती हैं, कुछ निगलने के लिए और कुछ चबाने और पचाने के लिए, जिसका अर्थ है कि कुछ पुस्तकों के कुछ भाग पढ़े जाते हैं, कुछ और पुस्तकें पूरी पढ़ी जाती हैं पर उत्सुकता के साथ नहीं, और कुछ पुस्तकें पूरे ध्यान और रुचि से पढ़ी जाती हैं। अगर आपको लगता है कि पहले 3 अध्याय पढ़कर भी ना तो आपको कोई उपयोगी सूचना मिली है, नहीं आप कुछ हासिल कर पाए और नहीं आप उस पर अपना ध्यान केंद्रित कर पा रहे हैं, तो अपने आप पर एक एहसान कीजिए और ऐसी किताब को किनारे रखकर अपने समय का बेहतर उपयोग करने की कोशिश करें, जैसे अपने संग्रह से अगली पुस्तक उठा

0: सीखा, लिखना सीखा, जीना सीखा। रेडियो मधुबन की छोटी सी पाठशाला।
1: लाइफ इज अ सॉन्ग, जीवन एक बहुत सुंदर संगीत है। सिंग इट, सिंग इट। जीवन एक बहुत सुंदर गीत है और इस गीत को हमें गाना बजाना आना चाहिए। मुझे एक सिंगिंग कंसर्ट में बुलाया गया और मुझे ये बताया गया कि ये कंसर्ट जो है कुछ अलग है, यूनिक है। और जब मैं वहाँ पहुंचा तो मुझे इतना अच्छा लगा क्योंकि वो जो सारे कंसर्ट में जो पार्टिसिपेंट थे वो पूरी तरह अंधे थे। चाहे वो गीत गायक क्यों ना हो, बजाने वाले क्यों ना हो, दे वर ऑल पीपल हु वर नॉट एबल टू सी। एक डेढ़ घंटे का जब मैं ये प्रोग्राम सुना मुझे इतना अच्छा लगा बिकॉज इट वॉज सच अ वंडरफुल कलरफुल शो बाई दोज पीपल हु हैव नेवर सीन कलर इन देयर लाइफ। उसी तरह जीवन एक बहुत सुंदर गीत है, उसको गाना बजाना आना चाहिए। अगर हम उन गायक की तरह गीत नहीं गा सकते हैं, अगर हम लता मंगेशकर की तरह गीत नहीं गा सकते, नथिंग टू वरी, लेकिन हमारे शब्द तो मीठे हो सकते हैं ना, हमारे शब्द तो सुखदाई हो सकते हैं ना। इसलिए मुझे ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में मैंने एक स्लोगन पढ़ा जिससे मुझे बहुत प्रेरणा मिली। मैं चाहता हूँ कि आप भी मेरे साथ ये बोलना, पहले सुनना, और वो है, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो और सोच कर बोलो। क्योंकि हमारे शब्द जो है वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, वैल्यूबल है। सभी बोलेंगे, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो और सोच कर बोलो। ठीक है,

अतीत की गलतियों की रेड़ पीट कर समय बिताना बहुत आसान है। हम विश्लेषण करके निर्दयता के साथ उन बातों पर गौर करते हैं जिनके कारण कई रिश्ते असफल हो गए, या हम व्यावसायिक निर्णयों के बारे में सोचते हैं जिन पर हमने अत्यधिक पैसा खर्च कर दिया है, या हमारा दिमाग उन बातों पर घूमता है जो हम शायद ठीक से कर सकते थे। अपने आप के साथ निर्दयता का व्यवहार करना छोड़ दीजिए। आप एक इंसान हैं और इंसान ही गलतियां करते हैं। अगर आप अपनी गलतियों को दोहराते नहीं हैं और फैसला लेकर अतीत से सीख लेते हैं तो इसका अर्थ है कि आप सही राह पर हैं। उन्हें स्वीकार कीजिए और आगे बढ़िए। जैसा मार्क ट्वेन ने कहा है, हमें किसी भी अनुभव से उतना ही ज्ञान का अर्जन करना चाहिए जो उसमें है, अन्यथा हम उस बिल्ली की तरह बन जाते हैं जो एक बार गर्म चूल्हे के ढक्कन पर बैठती है, उससे सीख लेकर वह दोबारा कभी भी गर्म चूल्हे पर नहीं बैठेगी। वह तो ठीक है, पर वह ठंडे चूल्हे पर भी नहीं बैठेगी। इस बात की वास्तविकता हमें आश्वासन देती है कि जीवन में हम सब गलतियां करते हैं, परंतु वे हमारे विकास और प्रगति के लिए आवश्यक है। पूर्णतः निर्दोष होने की जरूरत को छोड़कर एक समझदारी के दृष्टिकोण के साथ अपने जीवन को देखना शुरू करते हैं। हम अपने जीवन का बहाव एक पहाड़ी झरने की तरह कर सकते हैं जो पेड़ पौधों से भरे हुए जंगल से प्रबलता के साथ बहता रहता है। हम सिर्फ वास्तविक स्वभाव के साथ ही असली शांति पा सकते हैं। एक तरीका जो कोटि की जागरूकता और निजी ज्ञान को बढ़ाता है वह यह है कि आप अपने जीवन में करी हुई 10 भूलों को अपने रजिस्टर में बाईं तरफ के पन्ने पर लिखिए, फिर दाहिनी तरफ के पन्ने पर उन लाभों का वर्णन कीजिए जो आपकी हर भूल ने आपको सिखाए हैं और किस प्रकार उनके परिणाम आपके जीवन में सम्मिलित हो गए हैं जिन्हें हम असफलता समझ रहे थे। आपको जल्द ही यह एहसास होगा कि हमारा जीवन हमारी पूर्व गलतियों के बिना रंगहीन हो जाएगा। अतः अपने साथ सद्भावना का सलूक करिए और जीवन को उसके वास्तविक रूप में ही लीजिए जैसा हमें मिला है। वह है एक आत्मखोज, निजी विकास और जीवन पर्यंत का शिक्षण।

0: रुक रुक रुक, हेलमेट कहाँ है तुम्हारा?
1: सर वो सर सर
0: ओए क्या सर सर करके सरसरा रहा है भाई? आए ओए तुम्हारे सर के लिए ही बोल रहा हूँ।
2: ओए चेहरे से तो समझदार लगते हो, पढ़े लिखे भी लगते हो, वो इतनी धूप है धूल है वो कम से कम अपने चेहरे का ही ख्याल रख लो, तो ये चमकते हीरे जैसा चेहरा कहीं जीरे जैसा नहीं हो जाए।
1: सर आगे से ध्यान रखूंगा।
2: तो आगे से तो नहीं, मुझे तो तुम पीछे से निकलने वाले लगते हो। हैं?
0: पर मुझसे कोई नहीं बच सकता क्योंकि ये है मेरी

0: और मुझे कहते हैं हवलदार कड़क पहले वो सामने की दुकान से लो हेलमेट फिर गाड़ी
1: हमेशा बाइक पर हेलमेट पहनकर निकलना चाहिए इसमें आपका ही भला है जीवन अनमोल है इसे यूं ही व्यर्थ न गवाएं रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी सुनते रहो मुस्कुराते रहो

बौद्ध भिक्षुओं की सबसे इष्ट पद्धति, जिसके द्वारा वे इच्छा शक्ति को बढ़ाते हैं और जिसका प्रयोग विभिन्न संस्कृतियों में आंतरिक शक्ति और संकल्प शक्ति को बढ़ाने के लिए हजारों वर्षों से किया जा रहा है, वह है एकांत का संकल्प, थोड़े समय के लिए चुप रहना। आप में इच्छा शक्ति और आत्मसंतुलन को पैदा करता है, क्योंकि आप अपने बात करने की प्रवृत्ति पर दबाव डालकर उसको नियंत्रित करते हैं। अधिकतर लोग आवश्यकता से अधिक बात करते हैं, अपनी बात को संक्षिप्त करके सिर्फ वही बताने के बजाय जो आवश्यक है, लोग बस बोलते जाते हैं। यह अपने खुद के अनुशासन की कमी को दर्शाता है। अनुशासन वह है जो यह बताता है कि सिर्फ जरूरत की ही बात करें और अपनी बहुमूल्य शक्ति को आवश्यकता से अधिक बात न करके बचा कर रखें। नाप तोल कर कही गई संक्षिप्त बातचीत शुद्ध विचार और शांत दिमाग का प्रतीक है, एक तरीका जो आप अपने निजी अनुशासन को सुधारने के लिए अपना सकते हैं। वह है संकल्प लेना कि आप अपने अगले 7 दिनों तक रोज 1 घंटे का मौन रखेंगे। उस मौन के समय में बिल्कुल बात मत करिए। अगर आपका बात करना जरूरी है तो सिर्फ प्रत्यक्ष, स्पष्ट और सटीक उत्तर दीजिए, न कि पिछली रात के टीवी कार्यक्रम की पूरी कहानी से लेकर आपकी अगली गर्मी की छुट्टी की योजना की बकवास सुनने तक। मौन को विनम्रता और गर्म जोशी के साथ ग्रहण किया जा सकता है। इसका उद्देश्य आपको बलवान बनाने और अपनी इच्छा शक्ति को बढ़ाने के लिए है, न कि आपके रिश्तों में बाधा डालने के लिए। कुछ ही दिनों में आप एक गुरुत्व की भावना को महसूस करेंगे और आप और अपनी ताकत को बढ़ता हुआ पाएंगे। इसका निर्णय आप इसके परिणामों से ले सकते हैं। शांत रहना मतलब अपने आप में शक्ति का संचार करना। जितना आप शांत रहते हैं उतना आप सही निर्णय भी कर पाते हैं, उतना आपको सही निर्णय करने में भी मदद मिलती है। तो आज ही आप दिन के कुछ समय के लिए शांत रहने की प्रतिज्ञा कर लें, संकल्पबद्ध हो जाएं और अपने जीवन को ऐसा शक्तिशाली बना लें जो आपको कहीं भी किसी भी प्रकार से हार न खानी पड़े। तो इन्हीं बातों के साथ आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे सुप्रभात में। रेडियो मधुबन पर सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: यज्ञ पिता ब्रह्मा बाबा ने हर एक बच्चे को उनकी लगन और प्यार के अनुसार ही अनुभूति कराया। जिसकी जैसी भावना रही, बाबा ने उस भावना को पूरा किया। आदि पिता ब्रह्मा बाबा ने पुरुषार्थ को सहज बनाने के लिए दादियों को कभी भी यह नहीं कहा कि हठ योग करो या आत्माओं से किनारा करो। दादियों ने भी अपनी शिक्षाओं में कभी भी किसी को रूखा और सूखा बनने को नहीं कहा। रतन मोहिनी दादी जी ने अपने कर्मों द्वारा गुणों का दान करने की विशेष भूमिका निभाई। दादी जी हर ब्रह्मावत्स को यही शिक्षाएं देती कि कभी भी किसी आत्मा को पलट के जवाब नहीं देना। हर आत्मा को शांति और प्रेम से ही संतुष्ट करना। उन्होंने युवाओं के लिए अलग अलग कार्यक्रम चलाया, जिसमें पद यात्रा के दौरान उन्होंने यही सीख दी कि हमें अपने लक्ष्य की ओर हमेशा जागरूक रहना है। दादी जी कहते हैं कि जिसके अंदर जो भी गुण और विशेषताएं हैं, उनको कार्य में लगाकर उनके भी जीवन को सफल बनाना है। शक्ति वंदन की श्रृंखला की इस कड़ी में हम दादी रत्न मोहिनी जी के जीवन के कुछ अनमोल और प्रेरणादायी अनुभवों को जानने और सुनने का प्रयास करेंगे।
1: शक्ति वंदन में आइए सुनते हैं उन महानुभावों से जिन्होंने दादी रतन मोहिनी जी के अंग संग रहकर उनके सानिध्य में उनके मार्गदर्शन में अनेक शिक्षाएं प्राप्त की, उनके जीवन से ओतप्रोत होकर अपने आप को धन्य महसूस किया। सुनते हैं उनके अनुभव उन्हीं के मुखारविंद से।
2: ओम शांति। मेरे शरीर का नाम अनसुईया है और जब मैं 8th क्लास में पढ़ती थी तब से मैं ब्रह्मा कुमारीज के कांटेक्ट में आई। मेरे पेरेंट्स इस ज्ञान में बहुत अच्छी तरह से चलते भी थे, प्रभावित भी थे और औरों को चलाने का भी लक्ष्य रखते थे, तो इसलिए उन्होंने मुझे भी ये सुंदर सा रास्ता दिखाया। और जब मैं लगभग 11th क्लास पढ़ चुकी थी, हमारे ज़माने में 11th क्लास होती थी, तो उसकी छुट्टियों में हम आए थे मधुबन माउंट आबू में, तो वहाँ पर मेरा दादी जी से पहली बार मुलाकात हुई। और दादी जी एक बहुत ही इंस्पिरेशनल, ऐसी प्रभावित करने वाली ऐसी विशेष व्यक्तित्व हैं जिनको देखने से ही बहुत उमंग उत्साह आता है। उनका जो बोलने का तरीका है उसके अंदर इतना उमंग उत्साह होता है कि कोई भी युवा उनको देखकर अपने अंदर उमंग उत्साह भर लेता है। तो जब मैंने दादी को प्रथम बार देखा था तभी मेरे मन में आया कि मैं भी यूथ विंग के साथ जुड़ूंगी और ज़रूर दादी जी के फिर करीब रहने का मुझे मौका मिलेगा। और इस तरह से मैंने आगे बढ़कर के यूथ विंग को ही अपने ज़िंदगी का, इस ब्रह्मा कुमारी के अनुसार से विभिन्न विंग्स हैं लेकिन मैंने यूथ विंग को ही अपनी सेवाओं के लिए, अपने आगे बढ़ने के लिए विशेष चुना।
3: जी, सो जब आप पहली बार मधुबन आए थे और दादी से मिले थे, क्या उम्र थी उस टाइम पे?
2: जैसे मैंने 11th पास कर लिया था तो मेरे ख्याल से
3: 16-17
2: के आसपास।
3: जी, सो जैसे आप दादी की उमंग उत्साह को देख करके आप युवा प्रभाग को चुना सेवा के लिए, तो सबसे पहली शुरुआती सेवाएं कैसे रही और दादी ने कैसे इंस्पायर किया आपको सेवाएं करने के लिए?
2: आप सबको पता होगा कि पहली जो हमारी पदयात्रा निकली थी 1985 में अखिल भारतीय पदयात्रा, जो सारे ही भारत के अंदर निकाली गई थी और एक बहुत बड़ा हमारे इस ब्रह्मा कुमारी इस इतिहास में एक बहुत सबके मन में बहुत उमंग था कि युवा किस तरह से सारे भारत में विभिन्न जगहों पर पहुंचकर एक बहुत सुंदर संदेश पहुंचा रहे हैं। और जैसे कि हम जानते हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी इस कोई ऐसा कल्ट नहीं है कि केवल राम नाम जपना है, लेकिन अपने जीवन को परिवर्तन करके और विभिन्न प्रकार के नशे और विभिन्न प्रकार की बुरी आदतें जो युवाओं के अंदर होती हैं उसको निकालने का ही विशेष लक्ष्य रहता है। केवल पदयात्रा करना लक्ष्य नहीं था, लेकिन उस पदयात्रा के द्वारा कोने कोने में पहुंचा जा सके, भारत के कोने कोने में पहुंचा जा सके और हर युवा को ये बात समझाई जाए कि हम अपने भारत के लिए विशेष व्यक्तित्व हैं। और इसलिए हमारा बहुत स्पेशल होना, विशेष होना आवश्यक है। अगर हम किसी भी बुरी आदत के अंदर होंगे तो हम अपने भारत को एक सुनहरा भारत, एक स्वर्णिम भारत, जो हमारे बापूजी का भी विशेष सपना था और विश्व के जो बापू हैं परमात्मा, जो सारी सृष्टि को इस वसुंधरा को ही स्वर्ग बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए सभी युवाओं को मिलकर अपनी बुरी आदतों को, नशों को छोड़ना बहुत जरूरी है। इस लक्ष्य को सामने रखते हुए ये पदयात्रा की गई थी।
3: जी दीदी, जब आप पदयात्रा में गए हैं, आप भी अपनी युवा अवस्था में थे, पूरी भारत वर्ष में अलग अलग जगह से पदयात्रा निकली और मधुबन पहुंचा, सो इस पूरी पदयात्रा के दौरान दादी का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा रहा और कैसे आपको भी सीखने को मिला कि कहीं पर भी जाते हैं तो कार्यक्रम कैसे ऑर्गेनाइज करना है या फिर किस प्रकार की सेवा करनी होती है? क्योंकि आप भी अपनी युवा अवस्था में पहली बार यात्रा में गए हैं, तो वो पल कैसे थे और क्या क्या सीखा आपने दादी से एडमिनिस्ट्रेशन के लिए?
2: एक्चुअली वो 1985 में जो पदयात्रा हुई थी उसमें मुझे जाने का मौका नहीं मिला था, और रीजन क्या था वो इतना मुझे ध्यान में नहीं आ रहा, लेकिन उस पदयात्रा के दौरान जब वो दिल्ली में आई थी, है ना, उस वक्त मैं हरिनगर सेंटर, जो दिल्ली का एक विशेष बड़ा सेंटर माना जाता है, जोनल सेंटर माना जाता है, मैं वहाँ रहती थी और मुझे वहाँ से जो हरियाणा में हरिनगर से रिलेटेड जितने भी सेंटर्स थे, तो वहाँ जहाँ पदयात्रा आ रही थी तो वहाँ प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करना और उस यात्रा को रिसीव करना, ये मेरे को विशेष सेवा दी गई थी और मुझे बहुत खुशी हुई। तो हमने जो विभिन्न जगहों पर पलवल, होडल, फरीदाबाद, ये विशेष जगह थी जहाँ पर विशेष आई थी और मुझे वहाँ पर जाने का जब मौका मिला तो मैंने ये देखा कि जो पदयात्री थे उनके अंदर भी बहुत उमंग उत्साह था, लेकिन जो भी वहाँ के रहवासी थे उन पदयात्रियों को देखकर बहुत बहुत प्रसन्न हो रहे थे, खुश हो रहे थे और उनका बहुत हृदय से, दिल से सब सम्मान कर रहे थे, स्वागत कर रहे थे कि ये वो युवा हैं जो पैदल चल करके अपने देश की सेवा के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो उसमें दादी जी का विशेष यही कहना था हम सबको, जो रिसीव करने वाले थे वो भी और जो पदयात्रा के अंदर थे वो भी, कि हमें अपने लक्ष्य के प्रति जागरूक रहना है। हमें केवल ये पदयात्रा करनी है ऐसा लक्ष्य नहीं रखना, लेकिन हम जो लक्ष्य लेकर चल रहे हैं, जो इनिशियली प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का लक्ष्य है कि नर ऐसी करनी करे नारायण बने और नारी ऐसी करनी करे जो लक्ष्मी बने, यानी मनुष्य देवता बने। तो हम सब जानते हैं कि देवता किसे कहा जाता है, देवता कोई शक्ल का नाम नहीं है, लेकिन देवता जो है वो एक रहन सहन का नाम है, व्यक्तित्व का नाम है, जिसके अंदर कुछ अच्छे गुण हो, जिसे आज की हम भाषा में कहें तो जिसके व्यक्तित्व के अंदर बुराइयां ना हो और जिसके अंदर सदा देने की प्रवृत्ति हो, उसी को देवता कहा गया है। तो दादी जी का यही लक्ष्य था कि आप जहां जहां पर भी जा रहे हैं तो जिसके अंदर जो विशेषता है, दादी जी का सदा ये लक्ष्य रहता है कि हर एक के अंदर हर तरह की विशेषता नहीं होती, तो जिसके अंदर जो भी विशेषता है, किसी के अंदर गाने की विशेषता है, किसी के अंदर विशेष डांस करने की विशेषता है, किसी को अपनी बातों का अनुभव सुनाने की विशेषता है, किसी को अच्छा वो ओरेटर है उसको भाषण करने की योग्यता है, किसी के योग बहुत अच्छा भगवान के साथ लगता है तो वो योग के वाइब्स फैलाने का जो एक बहुत अच्छा उनको मिला हुआ है व्यक्तित्व, तो उनको योग कराने के लिए वो विशेष प्रेरित करती हैं। कहने का मतलब है कि जिसके अंदर जो विशेषता है उसको उपयोग में लाने के लिए दादी जी का सदा ही लक्ष्य रहा है। तो इस यात्रा के भी दौरान और जब भी वो हमसे बातचीत करती हैं, हमसे हमारे से मिलने के लिए आती हैं, तो मैंने देखा है जो बहुत टैलेंटेड हैं उनको भी बहुत पसंद करती हैं, और जो कम टैलेंटेड हैं, जो इतने योग्य नहीं हैं ऐसी बड़ी बड़ी सेवाओं के, लेकिन वो कुछ भी करते हैं तो उनको विशेष कहती हैं, नहीं इस बार जो है ना आप सामने बैठ करके योग ही कराना, आपके अंदर और कुछ नहीं करने की इच्छा है तो चलो आप केवल इंट्रोड्यूस करवाना, सबको इंट्रोड्यूस करवाना। कभी कभी वो लेक्चर नहीं कर सकते तो चलो ठीक है आप स्टेज को कोऑर्डिनेट करना। कभी कभी वो कहती हैं कि नहीं अच्छा ठीक है आप 5 मिनट के लिए अपना अनुभव सुनाना। तो जिसके अंदर कुछ विशेषता नहीं है उसके अंदर भी विशेषताओं को जागृत करना ये दादी जी का सदा ही लक्ष्य रहा है। तो इसलिए दादी जी से सब बहुत दिल से प्यार करते हैं, क्योंकि उनको जब आगे आने का मौका मिलता है और उनकी जो छुपी हुई विशेषताएं उनको नजर नहीं आ रही, दादी उनको बहुत प्यार से जब आगे बढ़ाती हैं तो सभी दादी जी का बहुत दिल से सम्मान करते हैं और दादी जी को अपनी दिल से माँ के रूप में स्वीकार करते हैं। तो हमारे यूथ विंग की वो चेयरपर्सन तो हैं, लेकिन हम सब यूथ विंग वाले उनको अपनी माँ के रूप में स्वीकार करते हैं।
3: जी सही बात है, इतने सारे युवाओं का दिल जीतना, न सिर्फ युवा लेकिन कोई भी उनके सामने जाते हैं वो हर कोई नतमस्तक हो जाते हैं। दीदी अगर व्यक्तिगत रूप से देखा जाए तो जब भी आप दादी को देखते हैं वो कौन सी बात है जो आपको प्रेरणा देती है, या कौन सी ऐसी धारणा है आपको लगता है कि नहीं मुझे भी ये चीज को मेरे जीवन में लेके आना है। मुझे
2: दादी जी की एक नहीं है बात, दादी जी की बहुत सारी बातें हैं, मैं 2-3 बातें जरूर शेयर करूंगी। पहली बात तो दादी जी का मेडिटेशन, जो विशेष हम अमृत वेले किया करते हैं, योग किया करते हैं, दादी जी का उसके प्रति बहुत बहुत ध्यान रहता है, वो स्वयं भी करती हैं और हम सबको भी सदा प्रेरित करते हैं। दूसरा बाबा की जो मुरली है, जो हम यहाँ पर जितने भी ब्रह्मा कुमारीज हैं हर सेंटर के पर जो है विशेष मुरली सवेरे सुनाई जाती है, तो दादी जी की पूरी प्रेरणा रहती है कि हम सब उस मुरली को जरूर सुना करें। और जब भी वो हमें मिलते हैं तो अवश्य हमसे पूछते हैं कि आपने आज की मुरली सुनी। और तीसरा जो जैसा मैंने आपको बताया कि दादी जी का ये विशेष लक्ष्य रहता है कि जैसे ही हमारा एक प्रोग्राम संपन्न होता है तो जब वो हमसे मिलते हैं तो कहती हैं अच्छा अब फिर आगे क्या करना है, उसके लिए बैठ कर प्लान करो। और मैं आपको दिल से बता रही हूँ कि वो जब हम मीटिंग करते हैं तो दादी जी अगर थोड़ा सा किसी वजह से लेट हो जाएं तो पूरा सुनते हैं कि अच्छा आप लोगों ने पहले क्या क्या बात की है। ऐसे नहीं कि चलो आ गए बैठ गए जो बात चल रही है केवल उसको सुन लिया, दादी जी पूरी अच्छी तरह से टाइम देकर जो भी हमारी पहले बात हो चुकी है या किसी वजह से वो लास्ट मीटिंग में अगर नहीं रही थी तो उसमें हमने क्या प्लान किया और उसको कैसे एग्जीक्यूट किया, उसको हमने कैसे कार्यान्वित किया, ये भी दादी जी पूरा पूरा हमारी बातों को सुनती भी हैं, समझती भी हैं, और जहाँ जहाँ हमारी एग्जीक्यूशन में उसको करने में जहाँ कुछ कमी रह जाती है तो उसको हमें बताती है कि इसको आप कैसे करना है। तो दादी जी केवल एक हमारी बड़ी तो हैं ही, एक बहुत अच्छी मेंटर हैं, बहुत अच्छा गाइड हैं, बहुत अच्छी माँ हैं, शी इज़ अ वेरी गुड टीचर ऑल्सो। बहुत अच्छा हमें हर बात की प्रेरणा, हर बात की समझानी दादी जी द्वारा मिलती है।
3: जी कोई ऐसी किस्सा कुछ आपको याद है जब आप दादी से मिल रहे थे फिर कोई और को मिलते हुए आपने देखा और बहुत ही गहरी बात या कुछ ऐसे सीखने को मिला?
2: हमारे ग्रुप में एक बहन है, क्योंकि मुझे तो ये समझ में आता है दुनिया में भी जो बहुत अच्छे टैलेंटेड होते हैं वो तो बुलंदियों को छू लेते हैं क्योंकि उनके अंदर ये योग्यता है, तो ये होना भी एक बहुत किस्मत की बात है, इट्स अ गुड लक। लेकिन बात तो उनकी है जो नॉर्मल से साधारण से व्यक्तित्व हैं, अगर उनको भी इंस्पायर करके आगे बढ़ाकर और उनको भी बुलंदियों तक पहुंचाया जाए या बहुत आगे बढ़ने का मौका मिले तो मैं समझती हूँ ये बहुत अच्छी बात है ना। जो निगलेक्टेड हैं या जिन पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा, तो मैंने देखा हमारे ग्रुप में एक बहन है जो थोड़ा शाई नेचर की हैं, ज़्यादा बोलती नहीं हैं। तो हमने देखा कि जब हमारा प्रोग्राम होने वाला था, कोई एक विशेष प्रोग्राम होने वाला था, तो प्लान करते हैं ना भाई इस वाले प्रोग्राम में ये भाषण करेगा, ये कोऑर्डिनेट करेगा, ये मेडिटेशन कराएगा, ये वोट ऑफ थैंक्स देगा वगैरह वगैरह। तो उस बहन को कोई भी ध्यान नहीं दे रहा था ना? क्योंकि वो बहुत देखने में सिंपल है और आगे आने का कभी वो लक्ष्य भी नहीं रखती है। तो दादी जी ने उसको कहा कि नहीं, आपको जो है ना इस प्रोग्राम के अंदर विशेष अपना अनुभव सुनाना है। तो उसने अपनी इनएबिलिटी शो करते हुए कहा कि नहीं दादी जी, मुझे तो ऐसे सुनाना नहीं आता। कहती है करना क्या है, जो आप करती हो, योग करती हो? तो उसने कहा हाँ करती हूँ। अच्छा तुम वहाँ पर आती है तो कोई आते हैं उनको कोर्स करवाती हो अपने सेंटर पर? उसका वो भी कराती हूँ। तो कह बस यही तो आपको बताना है कि आप जो है ईश्वरीय सेवाओं में किस तरह से अपनी विशेषता को सेवा में लगा रही हो, यही तो आपको बताना है, ताकि औरों को भी इंस्पिरेशन मिले कि वो भी ईश्वरीय सेवा में आगे बढ़े। और जब ईश्वरीय सेवा में आप लगती हो इस तरह से, तो आपको क्या मिलता है, खुशी मिलती है? तो उसने कहा हाँ बहुत खुशी मिलती है। फिर उसने अपना अनुभव सुनाते हुए कहा कि ऐसे एक भाई आया था, वो सिगरेट पीता था, मैंने उसको बैठ के बातचीत किया और उसने फिर मेरे से प्रॉमिस किया कि वो कभी नहीं पिएगा। और एक साल के बाद वो जब दोबारा आया, उसका पोस्टिंग हो गया था कहीं पर, तो उसने आके बताया कि दीदी आपसे जो मैं इंस्पिरेशन लेके गया था, तो उसके बाद मैंने सिगरेट को कभी हाथ नहीं लगाया। कहती यही तो आज समाज को चाहिए, इसी का नाम तो भाषण होता है। भाषण माना भाषणा देना, बस आपको यही सुनाना है, इसी तरह से सुनाना है जैसे अभी आपने मुझे सुनाया। तो मुझे याद है फिर उस बहन ने जब दादी की बात को ना तो नहीं करते, हम में से कोई भी ना नहीं करते, तो दादी जी की बात को मानते हुए उन्होंने उस प्रोग्राम के अंदर अपना वो अनुभव सुनाया कि किस तरह से मैं स्वयं भी योग करती हूँ और जो मेरी विशेषताएं हैं, जो भगवान से मुझे शक्ति मिली है, उसको हमें कहाँ पर प्रयोग करना है। तो उसको उन्होंने बताया कि अपनी बुराइयों को छोड़ने में, भगवान से शक्ति लेकर हमें अपनी बुराइयों को छोड़ने में उस शक्ति का प्रयोग करना है। तो जब उसने सुनाया तो सभी को बहुत अच्छा लगा, वो अनुभव भी अच्छा लगा, उनका बोलने का तरीका भी अच्छा लगा। और उसके मन में ये जो भावना थी कि मैं नहीं सुना सकती, मेरे अंदर वो योग्यता नहीं है, तो हमने देखा दादी जी ने उनको इंस्पायर करके, उनको जो एक मन के अंदर था कि मैं नहीं कर सकती, तो अब वो दादी जी की वजह से जब भी उसको कहा जाता है तो सदा आगे सेवा के लिए आगे बढ़ती है। तो मुझे लगा कि ये वाली बात जो है ना, ये बहुत आवश्यक है। ये बात हमारे घर में भी जरूरी आवश्यक बात है कि हमारे परिवार में कोई ऐसा हो जिसको ऐसा लगता हो कि मैं नहीं कर सकता, या हम कहीं भी पढ़ने जाते हैं, वहां पर युवाओं को कभी ऐसे लगता है कि नहीं हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर उनको कोई अच्छी तरह से दिल की भावनाओं से दादी जी की तरह उनको आगे बढ़ाने का लक्ष्य रखेगा, तो वो जरूर आगे भी बढ़ेगा और उसको खुद को भी बहुत खुशी होगी। और उसके मन से जो दुआएं निकलेंगी, तो जिसने उसको इंस्पायर किया है, उसको बहुत अच्छी वो दुआओं की शक्ति मिलेगी। दुआएं सबसे बड़ा खजाना है, तो हमें जरूर दादी जी की तरह ऐसा ही लक्ष्य रखना चाहिए। आगे बढ़ने वालों को भी आगे बढ़ाएं, लेकिन पीछे रहने वालों को भी आगे बढ़ाकर उनकी योग्यताओं का पूरा पूरा समाज को फायदा पहुंचाए।
3: जी, आप मेरे ख्याल से 25-30 साल से इस युवा प्रभाग से जुड़े हुए हैं, तो ये पूरे कार्यकाल में आपको बहुत सारी अचीवमेंट्स और बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा, लेकिन कोई ऐसी बात है जो आपको लगा कि अगर मैं इस विंग से नहीं जुड़ती या मैं दादी की बात नहीं मानती तो फिर शायद ही मैं इस प्रकार की सेवा या इस प्रकार की चीज़ सीखने से रह जाती?
2: सच, आपने तो दिल की ही बात मेरी छू ली है, मुझे ऐसे लगता ही है सदा। क्योंकि यूथ विंग में क्या है कि हम तो अब आप देख रहे हैं हम बड़े हो गए हैं, लेकिन अगर सच पूछो तो आज भी हमें ऐसे लगता है कि हम बहुत छोटे हैं। ना केवल हम खुद ऐसा महसूस करते हैं, जब कोई हमें शब्दों में आकर कह देता है आंटी जी माता जी, तो याद आता है अच्छा हम तो इतने बड़े हो गए हैं, और कभी याद ही नहीं रहता है ना। तो युवाओं के साथ रहकर सदा युवा रहने का ही मौका मिलता है, और युवा वैसे भी हमें पता है युवा उम्र का नाम नहीं है, युवा हमारी स्थिति का नाम है, है ना। एक 85 साल का व्यक्ति भी युवा हो सकता है और एक 15 साल का व्यक्ति बूढ़ा भी हो सकता है। तो युवाओं के साथ रह कर के ये जो एक सदा करने की भावना आती है, और दूसरा युवा जो हैं उनको ज़रूर एक प्रोत्साहन की ज़रूरत होती है। तो मुझे लगता है कि ये वाला विंग, ये वाला जो मैंने चुना और दादी जी के साथ जो रहने का मौका मिला, तो ये जो सेवा है ये मुझे लगता है सारे सेवाओं में से सबसे ज़रूरी, सबसे अधिक ज़रूरी सेवा है, क्योंकि युवा ही तो सारे देश को संभालने वाला है कल। अभी भी कर रहा है काम, लेकिन आगे चलकर बड़े होकर तो किसी भी पद पर होगा, चाहे वो इंजीनियरिंग के फील्ड में होगा या कहीं मेडिकल में होगा या कहीं बिजनेस के फील्ड में होगा, कहीं पर भी होगा। तो यही युवा तो आगे सारे देश को संभालते हैं, और जो बहनें भी हमारी हैं वो भी परिवार को भी संभालती हैं, या अगर और कोई जॉब करती हैं तो हमारे देश के विकास में ज़रूर वही एक निमित्त बनने वाली हैं। तो जो आगे उभरता हुआ सूरज है, जब उनके साथ काम करने का मौका मिलता है और उनकी जो भी ऐसी लगता है, हालांकि करने वाला तो भगवान है पर हमें जो निमित्त बनाया गया है, एक इंस्ट्रूमेंट बनाया गया है, तो लगता है कि अगर हम उनको अच्छी आदतें सिखाते हैं, जैसे दादी जी ने हमको सिखाया सवेरे जल्दी उठना, एक्टिव रहना, सोना नहीं, उठने के बाद सोना नहीं, अपने सभी कामों को डिसिप्लिन वे में करना, टाइम से रात को सोना, ये जो इतनी अच्छी योग्यताएं दादी जी ने हमको दी और हम दूसरों युवाओं के साथ जब शेयर करते हैं और वो भी जब अपने आप को ऐसा अच्छा बनाते हैं, तो सचमुच ऐसे लगता है दादी जी भी धन्य हैं और दादी जी ने हमको भी ऐसा धन्य धन्य बना दिया है।
3: जब आप अन्य दादियों को देखते हैं और दादी रतन मोहिनी जी को देखते हैं, कौन सी ऐसी बात है जो आपको निराली या फिर यूनिक फील होता है? दादी को अलग, मतलब जैसे हर कोई खुशबूदार फूल है, एक से बढ़कर एक है, लेकिन दादी की यूनिकनेस अन्य दादियों को देखते हुए आपको क्या लगता है?
2: आपने अभी भी देखा होगा ना, दादी जी की आवाज़ अभी तक भी कितनी बुलंद है ना। हालांकि सभी दादियाँ हमारी सब माननीय हैं, श्रद्धेनीय हैं, पूजनीय हैं, महिमा योग्य हैं, लेकिन जो दादी, हमारी दादी है रतनमयी दादी, वैसे हमारी सभी दादियाँ हमारी हैं, लेकिन जो यूथ विंग की दादी रतनमयी दादी हैं, वो उनकी जो आवाज़ या जो बुलंदी है, जो शक्ति है, वही हम सबको सदा इंस्पायर करती है। बाकी तो हमारी सभी दादियों के अंदर एक जैसी ही विशेषताएं हैं, क्योंकि एक की पालना में ही पले हैं। तो एक बहुत बड़ा जो मन का उमंग उत्साह है, वो किसी भी व्यक्ति को सदा आगे बढ़ने के लिए एक बहुत बड़ा आधार है। तो ये वाली जो विशेषता है दादी जी की, वो हमें बहुत सबसे अलग लगती है
3: जी। So, कुछ सेवाओं की झलकियाँ सुनाएंगे इतने सालों में जो यूथ विंग के द्वारा आपने किया है दादी के नेतृत्व में?
2: जैसे हमने आपको बताया, एक तो जब सबसे पहली पदयात्रा ही हुई थी, उसके बाद एक पदयात्रा दोबारा से 2006 में पुनः पदयात्रा हुई थी। इसके अलावा साइकिल यात्रा, मेटाडोर यात्रा, और अभी कुछ टाइम पहले बस यात्रा, ऐसी विभिन्न यात्राओं के द्वारा युवा वर्ग ने सारे भारत के अंदर सेवा करने का लक्ष्य रखा और अभी भी सेवारत है। और हमने देखा, इसके अलावा जो हमारे विभिन्न कोर्सेस हैं, जिसमें पॉजिटिव चेंज कोर्स है जो नए युवाओं के लिए होता है, लेकिन जो हमारे अपने विशेष इस ज्ञान मार्ग पर चल रहे हैं, उनकी भी जो शक्ति है उनको रिन्यू करने के लिए भी कुछ कुछ सेवाएं यूथ विंग करता रहा है, जिसमें एक DYF है, दिव्य यूथ फोरम, जिसमें कन्याएं, कुमार व यंग टीचर्स के लिए विशेष होता है कोर्स, जिसमें हम फिर से अपनी शक्तियों को देखें और जहां जहां थोड़ी भी कहीं कमी नजर आती है तो उसको विभिन्न एक्टिविटीज के द्वारा ये कार्य होता है, जिसको हम DYF कहते हैं। इसके अलावा हमारे यूथ विंग द्वारा एक साल में इधर जो माउंट आबू के अंदर होता है प्रोग्राम, ज्ञान सरोवर में होता है, एक सेमिनार होता है, वो हर वर्ष होता है, और विंग्स भी करते हैं, यूथ विंग भी करता है। 2 वर्षों से हमने इसका थोड़ा रूप परिवर्तन किया है और इसका नाम दिया है यूथ पार्लियामेंट, स्पिरिचुअल यूथ पार्लियामेंट। तो हमने देखा है कि इस प्रोग्राम के अंदर कि युवाओं को कैसे अपने अंदर वो जो, जैसे हम देखते हैं पार्लियामेंट के अंदर जो भी कानून पास होता है वो कार्यान्वित होता है, तो हम भी अपनी उस यूथ पार्लियामेंट के अंदर हर युवा के अंदर वो स्पिरिचुअलिज्म की जो पावर है, आप देख रहे हैं ना आज संसार के अंदर कितने विभिन्न प्रकार के फोर्स आज इंट्रोड्यूस हो गए हैं, और इतने सारे कोर्सेस को करने वाले बहुत बहुत योग्य युवाएं होते हैं, रिजल्ट में क्या नजर आ रहा है कि बहुत अच्छी पदवी और बहुत अच्छी डिग्रीज प्राप्त करने के बाद भी युवाओं के अंदर जो विशेष नजर आता है, आज वो बहुत अच्छी पदवी पर पहुंच जाते हैं, अपना लाइफ पार्टनर भी अपने अनुसार से चुन लेते हैं, और फिर उनके अंदर आंतरिक शक्तियां ना होने की वजह से वो कुछ ना कुछ गलतियां कर बैठते हैं और फिर उसके बाद डिवोर्स हो जाते हैं या सुसाइड्स हो जाते हैं। तो इसलिए हम अपनी इनर पावर को जागृत करें तो उस पार्लियामेंट में हम अच्छे अच्छी विशेष जो आज की प्रॉब्लम्स हैं उनको डिस्कस करते हुए कानून पास करते हैं, आपस में राय निकालते हैं कि हम अपनी जो आंतरिक शक्ति है उसको कैसे बढ़ाएं। तो इस प्रकार से ये एक बहुत अच्छा प्रोग्राम अभी यूथ विंग के द्वारा इंट्रोड्यूस हुआ है। सरकार के साथ मिलकर भी हमने कुछ प्रोग्राम किए हैं जिसमें लाइफ स्किल्स प्रोग्राम है और फेस्टिवल्स भी होते रहे हैं। तो इस तरह से विभिन्न प्रकार की सेवाएं हम करते हैं। बाकी जैसे आप सबको पता है युवाओं का कॉम्पिटिशन्स में बहुत ध्यान होता है जिसके द्वारा वो अपनी आंतरिक शक्तियों को बाहर उजागर कर पाते हैं, तो ऐसे प्रोग्राम्स भी युवा वर्ग के द्वारा किए जाते हैं।
3: जी
0: रतन मोहनी दादी जी उन दिव्य आत्माओं में से एक हैं जिनकी वाणी किसी महावाक्य से कम नहीं है। दादी जी प्यार के सागर बाबा से प्यार लेकर हर आत्मा पर बरसाती और स्नेह शक्ति से सभी को परमात्म प्यार में मगन करती रहती हैं। दादियों का जीवन हमारे लिए किसी वरदान से कम नहीं है। दादी जी कहती हैं दिव्यता की शक्ति से वृद्ध भी युवा हो जाते हैं। जिस प्रकार शारीरिक व्यायाम से शरीर स्वस्थ रहता है वैसे ही मन के व्यायाम से हमारी आत्मा की शक्ति बढ़ती रहती है। मैं मधुबन इस बात का साक्षी हूं कि दादियों ने गृहस्थ में रहने वाले बच्चों को भी ऐसी शिक्षाएं दी कि वे गृहस्थ में रहते बाबा की याद में रहकर हर कार्य कर सकते हैं। दादी जी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: सड़क पर से रेलवे क्रॉसिंग पार करते समय दोनों तरफ पहले देखें, फिर अपना वाहन रेलवे क्रॉसिंग से पार करें। रेलवे क्रॉसिंग पार करते समय उचित नियमों का पालन करें, इसमें आपकी व रेलवे की सुरक्षा है।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

नमस्ते मित्रों, मैं हूं कवयित्री डॉक्टर कविता किरण और आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी इसमें आज फिर आप सबका स्वागत। हम बात कर रहे हैं इन दिनों सेल्फ मैनेजमेंट की। बहुत सी मैनेजमेंट की चीज़ों को समझा था, लेकिन सेल्फ मैनेजमेंट में अभी तक हम अपनी ज़िंदगी की मैनेजमेंट कर रहे थे, लेकिन सेल्फ को मैनेज करना इन दिनों हम सीख रहे हैं। और बहुत सुंदर तरीके से हमारे सामने जो है वो चीज़ें निकलती आ रही हैं। सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में समझा कि मैं किस तरह से रिस्पॉन्ड करता हूँ, मेरी एबिलिटी क्या है किसी भी सिचुएशन को रिस्पॉन्ड करने की, वो मुझ पर डिपेंड करती है। कहीं ना कहीं परिस्थिति हावी होती जब नज़र आती है, तब मेरा रिस्पॉन्स कैसा होता है उस सिचुएशन को लेकर, ये मेरी सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। आगे जानते हैं कि सेल्फ को मैनेज कैसे करना है। हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी, सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: सेल्फ को जब हमने आपसे बात करके ये इस प्रोग्राम के जरिए समझा कि इट गोज डीप इन, यू नो, और अंदर का जो थॉट प्रोसेस था मेरा, उसको मैनेजमेंट को करने की समझी बात समझ में आई। आगे बढ़ते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी को थोड़ा और आगे लेकर जाते हैं, और कहाँ तक पहुँचेंगे।
1: हमने पहले भी देखा कि सेल्फ मैनेजमेंट हम चार पहलुओं पर करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर रिलेशनशिप्स, फिर हमारे रोल्स एंड हमारे रिसोर्सेस, जितनी हमारे पास शक्तियां हैं। तो उसमें सबसे पहले हमने फिर पिछली बार देखा सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि जैसे ही रिस्पॉन्सिबिलिटी शब्द आता तो हर एक के पास एक लिस्ट होती है कि वो किन किन लोगों के लिए और किन किन कहें कार्यों के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। बट देयर ओन नेम नेवर कम्स ऑन द
0: Oh,
1: लिस्ट,
0: yes.
1: इट नेवर कम्स ऑन द लिस्ट। एंड आई हैव बीन शेयरिंग दिस विद अ लॉट ऑफ पीपल एंड देन दे जस्ट स्टेयर एट यू। अच्छा, रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेल्फ? आई थॉट आई वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर चिल्ड्रेन, हस्बैंड, पेरेंट्स एंड वट एवर, यू नो। कई बार यू आर अ सोशल वर्कर, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अ लॉट ऑफ अदर पीपल, और आई एम रिस्पॉन्सिबल अपनी टीम के लिए ऑफिस में, आई एम रिस्पॉन्सिबल कि इतने टाइम में ये काम पूरा हो जाना चाहिए। तो हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी बाहर थी, और डेफिनेटली क्योंकि सिंसियरिटी हमारी नेचर है, तो जिन चीज़ों के लिए हम जिम्मेवारी लेंगे उन चीज़ों के प्रति हम अपना पूरा, अपनी अपनी कैपेसिटी में, इट विल वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, लेकिन हम अपनी पूरी एनर्जी, पूरा अटेंशन उस पर लगाते
0: और
1: हैं।
0: मैक्सिमम लोगों को कहा भी जाता है कि आप बहुत रिस्पॉन्सिबल हैं, यू नो, ही इज अ वेरी
1: एब्सोल्युटली,
0: रिस्पॉन्सिबल
1: या
0: मैन।
1: एंड जब हम कहते हैं आप बहुत रिस्पॉन्सिबल हैं, हम यही कह रहे हैं कि आप जो चीज़ उठाते हैं,
0: जो
1: जो
0: बीड़ा उठाते
1: जिम्मेवारी
0: हैं,
1: उठाते
0: हाँ
1: हैं, आप उसको बहुत अच्छी तरह से निभाते हैं। लेकिन फिर सबसे पहले जिम्मेवारी, अब क्या हुआ, क्योंकि मेरे अपनी स्थिति की जिम्मेवारी वॉज नॉट कमिंग ऑन द लिस्ट, सो उसका रिजल्ट क्या हुआ, वी वर नॉट टेकिंग केयर ऑफ दैट। सी, आपकी जिम्मेवारी मेरी लिस्ट पर थी तो आई वॉज टेकिंग केयर ऑफ यू, लेकिन मेरी अपनी जिम्मेवारी, और जहाँ अपनी जिम्मेवारी भी आती है अगर बात, तो जिम्मेवारी क्या होती, फिजिकल नीड्स, कि मुझे अपने शरीर का ध्यान रखना है, मुझे अपने खाना टाइम पर खाना है, ऑल दीज लिटिल लिटिल थिंग्स, बट मुझे अपने मन की स्थिति रखना है, दिस जस्ट डजंट कम ऑन द रिस्पॉन्सिबिलिटी लिस्ट, एंड द ओनली थिंग इज अबाउट पुटिंग इट ऑन द रिस्पॉन्सिबिलिटी
0: इनफैक्ट
1: लिस्ट।
0: यू नो व्हाट हैज हैपन नाउ, आई थिंक हम सब दर्शक जो इस जर्नी पर हैं वो भी हो रहा होगा कि पहले क्या होता था, जो हमें काम करते जाने हैं और कोई चीज़ जो है वो साथ साथ चलती जा रही है, तो हम उसको ध्यान नहीं देते थे और हम उस पर काम अपना काम करते जाते थे।
1: क्योंकि वो हमारी जिम्मेवारी है,
0: हाँ
1: इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो, क्यों हम बार बार इसको रब इन कर रहे हैं, क्योंकि ये एक ह्यूमन नेचर है कि जिस चीज़ को हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी

0: कर रहे कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं करेंगे. यस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज से दूर नहीं होंगे, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी की लिस्ट में
1: सबसे पहले मैं आ जाऊंगी,
0: मैं
1: वेरी
0: आ
1: ट्रू.
0: जाऊंगी. और मैं बेबी, मैं मतलब मेरी मानसिक स्थिति कैसी है, बिकॉज आफ्टर ऑल हम सब कुछ जो कर रहे हैं इट्स फॉर द डीप डिजायर फॉर हैप्पीनेस एंड लव, तो व्हाई नॉट पुट दैट एज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी. इसमें कुछ ज्यादा करना नहीं है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना हमें आता है, इसलिए वो सीखना नहीं है.
1: वेरी ट्रू. यू नो
0: पूरी तरह से निभाना हमें
1: आता
0: आता
1: है.
0: है, उसके लिए हम कुछ भी त्याग करने के लिए रेडी है वो भी हमें आता है. कि एक बार मैंने कहा ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आई विल डू एनी थिंग टू फुलफिल दैट, दैट्स हाउ गुड वी आर एट दैट. सो सिर्फ उसमें एक ऐड करना है, दैट्स ऑल. कि मन की स्थिति को स्टेबल रखना ये मेरी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि ये ठीक होगा तो बाकी सब कुछ ठीक हो जाएगा. अब क्या हो रहा था, काम करना है भले मैं अपसेट हो गई.
1: आदत ही हो चुकी है मुझे, इतनी
0: हाँ
1: आदत हो चुकी है कि मैं अपसेट हूँ, सब कुछ है लेकिन मुझे काम तो करते जाना है ना, मुझे सबके लिए कुछ कुछ जो जो चीज़ें करनी है वो करते जाना है.
0: अब
1: बट अब
0: जैसे
1: चेंज
0: जैसे
1: हुआ.
0: आपने अभी कहा, लेट्स से फैमिली एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है और वर्क एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन दोनों में भी हम प्रायोरिटाइज करेंगे ना तो फैमिली ऊपर आती है. तो सपोज आप वर्क पे गए, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन सपोज आपको बीच में कुछ मैसेज मिला कि घर पे ऐसा कुछ हुआ है आपको आना है, तो आप इधर इम्पोर्टेंट भी होगा तो भी इसको आप छोड़कर आप उधर जाएंगे. यू विल टेल योर टीम आई एम सॉरी बट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई हैव टू गो. इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत क्लियरली प्रायोरिटाइज होती
1: प्रायोरिटी,
0: है.
1: हाँ, दिस इज व्हाट आई वांटेड टू से, माय प्रायोरिटी इज देयर.
0: प्रायोरिटी तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेरे जीवन की क्या प्रायोरिटीज हैं. तो जैसे फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे ही मैं बहुत इंपॉर्टेंट हूँ. तो अब इसमें एटलीस्ट जैसे वर्क और फैमिली को करने में कई बार लोग एक प्रॉब्लम में आ जाते हैं कि ऑफिस में भी आज काम है लेकिन आज मेरे बच्चे की भी तबीयत ठीक नहीं है, व्हाट डू आई डू. वहां भी जाना बहुत जरूरी है, यहाँ भी रहना बहुत जरूरी है. सो दे काइंड ऑफ गेट इनटू अ लिटिल कॉन्फ्लिक्ट के व्हाट डू दे डू. बट जहां तक अपने प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इट्स नॉट अबाउट टेकिंग आउट टाइम, इट्स जस्ट अबाउट टेकिंग केयर वाइल डूइंग एवरीथिंग. इसलिए आप कभी भी इस कॉन्फ्लिक्ट में नहीं आएंगे कि अपना ध्यान रखो या काम का ध्यान रखो, अपना ध्यान रखो या बच्चों. नो, दैट विल नेवर हैपन. सिर्फ करना क्या है, अपना ध्यान रखते
1: रखते
0: हुए
1: हुए
0: इनका ध्यान रखना है, दैट्स ऑल.
1: एंड इट हैज स्टार्टेड हैपनिंग, यू नो, बिकॉज समवेयर द मोमेंट यू स्टार्ट नाउ व्हाट हैज हैपन्ड विद मी, मेरे साथ, मैं अपने सभी दर्शकों के साथ शेयर करूं कि अगर मैं जरा सा भी कहीं काम जो करती, जैसे मैं प्रोग्राम भी कर रही हूँ, चलिए किसी को काम लेते हैं, और पहले क्या होता था, कुछ कुछ कुछ कुछ चल भी रहा है तब भी प्रोग्राम कर सकते हो या कुछ भी कर सकते हो. अब अगर कुछ कुछ कुछ कुछ चल रहा है जो, और वो पता नहीं चलता है कि किस चीज़ ने कहाँ किया, लेकिन वो जब कुछ कुछ चल रहा है तो वो रुक के आप उसी टाइम पे उसको ठीक कर सकते हैं.
0: नाउ इफ यू डू दिस, व्हाट विल हैपन द रिजल्ट. पहले भी प्रोग्राम आप कर रहे हैं, कोई भी प्रोग्राम अभी भी कर रहे हैं, लेकिन अब आप पहले अपना ध्यान रख रहे हैं फिर प्रोग्राम कर रहे हैं. व्हाट विल हैपन इज यू विल एंजॉय द वर्क मोर एंड यू विल डू मोर जस्टिस टू द वर्क.
1: हाँ, बिकॉज यस,
0: आप यहाँ बैठे हैं लेकिन आपका मन कहीं और है, हाउ इज दैट जस्टिस टू द प्रोग्राम, इट्स नॉट फेयर. तो क्या होता है, जब हम अपना ध्यान नहीं रख पाते तो एक्चुअली इन द ट्रू सेंस हम अपनी बाकी जिम्मेवारियां भी
1: नहीं निभा रहे
0: नहीं
1: होते.
0: निभा
1: वेरी ट्रू.
0: रहे. दैट वी हैव टू समवेयर, इट हैज टू हिट मी कि कि मैं कह तो रहा हूँ. लेट्स से आई जस्ट आस्क समवन द अदर डे, आई सेड व्हाट्स योर फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो कहा माई चिल्ड्रन. आई सेड ओके वेरी गुड, व्हाट अबाउट योर चिल्ड्रन. दे सेड अच्छे स्कूल में डालना, अच्छी तरह से उनको बहुत स्ट्रांग बनाना, ये करना. बट नो वेयर वॉज ही टॉकिंग अबाउट मेकिंग देम इमोशनली स्ट्रांग.
1: बिकॉज वो तो सोचा ही
0: तो
1: नहीं
0: वो
1: था.
0: रिस्पॉन्सिबिलिटी में नहीं डाला ना, क्योंकि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी में नहीं आया तो ये भी नहीं ध्यान आया कि मेरे बच्चों के प्रति जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसमें भी ये आता है. हमने सिर्फ देखा कि फिजिकली उनको सब कुछ अच्छा मिलना चाहिए, एजुकेशन उनको अच्छी मिलनी चाहिए, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. इमोशनली उनको स्ट्रांग बनाना, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? हु विल डू इट? इज द स्कूल गोइंग टू डू इट? गो एंड टॉक टू एनी प्रिंसिपल. आर यू रेडी? शी सेज ओ सो मेनी चिल्ड्रन.
1: एंड नोबडी नोज
0: हम
1: हाउ टू डू इट
0: या
1: ऑल्सो.
0: कैसे करेंगे, हम तो नहीं कर सकते. आप किसी भी स्कूल में प्रिंसिपल या टीचर से मिले, देर ओनली सेइंग क्या करें आजकल के बच्चे, देखो कोई स्कूल में रो रहा है, कोई चिल्ला रहा है, I actually met a boy in a school. He says, I beat myself. मतलब इस तरह के cases principals और teacher को handle करने पड़ते हैं. So yes, it's a, you know, बहुत बड़ा challenge है उनके लिए. And ये बच्चा काफी बड़ा था, not के बाद. He's saying मेरे को इतनी frustration.

0: हो जाती है जब मैं जिसके साथ नाराज हूँ या जो फ्रस्ट्रेशन है मैं उनको कुछ नहीं कर सकता. आई बीट माइसेल्फ, लुक एट द सिचुएशंस दे हैव टू हैंडल. नाउ दैट्स अ साइन कि वो इमोशनली बहुत वीक है, वो अपने आप को मैनेज नहीं कर पा रहा. ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? जहाँ आज हम इसी इल्यूजन में चल रहे हैं ना कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी फैमिली फैमिली फैमिली फैमिली में भी चिल्ड्रन, सो आर वी रियली फुलफिलिंग दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी? अगर मेरे बच्चे आज इमोशनली वीक हैं, देन टाइम टू वेक अप. आई एम नॉट फुलफिलिंग माई रिस्पॉन्सिबिलिटी.
1: वेरी ट्रू. यू नो,
0: जब आप अपने इमोशंस पर ध्यान रखना शुरू करेंगे, अपनी स्थिति पर, तो फिर आप अपने बच्चों के भी, यू विल बी एबल टू टेक केयर. एंड इफ यू फाइंड योर चाइल्ड इज गोइंग थ्रू पेन, यू कैन हेल्प. लेकिन अगर वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लिस्ट में ही नहीं आता, या अगर आता भी है तो हैंडल करना नहीं आता, तो फिर कहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरे की?
1: इनफैक्ट यू नो, दिस इज हाउ बहुत बार पेरेंट्स आते हैं कि वो इस तरह के क्राइसिस में हम क्या करें. तो वो ये क्योंकि हमने अगर अपने आप को ही हैंडल करना सीख गए होंगे, सो आई थिंक नाउ वी आर बी एबल टू डू ऑल. फिर मैं बाकी सबकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको भी, इमोशनल प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करने का सही परिप्रेक्ष्य बता पाऊंगे.
0: क्योंकि खुद जब तक नहीं करेंगे, आई मीन बोलना बहुत इजी है ना बच्चों को कि ये राइट है ये रॉन्ग है, ऐसे नहीं वैसे नहीं, बट दे गो थ्रू सो मच कॉन्फ्लिक्ट इनसाइड. उनको कितना अंदर दर्द है, हु इज गोइंग टू हेल्प? एंड फिर वी से कि स्कूल में काउंसलर है, स्कूल में जो काउंसलर है उनसे बात करो. आई मीन स्कूल्स डोंट नीड टू हैव काउंसलर, दिस वॉज द रोल ऑफ द पेरेंट. पहले कहाँ था? हम जब स्कूल में थे तो वी डेंट हैव अ काउंसलर, क्योंकि काउंसलिंग का कार्य तो काउंसलिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स की है. क्यों आज मुझे बाहर एक थर्ड पर्सन के पास जाना पड़ रहा है? बिकॉज दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नॉट गेटिंग फुलफिल्ड. देन आई एम फाइंडिंग द नीड टू टॉक टू समवन एल्स. द समवेयर वी नीड टू स्टॉप, अपनी लिस्ट फिर से बना लें रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एक्चुअली सिट डाउन एंड डू इट. एंड फिर कहीं लगे कि हाँ ये तो बहुत बड़ी मेरी लिस्ट है. और फिर कई बार कई लोग कहते इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में अपनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट इसके लिए एक्स्ट्रा टाइम नहीं निकालना, सिर्फ ध्यान रखना. और जैसे आपने कहा खुद करेंगे तो बच्चे को कराना
1: आसान हो जाएगा.
0: अच्छा, बच्चे को कराना आसान हो जाएगा, अपनी टीम को ऑफिस में. आई मेट वन ब्रदर इन अ प्रोग्राम, ही इज हेडिंग अ कंपनी, नॉट वेरी बिग, 40-50 लोगों के. तो इसे पहले तो मुझे इतना गुस्सा आता था एंड मैं ऐसे चिल्ला देता था, लेकिन सब मेरे से डर कर चलते थे, मेरा पूरा ऑफिस. लेकिन फिर प्रोग्राम देखकर जैसे जैसे अपने पर वर्क किया, इसे जब तो मैं बिल्कुल गुस्सा नहीं करता. एंड ही वॉज शेयरिंग विद एवरी वन कि बिना गुस्से के भी काम हो जाता है, यू नो ऑफिस में चलता है. बट द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट ही केम एंड शेयर, ही सेइंग मेरे ऑफिस के बहुत सारे लोग अपनी प्रॉब्लम मेरे साथ अब शेयर करते हैं. दैट वॉज एन आई ओपनर. एंड एवरी वन सेड कि अपनी प्रॉब्लम अपने बॉस के साथ आकर कौन शेयर करेगा, नहीं तो यू नो अपने घर की, अपने हस्बैंड की, हु विल कम एंड शेयर? ही सेज दे कम एंड शेयर एंड समवेयर दे लुक एट मी लाइक दिस नाउ कि कहीं ना कहीं मेरे पास एक आंसर है उनके लिए. जस्ट बिकॉज आपको कोई एक दिखाई दे रहा है, तो आपको जैसे ही कोई ऐसा दिखाई देगा, मिलोगे आप जैसे हु इज एबल टू टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ फर्स्ट, यू नो दैट पर्सन विल बी एबल टू हेल्प यू. तो आप देखो पूरा पर्सपेक्टिव ही चेंज हो गया. ऑफिस वही है, लोग वो हैं, लेकिन आपका काम करने का तरीका चेंज हो जाता. तो लेट्स पुट सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द लिस्ट. हैव यू पुट इट ऑन योर लिस्ट? देखो हम एक बिलीफ के साथ स्टार्ट करते हैं. एवरीथिंग विल स्टार्ट विद अ बिलीफ. सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से हम दूसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा अच्छा ले लेंगे, ये एक बिलीफ है. लेकिन जैसे आप उसको एक्सपेरिमेंट करते हो, now that becomes the truth. And that's why we say take it back, experiment. Reject kar diya, to then nothing works out for you. It's another belief.
1: You know, husband-wife ke case mein bahut hota hai. Unhe ye achha nahi lagta. Unhe mera ye karna achha nahi lagta. Aur isliye main ye karti jaati hu.
0: Bhale karo. Agar karte bhi ho, to pehle apni responsibility lekar ki main khush rahungi wo karte hue, फिर करो. देन इट्स ओके. इवन इफ यू नो आई हैव टू डू समथिंग फॉर समवन, बट माई फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज आई विल स्टेबलाइज माई सेल्फ, देन डू इट. नॉट आई विल गो इनटू पेन एंड देन डू
1: इट. आपके लिए करना पड़ रहा है, मुझे उनके लिए करना पड़ रहा है, उनके लिए
0: नॉट वर्थ इट. क्योंकि जो एनर्जी एक्सचेंज होगा वो तो दर्द का ही होगा. तो जैसे ही हम सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर ही हमारी एक और जो बात आती वो है डायरेक्शन इन लाइफ, माई सेल्फ डायरेक्शन. कहा जाता है द गिफ्ट ऑफ लाइफ इज गिफ्ट ऑफ टाइम. ये जीवन कितने समय के लिए ये है मालूम नहीं. डू बी नो?
1: नो.
0: कितना टाइम? वी डोंट नो हाउ मच टाइम वी हैव. यू नो इट्स लाइक मुझे नहीं पता मेरे पास कितना समय है, लेकिन मेरे पास ये चॉइस है कि ये जितना समय मुझे मिला है इसका मुझे क्या करना है, हाउ डू आई हैव टू क्रिएट माई लाइफ। अब ये मुझे जितना समय मिला है, मेरे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो इसको अपने कंट्रोल में लेकर बहुत क्रिएटिवली जिस तरह का अपना मैं ड्रामा बनाना चाहूँ, यू नो द वे आई वुड वॉन्ट माई रोल टू इवॉल्व, आई डू इट। द अदर थॉट इज मेरे हाथ में तो कुछ है ही नहीं, दूसरे लोग मेरे जीवन को चलाते हैं। तो समय उतना ही मिला है, जीवन वो उतनी ही मिली हुई है, लेकिन उसको हम कैसे बिताते हैं ये किसकी जिम्मेवारी है?
1: मेरी अपनी
0: है भी। तो अगर मैं उस स्मृति से चलती हूँ कि ये सब कुछ मेरे हाथ में है एंड आई कैन क्रिएट, व्हेन विल आई बी एबल टू क्रिएट? क्योंकि लेट्स से फॉर एग्जांपल आप अभी मुझे बुरा भला कहते हैं, लेकिन जब मैं रियलाइज करती हूँ कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो मैं अपना सीन अपने अनुसार क्रिएट करती हूँ। तो भले आप जैसे भी थे, लेकिन अभी अभी मैंने अपना सीन कैसा क्रिएट किया, जिस तरह मैं क्रिएट करना चाहूँ। एंड दिस इज एप्लीकेबल टू एवरी सीन, एवरी सीन। अगर आप इस एक्टर पर ध्यान देना शुरू कर दो तो आपकी पूरी जीवन की ये जो यात्रा है वो कौन क्रिएट कर रहा होगा?
1: मैं खुद करूंगी।
0: आप क्रिएट कर रहे हो,
1: दूसरा नहीं लिखेगा मेरी कहानी, दूसरा मेरे डायलॉग्स नहीं लिखेगा। वेरी ट्रू।
0: लेकिन अगर मैं जीवन इस स्मृति से चल रही हूँ कि वो क्रिएट कर रहे हैं, वो क्रिएट कर रहे हैं, तो फिर मेरी जीवन की जो पूरी यात्रा चलेगी वो कोई ना कोई और क्रिएट करता है।
1: आपने ऐसा क्यों बोला? Yeah. आप कौन होते हैं करने वाले?
0: यू नो स्पेशली फॉर सिस्टर्स, कहते हैं पहले जीवन उस तरह चली जिस तरह पिता चाहता था, फिर जीवन उस तरह चली जिस तरह पति चाहता है, फिर जीवन उस तरह चली अब जब
1: बेटा।
0: नाउ दिस इज अ फीलिंग ऑफ
1: कंप्लीट हेल्पलेसनेस। यस,
0: हेल्पलेसनेस। सो ऐसा व्यक्ति अपने प्रति अंदर कैसे सोचेगा, क्या सोचेगा अपने प्रति? यू नो, इज दैट पर्सन एंजॉयिंग लाइफ? नो, दैट पर्सन इज जस्ट सेइंग कि आई एम लीडिंग माय लाइफ अकॉर्डिंग टू दिस पीपल। सो समवेयर हमें रुक कर सोचना पड़ेगा कि एम आई लीडिंग माय लाइफ अकॉर्डिंग टू माय सेल्फ और एम आई लीडिंग माय लाइफ अकॉर्डिंग टू अदर पीपल। ये सेंटेंस बहुत सिंपल साउंड कर रहा होगा, बट आई एम टेलिंग यू मेनी पीपल वो एक चीज बोलते हैं, आई हैव नो चॉइस।
1: मैक्सिमम यस,
0: आई हैव नो चॉइस। वो अपनी परिस्थितियों की एक ऐसी ऐसी लिस्ट बना लेंगे, कहेंगे आई हैव नो चॉइस, टेक दिस सेंटेंस आई हैव नो चॉइस एंड एक्सप्लोर। कौन सी ऐसी परिस्थिति है जिसमें आपके पास चॉइस नहीं है? क्योंकि जिस बार आपने अपने आप को एक बार पे ये सेंटेंस दिया आई हैव नो चॉइस, मतलब आपके जीवन आपके हाथ से निकल गए।
1: लेकिन मुझे उस सपोज टीचर के साथ पढ़ना ही है जो मुझे बार बार somehow वो मुझसे नाराज है। बहुत सारे बच्चों के सामने भी ये बात आती है कि टीचर इज नॉट लाइकिंग मी, यू नो दिस इज अ मेजर प्रॉब्लम विद स्टूडेंट्स। तो वो मुझे उसकी क्लास को अटेंड करना ही है, लेकिन वो बार बार मुझे निगलेक्ट करता है या मुझे पॉइंट आउट करता है, ये बहुत बच्चे बोलते हैं। तो तब इस सिचुएशन में मेरे पास कोई चॉइस नहीं है।
0: क्या चॉइस कौन सी चीज की नहीं है?
1: कि मुझे उनके पास उन्हीं से पढ़ना ही पड़ेगा।
0: हाँ,
1: मुझे वो सब लेना ही पड़ेगा।
0: हाँ,
1: बट मैं रिस्पॉन्ड क्या करूंगा
0: इस... वो मेरी चॉइस है। देखो, चॉइस वी आर नॉट टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ अगेन, अब आपकी जिनसे शादी हुई है अब थोड़ी आप अपनी चॉइस एक्सरसाइज करेंगे। हाँ, उस केस में भी हम कर देते हैं आजकल, या आपके जो पेरेंट्स हैं, आपके जो बॉस है, आपका जो टीम है, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट चॉइस देयर। वी आर टॉकिंग अबाउट हर सीन में, हर स्टेप पर रुक कर हमें अपने आप को देखना पड़ेगा कि कहीं भी गलती से भी हम अपने आप को ये तो नहीं कह रहे कि आई डोंट हैव अ चॉइस। ये एक बहुत, क्योंकि फिर एक बार ये सेंटेंस सेट इन हो जाता है तो हम हर सिचुएशन में इसको अप्लाई कर देते हैं, आई हैव नो चॉइस। यू नो, अ सिंपल थिंग लाइक कई ऑफिसेस में कई लोगों को अपने सीनियर के प्रेशर के अंडर कुछ कई बार गलत काम करना पड़ जाता है, या करप्शन या झूठ बोलना या व्हाटएवर व्हाटएवर। अब वो करते हैं, ठीक है, करते हैं, खुद करते हैं, लेकिन करते करते पता है क्या कहेंगे? आई हैव नो चॉइस। कौन कर रहा है? आई एम डूइंग इट। व्हाट डू आई मीन व्हेन आई एम सेइंग आई हैव नो चॉइस? हम क्या कर रहे हैं?
1: लेकिन मैं अगर नहीं करूंगा तो मेरी नौकरी चली जाती है सपोज,
0: बट दैट्स आल्सो अ चॉइस।
1: हां, बट देन मेरे घर पे फिर कैसे होगा?
0: नो, इट्स ओके, आप कर रहे हैं, वी आर नॉट सेइंग कि आपको करना है या नहीं करना है, वी आर नॉट डिबेटिंग ऑन दैट, कि आपको करप्शन अगर आपको करनी पड़ रही है, ब्राइब लेनी पड़ रही है ऑफिस की तरफ से, तो आपको लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट. क्वेश्चन इज कि आप दोनों में से जो भी ऑप्शन कर रहे हैं,
1: कर तो आप रहे हो ना.
0: वो फिर भी आपकी चॉइस है. अपने आप को ये कहकर नहीं करवाना कि आई हैव नो चॉइस. व्हाई वी आर सेइंग दिस, क्योंकि ये सेंटेंस हमें अंदर ही अंदर खाली कर देता है कि मेरी जीवन मेरे हाथ में तो है ही नहीं, एंड दिस इज अ फीलिंग ऑफ होपलेसनेस फॉर एनीबडी.
1: No, but given the choice, I would not like to lead my life like this. This is what people say.
0: Exercise your choice then. Exercise your choice. I met an officer, उनको it was on a big level deal, तो वो कुछ ऐसे 6 करोड़ की डील थी, एंड उनको कहा गया था कि उनको ऐसे वेंडर से वो लेना है ताकि दैट पर्टिकुलर डिपार्टमेंट वुड गेट 6 लाख्स आउट ऑफ इट. ही डिडंट डू इट. ओके, ही सेड इट जस्ट डजंट गो वेल विद मी, तो मैं नहीं कर रहा. तो वो सीनियर ने उसी टाइम कह दिया कि यू विल हैव टू पे फॉर दिस व्हाट यू हैव डन. ही सेज ओके, तो नहीं किया. तो अपनी चॉइस उस टाइम एक्सरसाइज की. अब क्या हुआ उसके बाद, उनके नीचे वालों की प्रमोशन हो गई और इनकी नहीं की गई. नाउ दिस ब्रदर हैज़ गॉन इनटू डिप्रेशन. ठीक है, सो ही सेज मेरा मुझे डिप्रेशन हो गया. अब डिप्रेशन किस बात से हो गया कि मेरी प्रमोशन नहीं हो रही, मैं वहीं रुक गया हूँ, कोई रीज़न नहीं दिया जा रहा, कुछ नहीं हो रहा. सो आई सेड इज देयर एनी रीज़न. ही सेज या आई थिंक दिस इज़ द रीज़न कि मैंने उनकी वो बात नहीं मानी थी. सो आई हैव टू बी वेरी क्लियर कि जब मैं अपनी चॉइस एक्सरसाइज कर रहा हूँ, आई ऑल्सो हैव टू बी रेडी कि उस चॉइस के साथ मुझे जो भी रेपरकशंस आएंगे, दैट इज ऑल्सो माई रिस्पॉन्सिबिलिटी. बेसिकली अपनी जीवन की हर निर्णय की, हर डिसीशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो जैसे ही रियलाइज दैट, इसे ठीक है, तो मैंने ही चूज़ किया था ना कि मुझे नहीं करना है वो काम, सीधा तो उसका जो भी रिजल्ट हो वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. इट्स फाइन नाउ. सो बेसिकली दोनों अब उस चॉइस में कि आप ब्राइब लें या ना लें, डिसीशन वट एवर यू टेक, दैट्स नॉट द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज दोनों डिसीशंस आपकी ही चॉइस है. अगर आप अपने आप को ये कहते हैं कि मुझे अपने परिवार को संभालना है, मेरे पास कोई और जॉब नहीं है, तो वो भी मेरा ही डिसीशन है, वो भी मेरी ही चॉइस है. मेरी सिचुएशंस के अनुसार, मेरी जजमेंट पावर मुझे जो भी कर रही है, ये डिसीशन मैं ले रही हूँ. लेकिन प्लीज डू नॉट टेल योरसेल्फ आई हैव नो चॉइस. दिस इज द चॉइस आई एम मेकिंग. अगर नहीं लेते हैं, उसका जो भी रिपरकशंस फेस करना है, दिस इज ऑल्सो द चॉइस आई एम मेकिंग. क्योंकि हर स्टेप पर ऐसी कोई सीन ही नहीं होती है जिसमें हम चॉइस नहीं लेते हैं. सिर्फ ये है, हम अपने आप को कहते क्या है, आई हैव नो चॉइस. तो वो कहने से हम एक जो जीवन की यात्रा पर चलते हैं, वी नॉट वी वेरी एम्प्टी इनसाइड के मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं है, सब कुछ ऐसे चल रहा है. एक्चुअली हर चॉइस हर डिसीशन हम ले रहे हैं, लेकिन लेते हुए भी क्या कहते हैं
1: कि आई
0: हैव नो चॉइस. दैट्स अ वेरी वेरी डिमोटिवेटिंग सेंटेंस फॉर माई सेल्फ.
1: लेकिन शिवानी, इनफैक्ट हमारे पास वक्त नहीं है, लेकिन इस पर मैं बात ये करना चाहूँगी कि कई बार हम चाहते नहीं हैं उस राह पर चलना, और तब हमें वो करना पड़ता है. अगर मजबूरी इतनी ज्यादा
0: कौन कराता है,
1: नहीं हम खुद ही कर रहे हैं,
0: That's
1: हम खुद ही कर रहे हैं. लेकिन अगर हम वो नहीं करें, ठीक है, तो फिर कहा जाता है कि ये जो बात कही जाती है कि सच की राह बहुत मुश्किल है और उस पर बहुत कांटे आएंगे और ये होगा, तो फिर हम क्या सेक्रीफाइस करते जाएं?
0: क्या सेक्रीफाइस कर रहे हैं आप?
1: कहीं ना कहीं मेरे पूरे परिवार को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा.
0: सो इट ऑल डिपेंड्स ना आपके जीवन में आपकी प्रायोरिटीज क्या है. दैट्स व्हाई इट विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल. दैट्स व्हाई वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट कि आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. क्वेश्चन इज कि दोनों में से जो भी करोगे, जस्ट रिमेंबर दैट इट्स योर चॉइस. नो वन गॉट इट डन फ्रॉम यू. ये कहना कि उन्होंने मुझसे ये करवा लिया या उनकी वजह से ये हो रहा है, मेरे पास कोई चॉइस नहीं है.
1: लेकिन एक्चुअली अगर हम ये कहते हुए करते हैं कि आई हैव नो चॉइस,
0: इट जस्ट मेक्स मी फील गुड, नथिंग एल्स.
1: आई नो
0: दैट्स ऑल.
1: So again, my first responsibility is towards me that I have to feel good.
0: Not feel good like this.
1: I have to be happy.
0: You're not being happy when you say I have no choice. You know, agar mujhe aaj bribe leni bhi pade, let's say now it like this. If I tell myself I am choosing to do this, then I'm more in control rather than I'm doing it, but I'm not choosing to do it. To andar kya hoga? Kyunki uska jo repercussion aane wala hai, हर डिसीशन का जो रिपरकशन आने वाला है वो फेस कौन करने वाला है?
1: और वो
0: मैं फेस करने वाली हूँ, मैं फेस करने वाली हूँ, वेदर इट कम्स इन द लॉ ऑफ कर्मा और विच एवर वे, आई हैव टू फेस द रिपरकशन। एंड जब वो रिपरकशन मेरे सामने आएगा, आई शुड बी रेडी टू से हाँ ये मैंने किया था और इसका ये मेरे सामने रिजल्ट है। अगर आई से ये मैंने नहीं किया था, ये मेरे बॉस ने करवाया था या ये मेरी वाइफ ने करवाया था, या देन वो रिजल्ट मेरे सामने जब आएगा, आई विल नॉट बी एबल टू फेस इट। सो बेसिकली माई होल लाइफ गोज आउट ऑफ कंट्रोल। जब एक्शन कर रहे हैं तो भी कंट्रोल में नहीं, और जब उसका रिजल्ट आ रहा है तो भी कंट्रोल में नहीं।
1: इनफैक्ट इट्स आई कैन अंडरस्टैंड यू नो व्हाट यू आर ट्राइंग टू से, कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज क्या है कि अदरवाइज हम बहुत मजबूर अपने आप को फील करते हैं, और वो मजबूरी और हेल्पलेसनेस वाला जो पूरा फैक्टर है वो कहीं ना कहीं हमारे आगे की ज़िंदगी में भी एक वन हमें हमारा ये संस्कार बन जाता है। दूसरा कहीं ना कहीं मैं अपने आप को जस्टिफाई करने लगती हूँ, फिर जस्टिफिकेशन देती हूँ अपने आप को पूरे ओपन चांस।
0: हम गलत या सही जो भी है करते भी जाते हैं और ये भी बोलते रहते हैं आई हैव नो चॉइस, मैं कर रहा हूँ, झूठ बोल रहे हैं, बोलते जाएंगे और हर बार क्या बोलेंगे, मेरे पास चॉइस नहीं है, उन्होंने करवाया। तो उससे क्या होता है, आई गिव माई सेल्फ परमिशन टू डू सर्टेन थिंग्स विच एक्चुअली आई इंटरनली फील आई डोंट वॉन्ट टू डू।
1: अगेन इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर हम और बातचीत करेंगे, बिकॉज कई सारी चीज़ें अभी हैं जो अगर मैं उतना स्ट्रांग नहीं हूँ, अगर तो मैं वो स्ट्रेंथ कहाँ से लेकर आ सकती हूँ, वॉट इज़ इट दैट कैन गिव मी स्ट्रेंथ, यू नो दैट लॉट ऑफ थिंग्स इसके ऊपर जिस पर हम बातचीत कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल थैंक यू सो मच आज की इस बातचीत के लिए। ओम शांति।
0: ओम शांति।
1: आज की इस बातचीत से जुड़ी कोई बात अगर आपके पास आती है तो आपका हम स्वागत करते हैं, आप हमें फ़ोन पर या फिर ईमेल पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर है 0999-3444-666-0987-3666-5099-99-74-555। हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@bkmail.org।

अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी इसमें आज इतना ही, लेकिन सेल्फ मैनेजमेंट से जुड़ी अभी बहुत सी बातें जानना बाकी है और देखना बाकी है कि किस तरह से हम इसे अपने जीवन में अपना सकते हैं। फिलहाल आपसे विदा लेते हैं।

0: वो पहाड़ देख रहे हो?
1: हाँ, कितना सुंदर है।
0: और उनको देख रहे हो?
1: वो तो रतन मोहिनी दादी है ना।
0: वो इस पर्वत से भी ज्यादा अपने नियमों पे अडिग, उसकी चोटी से भी उच्च स्थिति वाली है। उस पर्वत से जैसे सूर्य दिखाई देता है ना, ऐसे ही दादी जी ज्ञान सूर्य यानी परमात्मा से मिलवाती है।
2: ऐसी असीम शक्ति जिन्होंने समाज कल्याण में समर्पित कर दिया अपना जीवन, आइए सुने उनकी कहानी। रेडियो मधुबन 107.8 FM पर हर शुक्रवार रात 9:30 बजे कार्यक्रम शक्ति वंदन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। आप सभी का फिर एक बार स्वागत है ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ। आशा करूंगा बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। तो बड़ा ही आनंद आ रहा है सुबह सुबह आपसे राम राम कहते हुए। और मंत्रों का उच्चारण हमारे जीवन को बेहतर बना देता है। और सुबह सुबह आप देखेंगे कि पहले तो ऐसा होता था कि भाई मंत्र उच्चारण का जो रिकॉर्ड है वो प्ले किया जाता था और लोग उसे सुनते हुए अपने दैनिक जीवन के कार्य को करते थे। तो अब वो समय शायद चला गया। अब वो मंदिरों में उस तरह की जो चीज़ें नहीं हो रही हैं, लेकिन फिर भी जहाँ पर होता है तो आप अपने आप को धन्य मान लीजिए कि आपके यहाँ इस तरह का आयोजन अभी भी चल रहा है। तो आइए, आज 3 जुलाई 2026 आज का तारीख है, तो 3 जुलाई की विशेष बातें हम लोग करेंगे ही। और मैं चाहूँगा कि आपने कल विशेष क्या किया तो चलिए मुझे फ़ोन करके आप बताइए 94-14-15-14-15 इस नंबर पर कल का दिन आपका कैसे बीता। तो आइए, 3 जुलाई 2026 आज का तारीख है और भारतीय समय के अनुसार देखा जाए तो राष्ट्रीय शके 1948 शके 12-19 आषाढ़ शुक्रवार आज है। विक्रम संवत 2083 आषाढ़ कृष्ण पक्ष द्वितीय चतुर्थी शुक्रवार श्रवण आज है। इस्लामी हिजरी 1448 17 मुहर्रम जुम्मा आज है। इसके साथ ही संकष्टी चतुर्थी आज है। आप सभी को संकष्टी चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आइए, आज जैसे कि हम सभी जानते हैं शुक्रवार का दिन है, शक्ति स्वरूपा का दिन है, तो आप सभी पर शक्ति की आशीष बनी रहें और माँ अम्बे माँ की शक्ति और माँ संतोषी मैया का प्रसन्न मन आपको प्राप्त हो, ऐसी शुभ आशा के साथ आइए दिन की शुरुआत करते हैं। और जहाँ भी देखें आप संतोष रहें

नमस्कार, आप सुन रहे रिमोट 107.8 FM पर आप सभी का फिर एक बार स्वागत है ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ। अभी 8:43 हो रहे हैं और आप हो मेरे साथ और बातें चल रही थी संकष्टी चतुर्थी के बारे में, तो आप सभी को संकष्टी चतुर्थी की ढेरों शुभकामनाएं। इसके साथ ही आइए हंसा मेहता की जीवन कहानी से आपको रूबरू कराते हैं और एक ऐसे समाज सेवी आज़ादी के दीवानी और शिक्षाविद के रूप में भारत में काफ़ी प्रसिद्धि इन्होंने पाई थी। इनके पिता भानु मेहता बड़ौदा और बीकानेर रियासतों के दीवान थे। हंसा मेहता का विवाह देश के मुख्य चिकित्सक में से एक गांधी जी के निकट सहयोगी जीवराज मेहता जी के साथ हुआ था और भारत के संविधान को मूल रूप देने वाली समिति में 15 महिलाएं भी शामिल थीं। इन्होंने संविधान के साथ भारतीय समाज के निर्माण में भी विशेष भूमिका निभाई थी। हंसा मेहता इन्हीं में से एक थी, तो आइए इनके बारे में और जानकारी हासिल करते हैं। हंसा मेहता का जन्म आज के दिन 1897 को हुआ था बड़ौदा राज्य में, दर्शन शास्त्र के प्राध्यापक जो बाद में बड़ौदा राज्य के दीवान भी रहे। सर मनुभाई मेहता के घर हंसा मेहता का जन्म हुआ। कारण घेलो, जिसे गुजराती साहित्य का पहला उपन्यास माना जाता है, उपन्यासकार नंद शंकर मेहता हंसा मेहता के दादा थे। घर में पढ़ने लिखने का माहौल था तो हंसाबेन बड़ौदा के विद्यालय और महाविद्यालयों में दर्शन शास्त्र से बीए की ऑनर्स प्राप्त किया और संरक्षित माहौल में शिक्षा ग्रहण करने में हंसा बहन को अधिक मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ा। तो आइए आगे बढ़ते हैं और शिक्षा दीक्षा के बाद उन्होंने क्या किया इसके बारे में जानते हैं कुछ ही पल में, लेकिन अभी आपको ले चलता हूँ एक और सुंदर गीत की तरफ। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं 107.8 FM। हेलो जी, नमस्ते, कैसे हैं?
1: नमस्कार जी, कैसे हैं आप?
0: बढ़िया बढ़िया, आप बताओ आप कैसे हैं?
1: बस ठीक है, आपकी आवाज़ सुनने से तो सोचा कि कॉल कर लूं।
0: अच्छा, कहाँ है अब आप? रेडियो सुनते हैं कि नहीं? काफी दिनों के बाद आपने फोन किया है।
1: आगरा में है, इस टाइम तो अभी अहमदाबाद में आई नहीं है, फिर भी उससे इंटरनेट द्वारा सुन लेते हैं।
0: कहाँ से?
1: इंटरनेट से नहीं सुनते?
0: अच्छा अच्छा अच्छा, नेट से, इंटरनेट से सुनते हैं।
1: डाउनलोड कर लेते हैं ना सब।
0: हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ, बढ़िया बढ़िया, चलिए बढ़िया
1: है। सुनना तो जरूरी है ना, ने आपकी आवाज अच्छी बनाई। अच्छा,
0: अरे बाप रे, धन्यवाद, शुक्रिया आपका। आप सुन रहे हैं रेडियो 107.8 FM पर आप सभी का फिर एक बार स्वागत है, और वंदना जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। वंदना जी, स्वागत है आपका, बताइए कैसे हैं आप?
2: थैंक यू रमेश जी, गुड मॉर्निंग, मैं बिल्कुल अच्छी हूँ।
0: जी जी,
2: आप बताइए कैसे हैं?
0: बढ़िया बढ़िया। हेलो जी, नमस्कार। हेलो, हाँ बोलिए बोलिए।
1: ये कह रही हूँ, अल्लाह ने बनाई है, ऐसा लगता है पूरा दिन
0: गुजरेगा। अच्छा अच्छा,
1: सच में अल्लाह से दुआ करते हैं आपकी आवाज यही बनी रहे और आप
0: यही मुस्कुराते रहे। शुक्रिया आपका,
2: और आप इनकी आवाज सुनकर आप भी मुस्कुराते रहे। रमेश जी की आवाज सुनकर आप भी मुस्कुराते रहे।
1: ऐसी बात नहीं, आपकी भी आवाज कम सुनिए लेकिन आपकी भी अच्छी लग रही है।
0: शुक्रिया शुक्रिया। आप सुने हैं रेडियो 107.8 FM। चलिए, हंसा बहन के बारे में बातें कर रहे थे। हंसा बहन पत्रकारिता की पढ़ाई करने इंग्लैंड पहुंची, जब उनकी मुलाकात सरोजनी नायडू से वहां पर हुई। सरोजनी नायडू के साथ हंसा बहन महिला आंदोलन के बारे में दक्षित हो गई और फिर सार्वजनिक सभाओं में शिरकत करना शुरू कर दिया। सरोजनी नायडू के साथ वह एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में जिनेवा में भी गई और वहाँ पर उन्होंने आंदोलन को अंजाम भी दिया। हेलो जी, नमस्कार।
3: हाँ जी सर, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, हम शांति, सुरेश भाई बोलता हूँ, जताना गुजरात से।
0: जी बोलिए सुरेश भाई।
3: वंदना जी को भी नमस्ते।
2: नमस्ते सुरेश जी, कैसे हैं यार?
3: बस बस अच्छे हैं, आप आ जाते हैं तो और खुशियाँ बढ़ जाती है, क्योंकि आप दोनों जो आते हैं तो कुछ न कुछ नया, कुछ न कुछ हम सुन पाते हैं।
2: थैंक यू सो मच।
3: और आप तो कहते हैं ना कि खोज वाले कहीं कहीं से कुछ सी बातें खोज पे लाते हैं और हमको सुनाते हैं, तो ये भी हमारे लिए बहुत खुशी की बात होती है।
2: थैंक यू सो मच।
3: वंदना जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।
2: थैंक यू।
3: हमारे रमेश जी तो अक्सर हमारी बातें सुनते हैं, आप भी सुनते हैं, लेकिन खुशियाँ ही होती है कि आजकल जो दोनों का जो बातें होती है, नहीं हमको अच्छी लगती है, हमारे सभी मित्र भी बहुत पसंद करते हैं।
2: थैंक यू।
3: और बीच में हमारे कमलेश भाई भी कई दिनों तक हम ठहरे तो आए थे स्टूडियो में, तो बहुत अच्छा लगा, कई दिनों से वो भी हमको खुशियाँ दे रहे थे
2: जी।
3: तो कमलेश जी को भी नमस्ते हैं।
0: नमस्ते।
3: शुक्रवार है तो शुक्रिया सबको, और आज
2: शुक्रवार है,
3: एक भजन भी मैं सुनना चाहूँगा रमेश भाई।
0: जी जी।
3: ये एक मीरा भाई का भजन है। मेरा महल थी उतरा राणा ए जानो हाथ, मेरा महल थी उतरा राणा ए जानो हाथ, हाथ मारो मिलो राणा जी कर लो मुझसे बात, घुंगरू छन छना छन, घुंगरू छन छना छन, बाजे रे छन न न न न न न छन छन न न न न न न छन। तो वही गाना है, भजन है मीरा भाई का।
2: आपके लिए बहुत सारी क्लैपिंग्स मेरी तरफ से, बहुत सारी क्लैपिंग्स, आप बहुत अच्छा गाना गाया आपने, वेरी नाइस।
3: वो तो बता बता जी, हम सिलाई काम करते हैं तो अक्सर हम गुनगुनाते रहते ही हैं, इसलिए हमको भी खुशियाँ रहती है कि जो हम गाना गाते हैं ना तो हमको भी अच्छा लगता है, क्योंकि हम तो हरदम गुनगुनाते रहते हैं, जैसे आप रेडियो में बचते रहते हैं हम गुनगुनाते रहते हैं, और हमारा काम भी अच्छा होता है क्योंकि हमारा जो सिलाई का काम है गुनगुनाते और संगीत से ही शुरू होता है।
2: वेरी नाइस, संगीत खुशियाँ देता है ना जीवन में इसमें।
3: हाँ, बहुत बहुत सारी खुशियाँ रेडियो से ही मिलती है हमको, हमको गाना सुनना तो हम ऐसे यूट्यूब पे सुन लेते हैं, रेडियो और किसी को सुन लेते हैं, लेकिन नहीं, ये रेडियो में गाना आता है ना वो खुशियाँ और देता है, सुनने की और मजा रहती है। चलो हमारे बुरी राम जी है, बुरी लाल जी है, किशन भाई
0: जी
3: भाई है, तो सब तो हमारे तरफ से बहुत खुश है, जय राम जी है।
0: शुक्रिया, ओम शांति।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। 3 जुलाई 2026 आज का तारीख है और बड़ी अच्छी बातें हो रही हैं और मीरा भाई का बहुत ही प्यारा सा भजन आपने सुना। आइए इसके साथ ही मैं आप सभी को ले चलता हूं अंतर जातीय विवाह के बारे में बात करते हैं, जो हंसा बहन के साथ ये चीज़ें आई। अब जैसे ही उन्होंने विदेशों में जेनेवा में अपनी जो है आंदोलन को अंजाम दिया, फिर मत अधिकार करने वाली महिलाओं से मिली हंसा बहन, सैन फ्रांसिस्को, संगाई, सिंगापुर और कोलंबो होते हुए भारत आई। अपनी यात्रा के अनुभवों को बॉम्बे कार्निवल में प्रकाशित भी किया। उस दौर में प्रतिलोम विवाह, दूसरे शब्दों में अपने से निचली जाति में विवाह, समाज को स्वीकार नहीं था। ये सामाजिक संरचना के विरुद्ध जाकर बहुत बड़ा कदम था। तो हंसा मेहता ने डॉक्टर जीवराज एन मेहता से विवाह करना तय किया तो नगर गृहस्थ समाज में शोर मच गया। ऊंची जाति का वैष्णव के संग विवाह के प्रतिरोध के लिए गुजरात से बनारस तक के सभाएं की गई और उन्हें जाति में बहिष्कार कर दिया गया। इन सब चीज़ों से हंसा बहन विचलित नहीं हुई और कहा, जब जाति से बहिष्कृत हो चुकी हूँ तो विवाह स्थगित करने का कोई तर्क ही नहीं बनता, इसलिए उन्होंने विवाह कर लिया। हंसा मेहता ने पिता तथा परिवार के अन्य सदस्यों के अनुमोदन से 3 जुलाई 1924 को वो हंसा बहन से हंसा मेहता हो गई। विवाह के पश्चात हंसा मेहता बम्बई आ गई और वहाँ पति के किंग एडवर्ड मेमोरियल हॉस्पिटल और जीएस मेडिकल कॉलेज में डीन का पद संभाल लिया। और
1: जी तो रमेश जी, यहाँ एक बात बताना चाहूंगी, जैसे किसी भी आंदोलन की शुरुआत एकदम सा नहीं होती है, कोई ना कोई बहुत पहले इसके बारे में कदम उठा चुका होता है। जैसे कि अभी आपने बताया हंसा मेहता के बारे में, बाकी चीजें तो लेटली हमने देखा कि आजकल तो इसका कोई मीनिंग ही नहीं रहा, लेकिन सबसे पहले कदम उठाने वाली ऐसी थी, उस समय कितनी बड़ी हिम्मत का काम था। तो इस तरीके की जो कुरीतियां हैं उसके लिए काम उठाने में कोई एक पहल जरूर करता है और वो बहुत पहले होता है, जो मैंने भी समझी आपको सुनकर।
0: जी जी जी, हेलो जी, नमस्कार।
2: हेलो जी, नमस्कार। बहुत जी नमस्कार।
0: नमस्कार, क्या बात है, आज लेट हो गए आप। जी जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल।
2: हाँ पानी हुआ अमृत,
0: बिल्कुल बिल्कुल।
2: गंगा मैया तेरा पानी हुआ अमृत,
1: आपको प्रणाम।
0: जी जी जी, शुक्रिया शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं और आप सभी को ले चलते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गीत, जो अभी सुरेश जी के बाद हमारे गुड़ीलाल जी ने याद भेजा है, तो सुन लेते हैं इस गीत को।
1: गंगा तेरा पानी अमृत,
0: गंगा मैया
1: ऊपर ऊपर, ये है ना नीचे आया, गंगा तेरा पानी अमृत। हाँ

0: सुनिए मित्रों, अब वक्त तो गया है समाचारों का, सीधे समाचारों की तरफ चलते हैं। दिल्ली से सुनाते हैं आपको
1: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस के प्रतिद्वंद्वी गुटों से पार्टी संगठन के चुनावों और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के संबंध में परस्पर विरोधी दावों पर जवाब मांगा। जम्मू कश्मीर में पहलगाम और बालतल दोनों रास्तों से वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा शुरू। ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामनेई सुरक्षा कारणों से अपने पिता अली खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होंगे। पुर्तगाल और स्पेन ने फीफा विश्व कप के अंतिम 16 में जगह बनाई और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका के खिलाफ भारत के दो मैचों की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला का कार्यक्रम घोषित किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की है। इनमें पाकिस्तान से संचालित सीमा पार आतंकवाद भी शामिल है। नई दिल्ली में कल भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने पिछले वर्ष 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में हुए पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची ने पिछले वर्ष 10 नवंबर को दिल्ली में हुई आतंकी घटना की भी कड़ी निंदा की। दोनों देशों ने इस निंदनीय कृत्य के अपराधियों, आयोजकों और वित्त पोषकों को बिना किसी देरी के सजा दिलाने का आह्वान किया। श्री मोदी और सुश्री तकाइची ने अलकायदा, जैश ए मोहम्मद सहित संयुक्त राष्ट्र में सूचीबद्ध सभी आतंकी समूहों तथा संस्थाओं के खिलाफ समन्वित कार्रवाई का आह्वान किया। दोनों प्रधानमंत्रियों ने सुगम और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए समान विचारधारा वाले देशों के बीच सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता को दोहराया। दोनों नेताओं ने क्वाड ढांचे के अंतर्गत व्यावहारिक सहयोग बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता भी व्यक्त की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय सुगमता मजबूत करने के लिए आसियान सदस्य देशों के साथ सहयोग के महत्व का भी उल्लेख किया। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारत और जापान ने भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी के रूप में आर्थिक सुरक्षा के महत्व का उल्लेख किया है। आर्थिक सुरक्षा सहयोग पर भारत जापान संयुक्त घोषणा पत्र में कहा गया है कि आर्थिक सुरक्षा साझेदारी आपसी विश्वास, साझा मूल्यों और आपसी हितों पर आधारित है। दोनों देश 5 प्रमुख क्षेत्रों, सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा तथा औषधि में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करेंगे। निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस के प्रतिद्वंद्वी गुटों से पार्टी संगठन के चुनावों और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के संबंध में उनके परस्पर विरोधी दावों पर जवाब मांगा है। आयोग ने कहा है कि उसने संबंध में दोनों गुटों के दावों और प्रतिदावों पर ममता बनर्जी और पार्टी नेता रणब्रत बनर्जी को अलग अलग पत्र लिखे हैं। आयोग ने यह भी कहा कि दोनों पक्षों को सोमवार शाम 5:30 बजे तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। यह घटनाक्रम तृणमूल कांग्रेस के अंदर पार्टी के संगठन की संरचना और पार्टी की ओर से कार्य करने के अधिकार को लेकर चल रहे विवाद

0: के बीच आया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नव निर्वाचित सदस्यों के लिए दो दिन के संसदीय और विधायी कार्य से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इसका उद्देश्य नव निर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्य के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। इनमें समिति प्रणाली, वित्तीय निगरानी, संसदीय विशेषाधिकार और विधानसभाओं में उभरती डिजिटल पहल शामिल है। कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री रिजिजू और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे। पंचायती राज मंत्रालय आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा, जिसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर चर्चा की जाएगी। कार्यशाला की अध्यक्षता केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह करेंगे और केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। कार्यशाला के दौरान वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा जारी 16वें वित्त आयोग के ग्रामीण स्थानीय निकाय अनुदानों को लागू करने के दिशा निर्देशों पर चर्चा होगी। विचार विमर्श से केंद्र राज्य सहयोग को सुदृढ़ करने और 2047 तक विकसित भारत बनाने की परिकल्पना के अनुरूप पंचायतों को बेहतर शासन, बुनियादी सुविधाओं, सार्वजनिक सेवाओं और समावेशी ग्रामीण विकास प्रदान करने के लिए सशक्त बनाने का मजबूत ढांचा विकसित करने में सहायता मिलने की उम्मीद है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो गई है। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिनों की तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा मंदिर का दर्शन करेंगे। ये यात्रा 28 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन समाप्त होगी।
1: बम बम बोले और हर हर महादेव के जयकारों के बीच अमरनाथ यात्रियों का पहला जत्था आज सुबह पवित्र गुफा की तरफ रवाना हो गया। अगले 57 दिनों की इस यात्रा के दौरान लाखों श्रद्धालु नुनवन, पहलगाम और बालतल रास्तों से होते हुए बाबा बर्फानी के यहां अपनी हाजिरी देंगे। दोनों रास्तों पर अधिकारियों ने मेडिकल कैंप, आराम करने की जगहें, लंगर, पीने के पानी की सुविधा और मौसम की पल पल की जानकारी रखने जैसे व्यापक इंतजाम किए हैं। यात्रा को सुरक्षित रूप से पूरा करने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इस बीच यात्रियों का दूसरा जत्था आज सुबह जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से निकलकर घाटी की तरफ रवाना हो गया है। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं श्रीनगर से इश्फाक शाह।
0: ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामनेई अपने पिता और पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई के अंतिम संस्कार में सुरक्षा कारणों से शामिल नहीं होंगे। भारत में ईरान के प्रतिनिधि आयतुल्ला हकीम इलाही ने बताया कि धमकियों और निगरानी जोखिमों के कारण मुज्तबा खामनेई का सार्वजनिक रूप से सामने आना सुरक्षित नहीं है। ईरान में पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई के अंतिम संस्कार का कार्यक्रम 4 से 9 जुलाई तक ईरान और इराक में होगा। बिहार के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरिटा कल ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। इस पर विदेश मंत्रालय ने कहा कि समारोह में इन दोनों भारतीय प्रतिनिधियों की उच्च स्तरीय उपस्थिति दोनों देशों के बीच सभ्यता से जुड़े संबंधों के महत्व का परिचायक है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस के ड्रोन और मिसाइल हमलों में 27 लोग मारे गए और 90 लोग घायल हो गए हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि बुधवार रात को हुई ये बमबारी यूक्रेन की ओर से रूस में नागरिक ठिकानों पर किए गए लंबी दूरी के हमलों के जवाब में थी। रूस पर किए जा रहे लगातार हमलों को यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोदिमिर ज़ेलेंस्की ने 40 दिनों का ताबड़तोड़ हमला बताया है। सीरिया में कल राजधानी दमिश्क के एक कैफे में हुए विस्फोट में कम से कम 9 लोगों की मौत हो गई। सीरिया के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि इस घटना में 20 लोग घायल हुए हैं। फिलहाल किसी भी गुट ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। सुरक्षा बलों ने हमले की जांच के लिए इलाके की घेराबंदी कर दी है। दमिश्क के गवर्नर माहिर मारवान इदलिबी ने कहा है कि दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार।
2: स्पेन और पुर्तगाल फीफा फुटबॉल विश्व कप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। पुर्तगाल ने आज क्रोएशिया को 2-1 से हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई। इससे पहले स्पेन ने ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराकर अंतिम 16 में जगह पक्की की। मंगलवार को डलास में प्री क्वार्टर फाइनल में स्पेन का सामना पुर्तगाल से होगा। इससे पहले फ्रांस, नॉर्वे, कनाडा, मोरक्को, ब्राजील, पैराग्वे, बेल्जियम, अमरीका और इंग्लैंड भी अंतिम 16 में पहुंच चुके हैं। प्री क्वार्टर फाइनल में सोमवार को इंग्लैंड का सामना मेक्सिको से होगा। श्रीलंका मंगलवार को बेल्जियम के साथ खेलेगा। इस बीच भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका और भारत के बीच दो मैच की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। ये श्रृंखला 15 से 27 अगस्त तक खेली जाएगी। पहला टेस्ट 15 अगस्त से गोल अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा। दूसरा टेस्ट 23 अगस्त से कोलंबो में खेला जाएगा। ये श्रृंखला आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है। उधर इंग्लैंड आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में पहुंच गया है। लंदन में कल दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका को 40 रन से हरा दिया। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने पहले सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराकर खिताबी मुकाबले में जगह बनाई। रविवार को लंदन के लॉर्ड्स में फाइनल में इंग्लैंड का सामना ऑस्ट्रेलिया से होगा। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: और खेल खबरों के बाद एक दुखद घटना। आंध्र प्रदेश के मरकापुरम जिले में आज सुबह कंभम के पास एक सड़क दुर्घटना में 4 लोगों की मौत हो गई और 8 अन्य घायल हो गए। ये दुर्घटना खाद से लदे एक ट्रक के ऑटो रिक्शा को टक्कर मारने से हुई। घायलों को गिदलूर और कुंभम के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। बात मौसम की। उत्तराखंड में मॉनसून पूर्ण रूप से सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने आज कई जिलों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने राज्य के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। नैनीताल और बागेश्वर जिलों में तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून टिहरी पौड़ी चमोली उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग में भी कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश की संभावना है। विभाग ने संवेदनशील क्षेत्रों को लोगों को सतर्क रहने और यात्रा करते समय सावधानी बरतने की सलाह दी है। दक्षिण पश्चिम मानसून दिल्ली गुजरात उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश हरियाणा पंजाब और राजस्थान के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ चुका है। मौसम विभाग ने गुजरात कोंकण गोवा मध्य महाराष्ट्र उड़ीसा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। वहीं छत्तीसगढ़ तटीय कर्नाटक पूर्वी मध्य प्रदेश पूर्वी राजस्थान हिमाचल प्रदेश केरल माहे उत्तराखंड और विदर्भ में मूसलाधार बारिश हो सकती है। दिल्ली में दिन में बादल छाए रहने के साथ हल्की बारिश की संभावना है। राजधानी में अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
3: धन्यवाद फरहत। भारत और जापान के बीच कई महत्वपूर्ण समझौते होने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने सचित्र प्रकाशित किया है। जनसत्ता लिखता है, भारत और जापान मिलकर बनाएंगे सैन्य साजो सामान, मोदी और तकाईची में शिखर वार्ता। अमर उजाला ने जापान के प्रधानमंत्री के संतूर पर हाथ आजमाने का चित्र दिया है। पत्र लिखता है, संतूर बजाकर चौंकाया पीएम मोदी समेत कई लोग हैरान। सुप्रीम कोर्ट द्वारा एआई से बने फर्जी फैसलों की कानूनी मिसालें देने पर सख्त रुख अपनाने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने दिया है। दैनिक जागरण लिखता है, एआई से लिखे गए फर्जी फैसले जहरीली गैस जैसे, अदालत ने कहा फैसलों के प्रति जीरो टॉलरेंस होना चाहिए। नीट जेईई में निर्णायक हो सकते हैं 12वीं के अंक, नीट पुनर्परीक्षा के नतीजे 20 जुलाई को, हिंदुस्तान की सुर्खी है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में फिर राम मंदिर परिसर पहुंची एसआईटी, रडार पर हैं 100 लोग, ट्रस्टी से पूछताछ, नवभारत टाइम्स की खबर है। शेयर बाजार में निवेशकों पर 3 लाख करोड़ की बारिश, सेंसेक्स में 579 अंकों का उछाल, लोकसत्य की खबर है। अमीर युवाओं की पसंद बदली, 40% से ज्यादा भारतीय छुट्टियां मनाने के लिए अब कोरिया मिस्र जापान मालदीव जैसे नए देश जा रहे, दैनिक भास्कर की सुर्खी है। पत्र लिखता है, ट्रेवल इंश्योरेंस लेने वाले हर साल 10% बढ़ रहे। खामेनेई की अंतिम संस्कार यात्रा से पहले हवाई निगरानी हुई कड़ी, कई राष्ट्राध्यक्षों के साथ 2 करोड़ लोग जुड़ सकते हैं, राजस्थान पत्रिका की खबर है। कई समाचार पत्रों ने देश भर के कई राज्यों में हो रही बारिश का चित्र दिया है। देश बंधु की सुर्खी है, दिल्ली में मानसून ने दी दस्तक, लोगों को तेज धूप और गर्मी से मिली राहत, राजस्थान पत्रिका के शब्द हैं, राजस्थान और दिल्ली पहुंचा मानसून, 2 दिन अति बारिश का अलर्ट। हिंदुस्तान ने संपादकीय पन्ने पर भारत जापान के सभ्यतागत संबंध पर लेख प्रकाशित किया है, शीर्षक है, भारत जापान रिश्तों में नई गर्मजोशी।
0: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाईची ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस के प्रतिद्वंद्वी गुटों से पार्टी संगठन के चुनावों और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के संबंध में परस्पर विरोधी दावों पर जवाब मांगा। जम्मू कश्मीर में पहलगाम और बालतल दोनों रास्तों से वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा शुरू। ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामनेई सुरक्षा कारणों से अपने पिता अली खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होंगे। पुर्तगाल और स्पेन ने फीफा विश्व कप के अंतिम 16 में जगह बनाई। और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका के खिलाफ भारत के 2 मैचों की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला का कार्यक्रम घोषित किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड में फंस जाना तो कॉल 1930 पर लगाना। ऑनलाइन होने वाले धोखाधड़ी और साइबर फ्रॉड से पीड़ित होने पर गृह मंत्रालय भारत सरकार की अधिकृत वेबसाइट www.cybercrime.gov.in पर अपनी शिकायत दर्ज कराएं।

नमस्कार, मैं हूं अंकुश मोगा पंजाब से। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। सभी को आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं।

0: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मंगल कामनाएं करते हैं। आइए आज के इस विशेष मुलाकात कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम लोग अलग अलग विषय को लेकर काम करते हैं, अलग अलग बातें अलग अलग लोगों से आपकी मुलाकात कराते हैं। तो आज के इस कार्यक्रम के हमारे खास फनकार मेहमान डॉक्टर संजीव शराब जी उपस्थित है और आप सागर से बिलोंग करते हैं। डॉक्टर हनी सिंह
1: गौर विश्वविद्यालय
0: में उप पुस्तकालय जो है आप संभालते हैं, और इसके पूर्व आप बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में 16 वर्ष तक कार्यरत रहे हैं और माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा शासित नेशनल न्यू जुडिशियल एकेडमी में सेवारत रहे हैं, और कुल 9 विषयों में आपने एमए किया है और 2 पीएचडी आपके नाम है और तीसरी पीएचडी रनिंग है। पुस्तकालय में काम करते करते आपको पढ़ने का बड़ा शौक रहा होगा, तो इसीलिए आपने काफ़ी चीज़ें सीखी और अभी भी पढ़ाई जारी रखा है। तो निश्चित तौर पे जो है हमें भी अच्छा लगेगा आपसे जब ज्ञान की वर्षा हम लोग सुनेंगे। डॉक्टर संजीव शराब जी, बहुत बहुत स्वागत है, कैसे हैं आप?
1: बहुत बढ़िया, ओम शांति।
0: ओम शांति। और मैं चाहूँगा कि हमारे 9 जो विषय में जिसमें आपने एमए किया है
1: जी,
0: वो कौन कौन से विषय हैं?
1: लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, फिलोसफी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी।
0: क्या बात है। और पीएचडी जो कर रहे हैं आप, जो 2 पीएचडी आपने किया वो किस विषय पे आपने किया?
1: लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में, जिसमें मैंने एक मॉडल जुडिशियल लाइब्रेरी सिस्टम बनाया था।
0: अच्छा।
1: और दूसरा मेरा था पॉलिटिकल साइंस में, जिसमें मैंने जितने भी पीएचडी पूरे देश भर में पॉलिटिकल साइंस पे हुए हैं उनके बारे में शोध कार्य किया था। वर्तमान में मेरी तीसरी पीएचडी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में बौद्ध दर्शन पर चल रही है।
0: अच्छा, बहुत बढ़िया। तो ये जो आपको पढ़ने का शौक बचपन से था या लाइब्रेरी से जुड़ने के बाद हुआ?
1: बचपन से ही पढ़ने का शौक था, इसीलिए मैं लाइब्रेरी से जुड़ा।
0: अच्छा। और मैं चाहूँगा कि अब जैसे कि आपने बता दिया पीएचडी जो आपने किया है, तो उसमें जो खास अलग क्या करना आपने देखा, उसमें कुछ अलग जो हट के आपने किया है उसके बारे में बताइए।
1: जैसे जब मैंने लाइब्रेरी साइंस में पीएचडी की, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट और माननीय हाई कोर्ट में जो भी लाइब्रेरी सिस्टम था उसका अध्ययन किया, और मेरा ऐसा मानना था कि न्यायालयों के माध्यम से आम जनता की भाषा में उनको बहुत कुछ उपलब्ध नहीं हो पाता है। तो मैंने उस पीएचडी के माध्यम से यह सुझाव दिया कि यदि आम जनता की भाषा में कुछ इस तरीके का सूचना संसाधन उनको उपलब्ध करा दिया जाए, या तेज़ी से जो कंप्यूटराइजेशन हो रहा है, छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, यदि सूचना पाठक तक नहीं पहुंचेगी तो सूचना का कोई मतलब नहीं है। तो मैंने अपने पीएचडी के माध्यम से एक मॉडल जुडिशियल लाइब्रेरी सिस्टम प्रतिपादित किया था, और उसमें किस तरीके से सूचनाओं को हम अपने पाठकों तक साझा कर सकते हैं, इसके बारे में एक रूपरेखा दी थी। दूसरी मेरी जो पीएचडी थी पॉलिटिकल साइंस में, तो पॉलिटिकल साइंस चूँकि भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा प्रचलित विषय है,
0: बिल्कुल।
1: जो कि चाहे प्रतियोगी परीक्षाएं हों या आम एमए बीए में जो भी बच्चा पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट लेता है, तो इसमें अब तक कितने शोध कार्य हो चुके हैं, और उन शोध कार्यों में जो आपका कंटेंट एनालिसिस है उसके बारे में मैंने अपना शोध कार्य काशी हिंदू विश्वविद्यालय से किया था।
0: चलिए, बहुत अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से आपने शोध कार्य किया और थोड़ा हट के उन चीज़ों को बताने की कोशिश की आपने। तो पीएचडी करते वक्त सबसे बड़ा चैलेंज कौन सा था आपको, और वो भी खास पॉलिटिकल साइंस में जो आपने?
1: नहीं, असल में मैं लाइब्रेरी साइंस का आदमी हूँ, लाइब्रेरियन हूँ, और एशिया की सबसे बड़ी जो विश्वविद्यालय है उसमें 16 वर्ष तक मैं सेवारत रहा हूँ, तो मेरे लिए पीएचडी के सामने मतलब कोई चैलेंजेस नहीं था। हाँ, इसके पहले जब मैंने लाइब्रेरी साइंस में सागर विश्वविद्यालय से पीएचडी की, तो चैलेंजेस था क्योंकि इस विषय पर बहुत ही कम शोध कार्य हुए थे, और कोर्ट का नाम सुनते ही थोड़ा सा एक लोगों के मन में कि वहाँ पर सर्वसुलभ प्रवेश सुविधा नहीं रहती है, ये रहती है। लेकिन ईश्वर की कृपा से सब कुछ बहुत अच्छा संपन्न हुआ और उसके बाद एक इंटरनेशनल पब्लिशर ने मेरे उस शोध कार्य को पुस्तक के रूप में भी प्रकाशित किया।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो जैसे कि हम लोग अभी बहुत सारे बच्चे चाहते हैं कि पीएचडी करें
1: जी,
0: तो वो बड़ा मुश्किल उनको लगता है। जैसे मैंने एक जगह हमारे इंटरव्यू में मैंने एक बनारस से कोई विद्यार्थी था और उन्होंने संगीत करके रखा था और संगीत में उनको पीएचडी करना
1: जी,
0: और वो था कि रागों का या संगीत का असर उनके मन पर या शरीर पर होता है
1: जी।
0: तो वो ऑलरेडी उस चीज पे काफी लोगों ने किया लेकिन इन्होंने अपने तरीके से उसको करने की कोशिश की। तो करते करते इनको तो लोग चाहिए ना कि जिनके ऊपर ये प्रयोग करेंगे और वो रेडी हो जाए
1: जी।
0: तो लोग भी तैयार नहीं होते थे
1: जी, जी, जी। संगीत में तो इस तरीके की बहुत कम विश्वविद्यालयों में संगीत विभाग है और जो फैकल्टीज हैं वो भी बहुत कम हैं। तो जो भी इसके इस विषय के विद्यार्थी हैं उनको थोड़ी सी परेशानी तो होती है, लेकिन जहाँ चाय है वहाँ राय है।
0: बिल्कुल,
1: जिसको जो कुछ करना है वो कोई ना कोई अपना रास्ता निकाल ही लेता है।
0: निकाल ही लेता है, ये बिल्कुल सही कहा। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने बताया और मुझे लगता है कि हमारे सभी श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा है। तो संजीव जी, मैं चाहूँगा कि पुस्तकों के अलावा संगीत गीत वगैरह भी सुनते हैं क्या आप?
1: असल में एक यह ऐसा विषय है जो इसमें थोड़ी सी कम रुचि है, क्योंकि जब आप पुस्तकों के संगीत में डूब जाते हैं तो फिर आपको कोई राग पसंद नहीं आता।
0: अच्छा, आपकी जो पसंदीदा किताब है उनके बारे में बताइए
1: जी।
0: जी,
1: मुख्य तौर पे जो अपने प्राचीन ग्रंथ हैं उन पे जो समीक्षाएं हैं वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, और अभी जो युवा लेखक आए हैं जो उन्हीं विषयों को लेकर बहुत सारी पुस्तकें जो लिख रहे हैं वो मेरा पसंदीदा विषय है। क्योंकि भारतीय संस्कृति में यदि हम देखें तो यदि इन धर्म ग्रंथों को निकाल दें तो ना हमारे पास संस्कार हैं, ना हमारे पास मूल्यनिष्ठ है, और ना ही नैतिकता की बात होती है। पूरा जो हमारा वैदिक संस्कृति हुई, भारतीय संस्कृति हुई, श्रमण संस्कृति हुई, इसके ज्ञान पर आधारित जो भी पुस्तकें हैं वह मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, और इन पर कोई भी नई टीका आती है तो मैं उसको ज़रूर पढ़ने की कोशिश करता हूँ और पढ़ ही लेता हूँ।
0: बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, आगे बढ़ते हुए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। संजीव जी से बातें हो रही हैं, आप समझ ही गए होंगे उनके पास ज्ञान का अथाह भंडार है, लेकिन वो भंडार अभी हम खोलेंगे नहीं, थोड़ी देर में पहले गीत सुनाते हैं, उसके बाद फिर आपको उसमें रस में डुबाने की कोशिश करते हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। जी हाँ, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

ओम शांति। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर आरती कुलवाल। आप सभी के लिए अच्छे स्वस्थ और सुंदर मन की शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: नमस्कार, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और बहुत ही अच्छी बातें हो रही हैं। डॉक्टर संजीव जी हमारे साथ हैं, जिनका विषय है पुस्तकालय और पुस्तकालय के साथ साथ पुस्तकों में रुचि रखते हैं। तो अभी हमने जैसे कि उनसे बात करते वक्त जाना कि उन्होंने 2 PhD किए हैं और तीसरा PhD उनका रनिंग है और 9 सब्जेक्ट में उन्होंने MA किया है। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि एक सब्जेक्ट में MA करना बड़ी मुश्किल लगती है ना, आपने 9 सब्जेक्ट में कैसे कर डाला, है ना। तो आइए मैं फिर से संजीव जी से जोड़ना चाहूँगा। संजीव जी, मैं चाहूँगा कि जो समीक्षक, जो पुस्तकों के समीक्षक हैं, आपसे अच्छा लगता है आपको, और जो नए युवा लेखक हैं वो भी लिखते हैं तो भी, और पुराने भी आप पढ़ने में अच्छा लगता है आपको, तो मैं चाहूँगा कि उन सभी चीज़ों में जो आपके दिल को छू लेने वाली कोई है ऐसी चीज़ तो मेरे को ज़रा बताइए, कोई एक स्टोरी, कोई एक सिनॉप्सिस जो आपको बड़ा प्रभावित किया हो।
1: अभी जैसे आपने देखा होगा अमीश त्रिपाठी जो युवा लेखक हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छी किताब लिखी है, मुझे सहिष्णुता मत सिखाओ। उसके माध्यम से उन्होंने भारतीय संस्कृति, जो इतनी ज़्यादा सहिष्णु संस्कृति है कि हमने सबको आत्मसात किया है। भारत देश का यदि हम इतिहास देखें, इतने विदेशी आक्रमणकारी आए, इतने शासक प्रशासक आए, उन्होंने भारत जो सोने की चिड़िया थी, जो भारत विश्व गुरु था, उसकी संपदा को नुकसान पहुंचाया। तो मेरा ये कहना है कि ज्ञान की आपको रक्षा नहीं करना पड़ती है, लेकिन धन की रक्षा करनी पड़ती है। तो भारतीय संस्कृति में इन सब चीज़ों को, इस सहिष्णुता को, जिस तरीके से रहा है हमारा देश, उस सहिष्णुता को लेकर अमीश त्रिपाठी जी ने बहुत ही अच्छी किताब लिखी है, मुझे सहिष्णुता मत सिखाओ। और इसके माध्यम से उन्होंने जो पाश्चात्य संस्कृति है उसके उन पुरोधाओं को भी ये कहा है कि एक बार यदि आप भारतीय संस्कृति को थोड़ा सा भी पढ़ लेंगे तो इस तरीके के जो अनर्गल आरोप लगते रहते हैं तो वो नहीं लगेंगे। तो ये किताब मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। इसके अलावा नरेंद्र कोहली जी ने जो दीक्षा है, अवसर है, जो रामायण पे और जो महाभारत पे कमेंट्री की है, वो बहुत अद्भुत हैं। वर्तमान में अभी देवदत्त पटनायक जी
0: जी
1: बहुत अच्छे समीक्षक हैं, और उन्होंने उन पहलुओं को भी छुआ है जो पहलू कहीं छूट गए थे, जैसे बर्बरीक का चरित्र हो। आज की जो युवा पीढ़ी है वो हमारे ऐतिहासिक पात्रों तक को नहीं जानती है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो ये सब जो लेखक हैं इन्होंने बहुत ही अच्छी समीक्षाएं लिखी हैं और ये पुस्तकें हमें पढ़नी चाहिए। इसके अलावा मोटिवेशन की तो बहुत सारी किताबें हैं, ख़ास तौर पे मैं ब्रह्म कुमारी जो अपना संस्थान है,
0: बिल्कुल,
1: उसके द्वारा जो पुस्तकें हैं वो भी बहुत अच्छी पुस्तकें हैं। ज्ञान का उनमें खजाना है, आप उसमें गोते लगाते जाइए, मोती आपको निश्चित मिलेंगे। और जो नए भारत की परिकल्पना है, नशा मुक्त की परिकल्पना है, उन सब के बारे में यदि युवा को आप लोग, जैसा कि आपका जो मधुबन रेडियो है
0: जी,
1: ये शुरू से ही 3 साल से लेके 12 साल तक के बच्चों के लिए जो बहुत सारे कार्यक्रम कर रहा है समूह में, बहुत सारे अवार्ड भी आपके रेडियो को मिले हैं
0: जी, जी।
1: तो ये बहुत अच्छा काम है और इसकी ज़रूरत है, ताकि जो नया भारत हो वो एक नए तरीके से फिर से हमारा जो विश्व में स्थान था विश्व गुरु का वह ले सके।
0: बिल्कुल बिल्कुल। संजीव जी, काफ़ी अच्छी बात आपने बताया, आपने जिन जिन लोगों को पढ़ा, समीक्षक रहे हैं, भारतीय संस्कृति को उजागर करने के लिए उन्होंने काम किया है, जैसे कि आपने बहुत अच्छी बात बताया अमीश जी की, जिन्होंने लिखा कि मुझे सहिष्णुता मत सिखाओ। तो निश्चित तौर पे भारत सहिष्णुता का एक सुंदर देश है। भारत जो है अपने कल्चर में इतना रिच था और जहाँ पर धन और संस्कृति की कोई कमी थी नहीं, और सुना है कि भारत सोने की चिड़िया थी, है ना। तो जब अगर भारत का नाम ही सोने की चिड़िया, जहाँ सोने का ही देश था, तो वो देश अपने आप में संपन्न रहा है और अपने आप में संपन्न और समृद्ध रहा है। तो यहाँ पर जो भी लोग आए वो कहीं ना कहीं कुछ लेने के लिए आए, और भारत को वैसे कहा जाता है दाता, जिन्होंने सबको सब चीज़ें दे दी, और देने के बाद लोगों ने उसको यूज़ करके अपने जीवन यापन करते रहे। और कहते हैं कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि एक समय जो है गोल्डन के बाद सिल्वर, सिल्वर के बाद कॉपर और आयरन स्टेज पे आ जाता है। तो ये एक साइकिल है जिसमें हर व्यक्ति और वस्तु को गुजरना पड़ता है
1: जी।

0: को या वस्तु को जो है ट्रांसफॉर्मेशन में ले जाता है। तो परिवर्तन जिसको कहते हैं वो संसार का नियम है, व्यक्ति हो वस्तु हो उसको परिवर्तन से गुजरना ही है। तो अगर हम यही सिद्धांत जीवन का समझ लें तब भी हमें किसी को ऊपर नीचे करने की जरूरत नहीं, किसी को सिखाने की जरूरत नहीं, समझाने की जरूरत नहीं, क्योंकि परिवर्तनशील है संसार, तो परिवर्तन के साथ हमें परिवर्तन होना है
1: जी।
0: फिर बातें तो और निकलेगी, लेकिन हम चाहेंगे कि आपसे कुछ बातें सीखे, जैसे देवदत्त जी के बारे में आपने बताया, एक अच्छे समिष्य के पुरानी चीज़ों को लेकर काम करते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आपको और किन लोगों के बारे में आप, जिनकी पुस्तकें आपने पढ़ी हैं, जो शिक्षा के ऊपर या एजुकेशन के ऊपर काम किया हो, ऐसे लोगों के बारे में बताइए।
2: जैसे आप देखेंगे हमारे भारत के पूर्व राष्ट्रपति
1: APJ
2: अब्दुल कलाम जी ने, उन्होंने जो छोटी छोटी सूत्र युवा पीढ़ी को दिए हैं, देश की जनता को दिए हैं, एक राष्ट्रपति पद पर रहते हुए भी यदि कोई इतना विराट व्यक्तित्व जो कहता है कि जो मुझे प्रेरणा मिली है वो हमारे भारत का जो ज्ञान है उससे मिली है, चाहे आप अग्नि की सफलता की बात हो, उन्हें मिसाइल मैन कहा जाता है, तो उनकी जो आप किताब यदि आप पढ़ेंगे तो आप उसमें पाएंगे, वो भी भारतीय संस्कृति के उन अनछुए पहलुओं से ओतप्रोत हैं जो सत्य हमारे सामने उजागर नहीं हो पाया। आप देखेंगे कि यदि हमारे जो पुराने ग्रंथ हैं, पुष्पक विमान का हमें उल्लेख मिलता है, महर्षि नारद जी हमारे सामने आते हैं, बरबरीक जैसे एक आग्नेय पुरुष हमारे सामने आते हैं, तो जब ये देखेंगे तो ये इतनी सारी जो वैज्ञानिक चीज़ें हैं वो सब कहीं ना कहीं थी। दुर्भाग्य से हम उनका प्रॉपर तरीके से डॉक्यूमेंटेशन नहीं कर पाए, क्योंकि हमारे यहाँ श्रुत ज्ञान था, और जब तक ये श्रुत ज्ञान लेखन के रूप में या आगे पीढ़ियों पर हस्तांतरित नहीं होता है, तो निश्चित तौर पे यदि हमें कोई ज्ञान आता है तो हमारे बाद यदि हमने उसको सुरक्षित नहीं किया तो वो निश्चित तौर पे नष्ट हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों की भी बहुत कुछ ज़रूरत थी, बाद में प्रयास हुए और हमारे सामने जो भी ग्रंथ आए हैं वह उसी का परिणाम है कि उनको संरक्षण करके रखा गया। तो कलाम साहब ने इन्हीं सब चीज़ों को भी अपनी आत्मकथा में और अपनी अन्य पुस्तकों में निरूपित किया है।
0: बिल्कुल बिल्कुल। एक और बात मैं पूछना चाहूँगा, जैसे अभी आपने जो बातें बताई, और कई बार हम लोग किसी कहानी को संजोए रखने में असमर्थ हो गए, जैसे कि कबीर की बात कहें
2: जी,
0: तो कबीर जी को भी किसी लेखक ने ही जो है उनको तराशा, उनको पुस्तकों में रखा और उनकी इधर उधर पड़ी हुई कलाम को जो है उन्होंने संजोया और फिर उसके ऊपर काम किया
2: जी।
0: और ये सारे रिसर्च वर्क होते हैं मेरे ख्याल से
2: जी, जी,
0: मैं चाहूँगा कि ऐसे ही कितना मेहनत उनको करना पड़ता होगा, कितने लोगों के साथ उन्होंने बातचीत की होगी, कहाँ कहाँ उनका रहने का स्थान, वहाँ से वो चीज़ें उठाना, उनकी लिखी हुई या उनके अनुयायी जो रहे होंगे इधर एक दो जाना
2: जी,
0: उनसे बातचीत कर करके वो ऐतिहासिक चीज़ों को खोज के फिर उसको
2: जी,
0: संजोना
2: जी,
0: अपने आप में ये एक यूनिक चीज़ है। और कभी कभी ऐसा लगता है कि लेखक पुस्तक लिख देता है लेकिन उसके पीछे का रहस्य शायद किसी को नहीं पता चलता
2: जी, जी, जी।
0: तो मैं चाहूँगा कि ऐसे कुछ रहस्यमय कोई एक किताब के बारे में और उसमें जो राइटर हैं उसके बारे में बताइए।
2: देखिए, जो भी लेखक है वह सबसे पहले, जो गंभीर लेखक है वह सबसे पहले उन स्थानों को चिन्हित करता है। जैसे आपने कबीरदास जी की बात कही, तो कबीरदास जी जहाँ जहाँ रहे हैं, तो एक पुस्तक सही रूप में पाठक तक तभी आ सकती है जब तक कि आप उस अनुभूति में ना चले जाएं। तो जिन स्थानों पे अगर आपका कोई पात्र है जिस पर आप पुस्तक लिख रहे हैं, वो किन स्थानों पर रहे हैं, उन स्थानों का क्या भौगोलिक महत्व है, जैसे आप बात करेंगे रघुवंशम की, कालिदास जी ने जो लिखी है
1: जी, जी।
2: तो निश्चित तौर पर जब तक आप रामटेक नहीं जाएंगे तो आप उसकी अनुभूति नहीं कर सकते हैं। तुलसीदास जी की बात है, तो जब तक आप चित्रकूट और काशी नहीं जाएंगे तो फीलिंग्स नहीं आ सकती है। कबीरदास जी की बात है, जब तक आप मगहर नहीं जाएंगे, कबीरदास जी ने तो इतनी बड़ी चीज कही जो एक जनश्रुति थी कि मगहर में जो मरण जिसका होता है वो अगले जन्म में गधा पैदा होता है, तो उन्होंने तो कुरीतियों पर एक कुठाराघात किया है। तो आप जाएंगे तो ये क्यों इस तरीके से कहते थे, उस समय जो मगहर था वो बहुत ही पिछड़ा हुआ इलाका था, कोई सुविधाएं नहीं थी, तो लोग ये चाहते थे कि भाई हम एक ऐसे इलाके में रहें जहां पर या सुविधाएं हो, या हर आदमी सुविधा चाहता है, या

0: लहर तारा नहीं जाएंगे तो वो आपको अनुभूति नहीं हो सकती है। तो जितने भी लेखक हैं उनकी कोशिश ये रहती है कि हम अपने उस पात्र के जीवन से जुड़ी हुई, उसके बाल्यकाल से, उसके मित्रों से, उसकी जन्मभूमि से, उसने किस किन स्थानों पर भ्रमण किया है, इन सब में जब तक वो नहीं जाएगा, वहाँ की पूरी परिस्थितियों का आकलन नहीं करेगा, जब तक वो अपने उस पात्र के साथ न्याय नहीं कर सकता और एक अच्छी पुस्तक पाठकों तक नहीं पहुँच सकती है।
1: जी जी जी, डॉक्टर संजीव जी, बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया है और मुझे लगता है कि हमारे श्रोताओं को भी बड़ा आनंद आ रहा होगा इस विषय को लेकर। फिर हम चाहेंगे कि आप हमारे साथ जुड़े रहें रेडियो मधुबन के साथ और भी अलग अलग जो है पुस्तकों के बारे में कभी जिक्र करेंगे, एक पुस्तक के बारे में जिनके आपने खंगाला है, जिसे आपने पढ़ा है। मैं चाहूँगा कि उस पुस्तक में भी कहीं ना कहीं हम लोग जैसे कि अभी बड़े नाम लेते हैं तो हमें दर्शन तो हो जाता है कि वे इन्होंने ऐसा किया होगा, इन्होंने ऐसा किया होगा, इन्होंने ये लिखा तो इनके जीवन के साथ ये चीज़ें हुई होगी। और सार्थकता लिखने में या सार्थकता प्रदर्शन करने में कई बार जो है जो गुरु संत महात्माएं हुए हैं उन्होंने उसको श्रुति में या फिर ऐसे कुछ कविता के बंद में या ऐसी कुछ चीज़ें उन्होंने लिख छोड़ी थी। और बहुत बार ऐसे होता है जैसे आपने कालिदास की बात कही, शायद उनकी भाषा ही कुछ और भी हो सकती थी।
0: जी जी,
1: क्योंकि उस समय कौन से हिंदी भाषा तो होती नहीं होंगी, वहाँ की लोकल भाषा ही लिखते होंगे या बोलते होंगे, शायद लिखने में भी उनकी अलग जो है स्टाइल ही होगी। तो वही है कि जब व्यक्ति रिसर्च करना शुरू कर देता है तो हिंदी में आपको पुस्तकें मिल जाती, इंग्लिश में आपको मिल जाते, आपको लग रहा है कि ये तो बढ़िया लिखा है, लेकिन जो लिखने वाले ने क्या किया होगा वो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी रही होगी कि कैसे उन्होंने उन चीज़ों को ठीक से व्यवस्थित करके हमारे पास रखा है। तो ये यही है कि भाई कच्चा माल आपके पास रहेगा तो मैन्युफैक्चरिंग वाले कैसे उसको मशीनों के सहारे उसको फिनिशिंग करके फाइनल प्रोडक्ट पैक होके आपके पास आता है तो आप सोचते हैं कि चीज़ें तो अच्छी बनी है। तो बहुत ही अच्छी चीज़ें जो है, अब हम लोग इसी तरह की बातें हम संजीव जी से सुनते रहेंगे आगे भी। जाते जाते मैं चाहूँगा कि एक छोटा सा मैसेज क्या देना चाहेंगे आप?
0: मैसेज तो यही है कि आज जो पुस्तकों के प्रति रुचि ख़त्म होती जा रही है, खासकर युवा पीढ़ी की, बच्चे की, मोबाइल में गेम्स के माध्यम से या अन्य माध्यमों से जो भी हमारे समाज का नुकसान हो रहा है, तो उनसे हम फिर से पुस्तकों की ओर लौटें, ज्ञान की ओर लौटें और उस ज्ञान के समुंदर में डुबकी लगाएं, ताकि हम ठोस रूप में, प्रामाणिक रूप में कुछ कह सकें। क्योंकि इंटरनेट के माध्यम से या जो आपका संचार का जो जाल है वह सिर्फ इतना ज़्यादा हमें मटेरियल परोस रहा है, उसी में हम कन्फ्यूज रहते हैं कि हमें कौन सा मटेरियल यूज़फुल है। तो आइए हम पुस्तकों की बात करें, पुस्तकों की ओर लौटें, पुस्तकों के पठन पाठन की ओर लौटें, ताकि हमारा मन मस्तिष्क भी तरोताज़ा रहे और हमें ज्ञान की भी अनुभूति हो।
1: जी जी जी, चलिए संजीव जी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका, बहुत ही अच्छी बात है आपने सुनाया। आशा करूँगा हमारे सभी श्रोताओं को भी बड़ा अच्छा लग रहा है और हम चाहेंगे कि आप बार बार रेडियो से जुड़े और अपने अनुभवों को साझा करते रहें। तो चलिए मित्रों, आज के इस एपिसोड में जहाँ पर डॉक्टर संजीव जी को आपने सुना, संजीव शराब जी को, और बहुत ही अच्छा लगा उनके अनुभव को सुनकर। मुझे लगता है कि आपको भी पुस्तकों के बारे में जानकारी तो हो गई, पुस्तक पढ़ना और उसके बारे में चिंतन करना वो अपने लाइफ को कैसे बेहतर बना सकते हैं आप समझ ही गए होंगे। तो मैं चाहूँगा कि अगर आप अच्छे दोस्त बनाना चाहते हैं तो पुस्तकों के अपना मित्र बनाइए, तो वो सबसे अच्छे दोस्त जो आपको ज्ञान से भरपूर कर देंगे और अपने जीवन को बहुत सुंदर बनाएंगे। इन्हीं शुभ आशाओं के साथ फिर मिलते हैं, डॉक्टर संजीव जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, सलाम नमस्ते, खमा गणिसा, जय हिंद, जय भारत, ओम शांति, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अपने भीतर के अंधकार को समझिए, क्योंकि वहीं से प्रकाश निकलेगा। और जो व्यक्ति खुद पर विजय पा लेता है, वह सबसे बड़ा विजेता बनता है। मैं हूं आपका हमसफर आरजे रमेश। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

सुबह का समय तब बनता है खास जब उषा आती है आशियाना के साथ। आप सभी को नमस्कार, राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, खम्मा घणी सा, गुड मॉर्निंग सा। कर्मेंद्रियां हमारे वश में हो न कि हम उनके वश में हो, कर्मेंद्रियां हमारे वश में हो न कि हम उनके वश में हो, जरा विचार करिए कि ऐसा क्यों। अगर हिचकी आए तो क्या करेंगे? आप आशियाना सुनते रहिए, इसका उपाय जरूर देंगे। और आज आपको एक विशेष अतिथि से भी मिलाएंगे और कुछ खास भी बनाने वाली हूँ। प्रश्न तो जरूर पूछूंगी, तो बने रहिएगा आशियाना में, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: प्लेटफॉर्म पर चलते समय ध्यान रखें कि यदि कोई गाड़ी रनिंग थ्रू पास होती है उस समय प्लेटफॉर्म के किनारे पर न चलें, जिससे आपकी जान को खतरा हो सकता है। तब एक छोर से दूसरे छोर पर जाने के लिए पैदल पुल का इस्तेमाल करें। रेलवे लाइन क्रॉस करना कानूनी अपराध है व इससे आप अपनी जान गंवा सकते हैं।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: आशियाना में पुनः आप सभी का स्वागत है। आज का सुंदर सा विचार इस प्रकार है कि कर्मेंद्रिया हमारे वश में होनी चाहिए, न कि हम कर्मेंद्रियों के वश में हो। कर्मेंद्रिया हमारे वश में हो, न कि हम कर्मेंद्रियों के वश में। कैसे? तो आज के विचार का विस्तार इस प्रकार करेंगे। स्वयं हम स्वयं मालिक होकर के कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कराएंगे। कहते हैं कि मन में कोई ख्याल आए, कोई भी मन में किसी के भी प्रति बुरा ख्याल आए, लेकिन कर्म में नहीं आओ, वाचा में आए तो भी वो कर्म हो गया। मनसा में कोई ऐसा ख्याल आए तो वहाँ ही समाप्त कर दीजिए। मैं कौन हूँ, मैं किस लिए इस दुनिया में आई हूँ, ये संकल्प और अशुद्ध संकल्प को, मतलब इस तरह के संकल्प चलाने लेकिन अशुद्ध संकल्पों को समाप्त कर देना है। बातों को अवॉइड करना है, जो हमारे काम की बातें न हो तो उसे अवॉइड करते जाओ। अगर अवार्ड लेना है स्वयं से, तो दिन भर में कौन कौन सी बातें आती है, संकल्प वचन कर्म में जो हमारे काम की बातें नहीं है उसे अवॉइड करो। जैसे मोती चुगने वाला हंस जो काम का नहीं होता है उसे अलग कर देता है। समझ कहती है तुम्हारे सोचने का तरीका बहुत अच्छा हो, जो तुम्हारे काम की बात है नहीं उसे अवॉइड करो। जो और किसी की ड्यूटी है उसमें अपना इंटरफेयर नहीं करो। हम जिस कार्य के अर्थ निमित्त है उसमें भी अपने को भारी मत करो, भारी होने को भी अवॉइड करो। कैसा होगा, मतलब कैसे होगा, क्या होगा, इस नेचर को भी अवॉइड करो। अच्छा ही होगा जो हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा, और जो होने वाला है वो तो बहुत ही अच्छा होने वाला है। इस दृढ़ संकल्प से विक संकल्प को अवॉइड करो। जहाँ कोई परचिंतन वाली बातें चलती है उनसे अपने को अवॉइड करो, उससे हमारी उन्नति नहीं है। फालतू चर्चा करने वालों से अवॉइड करो, उनको भी व्यर्थ चिंतन करने वालों के संग का अवॉइड करो। तो इस तरह अगर हम व्यर्थ से बचेंगे और स्वयं पर ध्यान देंगे कि मैं क्यों इस दुनिया में आई हूँ, मुझे क्या करना है, मुझे कैसे चलना है, किस तरह का भोजन मुझे करना है और कैसे विचार मुझे रखने हैं, कैसा व्यवहार लोगों के साथ करना है, तो हम कह सकते हैं कि कर्मेंद्रिया हमारे वश में है, न कि हम उनके वश में। तो ये हुआ आज का सुंदर सा विचार जिस पर जरूर गौर करेंगे। और आइए सुनेंगे एक प्यारा सा गीत। सुनते रहो मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन

हिच हिच हिच की लगी, हिच की हिच हिच हिच की लगी, हिच की आज सुबह जब मैं जगी, राम कसम।

0: आहे हिच हिच हिचकी लगी हिचकी। तो आप सुन रहे हो कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना में अब आपको देंगे आप सभी समझ गए होंगे कि आज मैं हिचकी पर नुस्खे देने वाली हूँ। भाई कभी कभी क्या है, हिचकी भी बड़ी परेशान कर देती है, क्योंकि कभी कभी दो चार बार आकर के बंद हो जाती है तब तो ठीक है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी लगता है कि बस लगातार आती रहती है, फिर परेशान हो जाते हैं, है ना। और हम क्या करते हैं, बीच बीच में पानी पी लेते हैं, 7 घूंट पानी पीने से हिचकी चली जाती है, ऐसी मान्यता है। ऐसा भी करके देखते हैं, सबसे पहले तो यही उपाय करते हैं, लेकिन कभी कभी इस उपाय से भी हिचकी नहीं जाती है। तो मैं आपको बहुत ही सुंदर नुस्खे दे रही हूँ कि गुनगुने पानी में नींबू का रस और 1 चुटकी नमक और पुदीने के कुछ पत्ते मिलाइए, फिर इसे पीजिए, हिचकी और गैस दोनों में आराम मिलेगा। गुनगुने पानी में नींबू का रस और 1 चुटकी नमक और पुदीने के कुछ पत्ते मिला दीजिए, इसे पीजिएगा, हिचकी और गैस दोनों में आराम मिलेगा। हिचकी को रोकने के लिए नमक और पुदीने का इस्तेमाल आपको करना जरूरी है, ठीक है। और अगला नुस्खा आपको मैं दे रही हूँ, अगर ये नहीं कर सकते तो आप सोट और बड़ी हरड़ को बराबर बराबर मात्रा में लीजिए, पीस करके चूर्ण बना लीजिए, फिर 3 ग्राम चूर्ण को पानी के साथ लीजिए, सेवन करिए, इससे भी हिचकी बंद हो जाएगी। सोट और बड़ी हरड़ को बराबर बराबर मात्रा में पीस करके इसका चूर्ण बना लीजिए, 3 ग्राम चूर्ण को पानी के साथ सेवन करने से हिचकियां बंद हो जाती है। और लास्ट नुस्खा सुनेंगे कि कुटकी के चूर्ण को 1-2 चुटकी की मात्रा में शहद के साथ मिला करके दिन में 3-4 बार खाइए, इससे भी हिचकी में आराम मिलता है। कुटकी के चूर्ण को कुटकी होती ना, उसको कूट पीस करके उसका चूर्ण बना लीजिए, फिर 1-2 चुटकी की मात्रा में थोड़े से शहद मिला करके 3-4 बार खाइए पूरे दिन में, इससे भी हिचकी में आराम मिलेगा। तो इस तरह आप अपने हिचकी को ठीक कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारे ही नुस्खे लाजवाब है, चाहो तो आप आजमा सकते हो। और अब मैं आपको प्रश्न पूछ रही हूँ कि देखिए, मैंने आपको कुछ बात कही, ठीक है, मैं ऐसे ही कहूँगी ना आपको, कुछ बात करने से पहले किसी को बताना नहीं हो, सिर्फ मैं आपको बता रही हूँ, फिर आप भी अपने दोस्त से कहेंगे कि देखो ये बात मैं कह रहा हूँ या कह रही हूँ, लेकिन किसी को बताना मत, फिर वो तीसरे को कहेगा तो उसको भी ऐसे ही कहेंगे कि किसी को बताना नहीं, तो वो इसका आप अर्थ बताइए कि बात फैलते फैलते इसका क्या हाल होगा, ठीक है। जवाब जरूर दीजिएगा, हमारे नंबर है 94-14-15-14-15। हेलो
1: हेलो हेलो सर, कुटकी क्या होती है?
0: कुटकी एक आयुर्वेद चीज होती है, जैसे कि हम सौंठ नहीं लेते इस तरह कुटकी भी आती है, पंसारी
1: पूछ रहा मैं,
0: पंसारी की दुकान पर मिल जाएगा या किराने की दुकान पर मिल जाएगी, ठीक है।
1: ठीक है साहब
0: जी, आपका शुभ नाम बताएंगे?
1: मेरा नाम ज्ञान सिंह है साहब।
0: अच्छा अच्छा, बहुत बहुत आभार आपका, तो आप किराने की दुकान पर पूछेंगे तो भी मिल जाएगी, ठीक है।
1: ओके सर
0: जी जी, थैंक यू। चलिए यहीं पर सुनेंगे एक गीत, बने रहिएगा आशियाना में, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 90.4।

0: आप हबरे रिया रेडियो मधुबन 107.8 FM हबरता रेजियो ने मुस्कुराता रेजियो।
1: शायद सच ही कहते हैं लोग, शायद सच ही कहते हैं लोग कि औरत में दिमाग नहीं होता, तभी तो वह हर रिश्ता दिल से

0: निभाती है बिना किसी मतलब के। तभी तो वह हर रिश्ता दिल से निभाती है बिना किसी स्वार्थ के। आप सुन रहे हो कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना में आज हमारे एक विशेष अतिथि जुड़े हुए हैं, सोनू जी, जो नेपाल के रहने वाले हैं परंतु 16 साल से आबू में ही रह रहे हैं, आबू तलेटी में। और देखिए, कहते हैं कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। अगर हम चोरी करते हैं, झूठ बोलते हैं, तो ये पाप है, तो ये विकर्म है। काम करना अच्छी बात है और काम करके स्वाभिमान से जीवन जीना ये बहुत ही अच्छी बात है। तो सोनू जी लोगों के घर के झाड़ू पोछे करते हैं लेकिन हमेशा खुश रहते हैं, 3 बच्चे हैं, उनकी परवरिश भी कर रही है, और कैसे अपने घर परिवार को चला रही है और हमेशा अपने जीवन को खुशियों से भरा रखते हैं। तो ऐसे नारी शक्ति से आपको मिलवाते हैं। सोनू जी, आपका स्वागत है आशियाना में।
1: जी, धन्यवाद।
0: सोनू जी, आप जैसे झाड़ू पोछा करते हैं, तो ये काम आपने कब से शुरू किया और ये आपको कहाँ से प्रेरणा मिली? कितने साल हो गए आपको झाड़ू पोछा करते हुए?
1: ऐसे हो गए मेरे 10-12 साल। जब बच्चे छोटे छोटे थे तब तो नहीं कर पा रहे थे, अभी जब बच्चे थोड़े बड़े हो गए, स्कूल उनको पढ़ाने का समय आया तो मजबूरी में या कुछ भी हो करना पड़ा हमको।
0: जी जी जी, मजबूरी से आपने काम को शुरू किया। 3 बच्चे हैं आपके। अच्छा, तो मतलब पहले आपकी इच्छा नहीं थी शुरुआत में झाड़ू पोछा करने की?
1: ऐसे मतलब अभी हम घर पे रहते थे, अपने हाउस वाइफ हैं, तो अपना घर खर्च देख के, भाई आदमी कैसे अकेले सब कुछ देखभाल करेगा, फिर फैमिली भी बड़ी होती जा रही थी, फिर हम भी सोचे कि थोड़ा बहुत हम भी हेल्प करें या थोड़ा अपने घर वाला को सपोर्ट हो जाएगा और हमारे बच्चों को भी अच्छी परवरिश होगी।
0: जी जी,
1: इसीलिए।
0: तो आपके पतिदेव ने हाँ कर दी?
1: हाँ, वो बोले कि हाँ, और कहीं तो नहीं जाना, बस बाबा का घर है तो जाओ, वहाँ थोड़ी सद्बुद्धि मिलेगी, अच्छा ज्ञान मिलेगा।
0: अच्छा, तो आप तब से आपने शुरू किया, 12 साल हो गए झाड़ू पोछा करते हुए। तो आप कितने घर के करते होंगे लगभग?
1: बस 5-6 घर।
0: अच्छा, 5-6 घर पर आप काम करते हो। महीने का लगभग कितना कमा लेते होंगे?
1: महीने का किसी महीने 5,000, किसी महीने 6,000 बस।
0: जी जी जी, और झाड़ू पोछे के अलावा और आपको आप क्या करते हैं? बर्तन भी मांजते हैं?
1: हाँ, घर की साफ सफाई, झाड़ू पोछा, बर्तन, बस जो हो जाए।
0: जी जी जी, तो आपके 3 बच्चे भी हैं, तो कैसे आप बच्चों को समय दे पाते हैं, कैसे आप लोगों के घर के काम कर पाते हैं, कैसे ये सब कुछ मैनेज कर रहे हैं?
1: बस अपने आप को मजबूत बना के सुबह जल्दी उठ के सब घर का काम करके फिर आगे जाके अपन को भी टेंशन होती है, चिंता होता है कि आगे भी करना है और भी आगे बढ़ना है, बच्चों की अच्छी जिंदगी देनी है, अच्छी परवरिश करनी है, इसीलिए बस वही।
0: बहुत अच्छी बात है। देखिए, मतलब कुछ करना है तो फिर हमें थोड़ा सा त्याग भी, समय का त्याग भी देना पड़ेगा इसके लिए। हाँ। जल्दी उठ करके हम समय को कवर कर सकते हैं। आप कितने बजे उठ जाते हैं?
1: ऐसे कभी 5, कभी 5:30, कभी 6, जब ज़्यादा थके रहते हैं तो 6 भी बज जाता है, नहीं तो टेंशन रहती है दिमाग में तो जल्दी उठ जाते हैं।
0: जी जी जी, तो आप कितने बजे मतलब काम करने चले जाते हैं?
1: मैं काम पे 8:30-9।
0: अच्छा, सुबह 8:30-9 बजे चले जाते हैं। फिर घर पर कितने बजे आते हैं?
1: घर पर कभी 5 बजे, कभी 4 बजे, डेली का।
0: अच्छा, इसके बीच खाना कैसे आप यहाँ बना के जाते हैं?
1: हाँ, खाना घर पे बना के जाते हैं, नाश्ता वगैरह करके जाते, फिर आके खाते।
0: सुबह 8:30-9 बजे घर से निकलते, उसके बाद 4-5 बजे आकर के खाना खाते।
1: हाँ,
0: और बच्चे लोग को तब तक कौन संभालता है?
1: बच्चे लोग अभी थोड़े बड़े हो गए, स्कूल जाते हैं, उनको आके इतने बड़े हो गए कि खुद मतलब सब कर लेते हैं खाना।
0: जी जी, अभी तो बड़े हो गए लेकिन आपको 12 साल हो गए काम करते हुए, उस समय कौन संभालता था?
1: उस समय बस ऐसे ही, अब थोड़ा थोड़ा करके मुश्किल थी तो अपने में ऐसे करके संभल,
2: मतलब बीच बीच में आप घर पर जाते थे, एक दो घर का काम करके बीच बीच में घर पर जाते थे। तो आपके साथ और भी कोई है जैसे आपके सासू माँ या आपके मम्मी कोई भी?
1: नहीं, वो लोग सब नेपाल में है, हम खाली, हमारी फैमिली है, तीन बच्चे और हम मियाँ बीवी।
2: अच्छा, आपके पति देव क्या काम करते हैं?
1: ओ, ज्ञान अमृत प्रिंटिंग प्रेस में करते हैं।
2: अच्छा अच्छा, तो आपके दोनों की कमाई से घर का गुजारा अच्छी तरह चल जाता है?
1: हाँ चलता है, थोड़ी घर का अपना वो करके चलाते हैं।
2: जी जी जी, देखिए वो कहते हैं कि थोड़ा सा अगर हम मेहनत नहीं करेंगे, समय का त्याग नहीं करेंगे तो बच्चों को अच्छा भविष्य नहीं दे पाएंगे। तो हाँ, तीनों बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं?
1: हाँ तीनों जाते हैं।
2: और नेपाल कितने समय में जाना होता है आपका?
1: कभी एक साल में जाते हैं, एक महीने के लिए, सबसे मिल के सबका हाल खबर लेके फिर आ जाते हैं।
2: तो जैसे आप एक महीने के लिए जाते हैं, उस समय फिर वो काम कौन करता है?
1: किसी अपने सगे संबंधी को, जान पहचान वालों को, उनको वहाँ पे रख के जाते हैं।
2: अच्छा, तो आप लोग ऐसे तालमेल बिठा के रहते हैं कि जैसे आप गए तो आपके बदले किसी ने कर लिया काम, और वो गए तो आप कर लेते हो?
1: हाँ जी।
2: तो फिर वो डबल लोड नहीं पड़ जाता है, डबल काम हो जाता है कैसे फिर?
1: अभी थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेते हैं।
2: बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। सोनू जी, आपसे और भी बातचीत करेंगे लेकिन समय हो चला है एक गीत सुनने का, तो सुनेंगे एक गीत, बने रहिएगा मेरे प्यारे श्रोता बंधु। सोनू जी जो देखे झाड़ू पोछा करके अपने घर का गुजारा कर रहे हैं और अपने जीवन को किस तरह इन्होंने खुशनुमा बना करके रख रखा है। तो काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, काम काम ही होता है, चाहे कोई भी काम करो वो काम श्रेष्ठ ही होता है। चोरी, झूठ, अन्याय ये करना तो ये गलत है, ये पाप है, लेकिन काम करना बहुत अच्छी बात है। सोनू जी ने पढ़ाई बिल्कुल नहीं की, लेकिन कैसे अपने घर का आप अच्छी तरह घर को चला रहे हैं। कहते हैं कि भाई महंगाई के ज़माने में एक के कमाने से पूरा नहीं पड़ता है, दोनों का कदम से कदम बढ़ा करके चलना ही पड़ता है, चाहे घर के काम हो चाहे बारीक क्षेत्र में काम हो। तो आइए सुनेंगे पहले एक गीत, उसके बाद पुनः लौट करके आ रहे हैं। सोनू जी हमारे साथ बने हुए हैं, तो सुनेंगे एक गीत। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन

0: क्या आपका फोन चोरी हो गया है? क्या आप जानते हैं कि अपना मोबाइल फोन कैसे ब्लॉक करें और ट्रेस करें? आप sanchar-saathi.gov.in पर संचार साथी की मदद ले सकते हैं। सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज के अंदर ब्लॉक योर लॉस्ट स्टोलन मोबाइल CEIR पर क्लिक करें। आपको केवल फोन नंबर, फोन का ब्रांड, फोन बिल, FIR कॉपी, फोन का IMEI नंबर की जरूरत है। पूरी जानकारी भरें और अपने चोरी हुए फोन के दुरुपयोग से बचें। किसी भी साइबर अपराध की रिपोर्ट cybercrime.gov.in पर करें। सतर्क रहें, साइबर सुरक्षित रहें।
1: कुछ लोग कहते हैं कि औरत का कोई घर नहीं होता है, कुछ लोग कहते हैं कि औरत का कोई घर नहीं होता है, लेकिन सच तो यह है मेरे प्यारे श्रोता बंधुओं कि औरत के बिना कोई घर नहीं होता है, औरत के बिना कोई घर नहीं होता है। आप सुन रहे हो कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में सोनू जी हमारे साथ बने हुए हैं। कैसे सोनू जी ने झाड़ू पोछे बर्तन को अपना व्यवसाय बनाया है कि झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, बर्तन मांजना लोगों के घर का और अपने जीवन को खुशनुमा बनाना, कैसे अपने मतलब इन्होंने अपने जीवन में इसको व्यवसाय बनाया है आपने जाना है और भी हम जानेंगे। सोनू जी पुनः आपका स्वागत है आशियाना में। अच्छा सोनू जी, आप कोरोना काल में बहुत लोगों के काम छूट गए थे, तो आपने कैसे मतलब जारी रखा या फिर कैसे आपने कोरोना काल में अपने आप को संभाल के रखा पूरे परिवार सहित?
2: हाँ, ऐसे तो पहले कोरोना जब नहीं था तो ठीक चल रही थी काम का, जब कोरोना चालू हुआ तो बहुत परेशानी आ गई थी। अब काम पे काम भी बंद हो गया था, सब लोग यही डरते थे कि कहीं कुछ हो ना जाए, इसीलिए सब अपने अपने घर में थे, ना ही काम की काम पे कभी मतलब बुलाते नहीं थे, सबको डर थी, हमको भी उनको भी, पंतों पर भी। ऐसे करके थोड़े बहुत जो समझते थे हमारे इधर जो योगी नगर में थे वो लोग सब अच्छे हैं, तो वो लोग समझे कि ऐसे ऐसे हालात में भी वो घर बैठे रहेंगे तो कैसे उनका घर खर्चा चलेगा, फिर इसीलिए वो लोग भी हम भले एक दो महीना घर पे रहे तो पर भी वो हमको सब देख के हमारी परिस्थिति समझ के वो लोग मतलब हमारे पगार वगार नहीं काटे, हमारे जो करोना

0: काल का जो खर्चा था वो लोग मदद किए और दिए, और हम भी एक दो महीना घर पे बैठे थे तो पर भी मतलब पगार दिए उन लोगों ने।
1: अच्छा, आप पेमेंट दिए, काटी किसी ने नहीं?
0: नहीं।
1: एक काम का आप कितने ले लेते हो, जैसे झाड़ू पोछे का कितने लेते हैं आप?
0: झाड़ू पोछे का 800 महीने का।
1: 800 रुपए महीने का, तो वो जो पैसे है आपके काटे नहीं, सभी ग्राहक ने दिया आपको?
0: नहीं, जो ऐसे सब जो अपने परिस्थिति समझते थे उन्होंने ही दिया, और बाकी अब अपनी अपनी।
1: हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, जिसको दया थी, रहम था कि भाई कैसे गुजारा करोगे, तो उन्होंने पैसे भी दिए। किसी ने फिर खाना वगैरह, कपड़े वगैरह ऐसे भी दिए?
0: हाँ, दिए थे खाना।
1: अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात है ना। लेकिन वो कहते हैं कि खुददारी से जीवन जीती हो, स्वाभिमानी से, कि हाथ नहीं फैलाना किसी के सामने।
0: हाँ जी,
1: ये बहुत बड़ी बात है कि लोग वह क्या है, जल्दी से हाथ फैलाने लग जाते हैं, अहंकार में बैठ जाते। अच्छी पढ़ाई करने के बाद नौकरी नहीं मिलती है तो माता पिता पर डिपेंड रह जाते हैं। बेचारे माता पिता कितने समय बच्चों को पालेंगे, जब बच्चे जवान हो जाते हैं तो माता पिता भी बच्चों से अपेक्षाएं रखते हैं कि अब हमारा बच्चा भी कुछ करे, लेकिन नौकरी के भरोसे बच्चे दूसरा छोटा मोटा काम करना नहीं चाहते। भले घर में परिस्थिति ऐसी आ जाए कि भूखे मरने की बारी आ जाए, लेकिन नहीं भाई, हम छोटे मोटे काम तो नहीं करेंगे, करेंगे तो ऊंचाई करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ऐसी सोच को आप क्या कहेंगे? तो सोनू जी ने देखो कोई भी काम को छोटा बड़ा नहीं समझा है, और किस तरह आप लोगों के घर का झाड़ू पोछे करके अपने आप को खुशहाल रखते हैं। आपसे सभी खुश रहते हैं सोनू जी?
0: हाँ, मैं घर के जैसे ही सबके घर में जाती हूँ तो करती हूँ, वो लोग भी मुझे अच्छा रखते हैं।
1: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आप हंसमुखी भी है। और आपको ये झाड़ू पोछा बर्तन के अलावा आप और क्या काम आता है आपको?
0: मुझे इसके अलावा थोड़ा बहुत कपड़े सिलना आता है।
1: क्या बात है, कपड़े सिल लेते हो, खुद के सिलते हो या बाहर लोगों के भी सिलते हो?
0: खुद का सिल लेती हूँ, बाहर लोग का भी थोड़ा बहुत सिलती हूँ, पर उतना टाइम नहीं बैठता है, उधर करके आके फिर घर का सब करना पड़ता है और फिर टाइम नहीं मिलता है। और थोड़ी बहुत आती है, ज़्यादा नहीं आता है, अनुभव नहीं है ज्यादा सिलने का, इसलिए।
1: अच्छा, इसलिए सिलाई को व्यवसाय नहीं बनाया।
0: हाँ,
1: तो आप सिलाई थोड़ा सीख करके सिलाई के ऊपर ध्यान देते तो शायद सिलाई एक आपका व्यवसाय बन जाते।
0: हाँ जी,
1: तो आपने इस बारे में कभी सोचा नहीं?
0: नहीं।
1: वो झाड़ू पोछे बर्तन से आपको समय नहीं मिला?
0: हाँ।
1: अगर मान लीजिए कभी समय मिला तो सीखेंगे आप?
0: हाँ, सीख सकते हैं।
1: अच्छा, तो थोड़े बहुत कपड़ों में क्या सिल लेते हैं आप?
0: जैसे सूट सलवार और ब्लाउज, ये सारे लेडीज का।
1: अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है ना, इतना आप सिल लेते हैं।
0: हाँ जी।
1: आप अपने घर में बच्चों के भी आप ही सिलते हैं?
0: हाँ।
1: तो एक ये आपके जो बाहर सिलाई देनी पड़ती है वो बच जाती है।
0: हाँ,
1: तो 5-6 हजार तो आप मंथली कमाई लेते हैं।
0: हाँ।
1: उसके अलावा भी आप सिलाई वगैरह करके भी ये पैसे की बचत कर लेते हैं।
0: हाँ जी।
1: और आप जहाँ पर भी जैसे काम करते हैं, तो मान लीजिए आपने कहा ना कि 8:30-9 बजे आप जाते हैं, 4-5 बजे आप घर पर आ जाते हैं, लेकिन कोई अगर आपको शाम के समय बुलाता है कि आज हमारे भाई गेस्ट आने वाले हैं, ये है वो है, तो फिर शाम के समय भी जाते हैं आप काम करने?
0: हाँ, इमरजेंसी होता है तो जाना पड़ता है, वो भी अपने परिवार ही जैसे है।
1: जी जी जी, जिनको जरूरत है तो फिर आप उस अनुसार चले जाते हैं।
0: हाँ जी।
1: अच्छा, तो हमारी जो बहनें सुन रही उनको आप क्या कहना चाहेंगे?
0: मैं यही कहना चाहती हूँ सभी बहनों को और सभी माताओं को कि काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, और इसमें कोई कोई चीज़ का शर्म नहीं है, बस अपना घर चलाना, अपना अपनी सब परवरिश करनी है सब बच्चों का अपना, तो ये सब कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है, बस अच्छे लगन से काम करते जाओ, और ये सब और उल्टा सुल्टा गलत काम से अच्छा तो झाड़ू पोछा करके अपने अच्छे से कमाए खाए, अच्छी जीवन बिताए।
1: क्या बात है सोनू जी, आपने 100% की बात कह दी कि उलट सुलट काम करने से तो अच्छा है कि झाड़ू पोछे बर्तन करके भी अपने घर को हम चला सकते हैं। कितनी बड़ी बात कह दी। आज कहते हैं कि जो पढ़ाई नहीं करते हैं, अनपढ़ होते हैं, उनको हम हीन दृष्टि से देखते हैं, एक ऐसा आता है कि अरे इसके पास क्या है, इसको क्या आता है। लेकिन देखिए सोनू जी की बात से मतलब कितनी शिक्षा मिलती है कि
2: उलट पुलट काम करने से अच्छा है मेहनत करो। मेहनत में कभी शर्माना नहीं है, कभी घबराना नहीं है। काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता है, काम काम ही होता है। काम का सम्मान करें और स्वाभिमान का जीवन जिए, ये सोनू जी का जीवन का लक्ष्य है। सोनू जी बहुत बहुत आपको धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: तो यहीं पर सुनेंगे एक गीत, बने रहिएगा आशियाना में, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन।

हेलो दोस्तों, मैं हूं आप सबका आलमगीर, सबको मेरा प्यार भरा सत श्री अकाल, नमस्कार। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन पर, सुनते रहिए, गाते रहिए और गुनगुनाते रहिए, झूमते रहिए और सबको प्यार से झुमाते रहिए। ओ, आज दर पे चल के आया है मौका।

0: आप सुन रहे हो कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना में समय हो चला है आप सभी को नए नए व्यंजन सिखाने का। और आज का प्रश्न पूछना चाहूंगी कि देखिए, जैसे कि मैंने आप में से किसी एक को कुछ बात कही, ठीक है, और मैं कहती हूँ कि आप किसी को बताना मत, लेकिन मैं जानती हूँ कि कोई चुप नहीं बैठेंगे, वो भी अपने अजीज को बताएंगे कि भाई ये बात है और किसी को बताना मत। इस तरह एक दूसरे को कहते कहते वो बात मतलब किस तरह उसका सार निकलता है, जवाब जरूर दीजिएगा। हमारे नंबर है 94-14-15-14-15। हेलो,
1: हाँ जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग।
0: हाँ जी नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग सुरेश भाई, कैसे हो?
1: बहुत अच्छे जी, बात बिल्कुल बहुत अच्छे है
0: जी,
1: और अच्छी बातें भी हो रही है, और अच्छी बातें अभी अभी जो आपने बहन जी ने बताया बहुत अच्छा लगा जी, कि मेहनत करने में कोई मेहनत नहीं है
0: जी जी, तो
1: जैसे उसके ऐसे संघर्ष करके कचरा पोता और ये करके जो उसका पूरा जीवन अच्छा किया, तो ऐसे अभी मेहनत करने में कोई ऐसे नहीं। आज कई महिलाएं ऐसा काम कर रही है और खुद का गुजारा कर रही है और बच्चों को पाल रही है
0: जी जी, बिल्कुल
1: सही बात है, बहुत अच्छा लगा। तो इसमें कोई ऐसी नहीं है कि तो ये काम नहीं कर सकते हम, समय के अनुसार करना चाहिए, करना पड़ता है
0: जी जी जी।
1: और कल एक कार्यक्रम आपका सुना था दीदी, हिंसा को रोके
0: जी जी,
1: वो भी बहुत अच्छा लगा कि जो महिला हो तो बस कुछ करना ही, घर का काम कीजिए और कुछ दखल मत कीजिए, पैसे की कोई ऐसा नहीं देना, आप खुद कुछ नहीं करना बस, तो ये क्या है, न्याय है, न्याय है। तो एक कल का कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा दीदी, और वो बहन जी ने कितना अच्छा करके एक वकील से मिलके उसका का वो किया, तो अच्छा लगा कल
0: जी जी। इसमें इसमें सुरेश भाई विशेष विशेष क्या सीखने को मिला इसमें, आपको क्या महसूस हुआ?
1: दीदी इसमें क्या है, मैं एक बताऊँ तो महिलाओं की भी पैसे की जरूरत पड़ती है
0: जी,
1: तो महिलाओं का भी खुद जब रखा है घर में क्यों नहीं, उसको हम लाए हैं तो उसका भी, ये भी हमारे घर का परिवार का हिस्सा है, तो इसके जितना हमारा हिस्सा है इतना इतना हिस्सा है उसका भी
0: जी जी,
1: तो उसको भी इसकी हिसाब से पैसा देना चाहिए, कुछ लाना हो तो पैसा देना चाहिए, और नहीं लाना हो तो उसको खुद देना ही चाहिए कि आपको कुछ लेना हो तो
0: जी
1: पैसे में भी आप खुद ले लेना
0: जी जी, बराबरी का हिस्सा है जी,
1: बराबर का हिस्सा है। और जो ऐसे न करके पति मारते और इसको पीठ से कुछ ले देते तो ये न्याय नहीं है, इसके लिए तो कुछ सजा जरूर मिलनी चाहिए
0: जी जी जी जी जी। धन्यवाद, और आज के प्रश्न का जवाब देंगे
1: दीदी, आपका प्रश्न तो बहुत अच्छा है, कई लोग ऐसे होते हैं दीदी कि मैंने आपको कहा आपको किसी मत बताना
0: जी,
1: पर खुद बोल ही जाते हैं, सबको बताते जाते हैं, तो ये तो खुद बताते हैं और हमको मना करते हैं
0: जी जी जी,
1: ऐसा तो होना नहीं चाहिए।
0: तो जैसे कि मेन बात का क्या होता है, जैसे मैंने आपको कहा, आपने दूसरे को, दूसरे ने तीसरे को, तो मैंने कहा सबसे पहले वो बात बनी रहती है या फिर कुछ और उसकी प्रतिक्रिया हो जाती है, पूरा ही रूप बदल जाता है?
1: नहीं बनी रहती है, तो वो दूसरे को बताएगा ना, वो नहीं बताएगा दूसरे को, वो बताएगा
0: जी।
1: मैं बताऊँ तो कई हमारे गांव में एक इंसान है, एक लड़के है, तो कभी कभी हमारे पास आके तो बोलते हैं कि हम बाकी अच्छी बातें बताएंगे लेकिन आप किसी को मत बताना, लेकिन वो बात मुझे भी कही है, और लोगों की भी ये बात की इसमें
0: जी जी।
1: तो ऐसा होता है, कई लोग ऐसा है, स्वभाव ऐसा होता है उसका कि हम कहेंगे आप दूसरे को मत बताएं, लेकिन जो आपने बताया वो भी दूसरे को तो जरूर बताएगा, ऐसा तो है नहीं
0: जी जी जी,
1: अच्छी बात है दीदी, लगा
0: जी जी, बहुत बहुत आभार आपका। तो आइए भाई, हमारे श्रोता बंधु का फोन आया था कि मकई का सीजन चल रहा है, भुट्टे का सीजन चल रहा है, तो दीदी कुछ भुट्टे का कुछ सिखाओ ना, भुट्टा मतलब मकई पाक सीखना चाहते हैं, तो सोचा कि चलो एक को क्यों, सभी को सिखा देते हैं मकई पाक। तो आशियाना के किचन में आइएगा पेन और डायरी लेकर के, सामग्री लिख लेना अच्छी बात है, ताकि आप कभी भी किसी भी समय बना करके खा सकते हो। तो आप भुट्टे ले लीजिए 3, ठीक है, 3 भुट्टे लेने हैं, फिर आप लीजिए शक्कर 7 के अनुसार, इलायची पाउडर लेना है और मावा लीजिएगा, देखिए मात्रा मैं नहीं बता रही हूँ, मात्रा आप अपने हिसाब से लीजिएगा, ठीक है, और ड्राई फ्रूट्स की कतरन लेनी है, भुट्टे, शक्कर, इलायची पाउडर, मावा, ड्राई फ्रूट्स की कतरन। बनाने का तरीका अब मैं आपको सिखा रही हूँ कि भुट्टे को आप छिलके निकाल दीजिए और इसको भुट्टे को आप या तो छिन्नी में से कद्दूकस करिए या फिर इसके दाने निकाल करके आप मिक्सर में थोड़ा क्रश करिए, ठीक है, लेकिन हाँ इसके छिलके आप फेंक देना, छिलके थोड़े से इसमें साफ करने में थोड़ा टाइम लगता है। अगर आप कद्दूकस करेंगे तो छिलके ऊपर रहेंगे और जो इसका कन है वो ही नीचे गिरेगा। मिक्सर में पीसेंगे तो फिर वो छिलके भी साथ में रहेंगे, तो छिलके आपको निकालना है और जो कन होते हैं ना उसको अब आप घी भी लेना है, घी डाल करके सिकाई करिए, मध्यम आंच पर अच्छी सी सिकाई करनी है। सिकाई करने के बाद अब आप चाशनी बनाइए, मावा को भी एक कढ़ाई में सेक दीजिए, थोड़ा सा फ्राई कर दीजिए, भूनिए, ठीक है। अब आप चाशनी बनानी है आपको दो तार की, थोड़ी सी कड़क चाहिए इसमें, ठीक है। दो तार की चाशनी बनाने के बाद अब आप चाशनी में से देखो कच्चा दूध डाल करके मेल तो आपको निकालना ही है, फिर चाशनी बन जाती है। तो चाशनी में आप ये मकई जो हमने सेक करके रख रखे हैं इसके कन को ये डालिएगा आप इसमें, और मावा भी डाल दीजिए और अच्छी तरह हिलाइए, अच्छी तरह हिला करके इलायची पाउडर भी डाल दीजिए, ठीक है। फिर से हिलाना है, गैस बंद करिए और एक थाली में घी लगा करके, चिकनाई लगा करके इस खीरे को उसमें उड़ेलिए, उड़ेल करके अच्छी तरह चारों तरफ सेट कर लीजिए। और जैसे ही ये थोड़े से जमने लगे तो मतलब पहले उड़ेल करके आपको ड्राई फ्रूट्स की कतरन ऊपर सजा देनी है, ठीक है, चारों तरफ बुरक देने हैं। उसके बाद जब ये आपको लगे हल्के हल्के हाथों से आप ड्राई फ्रूट्स की कतरन को दबा भी दीजिए ताकि वो चिपक जाएगी। फिर आप बस ये थोड़ी सी जमने लगे आप चाकू से जो भी साइज आप पसंद करते हो बर्फी के रूप में काट लीजिए। तो ये बन गया मकई पाक। फिर से दोहरा रही हूँ विधि को कि आप मकई के या तो दाने निकाल करके मिक्सर में क्रश करिए, बहुत बारीक पाउडर नहीं करना है, हल्का सा मोटा होना चाहिए, ठीक है। बाकी आपको इस तरह क्रश करना है, भले आप कद्दूकस करिए डायरेक्ट ही छीनी से मकई को लेकर के, तो छिलके ऊपर रह जाएंगे और अंदर वो खाली कानी गिरेंगे। अगर मिक्सर में पीसते हैं तो फिर छिलके आपको झाटक करके साफ करना पड़ेगा, ठीक है। अब आप कढ़ाई रखिए गैस पर, गैस चालू करिए, घी डालिए और घी में इस कन को अच्छी तरह आप सेकिए, मध्यम आंच पर अच्छी तरह सेकना है। सेकने में थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन सोनी सोनी अच्छी खुशबू आने लगे तब तक आपको सेकते रहना है। फिर सिक जाए उसके बाद थोड़ा सा मावा को भी आप सेक लीजिए और फिर आप दो तार की चाशनी बनाइए। चाशनी बन गई हो तो चाशनी में आप ये कन डाल दीजिए, मावा डाल दीजिए, इलायची पाउडर डाल दीजिए और अच्छी तरह हिलाइए। हिलाने के बाद इसको आप एक चिकनाई लगा करके थाली में उड़ेलिए, उड़ेलने के बाद अच्छी तरह सेट कर दीजिए और ऊपर से आप ड्राई फ्रूट्स की कतरन को डाल करके हल्के हल्के हाथों से दबा दीजिए ताकि वो चिपक जाएगी, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा ये गाढ़ा लगे कि भाई हमारे ये जम रहे हैं मकई पाक थोड़ा सा जम रहा है तो आप चाकू से काट दीजिए, लेकिन अच्छी तरह फिट हो जाए फिर आप चाकू से काटोगे तो मज़ा नहीं आएगा। इसलिए थोड़ा सा जमने लगे और चाकू अंदर दबने लगे ऐसे आप जो भी साइज आपको पसंद हो बर्फी की तरह काट दीजिएगा। तो ये बन गया मकई पाक। आज बस मकई पाक ही बनाएंगे, मकई की बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन आज वृद्ध दिवस है तो उस पर भी बात करना ज़रूरी है। तो मकई पाक के साथ आपने और भी कुछ बनाया हो, सब्जी पूरी, भाई अभी तो श्राद्ध के दिन चल रहे हैं तो इस तरह की चीज़ें भी आप बना सकते हो। मकई का झाजरा आपको कल सिखाएंगे, कल नहीं तो सोमवार को सिखाएंगे, कल तो शनिवार है, ठीक है। तो जो भी आपने सब्जी पूरी जो भी बनाया है सब एक स्वच्छ थाली में सब कुछ रखिए, तुलसी पत्र और जल की स्वच्छ ग्लास भर के भी रखिए, ऊपर से स्वच्छ कवर ढक करके आप अपने इष्ट देव को भोग लगाइए और भोग लगाने के बाद अब आप पूरे परिवार सहित मेहमानों सहित आनंद ले सकते हो मकई पाक का। और प्रश्न का जवाब आपका अभी मिला नहीं है कि मान लीजिए मैंने आपसे कान में कुछ बात कही कि भाई किसी को बताना नहीं, आपने उस बात को किस तरह समझा वो मुझे नहीं पता, आपने दूसरे व्यक्ति को बता दी, उसको भी यही कहा आपने कि भाई बताना मत, अब उन्होंने किस तरह उस बात को ली समझी, उनको भी पता नहीं, उन्होंने तीसरे को, फिर इस तरह वाया वाया बात फैल जाती है, तो उसका सार क्या रहता है फिर, ये जवाब आपको देना है। नंबर हमारे है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हो और आज के प्रश्न का जवाब दे सकते हो। आइए फिर से सुनते एक गीत, सुनते रहो मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन।

0: ये ले बहू, इसे पी जा।
1: ये क्या है माँ जी?
0: ये काढ़ा है, इसे पीते ही तेरा गर्भपात हो जाएगा।
1: नहीं माँ जी, अब बस, मैं और गर्भपात नहीं होने दूंगी। इससे पहले भी आपने मेरी बच्ची की जान ली है, इस बार मैं आपको यह पाप नहीं करने दूंगी, और ना ही इस पाप को मैं स्वयं करूंगी।
0: जुबान चलाती है, एक तो पोता दे न सकी, ऊपर से जुबान चलाती है। पोते के आस में बैठी हूँ, न जाने कब मेरी आँख बंद हो जाए।
2: क्या हुआ माँ, क्यों गुस्सा कर रही हो, क्या बात है?
0: ये महारानी काढ़ा पीने से इनकार कर रही है।
1: मैं ये काढ़ा पीकर अपनी बच्ची की अब और हत्या नहीं कर सकती, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी बच्ची को नहीं मरने दूंगी। लड़का लड़का सुन सुन कर मैं तंग आ गई हूँ, मुझे बस मेरी बच्ची चाहिए, वो भी जीवित।
2: माँ ठीक ही तो कह रही है तुम्हारी बहू, बस अब बंद करो ये जानलेवा खेल, मुझे भी बच्ची ही चाहिए। मुझे लड़का और लड़की में कोई फर्क नहीं दिखाई पड़ता, आज के दौर में तो लड़कियां लड़कों से भी ज्यादा सफलता पा रही हैं। बस अब बंद करो ये खेल, सब बराबर ही तो हैं आज।
1: भ्रूण हत्या करना मतलब आप स्वयं अपनी बेटी की हत्या का अपराध कर रहे हैं। क्या आप जल्लाद नहीं?
3: प्यारे श्रोता बंधु, समय हो चला है आप सभी से अनुमति लेने का। आज के कार्यक्रम था, आपने सुने ही हैं, काफी अच्छे रहे हैं, बहुत ही सुंदर विचार आपको दिया है। तो सोनू जी की बात भी आपने सुनी है कि देखिए झाड़ू पोछा बर्तन कोई काम छोटा नहीं होता है, काम काम ही होता है, स्वाभिमान से जीना ये सबसे बड़ी बात होती है। तो स्वाभिमान से सभी को जीना है, न कि किसी पर डिपेंड रहना है। आपको रेसिपी भी अच्छी सिखाई है, मक्कई पाक ज़रूर बना करके खाइएगा। और आज का प्रश्न था कि भाई मैंने आपको कान में कुछ बात कही कि भाई किसी को बताना नहीं, आपने दूसरे को बताई कि किसी को बताना नहीं, तीसरे को बताए बता दी, तीसरे व्यक्ति को पता चला, तो देखिए वो बात तो छोटी सी थी कि ये बात है, लेकिन उसकी रूपरेखा ही बदल जाती है। लास्ट तक पहुँचते पहुँचते जब वापस मेरे तक आती है तब सुनने को मिलता है कि अरे मैंने तो ये बात कही नहीं, पूरी रूपरेखा बदल गई। इसलिए बातों को समा करके रखिएगा, बातों को समाना सीखिएगा। किसी के सामने कहना नहीं है कि भाई जब मैं आपको कह रही हूँ कि ये बात मैंने आपको कही है, किसी को बताना नहीं तो नहीं बताना है, क्योंकि उसको पाया ही खत्म हो जाता है, मेन बात तो खत्म हो जाती है, बात का बतंगड़ हो जाता है, सार नहीं वो विस्तार हो जाता है, इतनी सी बात इतनी फैल जाती है कि लोग न जाने क्या क्या बातें करते रहते हैं, फिर किन किन तरह की बातें हो जाती उस व्यक्ति के प्रति। इसलिए ये यही संदेश देता है ये प्रश्न कि हमें बातों को फैलाना नहीं है। ठीक है, तो जवाब दिया है सुरेश भाई पिंडवाड़ा से जुड़े हैं, कंचन भाई मंडाली से, सुरेश भाई जोटाना से, रामा भाई वासना से, आप सभी ने विषय में चर्चा की है और आपने जवाब देने की भी कोशिश की है, लेकिन मेन बात यही है कि बात जो हम करते हैं वो पूरी रूपरेखा उसकी बदल जाती है और बहुत सारा विस्तार सामने आ जाता है, जबकि बात हकीकत में एक छोटी सी होती है। तो आप सभी जुड़े हैं, इसके लिए ढेर सारी तालियां। और अब मैं आपको माता पिता पर ही एक प्यारा सा भाव भजन सुनाऊंगी, आप लेंगे भजन का आनंद और मुझे देंगे इजाजत। कल फिर मिलेंगे तो कल जरूर जुड़िएगा और आज मुझे अनुमति दीजिएगा। तो राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, गणी खम्मा सा, खुदा हाफिज। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन। मात पिता सदगुरु, मात पिता गुरुदेव, मिलते ना बारंबार है, जिसने दुखाई आत्मा वो डूबते मंझधार हैं, जिसने करी सेवा वो हो जाते भव से पार है, मात पिता गुरुदेव को वंदन बारंबार है, वंदन बारंबार है। लोक और परलोक सुधर गया, लोक और परलोक सुधर गया,

रे, लूण मरच सू रोटिया खादी, लूण मरच सू रोटिया खादी, पायो दूध मलाई को, माँ बाप की सेवा कर ले, मत बन दास लुगा।

में तो करता न काम सगाई को, माँ बाप की सेवा कर ले मत बन दास लुगाई को, मत बन दास लुगाई को। खरी क्यों तो

उषा के वे सुन लो सताओ, लजा जो दूध मत माई को, माँ बाप की सेवा कर ले मत बन दास लुगाई को, मत बन दास लुगाई को, लोक और पर लोक सुधर गया मत कर काम बुराई को, माँ बाप की सेवा कर ले मत बन दास लुगाई को, मत बन दास।

0: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अपनी दिनचर्या का विश्लेषण करें, अपनी आदतों और कार्यों को देखें। जो आदतें आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं, उन्हें बदलें। मैं हूं आपका हमसफर आरजे रमेश। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: नमस्कार दोस्तों, रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर आप सभी का स्वागत है। जीना इसी का नाम है। दोस्तों, कहते हैं कि जीवन में कितना भी उतार चढ़ाव आए, अगर आप हर वक्त हर मोड़ पर सकारात्मक रहते हैं तो उसे कहेंगे वाह क्या जीवन जिया है इन्होंने। ऐसे ही कुछ अनुभवों के साथ आज हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं। आप हैं सुरेश कुमार जी। आप पिछले 3 दशकों से एक योगी जीवन जी रहे हैं, यानी कि ये नहीं है कि उन्होंने संसार को संन्यास कर दिया है, लेकिन अपनी भौतिक जिम्मेवारियों को निभाते हुए अपनी जीवन को ब्रह्म कुमारी सेश्वरी विश्वविद्यालय के हेडक्वार्टर में शांतिवन में समर्पित करके अपनी योगी जीवन जी रहे हैं। इस योग की साधना से उन्होंने क्या प्राप्त किया है और उस उतार चढ़ाव में ये साधना उनके जीवन में कैसे मदद किया है, आइए आज हम जानते हैं। दोस्तों, सुरेश कुमार जी, आप 1990 में ब्रह्म कुमारी के संपर्क में आए हैं। मूलतः आप कर्नाटका कुर्ग डिस्ट्रिक्ट से हैं। आगे की कहानी उनके जुबानी हम सुनते हैं। स्वागत करते हैं सुरेश जी को। नमस्कार भाई जी।
2: नमस्कार
1: भाई जी। हम सबसे पहले आपकी जर्नी की ये कहानी जानना चाहेंगे कि आपकी जीवन की शुरुआत जो कुर्ग डिस्ट्रिक्ट में हुई है, और आपका बचपन कैसा रहा, आपने क्या पढ़ाई किया, और आपकी लौकिक परिवार, इसके बारे में आप संक्षिप्त में हमें बताएं।
2: देखिए, हमारा लौकिक जन्म कर्नाटक से हुआ है। कुर्ग डिस्ट्रिक्ट पूरी दुनिया में फेमस है, क्योंकि हमारा जो फील्ड मार्शल जनरल करियप्पा, उनका भी जन्मस्थल वही है, मेरा भी वही जन्मस्थल है। तो बचपन में मुझे थोड़ा सा जीवन में खेल कूद में इंटरेस्ट ज़्यादा थे, तो एक अंदर से यही संकल्प था मुझे बड़े होने के बाद एक अच्छा काम करना है, थोड़ा एक सोशल सर्विस करना है। तो इसलिए मेरा प्राइमरी स्कूल और हाई स्कूल वगैरह कुर्ग में हुआ है। उसके बाद कुर्ग में पढ़ाई करते करते मुझे अंदर से यही हो रहा था, मुझे फौजी में भर्ती होकर के भारत का सेवा करना है, ऐसे अंदर से मुझे एक तड़फन थी।
1: तो बचपन से
2: ही
1: जी,
2: मेरा जो बैकग्राउंड परिवार है किसान परिवार में थे, तो इसलिए मुझे आगे पढ़ने के लिए प्रोसेस नहीं करते थे। तो हर एक को जो भी बोलते थे मुझे फौजी में जाने के लिए प्रोसेस करते थे, तो मुझे उसमें इंटरेस्ट आ जाता था। इसलिए मैंने सोचा पढ़ाई करना तो फौजी में जाने के बाद आगे पढ़ाई करेंगे। तो उसके बाद मैंने 10वीं पढ़ाई करने के बाद घर में नहीं रहा, घर से बाहर गए, बेंगलोर गए। तो बेंगलोर में 2 साल प्राइवेट जॉब करते रहा, उसमें बीच में 2 बार भी मैंने इंटरव्यू के लिए गए था, CRPF में गए थे, फिर BSF में गए थे, उसमें भी छोटे छोटे मिस्टेक कारण नहीं हुआ, फिजिकल मेडिकल सब हो जाता था, बाद में रिटर्न टेस्ट में फेल हो जाते थे। प्राइवेट जॉब में जब करने के गए, वहाँ एक भाई मुझे संपर्क में आया, वो केरल का भाई था, वो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का संपर्क में 2 महीने से आया हुआ था।
1: ये कौन सी साल की बात है?
2: ये 1990 की बात है,
1: 1990
2: के बात है। फिर मुझे उन्होंने ये कहा आपको मैं एक जगह में लेके जाऊंगा, वहाँ जाएंगे तो आप हमेशा जीवन में खुशी में रहेंगे और जीवन में बहुत आगे बढ़ेंगे और कभी टेंशन नहीं रहेगा जीवन में। तो मुझे बहुत अच्छा लगा उनका बात सुन करके, जीवन में और क्या चाहिए, पहले भी वही संकल्प था। तो मैंने सोचा कहाँ जाने मैं आऊँगा, ऐसे बोला। तो मैं कभी जाने से पहले ब्रह्म कुमारी का नाम भी नहीं सुना था। जब ये भाई ने मुझे लेके गया ब्रह्म कुमारी सेंटर पे, तो वहाँ जाते ही मैंने दीदी को देखा, सफ़ेद वस्त्रधर दीदी को देखा, देखते मुझे ऐसा लगा ये अपना ही है, अपनापन महसूस हुई। मैंने सोचा पहले जब बचपन में थे मैंने क्रिश्चियंस को नंस को अगर देखते थे, तो मैंने सोचा क्रिश्चियंस में ऐसे नंस हो सकते हैं, हमारा हिंदू धर्म में क्यों नहीं हो सकते।

0: मेरे अंदर से ऐसे संकल्प चल रहा था। फिर वही मैंने सफेद वस्त्रधारी को ब्रह्मा कुमारी सेंटर में आके देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा, अपनापन महसूस हुई। उसके बाद मुझे पहले लेसन ज्ञान के बारे में हमें बताया है।
1: जब आपको ये राजयोग मेडिटेशन परमात्मा का ज्ञान जो ब्रह्म कुमारी से मिला है, उसमें कौन सी बात ऐसी थी जिससे आपको ये निश्चय हुआ कि यही सत्य ज्ञान है, यही चीज है जिसको मैं ढूंढ रहा था?
0: तो जब बचपन में मुझे भक्ति में कोई इतना रस नहीं थी, मैंने अंदर से सोच रहा था कोई शक्ति है दुनिया में, क्योंकि इसलिए तो दुनिया में लोग भक्ति मार्ग में मंदिर मंदिर भटकते रहते हैं, मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, तो कुछ मन्नत मानते हैं, तो कुछ कईयों को सिद्ध हो जाते हैं, तो कुछ शक्ति होगा। और भगवान का नाम तो हमने भक्ति में तो सुना ही है, भगवान एक ही है, ये तो ना पता था, अनेक भगवान तो नहीं है, भगवान तो एक ही होंगे। एक भगवान का नाम बोलते हैं हम ऊपर की ओर देखते हैं, लेकिन एक तरफ तो दुनिया में मंदिर मंदिर भी भटकते रहते हैं, लेकिन कौन सी भगवान है, सच्चा है, किसको हम पूजा करना है? अंदर से वो एक तड़फन आती, एक खोज थी, कोई सच कोई होंगे ऐसा सोच करके। फिर मैंने जब ईश्वरी विश्वविद्यालय में आया तो मुझे कोर्स के लिए जो बेटा आया था, पहले खुद को परिचय मिले, उसमें मुझे संतुष्ट हो गए, क्योंकि उन्होंने मुझे ये कहा आप एक चैतन्य शक्ति आत्मा हो, आत्मा ये ब्रकृति के बीच में बैठ करके अंकों द्वारा देखेगा, मुख द्वारा बात करेगा, कानों द्वारा सुनेगा, हाथों द्वारा काम करेगा, पैरों द्वारा चलेगा, ये एक चैतन्य शक्ति है, वो आप है। मैंने सोचा ये तो बहुत इतना अच्छा ईजी ज्ञान है, हमें स्कूल कॉलेज में कोई बताया नहीं, टीचर्स लोगों ने तो हम शरीर के बारे में तो सारा ज्ञान बता देते थे, हिस्ट्री ज्योग्राफी वगैरह बता देते, लेकिन शरीर के अंदर चैतन्य शक्ति आत्मा है इसके बारे में मुझे पहले बार मैंने सुना था। मुझे पहले सुनते ही मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी।
1: तो ये अपने कोर्स भी किया है और उस ज्ञान का अभ्यास करने लगे हैं, आपको ऐसा क्यों लगा कि मुझे अभी मेरा जीवन समर्पित करना है, और वो क्या मोड था? आप अपनी लाइफ को क्यों इस परमात्मा की कार्य के लिए समर्पित किए हैं?
0: जैसे बचपन मेरे को जो आर्मी में जाने का जो अंदर से दो तड़पन थी नहीं, तो उसका मुझे जैसे वो हम सोच रहे थे भारत देश का सेवा करेंगे, सोशल सर्विस करेंगे, मुझे लोग के घर में नहीं रहना है, घर से बाहर जा करके सोशल सर्विस करना है, देश का सेवा करना है, ऐसे अंदर से दो संकल्प है ना, उसके अनुसार मुझे एक समर्पण भावना अंदर से थी। तो मैंने सोचा आर्मी में जाएंगे तो भी एक समर्पण हो जाएंगे, देश के लिए समर्पण हो जाएंगे, ऐसे मुझे अंदर संकल्प था। तो ये बात मुझे बहुत अच्छा लगा, तो इसलिए मेरे को अंदर से ऐसा लगा अभी तो हम तो देश का सेवा कर रहे थे, तो मुझे ये पता चला वो ईश्वरी विश्वविद्यालय पूरा दुनिया में है, केवल भारत देश में नहीं है, कि दुनिया में 140 कंट्री में है, तो इसलिए हम लोग केवल भारत का सेवा नहीं कर रहे, पूरा विश्व का सेवा कर सकते हैं। इसलिए हम लोग जिस्मानी मिलिट्री वाले नहीं है अभी, हम लोग अभी रूहानी मिलिट्री वाले, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। तो इसलिए मैंने सोचा अभी इसमें समर्पित होकर के इस ज्ञान में आगे बढ़ करके विश्व का सेवा करेंगे, ऐसे अंदर से मुझे दृढ़ संकल्प किया था मैंने।
1: जी, ये जो आप 1995 से ब्रह्म कुमारीज के हेडक्वार्टर्स में समर्पित रूप से सेवाएं कर रहे हैं, तो अभी आप क्या सेवाएं करते हैं, क्या जिम्मेवारियां हैं?
0: 90 से 95 तक हमने जो 5 साल के अंदर माउंट आबू में 3 बार विजिट दे जाते हैं। एक बार क्या हुआ, 1994 में हमारा मैंगलोर सेंटर विजिट देने के लिए आए थे, तो वो मृत्युंजय भाई वरिष्ठ भाई, उन्होंने मुझे देख करके ये कहा आपको कोई बंधन नहीं है ना, आप कुमार है ना, आप माउंट आबू आ सकते हैं, तो हमारे साथ तो आ जाओ, आपको मैं सेवा दूंगा, ऐसे मुझे कहा था उस समय। तुरंत मेरे को अंदर से फ्लैश हुआ जो मेरे को संकल्प था, मैंने जो समर्पित होने के लिए इसलिए भगवान ने इनको भेजा होगा, अभी मुझे माउंट आबू जा करके सेवा में उपस्थित होना है, अंदर से मेरे को एक प्रेरणा आ गई, तो इसलिए मैंने तुरंत 94 में वहां से माउंट आबू आ गया। माउंट आबू आने के बाद मुझे मृत्युंजय भाई साहब ने एजुकेशन विंग में उनके साथ मुझे सेवा दिया। मैंने सोचा माउंट आबू जाएं तो कुछ भी सेवा मैं कर सकता हूँ, मेरे को ऐसे कोई सिलेक्टेड सेवा नहीं है, भगवान की सेवा है, कुछ भी करो अमरली उसमें भागिया बन जाता है। आते मुझे उन्होंने गाड़ी चलाने के लिए सेवा दिया उसी समय 1994 में। उसके बाद मैं उस समय तो माउंट आबू में तो हमारे जो आश्रम में बहुत गाड़ियाँ वगैरह बहुत कम थे, तो उस समय भाई साहब के पास एक फिएट कार था। उस समय जो माउंट आबू जो हमारा ज्ञान सरोवर कैंपस है उसमें वैरायटी विंग्स का हमारा कॉन्फ्रेंस बहुत होता था, हर हफ्ते में दो दो कॉन्फ्रेंस होता था। उस समय एमएलए एमपीस गवर्नर्स मिनिस्टर को इन्विटेशन देने के लिए मृत्युंजय भाई निमित्त बनते थे। उनको मिलने के लिए, उनको इन्विटेशन देने के लिए जयपुर जाना होता था, दिल्ली जाना होता था। उस समय फ्लाइट का व्यवस्था बहुत कम थी और ट्रेन भी मीटर गेज थी, ट्रेन की फैसिलिटी नहीं था। दिल्ली जयपुर जाना हो तो हम क्या करते थे, बाई रोड चले जाते थे। उस समय अच्छा गाड़ी भी नहीं होते थे, फिएट कार थे, एम्बेसडर होते थे, उसी कार लेकर के हम लोग दिल्ली जयपुर जा करके मिनिस्टर्स को, एमएलए एमपीज को, गवर्नर को निमंत्रण देके आते थे। तो मैंने पहला बार माउंट आबू आके यहाँ गाड़ी चलाना शुरू किया
1: जी। तो इस यात्रा में आपने क्या क्या सीखा है, जैसे एक आध्यात्मिक जीवन के लिए आप आए हैं, स्थूल कार्य तो हर कोई करना ही है, करते ही है, लेकिन आपकी स्व उन्नति में आपने ऐसी क्या चीजें सीखी है, क्या बदलाव आप देखते हैं इस आध्यात्मिक मार्ग पे चलने के कारण?
0: जैसे मेरा यही लक्ष्य था, जब इस मार्ग में चलो तो मैं इस मार्ग के जो लक्ष्य है उसको पकड़ के चलना है। कार्य तो हर कोई व्यक्ति को जब तक जीना है तो तब तक कुछ न कुछ शरीर के अंदर काम करना ही है, इसलिए वो कर्म से हम रह नहीं सकते बिना कर्म से। तो इसलिए वो अंदर से सोच रहे तो कुछ भी कर्म करे लेकिन हमारा कर्म श्रेष्ठ हो जाए, उस कर्म के अंदर हमारा योग रहे, तो ऐसे अंदर से एक संकल्प थी। इसलिए मैंने क्या किया, जैसे ईश्वरी विश्वविद्यालय का नियम है जो कर्म योग करने का, हर कोई कर्म करते समय भगवान को याद में करना है, मुझे ये पहले कोर्स में बताया हुआ था, वो हमारा कर्म श्रेष्ठ होगा। इसलिए मैंने परमात्मा के साथ याद में रह करके कर्म करने के लिए मैंने अंदर से स्टार्टिंग से कोशिश किया था। इसलिए हमें इस ईश्वरी विश्वविद्यालय में मुझे ये पता चला, सुबह से भी अमृत वेला होता है, तो अमृत वेला भगवान के साथ संबंध जोड़ने के लिए बहुत सहज समय होता है, इजिली कनेक्शन मिल जाती है। इसलिए मैंने जब से ये 7 डेज कोर्स हुआ तब से मैंने सुबह सुबह 4 बजे से 5 बजे तक जो अमृत वेला मेडिटेशन होता है ना, उस मेडिटेशन को मैंने पक्का करा दिया था स्टार्टिंग से। तो वो मुझे बहुत अंदर से बल मिल गई, और जो भगवान की जो महावाक्य है जो उसको मुरली कहते हैं उसमें भी मैंने पक्का कर लिया था, कुछ भी हो जाए सुबह अमृत वेला उठना है और मुरली क्लास सुनना है और सारे दिन में जो भी सेवा मिले वो भगवान के याद में करना है। ये अंदर से मैंने दृढ़ संकल्प किया था, कहीं भी रहे, भले माउंट आबू में रहे, बाहर जाए, तो गाड़ी लेके जावे, तो भी मुझे भगवान को याद में सेवा करना है। अंदर से एक संकल्प करके मैंने सेवा कर रहा था, ये अंदर से मुझे बहुत बल मिल गई और एकाग्रता भी हमारा अंदर बढ़ते गया। इसलिए कोई भी दिन में जो भी हमारा विघ्न रूप बनते वो भी विघ्न से मुक्त होते थे। इसलिए मुझे ये राजा राजयोग जाना, ये अंदर से बहुत एक अच्छा लगा मेरे को, इसमें एनर्जी मिलता है, ताकत मिलता है। तो इसके कारण से मैंने कोई भी कर्म करे भगवान के याद में करने के लिए शुरू करते थे स्टार्टिंग से। जब से माउंट आबू आया तब से मैंने इसको चालू रखा था, जैसे सुबह अमृत वेले उठना और मुरली क्लास सुनना है और सारे दिन जो भी हमें सेवा मिले उसका हम एक्यूरेट हो करके भगवान के याद में करना। इसमें अंदर हमें दिन में भले आप 500-600 किलोमीटर भी गाड़ी चलाए उसमें हमें थकान महसूस नहीं होता है, उसमें एनर्जी मिला हुआ रहता है, क्योंकि हम हर कर्म को भगवान को अर्पण करके हम कार्य शुरू करते हैं, तो हमें वो जर्नी पता नहीं चलता है, बहुत ईजी हो जाता है। जैसे ऐसे लगता है हम घर में बैठे बैठे हैं, बैठे हुए ऐसे फीलिंग होता है।
1: अगर आप अपनी पूरी जीवन को समराइज करते हुए अगर एक शब्द में आप कहना चाहते हैं, आप अपने जीवन को क्या कहेंगे?
0: क्योंकि जो समर्पित जीवन है ना, ये हमारा जीवन एक अच्छा जीवन जीने का एक कला हमें यहाँ मिल गया है। इसलिए हर एक व्यक्ति को इस आध्यात्मिक ज्ञान को पकड़ के चलने से जीवन एक ऊंची स्थिति में जा सकते हैं, जीवन में कोई भी प्रकार का टेंशन में आने की जरूरत नहीं होगा, क्योंकि हमें एक दिशा मिल गया है ना, एक लक्ष्य मिलेगा, जीवन का लक्ष्य मिल गए, तो वो लक्ष्य के आधार से हम इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के ज्ञान को पकड़ के आगे चलने से हमारा जीवन सफल होगा। इसमें कोई भी प्रकार का हमारे लिए नुकसान नहीं है, हमारा जीवन एकदम सुंदर जीवन होगा, एक दैव गुण अंदर से बढ़ते जाएंगे, हमारा इस जो जन्म है वो हमारा जन्म सफल हो जाएगा।
1: बहुत सुंदर भाई जी, आपने इतनी सुंदर जर्नी को संक्षिप्त में बताया। भाई जी, जैसे आपने कहा कि कोई भी सेवा मिले तो आप करने के लिए तैयार थे, और आपको यहाँ पे ड्राइविंग करने की जो सेवा मिली है, और जैसे आपने कहा कि कितना भी थकावट होता है, योग मतलब परमात्मा की याद में आप गाड़ी चलाते हैं, तो आप कितना भी लंबा सफ़र है आपको कोई मुश्किल नहीं लगता है। लेकिन 3 दशकों की आपकी इस यात्रा में कभी कुछ तो ऐसी बातें हुई होगी जो, क्योंकि सड़क पे जब चलते हैं हमेशा हम गलत है जरूरी नहीं है, हम जब सही भी जा रहे होते सामने से कुछ ना कुछ ऐसे हादसे होते हैं, तो कभी आपको ऐसी कोई परिस्थिति आई सामने और आपने इस आध्यात्मिक

गाड़ी में बहुत कम गाड़ियां चलना शुरू हो जाते हैं। तो एक क्या हुआ, हम आगे चल रहे थे तो पीछे से एक कार वाले बहुत देर से हमारे पीछे पीछे आ रहे थे। तो हमने सोचा इनको आगे जाने दो बोल करके उनको मैंने साइड दिया था। फिर भी वो थोड़ा देर आगे जा करके फिर वापस गाड़ी स्लो करके कभी राइट में कभी लेफ्ट में आ रहे थे। कम से कम 5 किलोमीटर तक ऐसे आ रहा था। तो उसके बाद एक स्पीड ब्रेकर आया रोड पे, तो सिद्धपुर के पास में ही, तो मैंने गाड़ी को एकदम धीमे किया। तब तक ये गाड़ी पीछे जो आ रहे थे तो अचानक मेरा बाजू में आया, बाजू में आया तो मेरे को गाड़ी को रोकने के लिए कोशिश कर रहे। तो मैंने सोचा ये कोई पहचाने वाला तो है नहीं, कोई अनजान व्यक्ति है, अंदर तो 4 लोग बैठे हुए थे। मैंने जबरदस्ती गाड़ी को रोक, मैं सोचा उनका कुछ रास्ता भूल गया होगा, कुछ रास्ता पूछने के लिए आ रहा होगा, ऐसे सोच करके मैंने गाड़ी को थोड़ा साइड में स्टॉप किया। तो उस समय बाज साहब बाज में बैठे हुए थे, लेकिन बाज तब थोड़ा रेस्ट कर रहे थे। 5 मीटर दूर में वो कार स्टॉप किया था। फिर ड्राइवर उतर के मेरे पास आकर के पूछता है, आपके वजह से पीछे एक कार नीचे खड्डे में गया, अब गाड़ी के क्यों नहीं रोका, हम कब से आपको रोकने के लिए बोल रहे हैं, उसने मुझे कहा। ऐसे बोलते समय मुझे लगा ये तो ऐसे कुछ घटना हुआ ही नहीं है, हमारा गाड़ी को ऐसे नीचे खड्डे में गाड़ी कैसे जाएगा, हमारा गाड़ी टच भी नहीं हुआ, ऐसे इन्होंने हमारे ऊपर आरोप लगा रहा है, कुछ उनको हमारे से कुछ चोरी करना होगा, इसलिए उन्होंने ऐसे हमको बहानाबाजी कर रहे हैं। सोच करके मैं अंदर से संकल्प आया, फिर मैंने ग्लास आधा नीचे उतरा हुआ था। फिर ऐसे उन्होंने कहने के बाद उन्होंने मुझे क्या किया, अब गाड़ी से उतरो, अब ज़्यादा बात नहीं करो, अभी मैं शूट करूँगा बोल करके उनके जेब में पिस्तौल थे, वो पिस्तौल ले करके मेरे कान के पास ऐसे टिका दिया था। उस समय मैंने जो ड्राइविंग करते थे तो मैं मेडिटेशन अवस्था में थे, अंदर से कोई कन्फ्यूज नहीं था, कोई घबराहट नहीं थी, कुछ नहीं थी, मेरा अंदर से एकाग्रता भी बहुत अच्छा था। तो मैं मेडिटेशन करके हम अहमदाबाद से निकले हुए थे, तो दिन में रेस्ट भी मैं अच्छा किया हुआ था, कोई थकान भी नहीं थी, मैं एक्टिव होके गाड़ी चला रहे थे। उसी समय फिर इन्होंने ये ऐसे हमारे गाड़ी को रोका था, मेरे को पिस्तौल निकाल के मेरे कान के पास रखा। उसके बाद फिर मैंने भी डरा नहीं थी, मैं मेडिटेशन अवस्था में था, तो ये तो हमारे जैसे भाई है, ये क्या कर सकता है, हमारा पास ऐसा कुछ हुआ नहीं है घटना, ये ऐसे डराने के लिए ऐसे दिखाएगा, सोच करके मैंने अंदर से कॉन्फिडेंस होकर के बैठे हुए थे। तो उसके बाद फिर उसमें अंदर 4 लोग थे, तो एक एक करके मेरे को गाड़ी से बाहर उतरने के लिए फोर्स कर रहे थे। तो मैंने अंदर से संकल्प आया, गाड़ी से उतरेंगे तो कुछ कर डालेंगे, इसलिए मुझे गाड़ी से कुछ भी हो जाए गाड़ी से मैं उतरना नहीं है, क्योंकि बाजू में भाई साहब बैठे थे, ये कुछ करके मुझे कुछ करके फिर गाड़ी में बैठ के गाड़ी ले चले जाएंगे, भाई साहब भी कुछ कर सकते हैं तो बड़ा दुर्घटना हो जाएगी, मुझे कुछ भी हो जाए मुझे गाड़ी से उतरना नहीं है। अंदर से मेरे को भगवान का टचिंग हो रहा था, लेकिन मेरा लाइन क्लियर थी, कोई डर नहीं थे अंदर से, मैं उनको देख डरा भी नहीं था, मैं साक्षी होकर अपना भाई का समझ करके उनको देखा हुआ था। उस समय बाद में 3 व्यक्ति आकर के बोलते हैं, अब गाड़ी से उतरो नहीं तो गाड़ी बंद करो बोल करके गाड़ी बंद करके गाड़ी की चाबी अपने पास ले लिया। गाड़ी के अंदर हम दोनों बैठे हुए थे, गाड़ी बंद हो गई, फिर भाई साहब की नींद खुल गई। तब तक भाई नींद खुल गया तो जब इंजन बंद हो गए, तो इंजन बंद होने के बाद फिर बाद में वो लोगों ने भाई साहब को देख लिया, गाड़ी की चाबी तो ऑलरेडी ले चुके थे, हम गाड़ी मूव नहीं कर सकते थे। उसके बाद क्या किया, वो लोगों ने हमारा गाड़ी के पीछे जा करके आसमानी को और फायरिंग किया। तो उस समय भाई साहब उनको देखा तो भाई साहब पता चला ये लोग ऑलरेडी चोर लोग हैं, ये कुछ लूटने के लिए आए हैं, हमें किसी का हेल्प लेना पड़ेगा बोल करके भाई साहब ने क्या किया, रोड पे उतर डोर ओपन करके रोड पे आया। रोड पे आते समय पीछे से एक ट्रक वाला आया, उसको देख के भाई साहब उसको हेल्प लेने के लिए उनको रोकने के लिए बोला था। उस समय ट्रक वाला नजदीक आया, आकर के हमें भी देखा, और वो लोग पीछे गाड़ी के पीछे 3 लोग थे, तो ट्रक वाले को समझ में नहीं आया ये कोई आरटीओ वाले चेक करने के लिए आया होगा, सोच करके ये लोग सीधा चले गए, कोई एक्शन नहीं लिया। उसके बाद फिर बाद में भाई साहब क्या किया, पीछे मोड़ के देखा तो एक जीप वाले आए थे, वो हमारे गाड़ी के सामने खड़ा किया था। उस समय फिर भाई साहब इधर से उनके पास जाके बता रहे थे, ऐसे ऐसे हम लोग अहमदाबाद से आ रहे थे, हमारे सामने गाड़ी रोक करके आसमानी का और फायरिंग किया, शायद कुछ लूटने के लिए आ रहे होगा, सोच करके समाचार बता रहे थे। मैंने अंदर से गाड़ी के अंदर बैठा हुआ था, सीट बेल्ट पहना हुआ था। उसके बाद ये लोगों ने क्या किया, इधर से मेरे को फायरिंग करके अपना गाड़ी बैठ कर चले गया। जैसे फायरिंग हुआ तो मेरा कान के पास ऐसे लगता था कोई इधर से कोई पत्थर फेंका, ऐसे फीलिंग हुआ, तो फायरिंग का आवाज भी सुनाई दिया था, तो यहाँ लगा तो मेरे को लगा ये तो उन्होंने फायरिंग किया ऐसा लग रहा था। बाद में जैसे हाथ पकड़ के ऐसे देखा कान के पास, धीरे धीरे कोन आना शुरू हो गई थी। फिर बाद में जब जीप के साथ जो भाई साहब बात कर रहे थे वो, फिर बाद में भाई साहब मैं जो मोड़ के देखा तो मैंने हाथ पकड़ के मेरा सिर नीचे ऐसे होकर के मैं बैठा हुआ था।
उसी समय फिर जीप वाला भी पूछा।

0: ये लोग जब गए थे, ये लोग फायरिंग किया ना बोलकर, मैं ढूंढ करके पूछ करके आता हूँ बोलकर गए, वापिस नहीं आया जीप वाला। उसके बाद मुझे लगा तो इंजर हो गया, अभी भाई सबको लगा अभी खून निकल रहा है, अभी ऑफिस हॉस्पिटल जाना है, हॉस्पिटल जाना हो तो कहाँ जाना है क्या है कुछ पता नहीं है भाई सबको। मेरे को जैसे खून आ रहा था कान के पास, ऐसे मुंह में जैसे पानी भर हुआ था फीलिंग हो रहा था। जैसे भाई साहब नजदीक आया, भाई साहब मैंने चलो अभी हॉस्पिटल जाना तो एम्बुलेंस नंबर बताना पड़ेगा, पुलिस का नंबर बताना पड़ेगा बोल करके मैंने भाई साहब को पुलिस को नंबर बताया, 100 नंबर में करो पुलिस आ जाएंगे और 108 नंबर करो तो एम्बुलेंस आ जाएंगे। ऐसे मैंने भाई साहब बोलने के लिए जैसे मुंह ओपन किया तो मुंह के अंदर जो पानी समझा था वो खून भरा हुआ था मुंह के अंदर, वो क्या हुआ जैसे स्प्रे हो गया पूरा ऐसे सामने से। फिर भाई साहब उसको देखते बहुत घबराहट हो गया, भाई साहब को ये क्या हो गया अभी तो। फिर मैंने अंदर से संकल्प किया अभी कुछ ही वजह मुझे फायरिंग तो हुआ है, आत्मा तो विनाश नहीं होगा, शरीर तो फायरिंग किया तो शरीर को लगा है ना, लेकिन आत्मा जरा हमारा अविनाश है, मैं शरीर के अंदर पार्ट बजाने वाले आत्मा है तो आत्मा ये शरीर छोड़ेंगे तो अगले जन्म में अच्छा पार्ट बजाएंगे। अंदर से मेरे को ये संकल्प तोड़ करके अंदर से कोई घबराहट नहीं थी, मैं आराम से शांति से बैठा हुआ था। फिर बाद में भाई साहब ने एम्बुलेंस को और हॉस्पिटल को फोन करने के लिए बोला, पुलिस को फोन किया तो 20 मिनट में एम्बुलेंस भी आ गया और पुलिस भी आ गई। तब तक मैंने अंदर से मेरा पूरा बेहोश नहीं हुआ था लेकिन खून नाक से और मुख से निकल रही थी, तो उसको फिर मैंने स्टेबल करके माइंड स्टेबल करके अंदर से कोई व्यर्थ संकल्प भी नहीं आया और एकग्रत होकर के मैं यौगिक तो होकर के भगवान के याद में भगवान के साथ में बिंदु बन करके भगवान के साथ में बैठने के लिए अभ्यास किया। उतना अनुभव करते 20 मिनट हुआ, तब तक एम्बुलेंस भी आ गए पुलिस भी आ गए। तो उसके बाद फिर मुझे एम्बुलेंस में बिठा करके फिर नज़दीक वाला हॉस्पिटल में लेके गए। फिर वहाँ जाने के बाद डॉक्टर ने बोला आपको ये ज़्यादा इंजर हो गया होगा इसलिए हमारे पास स्कैनिंग सिस्टम नहीं है, आपको वापिस मेसाणा में जाना है, वहाँ जाएंगे तो आपका इलाज हो सकता है ऐसे बोला। तब तक पुलिस भी आए थे, एम्बुलेंस भी साथ में, एम्बुलेंस में बिठा करके मुझे लेके गए थे। गाड़ी तो रोड पे खड़ी थी, गाड़ी खोलना पड़ा था, चाबी नहीं था हमारे पास। फिर मैंने भाई साहब को ये भी बोला था गाड़ी हम लोग हॉस्पिटल जाएंगे, चाबी हमारे पास नहीं है, वो लोग वापिस आ करके गाड़ी भी ले जा सकता है, इसलिए पुलिस को बोलना गाड़ी के पास रुकने के लिए। मैंने उतना भी काम उतना भी कॉन्शियस मेरा अच्छे थी क्योंकि मैं यौगिक तो कह रहा है ना, अंदर से कन्फ्यूज नहीं थी, कोई डर नहीं था, कुछ भी नहीं था और बेहोशी भी नहीं हुआ था। मैं साक्षी होकर के मेरा खून निकलते बॉडी को देख रहा था साक्षी होकर के उसी समय। फिर बाद में भाई साहब पुलिस को गाड़ी के पास रुकने के लिए बोला, फिर एक पुलिस गाड़ी के पास रुके थे। तब तक भाई साहब अहमदाबाद में हमारे हेडक्वार्टर में फ़ोन करके वहाँ नज़दीक वाला सेंटर वाले को फ़ोन करने के लिए बोला, वहाँ से दो भाई लोग भी टूर लेके आए थे और एक भाई और एक पुलिस गाड़ी के पास रुके थे और एक भाई हमारा साथ एम्बुलेंस में हॉस्पिटल में आए थे। तो फिर बाद में उस हॉस्पिटल में वहाँ से कुछ ने एक्शन नहीं लिया डॉक्टर ने, बाद में डॉक्टर बोला अभी वापस मेसाणा में जाना है, वहाँ आपका ट्रीटमेंट हो सकता है। फिर पीछे से पुलिस वैन भी आए थे, हम भी एम्बुलेंस में बैठ करके मेसाणा में गए, पेशेंट में जाते वो रोटरी हॉस्पिटल में गए थे। वहाँ जाने के बाद में पुलिस बोला ये तो रोटरी हॉस्पिटल है, यहाँ कोई आपका इलाज हो नहीं सकता, यहाँ स्कैनिंग सिस्टम नहीं होगा इसलिए आप यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करो, ये इमरजेंसी केस है इसलिए आप अहमदाबाद ले चलो। फिर वहाँ से फिर अहमदाबाद एक घंटा जर्नी है मेहसाणा से अहमदाबाद जाने के लिए अपोलो हॉस्पिटल में, फिर वहाँ हम गए थे। वहाँ जाते समय फिर बाद में लग रहा था मुझे अब एक घंटा जर्नी में कुछ भी हो सकता है, शरीर भी छूट सकता है, इसलिए मुझे भगवान के याद में रहना है, अंतमति स्वगति ऐसा सोच करके भगवान के याद में एक हाथ तो मेरा कान के पास ही, मेरे अंदर ऐसा लगता है कान के अंदर खून जा रहा है, उसको बंद करके मैं रोकूं बोल करके एक हाथ में ऐसे बंद करके मैं बैठा हुआ था। फिर बाद में भाई साहब एम्बुलेंस में साथ में बैठे हुए थे, सब जगह में फोन करके मैसेज वगैरह बता दिया था ऐसे ऐसे हुआ है बोल करके। फिर बाद में अहमदाबाद में अपोलो हॉस्पिटल में अच्छा इलाज हुआ, इमरजेंसी इलाज हुआ, अच्छा हुआ, मेरा को कोई ज्यादा तकलीफ नहीं हुआ और लास्ट तक भी बेहोश नहीं हुआ था, मैं फुल कॉन्शियस में हूँ, लेकिन सारा हिस्ट्री मुझे पता है क्या क्या हुआ, कहाँ क्या हुआ, कितना बजे हुआ, मेरा अंदर साथ में कितना लोग थे, सब मुझे सब याद रहता, साथ में याद रहा। फिर बाद में 8 दिन का हॉस्पिटल का सफर हुआ, एक ऑपरेशन अच्छी हुई। वो जी ड्रामा अनुसार क्या हुआ, जो कान के पास जो बुलेट जो घुसी थी वो मुंह के अंदर आकर के लेफ्ट साइड में गले में फंसा हुआ था, तो मुझे हॉस्पिटल जाने के बाद स्कैन करने के बाद डॉक्टर ने मुझे बताया आपको यहाँ देखो गोली फंसा हुआ है, क्योंकि मुझे तब तक कुछ पता नहीं था, एम्बुलेंस में मैं सोते ही जा रहा था, मुझे कुछ पता नहीं था। बाद में हल्का सा दर्द जैसे फीलिंग हो रही थी, फिर बाद में डॉक्टर बताने के बाद फिर बाद में स्कैन पता चला आपको गोली यहाँ फंसी हुई है, अभी उसको निकालना है। फिर बाद में स्कैनिंग पूरा होने के बाद फिर बाद में डॉक्टर ने बताया अभी आपको ब्लड खून बहुत लॉस हो चुके हैं, कम से कम इतना 3 घंटा जर्नी में कम से कम 3 लीटर खून निकल गया मेरा बॉडी से। तो मेरे को बॉडी से गाड़ी से एम्बुलेंस नीचे उतरने के लिए एनर्जी नहीं थी, तो मेरे को हाथ पकड़ के फिर एम्बुलेंस में इसमें स्ट्रेचर में बिठा करके ऑपरेशन थिएटर में लेके गए थे। तो पहले स्कैनिंग वगैरह किया था, उसके बाद मेरे को स्टेबल करके आईसीयू में भर्ती करके फिर उस समय डॉक्टर भी आए थे, ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर भी आए थे। फिर नेक्स्ट डे तक के लिए वेट कर रहे थे क्योंकि खून वगैरह चढ़ाना है इसलिए आपको कल ऑपरेशन होगा बोल करके। फिर बाद में ब्लड वगैरह खून वगैरह चढ़ा दिया था। नेक्स्ट डे 11 बजे से 1 बजे तक ऑपरेशन हुआ, उसमें स्टेबल आ गई। फिर बाद में वापिस 4 दिन आईसीयू में थे और 4 दिन वार्ड में आ गया। 8 दिन में डिस्चार्ज हो गई और धीरे धीरे रिकवरी होते गए। लेकिन मेरा जैसे गोली कान के पास जो घुसी थी ना, यहाँ भी ऑपरेशन कर मतलब ये जो हड्डियाँ है वो थोड़ा डैमेज हो गई थी, उसको भी ज्वाइंट करके ये स्टिच किया था। अब लेफ्ट साइड में जो गले के पास थी जो बुलेट थी उसको निकालने के लिए ओपन करना पड़ा, उसको ओपन करके वहाँ भी स्टिच करके रखा था। इसके कारण इसको हीलिंग के लिए मुझे डॉक्टर ने 1.5 महीने तक मुंह बंद करके रखा था। 1.5 महीने ओनली जूस पे मैं रहा और जूस पीते रहा और मेरा हीलिंग अच्छा हो गया। फिर बाद में जूस पीने के साथ साथ में टैबलेट भी देते थे, वो टैबलेट को खाना पड़ता था लेकिन मुझे मुंह तो ओपन नहीं करना है तो जूस के साथ टैबलेट को क्रश करके देते थे, मैं वो भी भगवान के याद में पीता था तो मेरे को ईजिली अंदर चले जाती थी, तो इसलिए मेरा हीलिंग जल्दी हो गया। सब कुछ जो भी हो इसका सार यही है, एक तो प्लस पॉइंट है मैं गाड़ी से उतरा नहीं है, वो दुर्घटना बड़ा दुर्घटना से बच गई, और दूसरा मेरा हीलिंग के कारण यही है मैं भगवान के याद से ये टैबलेट को मैं पीता था इसलिए मेरे को हीलिंग जल्दी हो गई। मेरे को इसके अंदर का कोई तकलीफ मेरे को महसूस नहीं हुई, कोई दर्द का महसूस नहीं हुआ। हॉस्पिटल में मैं ऐसे 8 दिन रहा, मैं ऐसा लगता है मैं इस शरीर से नहीं रहा हूँ, मैं वतन में उड़ रहा हूँ, ऐसे जैसे फरिश्ते से उड़ रहा हूँ। जो भी हमारा सेवा करने के लिए नर्सेस लोग आते थे ऐसा लगता था मेरे को ये फरिश्ते लोग मेरा सेवा करने के लिए आ रहे हैं, ऐसे भगवान ने मुझे भेजा है, इसे अंदर से मेरा संकल्प होता था। बाकी सबको भगवान का संदेश सबको मैंने बांटा था हॉस्पिटल में, सब लोग वंडर कर रहे थे ये तो पेशेंट है ये तो गिफ्ट बांट रहा है, ऐसे उनको अंदर से ये होता था। मैंने सबको ये कहता था भगवान ने देखो मैं भगवान में याद में था इसलिए भगवान ने मुझे बचाया है, मेडिटेशन अवस्था में थे इसलिए आप लोग भी इस ज्ञान को प्राप्त कर लो, आपका जीवन भी ऐसे निडर होकर के जीवन में जो भी विघ्न आएगा वो विघ्न से पार हो सकते हैं, ऐसे मैंने सबको संदेश देता था।
1: सच ए वंडरफुल स्टोरी, कितनी बड़ी परिस्थिति है लेकिन एक परमात्मा की याद और उनके प्रति जो विश्वास है और वो जो शक्ति उससे जो मिलती है, कैसे हम अपने जीवन में हर परिस्थिति को पार करते हैं। कई बार हम जीवन में जब विकट परिस्थिति आते हैं भगवान को कोसते हैं कि तूने मेरे को ही ये क्यों परिस्थिति दिया है, लेकिन वही जगह पे भगवान तू था इसलिए मैं बहुत कुछ होने से थोड़े समय में बच गया। कितना अंतर है इस आलोचना में। तो बहुत बहुत शुक्रिया भाई जी, कैसे विषम परिस्थिति में सकारात्मकता के साथ हम अपने जीवन को फिर से एक नॉर्मल लाइफ में लेके आ सकते हैं। अब अपने जीवन के उदाहरण उनसे हम सबके सामने रखा, बहुत बहुत शुक्रिया आपको।
0: थैंक यू।
1: जब परमात्मा को हम अपने जीवन समर्पित करते हैं हमारा जीवन कितना सुखमय और कितना सुंदर कितना सरल सहज बन जाता है कि हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की कोई थकान नहीं, कोई कंप्लेंट नहीं, कोई अपेक्षा नहीं है और संतुष्टता से ही भरपूर है हमारा जीवन। बहुत बहुत शुक्रिया आपको, आज आपके जीवन से हमें ये जो बातें सीखने को मिली हैं, शुक्रिया आपको। दोस्तों यहीं पे आपसे विदा लेते हैं और फिर मिलेंगे अगली कड़ी में एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जीवन रोशनी कार्यक्रम के अंतर्गत आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वैसे दोस्तों, मान लीजिए 2026 में जो प्रॉमिसेस हमने अपने आप के साथ किया था कि हम ये करेंगे 2026 में, क्या दृढ़ निश्चय के साथ हम वो कर पा रहे, या फिर जो हमारे लक्ष्य है उसके लिए हम पहला कदम उठा चुके हैं, निरंतर प्रयास कर रहे हैं, ये चेक करने के लिए आज का ये कार्यक्रम है। क्योंकि दृढ़ निश्चय अगर हमारे अंदर होगा तभी ही हम उसे पूरे तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। तो आइए, आज हमारे मध्य हमारे एक्सपर्ट हैं प्रिया दीदी जी, जिनको आप जानते हैं, आप उन्हें कई बार सुन चुके हैं। तो इनसे बेहतर एक्सपर्ट कौन हो सकते हैं जो हमें दृढ़ संकल्प के इस मूल्य के बारे में सरल शब्दों में, सरल तरीके से हमें एक्सप्लेन करेंगे। दीदी ने MBA कंप्लीट किया है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी उनके नस नस में बचपन से ही था, और उसे बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने समझा है और औरों को भी समझा रहे हैं। यूथ हो, चाहे वो एडल्ट्स हो, चाहे वो घर में रहने वाले पेरेंट्स हो, सबको वो सिखाते हैं कि आध्यात्मिकता को अपने जीवन में अपनाते हुए अपने जो निजी लाइफ है उसे कैसे जीना है बेहतर तरीके से, पॉलिश्ड तरीके से। तो प्रिया दीदी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में।
1: थैंक यू सो मच
0: जी। तो सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे, जो हम बात कर रहे हैं आज जो मूल्यों के बारे में, क्योंकि सपनों को अगर हकीकत में लाना है तो दृढ़ निश्चय होना बहुत जरूरी है
1: जी।
0: तो अगर हम दृढ़ निश्चय ये बात कहते हैं, ये तो बहुत भारी भरकम सा लग रहा है, आप इसे सरल तरीके से कैसे समझाना चाहेंगे?
1: जी, बहुत अच्छा जो मैंने सुन रही हूँ शुरू से ही आपने लिया है कि जनवरी में हम लोगों ने बहुत सारे रेजोल्यूशंस लिए हैं, प्रॉमिसेस किए हैं, खुद से किए हैं, लोगों से किए हैं, शायद खुदा से भी किए हैं।
0: फरवरी महीने में भी हमने किया है, जैसे प्रॉमिस डे और भी डेज थे।
1: हाँ जी बिल्कुल। लेकिन बात वही है कि दृढ़ निश्चय कितना है। तो सिंपल वर्ड्स में अगर हम देखें कि दृढ़ निश्चय माना कोई भी चीज पक्का करना, और पक्का करना इतना कि उसके ऊपर हमें पूरा निश्चय भी हो कि हाँ ये मैं करूँगा या करना ही है
0: जी।
1: तो इसको हम कहें कि कोई भी चीज़ जो मैं ठान लेता हूँ या अपने अंदर पक्का कर लेता हूँ, तो उसको हम कह सकते हैं कि दृढ़ निश्चय है। और दृढ़ निश्चय के लिए, जैसे कि हम देखते हैं कि आज जो कमिंग जनरेशन है जिसको हम Gen Z कहते हैं
0: जी,
1: तो इनमें हमने देखा है खास, हालांकि ये पहले से ही हो रहा है, सिर्फ इन जनरेशन में नहीं आया है, उनके फादर मदर उनसे भी पहले से ये चीज शुरू हो गई है कि हमारे अंदर ये दृढ़ता की कमी बहुत ज्यादा आने लग गई है
0: जी।
1: हम बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करने लगे हैं अपने संकल्पों में। जो हम सोचते हैं वो हम बोलते नहीं, जो हम बोलते हैं वो हम करते नहीं हैं
0: जी।
1: तो ये चेंजेस अगर आते हैं तो एक मानवीय जो कैरेक्टर होता है, जो कि बहुत श्रेष्ठ अगर हम किसी का देखते हैं, चाहे वो स्वामी विवेकानंद जी का है या किसी भी व्यक्तित्व जो आज हम देखते हैं जो बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है और बहुत जो लोगों के दिलों पे है, तो उनका हमने देखा है कि दृढ़ निश्चय बहुत ज्यादा होता है
0: जी।
1: वो जो कहते हैं वो करते हैं, जो सोचते हैं वो करते हैं
0: जी।
1: तो एक ये बहुत बड़ा कारण है उनके जीवन का, दृढ़ निश्चय, जिसकी वजह से वो आज जहां हैं उनको आज पूरी दुनिया जो है सम्मान करती है
0: जी। दृढ़ निश्चय मतलब एक मानसिक स्तर पे हम सोच लेते हैं, संकल्प लेते हैं, जैसे आजकल कहते हैं कि आप अफर्मेशंस लो, आप मैनिफेस्ट करो, ये तो हम करते हैं कि हमें ये अचीव करना है, और उसके लिए बोलते हैं कि आप फेक उन चीजों को अपने दिमाग में लूप मोड में रिपीट करो जब तक आप इसको कर सकते हो, मेक कर सकते हो, तो ये तो करते हैं। लेकिन वो जो स्तर है वो सूक्ष्म में है, तो ये स्थूल में क्यों नहीं हो पाता है, प्रैक्टिकल में क्यों अचीव नहीं कर पाता?
1: क्योंकि जितने स्टेटमेंट आपने बोले हैं उसमें कुछ चीजें अगर आप नोट डाउन करें कि पहले ही आपने कहा फेक है, तो आपका माइंड जानता है ये फेक हो रहा है, जबकि माइंड को ये सूचना नहीं देनी है। इट्स अ माइंड गेम, इट इज वेरी साइंटिफिक एंड स्पिरिचुअल टू, कि माइंड को ये सूचना नहीं देना है कि फेक करना है जी, मैं नकली बोल रहा हूँ जी। हालांकि हम ये चीज उसे बोलकर नहीं बता रहे, लेकिन ये अंदर है,
0: सबकॉन्शियस माइंड में है।
1: हाँ, और तभी मुंह से निकला है कि ये फेक हम अभी कर रहे हैं जब तक कि ये अचीव हो जाए। और दूसरा सेंटेंस जो आपने कहा कि ये करेंगे हो जाएगा, लेकिन इसको प्रेजेंटली फील करना होता है कि ये मेरे साथ हो रहा है।
0: ओके, उसको फील करना। हाँ, लेकिन वही माइंड जानता है ना कि फेक कर रहे हैं, लेकिन
1: माइंड जानता है, लेकिन तभी जानता है जब आप इसको कह दो कि फेक कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जो हम देखते हैं, जो बोला गया है कि लॉ है एक दुनिया का जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, गुरुत्वाकर्षण का केंद्र कह सकते हैं, जो धरती के लिए भी बोला जाता है। तो आकर्षण का सिद्धांत ये कहता है कि आप जो सोच रहे हैं या चाहते हैं भविष्य में अचीव करने को, उसको इतना महसूस करें कि वो आपको प्रेजेंट में फील होने लगे कि वो आप कर रहे हैं।
0: जी,
1: फॉर एग्जाम्पल, जो एक रियल एग्जाम्पल भी था इसमें, कि एक व्यक्ति थे और उनका जो बेटा है वो बेसमेंट में जाता है, विदेश में बेसमेंट में स्टोर होता है
0: जी।
1: तो बच्चा नीचे जाता है और नीचे कुछ गंद सा बहुत पुराने टाइम का एक बास्केट है, डब्बा है, कार्टन टाइप है, उसको वो खोलता है कि क्या है इसमें। बच्चा छोटा ही है, अभी 5-7 साल का होगा, तो उसमें से वो एक पिक्चर उठाकर ले आता है जो पिक्चर उसके घर की है जिसमें वो रह रहा है
0: जी।
1: तो वो मिट्टी मिट्टी हो रखा था, तो उसको बहुत वो क्लीन करता है कि मेरे घर का पिक्चर इतना सुंदर है, यहाँ क्यों पड़ा है। तो वो बहुत कॉन्शियस है पापा से पूछने के लिए कि ये गंद में क्यों पड़ा है। तो वो ऊपर जाता है और पापा से पूछता है कि पापा ये नीचे क्यों है
0: जी।
1: तो पापा थोड़ी देर के लिए सुन हो जाते हैं और सुन होने के बाद बच्चे को एक कहानी सुनाते हैं कि बच्चे आज से 20 साल पहले
0: जी,
1: या कुछ साल पहले, एग्जैक्टली नॉट द 20 लेकिन कुछ साल पहले, काफी साल पहले, जहां मैं शून्य पे खड़ा था, तो तब मैंने ये घर देखा था, ये पिक्चर मुझे मिली थी
0: जी,
1: और ये पिक्चर मैंने अपने बेड के आगे लगा दी थी
0: जी,
1: ठीक है। और उसके बाद डेली जब उठता था, इस घर का देखता था और विजुलाइज करता था, मैं इस घर में घूम रहा हूँ और वो जो सी शोर फेसिंग था ऐसा कुछ, तो मैं वहां खड़ा हूँ और समुद्र की लहरों को देख रहा हूँ। और वो घर फिर उसके बाद मैंने बहुत मेहनत भी की, ऐसा नहीं कि सिर्फ सोचा, देखा, विजुलाइज किया, मैंने डाई हार्ड मेहनत की है और आज मैं उसी घर में खड़ा हूँ।
0: ओके,
1: तो यू हैव टू फील इट कि इट इज गोइंग ऑन प्रेजेंटली, वो मेरे साथ अब भी हो रहा है, ये माइंड को सूचना देना बहुत जरूरी है
0: जी।
1: उसके लिए आपको विजुअलाइज, सिर्फ बोलना इज नॉट कंप्लीट टास्क, यू हैव टू फील इट
0: जी।
1: ठीक है, कोई भी चीज अगर जिसको एफर्मेशन आप वर्ड दे रहे हैं, यू डोंट हैव टू अटर दैट कि आपने रिपीट कर लिया बार बार, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन अंदर से आंसू आ रहे हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही फेक है और आपको खुद भी फील हो रहा है और माइंड को पता नहीं फेक हो रहा है, क्योंकि इमोशंस उसके अकॉर्डिंग नहीं है
0: जी।
1: यू हैव टू क्रिएट द इमोशंस अकॉर्डिंग टू दैट कि वाकई में मैं बहुत खुश हूँ,
0: तो उसके लिए कुछ करना होगा।
1: हाँ, उसके लिए विजुलाइज करना स्टार्ट कर दीजिए। आप किस चीज से खुशी होती है कि गुलाबों के बीच में मैं बैठा हूँ, गार्डन में हूँ, अगर आपको गार्डन पसंद है। लेकिन अगर आपको खेलना पसंद है, तो बहुत सारे बच्चों के बीच में हूँ, क्रिकेट खेल रहा हूँ, एंड आई एम एंजॉइंग,
0: ओके,
1: आई एम लिविंग द बेस्ट,
0: उसको विजुलाइज करना।
1: विजुअलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट और इमोशंस उसके अकॉर्डिंग जनरेट हो वो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि हाँ बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन तीन चीजें कि जो आपने बोला वही आप देखें और वैसा ही फील करें। ठीक है, जैसे मैंने बोला मैं बहुत खुश हूँ पर मेरे चेहरे पे एक भी स्माइल ही नहीं है, तो मेरा जो इमोशन है वो मैच नहीं हो रहा है। ठीक है, तो मेरे को फील करना है कि यस मैं बहुत खुश हूँ, मेरे पास कोई रीजन नहीं है, लेकिन यू हैव टू क्रिएट इट। मैं खुश हूँ बिकॉज आई एम अलाइव, मैं खुश हूँ बिकॉज मैं आपके साथ हूँ, रेडियो में हूँ, लोगों के बीच में हूँ, आई एम वेरी हैप्पी। तो यू हैव टू क्रिएट दैट इमोशन। तो ये जो टास्क होगा जो 10 साल में होने वाला है वो बहुत फास्ट होगा।
0: जी, तो कुछ और चीजों के बारे में पूछने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जैसे हम खुश रहने की बात कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये
1: जी।
0: बाकी चीजें तो अचीवमेंट्स है, स्थूल रूप में जॉब, ये सब हम कोशिश करते हैं और मिल भी जाता है, लेकिन खुश रहना बहुत इंपॉर्टेंट है और हम चाहते हैं हर दिन खुश रहें जो भी परिस्थिति हो, लेकिन नहीं रह पाते। तो जब परिस्थिति ऐसे हो प्रैक्टिकल लाइफ में
1: जी,
0: किसी की डेथ हो गई, परिवार में झगड़ा चल रहा है, कोई जमीन वगैरह की विवाद चल रहे हैं, तो उस बीच में कैसे खुश रह सकता है कोई?
1: जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मेरा सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस मैं किसी की डेथ का ही दूंगी, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो लौट के नहीं आती है
0: जी।
1: क्योंकि जो जमीन का विवाद है उसमें भी कुछ ना कुछ हल निकल जाता है या कहीं ना कहीं रास्ता मिल जाता है, चाहे जमीन नहीं मिलती है लेकिन कुछ तो मिलता है, नहीं मिलता है तो कम से कम एक तसल्ली मिलती है, लेकिन स्टिल यू आर अलाइव। लेकिन जब व्यक्ति ही जीवन से चला जाता है तो ये एक बहुत बड़ा धक्का है किसी के लिए। लेकिन उस समय भी हम ये जरूर सोच सकते हैं कि जो जैसे स्पिरिचुअल कंसेप्ट जो होता है, जो हम ब्रह्मा कुमारीज में भी समझाते हैं, और सिर्फ ब्रह्मा कुमारीज में नहीं पूरे वर्ल्ड वाइड में है, आप शास्त्रों में देखें, आप बाइबल में देखें, कुरान में देखें, तो सदा ही ये लिखा गया है कि जो मेरा था वो शारीरिक रूप में जीवित नहीं है, ओके फाइन आई लॉस्ट हिम, ठीक है, या हर, लेकिन वो जिंदा है
0: जी।
1: ये मानना एक खुशी दे देता है। जब हम किसी ऐसे घर में जाते हैं, सीरियसली जब हम किसी से मिलते हैं जिसका नियर एंड डियर वन जिन्होंने शरीर छोड़ा होता है, तो हम उनको यही कहते हैं कि वो जिंदा है। बस उन्होंने घर चेंज किया है। और अगर जैसे एक माता पिता होते हैं और उनका बच्चा जब बहुत ज़्यादा पढ़ लिख जाता है, विदेश में जॉब लग जाती है, तो माता पिता को खम्मी तो खलती है
0: जी।
1: लेकिन दे फील हैप्पी कि हाँ मेरा बच्चा विदेश में डेवलपमेंट कर रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है।
0: तो ये एक थॉट अपने मन में लाना बहुत जरूरी
1: है। लेकिन उसके लिए थर्ड पर्सन ही जो है वो ज़्यादा हेल्पफुल होता है, सेकेंड पर्सन थर्ड पर्सन वो ज़्यादा हेल्पफुल होता है, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा इमोशनली वीक एंड डाउन है। तो उस समय हम उनको यही बोलते हैं कि वो जिंदा है, बस घर छोड़ा है, किसी और के घर में प्रवेश किया है, वहां ढोल नगाड़े बज रहे हैं लेकिन आप रो रहे हो और ये बहुत बड़ा अपशगुन है। तो जब ये बात वो पूरी तरह से अंडरस्टैंड करते हैं, दे अंडरस्टैंड्स कि आपका बेटा वहां जन्म ले रहा है और वहां तो बड़े नगाड़े बज रहे हैं, बड़े ढोल ताशे शुरू हो चुके हैं और आप यहाँ रो रहे हो, तो वहां उसके लिए अपशगुन क्रिएट होगा।
0: ओके,
1: और वहां क्या हो सकता है उसके साथ प्रॉब्लम, वो आप यहाँ नहीं जान सकते क्योंकि हमें नहीं पता वो किस घर गया, लेकिन गया है। तो जब ये चीज वो समझते हैं तो दे ट्राई टू स्टॉप देमसेल्फ, एटलीस्ट कम होता है उनका,
0: क्योंकि जो जाता है उसको हमें हैप्पी जर्नी, सेफ जर्नी जो हम कहते हैं,
1: यस,
0: तो दिल से निकल।
1: हाँ, तो हम यही उनको बोलते हैं कि जैसे अभी हाल ही में अगर डेथ हुई है एक दो दिन में, तो हम उनको यही समझाते हैं कि 13 दिन तक 15 दिन तक सोल जो है वो आसपास है, आप रोकर दूसरे व्यक्ति के साथ दुख साझा कर रहे हैं, ठीक है, आप रो रहे हैं, आपको दुनिया समझा रही है, आपके पास कोई है जो आपके साथ बैठा है, ठीक है, आपका रोना देख रहा है, लेकिन उसके पास कोई नहीं है, वो आपको देख रहा है और वो बहुत रो रहा है क्योंकि वो अपना रोना आपको शेयर भी नहीं करा सकता, आपको चुप भी नहीं करा सकता। तो इसीलिए आपको उसको फील करके ये याद रखिए कि आपको रोता हुआ देख कर वो कैसा कर रहा होगा फील। तो जब ये बात भी वो समझते हैं कि हाँ मेरे रोने से नेचुरली मेरे से प्यारा था, चाहे वो जवान बेटा है, चाहे वो पति है या पत्नी है, तो जब वो ये चीज समझते हैं तो भी उनको थोड़ा सा लगता है कि हाँ कि मुझे थोड़ा मतलब जो है कंट्रोल अपना करना चाहिए। तो उसके बजाय, क्योंकि वो जा रहा है, उसको जाना ही पड़ेगा बिकॉज अभी वो उस मोड पे है
0: जी।
1: तो जब कोई घर से जाता है तो आप उसको गंदा बक्सा, गंदे कपड़े, गंदे खाना, ये बासी खाना ऐसा पैक करके देंगे?
0: बिल्कुल नहीं।
1: जब भी जाएगा तो आप उसको बढ़िया बेस्टेस्ट आप देंगे। तो अभी भी वो जा रहा है तो यू हैव टू गिव योर बेस्टेस्ट कि बेस्ट फीलिंग्स, बेस्ट थॉट्स जो भी है, उसको एनर्जी की जरूरत है बिकॉज ही इज इन अ चेंज मोड। और जब हम चेंज मोड में होते हैं तो हमें एनर्जी चाहिए होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका प्रमोशन भी हुआ है, यू आर बिकमिंग द बॉस ऑफ दिस एफएम, ओके, तो भी आपको एनर्जी चाहिए
0: जी।
1: यू हैव टू अंडरस्टैंड द थिंग्स मोर, आपको और पेशेंस चाहिए, तो एनर्जी चाहिए होता है। तो ही इज ऑल्सो चेंजिंग द प्लेस, हर चीज चेंज होने वाला है, उसका कॉस्ट्यूम, उसका रिलेशंस, उसका घर, उसका प्लेस, उसकी ओनरशिप, हर चीज चेंज हो रही है। तो ही नीड्स द एनर्जी मोस्ट, उसको उस टाइम बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। तो जब ये चीज भी समझते हैं जब वो, तो फिर वो अंडरस्टैंड करते हैं। हालांकि ऐसा मैं नहीं कहती कि वेरी फर्स्ट डे ही वो रोना बंद कर देते हैं, लेकिन फिर भी वो संभलते हैं
0: जी। बिल्कुल, तो ये संकल्प जो है ये बहुत ज़रूरी है। इस 2026 शुरुआत में ही हमें ये सारी चीज़ें दीदी से जानने को मिला कि कैसे कोई पर्सनल लॉस है, कोई चला गया है आपके लाइफ से, तो किस तरीके से आप उसके साथ सूक्ष्म रूप में, स्थूल रूप में पेश आएंगे, कैसे थॉट्स आप क्रिएट करेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी है। आइए जानते हैं दृढ़ निश्चय के बारे में। डिटर्मिनेशन बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में कोई भी चीज़ अचीव करने के लिए। तो दीदी से जानना चाहूँगी कि बहुत से श्रोता हैं और जो भी हमारे दोस्त जॉब करते हैं तो ये कहते हैं कि 2-3 बार असफल होने के बाद वो हार मान लेते हैं
1: जी।
0: तो असफलता के बाद भी दृढ़ निश्चय को कायम रखना कितना ज़रूरी है और कैसे रखें?
1: अब इसके लिए तो मैं यही कहूँगी कि बस 4 घर मिलाइए,
0: 4 लोगों
1: से,
0: ओके,
1: और किसी का भी पता कर लीजिए जो कई बार असफल ना हुआ हो, एक ही बार में टॉप लेवल पे, हर चीज़ में टॉप लेवल पे रहा हो, ऐसा कोई व्यक्ति आपको नहीं मिलने वाला है
0: जी।
1: सबके साथ फेलियर्स अटैच्ड हैं, ठीक है, जैसे हम देखते हैं कि जिन्होंने बल्ब इजाद किया है तो वो 10,000 बार फेल हुए हैं
0: जी,
1: ठीक है, तो एक बहुत बड़ी संख्या है जो हम समझ सकते हैं। हम तो 10 ही बार हुए हैं, लेकिन क्या 10 बार फेल हुए तो फिर क्या लगे रहें? यस, लगे रहें इफ़ यू थिंक द थिंग इज़ राइट, कि जो मेरा लक्ष्य है वो सही है, मैं सही दिशा पे हूँ, तो लगे रहने में कोई बुराई तो है ही नहीं। इसीलिए फेलियर हो रहा है तो ये भी एक चैप्टर है जो मुझे समझना है। तो जो एडिसन वॉटसन थे उन्होंने भी यही कहा था कि 10,000 बार फेल होने से मुझे ये पता चला कि 10,000 तरीके जो मैंने यूज किए थे उससे बल्ब नहीं बनता, उससे बल्ब नहीं जलता
0: जी।
1: तो उन्होंने उस फेलियर को भी चैप्टर काउंट किया कि इट वाज अ लेसन फॉर मी कि इससे बल्ब नहीं जलेगा।
0: राइट,
1: ओके। तो अगर हम हर फेलियर को फेलियर वर्ड ना लें, दिस इज अगेन द फर्स्ट जो हमने बात किया कि मैं वर्ड्स को कैसे ले रहा हूँ। आई हैव गिवन माई माइंड कि मैं फेल हो गया हूँ, तो माइंड उसको और इमोशनली मुझे डाउन कर देगा।
0: ओके, डिप्लीट होता है तो उसमें कोई मतलब हार्मोन्स और ये सब
1: सब कुछ पता नहीं, मल्टी मिलियन सेल्स हैं, आप गूगल कर सकते हैं कितना, वो सारे सेल्स आपके एक वर्ड से चेंज होने लग जाते हैं, वो सारे सेल्स नेगेटिवली चार्ज होने लगते हैं, हार्मोन्स भी नेगेटिव होने लगता है, सारा जो केमिकल सिक्रेशन है, आपका स्टमक है, सब कुछ नेगेटिव होने लगता है। और अगर आप बहुत दिन तक हैं तो डॉक्टर्स के पास जाना ही पड़ जाता है। तो इट्स अ वेरी बिग आपका साइन है ये
0: जी,
1: कि आप फेलियर फेलियर फेलियर में ही सोच रहे हैं, तो डॉक्टर फिर मेडिसिन देने लगता है कि बच्चा ये खाओ। फिर धीरे धीरे डिप्रेशन आ रहा है, तो दैट मीन्स यू आर चार्जिंग योर बॉडी फुल्ली नेगेटिव, आपने कर दिया है। तो इसीलिए फेलियर को फेल कहकर माइंड को नहीं खिलाएं, उसको यही कहें कि इट वॉज अ चैप्टर एंड आई लर्न्ड इट,
0: ओके,
1: तो फिर मुझे आगे बढ़ना है। जैसे कहा कि लक्ष्य मेरा सही है तो मुझे आगे बढ़ना है
0: जी।
1: हाँ, लक्ष्य में मुझे अगर लगता है कि नहीं, तो फिर सलाह लेकर के हम आगे बढ़ सकते हैं, या जो उस लक्ष्य को प्राप्त कर चुके हैं मैं उनसे सीख सकता हूँ, सीख करके फिर मुझे आगे बढ़ना है
0: जी।
1: तो इसलिए अभी जो मुझे करना है कि विशेष जो मेरा फेलियर आ रहा है, आगे भी होगा। लाइफ इज लाइक अ फेलियर एंड सक्सेस मिक्सचर है। कोई भी व्यक्ति एक बार में कोई भी टॉप पे नहीं बैठा है, कोई भी नहीं, चाहे वो विवेकानंद स्वामी जी हैं, चाहे वो हमारे प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर, कोई भी एक बार में ऊपर नहीं पहुंचा है
0: जी।
1: इनफैक्ट भगवान भी अगर हम देखते हैं तो वो भी पूरी दुनिया से गालियां जो हम देखते हैं वो इंसानों से खा रहे हैं, ठीक है, लेकिन भगवान भी फिर उनको अपना बच्चा समझ करके माफ करके आगे बढ़ते हैं, इसलिए ही इज वेरी पॉजिटिव
0: जी।
1: और हम भगवान तक को गाली दे रहे हैं इसलिए आई एम टोटली नेगेटिव। इसलिए अपना चेंज करना, इट्स टाइम टू चेंज आवर सेल्फ
0: जी,
1: कि मैं अपना वर्ड्स क्या बोल रहा हूँ, मैं सोच कैसा रहा हूँ, मैं देख क्या रहा हूँ, मैंने फेलियर सोचा है और अपने कमरे में फिर वही ऑरा एंड वही जो है मैं वाइब्रेशंस रिलीज कर रहा हूँ, तो वो मुझे वापस टकराएगा क्योंकि मैं बंद कमरे में हूँ। हाँ, ओपन में बैठा हूँ तो ओपन जैसे गार्डन या टॉप ऑफ द हिल बैठा हूँ और वहाँ कुछ सोच रहा हूँ, तो जो नेचर है वो मुझे गुड वाइब्स भेजती है आज भी, ठीक है, हालांकि नेचर बहुत डिस्टर्ब है लेकिन अब भी उसमें बहुत पावर है। तो जब ऐसा डाउन फील करते हैं तो जो चीज आपको पसंद है, पेट्स हैं, डॉग्स हैं, स्ट्रीट डॉग्स हैं, कुछ भी है, आपको क्रिकेट पसंद है, आपको टीवी पसंद है, आपको खाना पसंद है, हैव इट, उसके साथ बैठे और फेलियर को यही चैप्टर है और अब मुझे आगे बढ़ना है।
0: ओके, जैसे आज हम एक कॉलेज में गए थे तो कुछ स्टूडेंट्स ने ये शेयर किया कि फेल हो गए 10वीं में, 12वीं में, सुइसाइडल जो थॉट्स थे वो भी आए कि सुइसाइड कर लेते हैं क्योंकि ताना मारने लगते हैं लोग पड़ोसी, लेकिन उन्होंने ओवरकम किया और आज वो पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हर बच्चे के साथ ऐसा नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे केसेस हम देख रहे हैं कि जस्ट कुछ परसेंटेज के कुछ मतलब 0.01 भी कम है तो भी वो लोग ये कदम उठा लेते हैं। तो उनको कैसे, क्या कहेंगे, कैसे दृढ़ निश्चय के साथ फिर से चैप्टर शुरू करें नए?
1: इसमें बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं जो मैं समझती हूँ, क्योंकि मेरे 99.9 आए हैं लेकिन मेरा उम्मीद था कि 100 आ जाए, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हैं कि मेरा जो मैंने मेरी मम्मी पापा ने मेरे लिए सोचा था, ठीक है, तो पेरेंट्स का बहुत बड़ा एक रोल होता है बच्चों के लिए। बच्चों के लिए हमेशा पेरेंट्स को बोलना चाहिए, जो मैंने अभी एक देखा था, मैं कहीं गई थी, आई फॉरगॉट द प्लेस, लेकिन वहाँ साइंटिस्ट हैं, मम्मा भी साइंटिस्ट हैं, फादर भी साइंटिस्ट हैं
0: जी।
1: और उन्होंने अपने बेटे को बोला हुआ है, ही वाज इन 10th आई गेस, तो उन्होंने अपने बेटे को बोला था डोंट टेक द टेंशन, बच्चा थोड़ा स्ट्रेस में था बिकॉज ऑफ द मैथ्स
0: जी।
1: तो मम्मी पापा तो बहुत इंटेलिजेंट है, हेल्प भी होती ही होगी, स्टिल ही वाज नॉट सो गुड इन मैथ्स, तो वो इतना स्ट्रेस में था और नहीं पता, वो अपने मम्मी पापा को पूरा शेयर नहीं किया एंड ही डाइड, ही जंप्ड आउट ऑफ द बिल्डिंग। तो पेरेंट्स शॉक में है क्योंकि उन्होंने कह दिया था कि स्ट्रेस नहीं लेना
0: जी।
1: तो ऐसे भी बच्चे हैं, लेकिन चीजें फिर भी जुड़ी हुई हैं, एक अकेले का थॉट उसके साथ काम नहीं कर रहा है। पेरेंट्स हैं लेकिन वो बहुत हायर लेवल पे बैठे हैं, साइंटिस्ट हैं, बच्चा देख रहा है कि भाई मैं तो जीरो हो रहा हूँ और मेरे मम्मी पापा क्या है, तो वो गैप को फील करना एक बहुत बड़ी जरूरी है
0: जी।
1: मेरे पापा बहुत बड़े मल्टीनेशनल कंपनी के मालिक हैं, आई एम डूइंग नथिंग, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा स्ट्रेस की बात हो जाती है
0: जी।
1: फिर मेरा फ्रेंड सर्कल क्या बोल रहा है, तेरे मम्मी पापा तो साइंटिस्ट है
0: जी।
1: और तू ऐसा तो ये क्या चल रहा है। तो वो अकेले नहीं होता है जब वो ऐसे थॉट्स में पहुंचता है, बहुत सारी चीजें जुड़ी हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि बच्चे डिस्कस कई बार करते हैं, कई बार नहीं करते हैं
0: जी।
1: कुछ स्ट्रांग होते हैं कि खुद ही कोप अप कर लेते हैं, कुछ नहीं होते हैं। लेकिन मेरी यही रिक्वेस्ट है कि शेयर करें
0: जी।
1: अगर मेरे कम मार्क्स आए हैं, जीरो आए हैं, तो भी मुझे शेयर करना है, क्योंकि लाइफ मुझे पढ़ाई में जीरो चाहती है, शायद स्पोर्ट्स में हीरो चाहती है। लेकिन हो सकता है मैथ्स में जीरो चाहती है, लेकिन कॉमर्स सेक्शन में टॉपर बनाना चाहती है। लाइफ कभी भी किसी को जीरो नहीं देती, कभी भी नहीं। हमने बेगर्स भी देखे हैं जो करोड़पति निकले हैं। तो लाइफ कभी किसी को जीरो नहीं देती है, ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि परमात्मा की वाणी है कि मेरा हर बच्चा, नालायक से नालायक भी, मैंने उसको एक गुण जरूर दिया है, यानी उसके लिए उसको दिया है ताकि वो सर्वाइव कर सके। इसीलिए अगर मैं ऐसे मोड पे हूं तो आई मस्ट शेयर, ठीक है, किसी से भी जिससे आप अच्छा फील करते हैं। और मेरा कोई शेयरिंग सर्कल नहीं है, हेल्दी सर्कल नहीं है, तो फिर आप गॉड से बात करें। लेकिन लोगों को गॉड से बात करने में सबसे ज्यादा टफेस्ट लगता है।
0: तो गॉड को कुछ और रिलेशनशिप,
1: फ्रेंड फ्रेंड, लेकिन वही है, ये लिंक लाने में ना टाइम लगता है, एक दिन से तो नहीं बनता है। तो इसीलिए हम उन्हें कहते हैं थोड़ा स्पिरिचुअल बने, स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े, या कुछ भी। आज ऑनलाइन इतना कुछ अवेलेबल है, दे डोंट नीड टू गो एनीवेयर। कोई टेंपल में जाकर आपको मेंबरशिप नहीं लेने की जरूरत है, या कहीं भी नहीं। आप गूगल करें एंड यू कैन गेट द वर्जन्स, यू कैन गेट द टाइप ऑफ मेडिटेशन।
0: एआई से भी बात कर सकते हैं,
1: बिल्कुल कर सकते हैं, बट मैं उसको उतना अच्छा नहीं लेती हूँ, बिकॉज इतनी दुनिया में इंसान है एंड स्टिल आई एम टॉकिंग टू अ कंप्यूटर। तो मेरा लेवल जो आगे जाए,
0: इंसान ढूंढना बहुत जरूरी है,
1: बहुत जरूरी है हमारी लाइफ में, है हमारी लाइफ में, यू हैव टू चेक। पर मैं नहीं कर रहा हूँ, ये भी एक बहुत बड़ी मिस्टेक है कि मैं नहीं कर रहा हूँ,
0: क्योंकि हम शायद इंसानों को फेस करना नहीं चाहते।
1: हाँ, कर नहीं पा रहे हैं, करना नहीं चाहते हैं, उन्हें अपनी बात बताने से डरते हैं कि कहीं लीक आउट ना हो जाए।
0: लीक आउट के साथ साथ वो जज करते हैं हमें, उस तरीके से देखते हैं। हाँ, हर बार,
1: बिल्कुल, तो इसलिए एआई से बेटर है भगवान, कहीं ज्यादा बेटर।
0: राइट राइट, कोई तुलना ही नहीं है,
1: कोई तुलना ही नहीं है, क्योंकि एआई कहीं ना कहीं एक ह्यूमन मेड ही है। और इसका जो आज भी साइंस से कहता है कि वो एआई जो है वो बहुत एक बुरा जो है जगह बनाने वाला है, एक डिजास्टर क्रिएट कर देगा, एक आने वाले टाइम में बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है
0: जी, क्योंकि सबकी इंफॉर्मेशन से,
1: यस, सबकी इंफॉर्मेशन है। तो इट्स बेटर टू क्रिएट, मतलब एक हेल्दी सराउंडिंग, हम फ्रेंड सर्कल बना लें, ठीक है। लोग तो अपने डॉगी से भी बात करके खुश हो लेते हैं, ठीक है ना। तो यू हैव टू क्रिएट समथिंग, यू हैव टू फाइंड अ प्लेस कि कहां आप अपना शेयर कर सकते।
0: भगवान जवाब देते हैं क्या?
1: बिल्कुल देते हैं,
0: तुरंत, जैसे एआई देता है
1: तुरंत चाहिए तो, तुरंत चाहिए तो, जैसे एआई आपके लिए एक्सेस इजी कर लिया है, आपने
0: अब प्रैक्टिस करके किया है,
1: किया है, है ना। फॉर एग्जांपल, अगर मैं मोबाइल में नेट ही रिचार्ज नहीं कर रहा हूं, तो फिर मैं एआई से कुछ मांग सकता हूं?
0: नहीं
1: नहीं। तो आई हैव डन समथिंग टू गेट द एआई, तो भगवान के आंसर्स लेने के लिए मैंने कुछ किया है। वो तो मैं चाहता हूँ तुरंत दे दे, पर मैं कुछ ना करूँ, तो ऐसा नहीं,
0: मेरे लाइन भी क्लियर होना चाहिए,
1: मेरे जवाब आने चाहिए, मैं कुछ नहीं करूँ, ऐसा नहीं होता, दुनिया में नहीं होता। आपको कुछ करना ही पड़ता है। एक डॉगी भी, उसको आप रोटी देते हैं तब वो पूछ लाता है।
0: राइट,
1: इसलिए कुछ तो करना होगा, तो आपको आंसर जरूर मिलते हैं
0: जी। जी, उसके बारे में तो हम आगे जानते रहेंगे। अभी मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जैसे अगर किसी युवा का सपना अलग है, उसके घर वाले अलग चाहते हैं, जैसे हम थोड़ा बहुत बात भी कर चुके हैं इसके बारे में, तो फिर क्या करें, कैसे समझाएं, कैसे दृढ़ निश्चय रखें उस परिस्थिति में?
1: मैक्सिमम हम देखते हैं कि युवा जो है वो थोड़ा हटके ही पेरेंट्स से सोचती है। कई युवा इसका बहुत अच्छा कर भी लेते हैं, जैसे अब मैं क्या नाम लूं, बहुत सारी हस्तियां हैं समाज में, हम देखते हैं कि जिन्होंने पेरेंट्स ने कुछ और सोचा था, लेकिन भाई ने या बहन ने, जो भी बच्चे ने हैं, वो डिफरेंट सोचा है और बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच गए हैं। लेकिन कई हम जिनके हमारे पास न्यूज़ नहीं है, कई ऐसे भी हैं जो पेरेंट्स के अगेंस्ट गए हैं और गड़बड़ हो गई है
0: जी, जी।
1: उनका लाइफ ही थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है। तो इसीलिए मेरा ये जो मानना है कि ठीक है, अगर आप पूरे दृढ़ संकल्पधारी हैं, आपको पक्का है कि आई विल डू इट 100%, तो कि फिर आप वो संकल्प को पूरा करने का अपने पेरेंट्स को भी, मैं तो कहूँ कि उनको समझाएं,
0: कन्विंस करें,
1: कन्विंस करने की ताकत रखें। लेकिन जो इंडियन टेंडेंसी है कि पेरेंट्स जल्दी कन्विंस नहीं होते हैं, दैट्स ट्रू, आई अग्री। लेकिन ये है कि कोशिश करें कि मम्मी को कन्विंस कर लें, क्योंकि मम्मियाँ हो जाती हैं। तो पेरेंट्स को जरूर आपकी पता हो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि समाज आज की डेट में सेफ नहीं है। इसलिए एक पेरेंट को जरूर अपने उसमें कॉन्फिडेंस में रखें, पापा भी मान जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको अगर पूरा पक्का 100% है कि मैं ये करूंगा, तो फिर पेरेंट्स को बोलकर आप उस चीज को जरूर पक्का पूरा कीजिए। लेकिन अगर आपको ही 100% नहीं है, तो फिर आपको थोड़ा सा पेरेंट्स को साथ में लेकर चलना चाहिए, उनकी भी बात माननी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू प्ले क्रिकेट, लेकिन दे आर फोर्सिंग मी टू फॉर द गवर्नमेंट जॉब्स, तो आप पढ़ें भी
0: जी,
1: लेकिन क्रिकेट भी खेलें। ठीक है, क्रिकेट खेलने के भी वो भी टाइम देंगे, अगर वो देख रहे हैं कि आप पढ़ रहे हैं तो आपको वो क्रिकेट खेलने के लिए भी भेजेंगे। वो इतने भी नहीं है कि भाई नहीं जी पढ़ो ही, क्रिकेट को फेंकी दो, ऐसा नहीं है, कोई भी पेरेंट ऐसा नहीं है आज की डेट में। इसलिए पैरेलल में अगर लेके चलते हैं वो सबसे बेस्टेस्ट है
0: जी।
1: तो आप जहाँ अपना बढ़िया बेस्ट करेंगे तो वहाँ आप आगे बढ़ सकते हैं। आपने क्रिकेट में अगर दिखाया कि आई कैन बी द टॉपर, ठीक है, अर्जुन अवार्ड या जो भी अवार्ड, आई डोंट नो मच अबाउट इट, तो जो भी आप चीज़ हासिल करेंगे तो फिर वो आपके साथ आ ही जाएंगे, रह ही जाएंगे
0: जी। बात क्रिकेट की हो रही है तो मैं पूछना चाहूंगी कि कई बार समाज तुलना करते हैं, आजकल तो बोलते हैं देखो वो लड़की कितना अच्छा क्रिकेट खेल रही है और तुम नहीं खेल पा रहे हो, तुम क्रिकेट में नाम नहीं कमा पा रहे हो, क्योंकि अभी आईपीएल भी है, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है इंडिया के लिए, तो आप नहीं कर पा रहे हो, तो उस समय कैसे रिएक्ट करना चाहिए, क्या रिस्पॉन्ड करना चाहिए?
1: बिल्कुल बिल्कुल, ये इंडियन पेरेंट, मैं यही कहूंगी, लेकिन हैट्स ऑफ टू देम, मैं सलाम करती हूँ इंडियन पेरेंट को, क्योंकि इंडियन पेरेंटिंग जैसी पेरेंटिंग मैंने पूरे विश्व में नहीं देखी है।
0: बिल्कुल,
1: उनके ताने ही हमारे आगे जाने का रास्ता है, जो मेरे साथ है। ताने किसको नहीं मिले हैं, सबको मिलते हैं। वो माँ बाप शायद इसी, जो कहें तलवार है उनका, यही उनका चाकू है, यही उनका तीर है, जिससे फिर वो बोल बोल के अपने बच्चे को तैयार कर रहे होते हैं आगे के तानों के लिए। अगर हम अपने पेरेंट्स के ताने सह जाते हैं तो समाज ताना नहीं देगा, और अगर पेरेंट्स के ताने हमसे सहे नहीं जा रहे हैं तो बी रेडी फॉर द समाज, वो ताना जरूर देगा। तो इसलिए पेरेंट्स को ऐसा नहीं समझिए कि वो शत्रु हैं, उनके ताने भी अगर वो आपके लाइफ के लिए, मैं देखती हूँ कि आपका मोटिव अचीव करने के लिए कह रहे हैं, तो उनके ताने भी फूल हैं। आप उनके तानों को समझिए कि वो क्यों दे रहे हैं, वो आपको कुछ बनाना चाहते हैं, वो आपका बिगाड़ने के लिए ताना नहीं दे रहे हैं। माएँ कहेंगी घुसा रहे मोबाइल में, यू नो ना मोबाइल में घुसने से तो लाइफ में कुछ बनेंगे नहीं। लेकिन हाँ, आज टिकटॉकर भी बहुत सारे रील्स बना करके लाखों कमा रहे हैं,
0: राइट,
1: ठीक है ना। लेकिन जब आप लाखों कमा रहे होते तब तो नहीं वो ताना दे रहे,
0: नहीं,
1: ठीक है ना।
0: अब बोलते क्या मोबाइल पे घुसे रहते हो, लेकिन जब रील्स बनाते जो पैसे आते हैं और अच्छे क्रिएटिविटी के साथ रील्स बनाते हैं।
1: कॉमेडियन सेड सो कि पहले मैंने छुपाया था कि मैं कॉमेडी करता हूँ, तो मेरे मम्मी पापा को लगता था जॉब जाता है, और मैं जॉब जा भी रहा था। लेकिन जब कॉमेडी में पैसे आने लगे तो पेरेंट्स को जब मैंने दिया तो उन्होंने पूछा क्या करते हो आप, तो बोला मैं कॉमेडी करता हूँ। तो पेरेंट्स ने कहा कि कुछ भी करो, बस पैसे कमा रहे हो तो ठीक है। तो अब वो आ गए ना आपके ट्रैक पे, तो इट्स नेसेसरी कि यू आर प्रोग्रेसिंग। तो पेरेंट्स कहीं नहीं जाते, वो आपके साथ ही आएंगे।
0: जी जी बिल्कुल, तो अगर आपको विश्वास है अपने ऊपर और आप दृढ़ संकल्प रखते हैं तो आगे बढ़ते जाइए, सब एक्सेप्ट करेंगे आपको। तो दृढ़ संकल्प और जिद, तो इस दोनों में क्या अंतर है? जिद करके हम बहुत सारी चीज़ें अचीव करना चाहते हैं, लेकिन कई बार जैसे आप कहते हैं, कह रहे थे कि असफल भी हो जाते हैं, मम्मी पापा की बात नहीं मानते, तो दोनों में क्या अंतर है और कैसे पहचाने?
1: कैसे पहचाने? जिद आप देखिए नेगेटिव है, और दृढ़ संकल्प उसका ऑपोजिट है, टोटली पॉजिटिव है, ठीक है ना। तो मेरी दृढ़ निश्चय कब जिद बन जाती है, तो ये कई बार मुझे नहीं पता चलता, लेकिन मेरा सराउंडिंग मुझे बताता है। क्योंकि जो जिद है वो ईगोइस्टिक है
0: जी,
1: और जो दृढ़ संकल्प है वो नॉन ईगोइस्टिक है। तो लोग मुझे बता देंगे कि आप, वो बोलेंगे पीठ पीछे भी बोलेंगे, मुंह पे भी बोलेंगे कि क्या है आपकी तो जिद है। तो ठीक है, एक ने का इट्स ओके, दो ने का इट्स ओके, लेकिन इफ एवरीवन इज सेइंग
0: ओके,
1: तो फिर समझ जाइए कि मैं ये बहुत ज्यादा रिजिडनेस क्रिएट कर रहा हूँ अपने में,
0: अगर हर कोई वही सेम फीडबैक दे रहा है।
1: हाँ, सेम फीडबैक दे रहा है। दूसरा, आपको वो रिस्पॉन्स गलत दे रहे हैं, यानी उतना वो आपके साथ मधुर बिहेवियर नहीं है उनका, और आपको भी लग रहा है कि मैं अपनी चीजों को जो कर रहा हूँ तो उसमें मुझे निगेटिव ज्यादा फील होता है। आपको भी होगा, लेकिन प्रॉब्लम बस यही होती है कि मुझे नहीं पता चलता है कई बार
0: जी।
1: तो आपका सराउंडिंग आपको बताता है, कुछ चीजें जो आपके साथ हो रही हैं वो आपको इशारा करती हैं कि जो ट्रैक है वो थोड़ा सा टिल्ट हो गया है
0: जी,
1: यानी पॉजिटिव से हल्का सा नेगेटिव की ओर अग्रसर हो रहा है, तो चीजें आपको बताती हैं, लेकिन चाहिए महसूस करने की शक्ति। इतना ओपन माइंडेड बनिए कि अगर किसी ने व्यू दिया है तो उसके व्यू को आपने समझने की क्षमता होनी चाहिए, क्योंकि जहां दृढ़ संकल्प को लेकर आप आगे बढ़ना चाहते हैं उसके लिए आपका ओपन माइंडेड होना बहुत जरूरी है।
0: ओपन माइंडेड का एक्चुअली क्या डेफिनेशन है?
1: माना आपको हर चीज सुनकर समझने की क्षमता।
0: ओके।
1: एक है कि मैंने बस अपनी जो कहते हैं ना कि बस लठ गाड़ दी कि खूंटा यही गड़ेगा, मींस मैंने जो कह दिया सो कह दिया, अब मुझे नहीं पता, अब कि मैं किसी की नहीं सुनूंगा, तो इट इज रिजिडनेस, ये जिद्दीपना है।
0: ओके
1: ओके, तो ये चीज नहीं चाहिए। आपने लाठी यहीं गाड़नी है, ओके फाइन, लेकिन कोई एक व्यक्ति आया है कि बच्चे नीचे पत्थर है, आपकी लाठी ज्यादा गहरे में नहीं जाने वाली है, ठीक है, दूसरा व्यक्ति आया बोला कि यहाँ लाठी गाड़ोगे तो फलाना आ जाएगा, उल्टा लड़ाइयां होंगी
0: जी,
1: तो उनकी इन्फॉर्मेशन को मुझे समझना है। सिर्फ अपनी रिजिडनेस की मैं यहीं गाड़ू तो ये रिजिडनेस है
0: जी,
1: ठीक है, लेकिन उन्होंने कहा कि जो बातें बोली है वो इन्फो को आप समझिए, उनको टेक्निकली आप चेक कीजिए, लेकिन मैं सुन ही नहीं रहा हूँ, मुझे परवाह ही नहीं है, अब बोलते जाओ, मेरा दृढ़ संकल्प है कि मैं गाड़ूंगा, तो इट इज रॉन्ग।
0: ओके,
1: ठीक है ना, तो ओपन माइंडेड मीन्स सबको मुझे देखना है, सुनना है, समझना है, टेली करना है। ऐसा नहीं जो कह रहे हो कि भाई तुम गधे हो तो मैं स्वीकार कर रहा हूँ, नहीं, स्वीकार मत करें
0: जी,
1: लेकिन चेक जरूर करें कि उन्होंने मुझे गधा बोला है तो किस बेसिस पे बोला है, व्हाट आई हैव डन रॉन्ग, मैंने कहा ऐसा नेगेटिव किया, चेक करना बहुत जरूरी है
0: जी,
1: तभी जो है एक टॉप पोजीशन पे बैठ पाएंगे, नहीं तो अगर अपने को चेक नहीं करेंगे, आप देखिए जो भी बहुत हायर लेवल पे है वो सुनते ज्यादा है और बोलते बहुत कम है।
0: अच्छा, लिसनिंग करना,
1: लिसनिंग पावर उनकी बहुत है, और लिसनिंग के लिए बोला गया है गोल्ड, और बोलने वाली पावर, टॉकिंग इज सिल्वर एंड लिसनिंग इज गोल्ड बोला गया है, तो मुझे सुनना है, सुन, हाँ मैं स्वीकार नहीं कर रहा हूँ लेकिन सुन जरूर रहा हूँ, समझ जरूर रहा हूँ। उन्होंने गधा बोला, मैंने स्वीकार नहीं किया कि मैं गधा हूँ, उनके कहने से मैं गधा नहीं बन जाता, लेकिन चेक जरूर करना है मेरे से क्या रॉन्ग हुआ।
0: ओके, कई बार हम कहते हैं कि ओपननेस या ओपन माइंड का मतलब ये है कि आप हर किसी को एक्सेप्ट करो, या जैसे आपने कहा स्वीकार कर लो, जो जैसा कहा अच्छा ठीक है,
1: मैंने कहा स्वीकार नहीं करना, हाँ, नहीं करना है, सुनना है,
0: हाँ, सुनना है,
1: हाँ,
0: पर हम ये समझ लेते कई बार, लेकिन ये नहीं है।
1: ओपन माइंडेडनेस अपना सबका अपना अपना मीनिंग है डेफिनेशन से, लेकिन जो मेरा डेफिनेशन है कि मैंने सुनना सबका है,
0: ओके,
1: समझना सबका है,
0: करना,
1: हाँ, करना जो सही है,
0: सही है,
1: हाँ, उसके लिए भी मैं टेली कर लूं, जो मेरे फ्रेंड सर्कल है, मेरे फादर मदर है, या जो भी मैं समझती हूँ कि इंटेलिजेंट है, उनसे मैं टेली कर लूं। मैं शायद इतनी इंटेलिजेंट नहीं हूँ कि ठीक है मैं सुन ली, समझ ली, बट मैं तो वही करूंगी, तो इट इज नॉट इंटेलिजेंट बना, इट इज लाइक रिजिडनेस, ठीक है, तो आप एक
0: सलाह भी लेना,
1: सलाह भी लेनी है
0: जी। ओके, अभी हम बात करते हैं कि कई लोग लक्ष्य तय करते हैं लेकिन बीच में उमंग गुस्सा जो है वो खत्म हो जाता है। मान लीजिए मुझे चाय छोड़ना है, क्योंकि कई बार मुझे लगता है कि दूध जो है वो मेरे बॉडी को सूट नहीं होता, तो उसमें क्या करें, दृढ़ निश्चय भावना रखना है, अनुशासन रखना है,
1: दोनों ही चाहिए,
0: दोनों ही चाहिए,
1: दोनों ही चाहिए, क्योंकि अनुशासन बहुत जरूरी है, इसीलिए बच्चों को स्कूल में शुरू से, नर्सरी क्लास से इनफैक्ट घर से
0: जी
1: अनुशासन, बड़ों का पैर भी छूना है, ठीक है, लेकिन अनुशासन की बस ऐसे भाग लिए दौड़ घर से ही शुरू हो जाते हैं
0: जी।
1: दृढ़ संकल्प अपनी जगह है, उसके लिए बहुत जरूरी है, और हम देखते हैं कि मैं जो भी सोचती हूँ कि मुझे, जैसे अपने एग्जाम्पल लिया कि मुझे चाय छोड़ना है बिकॉज दूध मेरे लिए ठीक नहीं है बॉडी के लिए, तो वाकई में अगर मैं इस कंसेप्ट को माइंड को डाइजेस्ट करा देती हूँ कि दूध पीते ही नेगेटिव होता है, बाउलिंग सिस्टम गड़बड़ हो जाता है, या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम मेरा ठीक नहीं होता है, व्हाटएवर, इसको बहुत अच्छे से अगर मैं खिला देती हूँ तो ये हेल्प करता है।
0: okay.
1: तो मैं नहीं कहती कि एक दिन में छूट जाएगी, लेकिन अपने अंदर ये पक्का करिए कि मैं नहीं छोड़ रहा, ठीक है, नहीं छोड़ा जा रहा तो ओके, लेकिन कम तो कर सकता हूँ
0: जी,
1: तो एक स्टेप धीरे धीरे आगे बढ़ाइए। हम क्या एक बहुत बड़ा स्टेप फर्स्ट डे ले लेते हैं, वो किला हम सोच लेते हैं, अरे वाह इतना बड़ा किला बनाना है, मुझे छोड़ना है, ठीक है, तो एक दिन में किला नहीं बनता, ठीक है, छोटा छोटा स्टेप रखिए कि मैं, अच्छा मैं एक कप पीता था, अब मैं हाफ कप पीऊंगा या और पौना कप पीऊंगा, मैं एक चम्मच शुगर और एक चम्मच टी डालता था, लीव्स डालता था, अब मैं आधा आधा डालूंगा या पौना पौना डालूंगा, मतलब उसकी ना पावर को, इंटेंसिटी को कम कर दूंगा।
0: ओके
1: ओके, फिर ऐसे धीरे धीरे धीरे आप बढ़े तो वो किला जो है वो फिर जल्दी बन जाएगा, अदरवाइज एक पूरा किला एक ही दिन में लेने की कोशिश में शायद दिक्कत आ सकती है।
0: कई बार दीदी ऐसा होता है कि हम ना बहुत सारे ट्रिगर्स के बीच में रहते हैं, फ्रेंड सर्कल में रहते हैं, और फ्रेंड्स के साथ मिलके क्या करेंगे, तो चाय पियेंगे, बातें करेंगे, तभी बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है, ऐसे कहते हैं।
1: आज का तो यही है।
0: और बाकी थोड़ा एक्सट्रीमिटी में जाते हैं तो लोग बोलते हैं कि साथ में बैठ के दारू पी लीजिए, अल्कोहल की सेवन करते हैं लोग। तो उन ट्रिगर्स को कैसे समाप्त करें अपने मन से भी, मतलब ट्रिगर्स होते हुए भी हम ट्रिगर ना हो, वो कैसे करें?
1: तो आज का तो यही बहुत ज्यादा है, ठीक है। इनफैक्ट मैं अभी कहीं थी और उन्होंने कहा शी इज क्वाइट शी केम फ्रॉम जर्मनी एंड बहुत अच्छा है वो प्रोफेशन में, तो शी सेड कि आज की डेट में अगर हम पीते नहीं है मीन्स अल्कोहल तो आई एम नोवेयर, शी सेड सो, ठीक है। बट मेरा ये मानना है एक दिन ऐसा आएगा कि जो ये बोलेगा ना कि मैं नहीं पीता, तो लोग उसको बहुत अप्रिशिएट करने वाले हैं, ठीक है। ये दिन आएगा और बहुत जल्दी ही आएगा, क्योंकि आज समाज में ये अल्कोहल ऐसे घुल गया है जैसे खून बॉडी में होता है ना, ऐसा अल्कोहल हो गया है। और अल्कोहल एक फैशन हर जगह बन चुका है, चाहे वो बर्थडे पार्टीज है। मैंने सुना एक 2 साल का बच्चा, 2-4 साल में भी होगा उसका बर्थडे है, लेकिन अल्कोहल इज देयर। अब वो बच्चा क्या देख रहा है, ठीक है, वो तो ये देख रहा है कि मेरे होटल में मेरा बहुत बढ़िया सा बर्थडे मनाए बट अल्कोहल इज देयर, ठीक है। तो ठीक है, आज आपने उसे नहीं दिया बिकॉज ही इज इन योर कंट्रोल, 4 साल का बच्चा तो मम्मी पापा के कंट्रोल में है, लेकिन जब वो 14 का होगा तो वेयर वुड ही स्टैंड,
0: जी,
1: ठीक है ना। और मैं तो एक मेरा खुद का एग्जाम्पल है, सिस्टर है एक नोन है, वो मतलब तो पहाड़ों की है, तो कहती दादी हमें दिया करती थी कि बीड़ी सुलगा के ले आओ, तो हम 1-2 सुट्टा मार के उनको दिया करते थे
0: जी।
1: तो कहाँ से मारा, क्यों मारा, बिकॉज दादी मार रही है, तो दादी ने दिया कि जला के लेके आओ, पी के लेके आओ नहीं बोला है। लेकिन बड़ों में अगर ये सेंस हो कि अगर बच्चों को दे रहा हूं तो बच्चा क्या ही करके रास्ते तक आएगा, इनफैक्ट वो जान भी रही है कि ये छोटी कैसे हो गई, तो बच्चा कहता है जलाते लाते लाते जल गई,
0: कब झूठ भी बोलने लगा।
1: हाँ, तो किसको क्रेडिट देना चाहिए, बच्चे को नहीं, बड़ों को। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा पिए तो फिर ठीक है, कैरी ऑन द बिजनेस, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं, ठीक है, एक टाइम आएगा, या मैं तो कहूंगी कभी भी नहीं पिए, इट्स नॉट अ गुड थिंग, ये हमारे भारत का कल्चर नहीं है, ठीक है, इट केम फ्रॉम आउटसाइड, और इसीलिए हम सभी चीजें जो कर रहे हैं वो गड़बड़ गड़बड़ कर रहे हैं। तो जो बाहर की है वो
0: एनवायरमेंट को भी सूटने होता है,
1: क्योंकि बाहर ये नेसेसिटी शायद बन गई है बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर, ठीक है। हमारे भारत में ऐसा कुछ नहीं है, इतना टेम्परेचर आईसी वो नहीं है जो हमें इसकी एक नेसेसिटी हो, ठीक है। तो हम चीजों को समझें, क्या चीज जरूरी है, और मेरा बच्चा, खास मेरा बच्चा, मेरी फैमिली, वो क्या हो रहा है। लोग बड़े खुश होते हैं, मैं तो अपने बेटे के साथ बैठ के पीता हूँ, तो बहुत अच्छी बात है, आप बेटे के साथ बैठे पीते हैं तो पोता क्या दिख रहा है, वो क्या देखेगा, या जो आने वाले बच्चे हैं वो क्या देखेंगे। बड़ी हैप्पी फैमिली है, दोनों बैठ के पी रहे हैं, लेकिन बाकी लोग क्या सोच रहे हैं, क्या करेंगे, वो भी पियेंगे, ठीक है। तो हमें अपने को रोकना होगा, इफ आई वॉन्ट चेंजेस इन द कमिंग जनरेशन देन आई हैव टू चेंज माई सेल्फ,
0: जी। लेकिन कई बार मन साथ नहीं देता है, क्योंकि मन हो जाता है, हम कंट्रोल नहीं कर पाते। सिर्फ अल्कोहल की बात नहीं है, बहुत सारी चीजें जो हमने दृढ़ संकल्प रखा है शायद उसमें भी हम गड़बड़ कर देते हैं, मन में उमंग उत्साह कम हो जाती है या कंट्रोल नहीं कर पाते, तो कैसे करें?
1: वही सारी चीजें जुड़ी हुई है, एक दिन में किला नहीं बनेगा,
0: स्टेप बाय स्टेप,
1: स्टेप बाय स्टेप, एक छोटे छोटे बेबी स्टेप्स लीजिए, ठीक है। जैसे जिनको छुड़ाया जाता है, जो वहाँ जाते हैं ट्रेनिंग सेक्टर सेक्शंस में भी जाते हैं, जिनको अल्कोहल ड्रग्स वगैरह छुड़ाई जाती हैं, एक दिन में उन्हें ड्रग्स बंद नहीं करते, वो ड्रग्स देते हैं, लेकिन एक लिमिटेड अमाउंट में देते हैं, और धीरे धीरे उस लिमिट को भी कम करते चले जाते हैं। इस तरीके से उनकी ड्रग्स छुड़ाई जाती है। तो हम भी अगर छोड़ना चाहते, इट्स ऑल अबाउट द दृढ़ संकल्प, अगर मैं छोड़ना चाहता हूँ, जैसे कितने ही आते हैं आश्रम में, आते हैं हमारे सेंटर्स पे आते हैं, एंड दे वांट टू लीव इट बट दे आर नॉट एबल टू,
0: जी,
1: ठीक है। तो आपको उसके लिए पहले अपने आप को चैप्टर्स देने होंगे कि मैं छोड़ना क्यों चाहता हूँ,
0: क्योंकि क्वेश्चंस पूछना,
1: हाँ, क्यों मेरे को इफेक्ट कर रहा है, मेरी बॉडी को इफेक्ट कर रहा है, ठीक है, चलो ठीक है। दूसरा मेरा बच्चा, ये भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा वो पैसा जो मैं इनमें स्पेंड कर रहा हूँ, मैक्सिमम लोग यही कर रहे हैं, अगर वो मैं घर में देता हूँ तो घर की चीजों में और बरकत होती है, चाहे वो किसी सेंस में आपने खाने पीने की चीजों में खर्च कर लिया, बच्चों के लिए आप रसगुल्ले ले आए उसी पैसों से, तो बच्चे कितने खुश हैं, ठीक है, नहीं तो आपने उनके लिए सेविंग कर दी, चलिए मत खिलाइए रसगुल्ला
0: जी,
1: डेली मत लाइए कुछ भी, लेकिन आप उसे अमाउंट को सेव कर दीजिए
0: उनके फ्यूचर के लिए,
1: पढ़ाई के लिए। कभी भी मंथ में उनका कुछ ना कुछ करिकुलम एक्टिविटीज होता है, वहां खर्चा पड़ जाता है, और जब पैसे बचे होंगे तो डोंट हैव टू थिंक मच। ठीक है, तो पहले मुझे अपने आप को कुछ चैप्टर्स देने होंगे, कुछ अपने लाइन्स बनाने होंगे, व्हाई आई वांट टू लीव इट, और उसको जब मैं इतना अच्छे से समझ जाऊंगा, ये मेरी ही तैयारी होगी
0: जी।
1: बाहर की दुनिया पूरी लगी रहे, लेकिन जब तक मैं नहीं छोड़ना चाहती, वो मुझसे नहीं छुड़ा सकती। दिस और दैट वे आई गेट माय अल्कोहल, ठीक है, लेकिन मैंने अगर पक्का कर लिया कि यहाँ यहाँ यहाँ यहाँ चार पॉइंट्स हैं जो मेरे को नहीं पीना चाहिए, फर्स्ट डे नहीं छोड़ूंगा, इट्स वेरी मच ओके एंड अंडरस्टूड कि नहीं छूटता है। पीयर प्रेशर पड़ जाता है कि दोस्तों के बीच बैठ गए, मैंने कहा नहीं पीता हूँ, अरे थोड़ी तो पी लो, कल तक तो पूरी बॉटल पी रहा था, आज क्या हो गया। तो दे विल टॉक लाइक इट बिकॉज आप पीते थे एंड दे आर नॉट रॉन्ग, तो पिलाएंगे ही, लेकिन आप कुछ दिन के लिए या तो सर्कल को अवॉइड करें जब तक कि आप इतने एम्पावर हो जाएं कि उनको फेस कर सके, ठीक है। और अगर आप इतने एम्पावर नहीं है तो मैं तो यही कहूंगी कि उनको थोड़ा दिन अवॉइड ही करें, यही सबसे बेस्टेस्ट जो तरीका हो सकता है, उस पार्टीज में नहीं जाएं जहां अल्कोहल है, क्योंकि आई एम नॉट एबल टू कंट्रोल माई सेल्फ। जब मेरे को आ गया कि मैं अब चार पेग नहीं, सिर्फ एक पेग पे मैं कंट्रोल कर पा रहा हूँ, देन यू कैन ज्वाइन इट, लेकिन फिर भी बहुत गैप में, क्योंकि फिर वो हैबिट बनवा देंगे, ठीक है ना। तो ये अवॉइड करना पड़ेगा, अपने आप को रोकना पड़ेगा, सारी चीजों को छोड़ना पड़ेगा, फ्रेंड्स हैं, पार्टीज हैं,
0: थोड़े टाइम के लिए किनारा
1: करना पड़ेगा, अदरवाइज ये चीजें नहीं छूटती हैं।
0: तो ये सारे स्टेप्स हैं जिसमें आप

0: तो स्विच करने की जरूरत है कि नहीं, हाँ, वो भी सोचना, हाँ,
1: क्योंकि दृढ़ता का मतलब ही है कि मुझे वहीं टिकना है, कोई भी जो आपने सोचा है। तो अगर पक्का है कि मुझे यहाँ टिकना है बिकॉज ऑफ मेनी थिंग्स, इट कैन बी अकॉर्डिंग टू योर लिस्ट कि बेस्टेस्ट कंपनी है, टाइम लगाती है लेकिन इससे बेस्ट कंपनी मुझे नहीं मिलने वाली है,
0: टाइम टू टाइम घर जाते हैं,
1: हाँ, मुझे अपना हॉलीडे, अपना मैं घर मैनेज कर लेता हूँ इस जॉब के साथ, फॉर एग्जांपल टीचिंग जॉब, तो व्हाई गर्ल्स डू दैट, क्योंकि उनको लगता है मैं हाफ ऑफ द डे आई कैन स्पेंड विद माय फैमिली, मैं घर भी मैनेज कर सकती हूँ, दैट्स व्हाई दे जॉइन इट। हालांकि टीचिंग जॉब इज नॉट सो ईजी जो हमें दिखती है, इट इज अ टफेस्ट,
0: प्रिपरेशन चाहिए बहुत,
1: हाँ, बहुत। लेकिन मुझे पता है कि ये मेरे लिए गुड इसलिए है क्योंकि मेरा और भी चीजें जो है वो पार्लल में गुड हो रहा है। तो पहले तो अपने आप को ये पक्का कर लीजिए कि हाँ यही मुझे रहना है, ये बहुत जरूरी है। अगर आपको ये पक्का नहीं है देन यू कैन गो ऑन, आप चेंज करें, लेकिन अगर मुझे पक्का है कि हाँ मुझे करना ही है तो इंक्रीज योर एफिशिएंसी,
0: ओके,
1: फिर अपने पे काम करें, फिर अब बाहर नहीं कुछ करना है, कुछ ढूंढने या करने की जरूरत नहीं, अपने पे काम करना है कि मुझे मेरा क्रेडिट नहीं मिला, मुझे मेरा प्रमोशन नहीं मिला, मुझे लोगों का जो भी मुझे मिलना चाहिए था वो नहीं मिला है, लेकिन मैं अब इससे कुछ ऐसा आगे करूं जो मिले, तो उसके लिए मैं क्या करूं, वो पहले आप सोचें कि क्या करना है, और पॉजिटिव सेंस में ही सोचें तो वो ज्यादा अच्छा है क्योंकि वो लॉन्ग टाइम के लिए आपके साथ रहेगी
0: जी।
1: अगर नेगेटिव सेंस में कुछ करते हैं तो वो शॉर्ट टर्म पीरियड का होता है,
0: ओके,
1: तो इसलिए मैं पॉजिटिव सोचूं और अपने लिए ही कुछ एफिशिएंसी को या किसी भी तरीके से अपना लेवल जो बढ़ाने का है, मैं कोई कोर्स ज्वाइन कर सकता हूं जिससे मेरा लेवल, या मैं एग्ज़ाम्स दे सकता हूँ, जैसे गवर्नमेंट जॉब्स होते हैं तो उसमें एक खाता है कि आप और फर्दर एग्ज़ाम्स देते हैं तो यू कैन आगे आप प्रमोट हो सकते हैं। तो मैं, अगर मुझे अभी नहीं मिला है तो कभी नहीं मिलेगा, ये कहाँ लिखा है,
0: ओके, मतलब अप्रिसिएशन में भी ऐसा ही है, आप काम कर रहे हो आपको अप्रिसिएट नहीं किया जा रहा है तो वो दृढ़ संकल्प और हैप्पीनेस वो कम हो जाती है,
1: बिल्कुल कम हो जाती है, ये मैं मानती हूँ। लेकिन यही बात याद रखिएगा कि क्या किसी और की एप्रिसिएशन की वजह से मैं जिंदा हूँ,
0: नहीं
1: नहीं। जंगल में जब फूल खिलता है उसे कोई नहीं देख रहा है, कोई भी नहीं, बट स्टिल वो खिल रहा है, अपनी पूरी ब्यूटी के साथ खिल रहा है, उसने उतने ही रंग बिखेरे हैं, उतनी खुशबू बिखेरी है, लेकिन उसे कोई नहीं देख रहा है, ठीक है। मैं भी फूल हूँ, एनर्जेटिक हूँ, बहुत अच्छा हूँ, आज मुझे कोई नहीं देख रहा है, ओके फाइन, हैव अफर्मेशंस कि आई विल प्रूव इट कि आई एम द बेस्ट,
0: ओके। हमारे जंगल में भले फूल खिल रहे हैं लेकिन हमारे इकोसिस्टम के लिए वो उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना गार्डन में फूल खिलते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत सही बात की है कि एक फूल का खिलना भी इस नेचर में कहीं ना कहीं जरूरी है
0: जी,
1: उसको बैलेंस करने के लिए। तो मैं यहाँ हूँ तो मैं हूँ क्योंकि फिर कोई ना कोई चीज मैं कर रहा हूँ जिसके लिए वो, उनको मेरी जरूरत है,
0: मेरी हैप्पी रहना भी बहुत,
1: ये मेरे लिए बहुत जरूरी है, काम तो मैं कर ही रहा हूँ ना, तो खुश रहकर करने में प्रॉब्लम क्या है,
0: अपने आप को समझाना है, हाँ, समझाना या
1: समझाना नहीं है, ये करना ही है,
0: करना ही है
1: कि जब करना ही है तो रो के क्यों करूं, हंस के भी तो कर सकता हूँ। उन्होंने आज मुझे प्रमोट नहीं किया है लेकिन अगर मैं अपना EQ बैलेंस रखता हूँ, आज बड़ी कंपनीज में EQ बहुत काउंट होता है, इमोशनल क्वेश्चन, यानी इमोशनली हाउ स्ट्रॉन्ग यू आर
0: जी,
1: अगर आप उस चीज को बैलेंस कर पाते हैं तो क्या पता, क्योंकि आपने अपने अंदर अफर्मेशंस दिए हैं फॉर द सक्सेस, गुड थिंग्स, पॉजिटिविटी, और आप मुस्कुरा रहे हैं, यू आर डूइंग योर वर्क, कौन सा मिरेकल, इस दुनिया में तो मरे भी जिंदा हो जाते हैं
0: जी,
1: ठीक है ना, तो आप तो बहुत जिंदा हैं, बहुत अच्छी कंपनी में हैं, बहुत कमा रहे हैं, हेल्थ वाइज बहुत अच्छे हैं, आपके आगे स्कोप ही स्कोप है, ये आप पक्का अंदर कीजिए, आज नहीं मिला है कभी नहीं मिलेगा ऐसा नहीं है।
0: नहीं, कई बार हम दृढ़ संकल्प रखते हैं और पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं, अचीव भी कर लेते हैं। इन जनरल मैं पूछना चाहूँगी, जब PI की बात आती है तो कई बार लुक्स में मात खा जाते हैं, कई बार इंग्लिश में मात खा लेते हैं, फिर हम अपने कॉन्फिडेंस लूज कर लेते हैं, तो उस सिचुएशन में कैसे अफर्मेशंस रखना चाहिए?
1: PI
0: पर्सनल इंटरव्यू,
1: ओके ओके ओके, तो लुक्स में मात खाया और किस में मात खाया?
0: लुक्स में, इंग्लिश में, लैंग्वेज में,
1: ये दो बेसिस आपने लिए हैं, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, खास जैसे जब हम खास इंटरव्यूज देते हैं और लुक्स में हम नहीं हैं, लेकिन हमने बहुत सारे IAS ऑफिसर्स को देखा है, कंपनी के मालिकों को देखा है
0: जी,
1: लुक्स में जीरो है लेकिन स्टैंडिंग स्ट्रांग, बहुत बहुत शानदार खड़े हैं, तो लुक्स आर नॉट एवरीथिंग। हम देखते हैं लुक्स बहुत आगे अप्रिशिएट किए जाते हैं, जो बहुत सुंदर दिख रहा है उसको प्रेफरेंस

0: जल्दी मिलती है, अप्रिसिएशन बहुत जल्दी मिलता है, लोग उसकी तरफ देखना पहले स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन मैंने ये भी देखा है कि जो सुंदर नहीं है, इस लैंग्वेज में अगर मैं कहूँ, सुंदर तो हर कोई है, भगवान ने अगर बनाया है तो कुरूप कोई नहीं है, सुंदर हर कोई है। और आज की डेट में तो ब्लैक ब्यूटी भी है जो बहुत टॉप लेवल पे है,
1: बहुत सारे मिस इंडिया मिस वर्ल्ड कॉम्पिटिशन्स भी,
0: तो ब्लैक कलर को भी बहुत आज की डेट में अप्रिशिएट किया जाता है। हैव प्राउड ऑन योर सेल्फ, मुझे मेरी ही चीजों पे शक है तो फिर मैं आगे क्या करूंगा। जो भगवान ने मुझे दिया है, फॉर एग्जाम्पल आई एम हैविंग अ वेरी शॉर्ट हाइट, ठीक है, तो ऑफकोर्स यू कैन अज्यूम कि लोगों का, मैं दिखती ही नहीं हूँ जब भीड़ में होती हूँ, तो एवरीबॉडी सेज आप कहाँ हो, तो आई से प्राउडली कि मुझे देखने के लिए नजरें झुकानी पड़ती है
1: जी।
0: तो हैव समथिंग फॉर योरसेल्फ, कि मैं काली हूँ तो क्या हुआ, दिल वाली हूँ, हैव समथिंग फॉर योरसेल्फ, डोंट फील डाउन, आपको बनाया है, आप गुणों को तो बढ़ा सकते, कलर को नहीं कर सकते, ओके फाइन, ठीक है, ठीक है, बहुत सारी चीजें आ गई हैं, मेलानिन को हम कम कर सकते हैं, गो फॉर इट इफ यू कैन, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा आपके अंदर अगर वो कॉन्फिडेंस है, आपके अंदर वो पावर है, वो एनर्जी है, वो गुण है, तो आप बहुत आगे, अपने कलर को बहुत पीछे छोड़कर आगे बढ़ सकते हैं
1: जी।
0: और इंग्लिश अगर स्ट्रांग नहीं है तो ठीक है, मैं समझती हूँ आज के MNCs में प्रॉब्लम्स तो आती हैं, तो इंग्लिश के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐप्स भी हैं, सीखो आप, बहुत सारी चीज़ें, आई एम नॉट प्रमोटिंग एनीथिंग, ठीक है, लेकिन सीखो, सीखो, लाइफ इज टू सीखो, ठीक है, इसलिए सीखो, ठीक है, छोटा छोटा इंग्लिश सीखो, बड़ा एक दिन बन जाता है। और मैं जो मानती हूँ, पूरी इंग्लिश तो कहीं कोई नहीं बोल रहा भारत में, जो बोले कॉन्फिडेंस के साथ बोले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इंग्लिश हिंदी मिक्स करें, ठीक है, मिक्स करके अपना बोलना शुरू करें, लेकिन जो बोले कॉन्फिडेंस से बोले। आज आप देखिए कई हैं जो फॉरनर्स मेनली मैं देखती हूँ, दे वॉक इन बर्मुडास विद द चप्पल्स
1: जी,
0: लेकिन कॉन्फिडेंटली
1: जी,
0: उनका कॉन्फिडेंस देखिए, ठीक है, बनियन में है, बनियान पहनी हुई है, लेकिन कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस इज इम्पॉर्टेंट, नॉट योर आउटफिट, नॉट योर कलर, नॉट योर लैंग्वेज, आप कॉन्फिडेंट हैं वो कंपनी देख रही है, ठीक है, आप इमोशनली बहुत स्ट्रांग है वो कंपनी आपको मेजर करने वाली है। और हायर लेवल में तो ये सारी चीजें जो हायर कंपनीज हैं जो मैं देखती हूँ वो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंस देती हैं, कि आपका EQ कहाँ है, कितना है, आप कितना बैलेंस्ड रहते हैं, आपका कितना अच्छा बोलने का कैपेसिटी है, इफ इट इज नॉट इन इंग्लिश देन मेरा हिंदी कितना स्ट्रांग है, मैं बोलते सामने आपको देखते ही मेरा शटर हो गया, हिंदी भी शटर हो गया, तो इट्स तो फिर यानी फिर इंग्लिश तो आप भूल ही जाइए, आप बोल ही नहीं पा रहे हैं, तो पहले अपना बोल सुधारें, जैसे बचपन में कहते हैं शीशे के आगे बोलें, जोर जोर से पढ़ करके बोलें, न्यूज़पेपर पढ़ें, ठीक है, तो इस तरीके से आप शुरू कर सकते हैं, आपका स्पीकिंग एबिलिटी शुड बी गुड,
1: मतलब दृढ़ संकल्प के साथ स्किल्स को भी बढ़ाएं,
0: हाँ स्किल्स को भी बढ़ाएं, ये बहुत जरूरी है।
1: ओके जी, इस कार्यक्रम से विदा लेने से पहले एक आखिरी सवाल, कि अगर हम दृढ़ निश्चय को मजबूत करना चाहते हैं और निखारना चाहते हैं, सबसे पहला कदम क्या लेना चाहिए?
0: टॉक टू योरसेल्फ, अपने से बात करें,
1: ओके,
0: क्योंकि मुझे ही करना है जो करना है, बाहर वाले मुझे आइडियाज देने वाले हैं, बाहर वाले मुझे गिराने वाले भी हैं, बाहर वाले मुझे अप्रिशिएट भी करेंगे, लेकिन मेरे ही कदमों पे तो करेंगे जो करेंगे, जो मैंने कदम लिया है, तो टॉक टू योरसेल्फ, व्हाट वुड बी माय नेक्स्ट स्टेप, मुझे क्या करना है, तो मेरी मेरे से बात होना ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट,
1: मी टाइम,
0: मी टाइम, यस, वेरी नाइस वर्ड, मी टाइम, आई हैव कॉन्फिडेंस ऑन माई सेल्फ, आई हैव फेथ, आई शुड हैव फेथ ऑन माई सेल्फ, मुझे मेरे पे विश्वास होना चाहिए, जब मेरे को मेरे पे ही विश्वास नहीं है तो लोगों पे क्या होगा, या लोग मेरे पे क्या विश्वास करेंगे, मेरे को खुद पे ही नहीं है, तो ये मी टाइम बहुत जरूरी है, मुझे मेरे लिए जीना है पहले,
1: अगर मैं बार बार हार खाती हूँ तो मेरे पे विश्वास तो उठ ही जाता है, फिर खुद को कैसे समझे, क्या मतलब कैसे देखे कि मेरे अंदर कुछ है अच्छा ही कि नहीं?
0: वही मैंने जो कहा कि अगर हार हो रही है तो ये मुझे सिखाने के लिए हो रही है, लेकिन सदा ही हार नहीं होने वाली,
1: तो अलग अलग तरीका देखें अपनाएं,
0: बिल्कुल बिल्कुल, हार आपके पास आती है आपको हराने के लिए, मारने के लिए नहीं आई है,
1: कुछ सिखाने के लिए,
0: सिखाने के लिए आई है, लेकिन आप उसको सीखने के अंदाज से देख रहे हो या आप उसको हार ही देख रहे हो, ये इम्पोर्टेंट, आपका नजरिया इज इम्पोर्टेंट, आप चार बार फेल हुए हैं लेकिन फिर भी मेरे अंदर एक निश्चय है, ठीक है, जैसे अभी मुझे कोई हमारे एक ओम शांति रिट्रीट सेंटर है दिल्ली में, गुड़गांव में, तो वहाँ मुझे एक यूथ मिले, और वो कहते हैं कि मेरे पास इतना फेलियर्स है, इतना फेलियर्स है, आई वॉज इन डिप्रेशन. तो उन्होंने कहा कि माई मम्मा गोज इन ब्रह्मा कुमारीज, तो मैंने भी सोचा चलो मैं चल कर देखता हूँ. तो आई एम फीलिंग क्वाइट ओके राइट नाउ, मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ, डिप्रेशन से बाहर आ चुका हूँ. अभी भी मैं सक्सेसफुल नहीं हुआ हूँ. ही सेड सो कि मैं अभी भी सक्सेसफुल नहीं हुआ हूँ, लेकिन अब मेरे अंदर फिर से वो विश्वास आ गया है कि हाँ मुझे करना है और सक्सेस को हासिल करना है. तो बी लिटिल स्पिरिचुअल. आपको स्पिरिचुअलिटी इज हैविंग ट्रिमेंडस एनर्जी. वो पत्थर को पारस करने की शक्ति रखती है. तो मैं तो बहुत एक अजीज या भगवान का बहुत नियरेस्ट बच्चा हूँ, प्यारा बच्चा हूँ. उसने मुझे धरती पे नहीं फेंका है, उसने मुझे धरती पे भेजा है. अब हमेशा यही कहते हैं ना, भगवान ने भेजा है. तो भगवान ने मुझे भेजा है, फेंका नहीं है. तो मैं कुछ करने के लिए ही मुझे भेजा है. भेजा माना कुछ करने के लिए. तो मेरे डेस्टिनी में है. हाँ, वो पेजेस बहुत पीछे हैं और अभी मुझे उन्हें टर्न करना है.
1: कई बार क्या हमारे लक्ष्य को हमें फिर से रिवाइज करके देखना है और चेंज भी करना चाहिए?
0: करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए. आपको देखना है कि क्या चीजें मेरे से नेगेटिव हो रही हैं और चीजें कहाँ से कैसे जोड़ी जा रही हैं. तो कई बार हम देखते हैं कि जैसे जो इंजीनियर होते हैं वो किसी लाइन को ज्वाइन करते हैं लेकिन जॉब किसी और लाइन में लगती है. मेरा लौकिक भाई है जो मेरे बायोलॉजिकल ब्रदर है, तो ही वॉज इन डिफरेंट लाइन एंड नाउ ही इज डूइंग डिफरेंट जॉब.
1: लाइक हम इंजीनियर की पढ़ाई करने के बाद अब रेडियो
0: पर. रेडियो में है ना. तो इस ऐसा नहीं है कि चेंजेस लाइफ में आएंगी ही
1: जी.
0: आपकी डेस्टिनी में है जो ना, वो आपको उस तरफ खींच रही है. तो वहां आपके कम नंबर है या वहां आप फेलियर है या यहाँ गड़बड़ हो गई है, लाइफ की डेस्टिनी में जो है वो आपको खींच रही है, वहां जीरो कर रही है ताकि आप इधर आ सके.
1: ओके, तो इसलिए आपको रिवाइज करना भी
0: जरूरी है.
1: तो यहीं पर रुकते हैं हम. आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा आप हमें कॉल करके या मैसेज करके बता सकते हैं 94-14-15-14-15. थैंक यू सो मच प्रिया दीदी, आपका
0: ओम शांति. थैंक यू सो मच, आपका भी और हमारे लिसनर्स का भी. थैंक यू,
1: धन्यवाद.
0: ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है.

देखें इनको हर घर के आंगन में, राधा मोहन शरणम सत्यम शिवम सुंदरम, आ सत्यम शिवम सुंदरम।

0: शांति, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस विशेष कार्यक्रम में। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग ने ये सीरीज शुरू किया है लाइट लेट्स इग्नाइट टुगेदर करके, और इसके अंतर्गत हम लोग अलग अलग सब टॉपिक्स पे बातें करते हैं। तो आज हम लोग टॉपिक हमारा जो है एजुकेशन विथ ह्यूमन टच, इस विषय को लेकर बातें करेंगे, जहाँ पर हमारा शिक्षा तो हो, शिक्षा के साथ में हमारी मानव मूल्य भी हमारे साथ हो, मानवता भी हमारे साथ हो, और एक संवेदना जो हमारे साथ होनी चाहिए वो हमेशा बनी रहे। कई बार होता है कि हम लोग स्वार्थवश एजुकेशन तो ले लेते हैं, नंबर आगे भी ले लेते हैं, लेकिन जीवन में कहीं ना कहीं वो संवेदना या ह्यूमन टच जो है वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाता है। तो शिक्षा ये नहीं कहता कि आप मानव होके मानवता के गुणों को भूल जाओ, है ना। शिक्षा का प्राथमिकता यही है कि पहला पेज जब आप पन्ना खोलते हो किसी भी टेक्स्ट बुक का, ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर, ये पहली लाइन हमारी प्रार्थना की होती है, जो 365 दिन हम 10 साल तक रटते हैं। लेकिन जब 10 साल पूरे हो जाते हैं या हमारी शिक्षा पूरी हो जाती है, उसके बाद शायद वो पहली लाइन ही हमें पूरी तरह से कार्यबंध करने में मुश्किल लगती है। तो कितनी बड़ी विडंबना है शायद। आज इसी विषय को लेकर ह्यूमन टच क्या है वो हम लोग जानेंगे। तो हमारे साथ विशेष आज के मेहमान है खास नवनीत अरोरा सर। आप IIT रुड़की से जुड़े हुए हैं और आपको यहाँ देखकर मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। मुझे अपना सौभाग्य समझता हूँ आपको इंट्रोड्यूस करने में। आप शिक्षाविद हैं, काफी समय से इस विषय को लेकर काम कर रहे हैं, एजुकेशन विथ ह्यूमन टच इस विषय को लेकर आप बात करेंगे। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो बच्चों के अंदर जो इनबिल्ड संस्कार होनी चाहिए वो शायद आपको सुनने के बाद हर बच्चा जो है जरूर याद रखेगा कि हमारी शिक्षा जो है हमें क्या सिखाती है और हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। तो आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस विशेष कार्यक्रम में। बहुत बहुत स्वागत। नमस्ते नवनीत सर, बहुत बहुत स्वागत जी। अमित जी, मुझे अच्छा लग रहा है कि आपने नवनीत सर को यहाँ पर जोड़ा है। और हमारे दर्शक मित्रों में से जलगांव से सुभाष जी ने ओम शांति और आप सभी का भी स्वागत भेजा है उन्होंने। सुभाष जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। हम लोग चाहेंगे नवनीत सर आप थोड़ा सा अपने बारे में, वर्तमान में आप जिस खूबसूरत स्थान पर बैठे हैं ऋषिकेश, वहाँ का थोड़ा नजारा हमें बताइए और कैसे वहाँ पहुँचे आप।
1: अच्छा, चांस की बात देखिए, बड़ा हिस्टोरिक दिन है मेरे लिए भी। हाँ, मैं भी यहाँ गुजरा तो सैकड़ों बार हूँ, यहाँ से आया भी बहुत बार हूँ, लेकिन क्योंकि रुड़की इज वेरी क्लोज टू ऋषिकेश, मैं कभी रुका नहीं हूँ यहाँ पर। पहली बार आज मैं अपनी श्रीमती जी के साथ रुकने के लिए आया हूँ, फर्स्ट टाइम। चलो ग्रेट,
0: बहुत जी जी जी।
1: सबसे ज्यादा खुशी और जैसे कहते हैं ना, किचकिची और लाड और प्यार आप सबके साथ आ रहा है कि आप इतने अच्छे विषयों को लेकर एकत्र हुए। आप में से कुछ बड़े होंगे मेरे से उम्र में और योग्यताओं में भी, और कुछ मेरे अजीज होंगे और बच्चों की उम्र के भी होंगे, मेरी बेटी की उम्र की लग रही है रोशनी मुझे, है ना। तो ऑल एज ग्रुप इज कमिंग टुगेदर फॉर ए गुड कॉज, इसके लिए मैं तो कहूंगा सबको प्रणाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ बहुत बहुत दिल से। बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद कि वी आर कमिंग टुगेदर फॉर ए गुड कॉज। बहुत सी बातें दिल में आ रही हैं। मैं अपने बात थोड़ा सा ब्रीफ बता दूं, क्योंकि कहा है कि मैं थोड़ा दो लाइन बता दूं। मैं नवनीत अरोड़ा, मैंने बीटेक एजुकेशन मेरी अम्बाला की है, लेकिन बीटेक मैंने NIT कुरुक्षेत्र से किया था, आज से 34 साल पहले पास आउट हुआ था 1988। फिर मैंने एमटेक किया रुड़की से, गोल्ड मेडलिस्ट था मैं एमटेक वेल्डिंग में, और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से PhD किया, और मुझे लगभग 32 साल हो गए हैं टीचिंग में, जिसमें से 1.5 साल पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ पढ़ाया, 7 साल कुरुक्षेत्र NIT अल्मा मैटर में पढ़ाया, और यहाँ पर मुझे 24 वर्ष हो गए हैं IIT रुड़की में। तो हमारे यहाँ कई पोस्ट होती है, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, फिर प्रोफेसर। तो मैं पिछले लगभग 8-9 साल से प्रोफेसर के पद पर हूँ, ये थोड़ा सा परिचय है। इसके अलावा दो ऑर्गेनाइजेशंस मैं रन कर रहा हूँ, NGO कह लीजिए, ट्रस्ट कह लीजिए, और उसमें काफी बड़ी संख्या में लोग जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छे सेवाएं काम होते हैं, सेंटिमेंट, टेम्परामेंट, ह्यूमन वैल्यूज, और जो गरीब लोग हैं, अंडर प्रिविलेज्ड, उनकी एजुकेशन में हेल्प करना, बहुत से काम है जो चल रहे हैं। तो कभी फिर नजदीकी और बढ़ेगी, किसी को इंटरेस्ट होगा तो बताया जा सकता है। और फिलहाल मैं IIT रुड़की के अंदर एक गूंगे बहरों का स्कूल है, अनुश्रुति एकेडमी फॉर द डेफ, उसमें मैनेजर के पद पर एडिशनल काम भी कर रहा हूँ। ये छोटी बहुत बातें हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है मैं खुश बहुत हूँ, बहुत ज्यादा खुश हूँ, बहुत ब्लेस्ड हूँ। और अंदर से एक होता है दिखाने के लिए, एक होता है अंदर से खुशी है, उसके बहुत से कारण है, और उसका बहुत बड़ा कारण यह है कि एजुकेशन का मतलब समझ में आया है कि एजुकेशन इज नॉट गैदरिंग नॉलेज और इन्फॉर्मेशन, डिग्रियां इकट्ठी करना या नॉलेज इकट्ठा करना, उसको रिप्रोड्यूस करना कागजों पर, वो नहीं है एजुकेशन। वो तमीज है, वो सेंस है, वो संवेदना है। अगर मैं उसको एक लाइन में कहूं कि हम नेचर के साथ, प्रकृति के साथ, उसके सारे किंगडम्स के साथ कैसे मेल में रहें, पशुओं के साथ भी, पौधों के साथ भी, इंसानों के साथ भी, पर्यावरण के साथ भी। नेचर इज नॉट ओनली प्रकृति, ये नहीं कि पेड़ पौधे हैं, प्रकृति मीन्स ह्यूमन काइंड, प्लांट्स, एनिमल्स एंड इनएनिमेट वर्ल्ड, द होल वर्ल्ड, सारे एस्पेक्ट्स कवर करके द टोटल नेचर। उसके साथ जितना हम हार्मनी में रहते हैं, अपनी एग्जिस्टेंस को उसके लिए ब्लिसफुल बनाते हैं, तो हम कह सकते हैं कि पढ़े लिखे हैं। और वो अनपढ़ भी लिखा हो सकता है, कबीर अनपढ़ थे लेकिन होश की बात करते थे, तो हम उनको पढ़ा लिखा मानते हैं, उनकी इज्जत करते हैं दिल से, तो उसके लिए डिग्रियां काफी नहीं है, डिग्रियां एडिशनल है। इसका मतलब नहीं अपनी डिग्रियां फाड़ दें या पढ़ाई लिखाई ना करें, वो भी जरूरी है कि करें, और लेकिन ये चीज है कि जितनी हमारी जिंदगी दूसरों के साथ मेल में है, उनके लिए फलदायक है, वरदान है, उतने हम पढ़े लिखे कहे जा सकते हैं। ये बेसिक चीज समझ में आई है, और ह्यूमन वैल्यूज का टच बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले मैं अक्सर ये बात कहा करता हूँ कि बड़ों की बहुत इज्जत करता हूँ, बड़ा कोई भी सकता है जो गुणों से बड़ा है, छोटी बच्ची भी कोई है, बच्चा भी है, वो भी बड़ा हो सकता है, लेकिन बड़ों की इज्जत इसलिए करता हूँ, चाहे उम्र के लिहाज से हो, चाहे पद के लिहाज से हो, चाहे गुणों के लिहाज से हो, क्योंकि उनमें मेरे से गुण ज्यादा है और अच्छाइयां मेरे से ज्यादा है, तो मैं उनको प्रणाम करता हूँ, चाहे कभी हुए हैं, किसी धर्म में हुए, किसी जाति में हुए, किसी देश में हुए, पूरे विश्व में जो भी शख्स गुणों के कारण, वैल्यूज के कारण मेरे से श्रेष्ठ है, मेरे लिए नमन के काबिल है। और जो छोटे हैं, अजीज हैं, ठीक है उनको अभी खिलने का, बढ़ने का मौका नहीं मिला, लेकिन मैं उनको बहुत प्यार करता हूँ, उनके गुनाह मेरे से कम है, उन्हें गलतियां मेरे से कम की है, दे आर रिस्पेक्टफुल अगेन बिकॉज ऑफ दैट पार्ट। जो चीजें सीखी हैं मैं आपको बहुत थ्योरेटिकली नहीं बताऊंगा, मैं पीपीटी बना सकता था, बहुत सी चीजें दिखा सकता हूँ, क्योंकि हमारा स्टाइल ही होता है टेक्नोक्रेट्स का, चीजों को प्रोड्यूस करने का, डाटा चीजें बहुत जानते हैं। मैं सिर्फ आज के इसमें जो भी सुन रहे हैं, अगर रिकॉर्डिंग हो रही है तो कभी काम आएगी, वो चीजें बताना चाहूंगा जो मुझे समझ में आई। जानते हैं बहुत कुछ है, हम समझते बहुत कम है, जानना बहुत होता है, समझ कम होती है। और एक मैथमेटिक्स होता है सेट, सबसेट, देन सबसेट, ये सेट है, ये सबसेट, फिर छोटा होता है सब का सबसेट। होता क्या है कि हम जानते इतना है, और कई बार ज्यादा जानकारी से हमारे अंदर अहम आ जाता है कि हम इतना जानते हैं, मुझे इतने अध्याय याद हैं, इतने श्लोक

0: याद है, जो भी जिस भी हम संस्था जुड़े हैं या किसी ग्रंथ से जुड़े हैं, तो उसको याद करना और उसका ज्ञान होना बहुत बड़ा पांडित्य और बड़ी बात समझी जाती है। लेकिन अक्सर मैंने देखा है कि बहुत लोगों से पाला पड़ा है, एक लेवल के बाद जब ज्ञान ज्यादा हो जाता है वो अहंकार बढ़ा देता है और उसके काम का भी रह जाता। तो मेरा मानना है कि ज्ञान थोड़ा कम हो तो चलेगा, उसकी समझ ज्यादा जरूरी है। अगर समझ है, अंडरस्टैंडिंग है, तो अहम नहीं आता। और उससे भी ज्यादा कहीं जरूरी है कि समझ तो है। मान लो मुझे ज्ञान है कि सिगरेट पीना नुकसानदायक है, एज ए डॉक्टर फॉर एग्जाम्पल, मैं डॉक्टर हूं तो मैं, मेरे साथ कौन जाने, MBBS हूं मैं बाय चांस, तो मैं बेस्ट बता सकता हूं कि कौन सी चीज क्या खाना हितकर है, क्या नुकसानदायक है। इफ स्मोकिंग की बात करें हार्मफुल है, लेकिन समझ नहीं रहा हूं, खुद पी रहा हूं, क्या समझ रहा हूँ फिर मैं, ऐसा ज्ञान का क्या लाभ है। तो उससे बड़ी बात है कि समझ के बाद अगर आप जानते हैं उसको जीवन में धारण नहीं करते। सबसे इम्पोर्टेंट ज्ञान वही काम की बात है, हमारे लिए वही चीज काम की है जो मेरे जीवन में उतर गई। जो ज्ञान जीवन में ढला नहीं, जो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, वो कहीं ना कहीं, मैं कड़वा शब्द यूज करता हूं, बोझ है आपके ऊपर। वो ज्ञान जरूरी है, लेकिन उसको ये हमारा टारगेट होना चाहिए कि जो हम सुन रहे हैं इसको समझें और जीवन में धारण करें। तो मैं कुछ ऐसी बातें प्रैक्टिकली आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि जो मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं, समझता भी हूं किसी हद तक, और जीने की भरपूर कोशिश कर रहा हूं, और जीने से जो आनंद आ रहा है वो आपके साथ अपना आनंद ही शेयर कर रहा हूं।
1: जी,
0: पहली बात, एक लाइन पड़ी थी, ये आंधी है दरख्तों को चटक जाएगी, वही शाख बचेगी जो लचक जाएगी। जब आंधियां आती हैं, दिखते हैं तकलीफें जिंदगी में आती हैं, हर एक की आती हैं, तो जो दरख्त हैं वो चटक जाएंगे, जो अकड़े हुए पेड़ हैं उखड़ जाते हैं, जड़ से उखड़ जाते हैं बड़े बड़े पेड़, और जो टहनियां, जो कोंपले, जो घास झुक जाती है वो जिंदगी में लचक के साथ कामयाब हो जाती है। ये बात बड़ी दिल से समझ में आई। मैंने बहुत लोगों के जीवनों को बहुत पास से देखा कि बहुत अकड़ के चक्कर में वो सच्चा सम्मान ही नहीं पा पाए, और थोड़ी अकड़ कम होती तो ज्यादा इज्जत मिलती। तो झुकते हैं वही, एक लाइन और पड़ी थी, झुकते हैं वही जिनमें जान होती है, अकड़ना तो मुर्दे की पहचान होती है। शायद हमें से कई बच्चों ने तो मुर्दा ढंग से देखा नहीं होगा, लेकिन आप मुर्दे को देखे ना तो उसको कफन पहनाना ही मुश्किल हो जाता है। मैंने बहुत नजदीक से अपने कई बुजुर्गों को देखा है कि कपड़े भी फाड़ के पहनाते हैं साथ में उसको। जो मेरे पापा मेरे दादा जो फ्लेक्सिबल थे, जब उनके अंदर से जान निकल गई ना, तो ये शरीर मुड़ता नहीं है, अकड़ जाता है, मुर्दे की निशानी है अकड़ना। तो जिंदगी में प्रैक्टिकली मैं चलते हुए आपसे बात करते हुए, आपसे मिलते हुए, पत्नी के साथ, माँ बाप के साथ, अपने विद्यार्थियों के साथ, अपने पड़ोसी के साथ, अगर अकड़ के चलता हूँ कहीं भी, किसी छोटे व्यक्ति के साथ, मान लो कोई रिक्शा वाला है, कोई गरीब है, मजदूर है, और मैं अकड़ के बात करता हूँ, तो समझो मेरे में जान नहीं है, मैं मुर्दा हूँ। ये बात समझ में आती है। और कहते हैं गरूर ना कर शाहे शरीर का, ये शाहे शरीर है, चमक दमक है चेहरे पर, अभी कायम है, ये इसकी अकड़ करने की जरूरत नहीं है। गरूर ना कर शाहे शरीर का, मेरा भी खाक होगा। ये दूसरे के लिए भी है अमित जी, आपके लिए भी, मेरे लिए भी सच है, मेरा भी खाक होगा, तेरा भी खाक होगा। हम सब समाप्त होने के लिए हैं शरीर रूप से, इसलिए अपने शरीर का, अपने धन का, अपनी चीजों का जो नाशवान है, उनका कभी भी अकड़ नहीं करना। जिंदगी में कितना भी ऊंचा उठो, रिमेन हम्बल, रूल नंबर वन। जिंदगी में हम कामयाब उसी को समझ सकते हैं सही मायनों में जो विनम्र रहता है। देखिए, आपकी पर्सनैलिटी को जो बहुत इफेक्ट करती है, दैट इज, हम सोचते हैं कि बहुत पावरफुल आदमी वो है, पावर की आंकना ऐसी की जाती है कि वो कितने लोगों को कंट्रोल कर सकता है, कितने लोगों को कंट्रोल कर सकता है। मैं समझता हूँ कि सफलता का जो दूसरा पैमाना मेरे सामने है, सफल वो है जो स्वयं को कंट्रोल कर सकता है, और उसने खुद को कंट्रोल कर लिया, बस सब काम सही हो जाएगा फिर। और सबसे पहले जो सेल्फ कंट्रोल है उसमें है बोलना। आप सही बोलते हैं तभी लोग बुलाते हैं, वक्ता के रूप में भी, और दोबारा भी आपका नंबर तब लगेगा, नहीं तो आने देंगे अमित जी और रमेश जी मिलकर के, कैसे नलायक को बुला लिया, इसको बोलने की अकल नहीं। पहली चीज वही है कि जो आप बोल रहे हैं आपका कंट्रोल होना चाहिए। जिंदगी में सीखिए, आपकी जबान पर अगर आपको तमीज नहीं है, कंट्रोल नहीं है, आपका कैच नहीं है, पकड़ नहीं है, तो आपकी कभी भी रिस्पेक्ट नहीं होगी। आप कैसे इंसान में बाद में चलेगा, धीरे समझ में आएगा, आप कैसा बोलते हैं वो पहले समझ में आएगा। तो सोचो वही जो बोला जा सके, सोचो वही जो बोला जा सके। आपको पता है कि जो बोला नहीं जा सकता वो सोचते रहोगे तो किसी दिन स्लिप ऑफ टंग हो जाए। हम कहते भी हैं यार मेरे से स्लिप ऑफ टंग हो गया, तो स्लिप ऑफ टंग इसलिए हुआ कि हम वो चीज सोचते रहे जो बोलने नहीं थी चाहिए थी। तो अगर आपको पता है जो मैं बोल नहीं सकता बिकॉज ऑफ माई पर्सनैलिटी, माई स्टेटस, मैं एक प्रोफेसर हूँ या पढ़ा लिखा हूँ या पिता हूँ या एक मेरा एक स्टेटस है, मैं वो बात नहीं कह सकता ना आपको। जब मैं कह नहीं सकता तो मेरा मानना यह है, जो मैंने थंब रूल बनाया, कि अपना दिमाग खराब क्यों करना सोच सोच के, फिर वो जो मुझे कहना नहीं है वो मुझे सोचना भी नहीं है।
1: बिल्कुल।
0: अब बोलना क्या है, बोलने के भी चेक पॉइंट है, एक बड़ा मजेदार, कहते बोलो वही जिसके नीचे हस्ताक्षर कर सको। मान लो मैं अपने किसी अजीज को, अपने किसी कुली को कहूं तेरा दिमाग ठीक नहीं है, कह दो मैं दिया, और वो लिख के ले आया कि ये मैंने लिखा है, मेरा आपका दिमाग ठीक नहीं है, अब साइन कर दीजिए, मैं साइन करूंगा, साइन नहीं करूंगा। जब इसका मतलब जिस चीज पे मैं साइन नहीं कर सकता, जिसकी मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता, मुझे बोलना भी नहीं। दो बैरियर है मेरे माइंड में जो मुझे अपने आप को कंट्रोल करना है। एक बार डिसिप्लिन में अपने आप ढाल लिया, काम आसान हो गया। जो चीज मैं लिख के नहीं दे सकता, दूसरे को कहना नहीं, तू पागल है, तेरे गधा है, तेरे अकल नहीं है, तू समझता क्या, ऐसी बातें क्यों बोलनी किसी को भाई, जो आप लिख के नहीं दे सकते, जो आने वाले टाइम में आप जस्टिफाई नहीं कर सकते, जिसपे आपको कोई प्रमाण नहीं नहीं है ऐसी बातें कहने का, अपने आप को ही ट्रेनिंग प्रोसेस है, अपने आप को ट्रेन करना है, स्वयं को नियंत्रित करना है, अभ्यास डालने की बात है कि मैं वो नहीं बोलूंगा जो मैं लिख के नहीं दे सकता, और जो मैं बोल नहीं सकता फिर वो मैं सोचूंगा क्यों। और ज्यादातर क्या होता है, लोग केवल लिख के नहीं देते, बोलते भी नहीं, लेकिन मन खराब करते रहते हैं, अपना दिमाग खराब करते रहते हैं। ये पॉल्यूशन जो यहाँ है ना, इसको भी घटाना है। अपना सुकून बहुत जरूरी है। जब यहाँ ही गाली नहीं है, अब शब्द मेरे यहाँ ही नहीं है, तो उसका सुकून मुझे है। एक बात और याद रखने वाली है, वाणी के ऊपर बात चल रही है, तो आप कब सही थे से कोई याद नहीं रखता। मैं अब एक घंटा आपके बीच में हूँ बोलने के लिए, हो सकता है मैं एक घंटे में 60 बातें अच्छी कर जाऊं, लेकिन अगर मैंने एक अपशब्द यूज कर दिया, कोई गलत बात बोल दी, तो 10 साल बाद भी अगर अमित जी कहेंगे रमेश जी को कि नवनीत जी को बुला लें, तो रमेश जी कहेंगे अच्छा वो प्रोफेसर जिसने ये शब्द यूज किया था। 60 में से 59 मेरी बातें निकल जाएंगी सही वाली, गलत एक पकड़ी जाएगी। याद रखिए बात, आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता, आप कब गलत थे इसे कोई कभी भूलता नहीं। तो इसलिए लोग कहते हैं सॉरी कर लो, वेरी सॉरी कर लो, पैंव पकड़ लो। मैं कहता हूं अपने ऊपर इतना, हमारे ऊपर इतना प्यारा से, हम बहुत प्यारे इंसान है ना, तो हमें इतना प्यारा नियंत्रण अपने ऊपर होना चाहिए ताकि मैं माफी मांगने की जरूरत ही ना पड़े मेरे को। ऐसी स्थिति क्यों आए, मैं क्यों झुकूं, मैं क्यों बेइज्जती कराऊं अपनी। पहले से ही अगर मैं प्लान वे में काम करूंगा तो ऐसी गलतियों से बचा जा सकता। पका हुआ फल जैसे होता है ना, पका हुआ फल की पहचान होती है। एक तो आम है या पपीता है, हम ले जाते हैं ना, केला भी, कोई फ्रूट देखिए आप। एक तो पपीता जैसे मैं आज सुबह ही खाया, मैंने काटा, बड़ा एंजॉय करता हूँ पपीता, बड़ा अच्छा मिल जाता है कई बार, तो उसमें एक तो नरम हो जाता है, दबा के पड़ जाता है। देखा आपने कभी पपीता को दबाइए, आप पहले नरम हो गया। एक उसको टेस्ट, अगर मेरी आंखें बंद कर दीजिए, मेरे मुंह में डालेंगे तो मैं पका हुआ बता दूंगा, वो ना कच्चा होगा ना स्मेल वाला होगा, वो मीठा होगा। कोई भी फल एक नरम हो जाता है, दूसरा क्या हो जाता है, मीठा हो जाता है, मीठा, स्वीट। आमतौर पर स्वीट फल जो होते हैं स्वीट हो जाते हैं, चाहे अंगूर है, चाहे पपीता है, चाहे आम है। और तीसरा उसका रंग बदल जाता है, रंग बहुत सुंदर हो जाता है, दूर से ही पता चल जाता है, रेडी वाले को देखते हैं हम रुक जाते हैं कि इसका रंग बहुत सुंदर है पपीते का, और जब टेस्ट करके देखते हैं तो मीठा निकलता है, और दबा के देखते हैं नरम निकलता है। तो तीन गुण हो जाते हैं एक मीठे फल में, आमतौर पर पके हुए फल के अंदर, नरम, मीठा और उसका रंग, कलर।
1: नवनीत सर एक बात और पूछना चाहूं, एक बात, हम लोग अभी जो है अमित सर के पास कुछ क्वेश्चन है आपके लिए, तो वो चाहेंगे कि आपसे बात करें, क्वेश्चन आंसर सेशन पूरा।
0: हाँ, मैं टाइम दूंगा, वेलकम, तो मैं चाहूंगा, इसका मतलब सुन रहा है ध्यान, अगर क्वेश्चंस हैं तो इसका मतलब कोई इंटरेस्ट ले रहा है और ध्यान से सुन रहा है।
1: जी
0: अभी अमित सर करते हैं, थोड़ा बात कर लें फिर क्वेश्चंस ले लेते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल
2: नवनीत जी, एवरी वर्ड ऑफ योर,
0: ऐसे ही परिपक्व मेच्योर्ड व्यक्ति, एक अच्छी पर्सनैलिटी के भी यही गुण होते हैं, जैसे मैंने पहले कहा विनम्रता, अकड़ नहीं, विनम्र, दबाओ तो जैसे फल था नरम,
1: बिल्कुल
0: ऐसे वाणी की बात की हमने, वाणी में मिठास, और तीसरा उसके चेहरे पर आत्मबल का, आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती है उससे, जब आपका करेक्टर अच्छा होता है तो आत्मिक बल का तेज आता है, रंग आता है। तो तीनों गुण, फके फल, पके हुए फल वाले, नरम, मीठा और रंगत, तो चेहरे पर रंगत, वाणी में मिठास और व्यवहार में विनम्रता। ह्यूमन टच की बात जो हम कर रहे थे वो तो हर जगह काम आती है जिंदगी में। इंसान इंसान तभी है अगर उसमें इंसानियत है। आपका व्यवहार सबसे पहले, आपको इंसान है, कोई किस पोस्ट पर है, क्या काम करता है, वो बाद की बात है। मान लो अमित जी हैं या ये बेटी रोशनी थी, छोटी उम्र की लग रही है मुझे, तो इनकी गलती नहीं है कि बाद में पैदा हुए, मैं जल्दी पैदा हो गया। ईयर ऑफ बर्थ इफ इज अर्ली, इट डजंट मीन कि मैं इनके साथ, छोटों के साथ, अनुज के साथ सही व्यवहार ना करूं। तो मेरा व्यवहार अच्छा, मुझे अच्छा पढ़ने का मौका मिल गया, मुझे मावा से अच्छा दिमाग मिल गया, तो मैं प्रोफेसर बन गया। तो मान लो कोई क्लर्क है या किसी और, कोई और कार्य करता है, कोई रिक्शा वाला है, इंसान की कीमत इंसान लिहाज से हमेशा हमारे हृदय में होनी चाहिए, और इंसानियत हर पग पर हृदय को टच करती है, उसको खुशी देती है, और बदले में रिएक्शन में इको के रूप में आप तो भी खुशी चाहते हैं। अगर आप जिंदगी में खुश रहना, कोई भी पढ़ ले कमा ले, अल्टीमेटली इंसान खुश होना चाहता है, आई शुड रिमेन हैप्पी। तो हैप्पीनेस की सीक्रेट यह है, वो ये FD कीजिए, प्यार की, स्नेह की, व्यवहार की, इंसानियत की FD कीजिए। बहुत बार मैंने इसको जमा कर देखा है, छोटी छोटी FD इतना प्यार देती हैं। मैं एक बार बस स्टैंड स्टेशन पे उतरा तो मेरे हाथ में अटैची थी, आजकल बड़ा लकी है कि रोलर लगे होते हैं, तो रोलर से आप लेके आ जाते हैं, छोटा बैग था, तो इमीडिएटली एक बुजुर्ग वार, अच्छी उम्र के होंगे मेरे से 15-20 साल बड़े, एक रिक्शा पुलर आए और मेरा अटैची उठाने लगे। मैं क्या आप क्यों उठा रहे हैं, कि सर मैं रिक्शा तक ले जाऊंगा। मैं क्या आप मेरे से उम्र में बड़े हैं, मैं उठाऊंगा। इतना कहते तो इसकी आंखों में चमक आ गई, कहते बाबू जी मुझे उम्र में बड़ा देख रहे हैं। तो एक छोटा सा सम्मान उसके प्रति, उसको कितनी खुशी थी। और जब घर उतरे तो मैंने कहा कितने पैसे, उसने कहा 30, मैं 30 दे दिए। मैं कहा रुक जाओ नीचे उतरो, नीचे उतरा, मैं उसको कहा आपसे गले मिलना है, तो जबकि उसको पसीना भी आया हुआ था, मुझे नहाना ही था घर जाके, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मैं उसको गले मिलके, जबकि वो मुस्लिम भाई थे और कपड़े भी ऐसे थे और दाढ़ी ऐसी थी, लेकिन मैं उसको जफ्फी डाली। मैं कहा यार तुम ईमानदारी की कमाई खाते, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। ये ह्यूमन टच है, पर्सनल टच है, इंसानियत का टच है। उसकी आंखों में पानी तैर गया इतनी बात, और 10 रुपए और दिए कि तुम ईमानदारी की कमाई खाते हो, ये तुम्हारी ईमानदारी का इनाम है। एक फ्रूट वाले से मैं, दो भाई थे, मैं कहा भाई दोनों इधर बाहर आओ, कहते सर क्या हो गया, मैं मिलना है बात करनी है, मैं कमाई के बहुत से साधन हो सकते हैं, तुम लोगों को हेल्दी चीज खिलाते हो, फ्रूट खिलाते हो, उन दोनों को प्यार किया, वो आज तक उस जफ्फी को भूले नहीं है कि सर आपने मुझे अप्रिशिएट कभी किसने किया ही नहीं, हजारों लोग हमारे से फ्रूट ले, किसी ने यही नहीं कहा तुम्हारा प्रोफेशन अच्छा है। तो एक पर्सनल टच, एक अप्रिशिएशन, एक अच्छा वाक्य किसी के लिए कितना हेल्दी हो सकता है। चंडीगढ़ में मैं एक बार किसी काम से गया तो मोची ने बहुत अच्छे से काम किया, मैंने मोची भाई कहा मैं आप खड़े हो सकते हैं, कहते क्यों खड़ा हो जी, मैं आपको प्यार करना है, तो मोची भाई खड़े हो गए, मैंने उनको प्यार किया, मैं इतने अच्छे से काम करते हो दिल लगा के। उसने फिर अपनी स्टोरी सुनाई शुरू की, सर मैं हमेशा ही ये नहीं देखता कितने रुपए का काम है कैसे है, मैं सोचता हूँ कि इसको दोबारा मेरे पास लाना पड़े, दी बेस्ट करके दो। एक बार मैं हमारे यहाँ स्टेट बैंक में एक गार्ड बंदूक वाला, मैंने देखा कि वो जो भी बुजुर्ग बहुत बड़ी उम्र का आता है 85-90 ईयर्स ओल्ड, तो उनका हाथ पकड़ के उनको गाइड करता है कि आप यहाँ खड़े हो जाए, कई बार अंदर इंस्ट्रक्शन देता है जो हेल्प के, मैडम देखना ये बुजुर्ग आए 90 साल के, इनकी हेल्प कर दीजिए, तो किसी का फॉर्म भरने में हेल्प कर रहा है, कोई कभी किसी की हेल्प करता है, तो आउट ऑफ द वे जाके वो हेल्प करता है। मैंने दूसरी बार देखा फिर वो सबकी हेल्प कर रहा था, तो मैंने उसको फिर कहा मैं आपसे सेल्फी लेनी है, कहते सर बैंक में सेल्फी अलाउड नहीं है, मैं बाहर आ जाऊं, बाहर आए सेल्फी ली, तो मैंने अपने ग्रुप में पोस्ट की, वो वायरल होते होते उनके स्टेट बैंक के मैनेजर पे पहुंच गई, मैनेजर ने उसको बुला के तारीफ की कि आपने हमारे SBI का नाक ऊंचा किया, इतने लोगों की तारीफ नहीं हुई, तुम्हारे व्यवहार की तारीफ हुई है। तो छोटी छोटी चीजें, हमारे यहाँ एक वॉशरूम बगल में है, मैं आपको ह्यूमन टच की बता रहा हूँ बात, बहुत कुछ दिन से मैंने महसूस किया साफ रहता है, तो मैं यूज करके बाहर आया, तो वो स्वीपर जो थे वो वहां पर थे, तो मैंने उनको कहा कि आइए, कहते सर बताइए क्या क्या बात है, मैं क्या आपको ना थपकी देनी है, कहते किस बात की, मैंने कंधे बात रखा, मैं जब से आप आए, अभी आए ना आप 2-3 हफ्ते पहले, कहते हाँ, मैं जब से आप आए ये स्थान बहुत साफ रहता है, आप देखिए कि वो कहते हैं वो एक जहर होता है पोटेशियम साइनाइड, वो बहुत तीव्र रिएक्शन करता है, मैं उसका तो रिएक्शन मैंने कभी अनुभव किया नहीं कि लगा के देखूं कितनी जल्दी करता है, लेकिन मैं अप्रिशिएशन का, दिल से निकली प्रशंसा और उसके अच्छे शब्दों का असर मैंने देखा है, मेरे कहते ही लेस देन सेकंड उसकी आंखों में पानी आ गया, वो स्वीपर भाई कहने लगे, कहते शायद शुक्र है किसी ने देखा तो सही, मैंने जब कहा कि आपके आते हुए ये स्थान बहुत साफ रहने लग गया है, उसकी आंखों में पानी आ गया, कहते सर शुक्र है किसी ने देखा तो सही, लेस देन ए सेकंड पानी आंखों में आ गया, इतना इंसान। मैंने एक बार और हमारे दूसरे विभाग में मैं गया, तो वहां एक स्वीपर थे, मैंने गले में हाथ रख के कहा पीठ पे, मैं कहा आप कैसे हो, कहते सर पहली बार किसी ने गले मिलकर ऐसे पूछा आप कैसे हो, पूछता भी तो इंसान ही नहीं मानता कोई। तो ये देखिए कि जितना आप छोटा छोटा व्यवहार किसी इंसान के साथ करते हैं, कितना वो खुशी आपको देता है, कितना खुशी उसको देता है, यही इंसानियत है। जितना हम इसको प्रैक्टिस करते हैं, जितना हम जीते हैं, उतनी हमें कुछ खुशियां मिलती चलती हैं जिंदगी में। एक और गुण बहुत हेल्प करता है जो मैंने बहुत अजमा के देखा है, वो है कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड। जिंदगी में बहुत कुछ हमें दिया है, ये जिंदगी बहुत प्यारी है, लाइफ इज ए ब्यूटीफुल गिफ्ट। मैं हमेशा बच्चों से कहा करता हूँ, प्लीज डोंट इंसल्ट योर लाइफ, दिस इज द बेस्ट गिफ्ट मदर नेचर हैज गिवन यू, यूटिलाइज इट फुली, एवरी सेकंड, एवरी डे, एवरी मिनट, हर पल इसका एंजॉय करने के लायक है। एंजॉय का मतलब ये नहीं कि प्योर पड़ जाओ, ये मतलब नहीं है। रुचियां जो है वो आपको गलत दिशा में ले जा सकती हैं। दो किस्म का होता है, एक विनाश, विकास। रुचियां वो फॉलो करनी है, खुशियां वो फॉलो करनी है जो विकास के पथ पे लेके जाए। तो जिंदगी विकास पे चलने के लिए, इवॉल्व करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए, तो यू हैव टू बी सिलेक्टिव। उच्च खुशियां, नीच खुशियां, अदना खुशियां, अदना खुशियां दुखों में फंसाएंगी। इसलिए कोई भी नशा किसी किस्म का भी है, फौरी आपको हेल्प दे सकता है, आराम दे सकता है, सुकून दे सकता है, मजा दे सकता है सो कॉल्ड, बट अल्टीमेटली टेक टू विनाश, क्यों गलत दिशा है, वो तरीका गलत है। तो जो उच्च खुशियां हैं, पॉजिटिव चीजों में खुशी है, वो खुशी जीने के लिए है, पाने के लिए है। तो उसमें एक बहुत चीज जो हेल्प करती है खुश रहने में और आपको ग्रो करने में, नेचर का लॉ भी है, वो है ग्रेटिट्यूड। और इसका बड़ा क्रिटिकल सा नियम है, बड़ा मजेदार नियम है, जिसके पास है उसे अधिक दिया जाएगा और वह और समृद्ध होता जाएगा, और जिसके पास नहीं है उसके पास जो है वो भी धीरे धीरे उससे ले लिया जाएगा। अगर कृतज्ञता नहीं है, इफ यू डोंट काउंट योर ब्लेसिंग्स, तो धीरे धीरे ब्लेसिंग्स छिनने लगेंगी आपसे, खोती चली जाएंगी, और जब अपनी ब्लेसिंग्स को आप काउंट करते हैं तो ब्लेसिंग्स मल्टीप्लाई होने लगती हैं। तो ग्रेटिट्यूड इज ए मैग्नेटिक पावर, इट इज ए लॉ ऑफ अट्रैक्शन। एक बुक भी आई थी, अगर किसी ने पढ़ी हो, सीक्रेट, वो तो बात ही कर रही है, ग्रेटिट्यूड की मेनली बात करते हैं वो। तो समान ही समान को आकर्षित करता है। अगर हम जो चीज हमारे अंदर है, पॉजिटिविटी है, थैंकफुल है, तो आप वैसे देखिए, अगर घर में कोई लेडी काम करती है, भाई काम करती है, कोई आपका अजीज है, कुछ मांग के ले जाए, दो बच्चे हैं, कुछ आपसे चीज ले गए, बुक ले गए, एक ने कभी आपको पलट के थैंक यू नहीं कहा, भूल भी गया, पहचानता नहीं है, और एक आपके लिए बहुत थैंकफुल फील करता है, बहुत आपको याद करता है, करता है, धन्यवाद देता है, आपको सजदा करता है, आपको दोबारा किसको देने का मन करेगा? आप ही देख लीजिए, जो रिकॉग्नाइज करता है, जो थैंकफुल है, जो ग्रेटफुल है, उसके लिए आप कुछ भी करने तैयार होते हैं। किसी किसी के लिए हम कहते हैं इसलिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, वो व्यक्ति अक्सर वही होता है जिसके लिए आप कुछ बहुत कुछ कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, जिसके अंदर ग्रेटिट्यूड की फीलिंग होती है। यही मदर नेचर का कंसेप्ट है, जो थैंकफुल है, जो ग्रेटफुल है, जो किसी के किए को एहसान को मानता है, उसको मदर नेचर और ब्लेसिंग्स देती है। तो लकी है वो जो अपने अंदर कृतज्ञता के भाव को जगा सके। एक जिंदगी में हमारे पास एनर्जी और टाइम बड़ा लिमिटेड है, एम्पल नहीं है, अनलिमिटेड नहीं है, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम सिचुएशंस के अनुसार रिएक्शन ना करें, रिस्पॉन्स करें। डोंट रिएक्ट, रिस्पॉन्ड। पेशेंस, धैर्य हृदय में होगा, टॉलरेंस होगी, सहनशीलता होगी, तो आप परिस्थितियों में रिएक्ट नहीं करेंगे। रिएक्ट करना आसान होता है, रिस्पॉन्ड करना मुश्किल होता है। रिस्पॉन्ड में स्थिति को संभालना पड़ता है, दो पानी के घूंट पीके शांति से बात करनी पड़ती है। बीरबल का आप देखिए कितना बड़ा एग्जांपल है, हमारे रोल मॉडल है। वो कभी भी सिंपल से सिंपल रिप्लाई भी एकदम नहीं देते थे, सोच के समझ के देते थे कि जहां पर ना कल बताऊंगा, नेक्स्ट डे। यूजली ही हैज बीन रिस्पॉन्डिंग नेक्स्ट डे, और द नेक्स्ट डे रिस्पॉन्स वॉज वेरी गुड। हम कई बार कहते हैं ओवर रिएक्शन में रहते हैं, ये कहा ये आंसर, वो गलत भी होता है ठीक भी होता है। तो इसलिए जिंदगी में पेशेंस बहुत बड़ी चीज है, हम रिएक्ट नहीं करें बल्कि रिस्पॉन्स करना सीखें, और छोटी छोटी बातों को इग्नोर करना भी सीखें। जैसे कहते हैं कि दुनिया में बेहतरीन रिश्ता वही होता है जहां एक मामूली सी मुस्कुराहट, किसी ने गलती कर दी थोड़ा मुस्कुरा दीजिए, रिलैक्स है। देखिए जब हम एज ए फादर एज ए टीचर खड़े होते हैं, बच्चे से गलती होती है तो वो कब तक वेट करता है, उसको कब पता चलता है कि उसको माफ कर दिया? जब हल्का सा मुस्कुरा देते हैं, बात आई गई, रफा दफा हो गई। और अगर हमारे से गलती हो गई है तो हल्की सी छोटी सी सॉरी बोलकर भी जिंदगी दोबारा पहले जैसी हो सकती है। लेकिन कई बार टाइमली सॉरी ना बोलकर या टाइमली किसी को माफ ना करके इतना हमारा रिश्ता खिंच जाता है कि कई बार रिपेयर ही नहीं हो पाता। तो रिश्तों में चाहे कहीं भी है, हमें थोड़ा सा धैर्य और सहनशीलता का गुण भी अपने अंदर रखना है। इसके अलावा हम जो संसार में सेवा के लिए बड़ा जोर देते हैं, लोग सेवा कीजिए, हर संस्था में जाइए आप, सेवा बहुत जोर है, तो हम सेवा देते नहीं है। असल में सच्चाई ये है, वी आर रिटर्निंग व्हाट वी हैव गॉट। और हमारे पास कुछ होगा नहीं तो देंगे कहां से, कुछ मिला है उसमें से हम लौटा रहे हैं। चर्चिल की बात बड़ी अच्छी लगती थी, मैं पढ़ी एक जगह लाइन, मुझे बड़ी टच की, वो वी मेक ए लिविंग बाय व्हाट वी अर्न एंड वी मेक ए लाइफ बाय व्हाट वी गिव या व्हाट वी रिटर्न। जिंदगी में जो हम कमाते हैं वो तुम्हारी जीविका है, जो भी हम अर्न कर रहे हैं किसी भी रिसोर्स से। असली जिंदगी वही है जो हम किसी के लिए काम आते हैं, किसी को जो हमें मिला है जिंदगी में हम लौटाते हैं। इसलिए वो बहुत महत्वपूर्ण है कि जिंदगी में हम किसी के लिए निस्वार्थ भाव से कितना काम आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बातें बहुत हैं, बहुत सी की जा सकती हैं, लेकिन मैं समझता हूं क्योंकि मुझे इशारा किया गया है कि क्वेश्चन है, तो बेटर है कि क्वेश्चन की रिप्लाई कीजिए, तो ज्यादा मैं प्रयास करता हूँ कि मैं कितना सफल हूँ, देखते हैं प्लीज।
1: जी जी, शुक्रिया अमित जी, हमारे साथ अभी आपको सवाल जवाब करेंगे। जी अमित जी,
2: नवनीत जी, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, मेरी कोशिश ये थी, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच नवनीत जी, और आपका एवरी वर्ड ऑफ योर्स फुल ऑफ विजडम, और मेरी पूरी कोशिश थी उसको एक एक पॉइंट को जोड़ डाउन करना।
0: So kind of you.
2: और ये जो भी आपका एक एक पॉइंट है, ये जो कॉलेज के स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे रोशनी, तो कॉलेज और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को एवरी वर्ड ऑफ योर्स जो आप बात करेंगे अभी और जो अभी तक आपने की है, इस पे चिंतन होगा, मंथन होगा, बहुत सारी चीजें निकाली जाएंगी। एटलीस्ट फॉर अ वीक हम लोग हर स्पीकर को फॉलो करते हैं।
0: जी जी जी
2: जी,
0: मैंने कोई थ्योरेटिकल बात नहीं बताई, जो प्रैक्टिस में चीजें आ सकती है, जो हम कर सकते हैं, इस पे और खुल के बात हो सकती है। और अभी क्वेश्चन हो तो पूछिए आप।
2: जी सर जी, क्वेश्चंस हमारे पास में इंटरनेशनल डिवाइन कॉलेज से रोशनी है, और इनका पार्ट है ह्यूमन वैल्यूज का, इनको पढ़ाई जाती है ये सारी चीजें, लेकिन आप अपने प्रैक्टिकल अनुभव जब उनको बता रहे हैं तो बहुत गहराई से इनको ये बात छूने वाली है। जी रोशनी, आपका सर के लिए प्रश्न आपका।
3: थैंक्स फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, हमें नवनीत सर जैसे शख्सियत से मिलने का मौका मिला है, वो बहुत अच्छा सिखा रही है, उनकी वैल्यूज बहुत अच्छी है, उनका सोसाइटी में कॉन्ट्रीब्यूट बहुत अच्छा है। चलिए धन्यवाद, अपने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और मेरे आपसे आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, इसलिए मेरे पास आपके लिए थोड़े से कुछ प्रश्न है। जैसे आप हर किसी को भी प्यार देते हो, चाहे मोची हो, चाहे कोई कैब ड्राइवर हो, आप सबको इतना प्यार देते हो, तो मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन ये है कि जैसे मैं कॉलेज में थी, प्लस वन प्लस टू में थी, मेरे बाल अच्छे से नहीं होते थे, मेरी यूनिफॉर्म प्रॉपर नहीं होती थी, इसलिए बच्चे ना मुझे बहुत ज्यादा डिप्रेस फील करने के लिए बहुत ज्यादा बुली करते थे, मुझे बहुत ज्यादा परेशान करते थे, पर मैंने उसे फाइट किया, मैं लड़के बाहर आ गई, और मैंने इतना इतना नेगेटिव वो था, कहा था कि मैं डिप्रेशन में चली गई थी, दो साल एटलीस्ट 2 साल मैंने डिप्रेशन में काटे हैं, मैं नींद की गोलियां लेती थी। तो मैं उससे रिलेटेड आपको पूछना चाहूंगी कि आगे मैं टीचर बन रही हूँ, मैं बीएड कर रही हूँ, मेरे आगे बच्चा ऐसा काम ना करे, इसलिए मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि सर मुझे ये बताइए कि मैं अपने बच्चों को क्या शिक्षा दूँ कि वो किसी के साथ नेट बुलिंग ना करे, किसी को परेशान ना करे, वो सबसे जो मैंने
0: मेरे बच्चे। अच्छा क्वेश्चन है आपका, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप एक काम करें, मैं एक कभी देखो बहुत सी चीजें बताने वाली थी, अभी भी थी तो जुड़ गई है बात, अब आ गई, मैंने बताई नहीं थी अभी तक। मैं बच्चों को अक्सर कहा करता हूँ, खुद भी इसको काफी हद तक फॉलो करने की कोशिश करता हूँ कि 4 बातें जो हैं उसको डस्टबिन में फेंक दो शुरू में। पहली बात, लोग क्या कहेंगे, आपको किसी को मेंटर बनाना चाहिए, चाहे वो अमित जी हो, नवनीत जी हो, XYZ कोई भी हो, जिसको आपको प्यार पसंद आता है कि यार ये बंदा सही है, थोड़ा फॉलो करो, जज भी करो उसको थोड़ा सा, ऐसा नहीं कि अंधाधुंध आप आंख बंद कर चलो उसके पीछे। अगर वो कह रहा है इट मे बी योर फादर, इट मे बी योर मदर, इट मे बी सिस्टर और सम फ्रेंड इवन, वहां तक फॉलो करो, जहां तक थोड़ा जजमेंट भी रखो, लेकिन उसको खुश करना है, मतलब उसके मोहर लगवा लो। आप सोसाइटी में इतनी वैरायटी है, सबसे मोहर लगवाओगे तो कभी भी कंक्लूड नहीं कर पाओगे। एक तो जो व्यक्ति हर किसी को प्लीज करना चाहता है दुनिया में कभी कामयाब नहीं होता, क्योंकि इतनी डिमेंशंस हैं, किसी को झूठ बोलना पसंद है, किसी को सच बोलना पसंद है, दोनों को पसंद करूंगा मैं, दोनों के पीछे चलूंगा तो कहां जाऊंगा, कंफ्यूज हो जाऊंगा ना। तो इसलिए अपने आप को फोकस पॉइंट कम रखना चाहिए, लेकिन अंधा नहीं होना चाहिए। पहला उसने डुबो दिया कहीं, आप थोड़ा सा अपना लॉजिक, अपना माइंड भी ब्रेन यूज करो, लेकिन आपको जहां तक ठीक लग रहा है उसको फॉलो करो, और उससे पूछो ये सही है गलत है, वो कहे सही है तो बढ़ो आगे। लोग क्या कहेंगे पब्लिक ओपिनियन के चक्कर में कई बार गड़बड़ हो जाती है। दूसरी बात, ये कोई भी चीज सोचना कि मुझसे नहीं होगा, अगर एक से हो सकता है तो दूसरा भी करने की कोशिश तो कर ही सकता है, उतना नहीं होगा तो ठीक है कोई बात नहीं, मैं एवरेस्ट नहीं चढ़ सकता लेकिन छोटी पहाड़ी चढ़ सकता हूं मैं भी, तरीका तो उसी का है। तो ये कहना कि मुझसे नहीं होगा पहले ही डिक्लाइन कर देना, ये भी कोई अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। अपने स्टूडेंट्स को, अपने बच्चों को, जो भी आप मेंटर जिसको कर रहे हैं उसको ये सेंटेंस काट दे, और एक अभी मेरा मूड नहीं है, ये मूड कहां से स्विच ऑन होगा, ये तो मूड कभी नहीं बनेगा। तो ये सेंटेंस ऐसे है कि यू शुड बी रेडी, लाइफ इज शॉर्ट, आपको हमेशा तैयार रहना है। और चौथी बात, मेरी तो किस्मत ही खराब है, किसी पहलू में अगर आप सफल नहीं होते तो किस्मत को दोष देना, ये चारों चीजें हमें आगे नहीं बढ़ने देती। लोग क्या कहेंगे, मुझसे नहीं होगा, अभी मेरा मूड नहीं है, मेरी किस्मत ही खराब है। असल में जब आपका ये लेवल तब रहता है जब आपके, जैसे बिटिया कह रही थी बालों के बारे में कि उनको लेके लोग जज करते हैं, मैं डिप्रेशन में आ गई। असल में चीज क्या है कि जब तक हमारी लाइफ में बैलेंस वायर्ड है, लाइफ इज ए बैलेंस, बाहर की चीजें भी मैटर करती हैं लेकिन भीतर जो है ज्यादा मैटर करता है। अभी मैं एक जगह एक लेक्चर दे रहा था, मैं बताया था कैलगरी टावर है कनाडा में, बहुत मशहूर टावर है, उसका जो मटेरियल है वो लगभग मान लो 10,000 टन है रफली, जो मटेरियल लगा है कंस्ट्रक्शन मटेरियल टोटल, आपको सुन के हैरानी होगी कि लगभग 6,300 टन यानी कि ऑलमोस्ट 65% या 60% इन बिटवीन इज इन साइड द अर्थ, जो अर्थ लेवल है उसके नीचे कितना है, से मोर देन 60%। तो जो टावर इतना ऊंचा बना है, जो वर्ल्ड फेम का कैलगरी बल्कि है सही उसको प्रोनाउंस करें तो वो उसमें लोग जाते हैं देखने के लिए पूरे वर्ल्ड से, तो उसका 60% कहां है, इन साइड द अर्थ नीव फाउंडेशन। तो अगर हमारी फाउंडेशन स्ट्रांग होगी, हमारी पेरेंट्स के द्वारा, टीचर्स के द्वारा, अपनी अंडरस्टैंडिंग के द्वारा अपनी डेप्थ बढ़ाने की जरूरत है, फीलिंग्स के अंदर, पॉजिटिविटी के अंदर, बाय स्टडी, बाय प्रैक्टिस, इट समटाइम कम बाय मैच्योरिटी बाय टाइम। तो 60% इनसाइड है तो बाहर 40% मैटर करता है। उस 40 में आपकी एजुकेशन भी है, आपकी शक्ल भी है, आपकी गाड़ी भी, आपके ठहरने का हालात भी, आपके बातें करने का ढंग भी है, आपकी एजुकेशन, ये बाहर की चीजें हैं जो बाहर से पैरामीटर स्टडी किया सकते हैं। 60% तो बिल्डिंग में भी अंदर थी, तो इंसान की बिल्डिंग तो असली 90% अंदर है। तो आपको कॉन्फिडेंट रहना है आपके 90% पर। तो मेरे बाल सफेद हो गए हैं, मेरा रंग काला है, या मेरा कद छोटा है, मैं मोटा हूं, मैं ये हूं, ये बातें 10% है। मैं एक अच्छा इंसान हूं, मेरी सोच अच्छी है, आई एम ए गुड ह्यूमन बीइंग, 90% मैटर्स। तो मुझे उस 90% पर अपने अंदर विश्वास जगाना है और बच्चों के अंदर भी विश्वास जगाना है कि वो सही है, उनकी दिशा सही है। तो सही के साथ कुदरत खड़ी होती है, कायनात खड़ी होती है, विश्वास रखिए। कॉस्मिक एनर्जी में नियम है, जो हेल्पिंग फोर्सेज होती हैं, जो राइट पर्सन होता है, विश्व में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो सही रहा हो उसको दिखते ना आई हो, रिकॉर्ड समझिए, उसके सही होने का प्रमाण ही होता है कई बार कि वो दिक्कतों तकलीफों को फेस कैसे करता है, ये भी उसका एग्जामिनेशन है। जैसे हम बीटेक करते हैं या MBBS करते हैं तो कई कोर्सेज कंपलसरी कोर्सेज होते हैं, ये तो पढ़ने ही पड़ेंगे। तो अगर आपको एक जीवन में एक लेवल से ऊपर उठना है तो कुछ हर्डल्स को पार करना ही पड़ेगा। उसमें से एक हर्डल ऐसा होता है, लोग कुछ कुछ कहेंगे आपको, लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे, हो सकता है आप ईमानदार लोग आपको बही मान कह रहे हो और आपका करेक्टर सही हो, आपको करेक्टरलेस बता रहे हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन उन सब चीजों को हम कैसे हैंडल करते हैं, इतनी मैच्योरिटी से हैंडल करते हैं, और उनके लिए भी दुआ करते हैं कि उनका शुभ हो। आप देखिए जितने ग्रेट मैन हुए हैं उनको सूली पे चढ़ा दिया गया, तब भी उन्होंने कहा, अपने गॉड को कहा कि भाई इसको माफ कर देना, इनको पता नहीं क्या कर रहे हैं। अगर दयानंद जी जो आर्य समाज के जो फाउंडर थे उनको जहर दिया गया, उन्होंने अपने जहर पीने वाले को उसने पिलाया था, उसको भी पोटली दी थी, धन दे के बाहर भेज दिया नेपाल कि निकल जाओ तुम्हें मार देंगे। कल्प्रिट को, मतलब आप देखिए कितने इतिहास भरा पड़ा इन घटनाओं का कि कितना टॉलरेंस, कितनी पेशेंस, कितना बड़ा दिल होता है, क्योंकि वो इनसाइड उनका 90% जो होता है, अंदर वो मैटर करता है। शरीर चला गया कोई बात नहीं, वो 10% मैटर करता है। तो हम फोकस किस पे कर रहे हैं उसके कारण दिक्कत आती है। तो अगर जैसे आपने बताया कि डिप्रेशन या आप डाउन गए, तो उस समय शायद अगर ऐसी मेंटरिंग उससे पहले आपको किसी ने की होती, इस पे काम आपने भी किया होता, तो स्थिति आती नहीं। तो आपके बच्चे की फैमिली में कल को, या आपके स्टूडेंट्स, या आपके सराउंडिंग में लोग हैं, उनके ऊपर काम करके यही समझाना है कि 90% जो अंदर है, भाव, सोच, पॉजिटिविटी, उसकी ग्राउंड मजबूत कीजिए। 10% में लोग कुछ कुछ कहते रहेंगे, इसी पे के लोग कहते हैं, कहते रहें तो कोई बात चलेगा।
2: जी, एक सवाल हमारे पास में और आया सर, कि ये जो ह्यूमन टच से जो आज के दिनों में ये मिसिंग एलिमेंट है, ये देखा गया कि सिर्फ सिलेबस को आपने फिनिश करना है ऑन डेडलाइंस, और ह्यूमन

0: वहां पे लैक कर रहा है। लैक होने की वजह से क्या क्या सोसाइटी एट लार्ज हम जो चीजें देख पा रहे हैं और कैसे हम ह्यूमन टच इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, एक सवाल। और जब हम ह्यूमन टच से एज अ पर्पस टीच कर रहे हैं तो आत्म उत्थान में आपको कैसे ये मदद करती है चीजें?
1: मैं समझता हूँ कि टीचिंग इज सच ए नोबल प्रोफेशन, इसमें इसका सबसे बड़ा रोल है, क्योंकि जब तक आपका दिल बच्चों के साथ नहीं है तो आप उनकी लाइफ को एक पॉजिटिव मोड नहीं दे सकते। उनको अर्निंग
0: बिल्कुल
1: मशीन तो बना देंगे आप। अभी एक बच्चे ने सुसाइड किया हमारे रुड़की में, वो बीटेक कंप्यूटर साइंस था, यहीं से IIT रुड़की से, लॉन्ग बैक 5-6 साल पहले MNC में जॉब कर रहा था। उसके फादर भी यहीं से पढ़े हुए थे, रुड़की के मतलब IIT के पढ़े हुए थे, और उसके ग्रैंड पापा जो थे, ग्रैंड फादर, ही वॉज प्रोफेसर इन IIT सम टाइम बैक। तो आप देखिए, इतनी लर्नर्ड फैमिली में होते हुए बच्चे ने 5 साल MNC में जॉब करके जॉब छोड़ दी, और अल्टीमेटली 2-3 साल घर में रह के तोड़फोड़ करके परेशान होकर बहुत बुरी हालत में उसने अपने आप को सुसाइड कर लिया उस बच्चे ने। देखिए लाइफ की फ्रस्ट्रेशन, कहने को IIT में एडमिशन होना बहुत बड़ी कामयाबी है, जिंदगी बन गई, जिंदगी कहां बनी, जिंदगी तो खत्म हो गई, इससे तक मजदूर अच्छा जी लेता है। तो लाइफ इज ए बैलेंस, जब तक बैलेंस नहीं होगा और पर्सनल टच नहीं होगा, अगर टीचर्स का स्टूडेंट्स का पर्सनल टच होगा तो उनकी लाइफ को बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट होता है। और टीचिंग में तो सबसे बड़ी चीज जो है, बच्चों से रिस्पेक्ट तो मिलती है, प्यार तो मिलता है, और वो तभी मिल सकता है अगर आपका पर्सनल टच होगा। अगर आप सिर्फ एक फॉर्मेलिटी से एक वहां जाते हैं, फॉर्मेलिटी से एक पढ़ाते हैं, उनके जीवन में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, तो वो भी उस आपको अपना नहीं समझते हैं। तो ये गिव एंड टेक दोनों तरफ से है, समय के साथ चीजें प्रोफेशनल होती जा रही है, मैं भी देख रहा हूँ समय के साथ, तो वो उतना ही टीचर रिस्पेक्ट खोते जा रहे हैं। तो बच्चे अभी भी रिस्पेक्ट करना चाहते हैं, मेरा अनुभव यह है कि बच्चे अभी भी रिस्पेक्ट करना चाहते हैं। अगर आपके पास एज ए टीचर कुछ वाकई में ऐसा देने को है जो देने लायक है, उनकी लाइफ को इम्पैक्ट कर सकता है, तो उसका रिस्पेक्ट करते हैं, रिगार्ड करते हैं, उसको रिसीव करते हैं, और वो लाइफ लॉन्ग उस पे चलने की कोशिश भी करते हैं। तो मैं समझता हूँ टीचर्स और पेरेंट्स की जिम्मेवारी ज्यादा है कि वो, देखिए मीडिया का, सोशल मीडिया का, मोबाइल का, चीजों का युग तो है, तो बच्चे उधर फोकस हो जाते हैं, लेकिन अगर आप टच देंगे, आप भी फोकस रहेंगे अपनी छोटी जिंदगी में, तो वो फिर कट जाएंगे। तो दोनों तरफ से है, बच्चे भी इंटरेक्ट करें, सीखें उनकी लर्निंग से, कि बहुत सी चीजें जिंदगी के निचोड़ जो है वो आपको व्हाट्सएप और गूगल पे नहीं मिलते, वो पर्सनल टच से ही मिलेंगे। तो दोनों तरफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने टीचर्स को, अपने पेरेंट्स से जो बेस्ट हम ले सकते हैं लेने की कोशिश करें। और मैं समझता हूँ टीचर और पेरेंट्स की जिम्मेवारी अधिक है, उनका अनुभव अधिक है, उनको पता है कि उनको पता है, तो वो दें, कड़वा घूंट पड़ पीना ही पड़ता, कि बच्चा नहीं सुनता तब भी सुनाए, बताएं, क्योंकि वो बड़ा यूजफुल है इंटरेक्शन। वो इंटरेक्शन, पर्सनल टच बहुत रोल प्ले करता है। लव इज द मोस्ट पावरफुल पावर, यू कैन कॉल इट, इन द वर्ल्ड स्टिल। प्यार दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, और वो बिना टच के, ह्यूमन टच के, पर्सनल टच के नहीं आ सकता, ठीक है? तो खाली माँ का प्यार नहीं चाहिए, हर किस्म का प्यार एक इंसान को चाहिए होता है। तो वो प्यार जो है, निस्वार्थ प्रेम जिसे कहते हैं आप, प्यार के लिए प्रेम इज बेटर वर्ड आई फील, नो भी निस्वार्थ भाव से जो होगा उसका लाइफ लॉन्ग इंपैक्ट पड़ता है आदमी की पर्सनैलिटी के ऊपर। वो हम बड़ों का, जो सीनियर है, सीनियर सिटीजन है, घर में ग्रैंड पेरेंट्स हैं, या पेरेंट्स हैं, या टीचर्स हैं, सबका रोल है कि वो दें। तो ये सोसाइटी में जो डिप्रेशन बढ़ रहा है, जो अवसाद बढ़ रहा है, जो नेगेटिविटी बढ़ रही है, ये उसमें बहुत बड़ी ब्रेक लग सकती है जब पर्सनल टच होगा। वो जो बचपन में जैसे हम छोटे थे, दादा दादी नाना नानी गोद में लेकर कहानियां सुनाया करते थे, उन सब कहानियों के पीछे कोई मॉरल होता था, तो वो कहानियां अब भी सुनाई जानी चाहिए। अब अगर पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स नहीं है, टीचर्स सुनाएं, हम आपस में जो वॉलंटरली जो काम कर सकते हैं बच्चे, वो छोटी छोटी चीजें शेयर करें। हमारे यहाँ तो पंचतंत्र की बहुत कहानियां थी, छोटी छोटी चीजें बहुत लाइफ लॉन्ग इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं। एक जो हमने सुनी थी बात बचपन में कि लालच बुली बुरा है, मैं समझता हूँ ये किताबें, सारा ग्रंथ, सारे एक्सपीरियंस, एक तरफ एक घटना सुनी थी कि वो लोमड़ी बड़ी चलाक थी, उसने कौवे को कहा कि तू बहुत अच्छा गाता है, उसके मुंह से वो टुकड़ा गिरा और वो लेके भाग गई, तो ये चलाकी चुस्ती के कारण कितना उसका लॉस हुआ, उसको खाना चला गया। ये एक छोटी सी बात सुनी हुई जो है वो कितनी इम्पैक्ट क्रिएट करती है, लाइफ लॉन्ग इम्पैक्ट क्रिएट करती है। तो वो चीजों की अभी भी जरूरत है, उसको इग्नोर ना करें बड़े, वो शेयर करें और बच्चे भी शेयरिंग लें, दोनों की जिम्मेदारी, ताकि इंटरेक्शन बना रहे।
0: बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने सर, जैसे कि कोई टीचर अगर पूरी ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी के साथ में लविंगली पर्पसली, यही उसकी इंटेंशन है कि बच्चों को इम्पावर करना है और उनकी लाइफ में मीनिंगफुल चेंजेस लाने हैं खुद इम्पावर्ड होके, तो जब इस रास्ते पे कोई टीचर चलता है तो इसका कनेक्शन हमारी आत्म उत्थान, हमारी अपनी शांति, हमारी अपनी जिंदगी में उसके साथ में क्या कनेक्शन है, क्या थोड़ी सी रोशनी डालेंगे इस पे?
1: देखिए, हम जो भी हम गति करते हैं, एक्शन करते हैं, या थॉट प्रोसेस करते हैं, या कर्म करते हैं, या बोलते हैं, वो हम किसी ना किसी फीलिंग से करते हैं। हमेशा कोई फीलिंग इन्वॉल्व होती है, कोई भावना इन्वॉल्व होती है उस काम को करते हुए। वो नेगेटिव भावना हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है। जब हम हम किसी बच्चे को मेंटरिंग कर रहे हैं, स्टूडेंट को या अपने बच्चों को मेंटरिंग कर रहे हैं, पड़ोसी कर रहे हैं, मैं आप लोगों के साथ हेल्पफुल होने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं किसी भावना से कर रहा हूँ। वो भाव मुझे पता हो सकता है, आपको नहीं पता कि मैं अहम से कर रहा हूँ या विनम्रता से कर रहा हूँ, सरलता से कर रहा हूँ, कृतज्ञता से कर रहा हूँ कि जिंदगी में पाया इतना मैं थोड़ा बांट दूं, भाई बोझ बोझ है मेरे कंधों पे, बहुत सीखा है मैंने, थोड़ा बांट दूंगा शायद बोझ कम हो जाए। ये भावना हो सकती है। एक हो सकती है कि मैं अहंकार से बोलूं, देखो मुझे कितना पता है, ये सब सुन रहे मेरी बात, तो मैंने क्या खोया क्या पाया सिर्फ मुझे पता है। तो हम जो भी काम करें, देखिए बनिया बोलते हैं, कास्ट होती है बनिया, जो बिजनेस कम्युनिटी होती है वो तो ठीक है, मैं उस जाति की बात नहीं कर रहा हूँ, असल में बनिया बिजनेसमैन वो है जो बनाने का काम करे, गेन का, कि उसका खर्च कम हो आमदनी ज्यादा हो, वो है बनिया, वो है व्यापारी। तो जीवन के लिहाज से हमें सच्चे व्यापारी बनना है, हमने लूज कम करने हैं पॉइंट्स, गेन ज्यादा करने हैं, तब हम प्रॉफिट में रहेंगे। तो जो भी हम काम कर रहे हैं जिंदगी में, वो हमने अपने आप को तोल के करना है कि मेरी कौन सी भावना है इसके पीछे, और वो भावना पॉजिटिव है तो मेरा अपना निर्माण होता है, मेरे आत्मिक पॉइंट्स बढ़ते हैं। असल में जैसे इंडेक्स होता है ना, ये सेंसेक्स होता है या निफ्टी होता है, वो आपकी मार्केट की वैल्यू को बताता है, ऐसे ही इंसान के अंदर आत्मबल होता है, उसका आत्मिक धन होता है, वो उसकी यूटिलिटी को बताता है कि नेचर में विश्व में हमारा लेवल क्या है, हम कहां खड़े हैं, और वो उतना ही बढ़ता जाता है जितना हम पॉजिटिव होते हैं, उसके लिए किसी की मोहर की जरूरत नहीं है। जैसे हेल्थ का इंडेक्स है, जितना मैं अच्छा खाता हूं, सलाद खाता हूं, फ्रूट्स खाता हूं, अच्छी हवा सांस लेता हूं, पानी साफ पीता हूं, नशों से विषयों से बचा रहता हूं, उतनी मेरी हेल्थ, आई फील बेटर फ्रॉम इनसाइड, उसके लिए मुझे किसी मोहर की जरूरत नहीं है, किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, टेस्ट आप कर सकते हैं चीजों से, नहीं उसकी खुशी मेरे साथ ही है कि मैं हेल्थी हूं। तो जैसे हेल्थ पाना किसी पे एहसान नहीं, उसकी एंजॉयमेंट खुद होती है, ऐसे ही आत्मिक रूप से पॉजिटिविटी का जो लाभ है उसकी एंजॉयमेंट भी आपके पास ही है, तो उसके लिए किसी के तालियों की क्लैपिंग से जरूरत खत्म हो जाती है। यू फील गुड फ्रॉम इनसाइड, यू फील वर्थ लिविंग, यू फील योर लाइफ ब्लेसिंग, दूसरों को लगता ही है ब्लेसिंग है, आपको खुद लगता है मेरी लाइफ दूसरों की ब्लेसिंग है। ये अच्छा करने का सबसे बड़ा लाभ है, अच्छी हवा में सांस लेंगे तो फेफड़े धन्यवाद देंगे ना आपको, तो आपकी आत्मा जो है, आपकी इनर जो सॉफ्टवेयर है वो बहुत लाइट फील करता है जब अच्छी सोच से आप काम करते हैं, आपकी निगाहें अच्छी होती हैं, आपकी वार्ता अच्छी होती है, आपके काम अच्छे होते हैं, उसके रिजल्ट्स अच्छे आते हैं, तो आपकी आत्मा लाइट फील करती है, एंजॉय करती है, फ्लाई करती है, उड़ रहा हूं मैं, ऐसा फील होता है। और जितना आप गलत सोचते हैं भारीपन आता है, यू फील हैवियर, बर्डन फील होता है।
0: जी जी,
1: कभी भी कोई महान आत्मा मरने की बात नहीं करेगा, मैं मर जाऊं, खत्म हो जाऊं, जिन्हें फायदा क्या है, नेगेटिविटी में मन करता है चीजों का, इसलिए डिप्रेशन आता है। इससे बड़ी ब्लेसिंग क्या होगी कि आपने अच्छा सोचा, अच्छा किया किसी के लिए, यू आर एंजॉयिंग, आप खुश हैं बहुत अंदर से, ये सबसे बड़ी खुशी है। ये बाकी साइड इफेक्ट है, सम्मान मिलेगा, वो बाकी छोटी, ये सब छोटी चीजें हैं, बहुत छोटी चीजें हैं, ये एडिशनल बोनस है। अरे एक बात मैं बताता हूँ, रोशन भाई बताता हूँ आपको बेटा, आप जिंदगी में जब अच्छे रास्ते में चलते हैं, मैं सबको कहा करता हूँ, उसकी ब्लेसिंग सबसे बड़ी क्या है, आपको अपने से भी नेक और अच्छे लोग मिलते जाएंगे जिंदगी भर, एक से एक आपके इतने अच्छे इंसान हो सकता है, इतने अच्छे सर हो सकते हैं, अब और मिलेगा और अच्छा और अच्छा, क्योंकि आप खुद सही रास्ते पे हैं। और जब वो गलत रास्ते पे होते हैं तो आपको अपने से बड़ा शैतान, अपने से बड़ा गुंडा, अपने से बड़ा नेगेटिव, अपने से बड़ा डिप्रेस मिलेगा, अपने से बड़ा पागल मिलेगा आपको, कह रहे इतना बड़ा पागल, ये मेरे से बड़ा पागल है। तो दुनिया में पूरी वैरायटी है, ना सही दिशा में ना गलत दिशा में, आपका पाथ कौन सा है, आप जिस पाथ पर हैं उससे भी आपसे कितना बड़ा बदमाश है उसको उससे बड़ा बदमाश मिल जाता है, कि मैं 10 मर्डर किए हैं, अब महीने दो महीने बाद आपको 15 वाला मिल जाएगा, आगे से आगे चीजें बढ़ती चली जाती हैं। इसलिए बहुत लक्की हैं जिनकी सोच और दिशा सही होती है जिंदगी में, उनको अपने से बहुत अच्छे नेक इंसान मिलते जाते हैं, उनकी ब्लेसिंग्स मिलती हैं, उनकी खुशियां मिलती हैं, उनके एक्सपीरियंसेस जो है सर्व होते हैं, शेयर होते हैं, और प्यार सम्मान तो मिलता ही है, खुशियां मिलती हैं, और वो खुशियां स्थायी होती हैं, सबसे बड़ी बात है, वो टेम्परेरी नहीं होती हैं, वो खुद गुजरती रहती हैं। अभी मैंने घटनाएं जो बताई, अभी बच्चा को जिक्र कर रहा था, आपने पढ़ा कोई कि वो आपने माली से बात की या मोची से बात की, अब जो वैसे खुशियां होती हैं वो टेम्परेरी होती हैं। मैंने अभी यहाँ मान लो रसगुल्ला खाया नहीं, मैं वैसे ही बैठा हूँ, खाया पिया कुछ नहीं मैंने यहाँ के अभी, लेकिन कल्पना करो खाया, वो कल तक भूल जाएगा, कुछ चीज और एंजॉय की तो कब तक उसका साथ रहेगा। लेकिन एक अच्छी घटना, एक अच्छा व्यवहार आपको 10 साल 20 साल बाद भी गुदगुदाता रहता है, खुशी देता रहता है, जो आप किसी के लिए अच्छा करते हैं वो आपका जीवन का एसेट बन जाता है, आपकी दौलत बन जाती है।
0: वेरी वेल सेड सर, बहुत बढ़िया कहा आपने कि जब हमारी इंटेंशन, हमारी भावना प्योर है, बल बढ़ रहा है आपकी आत्मा का, और वर्थ लिविंग हो रही है आपकी लाइफ, एक ब्लेसिंग बन गई आपकी जिंदगी, और बाय प्रोडक्ट उसका सम्मान है और बहुत सारी चीजें। और जब आप इस रास्ते पे चल रहे हैं तो ऐसे ही फ्रीक्वेंसी पे, सेम फ्रीक्वेंसी ऑन अ पॉजिटिव नोट, या उससे हायर फ्रीक्वेंसी पे और नेक इंसान भी आपको रास्ते पे मिलते हैं, तो जैसे आप हैं वैसी चीजें आप खींचना शुरू कर देते हैं। बहुत बढ़िया कहा सर आपने। और दूसरा आपने कहा कि आपकी जो आत्मा है आप लाइट फील करते हैं, और दूसरी तरफ अगर वही नेगेटिव इमोशंस हैं या इंटेंशंस हैं तो आप भारी महसूस करते हैं, और उसका असर आपके मन पर, शरीर पर और आत्मा पर बीमारियों के रूप में भी हमें आजकल देखने
1: इसकी साइंटिफिक स्टडी भी हो रही है और भी होती चलेगी कि हमारे हार्मोन्स पे बहुत असर पड़ता है। देखिए ये तो कहते ही हैं, डॉक्टर्स कहते हैं कि बीपी रह जाता है कि आप चिंता ना किया करें, आपकी चिंता से होता है, आप एंग्जायटी से होता है, ये चीजें तो दिखने लग गई हैं। अब शुगर की पेशेंट भी जो है या तो इनहेरिटेड होता है कुछ, लेकिन शुगर भी टेंशन रखने से बहुत हो जाती है, टेंशन बहुत होती है, शुगर हो गई। तो ये चीजें वैसे भी कहते हैं कि हम जैसे जंगल में गए मान लो, तो वहां शेर आ गया, तो हम किसी को सुना रहे होंगे यार मैं शेर मेरे

0: करते हैं शरीर के ऊपर। जब शरीर ठीक नहीं होता तो मन भी कई बार नहीं लग रहा होता, मैं अभी स्वस्थ बैठा हूँ तो आपसे अच्छे से बात कर रहा हूँ, और शरीर स्वस्थ नहीं होगा किसी कारण से फीवर है और है तो मैं इतने ठीक से बात भी कर नहीं पाऊंगा, सेवा ठीक से नहीं कर पाऊंगा। तो शरीर बीमार है तो आत्मा पे असर पड़ता है, और आत्मा बीमार है तो शरीर पे असर पड़ेगा, तो दोनों को हेल्दी रखना हमारी जिम्मेदारी है।
1: जी जी बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने कि आपकी जो थॉट्स हैं और आपकी जो इंटेंशंस हैं उसका असर आपकी बॉडी के ऊपर, और जो सर ने कहा कि अभी बहुत सारी रिसर्चेस हो रही हैं कि उनके ऊपर जो आपके ऊपर बीमारियां हैं वो भी उनमें से जैसे साइकोसोमेटिक इलनेसेस जिसे हम लोग कह देते हैं कि
0: एक स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी बहुत विश्वविख्यात है, वहां पर ये जो आपने बताया अभी सेक्रेटरी वाला पार्ट और फिजियोलॉजी वाला पार्ट दोनों को मिला के डिग्री उन्होंने क्रिएट किया उन लोगों ने, कि सोचने का प्रोसेस और फिजिक जो है इंसान की फिजियोलॉजी, हाउ दे आर क्रिएटिंग म्यूचुअली मतलब इंपैक्ट कैसे क्रिएट हो रहा है, उसमें मास्टर प्रोग्राम शुरू हुआ है वहां स्टैनफोर्ड में।
1: अमेजिंग। और एक सवाल हमारे पास में ये आया कि शिक्षा हम लोगों को कैसे बेहतर इंसान और बेहतर जिंदगी जीने में हेल्प करती
0: है? आपको जीने के लिए कमाने की शिक्षा है बेसिकली, जब तक वो वैल्यू ओरिएंटेड नहीं होगी, उसमें मॉरल वैल्यूज या ह्यूमन वैल्यूज का टच नहीं होगा, ह्यूमन टच नहीं होगा, तब तक वो इंसान नहीं बनाएगी तो आपको खुशी नहीं देगी, वो कमाने की कला सिखा देगी, सिर्फ मशीन बना देगी आप। शिक्षा इनकम्प्लीट है, अधूरी है विदाउट ह्यूमन टच। ह्यूमन वैल्यूज के साथ, इंसानियत के साथ अगर एजुकेशन होगी, जहां से मैंने बात शुरू की थी, हमें चारों जगतों के साथ, इन एनिमेट वर्ल्ड भौतिक जगत जिसमें धरती सूरज चांद सितारे पानी हवा और प्लांट किंगडम, फिर एनिमल किंगडम और फिर ह्यूमन काइंड मैनकाइंड, ये चारों पक्ष जो नेचर के हैं, इनके साथ रहने की बैलेंस्ड वे में, एक होलिस्टिक वे में रहने की कला एजुकेशन का फर्ज है। अगर हमें कोई एजुकेशन इस पहलू में बढ़ाती है, मे बी स्कूल एजुकेशन, कॉलेज एजुकेशन और व्हाटएवर एजुकेशन वी आर ट्राइंग टू शेयर राइट नाउ नॉलेज, अगर ये हमें, ये लेक्चर कितना अच्छा रहा, अब आपके पास 20 लेक्चर होंगे, ये 20 लेक्चर एजुकेट करने के लिए हैं, कौन सा लेक्चर कितना इफेक्टिव है जिसकी बात से इस पहलू में आपको मदद मिले कि चारों जगतों के साथ, चारों किंगडम के साथ आप हार्मनी में कैसे रहें, कोई सत्संग, कोई व्याख्यान, कोई पुस्तक कितनी श्रेष्ठ है, कोई ज्ञान

नेम एंड हिज स्टेटस ओनली टॉट 5 लेक्चर्स और वो 3 क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में आए, तीनों 100% ठीक हुए एंड आई गॉट 187 आउट ऑफ 200 जो कि 120 थे दिसंबर में। मार्च में 187 हो गए यूनिवर्सिटी एग्जाम में और उसके कारण मैं बीटेक में एडमिशन ले पाया। आज उनकी फोटो मेरे घर में सजा के रखी हुई है। एक टीचर कितना बड़ा रोल प्ले कर सकता है, मैं इंजीनियर होता और नहीं होता जमीन आसमान का अंतर पड़ता, बीटेक एमटेक प्रोफेसर कहां से बनता मैं और मेरा एडमिशन ही नहीं होता। तो एक व्यक्ति के 5 प्यार भरे लेक्चरर्स ने जिसे मेरा नाम भी नहीं पूछा आज मैं उसका नाम गा रहा हूं, प्रोफेसर विद्यासागर जी, उनके बेटे विकास अग्रवाल दिल्ली में बिजनेसमैन है, मैं उनको हर साल याद करता हूं। वो कहते हैं कि आपने मुझे याद रखा है, मेरे पिताजी को याद रखा है, कोई याद नहीं करता। मैं कहता क्योंकि मेरे मेंटर श्री एस एन अग्निहोत्री जी हैं जो मेरे आध्यात्मिक गुरु हैं, उन्होंने मुझे कृतज्ञता का पाठ पढ़ाया है, जिनको स्पिरिचुअल नेम उनका देवात्मा है।

0: जिनकी टीचिंग्स पे मैं काम करता हूँ, उन्होंने मुझे कृतज्ञता का पाठ पढ़ाया कि जिसके जिंदगी में तुम्हारे कोई काम आया है उसको भूल जाओगे तुम एक अच्छे इंसान नहीं बन पाओगे। तो बीसियों अध्यापक हैं जिनका मैं जिक्र कर सकता हूँ, लेकिन समय की सीमा को देखते हुए मैं सिर्फ एक का जिक्र किया है, उनका शुभ हो परलोक में। आई एम सो थैंकफुल टू हिम एंड टू माई स्पिरिचुअल मास्टर देवात्मा श्री रसन अग्निहोत्री जी, हु टॉट मी ए लेसन ऑफ ग्रेटिट्यूड।
1: अमेजिंग अमेजिंग, बहुत ही प्रीशियस विजडम सर ने शेयर किया, और उसको कंक्लूजन हम लोग करते हैं। और लास्ट में जो सर ने कहा पूरे लेक्चर्स में, तो कोशिश करूंगा उसको सम अप करने की। एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो सर ने शेयर किया, रैंडम चीजें पिक कर रहा हूं मैं, कुछ चीजें मैं शेयर कर रहा हूं मैं। फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड एंड ग्रेटफुलनेस, कृतज्ञता का एहसास, वेरी ब्यूटीफुल सर ने कहा। एंड अप्रिसिएशन, एक्नॉलेज करना हर इंसान को और उनको वो फील कराना वैल्यूड एंड रिस्पेक्टेड। और खुशियों के जब हम रास्ते पे चल रहे हैं, यानी खुशियों को जब हम बांट रहे हैं, तो हम इवॉल्व हो रहे हैं, और हम लोगों को सिलेक्टिव भी होना है अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए और वैसे लोगों से एसोसिएशन। और सर ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया जिनकी वजह से सर की लाइफ में इतना बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा, अपने टीचर का भी जिक्र किया। और सर ने कहा कि जो लव है, लव से ऊपर कोई बात नहीं है, और जहां पर प्यार है, प्यार में इतनी ताकत है कि वो आपसे बड़े से बड़े काम आपसे करवा लेते हैं। बहुत ब्यूटीफुल कहा सर ने। और सर ने ये कहा कि जब हम अच्छे से प्योर इंटेंट से जब हम पढ़ा रहे हैं, इंपावर कर रहे हैं, उनको इनहेंस करने के बारे में सोच रहे हैं, तो आपकी आत्मा का बल बढ़ रहा है और वो आपको दे रही है पीस और आपको सेटिस्फेक्शन और वर्थ लिविंग यू फील कि आपकी जिंदगी जो है वो वर्थ लिविंग है। इन सारे शब्दों के साथ में सर थैंक यू सो मच, आपने अपना इतना प्रीशियस टाइम और इतनी वैल्यूएबल विजडम आपने हम लोग के साथ में शेयर करी। एंड आई विल मेक श्योर पर्सनली वी ऑल कि एवरी वर्ड ऑफ योर्स एटलीस्ट फॉर वन वीक, जब तक नेक्स्ट स्पीकर नहीं आते, इन सब पे मंथन किया जाता है और उसका पूरा रिपोर्ट क्या रहा वो आपसे शेयर भी किया जाएगा। स्टूडेंट्स के साथ में पढ़ाने के बाद वो सारा आपसे शेयर किया जाएगा।
0: YouTube पर मेरे लेक्चर्स और वीडियो स्मॉल क्लिपिंग्स अवेलेबल हैं, शुभ हो बेटर लाइफ के नाम से, बच्चे या विद्यार्थी उसको देख सकते हैं, बड़े भी देख सकते हैं। वो क्लिपिंग्स कई बार बहुत छोटी हैं लेकिन बहुत हेल्पफुल हैं, 5-10 मिनट की बात, लेकिन इंपैक्ट क्रिएट करती है। कई बार कईयों को बहुत हेल्प मिलती है, लोग बाद में मिलते हैं तो कहते हैं वो उस क्लिप ने मुझे बहुत इफेक्ट किया। तो शुभ हो बेटर लाइफ,
1: शुभ हो बेटर लाइफ जी,
0: हाँ वो यूट्यूब चैनल है, उस पर आप देख सकते हैं।
1: थैंक यू सो मच नवनीत सर फॉर योर प्रीशियस टाइम, वी लर्नड अ लॉट, आई पर्सनली लर्नड अ लॉट सर, थैंक यू सो मच सर,
0: थैंक यू ऑल जिन्होंने टाइम दिया, मुझे सेवा का मौका दिया, मैं सबके लिए बहुत कृतज्ञ हूँ। सबका शुभ हो, सबका विकास हो, हम जो सुना है उसको समझें और उसको जीवन ढाल सकें, मैं और अच्छे ढाल सकूं, हम सबका इसी में भला है। सबका शुभ हो, थैंक यू,
1: थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू।

हाँ मैं सलमा आगा, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं।

0: नमस्ते दोस्तों, पता है अपनी मीना के स्कूल में वार्षिक उत्सव होने वाला है। लगता है बहन जी सब बच्चों से उसी बारे में बात कर रही हैं।
1: बच्चों, जैसा कि हम सब जानते हैं, अगले हफ्ते हमारे स्कूल का वार्षिक उत्सव है।
2: जी बहन जी, और उसमें एक नाटक भी प्रस्तुत किया जाएगा ना, शहीद भगत सिंह।
1: हाँ मीना, ये बात भी हम सभी जानते हैं, लेकिन एक बात जो अभी तक कोई नहीं जानता वो ये है कि इस बार हमारे नाटक की फिल्म बनेगी।
3: फिल्म बनेगी? क्या मतलब?
1: मैं बताती हूँ, हमने शहर से कैमरे वाले को बुलाया है जो हमारे नाटक की फिल्म बनाएगा वीडियो कैमरे से, और वार्षिक उत्सव के बाद हम सब उसे टीवी पर देखेंगे। बच्चों, तुम में से जो भी उस नाटक में हिस्सा लेना चाहता है वो कल स्कूल की छुट्टी के बाद मेरे पास आ जाए। मैं उसे नाटक की कुछ पंक्तियाँ बोलने के लिए कहूँगी और ये देखूँगी कि कौन ज्यादा बेहतर अभिनय करता है।
2: अब तो बहुत मजा आएगा, हमारे नाटक की फिल्म बनेगी।
4: हाँ मीना, मैं तो कल जोर जोर से पंक्तियाँ बोल के सुनाऊंगी बहन जी को, ताकि उन्हें मेरा अभिनय अच्छा लगे और वो मुझे नाटक में भगत सिंह का रोल दे दे, है ना दीपू?
5: मुझसे अच्छा अभिनय कोई नहीं कर सकता। सुमी, भगत सिंह का रोल तो मैं ही करूँगा।
6: मैं ही करूँगा, वरना सबसे लड़ूंगा।
0: और अगले दिन स्कूल की छुट्टी के बाद बहन जी के कमरे में।
1: बच्चों, तुम सब ने अपनी अपनी पंक्तियाँ बहुत अच्छे तरीके से बोली, लेकिन भगत सिंह का रोल उसे मिलेगा जिसने सबसे अच्छा अभिनय किया, और उसका नाम है सुमी।
0: और फिर अगले दिन से शुरू हुआ नाटक का अभ्यास। सुमी हर रोज मीना और दीपू को अपनी पंक्तियाँ बोल के सुनाती थी, और नाटक से सिर्फ एक दिन पहले।
2: सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है।
5: है, ये कोई अभिनय है? भगत सिंह की आवाज में जोश होना चाहिए, जोश। देखो ऐसे, इनकलाब जिंदाबाद। अब बताओ सुमी, बोल सकती हो ऐसे?
2: हाँ हाँ दीपू, क्यों नहीं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है।
0: सुमी जोर जोर से अपनी पंक्तियाँ बोलकर नाटक का अभ्यास करने लगी, लेकिन थोड़ी देर के बाद।
2: सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना।
4: क्या हुआ सुमी, तुम्हारी आवाज?
5: इसकी आवाज बैठ गई है मीना।
2: मीना, मैं घर जा रही हूँ, मेरा गला बहुत दुख रहा है।
0: और फिर अगले दिन स्कूल में।
4: अब तुम्हारी तबीयत कैसी है सुमी?
2: अभी भी कुछ फर्क नहीं मीना, आधे घंटे के बाद नाटक है और मेरी आवाज।
4: नरस बहन जी ने क्या कहा?
2: नरस बहन जी ने?
4: हाँ, क्या तुम कल नरस बहन जी के पास नहीं गई?
2: नहीं, माँ तो मुझे वैद्य जी के पास ले गई थी। वैद्य जी ने कहा कि एक दिन तक कुछ नहीं खाना और।
4: सुमी, याद नहीं, बहन जी कहती हैं कि जब भी तबीयत खराब हो तो हमें सिर्फ डॉक्टर या नर्स बहन जी के पास जाना चाहिए।
6: जाना चाहिए, उन्हें सब बताना चाहिए।
4: मैं अभी आती हूँ सुमी।
0: मीना भागती हुई पता नहीं कहाँ चली गई, और आधे घंटे बाद जब नाटक शुरू हुआ।
2: सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है।
5: जोर से बोलो सुमी। अरे तुम्हारी आवाज को क्या हुआ? जोर से बोलो, जोर से।
0: ओहो, सुमी का गला तो बिल्कुल बैठ गया है। अब नाटक का क्या होगा? बहन जी भी यही सोच के परेशान हो रही हैं। अरे वो देखो, दीपू सुमी से कुछ कह रहा है।
7: सुमी, तुम चिंता मत करो, तुम सिर्फ अपने होंठ हिला के कैमरे के सामने एक्टिंग करती रहो, मैं पर्दे के पीछे खड़े होके जोर जोर से पंक्तियाँ बोल दूंगा।
5: सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। इनकलाब जिंदाबाद।
0: भाई वाह, क्या तरकीब थी दीपू की। नाटक देखने वालों को ऐसे लग रहा था जैसे कि सुमी अपनी आवाज बदल के बोल रही हो, लेकिन एक बात समझ नहीं आई, ये मीना कहाँ रह गई?
4: आइए नरस बहन जी।
0: ओहो, अब

0: समझा। मीना भाग के नर्स बहन जी को बुलाने चली गई थी। वो देखो, नर्स बहन जी सुमी के गले की जांच कर रही हैं।
1: सुमी, क्या तुम्हारे गले में दर्द भी है?
2: जी नर्स बहन जी।
1: अरे, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार भी है। टीचर बहन जी, मुझे सुमी को अभी डॉक्टर दीदी के पास ले जाना होगा।
3: ले जाना होगा, इलाज कराना होगा।
4: मिट्ठू चुप।
2: दीपू, आज तुमने नाटक में मेरी मदद की, उसके लिए तुम्हारा बहुत धन्यवाद।
4: इसमें धन्यवाद की क्या बात है सुमी, दोस्त तो दोस्त के काम आते ही हैं।
1: शाबाश दीपू। सुमी, तुम नर्स बहन जी के साथ डॉक्टर दीदी के पास जाओ।
2: जी बहन जी।
1: नर्स बहन जी, अगर आज वार्षिक उत्सव ना होता तो मैं भी आपके साथ चलती।
5: मैं समझती हूँ बहन जी, आओ सुमी।
0: और एक हफ्ते बाद सुमी के घर में।
4: सुमी, कैसी हो?
2: अरे मीना, दीपू, मैं बिल्कुल ठीक हूँ।
4: तो फिर जल्दी से चलो।
2: कहाँ?
6: सरपंच जी के घर, अपने नाटक की फिल्म देखने।
7: देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। इनकलाब जिंदाबाद।
8: सुमी, तुमने तो बहुत अच्छा अभिनय किया।
2: सरपंच जी, आज मैं एक वादा भी करना चाहती हूँ।
6: वादा? कैसा वादा सुमी?
2: मीना, आज के बाद मैं सबको ये बताऊंगी कि अगर कभी भी बीमार पड़ो तो सीधे नर्स बहन जी या डॉक्टर के पास जाओ।
3: डॉक्टर के पास जाओ, अपना इलाज करवाओ।
1: सरपंच जी, एक बात मैं भी कहना चाहती हूँ।
8: हाँ हाँ सुमी की माँ, कहो।
1: बच्चों, मीना की समझदारी से मैंने ये बात सीखी है कि बीमारी डॉक्टर के पास जाने से ही ठीक होती है, नीम हकीमों के पास जाने से नहीं, क्योंकि नीम हकीम खतराए जान।
3: नीम हकीम खतराए जान, कर देते वो बड़ा परेशान।
0: दोस्तों, आओ हम सब भी अपने आप से ये वादा करें कि अगर हम कभी भी बीमार पड़े तो सिर्फ डॉक्टर या नर्स बहन जी के पास ही जाएं। चलो अब सुनते हैं मीना और मिट्ठू की एक प्यारी सी कविता।
6: नीम हकीमों के चक्कर में देखो मत फंस जाना,
3: कभी अगर बीमार पड़ो डॉक्टर के पास ही जाना।
0: भाई वाह, क्या बढ़िया कविता थी। चलो अब सुनते हैं एक मजेदार गाना।

0: था ना गाना मजेदार, क्या कहा? बहुत मजेदार। फिर ठीक है, अब चलते हैं खेलने मीना की क्लास में।
1: बच्चों आज हम खेलेंगे कड़ियां जोड़ पहेली
2: तोड़।
1: हाँ, मैं तुम्हें तीन कड़ियां बता के एक पहेली पूछूंगी और तुम्हें बूझना है उस पहेली का सही जवाब। तो शुरू करें आज का खेल।
2: जी बहन जी।
1: तो सुनो पहली कड़ी। नर्म नर्म ये चीज है प्यारे, कभी चौकोर कभी ये गोल, अक्सर इसमें रुई है भरते, क्या है इसका नाम बोल?
3: मिठाई।
1: वो कैसे दीपू?
3: क्योंकि मिठाई नरम भी होती है और कभी गोल और कभी चौकोर भी।
1: अच्छा, और क्या मिठाई में रुई भरी जाती है? भूल गए? अक्सर इसमें रुई है भरते, क्या है इसका नाम ये बोल?
3: ओ हाँ, ये तो मैं भूल ही गया था।
1: चलो चलो, शाबाश, जल्दी से सोचो।
4: क्या हो सकता है? क्या होगा? क्या
5: रुई भरी होती है?
6: दूसरी कड़ी बताइए ना बहन जी।
1: ठीक है सुमी। बच्चों अब सुनो दूसरी कड़ी। त से इसका नाम शुरू और या पे खत्म हो जाता, बिस्तर और पलंग से इसका बड़ा ही गहरा नाता।
6: मैं समझ गई बहन जी, सही जवाब है तकिया।
1: हाँ मीना, शाबाश। तो बच्चों मजा आया ना?
2: जी बहन जी।
0: आपको भी मजा आया ना? फिर ठीक है, तो जल्दी मिलते हैं एक चटपटी कहानी, गुदगुदाते गीत और मजेदार खेल के साथ। तब तक अपनी प्यारी मीना को चिट्ठी लिखना मत भूलना, चाहे वो आपके सुझाव हो, आपके विचार हो या आपके अनुभव।
7: और मेरा पता है मीना की दुनिया, यूनिसेफ, पोस्ट बॉक्स नंबर 3008, लोधी रोड, HPO, नई दिल्ली 1100003।

0: मैं जानकी हिमलानी, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। हम शपथ लें कि आज के बाद जब कभी भी हम गाड़ी चलाएंगे तो स्पीड का ख्याल रखेंगे, खुद का भी ख्याल रखेंगे और सामने वाले का भी ख्याल रखते हुए हेलमेट पहन करके ही अपनी गाड़ी को चलाएंगे।
1: रेडियो मधुबन।
2: दादाजी और साक्षरता। पात्र परिचय। दादाजी के रूप में तरुण, भैया आदित्य, रिया के रूप में रुचि, नरेटर शशिकांत। रिया और राहुल पोस्टर बना रहे थे तभी वहाँ दादाजी आ गए।
3: दादाजी ये देखिए, हम दोनों पोस्टर बना रहे हैं।
4: जी दादाजी, कल हम सब स्कूल से एक जुलूस निकालेंगे जिसके द्वारा लोगों को शिक्षा के महत्व को समझाएंगे।
5: वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। आशा है कि इससे लोगों में जागृति आएगी।
3: दादाजी, क्या भारत में आज भी लोग शिक्षा के महत्व को नहीं समझते?
5: सही कहा, यही कारण है कि आज दुनिया के हर 5 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति निरक्षर है।
4: लेकिन दादाजी, हमारे स्कूल में तो हर कोई पढ़ लिख लेता है।
5: अरे, जो लोग स्कूल में आते हैं वे तो पढ़ लिख लेंगे ही, लेकिन अफसोस की बात यह है कि बहुत बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल का मुंह भी नहीं देख पाते।
3: ऐसा क्यों दादाजी?
5: कुछ साधनों की कमी और सुविधाओं के अभाव के कारण, तो कुछ माता पिता की अज्ञानता के कारण।
4: माता पिता की अज्ञानता के कारण?
5: गरीब लोग अपने बच्चों को पढ़ने के लिए इसलिए भी नहीं भेजते क्योंकि उन्हें लगता है कि पढ़ने लिखने में वक्त बर्बाद करने के बजाय यदि वे कामकाज में उनका हाथ बटाएंगे तो उनकी आमदनी बढ़ेगी। लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि थोड़े से रुपए के लिए वे अपने बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं, जो पढ़ लिख कर आगे चलकर बड़े व अमीर आदमी बन सकते हैं और अधिक रुपए कमा सकते हैं।
3: सच दादाजी, पता नहीं लोग इस बात को क्यों नहीं समझते।
5: इसीलिए तो भारत और दुनिया के अनेक देशों में सरकार व यूनेस्को आदि द्वारा साक्षरता मिशन चलाए जाने के बाद भी दुनिया से निरक्षरता दूर होने का नाम नहीं ले रही है।
4: दादाजी, सबसे अधिक निरक्षर लोग दुनिया के किस देश में हैं?
5: बुर्किना फासो में, जहां केवल 21.8% साक्षरता है।
3: और सबसे अधिक साक्षरता वाला देश कौन सा है दादाजी?
5: उत्तरी कोरिया, ग्रीनलैंड, नॉर्वे, फिनलैंड आदि देशों में सबसे अधिक साक्षरता है, जहाँ के सभी लोग साक्षर है।
4: पता नहीं भारत के सभी लोग साक्षर कब होंगे?
5: होंगे राहुल, लेकिन इसके लिए आवश्यकता है लोगों में पढ़ाई के प्रति जागरूकता पैदा करने की और लोगों को यह विश्वास दिलाने की कि पढ़ने से न केवल बच्चों का बल्कि उनका अपना भविष्य भी सुधरेगा।
2: इस तरह से साक्षरता का महत्व दादाजी बच्चों को समझाते हैं।

0: बेस्ट राइटर अवार्ड गोज टू मिस सुरेखा।
1: अरे ये तो देख भी नहीं सकती, फिर भी उसको अवार्ड मिल गया।
0: प्लीज कम ऑन द स्टेज मिस सुरेखा, दो शब्द हमारे बीच रखें। आपको कैसा लग रहा है?
2: मैंने मन की आंखों से देखा है इस दुनिया को। मेरी आंखों में रोशनी ना सही, परंतु जीवन में उजाला ही उजाला है। दिव्यांगता मेरी पहचान नहीं, मेरी काबिलियत ही मेरी पहचान है।
3: रेडियो मधुबन की कोशिश है दिव्यांग लोगों के प्रति हो सही दृष्टिकोण, काबिलियत से बनाए अपनी पहचान, पिछड़ी सोच का खत्म करे नामो निशान।
4: मानवीय हो मानसिकता, सुखद हो व्यवहार, मन की आंखों से देखिए सुंदर ये संसार।
5: हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? मैं आज वही जो हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास टेंथ के लिए गोल्डन रेज बुक का नाम है और लेसन है द ट्रिब्यूट। तो उसमें आजकल हम लोग बच्चों एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, एक्टिविटीज कर रहे हैं, ग्रामर पोर्शन कर रहे हैं, क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं, क्योंकि टेक्स्ट तो आप जानते ही हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। लेकिन हमें लगता है कि आप लोगों के लिए आपको कितना समझ में आया कितना नहीं आया ये सब हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर अस टू नो दैट हाउ द क्लास इज इम्पोर्टेंट फॉर यू। खैर, तो आप लोग फीडबैक दीजिए अपना। कल लास्ट टाइम जब हम लोगों ने पढ़ा था तो यहां से मुझे लगा कि कुछ ठीक से मैं क्लेरिफाई नहीं कर पाया चीजों को, तो आज हम रिपीट करते हैं। क्लास टेंथ लेसन नंबर भी टेंथ है और ग्रामर पोर्शन चल रहा है क्लॉजेस का। तो हम देख रहे थे कल द रिलेटिव प्रोनाउन दैट। अब रिलेटिव प्रोनाउन जो है वो दैट इज यूज्ड ओनली इन डिफाइनिंग क्लॉजेस। इसका इस्तेमाल क्लॉज को डिफाइन करने में, क्लॉज को परिभाषित करने में होता है। इट मे डिनोट बोथ पर्संस एंड थिंग्स, और ये दोनों के लिए उपयोग में लाया जाता है, इंसान के लिए भी, पर्संस यानी व्यक्तियों के लिए भी, और थिंग्स चीजों के लिए भी। द रिलेटिव प्रोनाउन हु डिनोट्स पर्संस, हु जो है वो केवल पर्संस के लिए, एंड विच डिनोट्स थिंग्स, और विच जो है केवल चीजों के लिए। देखिए, आपको जब एग्जाम में एक्सरसाइज पूछी जाएगी तो उसमें आपको क्वेश्चंस दिए होंगे और आपको कहा जाएगा कि हु, विच और दैट, इन तीनों में से भरिए, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए या खाली जगह को भरिए। तो अब आपके लिए इजी क्या रहेगा, इसको समझना। हु कहाँ आता है, विच किसके लिए आता है, दैट किसके लिए आता है। अगर ये आपने समझ लिया तो फिर आपको इसको सॉल्व करने में बड़ी आसानी होगी। हु केवल और केवल लिविंग थिंग्स, इंसानों के लिए आता है, और विच चीजों के लिए, वस्तुओं के लिए, एंड दैट दोनों के लिए आ सकता है, इंसानों के लिए भी और चीजों के लिए भी। देखिए, इसमें आप कुछ एग्जाम्पल्स दिए। आई लाइक मैन दैट वर्क हार्ड, पर्सन हो गया आप, दैट यहां पर पर्सन के लिए। हमें वो लोग पसंद हैं जो कठिन परिश्रम करते हैं। आई लाइक बुक्स दैट कंटेन क्लासिकल लर्निंग, मुझे वो किताबें पसंद है जिनमें जो है प्राचीन बातें सम्मिलित होती हैं। आई लाइक मैन हु वर्क हार्ड। अब इसको हु से भी बना दिया, यानी दैट लगाओगे तो भी गलत नहीं है, हु लगाओगे तो भी गलत नहीं है इस तरह के सेंटेंसेस में। आई लाइक बुक्स विच कंटेन क्लासिकल लर्निंग, तो चीजों के लिए विच भी आता है। इफ द एंटीसीडेंट इज अ वेग नाउन, अगर एंटीसीडेंट ऐसा है जो जिसके बारे में आप ठीक से नहीं कह सकते हैं या प्रोनाउन, द यूज ऑफ दैट और हु इज इक्वली अप्रोप्रिएट। तो हु और दैट का चाहे किसी का भी इस्तेमाल करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहां पे कुछ एग्जांपल हैं। आई एम वेटिंग समवन हु कैन हेल्प मी। अब यहां पे पता नहीं है कोई भी, मुझे एक ऐसे व्यक्ति का इंतजार है जो मेरी हेल्प कर सके, तो यहां दैट भी लगा सकते हो, वो भी लगा सकते हो। आई एम वेटिंग समवन दैट कैन हेल्प मी। दे आर द टाइप ऑफ पीपल दैट कैन सपोर्ट डीमोनेटाइजेशन। ये वो उस तरह के लोग हैं जो नोटबंदी को, विमुद्रीकरण को सपोर्ट कर सकते हैं। इफ द एंटीसिडेंट इज अ वेल आइडेंटिफाइड कैटेगरी, अगर वो बहुत अच्छी तरह से परिभाषित है, एंटीसिडेंट यानी बाद वाला भाग ऑफ इंडिविजुअल्स हु इज प्रेफर्ड टू दैट, तो हु का इस्तेमाल ही करना है। देखिए कैसे, एग्जाम्पल, द जज हु वाज पॉपुलर फॉर क्विक जजमेंट हैज रिजाइन। यहां पर बहुत ही अच्छे से समझा रखा है कि वो न्यायाधीश, द जज हु वाज पॉपुलर फॉर क्विक, जो जल्दी निर्णय लेने के लिए प्रसिद्ध थे, हैज रिजाइन, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो ये भी एक अंतर हो गया। यहां पे स्पेसिफिकली आपको बता रखा है किसी एक पर्सन के बारे में, उसकी खूबियों के बारे में, तो डेफिनेटली यहां पे हु लगाओगे, द एयर होस्टेस हु मेट मी एट द एयरपोर्ट टर्न्ड आउट टू बी माय क्लासमेट। जो एयर होस्टेस मुझे एयरपोर्ट पे मिली थी, वो पता चला वो तो मेरी क्लास साथी रही। द रिलेटिव प्रोनाउन ऑफ डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज मे बी ओमिटेड व्हेन इट इज नॉट द सब्जेक्ट ऑफ द रिलेटिव क्लॉज। अभी एक कंडीशन और दे दी इन्होंने कि अगर वो रिलेटिव क्लॉज का सब्जेक्ट नहीं है रिलेटिव प्रोनाउन, तो उसको छोड़ा भी जा सकता है। द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डिड नॉट गिव मी इंफॉर्मेशन दैट आई वॉन्टेड, जो मुझे चाहिए थी। अब यहां पर आप दैट लगाओ तो भी ठीक है, नहीं लगाओ तो भी। द ड्रेस विच आई सा इन द शोरूम वॉज अट्रैक्टिव। सच क्लॉजेज आर कॉल्ड कॉन्टेक्ट क्लॉजेस। इस तरह के जो क्लॉजेस होते हैं उन्हें कॉन्टेक्ट क्लॉजेस कहते हैं। अब हमारा एक नेक्स्ट पॉइंट आता है, मेन पॉइंट, वो है नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज, NDRC, नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज। ये क्या होते हैं? अभी तक तो हमने पढ़ा डिफाइनिंग, जिनको हम समझ सके, जिनको परिभाषित कर सके। अब वो जिनका पता लगा पाना थोड़ा सा मुश्किल है। नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉजेस मेयरली प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द नाउन, प्रोनाउन, एंटीसिडेंट। माई ब्रदर हु लिव्स इन अमेरिका इज कमिंग नेक्स्ट वीक। द रिलेटिव क्लॉज इन इटैलिक्स गिव्स एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द एंटीसिडेंट, माई ब्रदर। In this situation, the relative clause is called non-defining. यानी additional information मिल रही है, तो relative clause को हम और parenthetical, and is enclosed by commas even if we omit the clause. तो इस तरह के examples में एक बार हम इसको दोबारा पढ़ लेते हैं, समझना बहुत जरूरी है। Example था देखिए हमारा, my brother who lives in America, कॉमा is coming next week, मेरा भाई, वो भाई जो अमेरिका में रहता है वो अगले सप्ताह आ रहा है। द रिलेटिव क्लॉज इन इटैलिक्स, इसमें रिलेटिव क्लॉज है जो कि इटैलिक्स में है, वो है हु गिव्स एडिशनल इंफॉर्मेशन, वो अतिरिक्त जानकारी दे रहा है ना, मेरा भाई जो अमेरिका में रहता है, अबाउट द एंटीसिडेंट, माई ब्रदर। माई ब्रदर का एंटीसिडेंट क्या हुआ? हु लिव्स इन अमेरिका, यानी बाद वाला हिस्सा। In this situation, the relative clause is called non-defining or parenthetical. ऐसी परिस्थितियों में जो हमारा relative clause है उसको हम non-defining या parenthetical, and is enclosed by commas, और उसके साथ comma भी लगा हुआ है, even if we omit the clause, यानी हम अगर clause हटा भी दें, the meaning of the main clause remains sensible. अगर इसमें हम रिलेटिव क्लॉज नहीं भी लगाएंगे तो भी इसका मतलब तो निकलेगा। द इंफॉर्मेशन कंटेंड इन द मेन क्लॉज एंड रिलेटिव क्लॉज, जो सूचना मेन क्लॉज और रिलेटिव क्लॉज में होती है, मे बी गिवन इन टू सेपरेट स्टेटमेंट्स। दो अलग अलग तथ्य पता चलते हैं, माई ब्रदर इज कमिंग नेक्स्ट वीक। अब इसमें क्या है, मेरा भाई अगले सप्ताह आ रहा है, सिंपल सी बात है, ही लिव्स इन अमेरिका, वो अमेरिका में रहता है। एज द रिलेटिव क्लॉज गिव्स एडिशनल इंफॉर्मेशन एंड नॉट द एसेंशियल वन, इट कुड इवन बी रिप्रेजेंटेड बाय एन इनडिपेंडेंट क्लॉज इन पैरेंथेसिस। माय ब्रदर ही लिव्स इन अमेरिका इज कमिंग नेक्स्ट वीक, मेरा भाई अमेरिका में रहता है जो अगले सप्ताह आ रहा है। द यूज और एबसेंस ऑफ कॉमर्स इन रिलेटिव क्लॉज चेंज द मीनिंग ऑफ सेंटेंसेस। अगर कॉमा लगाएंगे या रिलेटिव क्लॉज लगाएंगे तो अर्थ बदल जाएगा। माई ब्रदर हु लिव्स इन अमरीका इज कमिंग नेक्स्ट वीक, मेरा भाई जो अमरीका में रहता है वो अगले सप्ताह आ रहा है। अब इसको ऐसे भी कह सकते थे, माई ब्रदर ही लिव्स इन अमरीका इज कमिंग नेक्स्ट वीक, तो दोनों ही, माई ब्रदर हु लिव्स इन अमरीका इज कमिंग नेक्स्ट वीक। इन द फर्स्ट सेंटेंस द प्रेजेंस ऑफ कॉमास इम्प्लाइज, पहले उदाहरण में कॉमा लगाया, दूसरे में नहीं लगाया। अब देखिए कॉमा लगाने से क्या मतलब निकलता है, दैट द राइटर स्टिल स्पीकर हैज ओनली वन ब्रदर, इट इज देयरफॉर इम्पॉसिबल टू डिफाइन विच वन, इसीलिए यह बता पाना मुश्किल है कि वो कौन सा है, इट इज अ नॉन डिफाइनिंग क्लॉज। In the second sentence, the adjective clause is not separated by commas. The absence of commas implies that the writer, the speaker has more than one brother, but that one of them in particular is being referred to the one who lives in America and another may be living somewhere else. It is called a defining clause because it distinguishes and defines which brother is coming. बड़ा बारीक अंतर है, देखिए समझना पड़ेगा इसको। Students, दो अलग अलग condition दे दी non-defining clause के बारे में। एक में आपको बताया जा रहा है कि ये सिचुएशन है, दूसरे में भी बताया जा रहा है सेम सिचुएशन है, लिखा भी सेम जा रहा है, बस कॉमा का अंतर है। पहले में आपको लिखा जा रहा है, पहला एग्जांपल है माय ब्रदर हु लिव्स इन अमेरिका इज कमिंग नेक्स्ट वीक, मेरा भाई जो अमेरिका में रहता है, यहां पे कॉमा है, माय ब्रदर हु लिव्स इन अमेरिका, यहां पे इसको कॉमा से रोक दिया, यानी मेरा एक ही भाई है और वो भी वो भाई है जो अमेरिका में रहता है, इस कमिंग नेक्स्ट वीक, जो अगले सप्ताह आ रहा है। जो बुक समझा रही है हमें वो आप समझिए, क्योंकि जब आंसर लिखेंगे एक्सरसाइज में से तो ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरे में माय ब्रदर हु लिव्स इन अमेरिका इज कमिंग नेक्स्ट वीक, यहाँ पे कॉमा नहीं है, मेरा भाई जो अमेरिका में रहता है, यानी मेरे और भी भाई है, कोई कहीं रहता है कोई कहीं रहता है, लेकिन एक जो अमेरिका में रहता है, मेरा जो अमेरिका में रहने वाला भाई है वो आ रहा है अगले, इसका मतलब ये हुआ। कहते हैं ना वो मेरी बरेली वाली बुआ है, मेरे दिल्ली वाले चाचा जी, ऐसे बोलते हैं ना कई बार, यानी चाचा जी तो और भी हैं, तो वो वाली बात है। अब एक्सरसाइज आ गई है, तो एक्सरसाइज को भी हमको समझना पड़ेगा बहुत ध्यान से, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट कंजंक्शंस हु हुम और दैट, हु हुम और दैट भरना है। देखिए द पर्सन, खाली जगह डोनेटेड मनी इज अ फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट, अब द पर्सन जिसने रुपए दान में दिए वो बहुत प्रसिद्ध उद्योगपति हैं, तो यहां पे जाहिर सी बात है पर्सन तो इंसान हुआ तो हु आएगा। द पर्सन हु डोनेटेड मनी इज अ फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट, द बॉय फ्रॉम आई बोरोड द बुक इज माई फ्रेंड, वो लड़का जिससे, यहां पे देखिए जो और जिससे में अंतर है, द बॉय फ्रॉम हुम, यहां पे हुम आएगा, वो लड़का जिससे मैंने किताबें उधार ली वो मेरा दोस्त है, ठीक है। द तो पहले में हु भरा, दूसरे में होम भरा, ये अलग अलग डिफरेंस आपको समझना पड़ेगा. द बुक दैट कंटेन्स द डेटा ऑफ सेंसस इज इन अवर लाइब्रेरी. वो किताब जिसमें जनगणना की जानकारी है वो हमारे पुस्तकालय में है. दैट बुक वस्तु है, चीज है. चौथा क्वेश्चन है, द बैंक मैनेजर खाली जगह द पुलिस अरेस्टेड इज फ्रॉम मुंबई. द बैंक मैनेजर, वो बैंक मैनेजर खाली जगह द पुलिस अरेस्टेड, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. हुम द पुलिस अरेस्टेड इज फ्रॉम मुंबई, वो मुंबई से है. द करेंसी नोट्स खाली जगह वर बैंड ऑन November 8, 2016 आर नो मोर एक्सेप्टेबल. द करेंसी नोट्स दैट वर बैंड, तो डेट आ जाएगा. द रिस्ट वॉच दैट आई बॉट लास्ट ईयर इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली. वो घड़ी जो मैंने पिछले साल खरीदी थी वो ठीक से काम नहीं कर रही है. सेवंथ क्वेश्चन है, इज अनिल द मैन whom you met at the airport last Sunday? क्या अनिल वो व्यक्ति है जिसको आप पिछले रविवार को एयरपोर्ट पर मिले थे? तो whom आएगा, है ना, जिसको, जो और जिसको, जिसने, जिसमें में अंतर समझना चाहिए. The terrorist खाली जगह the army killed is said to be from Pakistan. The terrorist whom the army killed. अब देखिए यहाँ पे दो बातें हैं. इसी एग्जाम्पल को अगर हम लेते हैं, वो आतंकवादी जिसको सेना ने मार दिया, द आर्मी किल्ड इज सेड टू बी फ्रॉम पाकिस्तान, वो बताया गया कि पाकिस्तान से था. अब अगर इसकी जगह होता द टेररिस्ट हुम द आर्मी वाज किल्ड,

वॉइस का है, और हु वाज किल्ड बाय द आर्मी, ये पैसिव वॉइस का हो गया। नाइन्थ क्वेश्चन, द इंडियन साइंटिस्ट खाली जगह वर्क एट द नासा आर हाईली, द इंडियन साइंटिस्ट हु वर्क एट नासा, हु वर्क, भारतीय वैज्ञानिक जो नासा में काम करते हैं वो बहुत ही बुद्धिमान होते हैं, तो ये साइंटिस्ट के लिए आया है। द फॉरेन ट्रेवलर्स हु विजिटेड इंडिया इन द पास्ट प्रेज्ड द इंडियन कल्चर, उन्होंने भारतीय संस्कृति की प्रशंसा की। ये हमारा यहाँ पर लेसन नंबर जो 10 था उसकी ग्रामर पोर्शन भी कंप्लीट हो गई है। हम बार बार यही कहते हैं, आप लोग फीडबैक दीजिए, क्वेरीज कीजिए, बताइए क्या सही है क्या नहीं है, आपको क्या अच्छा लगा। अब थोड़ा टाइम है हमारे पास, तो इसमें हम एक एक्टिविटी 1 में ए देख लेते हैं, ऑप्शंस जिसमें होते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द स्टोरी शोज बाबुलीज फादर एज हेल्दी, डेड, इल, नन, डेड। ठीक है, पिताजी नहीं थे ना, पानी से ही पता चलता है। बाबुलीज सेकेंड ब्रदर अपीयर्स एज ब्रॉड माइंडेड, सेल्फिश, फ्रेंडली, नन। तो सेल्फिश बताया गया उसको, तो स्वार्थी, उसी की वजह से तो बंटवारा हुआ था। तीसरा क्वेश्चन है, बाबुली वाज गिफ्टेड अ रिस्ट वॉच व्हेन ही वाज स्टडिंग इन 8th क्लास, 9th क्लास, 10th क्लास, 11th क्लास। तो बुक में क्या दिया है, ख्याल से 10th होगा शायद, ये 11th होगा। फोर्थ क्वेश्चन, इन द स्टोरी द ट्रिब्यूट हैज बीन पेड बाय द एल्डर ब्रदर टू बाबुली, बाबुली टू द एल्डर ब्रदर, द सेकेंड ब्रदर टू द मदर, या द सिस्टर इन लॉ टू द फादर। तो डी ऑप्शन है, बाबुली टू द एल्डर ब्रदर। फिफ्थ क्वेश्चन है, द चीफ रीजन ऑफ द डिविजन ऑफ प्रॉपर्टी इज अ क्वेरल बिटवीन द ब्रदर्स लिविंग इन द विलेज, द सिस्टर्स इन लॉ लिविंग इन द विलेज, द मदर एंड द सिस्टर इन लॉ, और बाबुली एंड द सेकेंड ब्रदर। नहीं, बी ऑप्शन है इसमें, वो भाभियों के बीच में लड़ाई हो गई थी ना। छठा क्वेश्चन है, द थीम ऑफ द ट्रिब्यूट इज, थीम क्या है, रिलीजियस, डोमेस्टिक, पॉलिटिकल या हिस्टोरिकल। तो डोमेस्टिक, घरेलू। तो ये हमारा लेसन 10 कंप्लीट हुआ। लास्ट लेसन जो कि 11th लेसन है वो अब हम करेंगे, और हमेशा मैं बोलता हूँ आप लोगों को फीडबैक के लिए, तो आपको फीडबैक देने चाहिए, ताकि जो ये प्रयास है इतनी मेहनत से किया जा रहा है आप सबके लिए, उसका क्या बेनिफिट है आपके लिए वो पता चल सके। तो होप कि आप लोग ज़रूर फीडबैक देंगे, खूब पढ़ाई करेंगे मन लगा करके, क्योंकि आगे हमें कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है, देखिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आगे हमें इस सीरीज़ को कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है ये पता तभी चलेगा। अदरवाइज हम लोगों को फिर बंद करना है 11th लेसन के बाद। ओके, तो देखिए आप लोग, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए और सबका नाम रोशन कीजिए। थैंक यू।

मैं हूं अवधेश पंडित, जीएम फाइनेंस बेसिल, और आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो।

0: अरे राजू भाई दो चाय लाना। अरे छोटू दो चाय देना भैया को।
1: हाँ सब हेलो भैया।
0: ये क्या तूने मेरे शर्ट पे चाय गिरा दी?
1: गलती होगी भैया, माफ कर दो, अगली बार से ऐसा नहीं होगा भैया।
0: क्या छोटू तू हर टाइम ऐसा करते रहता है, तो कितने बार समझाएगा सही से चाय दिया कर।
1: नहीं सब वो इस बार हाथ फिसल गया साहब।
0: हर टाइम हाथ फिसल जाता
1: है? नहीं साहब।
0: ठीक है अगली बार नहीं होना चाहिए, ठीक है ना?
1: हाँ साहब।
2: क्या यार मेरी जिंदगी भी कैसी है, काश मेरे भी पापा पैसे वाले होते, मैं भी और बच्चों की तरह स्कूल जाता, पढ़ाई करता, मैं भी खेलता, काश ऐसा होता।
3: क्या बात है सैंडी, आकाश, पंकज, मुगना, आज तुम लोग बड़े उदास लग रहे हो।
4: दीदी आपको पता है आज हमने एक टी शॉप में देखा कि एक बच्चा काम कर रहा है।
3: एक बच्चे को काम करते देखा तो आप लोगों को अच्छा नहीं लगा ना?
0: हाँ, और वो दुकान वाले भैया उसे डांट भी रहे थे।
3: क्या देखा आज आपने, चलो भुवना बताओ।
4: दीदी हमें बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि वो बहुत छोटा बच्चा था और उसको पढ़ना चाहिए, लेकिन वो काम कर रहा है और वो काम कर रहा है लेकिन बाय मिस्टेक वो फिसल गया उनके हाथ से, फिर भी वो ओनर इतना डांटा, बहुत बुरा लग गया होगा।
3: आप ही के उम्र के बच्चे जो काम करते हैं कोई चाय की दुकान पर या कहीं भी, उसे पता है क्या कहते हैं?
5: चाइल्ड लेबर,
0: बाल श्रम।
3: हाँ उसे बाल श्रम या चाइल्ड लेबर कहते हैं। बच्चों की जो उम्र पढ़ने लिखने की होती है, कई बार पारिवारिक सर्कमस्टेंसेस ऐसे हो जाते हैं कि वो काम करने पर विवश हो जाते हैं। तो बच्चों चलो आज हम चाइल्ड लेबर यानी बाल श्रम के बारे में ही बात करेंगे।
4: ठीक है
0: दीदी।
3: तो आकाश आप बताओ चाइल्ड लेबर से आप क्या समझते हो?
1: दीदी मुझे ऐसा लगता है कि हमें हमारे उन बच्चों के मम्मी डैडी को ये सब काम नहीं करवाना चाहिए, ये उम्र उनकी खेलने कूदने की है, पढ़ने लिखने की है, हाथ में आने वाले पेन की जगह वो चाय की कटोरियाँ पकड़ा देते हैं, पीठ में लदे हुए बैग की जगह वो बोरियाँ पकड़ा देते हैं, ये बहुत गलत बात है।
3: बात तो आपने बहुत सही कही। और सैंडी आप बताओ?
0: दीदी मुझे ऐसा लगता है कि चाइल्ड लेबर एक जुर्म है और जो लोग 14 वर्ष से कम उम्र में बच्चों को अपने दुकान पर रखते हैं या करवाते हैं, अगर चाइल्ड लेबर हमारे भारत में विश्व में कहीं भी फैलता गया तो हमारे देश का हमारे विश्व का क्या होगा? बच्चों को शिक्षा मिलेगी नहीं तो हमारा देश हमारा विश्व हर चीज़ में पीछे हो जाएगा, तो ये चाइल्ड लेबर होना नहीं चाहिए।
3: क्योंकि बच्चे हमारे देश का भविष्य होते हैं।
0: हाँ दीदी।
3: और अगर वो ही नहीं पढ़े लिखेंगे तो फिर हमारे भारत का भविष्य क्या होगा?
0: ये हमारी नींव कमजोर होगी तो फिर कैसे होगा?
3: बिल्कुल सही सैंडी। और भुवना आप क्या कहना चाहते हो?
4: अब हमारी इंडिया सब देशों ने डेवलप्ड कंट्रीज है लेकिन हमारी इंडिया डेवलपिंग, स्टिल डेवलपिंग, इस बात का एक वन रीजन है चाइल्ड लेबर। ऐसा बहुत सारे क्राइम्स हो रहे हैं इंडिया में, बहुत सारे अननेसेसरी ट्रेडिशंस फॉलो कर रहे हैं और इस चाइल्ड लेबर को हम स्टॉप करना चाहिए, एक क्राइम है, ये सिर्फ इंडिया में फॉलो कर रहे हैं, तो मैं बोलती हूँ कि इसको स्टॉप करना चाहिए और गवर्नमेंट इसके ऊपर कुछ वाइटल स्टेप्स लेना चाहिए।
3: बिल्कुल सही, गवर्नमेंट को स्टेप्स लेने चाहिए और गवर्नमेंट कुछ काम इस पर कर भी रही है। इस बारे में आप क्या सोचते हो पंकज?
0: चाइल्ड लेबर को देख के मुझे ऐसा लगता है हमारा देश कभी विकास नहीं कर सकता। आजकल छोटे बच्चे, नन्हे बच्चे जो हमारे देश के भविष्य है, लेकिन वो किसी कारण होटलों में या किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे मजदूरी कर रहे हैं, पढ़ने लिखने की उम्र में अपनी पीठ पे बोरियां लाद रहे हैं, चाय बेच रहे हैं। अगर ये सब ऐसा ही चलता रहा तो हमारे देश का भविष्य मिट्टी में मिल जाएगा, जैसे कि दूसरे देश अपने डेवलप्ड होकर और भविष्य में हम देखेंगे कि वो अंतरिक्ष में पहुँच जाएगी और हमारा देश धरती पर ही रह जाएगा।
3: बात तो आपने पंकज बिल्कुल सही कही, हम आगे तभी बढ़ते हैं जब देश का भविष्य यानी बच्चे सुरक्षित हो, देश के साथ साथ उनका भविष्य भी हम बाल श्रम द्वारा बिगाड़ देते हैं। तो बच्चों मुझे एक बात बताओ, तुम लोग अक्सर बाहर जाते हो, कभी घूमने के लिए, कभी किसी काम से, कभी ऐसा हुआ है कि तुमने किसी बच्चे को बाल श्रम करते हुए या कोई काम करते हुए देखा है, और देखा है तो तुम्हें कैसा लगा है?
0: हाँ दीदी मैंने बहुत बार देखा, कभी कभी हम लोग कहीं बाहर जाते घूमने के लिए, किसी होटल पे गए तो वहाँ कोई बच्चा कोई चाय लेके आ रहा है तो कुछ नाश्ता लेके आ रहा है, ऐसे कुछ काम करते हैं और ये मुझे देख के बहुत बुरा लगता है क्योंकि वो मुझसे भी छोटे होते हैं, जिनको खेलने कूदने की उम्र होती है, जिनको
5: अपनी मम्मी पापा से प्यार मिलना चाहिए, वो होटलों पे काम करती है और ये मुझे देखकर बहुत बुरा लगता है। और मैं कभी कभी सोचता हूँ कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो मुझे ऐसा नहीं हुआ, मेरे मम्मी पापा मुझे साथ देते हैं। और ये बात देखकर मुझे रोना भी आता है, थोड़ी खुशी भी होती है, पर खुशी तो उतनी नहीं होती, रोना बहुत आता है क्योंकि जो बच्चे इनके छोटे छोटे हाथ हैं वो बड़े बड़े काम करते हैं।
3: बात तो आपने सही कही, वो अपने नन्हे नन्हे हाथों से बहुत बड़े बड़े काम करने पर विवश हो जाते हैं, लेकिन उनके घर के जो पारिवारिक कंडीशंस हैं वो इस प्रकार की नहीं होती जैसी हमें मिली है। और जैसा कि आपने कहा कि इस मामले में हम कितने लकी हैं कि हमारे परिवार से ऐसी कोई कंडीशन नहीं कि हमें सब कुछ मिला और कोई भी काम करने की आवश्यकता नहीं है, पर सभी हमारी तरह लकी नहीं होते। हाँ आकाश बताओ।
1: दीदी मैं जब छोटा था तब मेरा एक दोस्त था, उसका नाम पोखराज है। वो बचपन में मेरे साथ खेलता था, वो सेंट जॉन स्कूल में पढ़ता था। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, पहले तो उसको गवर्नमेंट स्कूल में डाल दिया, उसके बाद उसको गवर्नमेंट स्कूल से निकाल दिया। फिर वो अब वो 14 साल का है और हमारे पड़ोस की दुकान में ही वो काम कर रहा है। उसको देख के बहुत बुरा लगता है। उसकी मम्मी सुबह से लेकर शाम तक लम्हा लारी पे सब्जी बेचती है और उसके पापा उन्हीं पैसों से ना घर चलने देते, सिर्फ अपने ही खुशियों के लिए पैसे खरीदते हैं।
5: हाँ दीदी, जैसे आकाश ने बताया ऐसे ही मेरे पड़ोस में कुछ बच्चे रहते हैं, उनकी मम्मी तो चलो ठीक है पर उनके पापा शायद नशा वशा करते हैं और बच्चे टैलेंट बहुत है उनमें, उनकी कैचे बच्चा है, अगर कुछ चीज़ समझाया तो जल्दी समझ जाते। वो पढ़ना चाहते पर पापा उनके काम करने के लिए फोर्स करते, तो वो कचड़े बीनते और ये सब करते और वो स्कूल तो जान जाते हैं, पर मैं ऐसा देखता हूँ तो मुझे बुरा लगता है। तो मैं कभी कभी मेरी कोई पुरानी बुक्स, मेरी जो चीज़ होती है और कुछ दे देता हूँ उनको, तो वो थोड़ा वो अच्छा लगता है।
3: ये तो बहुत अच्छी बात है सैंडी, क्योंकि अगर हम अपना छोटा सा भी कॉन्ट्रीब्यूशन दे पाएं तो उन बच्चों को कितना अच्छा महसूस होता है।
5: हाँ दीदी,
3: है ना। भुवना, कभी आपने ऐसा कुछ देखा है?
4: दीदी हमारी घर में रोज एवरी संडे या सैटरडे जी एच एम सी लोग आते हैं डस्टबिन लेने के लिए, तो जब वो आते हैं उनके साथ उनके बच्चे भी, वो ड्राइनेज में बैठते हैं, वही रहते हैं, लेकिन वो खुशी से करते हैं। लेकिन उनको पता नहीं कि हम पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, उनको ज्ञान भी नहीं है। तो मैं बोलती हूँ कि उन लोगों को ये सब हमें कुछ मैसेज देना है कि नॉलेज देना कि ये कर सकते हैं, और उनको ये एज नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्लास की होगी वो बच्ची, और उनको काम करवा रहे डस्टबिन को लिए।
3: ये तो आपने बिल्कुल सही कहा, भले उन्हें अभी खुशी है, वो खेल रहे हैं, लेकिन उन्हें ये पता ही नहीं है कि उन्हें उनके लिए पढ़ना लिखना कितना ज़रूरी है, और कई बार ये बात बतानी उन्हें बहुत ज़रूरी होती है। पंकज, कभी आपने ऐसा कुछ देखा?
0: हाँ दीदी, मैंने भी देखा है। हमारे स्कूल के पीछे छोटे छोटे बच्चों को पीठ पे बोरियाँ लाद कर और प्लास्टिक की बोतलें बीनते हुए या कांच की बोतलें बीनते हुए, मतलब वो प्लास्टिक की बोरियों में भंगार इकट्ठे करते हैं और उसे बेच के दो चार पैसे कमाते हैं। लेकिन वो पैसे जो कमाते हैं वो उनके भी यूज़ में नहीं आते, उनके मम्मी पापा उनसे पैसे ले लेते हैं और अपने शौक़ पूरे करते हैं।
3: उनके मम्मी पापा उनसे वो पैसे भी ले लेते हैं जो वो मेहनत करके कमाते हैं।
0: हाँ दीदी,
3: बात तो आपने बिल्कुल सही कही। मेरे ख्याल से हम सब ने कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में ऐसी चीज़ें होते हुए देखी हैं।
5: हाँ दीदी।
3: और हमें बहुत बुरा भी लगता है। हम बच्चे और क्या कर सकते हैं, इस बारे में हम आगे बात करेंगे। अभी वक्त है एक ब्रेक का। रेडियो मधुबन पर बच्चों की दुनिया सुनते रहिए।

चले से फूलों को, शोलों से समाए उनको, छोटे से नन्हे से फूलों

0: रेडियो मधुबन पर हम वापस आ गए हैं लेकर बच्चों की दुनिया। और आज हम जिस टॉपिक के बारे में, जिस विषय के बारे में बातचीत कर रहे हैं वो है बाल श्रम यानी चाइल्ड लेबर। सैंडी, आप आज सुबह क्रिकेट खेलने गए तो आपने क्या देखा?
1: दीदी, मैंने देखा कि दो बच्चे थे जो बहुत छोटे थे, और मैं बैट और बॉल लेके जा रहा था तो बोल रहे थे भैया मुझे कुछ रुपये दे दो, मुझे भूख लगी है। तो उन्हें देखकर मुझे थोड़ा बहुत बुरा लगा, और मैंने मेरे जेब में जूते भी थे 20-30 रुपये उन्हें दे दिया।
0: हमें बुरा तो लगता है जब कोई ऐसे, स्पेशली जब कोई बच्चा आके हमसे ऐसा कुछ कहता है। तो ऐसे में एक और चीज़ हम क्या कर सकते हैं बच्चों, कि अगर किसी को भूख लगी है या कोई ऐसा हमारे सामने आता है और हम कुछ कर सकते हैं तो कुछ खरीद कर या कुछ ला कर उसको दे दें। क्योंकि कभी कभी हमारे दिए हुए पैसे वो ठीक से इस्तेमाल करना नहीं जानेंगे या फिर कोई उनसे ले भी सकता है। तो अगर ऐसी कोई कंडीशन आपके सामने आए तो आप कुछ ला कर, जिससे उनकी जो भूख है वो शांत हो सके, ऐसा कुछ ला कर आप उन्हें दे सकते हैं। ठीक है सैंडी?
1: ओके दीदी।
0: और वैसे तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हमारे सामने आते रहते हैं, अब आप लोग ये बताओ, जब आप लोग देखते हो आपको बुरा तो लगता है, क्या कोई ऐसी चीज है जो आप अपनी तरफ से उनके लिए कर सकते हो? भुवना,
2: पहले हम उनके माँ बाप को इंस्पायर करना चाहिए, क्योंकि बिना माँ बाप के कहने से बच्चे कुछ नहीं कर सकते। तो हम उन माँ बाप को इंस्पायर करना कि आपके बच्चा ये कर सकता है, तो वो बच्चे को ऑलरेडी इंटरेस्ट होगा, क्योंकि वो बच्चा है ना। जब हम इंस्पायर करेंगे, बुक्स देंगे, वो अच्छे से पढ़ेगा। सिर्फ और सिर्फ उनके माँ बाप की फोर्स की वजह से वो ऐसे कर रहे हैं। तो जब हम उनके इंटरेस्ट करेंगे, इंस्पायर करेंगे, माँ बाप काम करेंगे और पढ़ेंगे, फ्यूचर में बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा।
0: बात तो आपकी बिल्कुल सही है। स्पेशली जो हमारे आसपास के लोग काम करने आते हैं हमारे घर पे, या जैसे भुवना आपने बताया कि कूड़ा बीनने या फिर ऐसा कुछ है जिनके माँ बाप हमारे घर पे काम करते हैं, आसपास आते हैं, तो उनसे हम बातचीत कर सकते हैं, है ना? और आकाश, आप क्या सोचते हो?
3: दीदी, मेरा ये मानना है कि उनके मम्मी पापा को हमें बताना तो चाहिए, लेकिन मैंने भी कई बार कोशिश करी है, लेकिन उनके दिल से चाह नहीं होती कि हमारे बच्चों को भेजे। वो कहते ही हैं, अरे पढ़ लिख के क्या करेगा, बड़े होके कमाना ही तो है, वो भेज देते हैं, अभी से कमाएगा तो बड़े होके और पैसे लाएगा। ये बात उनके दिमाग में रहती है, जिसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाते, वो उसी जगह पे स्थित हो जाते हैं।
0: मतलब हम समझाते हैं तब भी वो नहीं समझ पाते उस बात को। ठीक है, ऐसे कई लोग हैं जो हमारी बात को नहीं समझेंगे, लेकिन अगर हम कोशिश करते रहें और एक चेंज भी हम ला पाएं तो वो भी बहुत बड़ी बात है।
1: हाँ दीदी,
0: है ना? तो इसलिए हमें कोशिश आकाश जरूर करते रहनी चाहिए।
3: हाँ दीदी,
0: है ना? और सैंडी, आप क्या सोचते हो?
1: दीदी, ऐसा आकाश ने और भुवना ने बताया कि हमें लोगों को समझाना चाहिए, ये बात तो सही है, पर मैं तो जहाँ तक होता है समझाता ही हूँ कि मुझे कुछ बच्चे मिलते हैं तो मैं उनसे बोलता हूँ। फिर एक बच्चे को मैंने बोला भी था तो वो बोलते कि मम्मी पापा ना बोलते, तो मैंने उन्हें बोला भी था, उनके मम्मी पापा को मैंने समझाया था, तो उन्होंने मुझे डांट भी दिया था कि तुम अपना काम करो, हमारे फैमिली से तुम्हें क्या मतलब। तो मुझे बुरा नहीं लगा, पर मेरी अभी भी कोशिश जारी है, मैं होता तो समझा देता हूँ, और मेरे पास जो भी कुछ होता है कि हाँ कुछ बुक्स हुआ कुछ हुआ अगर उनको अच्छा लगे तो मैं दे देता हूँ, मेरी कोशिश अभी भी जारी है।
0: ये तो बहुत अच्छी बात है कि हमारे पास जो होता है अगर उन चीज़ों से भी हम उनकी मदद कर पाएं तो उनको अच्छा भी लगता है, और थोड़ा बहुत तो उनकी मदद हम कर ही सकते हैं, है ना? तो ये सैंडी बहुत अच्छी बात है। पंकज, आप बताओ।
4: दीदी, ऐसे कुछ बच्चे होते हैं जो काम करते हैं लेकिन उनमें इच्छा होती है पढ़ने लिखने की, हमारे जैसा बनने की, वो भी सोचते हैं कि हम इनकी तरह बन सकते हैं, इनकी तरह हमारी लाइफ हो सकती है, हम पढ़ सकते हैं और पढ़ लिख के हम अपने पेरेंट्स की ज़िंदगी बना सकते हैं या खुद की भी ज़िंदगी बना सकते हैं। तो उनकी मदद हमें करनी चाहिए, जैसे कि अगर वो पढ़ना ही चाहते हैं तो उनको अपने पुराने बुक्स दे सकते हैं, उन्हें जाकर उन बुक्स के बारे में, या अगर हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम हो तो उनके लिए कुछ टाइम निकाल कर उन्हें कुछ बता सकते हैं कि पढ़ाई क्या होती है और पढ़ाई का महत्व क्या होता है।
0: अगर हम थोड़ा सा टाइम निकाल पाएं तो हम जाके उन्हें कुछ नहीं तो एटलीस्ट बेसिक पढ़ना लिखना तो सिखा ही सकते हैं, ताकि जो वो काम कर रहे हैं उसमें वो हिसाब किताब सीख पाएं, और थोड़ा लिखना पढ़ना सीखने से कोई उनके साथ बेमानी या गलत भी ना कर पाए।
4: हाँ दीदी,
0: अपूर्णा आप बताओ।
2: आजकल स्कूल्स में इतनी सुविधाएं हैं कि बहुत सारे पैसे उनमें ही यूज कर रहे हैं और एक्स्ट्रा पैसे भी बहुत सारे अननेसेसरी थिंग्स पे यूज कर रहे हैं। इसके बदले हम क्या कर सकते हैं, एटलीस्ट एवरी 3 मंथ्स हम कुछ खाना एक एक हमने क्या किया इस बार स्कूल पे, मेरे हमारे स्कूल में एक एक क्लास एक एक थिंग ऑर्फनेज के लिए, छोटे छोटे बच्चे के लिए, जैसे 4th क्लास लोगों छोटे छोटे बच्चे के लिए डायपर्स लेकर आए, एटलीस्ट 3-3 डायपर्स फुल क्लास 3-3 डायपर्स तो ठीक है, तो हम फ्रूट्स देंगे। पर दीदी हम कभी भी पैसे नहीं देना चाहिए, कुछ ये देना चाहिए ताकि वो इजीली यूज़ कर सकते हैं, जैसे हम क्लोथ्स दे सकते हैं, डायपर्स, ये छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको डायपर्स चाहिए वो खरीद नहीं सकते, इसके बारे में हम स्कूल्स को भी ये कर सकते हैं। और हम घर में भी थोड़ी थोड़ी हमारी पुरानी बुक्स होते हैं, पुराने कपड़े, वो सब लोगों आते हैं उनको इंस्पायर करना चाहिए कि ये देखो इतना अच्छा बुक है तुम पढ़ो, तुम पढ़ लिख सकते हो, फ्यूचर में तुम ये बन सकते हो वो बन सकते हो, ऐसा करेंगे तो वो सच में बच्चों को बहुत इंटरेस्ट आएगा और हमारे देश में कभी चाइल्ड लेबर नहीं होगा ये कंटिन्यू होगा तो।
0: ये तो आपके स्कूल का भी बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और आपने भी बहुत अच्छी बात सोची कि अगर हम थोड़ा थोड़ा भी उनके लिए करें तो उनकी बहुत मदद हो सकती है। आकाश
3: दीदी, मैंने और मेरे फ्रेंड्स ने हमारा एक डोनेशन बॉक्स होता है जो हम हर ईयर पे खोलते हैं, मतलब जैसे इस महीने की हमारी हमको जो पॉकेट मनी मिलती है उसमें से कम 10 रुपया भी बच जाता है तो हम उस डोनेशन बॉक्स में डाल देते हैं और ऐसे करके हमारी 1 ईयर में डोनेशन बॉक्स जब फुल हो जाता है तब हम न्यू ईयर पे सब बच्चों को चिप्स बांटते हैं, कुरकुरेस बांटते हैं, उनके खाने की चीज़ें देते हैं, कम से कम हमारे पास इतने पैसे हो जाते हैं कि वो आराम से खा पी सकते हैं।
0: बिल्कुल सही, हमें पॉकेट मनी मिलती है उसको भी अगर हम थोड़ा थोड़ा भी सेव करें और जैसे कि सब लोग मिलकर करें तो ये बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन हम अलग से भी अगर कुछ करें तो भी हम इस प्रकार से उनकी छोटी बड़ी मदद तो कर ही सकते हैं। ऐसा ही एक इनिशिएटिव रेडियो मधुबन के यूथ जंक्शन के आरजे विनोद और उषा जी ने मिलके रेडियो मधुबन के बिहाफ से किया। उन्होंने जाकर जो रैक पिकर्स होते हैं, जो कूड़ा बीनते हैं, उन बच्चों को इकट्ठा किया, उनके पेरेंट्स से बातचीत की और करीबन 20 बच्चों को रेगुलर रोज जाकर पढ़ाया, उनका एडमिशन पास के स्कूल में कराया ताकि वो बच्चे पढ़ भी सकें और अपना फ्यूचर बना सकें। इससे और कुछ मिले ना मिले उन बच्चों की कितनी सारी दुआएं भी हमें मिलती हैं, है ना?
5: हाँ दीदी।
0: तो आप लोगों के पास ये जितने भी आइडियाज हैं इनको आप एक्शन में ला सकते हो, थोड़ा थोड़ा कर सकते हो, हमेशा कभी भूलना नहीं इस चीज को, जो आपकी भावनाएं हैं उन्हें बना कर रखना, और कभी आपको ऐसा कुछ लगे कि आपको कुछ बड़ा करना चाहिए तो आप अपने पेरेंट्स से, अपने स्कूल में अपने टीचर से और बड़े लोग जो हैं उनसे अपने आइडिया शेयर कर सकते हो ताकि कुछ करने की आपको भी मदद मिल पाए और उनके पास भी आपके सजेशंस पहुंच पाए। ठीक है बच्चों?
3: हाँ दीदी।
0: तो अगली बार हम सब फिर मिलेंगे और फिर बात करेंगे ऐसे ही किसी विषय पर। आज के एपिसोड को यही समाप्त करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।

0: तो बच्चों, सबको समझ आ गया आज का हमारा विषय? रोहित, तुम्हें कोई डाउट तो नहीं?
1: मैम, यह आपको कैसे बताएगा, ये तो बोल भी नहीं सकता।
0: रोहित बोल नहीं सकता, परंतु ये अपनी साइन लैंग्वेज से हमें समझा तो सकता है। बच्चों, मानसिक रूप से रोहित हम सब की तरह स्वस्थ है। कर्म इंद्रियां तो बस एक साधन है, मानसिक और बौद्धिक रूप से हम सब समान हैं।
2: रेडियो मधुबन की मुहिम का हिस्सा बने, पुरानी मानसिकता को बदलें और समझने का प्रयास करें। शारीरिक रचना का हमारी बुद्धिमत्ता से कोई ताल्लुक नहीं, मन स्वस्थ तो जीवन स्वस्थ।
3: मानवीय हो मानसिकता, सुखद हो व्यवहार, मन की आँखों से देखिए सुंदर ये संसार।
4: स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और विचारों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेक

0: एक विदेशी इतिहासकार ने लिखा है कि इस संसार में महापुरुषों को पहचानना आसान है, लेकिन उनके वास्तविक स्वरूप की उपलब्धि करना कठिन है। स्वामी विवेकानंद के संबंध में ये उक्ति विशेष रूप से सटीक प्रतीत होती है।
1: साधारणतः लोग उन्हें श्री रामकृष्ण के आध्यात्मिक मानस पुत्र, सर्वत्यागी सन्यासी, श्री रामकृष्ण मठ और मिशन के प्रतिष्ठाता तथा हिंदू धर्म के प्रचारक के रूप में ही भक्ति करते और पूजते हैं। यद्यपि यही स्वामी जी का वास्तविक परिचय है, तथापि ये उनके अनन्य अपूर्व व्यक्तित्व का केवल एक श्रेष्ठ अंश मात्र है।
0: धर्म जगत के बाहर भी देश तथा समाज के विभिन्न क्षेत्रों में जो उनका अमूल्य अवदान है, वो सर्वदा हम स्मरण नहीं रख पाते, लेकिन बिना इसे जाने स्वामी जी के अपूर्व व्यक्तित्व के संबंध में ठीक ठीक धारणा बनाना संभव नहीं।
1: वैसे तो स्वामी जी के जीवन काल में ही देश और विदेशों में उनके अनेकों गुणग्रही बने थे, परंतु उनका स्वदेश प्रेम, देशात्मबोध और राष्ट्रीय चेतना उनके भाषण और रचनावली में इतने स्पष्ट रूप से व्यक्त हुआ है कि उसके परवर्ती काल के भारतीय स्वतंत्रता संग्रामियों के मानस में उनका प्रभाव उन्होंने अनुप्रेरित किया था।
0: स्वामी जी का देश प्रेम केवल मानसिक भावावेग नहीं था, उन्होंने देश की स्वतंत्रता अर्जित करने के लिए युवकों को ललकारा। सन 1901 में ढाका के युवकों का एक दल उनसे उपदेश सुनने आया। उन्होंने उनसे कहा,
2: बंकिम चंद्र की पुस्तकों को पढ़ो, आनंद मठ की संतानों के समान देशभक्त बनो। तुम लोगों का प्रधान कर्तव्य जन्मभूमि की सेवा है, सबसे पहले चाहिए राजनैतिक स्वतंत्रता।
1: उन्होंने कहा था कि हमारी गरियसी भारत माता ही हमारी आराध्या देवी है।
0: स्वामी जी के संपूर्ण चिंतन और आदर्श ने 20वीं सदी के कई श्रेष्ठ भारतीयों पर किस प््रकार प्रभाव डाला था, इसे हम प्रायः भूल जाते हैं। आज स्वाधीन हुए 65 वर्षों से भी अधिक समय बीत चुका है। स्वामी जी के समय में जो बहुत सी राष्ट्रीय समस्याएं थीं, वो आज भी हैं, लेकिन देश की समस्त जनता, विशेषकर तरुण वर्ग, मार्गदर्शन के लिए स्वामी जी को अपने पथ प्रदर्शक के रूप में उस प्रकार स्मरण नहीं करता।
1: स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान हमारे नेताओं के सामने स्वामी विवेकानंद आदर्श स्वरूप थे। सभी नेता आंदोलन में कूद पड़े थे। हम उन्हीं नेताओं और परवर्ती काल के विद्वानों और मनीषियों के लेख से स्वामी जी के व्यक्तित्व के बारे में जानेंगे।
0: सबसे पहले हम स्वामी विवेकानंद के गुरु श्री रामकृष्ण देव के उद्गार सुनेंगे। उन्होंने उनके प्रिय शिष्य नरेंद्रनाथ यानी कि स्वामी जी के लिए कहा था,
3: नरेन शुद्ध सत्वगुणी है, मैंने देखा है कि वो अखंड के घर के चार में से एक तथा सप्त ऋषियों में से एक है। नरेन ध्यान सिद्ध महापुरुष है, मैंने देखा केशव चंद्र सेन जिस प्रकार एक शक्ति के विकास के द्वारा संसार में विख्यात हुआ है, नरेंद्र के भीतर उस प्रकार की 18 शक्तियां पूर्ण रूप में विद्यमान हैं। नरेंद्र सा एक भी लड़का मुझे दिखाई नहीं पड़ा, जैसा गाने बजाने में, वैसा पढ़ने लिखने में, वैसा ही बातचीत में और फिर धर्म विषय में भी। वो रात भर ध्यान करता है, ध्यान करते करते भोर हो जाती है, होश नहीं रहता। मेरे नरेन में थोड़ी भी कृत्रिमता नहीं है। बजाकर देखो वो ठन ठन शब्द होता है। वो ब्रह्म समाज में भी जाता है, वहां गाता है, परंतु दूसरे ब्राह्मणों की तरह नहीं। वह यथार्थ ब्रह्म ज्ञानी है। ध्यान करने के लिए बैठते ही उसे ज्योति दर्शन होता है। उसे मैं यूं ही प्यार नहीं करता।
1: महात्मा गांधी ने स्वयं स्वीकार किया है कि स्वामी जी की रचनावली पढ़कर उनके स्वदेश प्रेम में 1000 गुना वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा था,
4: मैंने उनके द्वारा सृजित साहित्य का आद्योपांत अध्ययन किया है और तत्पश्चात अपने देश के प्रति मुझे जो प्रेम था वो 1000 गुना बढ़ गया है। नौजवानों, मैं तुमको आवाहन करता हूँ, जहाँ स्वामी विवेकानंद जिए और मृत्यु को प्राप्त हुए, उस स्थान के कुछ प्रभाव को धारण किए बिना खाली मत चले जाना। निश्चित रूप से स्वामी विवेकानंद के लेखों को किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है, वे स्वयं अपने आप को स्थापित करते हैं तथा निर्विरोध रूप से चित्त को आकर्षित करते हैं।
0: राजनीति के क्षेत्र में सक्रिय भूमिका न निभाते हुए भी राजनीतिक दृष्टि में बहुत अधिक दूरगामी थे स्वामी जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आवेदन निवेदन की नीति की निंदा करते हुए उन्होंने उच्च स्वर में घोषणा की थी,
5: भिक्षा के द्वारा देश की स्वतंत्रता अर्जित नहीं की जा सकती, हमें अपनी शक्ति पर निर्भर होना होगा।
1: एक अन्य विषय में भी स्वामी जी ने कांग्रेसी नेताओं की अपेक्षा अधिकतम ज्ञान और दूरदृष्टि का परिचय दिया था। कांग्रेस का गठन शिक्षित मध्यवर्ती समुदायों के प्रतिनिधियों को लेकर हुआ था, लेकिन स्वामी जी ने ही सर्वप्रथम घोषणा की कि भारत के पिछड़े वर्ग, मूर्ख, दरिद्र, किसान, श्रमजीवी यानी समग्र जनशक्ति के जागरण के बिना भारत की स्वाधीनता संभव नहीं। उन्होंने दिव्य दृष्टि से भारत के भविष्य को देखते हुए घोषणा की थी कि ये मछुआरे, बनिए और श्रमिक लोग ही भारत में स्वतंत्रता लाएंगे और भविष्य में प्रमुख पद प्राप्त कर भारत की उन्नति का पथ प्रशस्त करेंगे।
0: सामान्य लोगों की धारणा है कि महात्मा गांधी ने सर्व प्रमुख राष्ट्र जागरण तथा मुक्ति संग्राम में निम्नतर श्रेणी के जन साधारण की सहभागिता पर जोर दिया था, किंतु उसके बहुत पहले ही विवेकानंद ने इसकी घोषणा कर दी थी। रोमा रोला ने लिखा है,
6: गांधी जी ने स्वतः यह स्वीकार किया है कि विवेकानंद की रचनाओं से उन्होंने प्रचुर सहायता पाई है तथा भारत को और भी चाहने तथा और अच्छी तरह समझने में उनसे सहायता मिली है।
1: जवाहरलाल नेहरू जी ने भी लिखा है,
7: उनकी जड़ें अतीत में थीं तथा भारत के सम्मान के प्रति उनमें पर्याप्त अभिमान था, तथापि जीवन की समस्याओं के समाधान हेतु विवेकानंद आधुनिक थे तथा अतीत एवं वर्तमान भारत के बीच एक सेतु थे। स्वामी जी ने जो कुछ लिखा और कहा वो कल्याणकारी है, हितकारी है और वो आने वाले लंबे समय तक हमें प्रभावित करता रहेगा। साधारण शब्द के अर्थ में वे राजनीतिज्ञ नहीं थे, तथापि मेरे विचार से वे महान संस्थापकों में से एक थे। आंशिक या संपूर्ण रूप से भारत के आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने वालों ने स्वामी जी से प्रेरणा प्राप्त की थी। प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से स्वामी विवेकानंद ने भारत को संपूर्ण शक्ति से प्रभावित किया है। स्वामी विवेकानंद द्वारा विवेक, उत्साह एवं अग्नि का जो उद्गम प्रवाहित किया गया है, मैं समझता हूँ युवा पीढ़ी उससे संपूर्ण लाभ प्राप्त करेगी।
0: श्री अरविंद ने एक लेख में लिखा था,
4: यदि किसी को विराट हृदय सम्राट के रूप में स्वीकार किया जा सकता है तो वे एकमात्र विवेकानंद हैं, नर केसरी विवेकानंद। हमने देखा है कि उनका प्रभाव आज भी प्रबल रूप से कार्य कर रहा है। उसी प्रभाव ने भारत की आत्मा को आंदोलित किया है।
1: श्री अरविंद आगे लिखते हैं,
4: स्वामी विवेकानंद की अमेरिका यात्रा और उनके द्वारा उत्तरोत्तर कार्यों ने भारत के लिए लंदन में आयोजित 100 कांग्रेसों से अधिक प्रभावशाली कार्य किया। हमारी अनुभूति है कि उनका प्रभाव अलौकिक रूप से अब भी कार्यरत है और हम कहते हैं, स्वामी विवेकानंद को देखो जो अब भी अपनी भारत माँ और भारत माँ की संतति की आत्मा में विद्यमान है।
0: कवि गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर पर भी स्वामी जी का प्रभाव देखा जा सकता है। उन्होंने लिखा है,
8: वैराग्य साधना द्वारा मुक्ति मुझे स्वीकार नहीं, मैं मनुष्यों के बीच बचे रहना चाहता हूँ।
1: रविंद्रनाथ जी की अपमानित नामक कविता में भी इससे अधिक स्पष्ट प्रमाण मिलता है। कवि कहते हैं,
8: हे मेरे भाग्यहीन देशवासी, तुमने जिनका अपमान किया है उसी प्रकार तुम्हें भी समान रूप से अपमानित होना होगा। जिनको तुमने मानव अधिकार से वंचित किया है उन्हीं से तुम्हें उसका प्रतिदान मिलेगा। छुआछूत के नाम पर अपने से दूर रखकर तुमने मनुष्य के भीतर अवस्थित ईश्वर से घृणा की है। उन्हें दूर धकेल कर मानो अपनी ही शक्ति की अवहेलना कर निर्वासित किया है।
0: टैगोर ने रोमा रोला को लिखा था,
8: विवेकानंद ने, सब कुछ सकारात्मक है, कुछ भी नकारात्मक नहीं। राष्ट्र के प्रत्येक व्यक्ति को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि तुम में से प्रत्येक के अंदर ईश्वर की शक्ति है। दीन व दुखी के अंदर का ईश्वर तुमसे अपनी सेवा की अपेक्षा करता है। उनके इस संदेश ने नवयुवकों के हृदय को पूर्ण व्यापकता के साथ झकझोरा है। यही कारण है कि ये संदेश राष्ट्र की सेवा में विविध प्रकारों एवं बलिदान की विभिन्न शक्लों के रूप में फलदायी सिद्ध हुआ है।
0: रोमा रोला ने भी उल्लेख किया है कि रविंद्रनाथ पर स्वामी जी का कितना प्रभाव था।
6: रविंद्रनाथ में ब्रह्म समाज तथा विवेकानंद के नव वेदांतवाद की मानो दो धाराएं मिलकर एक ही हो गई थी। विवेकानंद के समान एक अग्रदूत का प्रभाव उनके मानसिक विकास में काफी हद तक प्रभावी था, ये निसंदेह है।
1: विवेकानंद की ही वाणी से किशोर सुभाष चंद्र के जीवन में अमूल्य परिवर्तन घटित हुआ। विवेकानंद की बात करते हुए वे आत्मविभोर हो जाते थे। उन्होंने चरित्र गठन के लिए रामकृष्ण विवेकानंद साहित्य को ही तरुणों के लिए सर्वोत्कृष्ट साहित्य माना है।
0: नेताजी सुभाष चंद्र एक अर्थ में स्वामी जी के मानस पुत्र थे। तत्व ज्ञान या मुक्ति तत्व के ऊपर जो साक्षात मुक्ति, भारत की मुक्ति, स्वामी जी के हृदय में प्रचंड शक्ति के रूप में विराज कर रही थी, नेताजी ने भी उसी मुक्ति को अपने हृदय में अनुभव किया था। नेताजी ने लिखा था,
9: स्वामी विवेकानंद की बहुमुखी प्रतिभा का वर्णन करना कठिन है। स्वामी विवेकानंद ने अपनी कृतियों एवं व्याख्यानों से हमारे समय के छात्रों को जितना प्रभावित किया है वो देश के किसी भी नेता को काफी पीछे छोड़ गया है। स्वामी जी ने उनकी आशाओं एवं आकांक्षाओं को पूर्ण रूपेण अभिव्यक्त किया है। स्वामी जी का अध्ययन स्वामी जी रामकृष्ण परमहंस देव जी के साथ किए बिना उन्हें यथोचित रूप से समझना कठिन है। वर्तमान स्वतंत्रता आंदोलन की आधारशिला अपने उद्भव के लिए स्वामी जी के संदेह की ऋणी है। यदि भारत को स्वतंत्र होना है तो ये मात्र हिंदुवाद अथवा इस्लाम की एकल भूमि नहीं हो सकता। राष्ट्रवादी आदर्शों से अभिप्रेरित विभिन्न धार्मिक समुदायों की संगठित भूमि होना चाहिए। भारतवासियों को धर्मों की समता के उपदेश को पूर्ण हार्दिकता से स्वीकार करना चाहिए। यही रामकृष्ण विवेकानंद का उपदेश है। स्वामी जी ने पूर्व और पश्चिम को, धर्म और विज्ञान को, अतीत एवं वर्तमान को समन्वित किया है और इसलिए वे महान हैं। हमारे देशवासियों ने उनकी शिक्षाओं से अभूतपूर्व आत्मसम्मान, आत्मविश्वास एवं आत्मअभिव्यक्ति को प्राप्त किया है।
0: भगिनी निवेदिता ने स्वामी जी को बहुत करीब से देखा था। वे निवेदिता के गुरु थे। उन्होंने स्वामी जी की देशभक्ति के बारे में लिखा है,
10: स्वामी जी एक और धर्म की उदात्त अभिव्यक्ति थे, वहीं दूसरी ओर वे सबसे महान देशभक्तों में से थे। वे उस समय जन्मे जब राष्ट्रीय विखंडन प्रारंभ हो चुका था, पर वे नवीनता से भयभीत नहीं थे। वे उस समय हुए जब लोग अपनी विरासत को त्याग रहे थे, परंतु वे पुरातन के अनन्य उपासक बने रहे। उनमें राष्ट्र के लक्ष्य ने परिपूर्णता प्राप्त की। राष्ट्र का लक्ष्य कहता है कि राष्ट्रीय चेतना की प्रत्येक नवीन लहर का प्रारंभ सदैव धर्माचार्यों द्वारा होना चाहिए। ऐसे व्यक्ति में हो सकता है कि हमें भविष्य का समूचा वेद प्राप्त हो। वैसे यह बात हमें अवश्य याद रखनी चाहिए कि विवेकानंद के धार्मिक महत्व को आंकने का समय अभी नहीं आया है। धर्म एक जीवित बीज है और वे अभी अभी इस बीज को बोकर गए हैं। अभी उनकी फसल पकी नहीं है, परंतु यह एक सत्य है कि देशभक्त अपनी मृत्यु से यथार्थ रूप में देश का हो जाता है। आज जब गुरुदेव अपने शिष्यों के बीच से महाप्रयाण कर चुके हैं, आज जब शमशान घाट में अनेक आलोचकों की आवाजें बंद है, स्वाधीनता की घोषणा करने वाली वो महान ध्वनि अप्रतिहत रूप से गूंज रही है और सारा राष्ट्र एक स्वर में उसका उत्तर दे रहा है।
0: स्वामी विवेकानंद की दूसरी शिष्या भगिनी क्रिस्टन ने लिखा है,
11: काल के दीर्घ अंतराल के बाद बीच बीच में एक व्यक्ति हमारे इस भूमंडल पर आ पहुंचता है, जो असंदिग्ध रूप से किसी अन्य लोक से आया हुआ है, एक पर्यटक होता है, जो इस दुखपूर्ण संसार में भी अपने उस सुदूरवर्ती लोक की महिमा, शक्ति तथा दीप्ति का कुछ अंश ले आता है। इस मृत्यु लोक का न होकर भी वो मनुष्यों के बीच विचरता है। वो मानो एक तीर्थयात्री है, एक अजनबी जो केवल एक रात ही यहां ठहरता है। वह अपने आसपास के लोगों के जीवन से स्वयं को संबद्ध पाता है, उनके हर्ष विषाद का भागीदारी बनता है, उनके साथ सुखी और दुखी भी होता है, परंतु इन सब का बीच वह यह कभी नहीं भूलता कि वह कौन है, कहां से आया है और उनके यहां आने का उद्देश्य क्या है। अपने दिव्यत्व की बात उसे कभी विस्मृत नहीं होती, उसे सदैव स्मरण रहता है कि वह महान तेजोमय तथा महिमामय आत्मा है। ऐसे एक मनुष्य को मैंने देखा है, उनकी वाणी सुनी है और उनके प्रति मैंने अपनी श्रद्धा निवेदित की है। उन्हीं के चरणों में झुककर मैंने अपने आत्मा का अनुराग अर्पित किया।
0: हमारे आचार्य विनोबा भावे भी स्वामी जी के प्रभाव से नहीं बचे।

0: ईश्वर भूखों और असंख्य अनाथों में दृष्टिगोचर है एवं उनकी प्रगति एवं नैतिक उत्थान के लिए ईश्वर ने उनकी संरचना की है। स्वामी विवेकानंद द्वारा दरिद्र नारायण शब्द गढ़ा गया एवं गांधी जी द्वारा उसे जन जन तक पहुंचाया गया।
1: फ्रांसीसी चिंतक रोमारोला की बातें बार बार याद आती हैं। वे भारत प्रेमी थे और स्वामी विवेकानंद के प्रबल अनुगामी थे। उन्होंने लिखा है,
2: संपूर्ण शरीर में बिजली के झटके की भांति रोमांच पाए बिना मैं उनके इन वचनों को जो इतने वर्ष पूर्व लिखी गई पुस्तकों के पृष्ठों पर बिखरे पड़े हैं स्पर्श नहीं कर सकता। और कैसे झोंके एवं तूफान उत्पन्न हुए होंगे जब वे ज्वलंत शब्द उस नायक के अधरों से प्रस्फुटित हुए होंगे।
3: दूसरों की तरह चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने भी स्वामी जी के संबंध में लिखा है,
4: स्वामी विवेकानंद ने हिंदू धर्म और भारत की रक्षा की। उनके अवतरित न होने पर हम अपना धर्म खो चुके होते और अपनी स्वतंत्रता को पाने में असफल हो गए होते। हम इसलिए हर प्रकार से स्वामी विवेकानंद के ऋणी हैं। उनका साहस, उनका विश्वास, उनकी विद्वता हमें सदैव प्रेरित करती रहेगी ताकि जो विरासत हमें उनसे मिली है हम उसे सुरक्षित रख सके। कुछ ही दिनों पूर्व के इतिहास पर नजर डालने पर ज्ञात होता है कि हम स्वामी विवेकानंद के कितने ऋणी हैं। उन्होंने भारत की यथार्थ महत्ता को हमारे समक्ष रख कर हमारी आंखें खोल दी। उन्होंने राजनीति का आध्यात्मिकीकरण किया। हम अंधकार में थे, उन्होंने हमें राह दिखाई। वे भारत की राजनीतिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक स्वाधीनता के जनक हैं।
1: हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति कलाम साहब ने भी स्वामी जी की बातों को ही दोहराया है। वे अपनी पुस्तक इग्नाइटेड माइंड्स में लिखते हैं,
5: स्वामी जी ने अपने विख्यात स्वदेश मंत्र में जिस परानुकरण परानुवाद पर निर्भरता और दाससुलभ मनोवृत्ति के लिए भारतीयों को फटकारा है, ये नकारात्मक शिक्षा या कुशिक्षा का ही परिणाम है। स्वामी जी शिक्षित भारतवासियों में देश प्रेम और राष्ट्रीयता का अभाव देख मर्माहत हुए थे। हम लोग कहाँ गलती कर रहे हैं? हमारे पास अधिकांश तौर पर आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध हैं। संभवतः हम लोगों के मनोभाव में ही कोई समस्या है। सहयोग केवल सीमाबद्ध घेरे में ही सफल होने में सक्षम है। लगता है इस धारणा को हम उतार कर फेंक नहीं पा रहे हैं। एक जड़ता ने हमारे राष्ट्र की मानसिकता को जकड़ रखा है। वैश्वीकरण, अर्थनैतिक संकट, मुद्रास्फीति, आंचलिक विद्रोह, राजनैतिक अस्थिरता इत्यादि भारी समस्याओं से अधिक मैं हमारी राष्ट्रीय मानस को जकड़ी हुई इस जड़ता, इस पराजित मनोवृत्ति को लेकर अधिक चिंतित हूँ।
1: विदेशी पत्रकार मार्क टली, जो एक भारत प्रेमी है, स्वामी जी के विचारों से प्रभावित हुए थे। उन्होंने भी स्वामी जी की बातों को दोहराया है। उन्होंने भारत को बहुत करीब से देखा और महसूस किया,
6: जैसा कि स्वामी जी ने कहा था, भारतवर्ष आज भी उपनिवेश युग के प्रभाव तथा उत्तराधिकार से मुक्त नहीं हो सका है। इसलिए भारतवर्ष के उच्च वर्ग में भारतीय सभ्यता का तथा भारतीयत्व के प्रति अश्रद्धा का भाव झलकता है। इसके अलावा उसमें एक और प्रवृत्ति है, वो है भारत की समस्याओं का समाधान भारत में न खोजकर भारतवर्ष के बाहर खोजना।
3: अंत में इसी के समतुल्य भारत के संबंध में स्वामी जी के दृष्टिकोण का भगिनी निवेदिता द्वारा किया गया विश्लेषण याद किया जा सकता है।
7: स्वामी जी सोचते थे कि उनके स्वदेश की आशा, विश्वास उसके भीतर ही है, बाहरी किसी देश में नहीं। वे कभी किसी पर निर्भर नहीं रहे। देश के नवीन होने का अर्थ है अभ्यंतरीन शक्ति से देश की

अभी आप सुन रहे थे स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद। अब हमें आज्ञा दीजिए, हम आपसे मिलते रहेंगे इसी समय अपने इस कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद में।

नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 FM पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मंगल कामनाएं करते हैं और आशा करूंगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी फील कर रहे हैं। और आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए आइए आज 3 जुलाई की बातें करते हैं। और विशेष आज रोहिणी नक्षत्र हैं और गोपाल कृष्णन इनका जन्मदिन है। हंसा मेहता, रामचंद्र दत्तात्रेय रानड़े, हबीब उर रहमान लुधियानवी, इन सभी का जन्मदिन है। इसके साथ ही मोहम्मद उस्मान राजकुमार, मनोज कुमार पांडे, सरोज खान, योगेश कुमार, सुदर्शन अग्रवाल, इन सभी का पुण्य दिवस है। तो आइए आज के इस प्रोग्राम में आप सभी को कुछ खास बातें आज के दिन जन्मे उन लोगों के बारे में बात करते हैं, लेकिन साथ साथ में आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। शाम का समय है एक अच्छे विचार के साथ, और कहते हैं कि जिंदगी में अच्छे विचारों से ज़्यादा और कुछ नहीं है। अगर आपका मन अच्छे विचार करने में लग जाए तो इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकता। तो आइए मन को दिशा निर्देश देने के बजाय उसे अच्छे विचार ही देते जाए तो मन भी अच्छा हो जाएगा, आपका जीवन भी अच्छा हो जाएगा। तो आइए, शाम का समय है और शाम के समय में जैसे कि आप सभी थोड़ा सा जो है एनर्जी लो होता है तो हम लोग उसे अपडेट करते हैं पानी या फिर शरबत या फिर चाय पी के। तो आपके ऊपर चॉइस है कि आपको किसे पीना है और कैसे अपने आप को तरोताजा रखना है। तो चलिए, आपकी तरोताजगी बढ़ाने के लिए मैं आपको सुनाता हूँ एक विचार और एक बहुत ही खूबसूरत गीत के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आइए, पंछी कभी अपने बच्चों के भविष्य के लिए घोंसले बनाकर नहीं देते। याद रखिए, पंछी कभी अपने बच्चों के भविष्य के लिए घोंसले बनाकर नहीं देते। वे तो बस उन्हें उड़ने की कला जरूर सिखाते हैं। है ना कमाल की बात, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन पर। जी हाँ, सफर इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं और ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ लीजिए एक बहुत ही प्यारा सा गीत आपके नाम। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अपने भीतर के अंधकार को समझिए, क्योंकि वहीं से प्रकाश निकलेगा। और जो व्यक्ति खुद पर विजय पा लेता है, वह सबसे बड़ा विजेता बनता है। मैं हूं आपका हमसफर आरजे रमेश। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 FM पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ गोपाल कृष्ण के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। अभी इनका जन्मदिन आज ही के दिन 1941 को हुआ था और एक ऐसे व्यक्ति हैं जो केरल से बिलोंग करते हैं और बहुत ही पॉपुलर भारतीय फिल्म निर्देशक, पटकथा लेखक और निर्माता है। मलयालम सिनेमा और भारत के छोटे के फिल्म निर्माताओं से एक उनके अंदर इनका भी नाम आता है जो दिग्गज फिल्में बनाते हैं। अधूर गोपाल कृष्ण की फिल्मों न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी सराही जाती रही हैं और 70 के दशक में इनकी पहली फिल्म स्वयंवरम को सर्वश्रेष्ठ फिल्म निर्देशन और कैमरा मैन पुरस्कार मिला था। हाल ही में उनकी फिल्म मातिलुक्कलम को पेरिस में युवाओं के 12वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का पुरस्कार मिला। 1984 में पद्मश्री, 2004 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार और 2006 में पद्म विभूषण इनको दिया गया। आइए इनके बारे में बात करते हैं जन्म तथा आरंभिक जीवन की। तो आज ही के दिन 1941 को केरल के अधूरा नामक गांव में इनका जन्म हुआ। इनके पिता का नाम माधव और माता मोथाथु गौरी था। श्री गोपाल कृष्णन का मात्र 8 वर्ष के थे तब उनके शौकिया तौर पर नाटकों में एक अभिनय के लिए अपना कलात्मक जीवन शुरू कर दिया था और यहीं से इनका जीवन का ये बहुत बड़ा काम कर गया। और गोपाल कृष्ण ने पुणे में स्थित भारतीय फिल्म और टेलीविज़न ट्रेनिंग संस्थान में परीक्षण हासिल किया और इसके बाद फिल्म निर्माण का कार्य शुरू किया। 1972 में कृष्णा ने अपनी पहली फिल्म स्वयंवरम बनाई। इस फिल्म के लिए उन्हें गंभीर फिल्मकार के रूप में अपनी पहचान बनाने में कामयाबी मिली और बहुत अधिक फिल्में तो नहीं बनाई, किंतु जो भी फिल्में बनाई वे विविध विषयों पर आधारित रही और इन फिल्मों की पटकथा भी उन्हें स्वयं लिखी थी। उनकी पहली फिल्म स्वयंवरम, जहाँ विचार धाराओं के टकराव की कहानी है, वही दूसरी फिल्म इलियापत्थम में केरल के समानती समाज के पतन को दिखाया गया। 3 साल पहले आई उनकी अंतिम फिल्म निगलकत्तू एक जल्लाद के जीवन पर आधारित है जिसका बेटा क्रांतिकारी होता है। तो इस तरह से कॉन्ट्रोवर्सी जीवन शैली को उन्होंने दर्शाया और एक खलनायक तो एक क्रांतिकारी, ऐसी फिल्में इन्होंने बनाई। भारतीय सिनेमा में गोपाल कृष्ण जी को अद्भुतपूर्व योगदान को देखते हुए उन्हें 4 बार सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्राप्त है। तो ये थी कुछ खास बातें गोपाल कृष्णन के बारे में। आप सुन रहे हैं रेडियो माधुबन 107.8 FM पर। जी हाँ, सफर इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, सुनते रहो।

मैं हूं अवधेश पंडित, जीएम फाइनेंस बेसिल, और आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। फिर से एक बार स्वागत है सफर इस कार्यक्रम में। और आइए एक और शख्सियत के बारे में बात करते हैं जिनका जन्मदिन आज है। और कहते हैं कि जीवन खूबसूरत है जब आपके विचार खूबसूरत हैं। तो आइए हंसा मेहता की भी बात हम लोग करते हैं। एक ऐसी समाज सेवी, आज़ादी की दीवानी और शिक्षा में विशेष रूप से महत्व रखते हुए, शिक्षा के प्रति आस्था रखते हुए काफ़ी प्रसिद्ध रहीं। इनके पिता मनुभाई मेहता बड़ौदा और बीकानेर रियासत के दीवान थे। हंसा मेहता का विवाह देश के मुख्य चिकित्सकों में से एक तथा गांधी जी के निकट सहयोगी जीवराज मेहता जी के साथ हुआ। भारत के संविधान को मूल रूप देने वाली समिति में 15 महिलाएं शामिल थी और इन्होंने संविधान के साथ भारतीय समाज के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हंसा मेहता इन्हीं में से एक थी। तो आइए ऐसे विशेष व्यक्तित्व की धनी हंसा मेहता के बारे में बात करते हैं। इनका जन्म आज ही के दिन 3 जुलाई 1897 को हुआ और बड़ौदा राज्य में दर्शन शास्त्र के प्रति प्राध्यापक, जो बाद में बड़ौदा राज्य के दीवान भी रहे, सर मनुभाई मेहता के घर हंसा मेहता का जन्म हुआ। करण घोले, जिसे गुजराती साहित्य का पहला उपन्यास माना जाता है, उपन्यासकार नंद किशोर मेहता हंसा मेहता के दादा थे। घर में पढ़ने लिखने का माहौल था तो पढ़ाई अच्छी हो गई, तो हंसा बहन हंसा मेहता को भी बड़ौदा के विद्यालय में, महाविद्यालय में दर्शन शास्त्र में बीए हॉनर्स प्राप्त हुआ। इस संरक्षण माहौल में, सुरक्षित माहौल में शिक्षण ग्रहण करने में हंसा बहन को अधिक मुश्किलों का सामना कभी भी नहीं करना पड़ा। हंसा बहन जब पत्रकारिता की पढ़ाई करके इंग्लैंड पहुंची, तब वहां उनकी मुलाकात सरोजनी नायडू से भी हुई और सरोजनी नायडू ने इनके साथ मिलकर हंसा बहन को महिला आंदोलन के बारे में ट्रेनिंग दी, दीक्षित दी और फिर सार्वजनिक सभाओं में भी शिरकत करना शुरू कर दिया। सरोजनी नायडू के साथ वह एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में जिनेवा भी गई और पत्रकारिता की पढ़ाई खत्म करके हंसा बहन अमेरिका की यात्रा पर गई, जहां वह शिक्षण संस्थाएं, शैक्षणिक एवं सामाजिक कार्य सम्मेलनों में शामिल हुई, मताधिकार करने वाली महिलाओं से मिली। हंसा बहन सैन फ्रांसिस्को, संघाई, सिंगापुर और कोलंबो होती हुई भारत आई और अपनी यात्रा के अनुभवों को बॉम्बे कार्निवल में प्रकाशित भी किया। तो है ना कमाल की बात। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन पर, जी हाँ, सफर इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आइए हंसा मेहता के बारे में और जानेंगे थोड़ी देर में, लेकिन अभी आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत सा गीत सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ। आइए बात करते हैं हंसा मेहता के बारे में और जिस तरह से उन्होंने अपने अनुभवों को साझा किया बॉम्बे कार्निवाल में, और उनकी जो प्रकाशन शैली थी वो देखकर बहुत ही अच्छा सभी को लगा। और अंतरजातीय विवाह उस दौर में प्रतिलोम विवाह, दूसरे शब्दों में अपने से निचली जाति में विवाह संभव समाज को स्वीकार नहीं था। ये सामाजिक संरचना के विरुद्ध जाकर बहुत बड़ा कदम था और हंसा मेहता ने इस पर काम किया। हंसा मेहता ने डॉक्टर जीवराज एन मेहता से विवाह करना तय किया तो नगर ग्रस्त समाज में शोर मच गया और ऊंची जाति का वैश्या के संग विवाह के प्रतिरोध के लिए गुजरात से बनारस तक की सभाएं की गई और उन्हें जाति से बहिष्कार कर दिया गया। इन सब चीज़ों से हंसा बहन विचलित नहीं हुई और कहा, जब जाति से बहिष्कृत हो ही चुकी हूँ तो विवाह स्थगित करने का कोई बात ही नहीं बनती, तुक नहीं बनता। इसलिए हंसा मेहता ने पिता तथा परिवार के अन्य सदस्यों के अनुमोदन से 3 जुलाई 1924 को वह हंसा बहन से हंसा मेहता हो गई। विवाह के पश्चात हंसा मेहता बॉम्बे में आ गई, जहां पति ने किंग एडवर्ड मेमोरियल हॉस्पिटल और जीएस मेडिकल कॉलेज में डीन का पद संभाला। मुंबई हंसा मेहता की क्षमताओं के विकास के लिए अनुकूल भी शहर था। यहां हंसा मेहता ने शैक्षणिक और सामाजिक कल्याण की गतिविधियों में वक्त देना शुरू किया। वो गुजरात महिला सहकारी समिति, मुंबई नगर पालिका विद्यालय समिति, राष्ट्रीय महिला परिषद, अखिल भारतीय महिला सम्मेलन आदि संस्थाओं से जुड़ी रही। तो आइए आगे बढ़ते हैं और वहाँ पर इन्होंने कुछ रचनाएं भी की। हंसा मेहता ने गुजराती भाषा में बच्चों के लिए साहित्य अनुवादन करना शुरू कर दिया और फिर इस तरह से इनकी जो विशेष किशोरों के लिए काफ़ी किताबें उन्होंने लिखी और साहित्य से जुड़ने के बाद उनकी छवि और बदल गई और बहुआयामी पक्ष उभर कर सामने आया। आज़ादी के आंदोलन में सक्रिय भागीदारी में 1932 से लेकर 40 में उनका जेल में भी जाना पड़ा, यानी 8 साल उनके जेल में गुजारे। आज़ादी के बाद हंसा मेहता उन 15 महिलाओं में शामिल हो गई जहां संविधान का मसौदा तैयार करने वाली घटक का हिस्सा थी, सलाहकार समिति और मौलिक अधिकारों पर उप समिति की सदस्य थी। उन्होंने भारत में महिलाओं के लिए समानता और न्याय की वकालत जो है की, और इस तरह से हंसा बहन ने महिलाओं के स्तर में सुधार लाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में भी अपनी कोशिश की। कठिन परिस्थितियों में आशावादी रहने का लंबा जीवन जीते हुए 4 अप्रैल 1995 को अपने पीछे एक बड़े संघर्ष की परंपरा छोड़ चली गई। महिलाओं के स्तर में सुधार के लिए उनका प्रयासों को संयुक्त राष्ट्र संघ ने सराहा और एक कलजाई विदुषी महिला के रूप में उनका योगदान को आज भी लोग याद करते हैं। तो ये थी कुछ खास बातें और 4 अप्रैल 1995 में इन्होंने अपना संसार को अलविदा कहकर महापरियान में चली गई। और आइए इसके साथ ही एक और खूबसूरत गीत आपको सुनाता हूँ। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन पर, जी हाँ, सफर इस कार्यक्रम को सुनते हैं।

जानी। सुनो रे भाई शिव की वाणी, 84 जन्म की कहानी। छोटा सा एक युग अब आया, छोटा सा

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: तो वो लोग जो हमें छोटी छोटी बातों पे डांटते हैं, जो हमारी गलतियां निकालते हैं, जो हमारी निंदा करते रहते हैं, जो हमारी की हुई मेहनत का क्रेडिट ले लेते हैं, जो हमें धोखा दे देते हैं, जो हमारे पीठ पीछे गलत फैलाते हैं, कुछ भी लोग, वो छोटी ब्लैक बॉल हो सकती है, ग्रे हो सकती है या बहुत बड़ी ब्लैक बॉल हो सकती है, क्या हमारे पास पावर है कि हम ब्लैक का रिटर्न व्हाइट से भेजेंगे? वो हमारे साथ गलत करेंगे, हम उनको दुआएं भेजेंगे। इज दैट

0: पॉसिबल. पहली बात, ये मेरे साथ गलत क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैंने कभी ना कभी वो बॉल भेजी थी, तो गलती इनकी या मेरी? मेरी. तो इनके ऊपर से जो मैंने ब्लेम लगाया हुआ था वो पहले खत्म. वन. सेकंड, अब मैं अगर वाइट भेजूंगी तो किसके फायदे के लिए? उनके ऊपर एहसान नहीं, अपने फायदे के लिए वाइट भेजने में भी सोचना पड़ेगा. सोचना पड़ेगा. उनके लिए नहीं भेज रहे, अपने फायदे के लिए भेज रहे हैं. क्योंकि अब जब हम वाइट एनर्जी भेजेंगे, मतलब दुआएं देंगे अपने फायदे के लिए.
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए.
2: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है. ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मंगल कामनाएं करते हुए आइए आगे बढ़ते हैं. और बहुत ही अच्छी बातें आपसे शेयर की हमने हंसा मेहता जी के बारे में. अब बात करते हैं रामचंद्र दत्तात्रेय रानाडे के बारे में. आइए, इनका भी जन्म आज ही के दिन 3 जुलाई 1886 को हुआ और संस्कृत के विद्वान और दर्शन शास्त्र थे. वे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में दर्शन विभाग के अध्यक्ष और प्रोफेसर के पद पर रहे. इसके बाद इसी विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर भी बने. रामचंद्र दत्तात्रेय रानाडे का जन्म 3 जुलाई 1886 को जामखंडी नामक स्थान पर बागलकोट जिला कर्नाटक में हुआ. इनके पिता दत्तात्रेय रानाडे राम दुर्ग छोड़कर जामखंडी में आ बसे थे. शिक्षा पूरी करने के बाद रामचंद्र दत्तात्रेय रानाडे पूना के फर्गुन्स कॉलेज में पहले अंग्रेजी के और फिर तत्वज्ञान के प्राध्यापक नियुक्त हुए. बाद में अपने ये कार्य छोड़कर अध्यात्म विद्यापीठ नामक संस्थान की स्थापना की और 1927 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में दर्शन विभाग के अध्यक्ष और प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हुए. तो आइए इनके रचना कार्य की बात करें तो रानाडे के आध्यात्मिक विषयों पर शोध करना और उनके प्रचार प्रसार करने में रुचि थी. अपने संगली में आध्यात्मिक विद्या मंदिर की स्थापना की और अंग्रेजी मराठी में 1922 और 27 के बीच में भारतीय दर्शन और अध्यात्म पर 13 मानक ग्रंथों की रचना की. अपने अध्यात्म विद्यापीठ नामक संस्थान की स्थापना की. इसका उद्देश्य 16 खंडों में भारतीय दर्शन का इतिहास प्रकाशित करना था. इस क्रम में कुछ खंड प्रकाशित हो चुके थे. आइए कुछ खास बातें अगर मैं करूं तो इनको जो है रामचंद्र दत्तात्रेय रानाडे को मराठी में लिखे उनके ग्रंथ ज्ञानेश्वरी वचन अमृत, संत वचन अमृत, तुकाराम वचन अमृत, रामदास वचन अमृत, एकनाथ वचन अमृत, ये 5 खंड इनके ग्रंथ है. और इसके सिवाय अलग अलग निबंध पत्रिकाओं में इनके जो है प्रकाशित हुए. और इस तरह से निवाद में रहकर अनेक दार्शनिक ग्रंथों का अध्ययन किया और उसका निर्माण किया. बाद में वाइस चांसलर भी बने और निवृत्त हो जाने पर 26 अक्टूबर 1947 में सांगली में अध्ययन करते हुए विद्या मंदिर की स्थापना की. और फिर 6 जून 1957 को इनका निधन हुआ. तो ये थी कुछ खास बातें रामचंद्र रानाडे के बारे में. आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM. सुनते रहो, मुस्कुराते रहो.

0: नमस्कार, मैं हूँ हरमीत सिंह, वन ऑफ द मीत ब्रदर्स अंजन, म्यूजिक डायरेक्टर्स एंड सिंगर्स फ्रॉम द फिल्म ओ माई गॉड. और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन. सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए.
1: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर. आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फिर से एक बार ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ. आइए हबीब उर रहमान लुधियानवी के बारे में बात करते हैं. ये भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में काम करते रहे, राजनीति में रहे, आज़ादी के दीवाने रहे, स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने काम किया और खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन में बढ़ चढ़कर इन्होंने हिस्सा लिया था. सन 1929 की बात है जब ब्रिटिश अधिकारियों ने लुधियाना में घास मंडी चौक पर हिंदू और मुसलमानों के लिए अलग अलग पानी के बर्तन का इस्तेमाल किया तो हबीब उर रहमान लुधियानवी ने हिंदू मुस्लिम और सिख कार्यकर्ताओं के सहयोग से इसे ख़त्म किया और एक पर्चा लगवाया, सबका पानी एक है, जिसके लिए उन्हें जेल भेज दिया गया. तो ये इनकी पहली

अजीज की बेटी बीवी शाह फातुनिसा से विवाह किया था और भारतीय राष्ट्रीय अधिवेशन में शामिल हुए और खिलाफत आंदोलन और सहयोग आंदोलन में हिस्सा लेते हुए क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम दिया। फिर उसके बाद अपनी भूमिका निभाते हुए हबीब ने 1929 में मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की सलाह पर विशेष एक सोसाइटी फॉर मैन स्थापना की और 1929 में भगत सिंह ने केंद्रीय सभा में बम फेंके। उसके बाद से कोई भी उनके परिवार के सदस्यों को शरण देने के लिए आगे नहीं आया था, क्योंकि लोगों को ब्रिटिश दमन का भय था। तब मौलाना हबीब ने भगत सिंह के परिवार के सदस्यों को एक महीने तक आश्रय प्रदान किया था और साथ ही उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के भी अपने घर पर मेहमान नवाजी की थी। उसके बाद कई बार इनको जेल यात्राएं करनी पड़ी, जेल यात्रा में जाते रहे और विभाजन के बिल्कुल ये विरोध थे, लेकिन कर भी क्या सकते थे एक आदमी की आवाज़ से, है ना। तो ऐसे विशेष क्रांतिकारी का जीवन से रूबरू होने का मौका मिला आप सभी को। और लुधियानवी जो है पंडित नेहरू से ताल्लुकात बहुत अच्छे रहे और आज़ादी के बाद दुनिया से भारत के अच्छे ताल्लुकात के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की। इसके लिए वह 1952 में सऊदी अरब भी गए थे और उसके बाद 2 सितंबर 1956 को अपने अंतिम क्षणों तक देश और लोगों की आज़ादी के लिए प्रतिबद्धता के साथ लड़ते रहने वाले हबीब लुधियानवी का निधन हो गया और उन्हें विशेष निवेदन पर दिल्ली की जामा मस्जिद के पास मौजूदा कब्रिस्तान में दफना दिया था। तो ये थी कुछ खास बातें लुधियानवी के बारे में। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन पर, जी हाँ, सफ़र इस कार्यक्रम को। तो चलिए मित्रों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ नई बातें लेकर। और जाते जाते आपके लिए एक विचार, कोशिश आखिरी सांस तक करनी चाहिए, मंजिल मिले या तजुर्बा, चीज़ें दोनों नायाब है। इन्हीं शुभ आशाओं के साथ फिर मिलते हैं। सलाम नमस्ते खमा गणिसा, जय हिंद जय भारत।

ना वो अखियां नूहानी कहीं, ना वो चेहरा नूरानी कहीं, कई दिल वाली बातें भी ना वो सचरी जवानी कहीं, जग

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। खुद को समय दें, क्योंकि आत्मा की गहराई तक पहुंचने में धैर्य और ध्यान दोनों की आवश्यकता होती है। मैं हूं आपका हमसफर आरजे रमेश। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: रेडियो मधुबन 90.4 FM सुन रहे हैं आप। कार्यक्रम का नाम है युवा मंच। दोस्तों, युवाओं का मंच है तो फिर कुछ करियर्स के बारे में भी बीच बीच में बात होती है जो कि युवाओं को आकर्षित करते हैं, या कई चीजें जो जानकारियां हमारे लिए उपस्थित नहीं होती। हालांकि दोस्तों, इंटरनेट का जमाना है, बहुत कुछ आपको मिल सकता है जो भी आप करियर अपनाना चाहें। लेकिन वो करियर है कैसा, उसको जाने किसी ऐसे व्यक्ति की नजर से जो ऑलरेडी उस करियर में हो, तो फिर कहीं ना कहीं मोटिवेशन के साथ साथ सही जानकारी भी मिल जाती है। दोस्तों, हम आगे बढ़ेंगे इसी श्रृंखला में। आज हमारे साथ हैं श्री कृष्ण प्रकाश तौले जी। एक्चुअली मैं उनका नाम पूरा जरूर लिया, लेकिन उनकी पोस्ट तो भूल ही गई। दोस्तों, आज हमारे साथ हैं सीए श्री कृष्ण प्रकाश तौले जी। जी हाँ, वो एक युवा साथी है और सीए हैं, तो आज इसी फील्ड के बारे में, इसी करियर के बारे में हम उनसे बातचीत करेंगे और उनके बारे में भी कुछ जानेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू।
0: अच्छा, सबसे पहले तो बहुत अच्छा करियर है, आई नो बहुत कंपटीशन होता है, तो आपको बहुत बहुत बधाई है कि आप इतना अच्छे करियर में आगे बढ़ रहे हैं एंड हम आपसे आज बहुत कुछ जानेंगे। आप अपने बारे में कुछ अपने शब्दों में बताइए।
1: थैंक यू सो मच फॉर ब्रीफ इंट्रोडक्शन। अगर आप सीए के बारे में करेंगे तो सीए एक बहुत अच्छा, मतलब इंडिया में रिप्यूटेड कोर्स है जिसकी शुरुआत इसका, मतलब मैंने एक्चुअली इन द 9th स्टैंडर्ड ऑलरेडी डिसाइड कर लिया था कि मुझे सीए परस्यू करना है।
0: अच्छा।
1: मुझे एक्चुअली एक स्कूल टीचर से पता चला था, बिकॉज तब इतना अवेयरनेस नहीं होता है सीए कोर्स के बारे में लोगों को, इसलिए वो इशू जाता है। तो मुझे एक स्कूल टीचर से पता चला था कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स होता है और इसमें ऐसा ऐसा कुछ फ्यूचर वगैरह होता है, तो फिर मैंने वहां से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना स्टार्ट
0: किया। तो आपको इंटरेस्टिंग कैसे लगा, मतलब आप 9वीं कक्षा में थे, 9th क्लास में थे, तो उस टाइम आपको कैसे लगा कि नहीं सीए अच्छा है, मतलब क्या बताया ऐसा टीचर ने जो आपको बहुत अच्छा लगा?
1: एक्चुअली वो नई चीज सुनी थी, क्योंकि पहले तो डॉक्टर, इंजीनियर और अदर फील्ड जो ऑप्शंस जो यूजुअली अपने को पता होते हैं, वही चीजें पता थी, बट ये नई चीज सुनी थी। और ये सुना था कि रेपुटेशन अच्छा होता है, इसका जॉब पैकेज अच्छा होता है, ये सब चीजें सुन के मैंने और इंटरेस्ट लिया। और एक पावर होता है सीए के सिग्नेचर में, तो वो चीज सुन के फिर मैंने उसको आगे सोचना स्टार्ट किया।
0: आपको लगा ये अच्छा है? ओके। तो आपके टीचर्स ने आपको ये बातें बताई?
1: टीचर को इतना नहीं पता था एक्चुअली, उन्होंने ब्रीफ में बताया था। एक्चुअली वो टाइम पे एक मुंबई की एक बहन थी, उनका मुझे नाम याद नहीं आ रहा, उन्होंने टॉप किया था क्लास में, लेकिन वो उनके पापा रिक्शा चलाते थे, तो उन्होंने टॉप किया था, तो उनका एक मोटिवेशन एग्जांपल देने के लिए उन्होंने हमको बताया था, तो उससे फिर उन्होंने सीए के बारे में बता दिया, तो वहां से मेरा इंटरेस्ट वो फील्ड, मतलब उसके बारे में बढ़ गया।
0: और बढ़ गया, राइट। ओके, तो उसके बाद आपने क्या किया, मतलब आपको पता चला था सब कि सीए बनने के लिए क्या करना होता है?
1: कुछ भी पता नहीं था, बस ब्लाइंडली लोगों से पूछता था, लोग कुछ अपने हिसाब से जवाब देते रहते थे, उतना कुछ आइडिया नहीं था। आफ्टर 11th मुझे वो सब चीजें फिर क्लियरली, बट सोचा था मैंने कि करना है, बट जो प्रैक्टिकल चीजें है, जो एक्चुअल क्या है, जैसे सुनते तो अपन काफी चीजें टफ होता है, टफेस्ट इन द, मतलब इंडिया में टफेस्ट, वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम है, नहीं कर पाते आप, क्लियर नहीं हो पाओगे, अगर आप बीच में रुक गए तो आपका करियर स्पॉइल हो जाएगा और आप बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, तो वो लोग से सुनते थे, बट फिर बाद में जब मैंने एक्चुअली स्टार्ट किया तो फिर चीजें थोड़ी अलग थी।
0: ओके, तो जो 9th में आपको जानकारी मिली थी वो बहुत थोड़ी थी, 11वीं में जब आप थे तो ऐसी क्या जानकारी मिली जो आपको क्लैरिटी आई?
1: ओके, फिर उस हिसाब से मैंने कॉमर्स चूज किया 11th 12th, कॉमर्स से मतलब रिलेटेड ही होता है, तो मैंने 11th 12th कॉमर्स स्ट्रीम को चूज किया, जिसमें फिर मेरे जो कल मतलब जो फ्रेंड्स थे स्कूल वाले, सब मैक्सिमम दोस्त भी सीए ही कर रहे थे, तो उनसे मुझे पता चला। और फिर प्रैक्टिकली मुझे जो सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट थे उनसे डायरेक्ट मिलने का मौका।
0: अच्छा।
1: हाँ, जो टीचर हमारे थे, मतलब एग्जाम जो प्रिपरेशन कराते, वो खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, तो उनसे मुझे अच्छा गाइडेंस मिला, तब मुझे पता चला कि हाँ, मतलब यहाँ कर सकते हैं या फिर।
0: अच्छा, तो क्योंकि आपने जैसा बताया 11वीं में पता चला, तो 11वीं के बच्चे को आप क्या बताएंगे, बहुत डिटेल में आप बताएंगे या उसके अनुसार बताएंगे? तो अगर एक 11वीं का बच्चा आपको सुन रहा है आज, और जो आपने सुना था उस वक्त, तो आप उसे क्या बताएंगे सीए क्या होता है?
1: ओके अगर सीए के बारे में बात करेंगे तो एक इंडिया में बहुत अच्छा रिप्यूटेड कोर्स है. इसका एक्चुअली इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट की फॉरेन में भी अच्छी डिमांड है. फॉरेन कंपनीज में भी इंडियन सीए रिक्रूट होते हैं. आज कनाडा में देखिए, दुबई में देखिए, दुबई में बहुत अच्छा मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट का नाम चलता है, इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट का. तो अगर सीए के बारे में बात करें तो एक 4.5 साल का ब्रीफली कोर्स होता है, मतलब 4.5-5 साल अप्रोक्सीमेटली पकड़ सकते हैं आप. 12 आप 10वीं के बाद उसका रजिस्ट्रेशन करवाना कराना होता है और फिर 12वीं से आप एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं. मतलब आप 12th अपीयर चाहिए, आप 12th अपीयर होते हुए भी आप एग्जाम दे सकते हैं. आप 12th अपीयर होके एग्जाम दीजिए. सबसे पहले एग्जाम होते हैं सीए फाउंडेशन, मतलब इसमें 3 एग्जाम आपको क्लियर करना है और 3 साल की सीए के अंडर आर्टिकलशिप कंप्लीट करना है. मतलब इट्स लाइक प्रैक्टिस, आपको सीए के अंडर ट्रेनिंग करना है, उसको आर्टिकलशिप बोलते हैं. तो आपको पहले एग्जाम 12th अपीयर होते हुए, जैसे आपके 12th की एग्जाम हो जाती है, वो 12th के आई कार्ड के बेसिस पे आप सीए फाउंडेशन का एग्जाम का फॉर्म भर सकते हैं. फिर वो एग्जाम का फॉर्म दे के आप एग्जाम दो.
0: कहाँ भर सकते हैं ये फॉर्म?
1: ये ऑनलाइन ही भरना है. मतलब पहले तो आपको 10वीं के बाद रजिस्ट्रेशन लेना है. 11वीं में आप 11वीं में 12वीं में कभी भी आप रजिस्ट्रेशन ले सकते हो. पहले एक रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन ही करना होता है सब. एक ICAI.org वेबसाइट होती है इंस्टीट्यूट की, जिसमें आप वो रजिस्ट्रेशन करा लो.
0: कौन सी वेबसाइट बताएं?
1: ICAI.org. www.icai.org ये साइट पे चाहिए तो आपको वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी. तो आप वहाँ जाके रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए. फिर रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आप 12th के बाद एग्जाम दिए सीए फाउंडेशन. वो 4 सब्जेक्ट के एग्जाम होते हैं. 4 सब्जेक्ट को आपको क्लियर करना है. और इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो पता होनी चाहिए, ये पासिंग क्राइटेरिया है. एक्चुअली यहाँ पे 2-वे पासिंग क्राइटेरिया होता है. आपको 50% टोटल एग्रीगेट में लाना है और 40% इन इंडिविजुअल सब्जेक्ट. लाइक अगर 100 मार्क्स का पेपर है तो आपको एक सब्जेक्ट में 40 मार्क्स चाहिए पास होने के लिए. और अगर टोटल ओवरऑल जो स्कोर है आपका, जैसे आपको 4 पेपर है 400 मार्क्स के, तो आपको 200 मिनिमम लाना, दैट्स 50%. तो एग्रीगेट आपको 50% लाना है और इंडिविजुअल सब्जेक्ट में मिनिमम 40% होना चाहिए. अगर आप एक सब्जेक्ट फेल हो जाते तो फिर आप दूसरा, मतलब आप पूरे सब्जेक्ट को वापस से आपको देना,
0: मतलब आपको 4 सब्जेक्ट का दोबारा देना पड़ेगा,
1: पूरा देना पड़ेगा.
0: ओके. और ये कौन कर सकता है? मतलब कोई भी स्ट्रीम के बच्चे कर सकते हैं या कोई सब्जेक्ट जरूरी है इसमें अपीयर करने के लिए?
1: कोई भी स्ट्रीम के कर सकते हैं. 11th में अगर वो कॉमर्स है, आर्ट है, या फिर आप साइंस बैकग्राउंड से, कोई भी कर सकते हैं यहाँ पे.
0: तो ऐसा नहीं है कि मैथ्स होना जरूरी है?
1: ऐसा कुछ नहीं, बस ये होता है कि आपको थोड़ा अच्छा कैलकुलेशन होना चाहिए. बट ऐसे जरूरी नहीं कि हमको एडवांस लेवल का मैथ चाहिए. बट आप नॉर्मल मैथ से भी चला सकते हैं. और चीजें तो सीखने के लिए होते हैं, अपन तो कुछ भी सीख सकते हैं.
0: सीख सकते हैं. ये बहुत अच्छी बात कही आपने. ओके. तो मतलब हमने अभी तक ये समझा कि जो चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो सीए की हम बात कर रहे हैं, तो 11वीं या 12वीं के साथ आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हो वेबसाइट पे. और एक सीए का पहला जो पेपर होता है फाउंडेशन, उसमें 4 सब्जेक्ट आपको पास होने जरूरी हैं. मिनिमम 40% और टोटल 50%.
1: हाँ, टोटल 50%.
0: अच्छा, तो अगर नहीं पास हो पाए तो दोबारा कर सकते हैं. तो 12वीं के बाद, मतलब जब आप आगे की पढ़ाई कर रहे हो तब भी आप कर सकते हैं.
1: विद इन 6 मंथ्स एग्जाम होती रहती है.
0: अच्छा,
1: साल में 2 बार, मई और नवम्बर.
0: ओके. तो कब आता है इसका फॉर्म, कौन से समय आता है ऑलमोस्ट?
1: ये आप कभी भी कर सकते हैं. मतलब अभी चाहो तो अभी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं.
0: अच्छा.
1: इसका कोई ये नहीं, बस ये क्राइटेरिया होता है कि आपको अगर एग्जाम देना है तो 6 मंथ्स बिफोर आप रजिस्टर्ड होना चाहिए. दैट इज अ बेसिक क्राइटेरिया. कि अगर सपोज आपको 12th के बाद, जैसे आपके 12th में मार्च में एग्जाम कंप्लीट हो रही है और आपको मई में एग्जाम देना है, तो आप मई के एग्जाम के 6 मंथ्स बिफोर आप रजिस्टर होना चाहिए.
0: अच्छा, 6 महीने पहले?
1: 6 महीने पहले रजिस्ट्रेशन तो भी एटलीस्ट होना चाहिए.
0: ओके, ठीक है.
1: और फिर उसका एग्जाम फॉर्म आएगा आपका. एग्जाम वो इंस्टीट्यूट के साइड पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे. एग्जाम फॉर्म जनरली एग्जाम के 2 महीने पहले आ जाता है, तो वो आपको फिल करना है. उसका 10-15 दिन का टाइम होता है, तो फिर आप ये कर सकते हैं. फिर
0: तो जो सेम वेबसाइट आपने बताई, वहीं पे आता है एग्जाम फॉर्म?
1: हाँ, वहाँ पे फिर नोटिफिकेशन आते रहता है. वहाँ पे फिर सब वेबसाइट्स वगैरह है उसमें, जो अलग अलग चीज़ें, जैसे ICAI.exam एक अलग वेबसाइट होती है जिसमें एग्जाम फॉर्म आपको अलग से भरना है. बट ये कोर वेबसाइट जो मैंने बोला है, मेन वेबसाइट जो www.ICAI.org.
0: मतलब उसके थ्रू आपको सारी जानकारी
1: मिल जाएगी मोस्टली।
0: ठीक है, तो अगर पहला जो क्राइटेरिया है यानी पहला जो एग्जाम है फाउंडेशन का वो क्लियर किया तो उसके बाद क्या?
1: हाँ, अगर आप सपोज मई में एग्जाम क्लियर कर ले तो कोई भी साल में तो उसके बाद फिर आपको 9 मंथ स्टडी पीरियड होता है सेकेंड एग्जाम का।
0: अच्छा,
1: सेकेंड एग्जाम का नाम होता है CA इंटरमीडिएट, जो आपको जैसे आप एग्जाम क्लियर होते उसके 9 मंथ्स आपको पढ़ाई करनी है उसकी। आपको बुक्स इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करेगा।
0: okay.
1: हाँ, पूरी आपको कुरियर के द्वारा अपने घर आ जाएंगे पूरी बुक्स, पूरा मटेरियल, साथ में ICA के चैनल्स भी चलते जिसमें वो लेक्चर्स वगैरह रहता, शॉर्ट मतलब स्टडी मटेरियल रिलेटेड ऑल चीजें आप इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करेगा, और आप कोचिंग भी ले सकते हो।
0: Okay.
1: हाँ, तो वो 9 मंथ्स में जब आप क्लियर हो जाते हो तो वो 9 मंथ्स के अंदर आपको प्रिपरेशन करनी पूरी इंटरमीडिएट के लिए, फिर आप इंटरमीडिएट के एग्जाम दे सकते हो।
0: अच्छा, तो मतलब आपने 9 महीने तैयारी किया, उसके बाद फिर से वो एग्जाम फॉर्म भरना है।
1: हाँ,
0: जो
1: सेकेंड एग्जाम
0: है उसमें क्या होता है?
1: हाँ, उसमें एक्चुअली 8 सब्जेक्ट्स होते हैं।
0: अच्छा, 8 होते हैं?
1: 8 सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन उसमें क्या है कि जैसे पहले अपन ने सुना है कि 50% एग्रीगेट होना चाहिए, तो उसमें कभी ऐसा हो जाता है कि आपको 40-40 तो आ जाता है। एक्चुअली एग्जाम थोड़ा टफ होता है इसलिए 40 लाना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है, काफी बच्चे नहीं ला पाते हैं, मतलब रिजल्ट आपको पता होगा तो रिजल्ट काफी टफ आता है इंस्टीट्यूट का, तो वो 40 लाना अगर आपको ये हो जाता है तो इसलिए वो फिर इंटरमीडिएट पे 2 ग्रुप बनाया ICA ने एग्रीगेशन पर्पज के लिए, मतलब 4 सब्जेक्ट का एक ग्रुप, 4 सब्जेक्ट का दूसरा ग्रुप, ऐसे ग्रुप 1 ग्रुप 2 ऐसे 2 ग्रुप होंगे 8 सब्जेक्ट के, लेकिन आपको इंटरमीडिएट पूरे एग्जाम क्लियर करना है तो दोनों ग्रुप क्लियर करना है, 4 सब्जेक्ट के 8 सब्जेक्ट के।
0: वो क्या सब्जेक्ट होते हैं अगर बता सकते हैं आइडिया?
1: हाँ, ग्रुप 1 में अगर मैं बताऊँ तो फर्स्ट पेपर होता है अकाउंट्स का, होता है अकाउंट्स होता है, कॉस्टिंग होता है, ऑडिट होता है, इसमें इंटरमीडिएट का 3 साल होता है ना, फिर इंटरमीडिएट के
0: टाइम हो जाता है, सही बात है।
1: ये फाउंडेशन की भी एग्जाम, ये इंटरमीडिएट के जो सब्जेक्ट्स है, पहला पेपर होता है अकाउंटिंग का, सेकंड पेपर होता है कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज, जिसमें आपको लॉज को पढ़ना है, बिजनेस लॉज रिलेटेड, और थर्ड पेपर होता है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट, जिसमें कॉस्टिंग्स के बारे में बात होंगी, फोर्थ पेपर होता है टैक्सेशन, जिसमें आपको डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ना, डायरेक्ट टैक्स इज रिलेटेड टू इनकम टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स इज GST मोस्टली, और उसमें कस्टम्स और बाकी अदर इनडायरेक्ट टैक्स भी आते हैं। फिफ्थ पेपर होता, ये हो गया फर्स्ट ग्रुप 4 पेपर का टैक्सेशन तक। फिर सेकेंड ग्रुप में होते हैं एडवांस अकाउंटिंग, लेकिन थोड़ा उसका स्कोप ये हो जाता है, बड़ा हो जाता है, और सिक्स्थ पेपर होता है ऑडिटिंग एंड इंश्योरेंस, जिसमें ऑडिटिंग रिलेटेड आपको लॉज पढ़ने हैं। सेवेंथ पेपर होता है इंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, इट्स लाइक ये होता है मैनेजमेंट रिलेटेड, ये होता है और IT रिलेटेड सब्जेक्ट होता है। एट पेपर होता है जो लास्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस, इसमें आपको फाइनेंस रिलेटेड नॉलेज मिलेगा और इकोनॉमिक्स जो जिसके बेसिस पे वर्ल्ड में वर्ल्ड इकोनॉमिक माइक्रो इकोनॉमिक्स में माइक्रो इकोनॉमिक्स उसके बारे में आपको सब्जेक्ट रहेगा।
0: ओके, तो 8 सब्जेक्ट 9 महीने हमारे पास है। तो अब मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि शेड्यूल क्या होता था आपका एक दिन का जब आप इसकी तैयारी कर रहे थे?
1: उसमें तो एक्चुअली ऑप्शन होता है कि आप एक ग्रुप का भी प्रिपरेशन कर सकते, मतलब 4 सब्जेक्ट प्रिपेयर कर लो फिर बाद में आप 4 सब्जेक्ट देना, एक ग्रुप पहले दे दो एक ग्रुप, लेकिन मैंने जब सोचा था कि मुझे बोथ ग्रुप एट अ टाइम कंप्लीट करना है ऐसा मैंने टारगेट रखा था, तो मेरी वैसे क्लासेस भी मैंने पूरी फिर कंप्लीट की। क्लासेस में एक्चुअली शेड्यूल हमारा काफी फिक्स होता था, मतलब सुबह 7 बजे से क्लास स्टार्ट होती थी, रात के 9 बजे तक तो मिनिमम क्लास चलती थी बोथ ग्रुप, जब 8 सब्जेक्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो
0: सुबह 7 से रात 9 बजे
1: तक, दोपहर में 1-2 घंटे का ब्रेक लेके, तो ऐसा पूरा दिन भर क्लासेस चलती थी तो पूरा एग्जॉस्ट तो हो ही जाता था, उतनी पढ़ाई नहीं होती पाती थी क्लासेस के ड्यूरिंग, लेकिन थोड़ा रिवाइज करना होता था कि आप जो क्लास में पढ़े उसको थोड़ा शॉर्ट में रिवाइज कर लो और नेक्स्ट डे आप क्लास में चले जाओ, ताकि वो होता रहे, नहीं तो आप भूल जाओगे पूरी चीज़ें। तो वो तो क्लासेस के ड्यूरिंग तो ऐसे टाइट शेड्यूल था, सो आप 6 बजे उठ के ये करके 7 बजे से जाओ, फिर रात को 9 बजे तक आओ, फिर उसके बाद जब क्लासेस हो गए, आई थिंक क्लासेस का ड्यूरेशन मोस्टली 5 to 6 months था, फिर लास्ट के 3 months हमारे सेल्फ स्टडी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं, क्योंकि क्लासेस में आप चीज़ें भूल जाते हो, लेकिन आपको लास्ट एग्जाम के पहले जो पढ़ना होता है 3 महीने मिलते तो उसमें आपको अच्छे से प्रिपेयर करना होता है, अच्छे से पढ़ना होता है, तो वो टाइम मिनिमम मैं 10 घंटे तो पढ़ता ही था, कभी कभी 12-13 घंटे हो जाते थे, कभी थोड़े कम भी होते थे, क्योंकि वो थोड़ा अप एंड डाउन चलते रहता स्टडी में,
0: लेकिन ज्यादातर आपने इतनी पढ़ाई की.
1: यस, मिनिमम 10 आवर्स तो यू हैव टू स्टडी, वो तो जरूरी हो ही
0: दिन भर में मिनिमम 10 घंटे
1: पढ़ने. और आपको बस वो एग्जाम के पहले 3 जो महीने हैं, 2-3 महीने वो पढ़ लो, आप क्लियर हो जाओगे.
0: ओके, लेकिन ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि आपने जैसे बताया कि पढ़ाई इतनी जरूरी है और उसी पढ़ाई से जो हम आगे, मतलब आपने जैसे शुरू में बताया था कि सीए करते हैं तो आपको क्या क्या मिलता है, तो जो मेहनत का नतीजा है वो आगे मिलता है, लेकिन मेहनत जरूरी है उसके लिए,
1: बहुत ज्यादा
0: जरूरी है. तो कैसा लगता था उस समय आपको, मतलब क्या डर लगता था या बस पढ़ाई के अलावा और कुछ नहीं आता था दिमाग में, या कभी क्या लगता था?
1: कभी कभी तो ऐसा लगता था कि गलत फील्ड में आ गए, नहीं आना था.
0: अच्छा, ओके.
1: कि गलती हो गई, हमारे दोस्त जो इंजीनियरिंग जो अदर फील्ड में गए वो एंजॉय करते थे, वो अपनी स्टूडेंट लाइफ एंजॉय कर रहे और हम क्लासेस कर रहे, दिन भर समय ही कहा है. अदर एक्टिविटीज के लिए समय नहीं है, ना तुम स्कूल जा रहे हो ना कॉलेज जा नहीं पा, नहीं जा रहे हो कॉलेज, और दिन भर क्लासेस और पढ़ाई, तो वो थोड़ा लगता था कि थोड़ा ही हो गया. बट हाँ, फिर सोचना पड़ता था कि हाँ फ्यूचर में जब बन जाएंगे तो अलग ही ये रहेगा, और टीचर्स को देखते थे, उनकी लाइफ को देखते थे, तो थोड़ा मोटिवेशन आ जाता था.
0: ओके,
1: हाँ, और मैं मेडिटेशन वगैरह करता था तो थोड़ा माइंड काम रहता था, तो वो हो जाता था.
0: बिल्कुल, मतलब इतना ज्यादा अगर पढ़ाई करनी हो तो मेडिटेशन तो बहुत इम्पोर्टेंट है. आप मेडिटेशन करते थे, क्या करते थे पर्टिकुलरली, क्या कैसे करते थे, अगर आप थोड़ा सा बताएं हमें क्या करते थे, किस समय करते थे, क्योंकि समय तो आपको मिलता नहीं था.
1: देखता ही रह लेना आप आगे,
0: एक बार आप समय भी बता सकते, पता चले कितने बिजी शेड्यूल में से करते.
1: बस 5-10 मिनट करने हैं स्टार्ट करने के पहले.
0: हाँ, ये भी अच्छी बात है क्योंकि आप 5 मिनट भी खुद के लिए दे रहे हैं, खुद के माइंड के लिए दे रहे हैं, तो उसको तैयार करें एक तरीके से, तो अच्छी बात है. क्योंकि कई बार हमें मेडिटेशन को सोच के लगता है कि इतना समय देना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, लेकिन आप करते करते बीच में कर सकते हैं, ये सुन के अच्छा लगा. मेरे ख्याल से स्टूडेंट्स कर सकते हैं, स्टूडेंट्स के लिए
1: कर सकते हैं. बीच में आप मतलब न्यू सब्जेक्ट पढ़ना स्टार्ट करो तो बीच में ब्रेक लेके 10-15 मिनट का आप कर लो, म्यूजिक सुन लो, थोड़ा माइंड फ्रेश भी हो जाता है क्योंकि आप कंटिन्यूस नहीं पढ़ सकते ना.
0: बहुत जरूरी है एक्चुअली. ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं. तो आपका जब आपने 8 सब्जेक्ट ग्रुप 1 ग्रुप 2 दोनों दिए तो क्या हुआ फिर?
1: शॉकिंगली मैं फेल हो गया था.
0: ओके.
1: मैं फेल हो गया था शुरुआत में, क्योंकि शुरुआत में जब मैंने क्लासेस की थी शेड्यूल बिजी होता था इसलिए मैं उतना पढ़ नहीं पाता था. तो जब मैं सेल्फ स्टडी कर रहा तो काफी चीजें मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं भूल गया. क्योंकि वो ब्रेन अपना एट द एंड आप ह्यूमन माइंड है तो उसका प्रॉपर ये रहता है प्रोसीजर. आपको माइंड के अंदर कुछ चीजों को अगर इनपुट डालना है और उसको स्टोर रखना है तो उसके प्रोसीजर, उसको आपको रिवाइज करते रहना पड़ेगा और उसको आपको प्रैक्टिकली मतलब सोच के उसको ये करना पड़ेगा, तभी जाके हो रहा था. लेकिन मेरे क्लासेस का शेड्यूल इतना टाइट था इसलिए वो नहीं हो रहा था मेरा.
0: Okay,
1: नहीं हो पाया मेरा क्लियर, मैं फेल हो गया था. रिजल्ट आया, कुछ नहीं, फिर एक दिन थोड़ा आंसू बहा लो, लोगों की सांत्वना ले लो.
0: ओके.
1: उसके बाद तो फिर नॉर्मल जिंदगी तो अपनी कोई जीना होता है, उसको अपनी कोई ट्रूथ को एक्चुअली अपने साथ रख के उसको आगे बढ़ना पड़ता है.
0: बिल्कुल, लेकिन अब डेफिनेटली आपने 9 महीने मेहनत की हो इतनी कड़ी, और बुरा तो लगता है, लेकिन आपने फिर कैसे खुद को मोटिवेट किया और क्या प्लान किया आगे के लिए उस समय?
1: हाँ, 1-2 दिन तो मेरा वैसे ही ये हो गया. फिर मैंने टीचर्स से वगैरह कंसल्ट किया जिन्होंने मुझे पढ़ाया था, जो प्रोफेसर्स ने, तो उन्होंने फिर मुझे थोड़ा मोटिवेट किया कि कोई बात नहीं. इट्स, और ऐसा भी बोला जाता है कभी अगर सीए कर रहे हो और अगर आप फेल नहीं हो रहे तो सीए ही क्या बने.
0: Okay.
1: तो वो थोड़ा एक मोटिवेट करता है. और अभी तो वो सीए का लॉन्ग फॉर्म लोग कम अगेन बोलते हैं, सीए का लॉन्ग फॉर्म होता है कम अगेन, आप और वापिस
0: आओ
1: एग्जाम देने के लिए आओ. तो वो थोड़ा था कि हाँ ठीक है, नॉर्मल है, होता है,
0: होता है, होता.
1: तो फिर मैंने फिर 2-3 दिन ब्रेक लेके फिर माइंड को उसका कमांड दे दे कि इस बार कुछ भी हो जाए अच्छे से पढ़ना है. वो कैसा होता है ना कि जब आपके एग्जाम देते हो तो आपको 2.5 महीना तो भी रिजल्ट आने को लगता है. सपोज अगर मैं मई में एग्जाम दे रहा हूँ तो मेरा अगस्त तक रिजल्ट आ जाएगा इंटरमीडिएट का. तो फिर जैसे आप अगस्त का रिजल्ट आ रहा है तो आप अगस्त से फिर आपको नवंबर में नेक्स्ट एग्जाम है.
0: ओके.
1: हाँ, तो फिर अगस्त से आपको नवंबर तक का टाइम मिल रहा है, अगस्त सितंबर अक्टूबर और 3 महीने का, बस 3 महीने.
0: तो आपको फिर से रजिस्टर करना पड़ेगा?
1: नहीं नहीं नहीं, आप रजिस्ट्रेशन हमारा मोस्टली 3 साल तक वैलिड रहता है. अगर 3 साल तक आप एग्जाम क्लियर नहीं करते तो फिर वापस से आपको रिन्यू करना पड़ेगा, बट वो चलते रहता है. एग्जाम आप कितनी भी बार दे सकते हो, इसका कोई इशू नहीं है, आप अनलिमिटेड एग्जाम दो। तो जो नेक्स्ट एग्जाम देने उसमें 3 महीने का टाइम है, वो वापस से आपको 3 महीने प्रिपेयर करना है और एग्जाम फॉर्म भरना है और आपको एग्जाम देना है।
0: ओके
1: okay. ये साइकिल चलता रहता, तो इसमें प्रॉब्लम नहीं चाहता है ये कर इसमें कि आपको एक एक साल रुकना है या फिर काफी टाइम रुकना है, तो वो प्रॉब्लम नहीं चाहता, आपके पास ऑप्शंस रहते हैं कि आप एग्जाम देके ये कर लो।
0: ठीक है,
1: तो वापस से फिर मैंने 3 महीने पढ़ाई की, फिर नेक्स्ट टाइम मेरा हो गया क्लियर।
0: ग्रुप वन ग्रुप टू दोनों?
1: ग्रुप वन क्लियर हो गया।
0: ग्रुप वन क्लियर हो गया, क्या बात है। ओके ठीक है, ये तो बड़ी मतलब आपको बहुत खुशी हुई होगी डेफिनेटली।
1: एग्जैक्टली
0: कितना रिलीफ भी मिला होगा।
1: एग्जैक्टली कि वापस से वो सब्जेक्ट नहीं पढ़ना अभी।
0: हाँ, सही बात है। और उसके बाद फिर आपने ग्रुप टू की तैयारी?
1: हाँ, तो उसमें ऐसा होता है कि ग्रुप वन क्लियर होने के बाद या फिर कोई भी एक वन ऑफ द ग्रुप क्लियर होने के बाद आप आर्टिकलशिप जो 3 साल मैंने बोला था जो सीए के अंडर अपने को करना है वो कर सकते स्टार्ट।
0: अच्छा,
1: लेकिन मैंने नहीं किया था।
0: Okay.
1: क्योंकि मैंने सीनियर्स से वगैरह सुना था कि सेकेंड ग्रुप को थोड़ा टाइम देना पड़ता है, उसको क्लियर कर लो तो फिर आर्टिकलशिप अच्छे से कर सकते, और आर्टिकलशिप में आपको प्रॉपर ऑफिस जाना होता है, मतलब 10 बजे जाओ, फिर आपको आने का टाइम डिसाइडेड नहीं है क्योंकि आपको काम है तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको सीखना है ऑफिस में जाके प्रैक्टिकली पूरी चीज जो तुमने पढ़ा था वो सब अप्लाई करना है। तो ऑफिस के टाइम में ऑफिस में टाइम जाता है तो फिर आप पढ़ाई पर इतना फोकस नहीं कर पाते, तो इसलिए आप पहले एक ग्रुप सेकेंड ग्रुप बचा है वो क्लियर कर लो। तो मैंने वो सोचा था बट शॉकिंगली वो नहीं ये हुआ, मैं वापस से फेल हो गया था।
0: ओहो ओके।
1: हाँ, तो फिर मैंने एट द एंड सोचा कि नहीं इसको, क्योंकि मेरा टाइम डिले हो जाता है, क्योंकि अगर आपका वो समय चले जाता तो फिर आपका जो कंप्लीशन होता है एक कोर्स का वो लेट हो जाता है, तो फिर मैंने फिर बाद में रजिस्टर कर लिया आर्टिकलशिप के लिए।
0: अच्छा ठीक है।
1: हाँ, तो फिर मैंने आर्टिकल,
0: आपने अपने ऑप्शंस खुले रखे, सोचा कि अब ये कर सकता हूँ तो आप आगे बढ़े।
1: एग्जैक्टली exactly, हाँ, फिर मैंने सोचा कि हाँ अभी फाइनली आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि इसमें अगर वापस से फेल हो गए तो वापस समय चले जाएगा, 6 महीने का समय आपका जा रहा है तो उधर आगे एक्सटेंड हो रहा है, क्योंकि आपका सीए फाइनल भी जो लास्ट एग्जाम वो क्लियर करना है तभी आप डिग्री ले सकते हो, तो उसको डिले हो जाएगा आपका, वो जो फाइनल कट है वो डिले हो जाएगा, तो इसलिए अभी से रजिस्ट्रेशन करा लो तो फिर आप आगे बढ़ सकते हैं।
0: ओके okay. तो आपने आर्टिकलशिप फिर शुरू
1: कर दी।
0: वो एक्सपीरियंस तो मुझे लगता है और ज्यादा को, जैसा आपने बताया अभी कि जॉब भी करनी है और पढ़ाई भी करनी है, तो कैसा था अनुभव शुरुआत में कैसा था?
1: शुरुआत में तो अब आदत पड़ गई थी कि आपको पढ़ना ही है, और ऐसी जिंदगी की आदत पड़ गई थी कि आपको जहाँ इतनी मौज वाली जिंदगी नहीं, आपको पढ़ना है और ये करना है, तो ऐसे एटीट्यूड ही बन गया था।
0: okay.
1: कि आपको बस यही आपकी जिंदगी, यही लिमिट है, क्योंकि आप बस गए हो ना वहाँ पे, क्योंकि अगर आप एग्जाम क्लियर नहीं कर रहे तो फैमिलीज के ताने या फिर अपने को खुद को लगता है कि हम कुछ आउटपुट नहीं दे पा रहे, तो इसलिए थोड़ा वो पढ़ना ही तो जरूरी है क्योंकि एग्जाम क्लियर करने हैं और साथ में ऑफिस तो बहुत जरूरी, तो वो बहुत हेक्टिक होता था एक्चुअली, मतलब फ्रैंकली स्पीकिंग, मतलब आपको ऑफिस में जाना है 10 बजे, कभी कभी ऐसे हो जाता है कि ऑफिस में अपने हाथ से गलती हो रही तो फिर सीनियर्स की डांट खा लो, बॉसेस की डांट खा लो, क्योंकि वो बिजी रहते थे सर, मतलब जो हमारे चार्टर्ड अकाउंट जो इनकी प्रैक्टिस है, तो उनके काफी जो काम से रहते थे क्लाइंट से मिलना वो सब चीजें, तो वो उसकी वजह से। हाँ, तो हम और हम नए थे, छोटे,
0: उम्र भी उतनी नहीं थी।
1: हाँ उम्र भी उतनी नहीं थी। आई गेस मुझे याद है कि मैं 1920 का होऊंगा जब मैंने आर्टिकलशिप स्टार्ट किया, वो टाइम में तो बच्चे मजे कर रहे होते मतलब कॉलेज लाइफ में, और आप प्रॉपर ऑफिस में जा रहे हो फॉर्मल्स पहन के
0: 19-20 साल
1: की उम्र में, तो वो अलग ये रहता है, आपका अलग फील रहता है कि आप वो कर रहे हो
0: जी।
1: तो फिर मैंने मैनेज कर लिया, फिर मेरा सक्सेसफुली उसके बाद हो गया क्लियर एग्जाम।
0: ओके,
1: सेकेंड ग्रुप मेरा कंप्लीट हो गया।
0: तो आपने ऑफिस को और पढ़ाई को दोनों को मैनेज किया। क्या बात, बाप रे। तो लेकिन एक बात मुझे और यहाँ पे आपको पूछनी है कि जैसे आपको कभी कभी लगता था कि आप बहुत स्ट्रेस्ड हैं या बहुत हेक्टिक है, तो कोई चीज थी जो आपको उसमें मदद करती थी? क्या मदद करता था?
1: जैसे मैंने पहले बोला कि मैं एग्जाम मतलब पढ़ाई के टाइम में मेडिटेशन करता था, तो वो एक चीज मुझे हेल्प करती है, क्योंकि आपको तो चीजें पूरे माइंड से करना है, बॉडी एग्जर्शन तो नहीं हो रहा है आपका, बस माइंड ब्रेन प्रॉपर होना चाहिए, वही से चीजें विचार आपके बनने चाहिए, एटीट्यूड बनना चाहिए, उसके लिए मेडिटेशन काफ़ी हेल्प करेगा। आप सुबह उठते ही सबसे पहले 10-15 मिनट मेडिटेशन कर लो, या फिर बीच बीच में भी आप थोड़ा एक जगह बैठ के रिलैक्स होके आँखें बंद कर लो, आप एक कुछ म्यूज़िक सुन सकते हो, मोस्टली आप वो मेडिटेशन वाला म्यूज़िक सुनो जिसमें लिरिक्स ना हो, क्योंकि वो आपको याद रहेगी, लिरिक्स वाले अगर आप सुनोगे
0: तो लिरिक्स ही याद आएंगे,
1: लिरिक्स याद आएंगे तो वो विदाउट लिरिक्स वाला जो मेडिटेशन सॉन्ग्स है वो सुनो, तो थोड़ा काम रहेगा, स्ट्रेस को थोड़ा मैनेज करने के लिए हेल्प होगा। कभी कभी तो आपका स्ट्रेस बहुत ओवर हो जाता है, बट ठीक है, वो चीज़ें भी निकल जाती है, बिकॉज वो सस्टेन नहीं होता है, हम वो स्ट्रेस आपका थोड़ा रहता है थोड़ा, क्योंकि आपको कलीग्स वगैरह होते हैं उनके साथ थोड़ा बाहर चले जाओ, घूम लो थोड़ा, कहीं और चले जाओ फ्रेंड्स के साथ, पार्टी कर लो, यस थोड़ा, तो वो फिर ये हो जाता है, रूटीन में आ जाता है।
0: ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि अगर स्ट्रेस है, प्रेशर है तो वो अपने तक रखे, लेकिन उसको कैसे हमको डील करना है वो भी समझना जरूरी है।
1: Exactly.
0: क्योंकि नहीं तो जैसा आप बता रहे हैं सीए का एग्जाम इतना टफ है, कॉम्पिटिशन इतना ज्यादा है, फिर आप एक सब्जेक्ट क्लियर नहीं कर पाए तो आपको पूरा रीअपेयर करना पड़ता है, तो बहुत ऐसे सर्कमस्टेंस में खुद पे डाउट होने लगे, इससे ज्यादा इससे जरूरी है कि हम खुद को मोटिवेट रखें।
1: एग्जैक्टली,
0: बहुत जरूरी है।
1: एग्जैक्टली, क्योंकि एट द एंड आपको ही करना है, कोई कुछ भी बोले या फिर कोई कुछ भी करे, आपको खुद को ही मैनेज करना है सब चीज़ें।
0: बिल्कुल,
1: तो वो करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप खाली बैठ के, मतलब आप स्ट्रेस लेके क्या आउटपुट क्या निकल रहा है आपका, आपका समय बर्बाद हो रहा है, आप खुद को तकलीफ दे रहे हो,
0: राइट
1: है ना, तो आपको एट द एंड वो स्ट्रेस से मूव ऑन होके आपको को खुश रखने के बहाने ढूंढ के आपको ये करना ही पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा।
0: ओके, तो जब आपने आपका जॉब भी किया, साथ में आपने ग्रुप टू भी क्लियर किया,
1: right.
0: तो उसके बाद क्या?
1: हाँ ओके, फिर आर्टिकलशिप जब आपकी स्टार्ट होती है उसके 2.5 साल के बाद आपको आप फाइनल का एग्जाम,
0: अच्छा
1: हाँ, पहले तो आपको 2.5 साल में आर्टिकलशिप करना है, ऑफिस में रोज जाना है, ये कर ऑफिस के पूरे काम करने, कभी कभी ऐसा होता है कि ड्यू डेट्स होते हैं, जैसे आप इनकम टैक्स का अगर पता करो तो इनकम टैक्स की एक ड्यू डेट होती है, इनकम टैक्स रिटर्न्स की, फॉर्म्स की, तो वो आपको अगर ड्यू डेट पे पूरा काम होना चाहिए तो फिर पेनल्टी इंटरेस्ट वगैरह क्लाइंट को लगता है, अगर आपको क्लाइंट को प्रॉपर सर्विस देने तो वो चीज़ें आपको करनी पड़ती है, तो फिर आप आर्टिकलशिप में तो आपको तो करना ही पड़ता है, तो कभी कभी काफ़ी लेट तक आपको ऑफिस रह के काम करने हैं, तो वो ड्यूरिंग आर्टिकलशिप आपको ऑफिस प्रॉपरली करना है, साथ में आपको सीए फाइनल की पढ़ाई भी करनी है,
0: राइट बिल्कुल।
1: वो ग्रुप टू तो अलग ये था, उसको आपको क्लियर करने के बाद फिर आप फाइनल में फोकस करना है।
0: और इसमें कितने सब्जेक्ट्स होते हैं?
1: इसमें भी 8 सब्जेक्ट्स होते हैं, बट उनका लेवल जो होता है वो थोड़ा एडवांस होता है, इट्स लाइक हाई लेवल नॉलेज होता है वो, तो वो आपको ये करना होता है, उसका सिलेबस काफ़ी वास्ट होता है, जैसे इंटरमीडिएट में भी वास्ट होता है, वो एज के हिसाब से लगता है, क्योंकि आप फाइनल में गए हो तो आर्टिकलशिप के तो आपको नॉलेज भी आ गया, तो उस हिसाब से वो ठीक है, बट सिलेबस काफ़ी वास्ट हो जाता है।
0: तो वो 8 सब्जेक्ट के पेपर एक समय देने होते हैं या यहाँ भी?
1: उसमें भी 2 ग्रुप का ऑप्शन है, ग्रुप 1 ग्रुप 2, आप दोनों भी दे सकते हो।
0: ओके,
1: कभी मतलब एक दे दो पहले फिर बाद में दो, तो मोस्टली मैंने सुन, मैंने मतलब जो दोस्त है एक ग्रुप देते हैं, क्योंकि आप आर्टिकलशिप कर रहे हो उसमें टाइम जा रहा है, पढ़ाई नहीं हो पा रही है, फिर लास्ट में 2.5 साल के बाद मतलब आपको 6 मंथ्स अप्रोक्सीमेटली लीव्स का ऐसे समझ लो कि आपको 6 महीने कोई भी ऑफिस में आप काम कर रहे हो तो बॉसेस आपको 6 महीने की छुट्टी दे देंगे पढ़ाई के लिए, मतलब डिपेंड ऑन फॉर्म्स 4 to 6 मंथ्स की वो लीव होती है जिसमें आपको फाइनल की पढ़ाई करनी है, क्योंकि वो सफिशिएंट टाइम नहीं है एक्चुअली स्पीकिंग, ड्यूरिंग आर्टिकलशिप भी आपको पढ़ना है।
0: ओके ठीक है, तो आपने फिर 2.5 साल मतलब मेहनत किया, और क्या सीखने को मिला, प्रैक्टिकल आपको क्या सीखने को मिला जब आप आर्टिकलशिप कर रहे थे?
1: एक्चुअली मोस्ट इम्पॉर्टेंट ब्यूटी ऑफ दिस कोर्स ये प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ही होती है, क्योंकि आप उसमें देखोगे एग्जाम अगर मैं टाइम कैलकुलेट करूँ तो ये 2 साल में कम्प्लीट हो जाएगा, लेकिन आर्टिकलशिप आपको 3 साल करना है, तो ये अच्छी ब्यूटी इसलिए क्योंकि आपको प्रैक्टिकल चीजें पता चल रही है, आप बुक में पढ़ रहे हो जरूरी नहीं कि वो हमेशा हर चीजें एज इट इज अप्लीकेबल हो जाएंगे, वैसे नॉलेज प्रैक्टिकल है, बट जब आप प्रैक्टिकली ऑफिस में जाते हो, क्लाइंट से बात करते हो और प्रैक्टिकली काम करते हो जो तुम्हें सीए बनने के बाद करना है, तो वो बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आप गलती कर सकते हो, मेन चीज है कि आप ड्यूरिंग आर्टिकलशिप गलती करते, लेकिन एक बार आप प्रोफेशनल बन जाते हो आफ्टर क्वालिफाइंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, आप गलती करने का जो स्कोप है आपका कम हो जाता है, बिकॉज आपको क्लाइंट को सर्विस देना है
0: right.
1: या फिर आप जॉब में हो तो वहां पे आप गलती नहीं कर सकते हो, या प्रैक्टिस में वहां गलती नहीं कर सकते, क्योंकि उससे ऐसा हो सकता है कि आप क्लाइंट को पेनल्टी बैठ सकती है, क्लाइंट ना खुश हो जाए और आपका बिजनेस चले जाए. तो वो जो गलती करने का जो समय होता है ये 2.5 साल होता है
0: okay.
1: जो आप
0: ऑफिस हो
1: हाँ सीखते हो करके सीखते हो
0: करके सीखते हो
1: एग्जैक्टली
0: okay. तो यहाँ मैं आपसे एक और चीज पूछना चाहूंगी कि अगर कोई एक 19 या 20 साल का बच्चा, कोई भी यूथ अगर जा रहे हैं जॉब के लिए, मान लीजिए आर्टिकलशिप है या कोई और जॉब है, अगर वो जा रहे हैं 19-20 साल की उम्र है, तो आप उनको क्या टिप्स देना चाहेंगे? क्योंकि आपने एक्सपीरियंस किया है, तो क्या उनको बोलेंगे जो उनका अनुभव बेहतर हो?
1: पहली बात तो आपको खुद को प्रिपेयर करना पड़ेगा, एटीट्यूड बनाना पड़ेगा एक प्रॉपर, कि आपको मतलब ऐसा ये पहले ही वैसे आपका ये बन गया होगा एटीट्यूड, क्योंकि पढ़ाई, क्योंकि आपको थोड़ा मौज वाली दुनिया से थोड़ा दूर रहे कि आपको ये करना है, क्योंकि काफी वर्क प्रेशर होता है ऑफिसेस में
0: right.
1: आर्टिकलशिप के ड्यूरिंग काफी वर्क प्रेशर होता है और आपको करना ही पड़ता है. लाइक समवेयर बॉसेस को ऐसा रहता है कि आप तेरे को इतना काम दिया तो तेरे को कंप्लीट करना ही पड़ेगा, ऐसा ये रहता है थोड़ा. कभी कभी बॉसेस स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, कभी रूड हो जाते हैं, फिर अपने को सुनना, बिकॉज अपन जूनियर है, अपन सीख रहे, तो थोड़ा वो करना ही भी पड़ता है. हाँ, वो टाइम पे थोड़ा बुरा लगता है क्या सुनना पड़ रहा है वो सब चीजें,
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: बट वो अच्छे प्रोफेशनल के लिए बहुत जरूरी होता है कि आप डांट खा खा के ही और गलती करके ही इंसान आगे बढ़ता है. वो तो आप भरपूर गलती करो, मतलब ऐसे नहीं जानबूझ के गलती नहीं मत करो, बट नई नई चीजें करो, तो उससे फिर आपका उतना एक्सपीरियंस भी उसमें पड़ेगा.
0: ओके okay. एंड अगर डांट सुनते भी हैं तो जैसा आपने कहा कि शुरुआत में होता है और उससे थोड़ा और स्ट्रांग होता है.
1: एग्जैक्टली जितना ऐसे बोलते ना, जितना हीरे को आप तराशोगे उतना वो चमकता है. इट्स लाइक अपन जो चार्टर्ड अकाउंटेंट जो हीरा बनने वाला है, जो अभी कोयले के खदान में है, जो ड्यूरिंग एग्जामिनेशन उसको वो तरस रहा है और उसको फाइनल मतलब क्लियर करके बाहर निकलना है, तो आपको जितना मतलब आप पीसोगे, जितना ज्यादा आप रगड़े जाओगे उतना ज्यादा आप चमकोगे बाहर आके. तो वो चमकने के लिए आपको जितना ज्यादा हो सके मतलब आप प्रेशर को हैंडल करो. हाँ थोड़ा होता है, बट आप दोस्तों के साथ रहते हो, कलीग्स रहते हो ऑफिस में, तो थोड़ा मैनेज हो जाता है. ठीक है, कभी डांट सुन लो फिर भूल जाओ, बट अपना काम कंटिन्यू करो, आप नई नई चीजें सीखते जाओ, वो जरूरी. और थोड़ा
0: मतलब दिल से नहीं लगाए डांट को.
1: एग्जैक्टली.
0: और वो ये ध्यान रखे कि हमें ये बेहतर बनाएगा,
1: बेहतर बनाएगा. कभी मतलब बॉसेस को खुद से वो नहीं करते, वो तो उनको मतलब और ज्यादा ये बढ़ाने के लिए, वो
0: हमें आगे बढ़ाने के लिए.
1: हाँ, आगे बढ़ाने के लिए.
0: ओके okay. अच्छा, यहाँ पे एक और चीज है, जैसा कि कम्युनिकेशन आजकल कहते हैं बहुत जरूरी है, या पर्सनालिटी डेवलपमेंट की हम बात करते हैं जब हम जाते हैं जॉब्स के लिए
1: right.
0: तो क्या आपको लगता है कि कैसा कम्युनिकेशन होना चाहिए, या कम्युनिकेशन क्या मदद करता है हमें?
1: ओके, कम्युनिकेशन स्किल तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद आप प्रैक्टिस में जाओ या फिर जॉब में जाओ, तो आपको वहाँ पे, जैसे अगर प्रैक्टिस में जा रहे हो तो आपको क्लाइंट को एक्वायर करना है, नए क्लाइंट्स को की सर्विस देना है, तो उनको आपको प्रॉपर कम्युनिकेट करना जरूरी है, तभी जाके आप वो न्यू क्लाइंट को एक्वायर कर सकते हो और उनको कंटिन्यू रख सकते हो. प्रॉपर कम्युनिकेशन जरूरी है.
0: okay.
1: आप ऑफिस में जा रहे हो और आजकल आप देखोगे तो चार्टर्ड अकाउंटेंट आर हायरिंग फॉर द गुड पोजिशन इन द फॉर्म. कंपनीज में, बड़ी बड़ी कंपनीज में आप कोई कोई तो सीईओ सीएफओ लेवल पे चार्टर्ड अकाउंटेंट आज पोजीशन में है, तो वो पोजीशन में आप बैठे हो तो आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल तो बेसिक चीज है, वो होना ही चाहिए.
0: तो ये धीरे धीरे डेवलप होता है जब आप फील्ड में उतरते हो.
1: यस यस. हाँ, जब आप फील्ड में उतर रहे हो, मतलब आप आर्टिकलशिप कर रहे हो तो आपको क्लाइंट से कम्युनिकेट करना है, बॉसेस से कम्युनिकेट करना है, कलीग से कम्युनिकेट करना है, कभी कभी इंटर ऑफिस होते हैं उससे कलीग कनेक्ट करना है, तो वहां पे आप वो चीजें सीख जाते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स.
0: आपको भाषा कॉन्फिडेंस होना,
1: exactly.
0: आपकी भाषा अच्छी होना और सम्मान देना,
1: सम्मान देना, रिस्पेक्ट देना,
0: ये बहुत ज्यादा जरूरी,
1: बहुत ज्यादा जरूरी होता है
0: जी. तो दोस्तों बिल्कुल, आप इस मामले में अगर आप जानकारी रखते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन कोशिश करें हमारे व्यवहार में सम्मान सभी के प्रति जरूर हो, भाषा हम जितना हो सके पढ़ें सुनें, और साथ साथ आपका जो बॉडी लैंग्वेज है, जो आप कॉन्फिडेंट रहना बहुत जरूरी है अपने yes. जीवन में, हमें आगे बढ़ना है तो, और धीरे धीरे होता है, ये ना सोचें अभी नहीं है तो अरे क्या होगा, लेकिन धीरे धीरे सीखते हैं आगे बढ़ते हैं. जैसा आपने बताया कि आर्टिकलशिप हुई आपकी, अब फाइनल फिर कैसे?
1: हाँ, मैंने तो शुरुआत में फिर आर्टिकल कि एक साल तो मजे में ही चलेगा, ये नहीं मतलब ऑफिस में जा रहे, बस ऑफिस में जा रहे और ये कर रहे, मतलब मैंने कुछ स्टार्ट नहीं किया था फाइनल का। बट फिर बाद में मैंने क्लासेस वगैरह लेना स्टार्ट कर दी और ऑनलाइन क्लासेस करता था मैं। पेन ड्राइव लेक्चर्स आते हैं अच्छे अच्छे बेस्ट फैकल्टीज के, आप गूगल करके आपको अच्छे अच्छे फैकल्टीज के हर सब्जेक्ट वाइज लेक्चर्स मिल जाएंगे,
0: ठीक है।
1: वो मैंने ऑर्डर करके फिर पढ़ना स्टार्ट कर दिया आफ्टर वन ईयर। वैसे आप भी वैसे कर सकते हो, मतलब
0: कहाँ से ऑर्डर करते हैं
1: हमने तो गूगल उनके वेबसाइट्स पे जाके, क्योंकि अभी काफी सीएज है जो पढ़ाते हैं,
0: अच्छा,
1: तो उनसे आप लेक्चर्स ले सकते हो,
0: ठीक है।
1: मतलब वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट, 8 सब्जेक्ट के 8 लेक्चर्स लेके आप वो पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हो। आपके पास लैपटॉप होना चाहिए, लैपटॉप में आप वो पेन ड्राइव क्लासेस आते हैं, आपको मटेरियल भी प्रोवाइड हो जाता है क्लासेस से, और आप फिर पढ़ना स्टार्ट कर दो।
0: ओके।
1: प्रत्येक हर सब्जेक्ट को 8 सब्जेक्ट की क्लासेस कंप्लीट कर लो। तो मैंने फिर वो क्लासेस करना स्टार्ट कर दिया, फिर आर्टिकलशिप, मतलब सुबह मैं एक क्लास कर लेता था, शाम को एक क्लास कर लेता था, ऐसे 2-2 घंटे 3-3 घंटे का, ऐसे 3-4 घंटे अप्रोक्सीमेटली क्लास कर लो, फिर दिन भर ऑफिस कर लो, तो वैसे मैनेज करना पड़ेगा आपको,
0: ठीक है।
1: फिर क्योंकि आपको फिर लास्ट में जब आपकी एग्जाम है उसके 4 या 5-6 महीने 4-6 मंथ्स का मोस्टली ऑफिस में लीव मिलती, बस वही समय मिलेगा जिसमें आपको बस सेल्फ स्टडी करने,
0: जिसमें आपको पूरा समय सिर्फ पढ़ाई के लिए
1: करने, मतलब लेक्चर नहीं कर सकते आपको, लेक्चर ऑफिस मतलब कर रहे हो तो उसी ट्यूरिंग आप लेक्चर कर लो, फिर बाद में आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो।
0: ओके। तो जैसा क्योंकि आपने बताया ग्रुप 1 ग्रुप 2 है, तो ग्रुप 2 का जब आपने क्लियर किया तो कैसा था, मतलब क्या लगा था आपको, क्या था आपके मन में? सर ग्रुप 2 जब आपका क्लियर हुआ, मतलब एकदम फाइनल एग्जाम जब क्लियर हुआ आपका,
1: ओके,
0: तो कैसा लगा जब रिजल्ट आने वाला था, या जब रिजल्ट आया तो कैसा लगा?
1: वो तो शब्दों में तो नहीं बोल सकता क्योंकि बेस्ट मोमेंट ऑफ द लाइफ, बिकॉज द थिंग्स फॉर विच वी आर प्रिपेयरिंग फ्रॉम लास्ट 4-6 ईयर वी फाइनली अचीव इट।
0: 6 साल से आप एक ही चीज के लिए लगे मेहनत कर रहे हैं,
1: मेहनत कर जो संकल्प मैंने 9th-10th standard में लिया था कि आई हैव टू बिकम चार्टर्ड अकाउंटेंट, प्रोफेशन में आना है, तो इतनी मेहनत की है, इतने सैक्रिफाइसेस किए हैं, फंक्शन सैक्रिफाइस, इवन आई विल से कि फाइनल का जब मेरा एग्जाम का प्रिपरेशन चल रहा था तो मैंने तो मेरा फोन तो मेरा फॉर 5 मंथ्स आया फोन स्विच ऑफ था मेरा, नो कनेक्शन विद नो फेसबुक नो सोशल मीडिया नथिंग, जस्ट ओनली पढ़ाई, बस बस पढ़ाई चल रही, सुबह उठ के बस वो जो सब्जेक्ट से वो पढ़ो, शाम को सोते वक्त भी वही पढ़ो,
0: बस वही,
1: कोई शेड्यूल नहीं, बिकॉज आपको फोकस रहना होता है, क्योंकि आप अगर सोशल मीडिया, फिर कैसे हुआ था शुरुआत में भी मैं थोड़ा इसमें मिस गाइड हो गया था कि मैं मोबाइल पे सोशल मीडिया पे एक्टिव हूँ, इंस्टाग्राम चला रहा हूँ या फिर फंक्शन अटेंड कर रहा हूँ, शादी में जा रहा हूँ, तो वहाँ डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, क्योंकि आपको फुल फोकस्ड माइंड होना चाहिए, मतलब आपके माइंड को कोई नई चीज नहीं होनी चाहिए सोचने के लिए, देखने के लिए, तो आप देखो ही मत सोचो ही, तो आप के पास कोई बुद्धि को सोचने के लिए मन को सोचने के लिए कुछ होगा ही नहीं पढ़ाई के अलावा,
0: पढ़ाई बस। ओके।
1: तो वो आपको 45 मिनट्स मैंने पढ़ाई की थी, तो वो मुझे कभी कभी रोना भी आता था कि यार इतने दिन हो गए और कितना पढ़ना है, रिजल्ट पास आएगा फेल आएगा कैसे होगा क्या होगा, एग्जाम देने के बाद तो लग रहा था कि हाँ इस बार हो जाना चाहिए, बट शुरुआत में तो मेरा ये हो गया था, बट वही कि आपको कि मेहनत का रंग आ गया वापस, मतलब आप
0: बिल्कुल ऐसे मोमेंट को शब्दों में नहीं बयान कर सकते, आपके माता पिता और घर में भी सब लोग बहुत खुश हुए होंगे।
1: फर्स्ट टाइम मैंने पापा को रोते हुए देखा था, नहीं तो उनका कभी मैंने रोना नहीं सुना था, बट वो रो रहे थे, सभी लोग रो रहे थे, तो वो खुशी के आंसू थे,
0: बहुत प्राउड महसूस कर रहे,
1: एग्जैक्टली बहुत ज्यादा।
0: Okay. तो ये आपने कब क्लियर किया फाइनल एग्जाम सीए का, कौन से वर्ष में?
1: ये December 21 में मेरी एग्जाम हुई थी, अभी ये कोविड के ड्यूरिंग, फिर मेरा रिजल्ट 10th February आया था, वो डेट को तो मैं कभी नहीं भूल सकता लाइफ में, ड्यूरिंग माय होल लाइफ 10th February 2022
0: क्या बात,
1: तो रिजल्ट आया था और 1 बजे का समय था जब डिक्लेयर हुआ रिजल्ट, और मैंने लैपटॉप पे ओपन किया तो पास था, तो मेरे को तो आधे घंटे तक कुछ सोची, आई वॉज टोटल ब्लैंक, क्या हुआ मेरे साथ, मैं तो ऐसे शांत पड़ा था
0: बिलीव नहीं हो रहा था
1: एग्जैक्टली
0: बिल्कुल, आपने कड़ी मेहनत की है और आप डिजर्व करते थे तभी आपको ये मिला है, और जैसा आपने बताया कई बार हमें लग सकता है कि दूसरे लोग कुछ तो आराम कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो फल भी आपको मिलेगा।
1: एग्जैक्टली
0: और दूसरे हो सकते हैं आज मस्ती कर रहे हैं तो उनको कल उनका कुछ और उन्हें करना हो. सबका जर्नी अलग अलग है लेकिन आपकी मेहनत का फल आपको ही मिलता है. और डेफिनेटली बहुत कुछ आपने सैक्रिफाइस किया, डेडिकेशन से आपने एफर्ट किए, तब जाके आपने आप सीए बने, चार्टर्ड अकाउंटेंट बने.
1: एग्जैक्टली. और उस दिन मुझे याद है कि उस दिन मैंने 400 से ज्यादा लोगों को रिप्लाइज किए कॉन्ग्रेचुलेशन का, जो लोग मुझे जानते नहीं थे, जो बस मतलब ठीक है कोई नहीं ऐसे ही नॉर्मल है, मतलब कुछ वैल्यू नहीं है, उन सब लोगों का मैसेज आया कि कॉन्ग्रेचुलेशन, तो वो एक अलग सेटिस्फेक्शन रहता है कि सब लोग याद कर रहे खुशी में.
0: राइट.
1: जब आप फेल होते तो कोई आपके साथ नहीं होता, दो चार लोग होते बस, दो चार फ्रेंड और फैमिली होती, बट आप पास हो जाते हो तो लोग क्राउड होते हैं आपके पास.
0: राइट. और यही ध्यान रखना होता है कि वो जो लोग साथ रहे हैं जब हमने नहीं कुछ अचीव किया था, वो उनका ध्यान जरूर रखना होता है.
1: Exactly.
0: हमेशा
1: हमेशा.
0: बहुत अच्छी बात है आपने कही. एंड मुझे लगता है हम अपने शो के अंतिम मोड़ पे भी आ गए. मैं आपको पूछना चाहूंगी कि इसके बाद आपके क्या प्लान्स हैं और अगर आप सीए बन जाते हैं तो क्या होता है आगे.
1: ओके. सीए बनने के बाद आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है. तो मैं अगर आपको बताऊं तो हम फाइनल में जो 8 सब्जेक्ट पढ़ते तो हर एक सब्जेक्ट में आप स्पेशलाइजेशन को ये करके आप उसमें और आगे पढ़ सकते हो या फिर और आगे आप उसमें एक्सप्लोर कर सकते हो. वो एक ऑप्शन होता है कि आप कोई और डिग्री ले लो, जैसे MBA वगैरह कर सकते हो या फिर अदर फॉरेन कोर्सेज भी, वो भी कर सकते हो. मतलब आपको और कई और ऊंचे लेवल पे जाना है उसके लिए. लेकिन आपको करियर ऑप्शन बहुत अच्छे है. आप प्रैक्टिस में जा सकते हो, मतलब खुद का ऑफिस सेटअप कर दीजिए और आप वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट रिलेटेड प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए, वो एक अच्छा ऑप्शन होता है. सेकंड ऑप्शन है जॉब कर सकते हो. जॉब की वैकेंसी काफी है इंडिया में या फॉरेन में भी, आज इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट को हायर किया जाता तो ऑल ओवर इंडिया काफी वैकेंसीज है कंपनीज के पास चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए, तो वहां आप जॉब कर सकते हो. मेरे केस में मैंने जॉब का ऑप्शन लिया कि शुरुआत में मैं जॉब कर दो, फिर बाद में और समय है सोचने के लिए. जॉब्स काफी है, जॉब कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो या फिर आप अदर फील्ड भी ये कर सकते हो,
0: चूज कर सकते हैं. मतलब आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज
1: हैं.
0: लेकिन हाँ, बस यही है कि आपको मेहनत करनी है, एग्जाम देने हैं, उसके बाद आपके पास ऑप्शंस ही ऑप्शंस.
1: यस. मतलब आपको पढ़ते रहना है. एक्चुअली कोई भी प्रोफेशन में चले जाओ, जहाँ पे आप पढ़ना बंद करते हो तो आप नहीं बढ़ सकते हो. आपको पढ़ना ही पड़ेगा,
0: सीखना जरूरी है.
1: सीखेगा तो ही बढ़ेगा.
0: बिल्कुल. और यहाँ दोस्तों मैं आपको ये भी बोलना चाहूंगी कि अगर आपको कोई जानकारी चाहिए इससे ज्यादा जो आपको नहीं मिल पा रही है ऑनलाइन, तो आप रेडियो मधुबन पर हमें मैसेज कीजिए. हम पूरी कोशिश करेंगे आपको वो जानकारी उपलब्ध कराने की. रेडियो मधुबन का नंबर है 9914151415, यानी कि 9414151415. इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और मैसेज भी कर सकते हैं. अच्छा, जाते जाते मैं ये आपसे बोलना चाहूंगी, जो भी युवा साथी आपको सुन रहे हैं, वो स्कूल में हो सकते हैं, कॉलेज में हो सकते हैं, आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे.
1: देखिए, ये जो अपना यूथ पीरियड होता है, जो आई थिंक मुझे बोलना चाहिए 18 से स्टार्ट हो सकता, 16-18 से 10वीं-11वीं के बाद अपना स्टार्ट होता है, ये बहुत क्रूशियल टाइम होता है ऐसा मुझे लगता है. और आप 25 तक जो आपका पीरियड है ये बहुत ही क्रूशियल है, मतलब आपके लाइफ का. आपको अगर बेहतरीन जिंदगी जीना है, कुछ कंट्रीब्यूट करना है नेशन को या फिर खुद के फैमिली को कंट्रीब्यूट करना है, खुद के लिए कंट्रीब्यूट करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट समय होता है जिसमें आपको जो आपका हर एक कदम इंपॉर्टेंट है. आपको एक प्रॉपर स्टेप लेना चाहिए. आपका एक गलत कदम आपकी लाइफ डिस्ट्रॉय कर सकता है या फिर उसको एक, क्योंकि आफ्टर 25-30 आप नहीं कर सकते हो चीजों को जो चीजें आप तब कर सकते थे जो 18-25-24 वाले पीरियड में. इसलिए ये समय में जो आप चीजें कर रहे हो तो आप एक बस खुद को पूछियो कि इज इट मेकिंग एनी वैल्यू एडिशन टू अस, मतलब कुछ वैल्यू एडिशन हो रहा है क्या
0: या हमारे जीवन में
1: वैल्यू एडिशन, या मतलब अपन कौन से रास्ते की तरफ जा रहे हैं. एक अच्छाई वाला रास्ता जहाँ पे फ्यूचर ब्राइट है, अच्छा फ्यूचर है, वहां जा रहे, या फिर अपन खुद को डिस्ट्रॉय तो नहीं कर रहे कि फ्यूचर में अपनी लाइफ कैसे. आप वो सोचिए कि आप 30-40 के बाद कैसे होंगे. आप सपने देखिए कि आपको 30-40 के बाद क्या होना चाहिए, आपको कुछ दिनों के बाद कैसे होना चाहिए. तो वो चीजों विजन रख के आप काम कीजिए, क्योंकि आपको फिर जिंदगी बहुत बड़ी है अगर अच्छे से जीना. और एक हर एक को एक वैल्यूएबल लाइफ मिली है, इसलिए वो पूरे जिंदगी को पूरा जीना ही सबसे बेस्ट होता है. आप कोई कुछ भी करो, जरूरी नहीं कि आप सीए ही करो या फिर डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, आप कुछ भी करो, जो भी प्रोफेशन में आप हो, आप उसको फुल फ्लेज्ड हो और प्रॉपर स्टेप लो, वो इम्पोर्टेंट है कि आप,
0: मतलब कल को ये ना लगे कि अरे ये कर लेते हैं,
1: एग्जैक्टली
0: थोड़ी और मेहनत कर लेते
1: हैं, एग्जैक्टली वो हमें भी कभी कभी लगता है कि कोई चीज हमने नई चीज या मिस आउट हो गई, तो अभी लगता है कि वो चीज कर लेना था, वो समय तो चलेगा, अभी तो कुछ नहीं है, क्योंकि आप जब फिर वो मेहनत करने के बाद जो हासिल करते हो उसका जो फ्रूट होता है, वो उसका एक्सपीरियंस जो होता है, मतलब आप मरते दम तक नहीं भूल पाओगे। और कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें करने का तो अलग ही महत्व होता है, वो चीजों को ध्यान रख के आप बस लाइफ को जो बाकी करना ही के
0: नहीं, बहुत आपने बहुत सरल तरीके से अपनी ये सभी बातें कही, और आपने साथ साथ मोटिवेट भी किया और प्रैक्टिकल बातें भी बताई कि हाँ ऐसा नहीं है कि आराम से हो रहा है, लेकिन हाँ आप मोटिवेटेड हो तो आप कर सकते हो,
1: लाइफ को जियो भी, मस्ती करो, दोस्तों के साथ घूमो फिरो, वो भी जरूरी है, क्योंकि वो उम्र

0: कहते हैं कभी भी देर नहीं होती बदलाव के लिए, तो इसीलिए अगर आपको आज भी ये महसूस हुआ है तो आज ही ये बदलाव लेकर आइए अपने जीवन में, एक करियर, एक विजन, खुद से प्रश्न कीजिए। जैसा आपने कहा, कृष्णा हमारे साथ हैं और उन्होंने कहा खुद से प्रश्न कीजिए कि आप अपना भविष्य कैसा देखना चाहते हैं, तो जवाब मिल जाएगा कि क्या जॉब किस तरह का आप करना चाहते हैं, जीना चाहते हैं।
1: एग्जैक्टली।
0: थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए एंड यूथ को गाइड करने के लिए, बहुत सरल तरीके से हमसे आपकी जानकारी शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
2: थैंक यू सो मच, थैंक यू रेडियो मधुबन, आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी यूथ से कनेक्ट होने के लिए, इसके लिए थैंक यू सो मच।
0: एंड थैंक यू आप सभी को भी दोस्तों, आप हमारे साथ जुड़े रेडियो मधुबन 90.4 FM पर। अगर आप और

0: आप हो रेडिया रेडियो मधुबन 107.8 एफएम हबरता रेडियो ने मुस्कुराता रेडियो।
1: नमस्कार, मधुबन रेडियो से मैं हाकम खान। हमने एक संगीत कला केंद्र खोल रखा है। हमारा भारत में व राजस्थान में विवाह जन्मदिन लोकगीतों का कार्यक्रम देते हैं। हम मांगणियार कलाकार रजवाड़ों में लोकगीतों का कार्यक्रम देते हैं। शादी विवाह जन्मदिन पर ढोल हारमोनियम बजाने का कार्यक्रम करते हैं। हमारे संगीत का वो गायकी जीवित रहे ताकि हमारे बच्चे संगीत सीख अपनी कला को देश विदेश में प्रोग्राम करवा सके, अपने आजीविका कमा कर परिवार का पालन पोषण कर सके। मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ केसरिया बालम पधारो मारे देश। राग मांड साजन आहे हे सखी मैं कहीं मनवार करूं, थाल भरूं गज मोतियां ऊपर नैन धरूं। साजन आवत देख कर तोड़ दियो गलहार, लोक जाने मोती चुगे झुकझुक करे नमन। तो ये केसरिया बालम जो मांड राग में गाया जाता है, जब कोई मेहमान घर पे आती है या सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है तो उसमें केसरिया बालम पधारो मारे देश शुरुआत करने जा रहा हूँ। केसरिया बालम पधारो मारे देश।

गुड इवनिंग नमस्ते रेडियो मधुबन 107.8 एफएम में आप जुड़ चुके हैं आपके फेवरेट कार्यक्रम उड़ान के साथ। मैं हूं आपकी दोस्त मोना और आप दोस्तों के लिए लेकर आई हूं दो बेहतरीन कहानियां, स्वर्ग की यात्रा और नथिंग इज इम्पॉसिबल। वहीं पर मुंह में क्यों खुल जाता है चॉकलेट, ये अमेजिंग जानकारी जरूर लेकर आऊंगी आपके लिए। प्यारी सी कविता भी होगी, साथ ही साथ होमवर्क भी होगा। पूछा जाएगा आप दोस्तों से सवाल जिसका जवाब आप देंगे कॉल करके 9414151415 पर। छू लो गगन, जी हाँ छूने का ही तो वक्त है, अपने सपनों को जीने का ही तो वक्त है। चलिए दोस्तों छोटा सा ब्रेक लेते हैं, गीत को पूरा करते हैं और रेलवे में क्या चीज खाएं क्या चीज अवॉइड करें ये भी जरूर ध्यान दें। सुनते रहो मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन 107.8।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: गाड़ी में सफर करते समय कोई भी अनजान व्यक्ति से किसी भी प्रकार के खाने पीने की चीजें स्वीकार न करें, इससे आपके जान व माल दोनों का नुकसान हो सकता है।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: अमेजिंग जानकारी के साथ आप दोस्तों को मैं जोड़ लेती हूँ और आप सुन रहे हैं उड़ान और मैं हूँ आपकी दोस्त मोना। वैसे चॉकलेट खाना किसे पसंद नहीं, इस टेस्टी चॉकलेट में बहुत कुछ होता है, दूध होता है, कोको पाउडर होता है और तरह तरह के कई चॉकलेट्स में ड्राई फ्रूट्स और दूसरी चीज़ें भी कैरमल इत्यादि भी मिक्स होती हैं, लेकिन इसके पीछे विज्ञान ज़रूर है। क्या आपने कभी सोचा है कि चॉकलेट पैकेट में तो सख्त होती है लेकिन हमारे मुंह में रखते इतनी जल्दी पिघल क्यों जाती है? इसके पीछे भी विज्ञान है। विज्ञान ऐसा इसलिए होता है क्योंकि चॉकलेट में कोको बटर होता है। ये कोको बटर लगभग 32 to 34 सेल्सियस पर ही पिघलने लगता है। 32-34 सेल्सियस कोको बटर का मेल्टिंग पॉइंट है। मेल्टिंग पॉइंट यानी कि वो टेम्परेचर जिस पर कोई ठोस चीज पिघलना शुरू कर देती है और लिक्विड में बदल जाती है। कोको बटर पर 32 से 34 पर पिघलती है जबकि हमारे शरीर का टेम्परेचर लगभग 37 सेल्सियस होता है। मतलब ये कि जितनी गर्मी कोको बटर को पिघलने के लिए चाहिए होती है, हमारा शरीर उससे भी ज्यादा गर्म है। इसलिए चॉकलेट हमारी जीभ को छूते ही मेल्ट होने लगती है। समझ में आया दोस्तों? तो चलिए गीत एक जरूर हो जाए क्योंकि आपके लिए मैं लेकर आई हूँ उड़ान। सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

0: और दोस्तों, आज का सवाल आपके लिए। यदि आप फतेह सागर और पिछोला झील देखने जाते हैं तो आप कौन से शहर में पहुंचेंगे? यदि आप फतेह सागर और पिछोला झील देखने जाते हैं तो आप कौन से सागर पे, कौन सी जगह पर पहुंचेंगे? आपके लिए ऑप्शन है ए शिमला, बी उदयपुर, सी वाराणसी। झटपट जवाब देना 9414151515 पर देना और चॉकलेट का टेस्ट कर लेना।
1: निशा जी, अब आपके ये चॉकलेट आइसक्रीम के दिन।

0: नमस्कार, रेडियो मधुबन में बहुत बहुत स्वागत है। हमारे बीच हमारे साथी दोस्त भी मौजूद हैं बात करने के लिए। बताइए सर, कौन बात कर रहे हैं?
1: ओम शांति।
0: नमस्कार नमस्कार, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। बताइए कैसे हैं आप?
1: हम भी बढ़िया है। और प्रोग्राम कल का भी सुना था, आज का भी चार सुन रहा हूँ। चॉकलेट चॉकलेट मुंह पे पानी आया है।
0: चॉकलेट
1: का गीत भी लगा दिया आपने।
0: जी जी जी जी।
1: और सवाल का जवाब तो उदयपुर है।
0: उदयपुर। चलिए शुक्रिया आपका बहुत बहुत रेडियो मधुबन में कॉल करने। जी बोलिए।
1: सभी को नमस्कार दीदी।
0: थैंक यू नमस्कार नमस्कार।

0: रेडियो मधुबन में हमारे साथ एक और साथी जुड़ चुके हैं। कौन बोल रहे हैं सर? नमस्कार।
1: नमस्ते
0: जी। नमस्ते। नमस्ते,
1: नीरज गुप्ता नाम है मेरा।
0: जी नमस्कार नीरज जी, कैसे हो?
1: ठीक है जी।
0: जी शुक्रिया।
1: बारिश का मौसम चल रहा है
0: जी। कहाँ पर बारिश का मौसम चल रहा है? हम तो राजस्थान में बैठे सूख ही रहे हैं।
1: महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ जी मैं।
0: अच्छा, थैंक यू कॉल करने के लिए। नमस्कार, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करते हुए। और बताइए, आज आपने हमारे कार्यक्रम में सवाल सुना है?
1: हाँ
0: जी। क्या जवाब देना चाहेंगे?
1: नहीं सुना नहीं मैं।
0: ओके चलिए आपसे सवाल पूछ लेते हैं। शुक्रिया आपने ये वाली बात शेयर करी। तो आज का सवाल है, आज का जो सवाल है वो ये है, फतेह सागर और पिचौला झील को यदि आप देखना चाहते हो तो आप कौन से शहर में पहुंचोगे? क्या ए शिमला, या फिर बी उदयपुर, या फिर सी वाराणसी? सही जवाब सिर्फ एक है,
1: उदयपुर।
0: शुक्रिया आपका, थैंक यू हमें कॉल करने के लिए। स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते। हाँ जी
1: गीत
0: तो भी बजेगा, आपको जरूर सुनाएंगे। थैंक यू। नमस्कार। नमस्कार।

रखी है। बिल्कुल ताकत बड़ी है। चलिए एक प्यारी सी कविता भी आप दोस्तों के लिए विशेष है। मीठी मीठी इसकी खुशबू मन को यह ललचाए, मुझे तो मेरे दोस्त इसे छुपा कर भी खा जाए। चाहे डार्क हो या हो सिल्क, लगती ये बड़ी निराली है, हर दिल पर छा जाती है, ये मीठी सी कवाली है। मुंह में जाते ही ये चॉकलेट धीरे से पिघल जाती है, बचपन की यादें सारी पल भर में जागती है। खुशी का मौका हो या रूठे को मनाना हो, चॉकलेट से बेहतर कोई नहीं यह खजाना हो। हर डिब्बे में छिपी है खुशियों की एक सौगात, चॉकलेट ही तो साथी है हर मीठी सी बात। तो चलिए दोस्तों पुनः एक बार सवाल, फतेह सागर और पिचोला झील किस पर्यटन स्थल में स्थित है? ए शिमला, बी उदयपुर, सी वाराणसी। सही जवाब जरूर देना 9414151415 पर देना। सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

0: इच्छा शक्ति के आगे हर छोटी हो जाती है बातें। चलिए नथिंग इज इम्पॉसिबल, ये छोटी सी कहानियां।
1: क्या वह फिर भी अपने सपनों तक पहुंच सकता है? क्या सच में कोई सपना इतना बड़ा हो सकता है कि पूरी दुनिया उसे असंभव मान ले? आज की कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसने साबित कर दिया कि असंभव कुछ भी नहीं होता। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुरा में एक लड़की रहती थी जिसका नाम था नंदिनी। नंदिनी बचपन से ही पढ़ाई में बहुत तेज थी। गांव के प्राथमिक विद्यालय में पढ़ते हुए वह हमेशा प्रथम आती थी। उसके शिक्षक अक्सर कहते थे, ये लड़की एक दिन बहुत बड़ा काम करेगी। लेकिन नंदिनी का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ था जहां लड़कियों की पढ़ाई को ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता था। उसके पिता एक छोटे किसान थे, परिवार की आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं थी। नंदिनी जब 8वीं कक्षा में पहुंची तो उसके पिता ने साफ शब्दों में कह दिया, अब बहुत पढ़ाई हो गई, अगले साल तुम्हारी शादी के बारे में सोचना होगा। यह सुनकर नंदिनी की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से कहा, बाबूजी, मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, मैं कुछ बड़ा बनना चाहती हूँ। लेकिन उसके पिता ने उसकी एक न सुनी। गांव के लोग भी यही कहते थे, लड़कियों को ज्यादा पढ़ाने से क्या फायदा, आखिर में तो घर ही संभालना है। उस रात नंदिनी बहुत रोई, लेकिन उसने एक फैसला किया। उसने तय कर लिया कि वह अपने सपने को कभी नहीं छोड़ेगी। अगले दिन वह अपने स्कूल की शिक्षिका सुनीता मैडम के पास पहुंची। उसने रोते हुए उन्हें सारी बात बताई। सुनीता मैडम ने उसकी आंखों में देखा और कहा, अगर तुम्हारा सपना सच्चा है तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। उन्होंने नंदिनी के पिता से बात की, बहुत समझाने के बाद भी वे नहीं माने, लेकिन अंत में उन्होंने एक शर्त रखी, अगर नंदिनी अपनी पढ़ाई का खर्च खुद उठा सकती है तो वह पढ़ सकती है। यह सुनकर नंदिनी के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। अगले ही दिन से उसने गांव के छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। सुबह वह बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती, दिन में स्कूल जाती और रात में खुद पढ़ाई करती। उसका दिन सुबह 4 बजे शुरू होता था और देर रात तक चलता था। कई बार उसे नींद आ जाती, कई बार थकान से शरीर जवाब दे देता, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। समय बीतता गया। 10वीं की परीक्षा का परिणाम आया, पूरा जिला हैरान रह गया। नंदिनी ने पूरे जिले में पहला स्थान प्राप्त किया था। गांव में पहली बार किसी लड़की ने ऐसा किया था। लोग जो कभी कहते थे कि लड़कियों को पढ़ाना बेकार है, अब उसी नंदिनी की तारीफ कर रहे थे। लेकिन नंदिनी का सपना अभी बहुत बड़ा था। वह प्रशासनिक अधिकारी बनना चाहती थी। जब उसने यह बात अपने परिवार को बताई तो सभी चुप हो गए। उसके पिता ने कहा, बेटी, ये बड़े शहरों के बच्चों का सपना होता है, हमारे बस की बात नहीं है। नंदिनी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बाबूजी, सपनों का कोई गांव या शहर नहीं होता। 12वीं के बाद उसने छात्रवृत्ति परीक्षा पास की और शहर के एक कॉलेज में दाखिला लिया। शहर की जिंदगी उसके लिए बिल्कुल नई थी। उसके पास अच्छे कपड़े नहीं थे। वह हॉस्टल का खर्च बचाने के लिए लाइब्रेरी में घंटों बैठती थी। कई बार उसने एक समय का खाना खाकर पूरा दिन निकाला, लेकिन उसके अंदर एक आग थी। वह हर दिन खुद से एक बात कहती थी, असंभव कुछ भी नहीं। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद उसने प्रशासनिक सेवा परीक्षा की तैयारी शुरू की। ये परीक्षा देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक मानी जाती थी। पहली बार उसने परीक्षा दी, वह असफल हो गई। नतीजा देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा जैसे उसका सपना उससे दूर जा रहा है। लेकिन तभी उसे अपनी शिक्षिका सुनीता मैडम की बात याद आई, अगर सपना सच्चा हो तो हार केवल एक पड़ाव होती है। उसने फिर से तैयारी शुरू की। दूसरी बार भी वह असफल हो गई। इस बार गांव के लोग फिर बातें करने लगे, हमने पहले ही कहा था कि उसके बस की बात नहीं है, अब शादी कर दो लड़की की। ये बातें नंदिनी के कानों तक भी पहुंची। उस रात उसने खुद से एक सवाल पूछा, क्या मैं सच में हार मान लूं? लेकिन अगले ही पल उसे अपनी मां का चेहरा याद आया जो हमेशा चुपचाप उसका साथ देती थी। उसने फैसला किया, नहीं, मैं एक बार और कोशिश करूंगी। अब उसने पहले से भी ज्यादा मेहनत शुरू कर दी। वह रोज 14 से 16 घंटे तक पढ़ाई करती थी। उसने अपनी गलतियों को समझा, अपनी कमजोरियों पर काम किया और हर दिन खुद को बेहतर बनाया। पूरा एक साल बीत गया। परीक्षा का दिन आया। नंदिनी ने पूरे आत्मविश्वास के साथ परीक्षा दी। कुछ महीनों बाद परिणाम घोषित होना था। उस दिन नंदिनी अपने गांव में थी। सुबह से ही उसका दिल तेज धड़क रहा था। उसने कांपते हाथों से परिणाम देखने के लिए वेबसाइट खोली। कुछ सेकंड के लिए उसकी सांसें रुक गईं, फिर अचानक उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। उसका चयन हो चुका था। केवल चयन ही नहीं, उसने पूरे राज्य में शानदार रैंक प्राप्त की थी। नंदिनी रो रही थी, उसकी मां रो रही थी, उसके पिता की आंखों में भी आंसू थे। उन्होंने पहली बार अपनी बेटी से कहा, बेटी हमें माफ कर दो, हम तुम्हारे सपनों को समझ नहीं पाए। नंदिनी ने अपने पिता का हाथ पकड़ लिया और कहा, बाबूजी अगर आपने मुझे संघर्ष करना नहीं सिखाया होता तो शायद मैं यहां तक कभी नहीं पहुंचती। कुछ वर्षों बाद नंदिनी उसी जिले में जिला अधिकारी बनकर लौटी, जहां कभी उसकी पढ़ाई रोक दी गई थी। उसके स्वागत के लिए हजारों लोग जमा हुए। गांव की वही गलियां जहां कभी लोग उसका मजाक उड़ाते थे, आज फूलों से सजी हुई थी। जब वह अपनी पुरानी स्कूल की इमारत के सामने पहुंची तो उसकी आंखें नम हो गईं। वह मंच पर पहुंची और बच्चों को संबोधित करते हुए बोली, जब मैं छोटी थी तो लोगों ने कहा था कि मैं आगे नहीं पढ़ सकती, फिर उन्होंने कहा कि मैं अधिकारी नहीं बन सकती, लेकिन मैंने एक बात कभी नहीं छोड़ी, अपने आप पर विश्वास। उसने थोड़ी देर रुककर कहा, याद रखिए दुनिया में कोई सपना असंभव नहीं होता। असंभव केवल वह होता है जिसकी कोशिश हम करना छोड़ देते हैं। पूरा मैदान
0: बिल्कुल असंभव कुछ भी नहीं, बात सही है। और आज का होमवर्क भी आप दोस्तों के लिए विशेष है, शब्द संपदा, और साथ ही साथ यह भी जरूर जाने कुछ ऐसे शब्द जिनके अर्थ भी जानना आवश्यक है। इनमें से एक शब्द है वर्चस्व, अर्थात प्रधानता, विज्ञप्ति, प्रचारिता, प्रचारित सूचित करना, अनंत जिसका अंत न हो, सौंदर्य प्रसाधन सुंदरता बढ़ाने वाली सामग्री, परिधान वस्त्र या कपड़े, अस्मिता अस्तित्व पहचान। आगे सांस्कृतिक अस्मिता, अस्मिता से तात्पर्य है पहचान। हम भारतीय की अपनी एक सांस्कृतिक पहचान है। यह सांस्कृतिक पहचान भारत की विभिन्न संस्कृतियों के मेल झोल से बनी हुई है। इस मिली जुली सांस्कृतिक पहचान को ही हम सांस्कृतिक अस्मिता कहते हैं। सांस्कृतिक उपनिवेश भी एक और होता है शब्द। विजेता देश जिन देशों पर अपना प्रभुत्व स्थापित करता है वे देश उसके उपनिवेश कहलाते हैं। सामान्यतः विजेता देश की सांस्कृतिक विजित देशों पर लादी जाती है। दूसरी तरफ हीनता ग्रंथिवश विजित देश विजेता देश की संस्कृति को अपनाने भी लगते हैं। लंबे समय तक विजेता देश की संस्कृति को अपनाए रखना सांस्कृतिक उपनिवेश बना देता है। बौद्धिक दासता, इसका अर्थ होता है अन्य को श्रेष्ठ समझकर उसकी बौद्धिकता के प्रति बिना आलोचनात्मक दृष्टि अपनाए उसे स्वीकार कर लेना, बौद्धिक दासता कहलाता है। छद्म आधुनिकता, आधुनिकता का सरोकार विचार और व्यवहार दोनों से है। तर्कशील वैज्ञानिक और आलोचनात्मक दृष्टि के साथ नवीनता का स्वीकार आधुनिकता कहलाता है। जब हम आधुनिकता को वैचारिक आग्रह के साथ स्वीकार न करें, उसे फैशन के रूप में अपना लेते तो वो छद्म आधुनिकता कहलाती है। चलिए इसके साथ साथ एक छोटी सी गीत आप तक पहुंचाते हैं। मज़ेदार इस गीत को सुनिए और फिर हम लौट कर आते हैं।

0: ओ मितवा ओ मितवा। चलिए इस गीत के साथ साथ आज का सवाल, फतेह सागर और पिचोला झील किस पर्यटन स्थल में स्थित है? ए शिमला, बी उदयपुर, सी वाराणसी। आगे बढ़ते हैं और आज की दूसरी कहानी आप तक पहुंचाते हैं, स्वर्ग की यात्रा।
1: चल बे गधे, अब जल्दी घर भी चलेगा या यहीं रात करेगा? खाने में तो कोई कसर नहीं छोड़ता, फिर चलने में इतनी कंजूसी क्यों करता है?
2: मर गया रे, इस धोबी ने तो कपड़े लात लात कर मेरा कचूमर निकाल दिया है। हे भगवान, मुझे इस धोबी से बचाओ, मुझे इस धोबी से बचा लो भगवान।
3: इस तरह से गधा जब भी बोझा लाद कर आता तो कराहते हुए भगवान को याद करता। एक दिन,
1: ले खा खा खा के तो गेंडा हो गया है, लेकिन काम करने में तेरी नानी मरने लगती है। फटाफट खा ले और चल, कपड़े लेने जाना है। अब चलेगा भी या तेरे लिए डोली मंगाऊं? चल।
2: ओह हे भगवान, मुझे इस धोबी से बचाओ।
4: यह गधा रोज मुझे सच्चे मन से याद करता है, इसकी भक्ति ने मुझे प्रसन्न कर दिया, अब मुझे इसको दर्शन देना चाहिए।
3: ऐसा सोच भगवान उस गधे के सामने प्रकट हुए।
4: मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं गधा, कहो क्या बात है? तुम इस तरह से मुझे रोज रोज क्यों ध्यान करते हो? तुम्हारे मन में जो भी कामना है मुझे बताओ, मैं उसे पूरा करने के लिए आया हूं।
2: हाँ, ये कौन आ गया भगवान बनकर? भगवान तो ये हो नहीं सकते, ये जरूर उस धोबी की ही चाल है। ये वही है जो मुझे भगवान बनकर ठगना चाहता है।
4: अरे क्या सोच रहे हो गधे, मांगो क्या मांगते हो?
2: मैं सोच रहा हूँ प्रभु कि मैं आप जैसा नहीं हूँ, गधा हूँ पर मूर्ख नहीं हूँ। मुझे समझ में आती है भगवान में और धोबी में फर्क, मैं उतना बेवकूफ नहीं हूँ।
4: अब मैं तुम्हें कैसे विश्वास दिलाऊं गधे?
2: अगर आप सही में भगवान हैं तो बताइए, सभी जानवरों के तो सींग है, मेरे सींग क्यों नहीं है?
4: तुम्हारा सींग मेरे पास है, ये देखो।
2: मेरा सींग आपके पास है? इसका मतलब आप सच में भगवान हैं?
4: हाँ गधे, मैं सच में भगवान हूँ।
2: तब एक बात बताइए भगवान, सब तो मुझे गधा समझते ही हैं, क्या आप भी मुझे गधा ही समझते हैं?
4: अरे नहीं नहीं, तुम तो गधे रा...

0: गधे ने जैसे ही यह सुना वह खुश हो गया। फिर गधे ने कहा,
1: भगवान, मुझे अब इस धरती पर रहने की लालसा नहीं है, मुझे भी अपने साथ स्वर्ग ले चलें प्रभु।
2: मैं तुम्हारे भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं गधेराज, ऐसा ही होगा।
0: गधा भी भगवान के साथ स्वर्ग चला गया।
1: भगवान, आपने तो मुझे सच के स्वर्ग में ला दिए, अब तो मैं यहाँ खूब मजे से रहूंगा।
2: हाँ गधेराज, अब से तुम यहाँ खूब आराम से रहो।
0: अब गधा वहाँ खूब मौज से रहने लगा, बागों में हरी हरी घास खाता और दिन भर घूमता रहता। एक दिन गधा घास खाते खाते इंद्रदेव के बाग में चला गया।
3: कौन है ये गधा जो महाराज इंद्रदेव के बाग में घुसा चला आया? क्यों गधे, क्या तुम्हें नहीं पता कि ये इंद्रदेव का बाग है? यहाँ गधों का आना सख्त मना है।
1: अरे अरे, मुझे नहीं पता था भाई, मैं यहाँ कोमल कोमल घास देखा तो चला आया खाने के लिए।
3: आज चेतावनी देकर छोड़ रहा हूँ, फिर दोबारा यहाँ मत दिखना, चल निकल जा यहाँ से।
1: आज तो बुरा फंसा था, वो तो अच्छा हुआ कि उसने मुझे घास खाते नहीं देखा था।
0: कुछ दिन बीतते हैं, अब गधे को वहां बहुत अकेला सा लगने लगा था। एक दिन भगवान उसका हाल चाल जानने आए।
2: क्यों गधेराज, दिन तो मौत से बीत रहे हैं ना?
0: वह बहुत उदास और मायूस होकर भगवान से कहता है,
1: भगवान, मैं यहाँ बिल्कुल अकेला हूँ, मुझे मेरे साथियों की बहुत याद आ रही है, अगर उन्हें भी आप यहाँ बुला लें तो बहुत अच्छा रहेगा भगवान।
2: जैसी तुम्हारी इच्छा गधेराज, तुम्हारे साथियों को भी बुला लाता हूँ।
0: ऐसा बोल भगवान अंतर्ध्यान हो गए और पृथ्वी से कुछ और गधों को लेकर वहां गए।
2: ये लो गधेराज, मैं तुम्हारे साथियों को भी ला दिया, अब इन सब के साथ तुम्हारा मन भी लगा रहेगा।
0: अब गधा बहुत खुश हुआ, अपने साथी गधे को लेकर बागों में घास खाने चला गया। जब घास खाकर सारे गधे एक साथ जमा होते हैं तो सभी गधों ने गाना गाना शुरू किया। सभी गधों ने अपने आवाज से पूरे स्वर्ग को संगीतमय बना दिया। जब उसकी आवाज से स्वर्ग की शांति भंग होने लगी तो भगवान वहां आए।
2: ये तुम क्या कर रहे हो गधेराज, तुम्हारे कारण स्वर्ग की शांति भंग हो रही है।
1: हम तो गाना गा रहे हैं भगवान, हमारे गाने से मन को शांति मिलती है भगवान।
2: लेकिन गधेराज, यह धरती नहीं स्वर्ग है, और यहाँ आपकी यह ढेचू ढेचू की आवाज नहीं चलेगी। यहाँ रहना है तो तुम्हें अपनी आवाज पर अंकुश लगाना होगा।
1: भगवान, तब तो ये सरासर जास्ती हुई, क्या हमें बोलने का अधिकार नहीं मिलेगा? फिर मैं अपने सुरीली आवाजें किसको सुनाऊंगा?
2: गधेराज, तुम्हारे आवाजों से हमारे ध्यानों में विघ्न पड़ रही है, ये हमारी आखिरी चेतावनी समझो और इस पर अमल करो।
1: भगवान, अगर ऐसी बात है तो मुझे नहीं रहना है यहाँ, हमें हमारे धरती पर भेज दो, वहाँ हम लोग कम से कम आजादी से बोल तो सकते हैं।
2: जैसी तुम्हारी इच्छा गधेराज, जब तुम्हारी इच्छा धरती पर ही जाने को है तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, चलो मैं तुम्हें धरती पर भेज देता हूँ।
0: गधे ने जब धरती पर जाने की बात सुनी तो वह खुशी से झूमने लगा। तभी,
4: चल उठ जा गधे, कब से लगातार चिल्लाया जा रहा है, हैं? न जाने दिन में सोया सोया कौन सा सपना देखता रहता है।
0: गधा घबरा कर उठता है।
1: हाँ, क्या मैं ये सब सपने में देख रहा था?
4: अब चल जल्दी से खाना खत्म कर और फिर कपड़ा लेने जाना है, और हाँ, दोबारा सो मत जाना।
1: चलो सपने में ही सही, स्वर्ग के दर्शन तो हो गए, लेकिन मुझे स्वर्ग से अधिक प्यारी यह धरती ही है। अब से मैं इच्छा भर के सबको अपने गाने तो सुना सकता हूँ।
0: एक दिन,
5: भाई वाह, आज तो हरी हरी घास खाकर मजा आ गया,
3: मेरा पेट तो भर ही चुका है, अब इस पेड़ की छांव में थोड़ा आराम कर लूं, फिर आगे चलूंगा।
0: ऐसा सोच गधा पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगा और आराम करते करते इधर उधर की उटपटांग बातें सोचने लगा।
3: मेरे जैसा बुद्धिमान इस जंगल में कोई नहीं, तभी तो समस्या आने से पहले मैं उससे बचने का रास्ता निकालता हूँ। जैसे मान लेता हूँ मैं यहाँ बैठा हूँ और जंगल में आग लग जाए तो मेरा क्या होगा, मैं तो बेमौत ही झुलस के मर जाऊंगा।
0: तभी उसकी नजर जंगल के दूसरे छोर से उठ रहे धुएं पर पड़ी। धुआं देखकर गधा घबरा गया।
3: अरे यह तो सचमुच जंगल में आग लग गई, इसका मतलब अब मैं मारा जाऊंगा? नहीं नहीं, इससे पहले कि आग मुझे अपनी चपेट में ले ले, मुझे यह जंगल छोड़कर किसी सुरक्षित स्थान पर भागना चाहिए।
0: ऐसा सोच गधा घबरा कर उठा और तेजी से भागने लगा। गधे को इस तरह बेतहाशा भागते एक सियार ने उसे देखा। वह गधे को रोकते हुए पूछा,
5: अरे क्या हुआ गधे भाई, तुम इस तरह से क्यों भागे जा रहे हो? कोई खजाना मिल गया है क्या?
3: अरे फालतू की बातें मत करो, कोई खजाना लेकर नहीं भाग रहा मैं, अपनी जान बचाकर भाग रहा हूँ। वह देखो पीछे जंगल में आग लगी है।
0: इतना बोल गधा फिर भागने लगा। सियार ने देखा तो उसे कुछ दूर धुआं उठता हुआ दिखाई दिया।
5: अरे हाँ, यहाँ तो सच में आग लगी है।
0: धुआं देखकर सियार भी घबरा गया। उसे भी डर हो गया कि कहीं वह इस आग में घिर ना जाए। यह सोचते ही वह भी गधे के साथ भागने लगा। भागते भागते सियार को कुछ सूझता है और वह रुक जाता है।
5: कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ? हो ना हो मैं कहीं उसी कहानी को तो नहीं दोहरा रहा हूँ जिसमें पेड़ से पपीता गिरने पर हिरण ने समझ लिया कि जंगल में कोई खतरनाक दानव आ गया है और बचने के लिए वह स्वयं तो भाग ही रहा था, उसके पीछे दूसरे जानवर भी बिना सोचे समझे भागे जा रहे थे। नहीं नहीं, मैं उस आग को बिना देखे यकीन नहीं करूंगा। मुझे उस धुएं के बारे में पता लगाना होगा कि आखिर वह धुआं कहां से और क्यों उठ रहा है।
0: ऐसा सोच सियार उठ रहे धुएं के दिशा में चल पड़ा। कुछ दूर जाने पर उसे एक हिरण मिला। हिरण को देखकर सियार रुका और उससे पूछा,
5: हिरण भाई क्या तुम ये बता सकते हो कि वह धुआं कहां से और क्यों उठ रहा है?
0: हिरण ने धुएं की तरफ देखकर कहा,
6: वह धुआं तो झरने के पास से उठ रहा है। झरनों के किनारे खरगोश, लोमड़ी, बंदर और मैं, हम चारों दोस्त पिकनिक मना रहे हैं। हम लोग वहीं आग जलाकर बाटी चोखा बना रहे हैं। लकड़ियां कम होने से मैं इधर लकड़ी लेने आया था, परंतु यह सब तुम क्यों पूछ रहे हो?
5: मुझे उस धुएं से क्या मतलब हिरण भाई, वह तो अपना गधा भाई उस धुएं को देखकर डर गया और इधर से दौड़ते हुए जा रहा था। उसे लगा कि शायद जंगल में आग लग गई, वह अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था। अब तक तो वह न जाने कितनी दूर निकल गया होगा।
6: तो तुमने उसे रोका क्यों नहीं? तुम्हें उस मूर्ख गधे को रोकना चाहिए था।
5: उसे रोकने की छोड़ो, एक पल के लिए तो मुझे भी उसने डरा ही दिया था।
6: परंतु सियार भाई, यदि उसे नहीं रोका गया तो ऐसे भागते भागते सभी जानवरों को वह आतंकित करता जाएगा और जंगल में बिना मतलब की भगदन मच सकती है। हमें उसके पीछे जाना चाहिए और उसे रोककर सच्चाई बताना चाहिए।
5: हाँ तुम ठीक कह रहे हो हिरण भाई, हमें गधे को रोकना चाहिए।
0: ऐसा बोल हिरण और सियार दोनों उसी दिशा की ओर दौड़े जिधर गधा भागते हुए गया था। काफी दूर जाने के बाद उन्हें गधा दिखा।
3: बहुत जल्दी ये जंगल छोड़कर मेरे साथ भाग चलो, वरना आग को यहाँ आते देर नहीं लगेगी। भाइयों अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो भागो।
5: कोई कहीं नहीं भागेगा, जंगल बिल्कुल सुरक्षित है। इस मूर्ख गधे की बात सुनकर तुम लोग भयभीत मत हो, जंगल में कहीं भी आग नहीं लगी है।
6: हाँ भाइयों, हम वहीं से आ रहे हैं। मैं वहाँ झरने के किनारे अपने दोस्तों के साथ पिकनिक मना रहा था और उसी आग से उठ रहे धुएं को देखकर यह गधा समझ लिया कि जंगल में आग लगी है और यह बेवकूफ बिना सोच विचार किए भागने लगा।
0: आग की वास्तविकता सुनकर गधा झेप गया और सभी जानवरों ने अब चैन की सांस ली।
7: हिरण भाई, तुम्हारा यह काम बहुत सराहनीय है जो समय पर आकर हमें घटने की सही जानकारी दी, वरना आग की खबर सुनकर हमारी तो सांसें ही रुक गई थीं।
8: बिल्कुल, स्वर्ग की यात्रा के साथ साथ गधे ने तो वहां पर बवाल खड़ा कर दिया, झूठी अफवाहें फैला दी। खैर आप लोग किसी भी प्रकार की झूठी

0: योग्यता को जानें, परखें और फिर किसी के साथ शेयर करें। फतेह सागर पिछोला झील या फिर आपको किला देखना हो और साथ ही साथ आपको खूबसूरत शहर देखना हो, तो पिछोला झील और फतेह सागर को देखते हुए आप किसी और शहर नहीं, यहाँ से सिर्फ 126 किलोमीटर दूर उदयपुर ही पहुँचेंगे। जी हाँ दोस्तों, सही जवाब उदयपुर है। थैंक यू आज के लिए। सोमवार को मिलने का वादा करती हूँ ठीक शाम 6 बजे। तब तक के लिए उड़ान से कहूँगी गुड बाय। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।
1: ये है नशे की कहानी।
2: पहला नशा, पहला खुमार,
1: कभी किसी वजह से और कभी यूं ही बेवजह।
2: किसी की याद सताए, शराब पी लेना।
1: कड़वे घूंट पीकर भी आने लगा अगर जिंदगी का मजा, तो लगता है

0: कैसा हूँ।
1: जब घर वाले हुए परेशान और समाज ने ठुकराया तो लगा
2: की जो पीली है चोरी तो नहीं की है।
1: और जब इस आदत को पहचान न पाने के कारण दुखी हुए, परेशान हुए, रोए चिल्लाए, दिल टूट गया, जग छूट गया, तो

गम में पिए या दुख में धुआं उड़ाए। तंबाकू के सेवन से कई गंभीर और जानलेवा बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। फेफड़ों के कैंसर, लिवर कैंसर, मुंह का कैंसर, कोलन कैंसर और गर्भाशय का कैंसर होने का भी जोखिम होता है। इसलिए आप कहिए नो टू टोबैको, धूम्रपान को कहिए अलविदा और कह

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मिशन लाइफ के संकल्प को आप सजग रहकर मजबूती दे सकते हैं और रोजाना के कामकाज में कुछ आसान उपायों से अपना योगदान दे सकते हैं। कैसे, आइए जानते हैं। पौधों, फर्श और वाहनों आदि में पानी के उपयोग के लिए होस पाइप या पाइप के बजाय बाल्टी का उपयोग करें। एसी और आरओ से निकले पानी का पुनः उपयोग करें। जल इकाइयों को रिचार्ज करने के काम को बढ़ावा दें और औरों को भी प्रेरित करें। सब्जियों को साफ करने के बाद पानी का पुनः उपयोग पौधों को पानी देने या ऐसे किसी अन्य कार्यों के लिए करें। घर, स्कूल और कार्यालयों में वाटर हार्वेस्टिंग बॉडीज का निर्माण करवाएं। लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट अपनाइए। मिशन लाइफ से दुनिया बेहतर बनाइए।
1: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: नमस्ते, राम राम और ओम शांति। मेरा नाम पवित्र मल्लिक और आप सुन रहे हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो रेडियो मधुबन 107.8 FM पर कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल यानी मारो गांव मारो अंचल। इस कार्यक्रम को लेकर जब हम गांव और अंचल में जाते सभी वर्ग से मिलते, चाहे किसान हो, चाहे हमारा आदिवासी लोकगीत हो, चाहे पंचायत हो, चाहे नरेगा हो, चाहे स्कूल हो, सभी से मिलते, क्योंकि एक सामुदायिक रेडियो है, सामुदायिक द्वारा प्रसारण होता है, तो हमें बहुत खुशी मिलता है सबसे मिलते, तो उनका भाव और भावना को जन जन तक पहुंचाने के लिए रेडियो मधुबन एक मंच देती है। चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे आस्था हो, चाहे विश्वास हो, चाहे स्वच्छता हो, चाहे कृषि हो, चाहे पशुपालन हो, सभी से मिलते, तो आज हमें खुशी है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की जो बगेरी कुआ में हम पहुँचे, क्योंकि यहाँ के जो देखभाल करते हैं हमारा माताएं बहन इतने सुंदर रूप में भाव और भावना को लेकर काम करते हैं, और इसका यहीं से बगरी से पानी, फल, फ्रूट्स, सब्जियां जाती है, गन्ना, केला, सब चीज़ यहाँ लगा हुआ है कुआं में, और इसको देखभाल करने के लिए माताएं यहाँ के आसपास बगरी, चंडला, धमसरा, गिरबर आसपास लोकल लोग यहाँ पर आकर अपना जीविका निर्वाह अर्थ कर्म धंधा करते हैं, जिसको कुछ पैसा भी मिलता है, और भावना इतना पैसा तो नहीं मिलता, लेकिन परमात्मा का जो कुआं घर है तो उसमें काम करते हैं। तो आज हमें खुशी है, एक गीत प्रस्तुत हो गया सब सामूहिक रूप में, सभी अपना अपना नाम बताएंगे, हमें खुशी होगा, क्योंकि हमारा पहचान हमारा आवाज़ से होगा, बोले हमारा वीडियो नहीं है लेकिन आवाज़ लगेगा। तुम्हारा हूँ नाम
1: कुमारी, फुली कुमारी।
0: और पढ़ाई करती तुम फुली?
1: हाँ।
0: तुम बताओ?
1: जीजाबेन।
0: जीजाबेन बहुत अच्छा।
1: इंद्राबेन।
0: इंद्राबेन कहाँ से तुम? कौन सा गाँव? बगेरी।
1: हाँ।
0: बगेरी, सब बगेरी के? सब बगेरी, तो हाथ उठाओ। वेरी गुड, सभी हमारा बहन अच्छा से सेवा कर रहे हैं ना, सबको खुशी मिलता है यहाँ पर, पैसा भी मिल जाता टाइम पर।
1: हाँ।
0: कोई दिक्कत नहीं?
1: नहीं।
0: कोई दिक्कत नहीं?
1: ना।
0: कोई दिक्कत नहीं बहन? घूंघट कर रखती है तो पता नहीं चलता, यहाँ पर सास बैठे होंगे, है ना, सास है क्या ये? हाँ, इसीलिए तो होता है, बहुत अच्छा, हम भी सम्मान करते। चलिए एक प्रस्तुति होगी, एक लोकगीत, आदिवासी जो मिठास है आदिवासी गीत में, जो शुद्धता है, जो भोलापन है, जो अपनापन, वो बच्चे भी बड़ों को देखकर सीख जाते हैं, छोटे बच्चे भी बड़ों को देखकर सीख जाते हैं, शादी में, विदाई में, मेला में, गनगौर में जाते हैं। तो चलिए आज बगरी से एक प्रस्तुति सुनाएंगे, हमारा श्रोता मित्र ध्यान से सुने।

0: রে লাড়ি রে
1: কুড়ে বাপ রে নারে হুই গে মরে রে লাড়ি রে।

0: बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर प्रस्तुति के लिए। हमें बहुत खुशी है इस तरह कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर जब भाग लेते हैं, क्योंकि एक सामुदायिक रेडियो है, सामुदायिक द्वारा सामुदायिक के लिए प्रस्तुति करना थेमर वास्ते थेमर लिए और थेमर कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते। तो इस तरह जब अपना आवाज जन जन तक पहुँचेगा, हमारा जो आदिवासी गीत में जो भोलापन जो आवाज सही में बहुत खुशी लगता है। हमारा श्रोता मित्र ध्यान से सुन रहे और इस कार्यक्रम में सभी लोग बढ़ चढ़ हिस्सा ले, और हमारा साथ फुली बहन जी है। फुली बहन, एक गीत जो गीत गाए हैं उसका अर्थ भावार्थ क्या है, व कौन सा समय में ये गीत गाते हैं, चाहे होली में कि दिवाली में कि शादी में ये जो गीत गाए, मुझे थोड़ा बहुत समझ आया, बाकी तो समझ नहीं आया, लेकिन आप बताना ठीक है, ये गीत किस ऊपर में गीत गाए, ये शादी का गीत ना विदाई का गीत, क्या गीत?
1: शादी का
0: गीत। ये लड़का ना लड़की शादी के में गाते ना दोनों का, लड़का वाले ना लड़की में?
1: लड़की में।
0: लड़की जब जाती है शादी करके दूसरा घर में तो ये गीत गाती, क्यों गाते माँ बाप? लड़की छोड़ के जाते तो दुख लगता है इसलिए। तो श्रोता मित्र ध्यान से सुन, हमें जो जो आदिवासी लोग नहीं है जो सुन रहे जनरल लोग, तो उनको भी समझ में आएगा जो ये शादी का टाइम जो विदाई होती है, लड़की पराया घर जाते हैं, अपना घर बना देते हैं, पहले तो अपना घर से पेयर घर जा छोड़ कर जाते ससुराल घर, है ना। तो फूली तुम भी कभी जाएगी ना ससुराल घर, जाएगी तुम?
1: नहीं
0: नहीं जाएगी क्योंकि इतना दुख दुख देकर क्यों जाएगी भाई, माँ बाप दुखी हो जाते, इसलिए वो ठीक ही बोला, पढ़ा लिखी है इसलिए फूली बोला मैं नहीं जाऊंगी भाई तो ऐसे होना चाहिए, लेकिन क्या है समाज का रीति रिवाज को मानना पड़ता है, माँ बाप का भी कितना दिन रखेंगे, इसलिए माँ बाप का जो बोझ लगता है, लेकिन बोझ नहीं है, माँ बाप आपके पास माँ बाप रहेंगे तो बोझ लगेगा आपको?
1: नहीं
0: लगेगा, माँ बाप कभी बोझ नहीं होते, लेकिन समाज में जो रीति रिवाज है उसको मानना पड़ता है और जाना पड़ता है पराया घर, इसलिए लड़की को छोकरी को पराया सोचते हैं, लेकिन पराया नहीं है। फूली हमारा होशियार है, पढ़ा लिखा है, इसलिए बोलते भाई हम ससुराल घर नहीं जाएंगे, माँ बाप को दुख क्यों दूँ, ऐसे। हाँ चलिए कार्यक्रम को यहीं पर रखते हैं, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद और एक प्रस्तुति होगी, क्योंकि हमारा जो आवाज में जो मीठा से एक के बाद एक गीत मिलेगा, जब भी आदिवासी अंचल में जाते हैं, चाहे बगरी हो चाहे धमसरा हो चाहे फूलाबाई खेड़ा हो चाहे भूला हो, जहाँ भी जाते हैं तो सभी बढ़ चढ़ हिस्सा लेते हैं। तो एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद और एक प्रस्तुति सुनेगी जीजा जी से जीजा तो जीजा भी हंस रही है, लेकिन वो भी अपना आवाज सुनाएगी, उनका दोस्त का साथ सुनते रहिए कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल।

रेड लाइट होने पर हमेशा अपनी गाड़ी रोक लेना चाहिए और उसे ग्रीन होने पर ही आगे बढ़ाना चाहिए। ऐसा ना करके हम अपनी और दूसरों की जान खतरे में डाल सकते हैं। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

0: तो श्रोता मित्र ग्रामवासी खासकर हमारा इस प्रोग्राम को सुन रहे और हमें खुशी है इस तरह। मुझे तो इतना समझ में माउंट आबू गाड़ी चलाने का, लेकिन गाड़ी जब चलाते हैं इसमें हमें सीख भी मिलना चाहिए, बहुत दुर्घटना भी होता है गाड़ी में, जब सीट बेल्ट हो चाहे हेलमेट पहनना चाहिए और सड़क का जो नियम सरकार ने बनाया उसको भी मान कर चलेंगे तो हमारा सुरक्षा, क्योंकि आपको कोई घर में इंतजार कर रहा है इसलिए आपने ध्यान से चलाया गाड़ी। और इस ये तो मुझे लग रहा है गाड़ी चलाने जितना मजा है उतना सजा भी है, थोड़ा बहुत इधर इधर होगा तो गाड़ी एक्सीडेंट कर लेता है, जो एक्सीडेंट करने के बाद फिर घर वाले कितना इंतजार करते हैं भाई कब आएगा वापस आस्था से, लेकिन हमें सड़क का जो नियम है उसको भी मानना चाहिए। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा कहते हैं, जितना सड़क का जो नियम कानून है कैसे चलाना चाहिए, कौन सा साइड में जाना है, क्या लाइट वगैरह दिखाना है, हॉर्न कब देना है, ये सब जानकारियाँ रहेगा तो हमें अपने को सुरक्षा महसूस कर पाएंगे और दूसरों को भी सुरक्षा दे पाएंगे। और इस गीत में भावार्थ भी क्या है वो भी सुनाएंगे, क्योंकि हमारा फुली भाई है ही है, फुली बहुत अच्छे से सुन रहे गीत को और साथ भी दे रहे थे। और ये गीत का भावार्थ क्या है, माउंट आबू और जो अपना आदिवासी गीत में जो बात बताए किस उद्देश्य व किस अर्थ से लेते हैं भाई, इसका सीख क्या मिलती है, इस गीत का अर्थ क्या है, मैंने किस उद्देश्य से गाते हैं जो माउंट आबू गाड़ी चलाते हैं, इस मैंने तो सड़क सुरक्षा के बारे में बताया लेकिन आदिवासी जो गीत में क्यों गाते हैं गीत,
1: मेला
0: जाते तो गाड़ी में जाते हैं, अच्छा मेला में जैसे परिक्रमा लगाते हैं आबूराज परिक्रमा भी कराते हैं है ना, तो मेला में भी जाते तो गाड़ी चलाने का टाइम में ध्यान से चलाना चाहिए। तो और ये भाव को लेकर कुछ जो कि आदिवासी लोग तो समझ जाते होंगे ये गीत से, और जो लोग नहीं समझ पाते तो गाड़ी और माउंट आबू जब जाते तो ध्यान से, तो क्योंकि माउंट आबू का रास्ता तो कितना उगड़ पुगड़ है, तो उसको लेकर भी हमें सतर्क रहना चाहिए। चलिए एक ब्रेक लेते हैं, सभी को धन्यवाद देते हैं, सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गाँव मेरा अंचल रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। ये था खासकर बगरी स्थित जो माताओं बहनों का आवाज, यहाँ काम धंधा के लिए आते हैं, कुछ लेते हैं छोटा सी ब्रेक, एक छोटी सी बहन उनसे बात करेंगे लेकिन अल्प विराम का बाद।

0: रुक रुक, भाई साहब इधर आओ, कहाँ जा रहे हो जरा बताओ। लाल बत्ती में दिखता नहीं आपको, सामने लोग रोड क्रॉस कर रहे हैं फिर भी गाड़ी पकाए चले जा रहे हो हैं?
1: अरे हवलदार साहब, एक बार लाल बत्ती में निकल गया तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा।
0: ओए पहाड़ भले ही ना टूटे, लेकिन बेमतलब यमराज के रजिस्टर में एक नाम जुड़ जाएगा। इसलिए जब भी लाल बत्ती हो तो बोलो पहले आप, समझे?
2: गाड़ी चलाते वक्त पहले आप का रूल अपनाइए और अपने शहर का ट्रैफिक स्मूथ बनाइए। ब्रह्मा कुमारीज के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
3: नमस्ते, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपको बगरी कुआं में पहुंचे और बगरी कुआं के जो माताएं गीत तो गाए, उनका गीत भावना को भाव को आप समझ गए होंगे, क्योंकि आदिवासी क्षेत्र में जब जाते हैं आदिवासी गीत ना हो ये हो ही नहीं सकता। और इस कार्यक्रम को लेकर जब ब्रह्मा कुमारी का बगरी कुआं में पहुंचे तो माताओं का गीत सुने, इस तस्प से उसको जो केयर टेकर जो देखभाल करते एक भाई जी है तो उनको भी स्वागत करके, उनका परमिशन बिना हम तो यहाँ आ नहीं पाते थे, लेकिन वो बोला भाई ये उनका देन है, भावना है, बोला हमारा माता है बहन का भी आवाज़ आप जन जन तक सुनाइए, उनका भाव को उनका गीत को प्रोत्साहन दीजिए, क्योंकि लोग कल गीत में जो शुद्धता है वो आज देखने को मिल रहा है, आप भी सुन रहे हैं। और इस कार्यक्रम को सजाने के लिए हमारा साथ एक भाई जी है जो केयर टेकर है, यहाँ के जो देखभाल करते हैं। हेलो, अपना नाम बताइए।
4: सुमित चौहान।
3: सुमित चौहान, वाह, कहाँ से आप आए?
4: यूपी।
3: यूपी से आए, वाह, इतना दूर से यूपी, मतलब ऊपर आप बुंदेलखंड से आए हैं। और यहाँ पर क्या आप कितना दिन से देखभाल कर रहे हैं?
4: काफी सालों से हो गए, एक डेढ़ साल हो गया। यहाँ बाबा की सेवा करने में बड़ा मजा आता है।
3: अच्छा लगता है। जी जी, हाँ, बाबा का सेवा मतलब परमात्मा का काम है, शिव बाबा कहते
4: हैं। शिव ही शक्ति है, हर जगह शिव ही शक्ति है, बाबा की ये है वो है। आप बोलेंगे कि भगवान सिर्फ एक ही है, कोई भी हो, मतलब जितने अपने अनुभव से, जितना मैं बता रहा हूँ अपने अनुभव से, जितना मैंने सुना है, जितना मैंने सीखा है, मतलब भगवान सिर्फ एक ही है। मानते मतलब बहुत लोग हैं कि ये भगवान वो भगवान, राम सिर्फ एक ही हैं, शिव सिर्फ एक ही हैं।
3: तो उसी प्रेरणा से आप यहाँ पर सेवा दे रहे परमात्मा का काम में। और ईश्वर विश्वविद्यालय का जो बगर स्थित में यहाँ पर केयर टेकर यूपी से आए हैं, जैसे आपने इंट्रोडक्शन में बताया। और जो बगर में आप देखे होंगे कितना एकड़, मुझे लगता है 4-5 एकड़ का जमीन है।
4: हाँ हाँ, कम से कम
3: यहाँ से पानी, यहाँ मधुबन जो शांतिवन तलेटी जो ब्रह्मा कुमारी को पानी, शुद्ध पानी यहाँ से जाता है।
4: शुद्धता यहाँ की, शुद्धता अगर आएंगे यहाँ, वातावरण यहाँ का अगर देखेंगे, शाम को आप यहाँ का नजारा देखिए, फिर आपको पता चलेगा कि हाँ यहाँ कुछ शांति है। यह इसीलिए तो यहाँ सब कोई आता है, यहाँ राजस्थान में जो ब्रह्मा कुमारी आश्रम है, इसीलिए सब आते हैं कि यहाँ शुद्धता पवित्रता और हरा भरा मतलब जो देखने को यहाँ मिलता है, जब भी लोग सब लोग यहाँ आते हैं। नहीं तो ऐसे कोई देखो हर जगह जाते हैं, ऐसे तो कोई जाता नहीं, जब यहाँ कुछ विशेष खास बात होगी जब ही तो यहाँ कोई आता है। इसीलिए बस
3: यहाँ पर हम देखे पूरा हरा भरा ग्रीनरी, जो प्रकृति का जो देखना है, पर्यावरण को देखना होगा तो यहीं पर देखो पर्यावरण कितना, सब चीज का फल, हर सीजन में फल फल मिलता होगा। मुझे लग रहा है जितना कटहल से लेकर आम से लेकर पपीता सब चीज मिलता है ना,
4: हर चीज है यहाँ पे, कोई चीज की कमी नहीं है। नींबू से लगा के आम जामुन वामुन कटहर हर चीज मिलेगा यहाँ पे। गुलाब, गुलाब के पौधे लगे हैं, बगिया लगा है गुलाब का पूरा, बाबा के लिए चढ़ते हैं गुलाब तो बाबा के लिए गुलाब लगाना पड़ता है।
3: और जब गर्मी का समय होता है तो लू लगता है तो गन्ना को कौन भूल पाएंगे,
4: गन्ना भी लगे हैं अपने पास गन्ना। सुबह सुबह बढ़िया आराम, जैसे आप तो रस पीते हैं, पहले तो शुद्धता थी, पहले मतलब दांत से तोड़ के बढ़िया चूहते थे,
3: अभी भी लोग करते हैं उस तरह।
4: अच्छा, उस तरह करते हैं अपन, नहीं अब तो काफी बदलाव हो गया है, अब मशीनें आ गई हैं, ऐसे वो हो गई हैं कि गन्ने का जूस निकालो ये करो, नहीं जो पहले के मतलब आदमी था तो खेतों से तोड़ा वहीं से चलाया चबाते हुए आराम से, मजा आता था पहले, अब क्या है सब चीजें बदल गई हैं।
3: जी जी,
4: सब जैसे बदले वैसे आदमी भी बदल गए सब।
3: सुमित जी, आपका नाम बहुत प्यारा है, कौन रखा है?
4: ये मेरी मम्मी माता श्री।
3: अच्छा, और आपका पहचान दुनिया में नाम जो दिया उसी नाम से जानते लोग?
4: मेरे जो माँ बाप हैं वो भगवान का रूप हैं और मैं उन्हें भगवान मानता भी हूँ, उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया, मैं इतना बड़ा हो गए थे उनके लिए, यही मतलब मेरे लिए यही बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है, मुझे पैदा करके मैं इतना बड़ा हो गया, अब मैं खुद उनके लिए कुछ कर पाऊँ ये मैं खुद करता हूँ, मतलब सोचता हूँ कि मैं उनके लिए कुछ करूँ।
3: इसलिए एक व्रत जिसको होता है तो माता पिता का सेवा श्रवण कुमार जैसे काम करते हैं। और कोई भी लड़का हो चाहे लड़के हो,
4: माता श्री का प्यार ऐसा होता है, अगर बच्चे ने खाना नहीं खाया तो मना मना माता श्री खाना खिलाती है। देखो माँ का प्यार माँ ही का प्यार होता है, पिता तो डांट लेंगे पर माँ माँ ही होती है।
3: माँ का अवदान को कभी भूलने पे, एक तो घर में जैसे लोग की माँ है, ब्रह्मा माँ भी है वो भी, तो तुम्हें वो माता सब पिता तुम्हें वो कहते भगवान को, तो भगवान भी माता
4: पिता तुम्हें पिता ये है वो सब, मतलब
3: परमात्मा का कृपा रहता है, तो बहुत अच्छा लगा। और जब सुमित से मिले तो एक इशारा से सभी माताओं को एकत्रित कर दिए, जो कि यहाँ का जो गार्डन को कहे जाए कुआं का जो खेती बाड़ी होता है उसको देखभाल करने के लिए यहाँ का लोकल लोग से हम जो गीत सुने बहुत मजा आया हमें भी, और आप लोग भी मजा आया होगा, क्योंकि एक लोकल में जो लोग का शुद्धता भोलापन है कभी उनको मौका मिलता नहीं, कहाँ पर मंच मिलता नहीं, क्यों जब इस तरह आकाशवाणी में आते हैं बा टीवी चैनल में आते हैं तो उनको भी खुशी लगता है, उनका परिवार भी सुन चलो हमारा बात को भी कोई सुन रहा है, हमारा आवाज़ को भी दुनिया सुन रहे, क्यों हम क्या कहना चाहते, चाहे गीत का माध्यम से हो, जैसे हमारा सुमित भाई अभी अपना दिल का बात रखा, माता पिता का अवदान को कभी नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि माता माता ही होता है, माता का स्थान कोई नहीं ले पाएगा, इनका ये भावना है। और हम सब माताओं का भी कदर करते हैं, माता पिता का, क्योंकि उनका देन है, तो बहुत अच्छा महसूस हो रहा है इस कार्यक्रम को सुंदर रूप में सजाने के लिए, हमारा साथ सुमित जब इस तरह सजाए तो हमें खुशी लगा। और वातावरण प्रकृति का गोद में बसा हुआ, प्रकृति है तो हमें, तो प्रकृति में जैसे पेड़ पौधा एक प्रकृति का देन है, पेड़ पौधा कुछ लेते नहीं वो देते रहते हैं, तो प्रकृति के बारे में पेड़ पौधा के बारे में क्या कहना चाहेंगे सुमित जी?
4: पेड़ पौधा देखो सबको लगाना चाहिए, पेड़ पौधे से क्या है, जो हमारा ये वृक्ष देख रहे होंगे आप, आम का पेड़ कितने सारे फल दे रहे हैं, छोटा सा है अभी, कितना सारे
3: 6 फुट 7 फुट है,
4: हाँ, और देखो कितने फल लगे हैं, अब यहाँ जो इतने पौधे लगे हैं इनकी छाया देखो कितनी अच्छी, यहाँ ठंडक मतलब शुद्ध वातावरण यहाँ मिलता है, जो मतलब ये पौधा है जो लगाते हैं आप, कल तो देखो कूलर एसी और पंखे कोई काम के नहीं, जो शुद्ध मतलब जो पहले की जो वो पहले मतलब शुरू में क्या होता था कि मतलब आदमी मतलब खटिया डाल के सो जाता था, बढ़िया ठंडाता था आराम से, अब तुम 10 मिनट नहीं खड़े हो सकते बाहर, अब आदमी क्या है ना कि एसी की हवा कूलर की हवा पंखे की हवा बस यही है, अब जो शुद्ध कोई चलना नहीं चाहता, शुद्ध कोई लेना नहीं चाहता, बस अब मैं इतना ही कहूँगा कि कुछ नहीं है, बस यही है कि जो जैसे चलता है बस चलने दो,
3: सबका सोच ऐसे होने से चलने दो भाई, हमारा जो पीढ़ी जो आएंगे
4: साथ वैसा सबका विकास
3: ऐसे हम चलते रहेंगे तो हमारा जो आने वाले पीढ़ी को उनके लिए भी तो रखना चाहिए ना, हमें पेड़ पौधा हम काटेंगे अपने लालच का चलते ग्रीडी होकर हम ले लेंगे, तो वृक्ष फल फूल सब काटेंगे तो क्या होगा,
4: ये जब
3: बारिश भी नहीं होगा टाइम
4: कुछ टाइम पर ना बारिश होगी ना कुछ होगा, अभी देखा होंगे कितनी अभी जैसे यहाँ वहाँ के पेड़ पौधे कटे हैं, कितनी बारिश आई ये बह गया वो बह गया, बाढ़ आ गई ये हो गया, प्रगति फिर टाइम टाइम से कुछ देती भी नहीं ना, फिर ना बारिश देती ना कुछ देती, अगर जब बारिश नहीं होगी जब बारिश देगी, बारिश मतलब जब नहीं चाहिए तो बारिश देगी, पर यही है कि अब मैं यही कहूँगा कि ठीक है जो भी है
3: ठीक है, इतना नाराज आपने जो बात बताया बहुत अच्छा बात बताया, और फल फ्रूट
4: मेरी एक और बात है, मैं अपने मतलब जो मतलब आने वाली पीढ़ियों से ये कहना चाहूँगा कि आने वाले भविष्य में पेड़ पौधे लगाएं और प्रगति को बचाएं, और अगर ऐसा नहीं आप करते तो फिर आपका बहुत कुछ वो नुकसान हो ये वो हो जाएगा, इसलिए कहता हूँ सबकी रक्षा करो, मतलब गौ माता की भी अपने माता पिता की सेवा करो, पेड़ पौधे लगाओ, आप मतलब अपने से बड़ों की इज्जत करो, आजकल तो इज्जत नाम की कोई चीज़ ही नहीं रह गई, आप जैसे देखते होंगे आदमी यहाँ गुटखा खा के थूक दिया वहाँ खा के थूक दिया, बड़े बड़े सयानों की कोई मतलब इज्जत ही नहीं है, अब
3: इसका कारण वजह क्या है, क्यों ऐसे करते हैं, ये तो खराब है ना,
4: ये तो खराब है बस, वो क्या समझाए, यही तो है ना कि मतलब संगत जैसी संगत करेंगे, जैसे हम आपसे मिले हमें यह अच्छा लगा कि आप मुझे अच्छी से शिक्षा दे रहे हैं, जैसे आदमी के साथ आदमी जैसा बैठेगा तो वैसा आदमी सीखेगा,
3: जैसे संग ऐसे रंग,
4: जैसे संग वैसे रंग
3: जैसे पानी
4: जैसा देश वैसा भेष,
3: जैसे पानी वैसे पानी,
4: वैसे पानी
3: जैसे पियेंगे तो ऐसे दूध पियेंगे तो क्या निकलेगा, और दारू पियेंगे तो क्या
4: निकलेगा, आजकल तो इतने शराब इतने स्टूडेंट हो रहे हैं वो हो रहे हैं सब ये शराब
3: सब तो हो रहा है, इसलिए अलग क्लास का इसका अच्छा दुनिया हलाने के लिए हम सब अच्छे बनेंगे, इसलिए हमारा अच्छा सोच हो, हमारा सोच जब अच्छा होगा हमारा आउटपुट भी अच्छा होगा, जैसे इनपुट ऐसे आउटपुट, जो खाएंगे जो पहनेंगे जो देखेंगे जो सोचेंगे वही से निकलेगा, तो इसलिए हमारा सोच को अच्छा, और हमारा अच्छा सोच कैसे आएगा, हमारा अच्छा सोच कैसे हम अच्छा थिंक करें, इसलिए परमात्मा भगवान को याद करके अपना कर्म को श्रेष्ठ बनाएंगे तो अच्छा बन पाएंगे, तो इन शुभ भावना के साथ सुमित जी को देते इजाजत, फिर हम भी लेते हैं ब्रेक, ब्रेक के बाद और एक प्रस्तुति गीत सुने कहेंगे, माताएं बोलते हैं वंशम और हमें और एक गीत गाना है, हमें और एक गीत गाना है बोल रहे, माताओं को भी लेंगे, लेकिन अल्प विराम के बाद सुमित को बहुत बहुत धन्यवाद, सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा आंचल रेडियो मधुबन 107.8 FM पर।

0: चले कार्यक्रम का आगे बढ़ाते हैं। हमें खुशी आज बड़ों का साथ छोटे भी कम नहीं है, हमारे साथ दो छोटी कन्याएं हैं तो उनको भी स्वागत करेंगे। हेलो, क्या नाम है?
1: फुली कुमारी।
0: फुली कुमारी कौन सा क्लास में अभी? फुली
1: 11वीं में।
0: बस अगला साल तो आएगा 12वीं क्लास और उसमें तो आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, है ना? अभी तो भी मेहनत करते हैं और बाद में। तुम्हारे घर में और कौन कौन है फुली?
1: पापा, मम्मी, बहने, भाई।
0: कितना भाई कितना बहन?
1: 7 बहने 1 भाई।
0: बाप रे, 7! हम तो पहले भी सुना था 7 बहन कम है, शक्तियाँ 7 शक्ति कम नहीं है, पूरा बहुत अच्छा परिवार है। और शक्ति सेना का, पांडव सेना और शक्ति सेना का साथ चल रहे तो सबको अच्छा लग रहा है। और सभी पढ़ाई करते सभी बहन?
1: हाँ।
0: अरे वाह, पैसा कहाँ से आता है इतना बहन को? पैसा पापा क्या करते, पैसा कहाँ से लाते हैं?
1: काम करते, पाइपलाइन का।
0: पाइपलाइन का काम, पैसा बहुत कमाते हैं। वाह, पाइपलाइन का काम करते हैं, चलिए बहुत अच्छा लग रहा है। और फुली, तुम्हारा अच्छा दोस्त का नाम बताओ?
1: सोनिया।
0: सोनिया कौन सा क्लास हो?
1: 7वीं
0: क्लास। और कौन सा स्कूल का पूरा नाम बताइए फुली, तुम्हारा स्कूल का पूरा नाम?
1: राजकीय उच्च मध्य विद्यालय चंडेला।
0: हाँ, चंडेला, सरपंच गणेश राम है ना? गणेश राम पहले सरपंच था ना चंडेला का? बहुत अच्छा। चंडेला में और कौन सा गांव बताओ?
1: तेलपुर, अम्बावीरी, गिरवर बाट और चनार।
0: अम्बावीरी?
1: अम्बावीरी बोला था।
0: अरे वाह। और तेलपुर फली
1: बोल दिया।
0: अरे ये तो होशियार है मेरे से भी, तो बहुत बहुत धन्यवाद। स्कूल में प्रिंसिपल कौन है चंडला का? सुनीता मैडम जानते हैं?
1: नहीं मैडम आए।
0: अच्छा, और एक छोटी सी कन्या है। हेलो, क्या नाम है?
2: सिरमी।
0: हाँ, कौन सा क्लास?
2: 7वीं।
0: स्कूल में क्या क्या मिलता बताओ?
2: कपड़े और खाने का।
0: वाह, बहुत अच्छा। माता जी गीत गाएंगे।

बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर प्रस्तुति के लिए। ऐसे एक को देखकर एक बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते, भाग लेते और अपना बात को रखते। सुंदर प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी को नाम का साथ। आज का कार्यक्रम को यहीं पर रखते, फिर कल मिलेंगे इसी वक्त इसी समय, लेकिन अल्प विराम का बाद सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गाँव मेरा अंचल रेडियो मधुबन 107.8 FM पर।

मैं हूं जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी ओंकारानंद सरस्वती जी परमात्मा मठ प्रयागपीठ से आप सभी सुन रहे श्रोताओं को ब्रह्मा कुमारी इसका सामुदायिक रेडियो स्टेशन से रेडियो मधुबन सुनते रहो मुस्कुराते रहो। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारा शुभ प्रेम। ओम शांति।

रेड लाइट होने पर हमेशा अपनी गाड़ी रोक लेना चाहिए और उसे ग्रीन होने पर ही आगे बढ़ाना चाहिए। ऐसा ना करके हम अपनी और दूसरों की जान खतरे में डाल सकते हैं। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

नमस्कार, मैं हूं बसवराज बबलेश्वर और आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: बातें तो बहुत होती हैं, लेकिन कुछ बातें याद रखने लायक होती हैं।
1: भगवान के साथ संबंध, the relationship with God, and friends, believe me, शायद हमने भगवान को सही अर्थ में नहीं पहचाना। Two good reasons. एक तरफ भगवान को कहते वो प्रेम का सागर है, और दूसरे तरफ आज हम उस प्रेम के सागर से सबसे ज्यादा डरते हैं। We have become God fearing rather than God loving. आप कहेंगे सर नो वी डोंट फियर गॉड। देन देयर इज अ सेकंड गुड रीजन व्हाई वी हैव नॉट अंडरस्टूड गॉड, बिकॉज़ फ्रेंड्स मोर देन 80% ऑफ द वॉर दैट इज फॉट टुडे इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन द नेम ऑफ गॉड। चाहे वो अमेरिका अफगानिस्तान वार हो, अमेरिका इराक वार हो, जम्मू कश्मीर प्रॉब्लम हो, गुजरात प्रॉब्लम हो, दिल्ली ब्लास्ट हो, हैव वी रियली अंडरस्टूड गॉड? किसी ने क्या खूब कहा है, काबा है घर रहीम का, काशी है घर राम का, दोनों ही बात तो एक है, झगड़ा है बस नाम का। वी आर फाइटिंग इन द नेम ऑफ गॉड एंड वी कॉल आवरसेल्व्स इंटेलेक्चुअल्स। फ्रेंड्स लेट्स अंडरस्टैंड द नेम वेरी क्लियरली। हिंदूस मनाते हैं दिवाली और हमारे इस्लाम भाई बहने मनाते हैं रमजान, लेकिन थोड़ा सा कॉमन सेंस तो हम समझ सकते हैं। अरे दिवाली में है अली ALI तो रमजान में है राम RAM। दिवाली में है अली, रमजान में है राम। दिवाली में है दिल DIL तो रमजान में है जान ZAN। अरे उस प्रेम के सागर को दिल व जान, सिख व प्रेम से याद करना है, ना कि उसके नाम पर युद्ध करना है। तो परमात्मा के साथ वो संबंध जोड़ना जरूरी है। हमें ये समझ होनी चाहिए कि हम सभी जो आत्माएं हैं उस एक परमात्मा के संतान हैं, एंड दैट इज अ ब्यूटीफुल रिलेशनशिप दैट वी कैन एस्टैब्लिश विद द ऑलमाइटी गॉड, एंड दिस इज व्हाट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और उस परमात्मा पर संपूर्ण निश्चय भी होना बहुत बहुत जरूरी है। और जब हम परमात्मा के साथ संबंध जोड़ लेते हैं तो उनका जो स्नेह है, क्योंकि परमात्मा को कहते हैं वो स्नेह और प्रेम का सागर है, तो ऑटोमेटिकली वो स्नेह और प्रेम हमारे में आने लगती है और हमारा जीवन फिर से प्रेममय, सुखमय और शांतिमय बन जाता है। तो हम सबको एक ऐसा कार्य करना है जिससे समाज जो है फिर से ऐसे सुखमय बन जाए।

मैं गीत सागर रेडियो मधुबन के सारे श्रोताओं को बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। आप सुन रहे हैं गीत सागर को रेडियो मधुबन पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: हेलो, हाँ हाँ पहुँचा दूंगा, समय से पहुँचा दूंगा।
1: इतना इतना इतना भाई, क्या पहुँचा दोगे हैं? भाई कहाँ पहुँचा दोगे? भाई मुझे तो लगता है ऐसे ही बीच रोड पे मोबाइल लेकर घूमोगे तो तुम ही ऊपर पहुँच जाओगे। भाई सड़क क्रॉस करते समय मोबाइल जेब में रखो और जहाँ मन किया वहीं से रोड क्रॉस कर लोगे हैं? कोई ये जेबरा क्रॉसिंग क्या जेबराओं के चलने के लिए बनाई है? और जब भी रोड क्रॉस करना है तो जेबरा क्रॉसिंग से ही करना, क्या समझे? हाँ, मुझसे गाड़ी वाले तो क्या पैदल वाले भी नहीं बच सकते, क्योंकि ये है मेरी सड़क और मुझे कहते हैं हवलदार कड़क।
2: पैदल यात्री सड़क क्रॉस करते समय हमेशा जेबरा क्रॉसिंग का इस्तेमाल करें। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

0: मधुबन हमारे जीवन को सुखमय व समृद्धशील बनाता है। सभी प्रोग्राम्स को बेहतरीन अंदाज में नवीनता को लिए बेहतरीन क्वालिटी के साथ
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 मेगाहर्ट्ज पर, 107.8 FM पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

मैं हूं सुनील खरे, मैं ग्लोबल हॉस्पिटल आबू रोड में काम करता हूं। अब सुनिए आपके अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन को 107.8 FM पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

ब्रह्म कुमारी संस्था के साथ बहुत पुराना हमारा रिश्ता है, मेरे ख्याल से 25 साल से भी ज़्यादा हो रहे होंगे, और बहुत अच्छा लगता है। इतने सिंपल लोग हैं, सबसे मिलके बहुत अच्छा लगता है। इतनी शांत प्रकृति के लोग हैं, इतनी दुनिया में शांतता हो सकती है ये उनको देख के महसूस होता है और अच्छा लगता है। उनकी सीख में सबसे बड़ी बात है कि अपने अंदर किस तरह शांति पैदा की जाए, इसलिए उनका लोगो भी है ओम शांति। जब भी किसी को मिलते तो ओम शांति बोलते हैं। और सबसे बड़ा दुनिया का वुमेन लेड ऑर्गेनाइजेशन है ये, और मैं फिर से बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ इस संस्था को।

0: हेलो सर, मैं स्वाति बोल रही हूँ आपके खाई बैंक से। सर आपका एटीएम कार्ड एक्सपायरी होने वाला है सर।
1: सावधान रहें, ये एक स्कैम कॉल है। अपना ओटीपी या एटीएम पिन किसी के साथ भी शेयर ना करें।

0: रेडियो मधुबन 107.8 FM सुन रहे हैं आप, और कार्यक्रम है लव यू जिंदगी। जिंदगी से प्यार वैसे तो सभी को होता है, लेकिन दोस्तों कभी कभी कुछ ऐसे मौके आते हैं जब हम वो प्यार करना भूल जाते हैं और हमें एहसास कराना पड़ता है कि जिंदगी कितनी खूबसूरत है। और समझ लीजिए, लव यू जिंदगी ऐसा कार्यक्रम ही नहीं, ऐसा मौका भी है। तो आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग, अपने इमोशंस को पढ़ेंगे, खुद को बेहतर जानेंगे। हमारे साथ जुड़ गए हमारे एक्सपर्ट्स। सबसे पहले हम स्वागत करते हैं कल्पना जी का, जो कि ग्लोबल अस्पताल से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप साइकोथेरेपिस्ट भी हैं, आप स्पिरिचुअल काउंसलर भी हैं, और आप अनेक एपिसोड्स के माध्यम से हमें गाइड करते रहते हैं। ये आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद आरुषि जी, बहुत अच्छा लग रहा है फिर से एक बार श्रोताओं से रूबरू होते हुए। हम जो कुछ भी लाइफ में सीखते हैं, जब उसे दूसरों के साथ शेयर करते हैं, तो जो खुशी मिलती है, संतोष मिलता है, वही वो चीजें है जो हमें अपने रेडियो के श्रोताओं से जोड़े रखती है।
0: बिल्कुल। और हमारे साथ जुड़ गए हमारे दूसरे एक्सपर्ट त्रिनिधि जी, जो कि मोटिवेशनल स्पीकर हैं और साथ साथ जाने माने एंकर और आरजे भी है। त्रिनिधि जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है।
2: नमस्कार आरुषि जी, कल्पना जी नमस्कार। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है लव यू जिंदगी के और एपिसोड में वापस जुड़ के, और मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि जितना हमारे श्रोता मित्रों को हर एपिसोड में कुछ नया सुनने और समझने को मिलता है, इस एपिसोड में मुझे भी कुछ नया सुनने और समझने को मिलेगा, और इसलिए खुशी होती है हर बार इस कार्यक्रम
0: जुड़ने के लिए। और जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में बातचीत की थी इमोशनल अवेयरनेस के बारे में और रेटिंग सिस्टम के बारे में, आपने बताया था कल्पना जी, किस प्रकार से हम अपने इमोशंस को रेट करते हैं कि हम 2 पे हैं, कि 5 पे हैं, कि 8 पे हैं। हम जो बातचीत कर रहे थे उसके आखिर तक हम एक क्वेश्चन पे आके रुके थे कि अगर मान लीजिए जेलसी है, या मुझे कोई ऐसी चीज है जो पसंद नहीं आ रही है, या मुझे ऐसा लग रहा है ये क्यों मुझसे आगे बढ़ गया, या मैं कहाँ रह गई, वो कंपैरिजन आ जा रहा है, उसको रेट करने से क्या फर्क पड़ता है? मतलब मुझे पता है मैं जेलस हूँ, या फिर कभी कभी मैं अवेयर नहीं हूँ कि मैं जेलस, सामने वाला ही गलत लग रहा है, तो इसको रेटिंग करने से क्या मदद मिलती है या डील कैसे किया जाता है, कुछ इस बारे में अगर आप कंटिन्यू करें।
1: जी बिल्कुल। जब आपके अंदर कोई भी नेगेटिव इमोशंस होती है, चाहे वो खुद के लिए हो चाहे किसी और के लिए, जब उसकी इंटेंसिटी को हम पहचानते हैं, जैसे आप किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको बुखार आया है, तो डॉक्टर पहले आपका बुखार नापते हैं कि कितना है भाई, 98 है, 100 है, 101 है, 102 है। जिस हिसाब से आपका बुखार है उसकी इंटेंसिटी उस तरह से पहचानी जाती है। उसी तरह से कोई भी नेगेटिव इमोशन जो मेरे प्रति क्रिएट होता है, जो दूसरे के प्रति क्रिएट होता है, जब उसकी इंटेंसिटी का पता चलता है, तब हम उसे कैसे हैंडल करना है, कैसे उसे कम करना है, किस लेवल से कहां तक ले आना है, ये समझ हमें डेवलप होती है। तो इसलिए इंटेंसिटी का जानना जरूरी है। दूसरी बात, नेगेटिव इमोशन चाहे वो अपने लिए हो चाहे वो दूसरे के लिए हो, नुकसान ही करता है, उसका हमें फायदा होता ही नहीं। तो ऐसे इमोशंस क्रिएट करने की बजाय अगर हम उन्हें रिप्लेस करें, नेगेटिव इमोशंस को रिप्लेस करें, जैसे हम हमेशा कहते आए हैं कि एंगर, हमें गुस्सा आता है, हम एक्सप्रेस करते हैं बोल के, चिल्ला के, डांट के, किसी भी तरह से, उसकी भी एक इंटेंसिटी होती है। बट अगर एंगर को हमें रिप्लेस करना है तो किससे कर सकते हैं कि हमारा पर्पस भी फुलफिल हो, जिस बात के लिए हम गुस्सा कर रहे हैं वो बात दूसरों की समझ में भी आ जाए, लेकिन हमें गुस्सा भी नहीं करना पड़े। तो हमने कई बार इस इमोशनल एक्सप्रेशन के बारे में चर्चा की है, जिसे हम असर्टिवनेस कहते हैं, कि अपनी बात खुलकर स्पष्ट रीति से कहे भी, लेकिन बिना विचलित हुए, बिना गुस्सा किए, बिना अग्रेशन के, शांत भाव से वो बात जैसी है वैसी कहेगी। सो उसको असर्टिवनेस कहते हैं। तो यहाँ बात आती है इंटेंसिटी इसलिए जानना है क्योंकि हमें उसे रिप्लेस करना।
0: ओके, दैट्स वंडरफुल। और ये जो आपने एग्जांपल दिया बुखार का, सच में हम वहां तो नापते हैं, लेकिन मन में वो नापतोल करना है ये तो आइडिया ही नहीं आता, कि हमको ये आंकना भी है कि क्या लेवल है उस गुस्से का या जेलसी का, और उससे डील करने में फर्क पड़ता है आपने जैसा बताया। श्रीनिधि जी, या मैं आपसे भी जानना चाहूंगी कि क्या आपने कभी ऐसा कुछ एक्सपेरिमेंट किया है, या कुछ ऐसा इमोशंस को ऑब्जर्व करके कोई रिप्लेसमेंट किया है?
2: सबसे पहले तो कल्पना जी ने जो बात कही, मैं समझता हूँ ये हमें से लगभग ज्यादातर लोग कर पाने में सक्षम होते हैं, सिर्फ हमें वो पैमाना नहीं मिलता, अगर वो मापदंड मिल जाता है, स्केल मिल जाता है, तो हम अपने आप को स्केल पे नापने में सक्षम हैं।
0: ओके।
2: और सिर्फ छोटे बच्चे ही होते हैं शायद कोई ये चीज समझ में ना आए, मगर ज्यादातर एडल्ट्स जो होते हैं या टीनेजर्स भी अपने इमोशंस को बहुत अच्छी तरीके से ऑन स्केल प्रेजेंट कर सकते हैं। आम बातचीत में जो इतनी ज्यादा समझ नहीं भी रखता हो, वो भी व्यक्ति अक्सर अपने इमोशनल स्टेट के बारे में बता देता है, खासकर ऐसे समय पर जब हम नेगेटिव इमोशंस से जूझ रहे हैं या उन इमोशंस के कब्जे में हैं, तो अक्सर सिंपल सा क्वेश्चन ये बात कही जाती है, तो लोग आके बोलते आज मेरा मूड खराब है, मेरे कुछ मत बोलो आज, ये लोग कुछ कहते हुए नजर आते हैं। कभी कभार लोग बोलते हैं आज मेरा मूड बहुत ही खराब है, मेरे से बिल्कुल बात मत करो, ये भी चीज सुनता है लोग बोलते हैं। जैसे चिड़चिड़ापन है, चिड़चिड़ापन में इरिटेशन देखने को मिलता है, और उससे थोड़े और लेवल पे लोग थोड़ा गुस्सा करते हैं, आंखों से दिखाते हैं या चेहरे पे वो गुस्सा नजर आता है, फिर उससे थोड़ा और गुस्सा होता है तो व्यक्ति वो गुस्सा मुंह से बोलना शुरू करते हैं, नाक नाक बोलने लगना या फिर ऊंची आवाज में बोलना, ये सारी चीजें देखते हैं। इसी के एक और लेवल पे अगर हम देखते हैं तो व्यक्ति हाथ पैर चलाने लग जाए, उससे एक और लेवल। तो मैं समझता हूँ ये रेटिंग्स हम सभी स्वाभाविक रीति से लोगों में देखते हैं, इनका पारा कितना चढ़ा हुआ, उनका टेम्परेचर नापा जा सकता है। लोग कहते भी हैं उदासी के लिए भी आज थोड़ा मन ठीक नहीं है, ये बहुत ही बेसिक लेवल, उसके बाद में नहीं थोड़ा मैं उदास फील कर रहा हूँ। तो कभी कभार तो लोग बिल्कुल ही चेहरे पे वो शक्ल पे नजर आने लगती है कि सामने वाला पूछ लेता है कि आज ठीक नहीं लग रहे हो, उदास उदास से लग रहे हो, मायूस लग रहे हो, क्या बात है। कभी कभार लोग सामने से बोल देते हैं कि आज मैं बहुत उदास हूँ, मेरा मन ही नहीं लग रहा किसी चीज में। तो ये भी लोग कहते हैं और ये कहने का जरिया हमने खुद तय किया हुआ है, ऐसा नहीं है कि हमारे पास वो स्केल नहीं है। नेचुरली कल्पना जी बेहतर बता सकती कि वो अपने प्रैक्टिस में क्या चीजों को देखते हैं, लोग जब अपने स्केल में कहाँ अपने आप को स्केल पे फिट करते हैं, बट स्वाभाविक रीति से भी हम एक स्केल को जानते हैं और अपने शब्दों में हम अलग अलग तरीके से उन्हीं फीलिंग्स को कम, थोड़ा बीच में, थोड़ा ज्यादा और एकदम एक्सट्रीम पे हम ये रीड करना चाहते हैं। हम खुद एक्सपीरियंस करते हैं तभी भी, और हम सामने वाले के भी भाव से, हाव से, उनके हाव भाव से इन चीजों को माप लेते हैं या भाप लेते हैं, ऐसा कहना स्वाभाविक है। और जब रिप्लेसमेंट करने की बात कल्पना जी कह रहे थे, तो ये रिप्लेसमेंट कभी व्यक्ति खुद करता है, कभी कभार दूसरों से मदद लेता है, और मैं समझता हूँ कई मामलों में मैंने अपने दोस्तों से मदद ली है, जब मेरा मूड खराब है या फिर मैं उदास महसूस कर रहा हूँ या आज मन नहीं लग रहा है, तो मैंने अक्सर ये चीजें कही है मेरे आसपास रहने वाले लोगों से, मेरा मन नहीं लग रहा है, सोच पता नहीं खाली खाली सा लग रहा है या थोड़ा बेचैनी सी हो रही है। अब ये चीजें जब हम एक्सप्रेस करते हैं तो सामने वाले आपके मूड को बेहतर करने के लिए प्रयास करते हैं, वो कुछ आपको पॉजिटिव सुनाए, बेचैनी हो रही है तो वो आपको कुछ रीअश्योरेंस देंगे, अगर आप चिंतित हैं तो फिर हम आपको चिंता का कारण पूछेंगे और उसे निवारण करने का प्रयास करेंगे। और कभी कभार हम स्वयं भी अपने आप को ये चीज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब आप ट्रेन पकड़ने जा रहे हैं और आप देख रहे हैं कि भाई रेलवे स्टेशन पहुंचना बहुत ही मुश्किल लग रहा है, गाड़ी धीरे धीरे चल रही है, हो सकता है आप ट्रेन मिस कर जाएं, तो आपके मन में बेचैनी है और उस समय पर आप एंग्शियस हो जाते हैं। मगर ऐसे समय पर जब आप देख रहे हैं कि मैं अंदर से बेचैन हो रहा हूँ, तो मैं अपने आप को याद दिलाता हूँ, और मैंने अनेकों बार ये चीज की है, मैं अपने आप को याद दिलाया, देखो ट्रेन तो मैं पकड़ ही लूंगा, चाहे दौड़ के पकड़ना पड़े पकड़ लें। और मन फिर से कुछ चीज कहता है नहीं पकड़ा तो, पर मैं अपने मन को समझाता हूँ कोई बात नहीं, अगर नहीं पकड़ना होगा तो पकड़ेंगे,
0: जैसे क्वेश्चन आंसर, एक डिस्कशन चल रहा है मन के साथ,
2: मैं रिप्लेस कर रहा हूँ उस क्वेश्चन के लिए, कुछ और आंसर दे रहा हूँ, फिर एक प्रश्न आ रहा है उसके लिए
0: श्योर कर रहे हैं उसे,
2: उस एंजाइटी को रीअश्योरेंस के साथ रिप्लेस कर रहा हूँ, मैं श्योर कि हाँ मैं पकड़ ही लूंगा, कोई बात, हो सकता है आज ट्रेन लेट हुई हो सकता है मैं टाइम पे ही पहुंच जाऊं। अनेक ऐसी चीजें हैं जो आप पॉजिटिव रीअफर्मेशन के रूप में अपने आप को ये रीअश्योरेंस दे सकते हैं, तो एंजाइटी के लिए रिप्लेसमेंट मैं दे रहा हूँ,
0: ऐसे और भी चीजें,
2: ऐसे अनेक चीजें हैं जिसके लिए आप चीजें कर सकते हैं। अक्सर एक और चीज जो मैंने अक्सर ये चीज अपने आप के लिए कहा है, कभी आपको प्यार की महसूसता कम होती है, आपको लगता है कि कोई प्यार कम करता है आपसे, या आज आपको ऐसा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि मेरे प्यार से बात करें यार, सुबह से मतलब लोगों ने मेरे को परेशानी किया हुआ है, प्यार से बात ही नहीं करते हैं लोग, तब उस समय पर मैंने अपने आप को याद दिलाया मैं दूसरों से प्यार की अपेक्षा क्यों कर रहा हूँ, मैं अपने आप से प्यार करता हूँ, मैंने अपने आप को कहा है, मैंने अपने आप को ये भी समझाया है कि मैं प्यार लेने वालों में से नहीं हूँ, प्यार देने वालों में मैं दाता नहीं हूँ, मेरे पास प्यार का भंडार है, मैं प्रेम से भरपूर हूँ, ये मैंने अपने आप को याद दिलाया है। बहुत बार मैंने अपने आप को याद दिलाया है कि मैं प्यार के सागर की संतान हूँ, परमात्मा भगवान प्यार का सागर है, जिसके लिए हम गाना गाते हैं कि प्यार का सागर है, तो प्यार का सागर मेरे पास है, मैं दूसरों से क्यों अपनी प्यास बुझाऊं। तो अनेक ऐसी चीजें अपने आप को कहने से भी वो चीज आपका जो हाव भाव है, जो आपका फीवर चढ़ा हुआ है, नीचे उतर जाता है।
0: कितना फर्क पड़ता है खुद से बात करने से, और जिसको सेल्फ लव पे भी हमने बहुत सारे एपिसोड्स किए हैं, बातचीत की है। कल्पना जी, मैं यहाँ पे फिर से एक बार आपसे पूछना चाहूंगी कि जैसे लास्ट एपिसोड में भी आपने कहा था कि हम इमोशन को आइडेंटिफाई कभी कभी गलत करते हैं, मतलब वो प्यार है या सिर्फ अट्रैक्शन है या कोई और चीज है, तो वो राइट आइडेंटिफाई कैसे करें? बहुत बार प्यार को लेके ही कंफ्यूजन होता है, नहीं है, जब लोग अपने पार्टनर चूज करते हैं तब भी बहुत कंफ्यूजन होता है, कॉलेज में भी कई बार बहुत कंफ्यूजन होता है, बच्चों को भी कंफ्यूजन होता है, तो वो राइट इमोशन को आइडेंटिफाई कैसे करें, खासतौर से अगर प्यार की बात हो।
1: बिल्कुल, जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, 10-12 साल की उम्र से लेकर 20-25 साल की उम्र तक प्यार वाला ये इमोशन हमारी लाइफ में एंटर होने लगता है, वो फीलिंग हमें अपोजिट सेक्स के लिए आने लगती है। सो ये चीज को अच्छी तरह से समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। जैसे हम किताबों में पढ़ते हैं और ज्यादातर आजकल बच्चे फिल्मों में देखकर प्यार को समझने लगते हैं। प्यार फिल्मों में देखकर या किताबों में पढ़कर समझने की बात हालांकि है नहीं, ये बचपन से माँ बाप से हमें प्यार मिलता है, हम अपने माता पिता से प्यार करते हैं, भाई बहनों के बीच में प्यार होता है, हर रिश्ते में प्यार की बुनियाद तो होती है, परंतु एक दूसरे, अगर गर्ल है तो बॉय के प्रति, बॉय है तो गर्ल के प्रति आकर्षित होने के कई कारण होते हैं। जैसे कि कोई पढ़ाई में अच्छा है तो मुझे अच्छा लगने लगता है, जिसके अंदर कोई स्पेशल क्वालिटीज है, जैसे कोई गाने वाला है, कोई म्यूजिशियन है, उसको अलग अलग वाद्य यंत्र बजाने आते हैं और वो अच्छा परफॉर्म करता है तो मुझे अच्छा लगने लगता है और मैं समझती हूँ वो प्यार है। मतलब जनरली जो बड़े होते हुए बच्चे समझते हैं कि वो प्यार, तो वो अच्छा लगना कोई और प्यार होना, इसमें अंतर है। हमें फिल्मों के एक्टर्स भी अच्छे लगते हैं जो रोल प्ले करते हैं, हम कहते हैं हम उनके फैंस हैं। क्रिकेटर्स भी हमें जो अच्छे लगते हैं, हम कहते हैं हम उनके पीछे पागल है। हाँ, अभी फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है तो ये जब इतने सारे खिलाड़ी हैं, उनके प्रति भी हमें बहुत ज्यादा आकर्षण होती है, तो हम कहते हैं हम उनके फैन हैं, तो हम ये नहीं कहते कि हमें उनसे प्यार है। पर कई बार मिसअंडरस्टूड किया जाता है इस भावना को, कहा जाता है हम प्यार करते हैं। तो बड़े होते बच्चों में आकर्षण, अट्रैक्शन और प्यार, ये चीज ना समझ में आने के कारण वो जैसे लोग आजकल फेसबुक पर मिलते हैं या किसी सोशल मीडिया पर मिलते हैं, हेलो हाय हो जाती है, कभी कभी फेक प्रोफाइल से भी बात करते हैं और बातें करते करके उनकी बातें अच्छी लगने लगती हैं। वो जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, अपने इमोशंस को वो वैलिडेट कर रहे हैं, उससे वो रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो हमें उनसे प्यार हो गया ऐसा हम समझते, कई बार उस व्यक्ति को देखा भी नहीं हुआ। तो मैं एक किस्सा सुनाना चाहूंगी कि कैसे बढ़ती उम्र के बच्चों को प्यार, आकर्षण और भुलावे में अंतर समझ में नहीं आता है। तो एक 15-16 साल की कन्या थी, कुमारी थी, और गुजरात के एक गांव में रहती थी। उसे अपने मोबाइल पर सोशल मीडिया में कनेक्ट होते होते एक व्यक्ति से पहचान हुई, जिसका XYZ नाम था, जिसने बताया कि मेरी ये उम्र है, मैं यहाँ रहता हूँ, मैं से मत, बातचीत में उनका सिलसिला आगे बढ़ता है। तो जब भी कभी वो उससे बात करती, वो बिल्कुल फ्री होके उसकी बातें सुनता, उसकी इमोशंस को समझता, कभी भी उसका कोई मूड खराब है या लड़ाई झगड़ा हुआ है किसी से, शेयर करो तो वो ध्यान से सुनता और उसको और भी ज्यादा अच्छी तरह गाइड कर। तो उसने उसको धीरे धीरे अपना सपोर्ट सिस्टम समझना शुरू किया और घर वाले, परिवार, भाई बहन, माता पिता से ज्यादा वो व्यक्ति उसके लिए इम्पोर्टेंट हो गया जो ऑनलाइन दूर कहाँ बैठा है पता नहीं, ऑनलाइन वो सिंपथी या एम्पथी उसको दिखा रहा है। वो उससे कहा उसने कि मुझे प्यार हो गया। अब माँ बाप को चिंता हो गई कि ये किससे प्यार कर रही है। सो चलो ठीक है, माँ बाप ने कहा मिलाओ उससे, कहाँ है हम मिलते। तो उसने कहा कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ और मैं आती हूँ तुम्हें मिलने के लिए। तो उस धीरे धीरे बात करना कम कर दिया और फिर उसको एक दिन बुलाया भी। और यही नहीं, वो सामने वाला व्यक्ति इस व्यक्ति को इतना मजबूर कर दिया कि रिचार्ज करना उसका, उसके खर्चे उठाना, इसके लिए भी ये लड़की तैयार होने लगी और वो करने लगी। एक जगह उसने बुलाया मिलने के लिए, वो गई वहां मिलने के लिए, लेकिन वो वहां नहीं आया, बहाना बना दिया और ऐसे ही उसको मैनिपुलेट करता गया। आखिर में वो लड़की की मानसिक अवस्था इतनी खराब हो गई, इतना डिप्रेशन में चली गई, उसने पढ़ाई छोड़ दी और आखिर उसको रिहैब में डालना पड़ा। सो हम अपने इमोशंस के साथ बहते हुए कहाँ तक पहुंच रहे हैं, क्या हम अपने जीवन को कोई किसी तरह का नुकसान पहुंचा रहे हैं, ये समझ में नहीं आता है। इसीलिए लव, प्यार हमारे प्रोग्राम का भी नाम है लव यू जिंदगी। जिंदगी से भी प्यार होता है, उस प्यार की भावना को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है।
0: फीलिंग को आपने जैसे कहा आइडेंटिफाई करना बहुत बहुत बहुत जरूरी है, नहीं तो उसके बहुत जो रिपरकशंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो सकते हैं। श्रीनिधि जी, हमें आपकी भी ओपिनियन जानना चाहूँगी। एट सच यंग एज, मतलब इतनी कम उम्र में जब हम सब कुछ सीख ही रहे होते हैं, जिंदगी को जान ही रहे होते हैं, दुनिया हमने पूरी देखी भी नहीं है, उस समय कैसे आइडेंटिफाई करें और क्या फ्रेंड्स की हेल्प लें या फिर खुद से ही जो समझ में आ रहा है समझ लें, रीच आउट करें, क्या लगता है आपको?
2: इसमें दो चीजें हैं आरुषि जी। सबसे पहले तो ये है कि जब हम ऐसे किसी सिचुएशन में होते हैं जब हम अपने इमोशंस को नहीं रीड कर पाते या समझ नहीं पाते, या हम समझते तो हैं मगर उन सिचुएशंस में स्ट्रगल कर रहे हैं, ये होता है, स्वाभाविक है कि हम अपने इमोशंस के साथ स्ट्रगल कर सकते हैं। और जरूरी नहीं है कि आप छोटे बच्चे हैं तभी आप स्ट्रगल करेंगे, आप युवा होते हुए स्ट्रगल कर सकते हैं, टीनेजर होते हुए स्ट्रगल कर सकते हैं, आप उम्र के बेहतर पड़ाव पे पहुंचकर नौकरी विक्री करने के बाद भी आप स्ट्रगल कर सकते हैं, यहाँ तक भी मैं कहना चाहूंगा कि आप अधेड़ उम्र में मिड लाइफ क्राइसिस के रूप में आप इन इमोशंस से स्ट्रगल कर सकते हैं, और कभी कभार बुढ़ापे में भी, इनफैक्ट जब आप लाइफ के किसी ट्रांजिशन से गुजर रहे होते हैं तब भी आप इन चीजों से स्ट्रगल कर सकते हैं। तो पहले तो ये मान लेना चाहिए कि हाँ, इमोशंस को कई बार प्रोसेस करना आसान नहीं होता या हम सक्षम नहीं होते उस घड़ी। इसमें आपकी गलती नहीं है, इस समय पर किसी दूसरे इंसान की गलती नहीं है, बस वो है, ये सच्चाई है, ऐसा होता है। ये बिल्कुल वैसा ही है कि किसी को किसी चीज का इन्फेक्शन हो जाना शरीर में, वो स्वाभाविक है, मतलब वो हो सकता है। आप लाख अपने आप को स्वस्थ रखने का प्रयास करें मगर फिर भी अगर कोई वायरस कहीं से अटैक करता है या कोई महामारी जैसी चीज है या कोई ऐसी चीज है वो आपको अटैक कर सकती है, और ये चीजें हमारे इमोशंस के साथ भी होता है। जैसे हम फिजिकल हेल्थ में इन्फेक्शन के लिए प्रोन हो जाते हैं कभी कभार, ऐसे ही हमारे मेंटल हेल्थ में भी ये चीजें हो सकती हैं, भावनात्मक रीति से किसी चीज को सहन कर सकते हैं। तो ये मान लेने से क्या होता है कि हम ये भी समझने लग जाएंगे कि अगला हिस्सा इसका ये है कि जब आप सक्षम नहीं है उस चीज को प्रोसेस करने में आप मदद लेंगे। और सबसे पहले मदद की जब बात की जाती है, हम अपने स्वजनों से मदद लेते हैं, और हमारे युवा साथियों के लिए मैं समझता हूँ ये युवाओं की उम्र के साथ की बात है, क्योंकि उनको लगता है कि हमारे हमउम्र लोग हमें बेहतर समझ सकते हैं और इसी वजह से हम अपने दोस्तों के साथ ज्यादा कम्फर्टेबल होते हैं। और टीनेज में आप देखेंगे कि जैसे आप टीनेजर्स में थोड़े आगे बढ़ते हैं, जब आप 16 17 18 साल के होने लगते हैं, आप ज्यादा समय अपने दोस्तों के साथ बिताना पसंद करते हैं। लोगों का कॉलेज स्कूल जल्दी खत्म हो भी जाता है तो जल्दी घर नहीं आते, वो ज्यादा टाइम दोस्तों के साथ वक्त बिताना पसंद करते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि वो मेरे जैसे ही हैं, उनके भी इमोशंस मेरे जैसे हैं, इसलिए वो मुझे बेहतर समझ पाएंगे। और ये चीज होता है बचपन में, शायद ये चीज ऐसी नहीं होती, युवा काल में, खासकर बढ़ते उम्र में ये चीज जरूर देखने को मिलती है। तो इसलिए दोस्तों से मदद लेने में कोई बुराई नहीं है, मगर ये भी समझने की जरूरत है कि संभव नहीं है कि आपके दोस्त जो आपके हम उम्र हैं, खासकर जब युवा काल के दहलीज पर हैं, लेटर टीनेजर्स में हैं, तो उनके अंदर उसी प्रकार की मैच्योरिटी हो, ये संभव नहीं। और हर कोई आपकी मदद करना चाहेगा, भले उसके पास वो स्किल सेट्स हो या वो भावनात्मक रूप से उतना सक्षम है या नहीं है, मदद करने का भाव आपके सच्चे मित्र हमेशा आपके लिए रखेंगे, आपके लिए अच्छा सोचेंगे, इसलिए वो कोशिश करेंगे कि वो आपकी मदद कर सके। मगर क्या ये गाइडेंस हमेशा सही होता है या नहीं, इस पर जरूर प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि वो अपनी प्रज्ञा, अपना विजडम, अपने अनुभव के आधार पर बताएंगे, और उनका भी अनुभव कोई बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, क्योंकि वो भी आपके तो युवा साथियों के लिए ये समझने की जरूरत है कि ऐसे समय पर भले ही आप अपने दोस्तों से बातचीत करने में कंफर्टेबल हैं, बिल्कुल करें, उसमें कोई दो राय नहीं, शेयर करना ही चाहिए, मगर सही मार्गदर्शन के लिए, जो मार्गदर्शन आपके दोस्त आपको दे रहे हैं, उसे किसी बड़े से वेरीफाई करके तब लागू किया जाना चाहिए। वरना क्या होता है कि अनुभव के अभाव के कारण कभी कभार हम मिसगाइड हो जाते हैं, क्योंकि उद्देश्य गलत नहीं होता दोस्तों का, वो भी आपका भला करना चाहते हैं, मगर भले उद्देश्य के साथ भी अगर हम कोई गलतियां करते हैं तो उसका खामियाजा बुरा ही निकलता है। इसलिए सोच समझ के साथ उन चीजों को करने की आवश्यकता है, और इसलिए ऐसे लोगों से जो इमोशनली मैच्योर हैं, अनुभवी हैं, उन लोगों के पास मदद लेना चाहिए। बहुत बार लोग ये सोचते हैं कि पेरेंट्स के साथ बातचीत करने में किसकी चाहत होती हो या वो क्या मानेंगे, क्या कहेंगे, ये सोच लेते हैं कि इनहिबिशन क्रिएट कर लेते हैं। अक्सर बच्चे बुजुर्गों के साथ, अपने दादा दादी, नाना नानी, उनके साथ खुलकर बात करने में विश्वास रखते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हाँ, ये हमें जज नहीं करेंगे, हम बिल्कुल ओपन रह सकते हैं इनके साथ। तो वो चीजें यहाँ मायने रखती है, और मैं समझता हूँ कल्पना जी एग्री करेंगे इस बात को कि जब लोग काउंसलिंग के लिए आते हैं तो वो हमेशा ये एक्सपेक्ट करते हैं कि उनको ये विश्वास रहता है कि जिनके साथ हम ये बातचीत कर रहे हैं उनके साथ हम बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होकर बातचीत करेंगे, और जो कुछ भी हम उनके सामने कहेंगे वो पूर्णतया कॉन्फिडेंशियल रहेगा, वो उन्हें जज नहीं करेंगे, वो उनके ऊपर कोई लेबल नहीं लगाएंगे, उन्हें खराब उदाहरण के रूप में कहीं प्रस्तुत नहीं करेंगे, उनकी एक प्राइवेसी और सीक्रेसी मेंटेन रहेगी। एक विश्वास वहां पर एक बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है। मैं समझता हूँ कल्पना जी बेहतर बता पाएंगे इस विषय में।
0: कल्पना जी आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें?
1: जी मैं सहमत हूँ श्री दीदी जी से, उन्होंने बात बिल्कुल सही कही कि हमें जो अगर वैलिडेशन लेना है, किसी से गाइडेंस लेना है, तो हमारे बड़ों से चर्चा कर लेनी चाहिए। बट थोड़ा सा इससे आगे बढ़कर मैं ये कहना चाहूंगी कि जब हम अपने आप से कनेक्टेड होते हैं तब अपने लाइफ के डिसीजंस लेना हमारे लिए आसान हो जाए। जैसे अगर हम हमारे क्रिकेट की दुनिया में अभी आजकल जो छाई हुई नई सनसनी है, हमारे वैभव सूर्यवंशी है, इनके बारे में जब हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, तब ये महसूस होता है कि इस छोटे से बच्चे को अपनी लाइफ का डिसीजन लेने का ये जो हिम्मत है कितनी छोटी उम्र में आ गई। उन्होंने छोटी उम्र में उनके पिताजी की मदद से इस स्किल को समझा, और उस स्किल को हासिल करने में बचपन से लेकर अब तक, मतलब अभी भी बच्चा ही है, उसके पीछे वो चले गए। और इस वजह से उन्होंने, हम इमेजिन कर सकते हैं कि दोस्तों के साथ घूमना फिरना, पार्टीज में जाना, इतनी सारी बातें मिस की होगी उन्होंने, परंतु उन्हें पता था कि उनके लाइफ का डिसीजन उनके फादर ने और उन्होंने मिलके लिया है, और वो बहुत सही लिया है, इसलिए उस डिसीजन के साथ वो चलते रहे। तो वैसे ही जब कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड कभी भी होता है, जैसे श्रीमती जी ने कहा कि वो किसी भी उम्र में हो सकता है, बचपन में भी हो सकता है, बड़े होने पर भी हो सकता है, तो अगर हम ऐसी प्रैक्टिस करते हैं, थोड़ा सा 10 मिनट्स के लिए साइलेंस में बैठकर खुद के साथ जुड़ने का अभ्यास करते हैं, तो मेरी क्या कैपेसिटीज है, मेरी क्या वैल्यूज है, मेरी क्या इच्छा है, मैं क्या जानना चाहता हूँ, क्या करना चाहता हूँ, ये चीजें हमें धीरे धीरे समझने लगती हैं, और अपने ख्वाब के पीछे हम अपनी एनर्जी लगाना शुरू करते हैं। और हमारे सामने उदाहरण तो है ही, छोटी सी उम्र में अपने ख्वाब के पीछे उन्होंने सही एनर्जी लगाई तो उसका रिजल्ट उनको कितना बेहतर मिल रहा है, इससे अच्छी तरह हम नहीं समझ सकते।
0: जी कल्पना जी, बिकॉज हम अंतिम चरण में पहुंच गए आज के एपिसोड के, हम एकदम लास्ट में पहुंच गए हैं, तो मैं मेडिटेशन का तो आपसे रिक्वेस्ट जरूर करूंगी कि हमें कराएं साथ साथ। क्या कोई ऐसे प्रश्न हैं जो हम खुद से डिटैच होके पूछ सकते हैं, जो हमें प्यार के इमोशन को सही आइडेंटिफाई करने में मदद करे, जो साइलेंटली बैठ के ऑब्जर्व कर सके खुद के बारे में अगर कुछ?
1: बिल्कुल। सुबह उठने के बाद जब हम अपने दिन की तैयारी, मेंटल और फिजिकल तैयारी करते हैं, मैं अपने श्रोताओं से कहना चाहूंगी कि वो थोड़ा टाइम सुबह उठने के बाद का अगर आप खुद के साथ आप बिताते हैं और ये 5 या 7 मिनट सोचने में बिताते हैं कि आज मुझे फिजिकली और मेंटली अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करना है, कैसे प्रस्तुत करना है, तो हमारा माइंड इतना सुंदर जवाब हमें देता है, वो सोचकर हमें आश्चर्य लगेगा। तो पॉजिटिव प्लान जब हम बनाते हैं तो हम अपने आप से पूछ सकते हैं, आज मैं इमोशनली किस तरह से बैलेंस्ड वे में फिजिकली और मेंटली अपने आप को प्रेजेंट करूंगा या करूंगी, ये सवाल हम पूछ सकते हैं। आज मैं अपनी भावनाओं को सही शब्दों के साथ सही व्यक्ति के सामने व्यक्त करने का प्रयास करूंगा। इस तरह से छोटे छोटे सवालों से, क्या मैंने आज ध्यान से सुना है जो लोग कह रहे हैं, लोगों की बातें सुनते समय अगर हम ध्यान से सुने और उनको समझने की कोशिश करें, उनके भावनाओं को समझने की कोशिश करें, तो वो भी एक अभ्यास होता है कि दूसरे क्या कहना चाहते हैं, शायद उनके शब्दों से व्यक्त नहीं हो रहा, वो भावनाओं से समझ आ रहा है। सो ये चीजें मैं पहले समझूंगा और फिर बात में जवाब दूंगा। क्या आज किसी को मेरी बातों से खुशी मिली है, आज मैंने किसी को नाराज करने जैसा कोई काम तो नहीं किया या करूंगा? सो ये छोटे से प्रश्न है जिनके साथ हम आगे बढ़ते हैं, और मैं चाहूंगी कि हमारे युवा शांति से बैठकर ये अभ्यास करें, चाहे वो 2 मिनट के लिए ही क्यों ना हो, जिसमें कुछ पॉजिटिव और पावरफुल अफर्मेशंस हो जो हमें इमोशनली मैच्योर बनाने में काम आएंगे। तो आज अभी भी मैं इस कार्यक्रम के अंत में श्रोताओं से अनुरोध करती हूँ कि 1 मिनट के लिए वो शांति से बैठ जाएं। सबसे पहले तो गहरी और लंबी सांस लें और अपने को एहसास कराएं कि मैं इस 1-2 मिनट के लिए बिल्कुल फुर्सत में हूँ खुद को समझने के लिए। अपने श्वासों पर ध्यान दें, उन्हें अच्छी तरह से महसूस करें। अपना राइट हैंड अपने हृदय पर रखते हुए अपने हृदय की धड़कन को सुनने का प्रयास करें, कितनी नॉर्मल है, कितनी स्टेबल है, कितनी शांत है। कानों से सुनने वाली एकदम छोटी सी आवाज जो बहुत मधुर है, उसे सुनने का प्रयास करें। और अंत में अपने मन में 3 बार दोहराएं, मैं एक शांत प्रेममय समझदार आत्मा हूँ, मैं एक शांत प्रेममय समझदार आत्मा हूँ, मेरे प्रत्येक शब्द में सम्मान मधुरता और सकारात्मक ऊर्जा है। धन्यवाद।
0: थैंक यू सो मच कल्पना जी, थैंक यू सो मच श्रीनिधि जी। आज बहुत एक इंटरेस्टिंग चर्चा हुई और हमें समझ में आया कैसे अपने इमोशन को रेट करना है, कैसे उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं, क्या क्वेश्चंस हम खुद से पूछ सकते हैं, और कैसे हम दोस्तों की और कब बड़ों की मदद ले सकते हैं क्लैरिटी लाने के लिए जीवन में, और इमोशंस को बेहतर समझ के बेहतर एक्शन देने के लिए, ताकि हमारी लाइफ को वो बेहतर बनाए और हमें नुकसान ना करे। तो थैंक यू सो मच आप दोनों का इस जर्नी पे हमें लेके जाने के लिए। मुलाकात होगी लव यू जिंदगी के अगले एपिसोड में। फिलहाल के लिए लेते हैं इजाजत और जिंदगी से खुलकर कहते हैं कि लव यू जिंदगी। रेडियो मधुबन से जुड़े रहिए, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

मैं हूं जनरल रिटायर्ड वीके सिंह, पूर्व सेनाध्यक्ष इंडियन आर्मी, और आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: 19वीं सदी के आखिरी तीन दशकों और 20वीं सदी के पहले दशक में भारत को साम्राज्यवादी वर्चस्व और एंग्लो ईसाई औपनिवेशिक शासन से आजाद कराने के लिए अंतिम संघर्ष की नींव रखी जा रही थी। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने वर्ष 1875 में वंदे मातरम के जरिए देश को एक शक्तिशाली मंत्र दे दिया था। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की मुख्य धारा में प्रवाहित होते हुए इस गीत वंदे मातरम ने 150 वर्षों से भी अधिक समय तक राष्ट्र के भाग्य को गढ़ने का कार्य जारी रखा। भिकाजी कामा और बिंदु घोष, सिस्टर निवेदिता, वीर सावरकर, श्यामजी कृष्ण वर्मा जैसे वीर स्वतंत्रता सेनानियों के हृदय में ये एक ज्वाला के रूप में धधकता रहा और उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता रहा। 1908 में महाराष्ट्र के अमरावती में एक सभा को संबोधित करते हुए महान स्वतंत्रता सेनानी अरबिंदो घोष ने भी वंदे मातरम गीत की महिमा की।
1: मुझे जानकर अत्यंत प्रसन्नता हुई कि यह गीत वंदे मातरम भारत के सभी हिस्सों में बेहद लोकप्रिय हो गया है। इसे बार बार गाया जा रहा है। इस राष्ट्रगीत को ही मैं अपने भाषण का विषय बना रहा हूं। यह गीत केवल एक राष्ट्रगीत नहीं है जैसा कि यूरोपीय राष्ट्र अपने गीतों को मानते हैं। यह असीम शक्ति से परिपूर्ण एक पवित्र मंत्र है। यह मंत्र हमें आनंद मठ के रचयिता द्वारा प्रदान किया गया है, जिन्हें एक प्रेरित ऋषि भी कहा जा सकता है। यह मंत्र कोई मनगठन तो रचना नहीं थी, बल्कि एक प्राचीन मंत्र का पुनरुद्धार था, जो एक व्यक्ति नवकिशन की गद्दारी के कारण लगभग विलुप्त हो गया था। बंकिम चंद्र के इस मंत्र को उनके अपने समय में उचित सराहना नहीं मिली थी। तब उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि एक ऐसा समय अवश्य आएगा जब संपूर्ण भारत इस गीत के गायन से गूंज उठेगा, और उस भविष्यवक्ता के वचन चमत्कारिक रूप से सत्य सिद्ध हुए। उस समय इस गीत का वास्तविक अर्थ इसलिए नहीं समझा गया क्योंकि तब लोगों में सच्ची देशभक्ति का अभाव था। उस समय की देशभक्ति का अर्थ केवल इतना ही था कि भारत को इंग्लैंड और अन्य देशों की छाया बना दिया जाए। ऐसे देश जिनकी शानो शौकत और वैभव ने इस मातृभूमि की संतानों की आंखों को चकाचौंध कर दिया था। उस काल के तथाकथित देशभक्त भले ही भारत के शुभचिंतक रहे हों, लेकिन वे निश्चित रूप से ऐसे लोग नहीं थे जो भारत से सच्चा प्रेम करते हों। जो व्यक्ति अपने मां से सच्चा प्रेम करता है, वो कभी भी उसकी कमियों पर दृष्टि नहीं डालता। वो कभी भी अपनी मां को एक अज्ञानी, अंधविश्वासी, पतित अथवा जर्जर स्त्री मानकर उसका तिरस्कार नहीं करता।
0: वीर सावरकर के लिए भी वंदे मातरम एक जोशीला क्रांतिकारी गीत था, जो स्वतंत्रता सेनानियों के बीच एक अभिवादन के रूप में प्रयोग किया जाता था। वो देशभक्ति का एक प्रतीक, समझौता चाहने वालों के लिए चेतावनी और एक ऐसा मंत्र था जिसने संघर्ष की ज्वाला प्रज्वलित की।

0: 1907 में जर्मनी के स्टटगार्ड में आयोजित अंतरराष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन में मैडम भिकाजी कामा ने सावरकर और उनके साथियों को प्रतिनिधित्व करते हुए पहला भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। सावरकर, कामा और श्याम जी कृष्ण वर्मा द्वारा संयुक्त रूप से डिजाइन किए गए इस ध्वज पर वंदे मातरम शब्द प्रमुखता से अंकित थे, जो सावरकर पर इस गीत के गहरे प्रभाव को दर्शाता था।
1: दीदी, आपने मुझे अनेक वीर सेनानियों के किस्से सुनाए, लेकिन अब तक श्याम जी वर्मा के बारे में कुछ बताया नहीं है। वे कौन थे?
2: ओहो बन्नो, पहले तो तुम्हारी प्रशंसा करनी होगी।
1: क्यों क्यों, ऐसा क्यों कह रही हो? मैंने ऐसा क्या कह दिया?
2: अरे मेरी प्यारी बहना, तुम्हारी लगन और जिज्ञासा की तारीफ करना चाहती हूँ कि तुम कितना ध्यान पूर्वक इस ऐतिहासिक कथा को सुन रही हो। श्याम जी कृष्ण वर्मा ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने न केवल देश विदेश में अंग्रेजों से मुक्ति का वातावरण बनाया, बल्कि क्रांतिकारियों की एक पूरी पीढ़ी का मार्गदर्शन भी किया। इसमें विनायक सावरकर से लेकर मदनलाल ढींगरा तक एक लंबी श्रृंखला है, इसलिए उन्हें क्रांति गुरु भी कहते थे। हो भी क्यों ना, जब जन्म ही क्रांति के बीच हुआ था।
0: वो 1857 का साल था। भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत हो चुकी थी। 10 मई को दिल्ली से 40 मील उत्तर पूर्व में मेरठ के गैरिसन शहर में कंपनी की सेना के सिपाहियों ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। धीरे धीरे उसकी आग बढ़ती जा रही थी। ये लपटें गुजरात के अहमदाबाद, सौराष्ट्र, सूरत, गोधरा, नांदेड़ एवं दाहोद जैसे शहरों तक भी पहुंच चुकी थी। तभी अक्टूबर के महीने में कच्छ जिले के मांडवी गांव के संस्कृत विद्वान श्री कृष्ण वर्मा के घर में एक बच्चे का जन्म हुआ। वो और कोई नहीं, श्याम जी कृष्ण वर्मा थे। पिता संस्कृत के विद्वान थे तो माँ गोमती देवी भारतीय संस्कृति एवं परंपराओं के अनुरूप जीवन शैली में रची बसी थी। आरंभिक शिक्षा गांव में होने के बावजूद बालपन में ही श्याम जी को संस्कृत का अद्भुत ज्ञान हो गया था। उन्होंने घर में ही भारतीय वाङ्मय के संस्कृत ग्रंथों का अध्ययन किया। जब वो 11 वर्ष के थे तब माँ उन्हें सदा के लिए छोड़कर चली गई। दादी ने देखभाल की। स्कूल की पढ़ाई के बाद उच्च शिक्षा के लिए श्याम जी मुंबई चले गए। वहां विल्सन कॉलेज में उनका दाखिला हुआ। धीरे धीरे यहां भी उनकी कुशाग्र बुद्धि और संस्कृत के ज्ञान की खूब चर्चा होने लगी।
3: श्याम जी, तुम तो संस्कृत के बड़े विद्वान हो। इन दिनों मुंबई में स्वामी दयानंद सरस्वती आए हुए हैं, उनसे मिलने नहीं चलोगे?
4: हाँ, क्यों नहीं, जरूर चलूंगा।
0: ये साल 1875 की घटना है, जब श्याम जी की भेंट स्वामी दयानंद सरस्वती से हुई। उनके प्रवचन सुनने के बाद आर्य समाज की विचारधारा ने उन्हें काफी प्रभावित किया। वो आर्य समाज द्वारा किए जा रहे वेदों के भाष्य अनुवाद से जुड़ गए। स्वामी दयानंद सरस्वती के शिष्य बनने के बाद श्याम जी ने पूरे देश में उनकी शिक्षाओं को प्रसारित करने के लिए दौरे किए। काशी में उनका भाषण सुनकर काशी के पंडितों ने उन्हें पंडित की उपाधि दे दी। ऐसी उपाधि पाने वाले वो पहले गैर ब्राह्मण थे। इसी वर्ष लंदन के ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग के प्रमुख मोनियर विलियम भारत आए थे। वो ऐसे संस्कृत विद्वानों से मिलना चाहते थे जो अंग्रेजी भी जानते हों। उनकी मुलाकात युवा श्याम जी से हुई।
5: आप तो अद्भुत है, संस्कृत का इतना ज्ञान, मैं स्तब्ध हूँ। आप लंदन क्यों नहीं आते, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में?
4: मैं वहाँ कैसे आ सकता हूँ, बहुत खर्च होगा।
5: आप एक बार घर वालों से विचार विमर्श कर लीजिए, फिर मुझे जवाब दीजिएगा।
0: श्याम जी की पत्नी भानुमती के पिता एक बड़े व्यापारी थे। भानुमती ने अपने पिता से बात की।
6: पिताजी, लंदन के ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा हासिल करने का आमंत्रण मिला है।
3: किसे मिला है?
6: आपके दामाद जी को मिला है।
3: अच्छा, फिर उन्होंने क्या निर्णय लिया है?
6: वो इस दुविधा में है कि कैसे जाएंगे, बहुत खर्चा आएगा और वो कहां से होगा। फिर भी मुनियर जी ने सोच समझ कर जवाब देने को कहा है।
3: ठीक है, मैं कुछ इंतजाम करता हूं, लेकिन श्याम जी को बुरा तो नहीं लगेगा?
6: मैं उन्हें समझा लूंगी।
0: इस तरह भानुमती के पिताजी ने श्याम जी कृष्ण वर्मा को लंदन भेजने की व्यवस्था की। साल 1878 में वो इंग्लैंड चले गए। लंदन में कुछ दिन मोनियर के सहायक के रूप में काम करने के बाद 1879 में उन्होंने बीए करने के लिए बालियोल कॉलेज में प्रवेश लिया। पढ़ाई के साथ वो निजी स्तर पर संस्कृत का अध्ययन भी निरंतर करते रहे। बीए के पश्चात उन्होंने एमए और बारेट लॉ की पढ़ाई पूरी की। लंदन में रहकर ऐसा करने वाले वो पहले भारतीय थे। उनकी नियुक्ति ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में अध्यापक के पद पर हो गई थी। ऑक्सफोर्ड में वो संस्कृत के साथ भारतीय छात्रों को गुजराती और मराठी भी पढ़ाया करते थे। प्राध्यापक के रूप में कार्य करते हुए श्याम जी ने वकालत की शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने बर्लिन कांग्रेस ऑफ ओरिएंटलिस्ट में भारत का प्रतिनिधित्व किया। 7 साल लंदन में रहने के उपरांत साल 1885 में वो भारत लौट आए और मुंबई में वकालत शुरू की।
1: वाह दीदी, श्याम जी की कहानी तो बड़ी दिलचस्प लग रही है। आगे क्या हुआ बताओ ना।
2: थोड़ा धैर्य रखो बन्नो, बताती हूँ। श्याम जी ने वकालत शुरू कर दी थी, लेकिन अंग्रेजों द्वारा भारतीयों पर हो रहे जुर्म उन्हें विचलित कर रहे थे।
1: फिर क्या हुआ दीदी?
2: श्याम जी को वो सब बर्दाश्त नहीं हुआ। उनके सामने कोई विकल्प भी नहीं था। वे वकालत छोड़कर मध्य प्रदेश के एक छोटे से शहर रतलाम चले गए।
0: रतलाम पहुंचने के बाद श्याम जी रियासत के दीवान बन गए। कुछ दिन वहां रहने के उपरांत साल 1893 में वो राजस्थान के उदयपुर चले गए। वहां राज्य काउंसिल के सदस्य बने। उदयपुर में 3 वर्ष रहने के बाद जूनागढ़ गए और वहां के दीवान का पद संभाला। परंतु जूनागढ़ में तैनात एक अंग्रेज से विवाद हो गया। उनके मन में ब्रिटिश सरकार के प्रति नफरत पैदा हो गई। वो नौकरी से इस्तीफा देकर मुंबई वापस लौट गए और वकालत शुरू कर दी। श्याम जी एक संवेदनशील और स्वाभिमानी व्यक्ति थे। भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति समर्पण भी अटूट था। उन्होंने हर कदम पर भारतीयों का अपमान देखा था, इसलिए उनके स्वाभिमान रक्षा के लिए श्याम जी ने समाज को जागृत करने का संकल्प किया। सबसे पहले अपने साथी वकीलों का एक समूह बनाया और ऐसे भारतीयों के समर्थन में मुकदमा लड़ना आरंभ किया जिन पर पुलिस अत्याचार करती थी और बिना किसी अपराध के जेल में ठूस देती थी।
2: जानती हो बन्नो, ये साल 1898 की बात होगी। पुणे के प्लेग गवर्नर कमिश्नर रैंड की चापेकर बंधुओं ने हत्या कर दी थी। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था, बाद में फांसी भी दे दी गई, लेकिन उसकी गूंज पूरे देश में फैल गई। उन्हीं दिनों तिलक जी को भी गिरफ्तार कर लिया गया था, जिनको श्याम जी अपना आदर्श मानते थे।
1: श्याम जी वर्मा को बड़ा धक्का लगा होगा ना दीदी, उन्होंने कुछ किया नहीं इस पर?
2: ऐसा हो सकता था क्या? श्याम जी और वकीलों के समूह ने तिलक जी की गिरफ्तारी के विरोध के अलावा चापेकर

0: अपने स्तर पर अंग्रेजों के विरुद्ध सशस्त्र अभियान चला रहे।
1: हाँ बिल्कुल किया जा सकता है।
0: ठीक है, फिर मैं बंगाल, पंजाब और महाराष्ट्र की यात्राओं पर निकलता हूँ और युवा क्रांतिकारियों से संपर्क करने का प्रयास करता हूँ।
2: योजना के तहत श्याम जी निकल पड़े और उन्हें अपने मकसद में सफलता भी मिली। पंजाब के क्रांतिकारियों का बंगाल और महाराष्ट्र से संपर्क बना और इसमें श्याम जी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन श्याम जी के मन में कुछ और भी चल रहा था। वो लंदन में रह रहे भारतीय नौजवानों का स्वाभिमान जगाना चाहते थे, जिन्हें अंग्रेजों का अपमान सहने की आदत पड़ चुकी थी। इसलिए उन्होंने दोबारा से लंदन लौटने का निर्णय लिया।
3: दीदी अब क्या होगा, श्याम जी तो फिर विदेश चले गए।
4: ओ मेरी प्यारी बन्नो, अब वे पहले वाले श्याम जी नहीं रहे थे। इस बार लंदन वे देश के स्वतंत्रता संग्राम के एक सिपाही की तरह गए थे।
3: वो कैसे दीदी?
4: समझाती हूँ। श्याम जी विदेश में रहने वाले युवाओं में देश प्रेम की लौ जागृत करना चाहते थे, इसलिए लंदन में उन्होंने तीन काम आरंभ किए। पहला, वहां रहने वाले सभी भारतीयों को एक सूत्र में पिरोने का। दूसरा, लंदन में पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए छात्रावास बनाने का। और तीसरा, भारतीयों के मानव अधिकारों की रक्षा के लिए एक समाचार पत्र निकालने का।
2: श्यामजी कृष्ण वर्मा ने साल 1905 के फरवरी महीने में लंदन में द इंडियन होम रूल सोसाइटी नाम के एक संस्था का गठन किया। श्यामजी इसके संस्थापक अध्यक्ष बने और इस केंद्र को नाम दिया इंडिया हाउस, जो 65 क्रॉमवेल एवेन्यू हाईगेट में स्थित था। इसे एक छात्रावास का रूप दिया गया था, जिसमें 25 छात्रों को रहने की व्यवस्था थी। औपचारिक उद्घाटन 1 जुलाई को सोशल डेमोक्रेटिक फेडरेशन के हेनरी हाइंडमैन द्वारा हुआ। इस अवसर पर दादा भाई नारोजी, लाला लाजपत राय, मैडम कामा, लंदन पॉजिटिव सोसाइटी के शिस्वनी और हैरी, एस आर राणा, विनायक दामोदर सावरकर, वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय और लाला हरदयाल उपस्थित थे। इंडिया हाउस का सारा खर्च श्याम जी स्वयं उठाते थे। देखते ही देखते ये भारतीयों की सभा संगोष्ठियों और क्रांतिकारी आंदोलनों का प्रेरणा केंद्र बन गया। यहाँ होने वाली सभाओं में भारत की स्वतंत्रता पर खुलकर बातें होती। गांधी जी से लेकर भगत सिंह, गोखले भी यहाँ रुके। आगे चलकर अनेक क्रांतिकारी नौजवान श्याम जी के शिष्य बने, जिनमें मदन लाल ढींगरा और वीर सावरकर उनके प्रिय शिष्यों में थे। सावरकर ने श्याम जी के मार्गदर्शन में ही 1857 की क्रांति पर पुस्तक लेखन आरंभ किया था। इसके साल भर बाद ही भारत में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हो गई। बंगाल में सुरेंद्रनाथ बनर्जी सहित अनेक आंदोलनकारी बंदी बना लिए गए। खबर इंडिया हाउस भी पहुंची, सभा बुलाई गई, जिसमें अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव पारित किया गया। इसकी प्रतियां समाचार पत्रों को भी भेजी गई। इसके साथ ही श्याम जी ने विभिन्न देशों और नगरों में जाकर संगोष्ठियों में भाग लेना आरंभ किया। वो अब अंग्रेज सरकार के विरोध में खुलकर बोलने लगे थे। होलबोर्न टाउन हॉल में आयोजित यूनाइटेड कांग्रेस ऑफ डेमोक्रेट्स की संगोष्ठी में जोरदार भाषण दिया।
0: भारतीय स्वाभिमान को जगाना होगा, भारत को ब्रिटिश साम्राज्य से पूरी तरह स्वतंत्र कराना होगा।
2: इंडिया हाउस इंडियन होम रूल संगठन की स्थापना के अलावा श्याम जी कृष्ण वर्मा ने इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नाम का अखबार भी शुरू किया, जिसकी कॉपियां पूरे यूरोप में भेजी जाती थी। उनके लेख आयरिश, जिनेवा और फ्रांस के कुछ समाचार पत्रों में छपने लगे। इंग्लैंड के समाचार पत्रों में उनकी गतिविधियों की आलोचना होने लगी। ब्रिटिश सरकार विरोधी लेखों को लेकर श्याम जी अंग्रेजों के निशाने पर आ गए, साथ में उनका इंडिया हाउस भी। सीक्रेट सर्विस के एजेंट उन पर नजर रखने लगे।

0: उन पर कई तरह की पाबंदियां लगा दी गई। इस कारण श्याम जी ने इंडिया हाउस की जिम्मेदारी वीर सावरकर को सौंपी और खुद पेरिस के लिए निकल गए। ये साल 1907 की बात होगी। हालांकि अंग्रेज सरकार ने उन्हें वहां भी परेशान करना नहीं छोड़ा। तब श्याम जी ने फ्रांसी राजनेताओं से संपर्क बनाना शुरू किया और वहीं से पूरे यूरोप के भारतीय क्रांतिकारियों को एकजुट करने, उनको मदद करने, कई भाषाओं में अखबार छपवाने आदि में मदद करने लगे। लेकिन ब्रिटेन और फ्रांस के बीच एक सीक्रेट समझौते के चलते उन्हें पेरिस भी छोड़ना पड़ा। प्रथम विश्व युद्ध से ठीक पहले श्याम जी स्विट्जरलैंड की राजधानी जेनेवा के लिए निकल गए।
1: क्या जेनेवा में वे भारतीय क्रांतिकारियों की मदद कर पाए?
2: क्या कहूं बन्नो, समय साथ नहीं दे रहा था उनका और ना अंग्रेज पीछा छोड़ रहे थे। जेनेवा में भी उन पर थोड़ी बहुत पाबंदियां थी, फिर भी जितना संभव था वे यूरोप में सक्रिय भारतीय क्रांतिकारियों की मदद करते रहे।
0: विश्वासघात क्या होता है, इसका आभास श्याम जी को नहीं था। जब तक कि उन्हें ये पता नहीं चला कि जिस प्रो इंडिया कमेटी के प्रेसिडेंट डॉक्टर ब्रीस से वो सबसे ज्यादा बातचीत करते थे, वो एक ब्रिटिश सीक्रेट एजेंट थे। उधर मदन लाल ढींगरा ने जैसे ही भारत के सचिव वाइली की हत्या की तो इंडिया हाउस अंग्रेजी सरकार के निशाने पर आ गया। आखिरकार 1910 में इसे बंद कर दिया गया। फिर 30 मार्च 1930 का वो काला दिन आया जब जिनेवा में भारत के वीर सपूत श्याम जी कृष्ण वर्मा ने जीवन की अंतिम श्वास ली। उनकी मौत पर लाहौर की जेल में बंद भगत सिंह और उनके साथियों ने शोक सभा रखी, जबकि वो खुद कुछ दिनों के मेहमान थे।
1: दीदी, क्या उनका शव जिनेवा से भारत आ पाया?
2: बन्नो, श्याम जी को एहसास हो चला था कि उनकी अंतिम घड़ी कभी भी आ सकती है, इसलिए मरने से पहले उन्होंने जिनेवा की सेंट जॉर्ज सिमेट्री में 100 साल तक अपनी अस्थियां सुरक्षित रखने की फीस भर दी थी। बाद में उनकी पत्नी की अस्थियां भी उसी सिमेट्री में रखी गईं। उन्हें आशा थी कि जब भी देश स्वतंत्र होगा तो देशभक्त उनकी अस्थियां भारत ले आएंगे। 1947 में देश आजाद हो गया, लेकिन किसी को श्याम जी की अस्थियां भारत वापस लाना याद नहीं रहा। आखिरकार 22 अगस्त 2003 को गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिनेवा की धरती से श्याम जी और उनकी पत्नी भानुमती की अस्थियां भारत मंगवाई। मुंबई से उनके जन्म स्थान मांडवी तक भव्य जुलूस निकाला गया। राजकीय सम्मान के साथ उनका अस्थि कलश लाया गया। इतना ही नहीं, श्याम जी के जन्म स्थान पर एक भव्य स्मारक क्रांति तीर्थ का निर्माण भी कराया गया। उस परिसर के श्याम जी कृष्ण वर्मा कक्ष में उनकी अस्थियों को सुरक्षित रखा गया। ये स्थल वैसा ही बना जैसे कि श्याम जी कृष्ण वर्मा का लंदन में इंडिया हाउस होता था। 13 दिसंबर 2010 को इस मेमोरियल को राष्ट्र को समर्पित किया गया। कच्छ जाने वाले सभी देशी विदेशी पर्यटकों के लिए मांडवी का ये क्रांति तीर्थ एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है।
0: श्याम जी कृष्ण वर्मा का एकमात्र स्वप्न था स्वतंत्र भारत, जहां हर नागरिक स्वाभिमान से जी सके। अपने राष्ट्रवादी विचारों से उन्होंने न सिर्फ देश बल्कि विदेश में रह रहे भारतीयों के हृदय में क्रांति की लौ जगाई, जबकि खुद उनके हृदय में वंदे मातरम गीत एक अग्नि की तरह धधकता रहा, उनके जज्बे को बल देता रहा। उस एक ध्वनि ने पूरे भारतवर्ष को एक सूत्र में बांधा। वो केवल एक गीत नहीं बल्कि भारत के आत्मगौरव, स्वाधीनता और एकता का शाश्वत प्रतीक है। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे देश के एक अन्य वीर सपूत से। तब तक सुनते रहिए एक गीत एक नारा और एक और इतिहास रचती कहानी के साथ। जय भारत, वंदे मातरम।

का समय तब बनता है खास जब उषा आती है आशियाना के साथ। आप सभी को नमस्कार, राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, खम्मा घणी सा, गुड मॉर्निंग सा। कर्मेंद्रियां हमारे वश में हो न कि हम उनके वश में हो, कर्मेंद्रियां हमारे वश में हो न कि हम उनके वश में हो, जरा विचार करिए कि ऐसा क्यों। अगर हिचकी आए तो क्या करेंगे? आप आशियाना सुनते रहिए, इसका उपाय जरूर देंगे। और आज आपको एक विशेष अतिथि से भी मिलाएंगे और कुछ खास भी बनाने वाली हूँ। प्रश्न तो जरूर पूछूंगी, तो बने रहिएगा आशियाना में, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: प्लेटफॉर्म पर चलते समय ध्यान रखें कि यदि कोई गाड़ी रनिंग थ्रू पास होती है उस समय प्लेटफॉर्म के किनारे पर न चलें, जिससे आपकी जान को खतरा हो सकता है। तब एक छोर से दूसरे छोर पर जाने के लिए पैदल पुल का इस्तेमाल करें। रेलवे लाइन क्रॉस करना कानूनी अपराध है व इससे आप अपनी जान गंवा सकते हैं।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: आशियाना में पुनः आप सभी का स्वागत है। आज का सुंदर सा विचार इस प्रकार है कि कर्मेंद्रिया हमारे वश में होनी चाहिए, न कि हम कर्मेंद्रियों के वश में हो। कर्मेंद्रिया हमारे वश में हो, न कि हम कर्मेंद्रियों के वश में। कैसे? तो आज के विचार का विस्तार इस प्रकार करेंगे। स्वयं हम स्वयं मालिक होकर के कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कराएंगे। कहते हैं कि मन में कोई ख्याल आए, कोई भी मन में किसी के भी प्रति बुरा ख्याल आए, लेकिन कर्म में नहीं आओ, वाचा में आए तो भी वो कर्म हो गया। मनसा में कोई ऐसा ख्याल आए तो वहाँ ही समाप्त कर दीजिए। मैं कौन हूँ, मैं किस लिए इस दुनिया में आई हूँ, ये संकल्प और अशुद्ध संकल्प को, मतलब इस तरह के संकल्प चलाने लेकिन अशुद्ध संकल्पों को समाप्त कर देना है। बातों को अवॉइड करना है, जो हमारे काम की बातें न हो तो उसे अवॉइड करते जाओ। अगर अवार्ड लेना है स्वयं से, तो दिन भर में कौन कौन सी बातें आती है, संकल्प वचन कर्म में जो हमारे काम की बातें नहीं है उसे अवॉइड करो। जैसे मोती चुगने वाला हंस जो काम का नहीं होता है उसे अलग कर देता है। समझ कहती है तुम्हारे सोचने का तरीका बहुत अच्छा हो, जो तुम्हारे काम की बातें नहीं उसे अवॉइड करो। जो और किसी की ड्यूटी है उसमें अपना इंटरफेयर नहीं करो। हम जिस कार्य के अर्थ निमित्त है उसमें भी अपने को भारी मत करो, भारी होने को भी अवॉइड करो। कैसा होगा, मतलब कैसे होगा, क्या होगा, इस नेचर को भी अवॉइड करो। अच्छा ही होगा जो हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा, और जो होने वाला है वो तो बहुत ही अच्छा होने वाला है। इस दृढ़ संकल्प से विक संकल्प को अवॉइड करो। जहाँ कोई परचिंतन वाली बातें चलती है उनसे अपने को अवॉइड करो, उससे हमारी उन्नति नहीं है। फालतू चर्चा करने वालों से अवॉइड करो, उनको भी व्यर्थ चिंतन करने वालों के संग का अवॉइड करो। तो इस तरह अगर हम व्यर्थ से बचेंगे और स्वयं पर ध्यान देंगे कि मैं क्यों इस दुनिया में आई हूँ, मुझे क्या करना है, मुझे कैसे चलना है, किस तरह का भोजन मुझे करना है और कैसे विचार मुझे रखने हैं, कैसा व्यवहार लोगों के साथ करना है, तो हम कह सकते हैं कि कर्मेंद्रिया हमारे वश में है, न कि हम उनके वश में। तो ये हुआ आज का सुंदर सा विचार, जिस पर जरूर गौर करेंगे। और आइए सुनेंगे एक प्यारा सा गीत। सुनते रहो मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन

0: याद किया है, हिच हिच हिच की लगी हिच की। तो आप सुन रहे हो कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना में अब आपको देंगे, आप सभी समझ गए होंगे कि आज मैं हिचकी पर नुस्खे देने वाली हूँ। भाई कभी कभी क्या है, हिचकी भी बड़ी परेशान कर देती है, क्योंकि कभी कभी दो चार बार आकर के बंद हो जाती है तब तो ठीक है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी लगता है कि बस लगातार आती रहती है, फिर परेशान हो जाते हैं, है ना। और हम क्या करते हैं, बीच बीच में पानी पी लेते हैं, 7 घूंट पानी पीने से हिचकी चली जाती है, ऐसी मान्यता है। ऐसा भी करके देखते हैं, सबसे पहले तो यही उपाय करते हैं, लेकिन कभी कभी इस उपाय से भी हिचकी नहीं जाती है। तो मैं आपको बहुत ही सुंदर नुस्खे दे रही हूँ कि गुनगुने पानी में नींबू का रस और 1 चुटकी नमक और पुदीने के कुछ पत्ते मिलाइए, फिर इसे पीजिए, हिचकी और गैस दोनों में आराम मिलेगा। गुनगुने पानी में नींबू का रस और 1 चुटकी नमक और पुदीने के कुछ पत्ते मिला दीजिए, इसे पीजिएगा, हिचकी और गैस दोनों में आराम मिलेगा। हिचकी को रोकने के लिए नमक और पुदीने का इस्तेमाल आपको करना जरूरी है, ठीक है। और अगला नुस्खा आपको मैं दे रही हूँ, अगर ये नहीं कर सकते तो आप सोंठ और बड़ी हरड़ को बराबर बराबर मात्रा में लीजिए, पीस करके चूर्ण बना लीजिए, फिर 3 ग्राम चूर्ण को पानी के साथ लीजिए, सेवन करिए, इससे भी हिचकी बंद हो जाएगी। सोंठ और बड़ी हरड़ को बराबर बराबर मात्रा में पीस करके इसका चूर्ण बना लीजिए, 3 ग्राम चूर्ण को पानी के साथ सेवन करने से हिचकियां बंद हो जाती है। और लास्ट नुस्खा सुनेंगे कि कुटकी के चूर्ण को 1-2 चुटकी की मात्रा में शहद के साथ मिलाकर के दिन में 3-4 बार खाइए, इससे भी हिचकी में आराम मिलता है। कुटकी के चूर्ण को कुटकी होती ना, उसको कूट पीस करके उसका चूर्ण बना लीजिए, फिर 1-2 चुटकी की मात्रा में थोड़ा सा शहद मिला करके 3-4 बार खाइए पूरे दिन में, इससे भी हिचकी में आराम मिलेगा। तो इस तरह आप अपने हिचकी को ठीक कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारे ही नुस्खे लाजवाब है, चाहो तो आप आजमा सकते हो। और अब मैं आपको प्रश्न पूछ रही हूँ कि देखिए, मैंने आपको कुछ बात कही, ठीक है, मैं ऐसे ही कहूँगी ना आपको, कुछ बात करने से पहले किसी को बताना नहीं हो, सिर्फ मैं आपको बता रही हूँ, फिर आप भी अपने दोस्त से कहेंगे कि देखो ये बात मैं कह रहा हूँ या कह रही हूँ, लेकिन किसी को बताना मत, फिर वो तीसरे को कहेगा तो उसको भी ऐसे ही कहेंगे कि किसी को बताना नहीं, तो वो इसका आप अर्थ बताइए कि बात फैलते फैलते इसका क्या हाल होगा, ठीक है, जवाब जरूर दीजिएगा। हमारे नंबर है 94-14-15-14-15। हेलो
1: हेलो हेलो सर, कुटकी क्या होती है?
0: कुटकी एक आयुर्वेद चीज होती है, जैसे कि हम सोंठ नहीं लेते इस तरह कुटकी भी आती है, पंसारी
1: के लिए पूछ रहा मैं,
0: पंसारी की दुकान पर मिल जाएगा या किराने की दुकान पर मिल जाएगी, ठीक है,
1: ठीक है साहब
0: जी। आपका शुभ नाम बताएंगे?
1: मेरा नाम ज्ञान सिंह है साहब।
0: अच्छा अच्छा, बहुत बहुत आभार आपका। तो आप किराने की दुकान पर पूछेंगे तो भी मिल जाएगी, ठीक है,
1: ओके सर
0: जी जी, थैंक यू। चलिए यहीं पर सुनेंगे एक गीत, बने रहिएगा आशियाना में, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन

0: आप हमरे रिया रेडियो मधुबन 107.8 FM हमरता रेडियो ने मुस्कुराता रेडियो।
1: शायद सच ही कहते हैं लोग, शायद सच ही कहते हैं लोग कि औरत में दिमाग नहीं होता, तभी तो वह हर रिश्ता दिल से निभाती है बिना किसी मतलब के। तभी तो वह हर रिश्ता दिल से निभाती है बिना किसी स्वार्थ के। आप सुन रहे हो कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना में आज हमारे एक विशेष अतिथि जुड़े हुए हैं, सोनू जी, जो नेपाल के रहने वाले हैं परंतु 16 साल से आबू में ही रह रहे हैं, आबू तलेटी में। और देखिए, कहते हैं कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, अगर हम चोरी करते हैं, झूठ बोलते हैं, तो ये पाप है, तो ये विकर्म है। काम करना अच्छी बात है और काम करके स्वाभिमान से जीवन जीना ये बहुत ही अच्छी बात है। तो सोनू जी लोगों के घर के झाड़ू पोछे करते हैं लेकिन हमेशा खुश रहती है, 3 बच्चे हैं, उनकी परवरिश भी कर रही है, और कैसे अपने घर परिवार को चला रही है और हमेशा अपने जीवन को खुशियों से भरा रखते हैं। तो ऐसे नारी शक्ति से आपको मिलवाते हैं। सोनू जी, आपका स्वागत है आशियाना में।
2: जी धन्यवाद।
1: सोनू जी, आप जैसे झाड़ू पोछा करते हैं, तो ये काम आपने कब से शुरू किया और ये आपको कहाँ से प्रेरणा मिली? कितने साल हो गए आपको झाड़ू पोछा करते हुए?
2: ऐसे हो गए मेरे 10-12 साल। जब बच्चे छोटे छोटे थे तब तो नहीं कर पा रहे थे, अभी जब बच्चे थोड़े बड़े हो गए, स्कूल उनको पढ़ाने का समय आया तो मजबूरी में या कुछ भी हो करना पड़ा हमको।
1: जी जी जी, मजबूरी से आपने काम को शुरू किया। 3 बच्चे हैं आपके। अच्छा, तो मतलब पहले आपकी इच्छा नहीं थी शुरुआत में झाड़ू पोछा करने की?
2: ऐसे मतलब अभी हम घर पे रहते थे, अपने हाउस वाइफ है, तो अपना घर खर्च देख के भाई आदमी कैसे अकेले सब कुछ देखभाल करेगा, फिर फैमिली भी बड़ी होती जा रही थी, फिर हम भी सोचे कि थोड़ा बहुत हम भी हेल्प करें या थोड़ा अपने घर वाला को सपोर्ट हो जाएगा और हमारे बच्चों को भी अच्छी परवरिश होगी।
1: जी जी,
2: इसीलिए।
1: तो आपके पतिदेव ने हाँ कर दी?
2: हाँ, वो बोले कि हाँ, और कहीं तो नहीं जाना, बस बाबा का घर है तो जाओ, वहाँ थोड़ी सद्बुद्धि मिलेगी, अच्छा ज्ञान मिलेगा।
1: अच्छा, तो आप तब से आपने शुरू किया, 12 साल हो गए झाड़ू पोछा करते हुए। तो आप कितने घर के करते होंगे लगभग?
2: बस 5-6 घर।
1: अच्छा, 5-6 घर पर आप काम करते हो। महीने का लगभग कितना कमा लेते होंगे?
2: महीने का किसी महीने 5,000, किसी महीने 6,000 बस।
1: जी जी जी, और झाड़ू पोछे के अलावा और आपको आप क्या करते हैं? बर्तन भी मांजते हैं?
2: हाँ, घर की साफ सफाई, झाड़ू पोछा, बर्तन, बस जो हो जाए।
1: जी जी जी, तो आपके 3 बच्चे भी हैं, तो कैसे आप बच्चों को समय दे पाते हैं, कैसे आप लोगों के घर के काम कर पाते हैं, कैसे ये सब कुछ मैनेज कर रहे हैं?
2: बस अपने आप को मजबूत बना के सुबह जल्दी उठ के सब घर का काम करके फिर आगे जाके अपन को भी टेंशन होती है, चिंता होता है कि आगे भी करना है और भी आगे बढ़ना है, बच्चों की अच्छी जिंदगी देनी है, अच्छी परवरिश करनी है, इसीलिए बस वही।
1: बहुत अच्छी बात है। देखिए, मतलब कुछ करना है तो फिर हमें थोड़ा सा त्याग भी, समय का त्याग भी देना पड़ेगा इसके लिए। हाँ। जल्दी उठ करके हम समय को कवर कर सकते हैं। आप कितने बजे उठ जाते हैं?
2: ऐसे कभी 5, कभी 5:30, कभी 6, जब ज़्यादा थके रहते हैं तो 6 भी बज जाता है, नहीं तो टेंशन रहती है दिमाग में तो जल्दी उठ जाते हैं।
1: जी जी जी, तो आप कितने बजे मतलब काम करने चले जाते हैं?
2: मैं काम पे 8:30-9।
1: अच्छा, सुबह 8:30-9 बजे चले जाते हैं। फिर घर पर कितने बजे आते हैं?
2: घर पर कभी 5 बजे, कभी 4 बजे डेली का।
1: अच्छा, इसके बीच खाना कैसे आप यहाँ बना के जाते हैं?
2: हाँ, खाना घर पे बना के जाते हैं, नाश्ता वगैरह करके जाते, फिर आके खाते।
1: सुबह 8:30-9 बजे घर से निकलते, उसके बाद 4-5 बजे आकर के खाना खाते।
2: हाँ,
1: और बच्चे लोग को तब तक कौन संभालता है?
2: बच्चे लोग अभी थोड़े बड़े हो गए, स्कूल जाते हैं, उनको आके इतने बड़े हो गए कि खुद मतलब सब कर लेते हैं खाना।
0: जी जी, अभी तो बड़े हो गए लेकिन आपको 12 साल हो गए काम करते हुए, उस समय कौन संभालता था?
2: उस समय बस ऐसे ही जे अब थोड़ा थोड़ा करके मुश्किल थी तो अपने में ऐसे करके संभाल
0: मतलब बीच बीच में आप घर पर जाते थे, एक दो घर का काम करके बीच बीच में घर पर जाते थे। तो आपके साथ और भी कोई है जैसे आपके सासू माँ या आपके मम्मी कोई भी?
2: नहीं, वो लोग सब नेपाल में है, हम खाली हमारी फैमिली है, 3 बच्चे और हम मियाँ बीवी।
0: अच्छा, आपके पति देव क्या काम करते हैं?
2: ओ, ज्ञान अमृत प्रिंटिंग प्रेस में करते हैं।
0: अच्छा अच्छा, तो आपके दोनों की कमाई से घर का गुजारा अच्छी तरह चल जाता है?
2: हाँ चलता है, थोड़ी घर का अपना वो करके चलाते हैं।
0: जी जी जी, देखिए वो कहते हैं कि थोड़ा सा अगर हम मेहनत नहीं करेंगे, समय का त्याग नहीं करेंगे तो बच्चों को अच्छा भविष्य नहीं दे पाएंगे। तो हाँ, तीनों बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं?
2: हाँ तीनों जाते हैं।
0: और नेपाल कितने समय में जाना होता है आपका?
2: कभी एक साल में जाते हैं, 1 महीने के लिए सबसे मिल के सबका हाल खबर लेके फिर आ जाते हैं।
0: तो जैसे आप 1 महीने के लिए जाते हैं उस समय फिर वो काम कौन करता है?
2: किसी अपने सगे संबंधी को, जान पहचान वालों को, उनको वहाँ पे रख के जाते हैं।
0: अच्छा, तो आप लोग ऐसे तालमेल बिठा के रहते हैं कि जैसे आप गए तो आपके बदले किसी ने कर लिया काम और वो गए तो आप कर लेते हो?
2: हाँ जी।
0: तो फिर वो डबल लोड नहीं पड़ जाता है, डबल काम हो जाता है कैसे फिर?
2: अभी थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेते हैं।
0: बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है सोनू जी, आपसे और भी बातचीत करेंगे लेकिन समय हो चला है एक गीत सुनने का, तो सुनेंगे एक गीत, बने रहिएगा मेरे प्यारे श्रोता बंधु। सोनू जी जो देखे झाड़ू पोछा करके अपने घर का गुजारा कर रहे और अपने जीवन को किस तरह इन्होंने खुशनुमा बना करके रख रखा है। तो काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, काम काम ही होता है, चाहे कोई भी काम करो वो काम श्रेष्ठ ही होता है। चोरी झूठ अन्याय ये करना तो ये गलत है, ये पाप है, लेकिन काम करना बहुत अच्छी बात है। सोनू जी ने पढ़ाई बिल्कुल नहीं की लेकिन कैसे अपने घर का आप अच्छी तरह घर को चला रहे हैं। कहते हैं कि भाई महंगाई के ज़माने में एक के कमाने से पूरा नहीं पड़ता है, दोनों का कदम से कदम बढ़ा करके चलना ही पड़ता है, चाहे घर के काम हो चाहे बाहरी क्षेत्र में काम हो। तो आइए सुनेंगे पहले एक गीत, उसके बाद पुनः लौट करके आ रहे हैं, सोनू जी हमारे साथ बने हुए हैं, तो सुनेंगे एक गीत। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन

0: क्या आपका फोन चोरी हो गया है? क्या आप जानते हैं कि अपना मोबाइल फोन कैसे ब्लॉक करें और ट्रेस करें? आप sanchar-saathi.gov.in पर संचार साथी की मदद ले सकते हैं। सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज के अंदर ब्लॉक योर लॉस्ट स्टोलन मोबाइल CEIR पर क्लिक करें। आपको केवल फोन नंबर, फोन का ब्रांड, फोन बिल, FIR कॉपी, फोन का IMEI नंबर की जरूरत है। पूरी जानकारी भरें और अपने चोरी हुए फोन के दुरुपयोग से बचें। किसी भी साइबर अपराध की रिपोर्ट cybercrime.gov.in पर करें। सतर्क रहें, साइबर सुरक्षित रहें।
1: कुछ लोग कहते हैं कि औरत का कोई घर नहीं होता है, कुछ लोग कहते हैं कि औरत का कोई घर नहीं होता है, लेकिन सच तो यह है मेरे प्यारे श्रोता बंधुओं कि औरत के बिना कोई घर नहीं होता है, औरत के बिना कोई घर नहीं होता है। आप सुन रहे हो कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में सोनू जी हमारे साथ बने हुए हैं। कैसे सोनू जी ने झाड़ू पोछे बर्तन को अपना व्यवसाय बनाया है कि झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, बर्तन मांजना लोगों के घर का और अपने जीवन को खुशनुमा बनाना, कैसे अपने मतलब इन्होंने अपने जीवन में इसको व्यवसाय बनाया है आपने जाना है और भी हम जानेंगे। सोनू जी पुनः आपका स्वागत है आशियाना में। अच्छा सोनू जी, आप कोरोना काल में बहुत लोगों के काम छूट गए थे, तो आपने कैसे मतलब जारी रखा या फिर कैसे आपने कोरोना काल में अपने आप को संभाल के रखा पूरे परिवार सहित?
2: हाँ, ऐसे तो पहले कोरोना जब नहीं था तो ठीक चल रही थी काम काज, जब कोरोना चालू हुआ तो बहुत परेशानी आ गई थी। अब काम पे काम भी बंद हो गया था, सब लोग यही डरते थे कि कहीं कुछ हो ना जाए, इसीलिए सब अपने अपने घर में थे, ना ही काम की काम पे कभी मतलब बुलाते नहीं थे, सबको डर थी, हमको भी उनको भी, पंतों पर भी। ऐसे करके थोड़े बहुत जो समझते थे हमारे इधर जो योगी नगर में थे वो लोग सब अच्छे हैं, तो वो लोग समझे कि ऐसे ऐसे हालात में भी वो घर बैठे रहेंगे तो कैसे उनका घर खर्चा चलेगा, फिर इसीलिए वो लोग भी हम भले एक दो महीना घर पे रहे तो पर भी वो हमको सब देख के हमारी परिस्थिति समझ के वो लोग मतलब हमारे पगार वगार नहीं काटे, हमारे जो कोरोना काल का जो खर्चा था वो लोग मदद किए और दिए, और हम भी एक दो महीना घर पे बैठे थे तो पर भी मतलब पगार दिए उन लोगों ने।
1: अच्छा, आप पेमेंट दी, काटी किसी ने नहीं?
2: नहीं।
1: एक काम का आप कितने ले लेते हो, जैसे झाड़ू पोछे का कितने लेते हैं आप?
2: झाड़ू पोछे का 800 महीने का।
1: 800 रुपए महीने का, तो वो जो पैसे है आपके काटे नहीं, सभी ग्राहक ने दिया आपका?
2: नहीं, जो ऐसे सब जो अपने परिस्थिति समझते थे
1: जी जी जी
2: उन्होंने ही दिया, और बाकी अब अपनी अपनी।
1: हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जिसको दया थी रहम था कि भाई कैसे गुजारा करोगे तो उन्होंने पैसे भी दिए, किसी ने फिर खाना वगैरह कपड़े वगैरह ऐसे भी दिए?
2: हाँ दिए थे खाना।
1: अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात है ना, लेकिन वो कहते हैं कि खुददारी से जीवन जीती हो, स्वाभिमानी से, कि हाथ नहीं फैलाना किसी के सामने।
2: हाँ जी,
1: ये बहुत बड़ी बात है कि लोग बात क्या है जल्दी से हाथ फैलाने लग जाते हैं, अहंकार में बैठ जाते, अच्छी पढ़ाई करने के बाद नौकरी नहीं मिलती है तो माता पिता पर डिपेंड रह जाते हैं, बेचारे माता पिता कितने समय बच्चों को पालेंगे, जब बच्चे जवान हो जाते हैं तो माता पिता भी बच्चों से अपेक्षाएं रखते हैं कि अब हमारा बच्चा भी कुछ करे, लेकिन नौकरी के भरोसे बच्चे दूसरा छोटा मोटा काम करना नहीं चाहते, भले घर में परिस्थिति ऐसी आ जाए कि भूखे मरने की बारी आ जाए, लेकिन नहीं भाई, हम छोटे मोटे काम तो नहीं करेंगे, करेंगे तो ऊंचाई करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, ऐसी सोच को आप क्या कहेंगे? तो सोनू जी ने देखो कोई भी काम को छोटा बड़ा नहीं समझा है, और किस तरह आप लोगों के घर का झाड़ू पोछे करके अपने आप को खुशहाल रखते हैं, आपसे सभी खुश रहते हैं सोनू जी?
2: हाँ, मैं घर के जैसे ही सबके घर में जाती हूँ तो करती हूँ, वो लोग भी मुझे अच्छा रखते हैं।
1: बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आप हंसमुखी भी है। और आपको ये झाड़ू पोछा बर्तन के अलावा आप और क्या काम आता है आपको?
2: मुझे इसके अलावा थोड़ा बहुत कपड़े सिलना आता है।
1: क्या बात है, कपड़े सिल लेते हो, खुद के सिलते हो या बाहर लोगों के भी सिलते हो?
2: खुद का सिल लेती हूँ, बाहर लोग का भी थोड़ा बहुत सिलती हूँ, पर उतना टाइम नहीं बैठता है, उधर करके आके फिर घर का सब करना पड़ता है और फिर टाइम नहीं मिलता है, और थोड़ी बहुत आती है।

0: हाँ जी
1: आप अपने घर में बच्चों के भी आप ही सिलते हैं?
0: हाँ
1: तो एक ये आपके जो बाहर सिलाई देनी पड़ती है वो बच जाती है,
0: हाँ
1: तो
0: जी
1: 5-6 हज़ार तो आप मंथली कमाई लेते हैं, और
0: हाँ
1: उसके अलावा भी आप सिलाई वगैरह करके भी ये पैसे की बचत कर लेते हैं।
0: हाँ जी
1: और आप जहाँ पर भी जैसे काम करते हैं, तो मान लीजिए आपने कहा ना कि 8:30-9 बजे आप जाते हैं, 4-5 बजे आप घर पर आ जाते हैं, लेकिन कोई अगर आपको शाम के समय बुलाता है कि आज हमारे भाई गेस्ट आने वाले हैं, ये है वो है, तो फिर शाम के समय भी जाते हैं आप काम करने?
0: हाँ इमरजेंसी होता है तो जाना पड़ता है, वो भी अपने परिवार ही जैसे हैं।
1: जी, जिनको ज़रूरत है तो फिर आप उस अनुसार चले जाते हैं।
0: हाँ जी
1: अच्छा, तो हमारी जो बहनें सुन रही उनको आप क्या कहना चाहेंगे?
0: मैं यही कहना चाहती हूँ सभी बहनों को और सभी माताओं को कि काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, और इसमें कोई कोई चीज़ का शर्म नहीं है। बस अपना घर चलाना, अपना अपनी सब परवरिश करनी है, सब बच्चों का अपना, तो ये सब कोई काम छोटा बड़ा बड़ा नहीं होता है। बस अच्छे लगन से काम करते जाओ, और ये सब और उल्टा सुल्टा गलत काम से अच्छा तो झाड़ू पोछा करके अपने
1: क्या
0: अच्छे से कमाए खाए, अच्छी जीवन बिताए।
1: बात है सोनू जी, आपने 100% की बात कह दी कि उलट सुलट काम करने से तो अच्छा है कि झाड़ू पोछे बर्तन करके भी अपने घर को हम चला सकते हैं। कितनी बड़ी बात कह दी। आज कहते हैं कि जो पढ़ाई नहीं करते हैं अनपढ़ होते हैं, उनको हम हीन दृष्टि से देखते हैं। एक ऐसा आता है कि अरे इसके पास क्या है, इसको क्या आता है, लेकिन देखिए सोनू जी की बात से मतलब कितनी शिक्षा मिलती है कि उलट पुलट काम करने से अच्छा है मेहनत करो। मेहनत में कभी शर्माना नहीं है, कभी घबराना नहीं है। काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता है, काम काम ही होता है। काम का सम्मान करें और स्वाभिमान का जीवन जिए, ये सोनू जी के जीवन का लक्ष्य है। सोनू जी बहुत बहुत आपको धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: तो यहीं पर सुनेंगे एक गीत, बने रहिएगा आशियाना में, सुनते रहो मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन।

हेलो दोस्तों, मैं हूं आप सबका आलमगीर, सबको मेरा प्यार भरा सत श्री अकाल, नमस्कार। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन पर, सुनते रहिए, गाते रहिए और गुनगुनाते रहिए, झूमते रहिए और सबको प्यार से झुमाते रहिए। ओ, ओ, ओ, ओ, ओ आज दर पे चल के आया है मौका।

0: आप सुन रहे हो कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना में समय हो चला है आप सभी को नए नए व्यंजन सिखाने का। और आज का प्रश्न पूछना चाहूंगी कि देखिए, जैसे कि मैंने आप में से किसी एक को कुछ बात कही, ठीक है, और मैं कहती हूँ कि आप किसी को बताना मत, लेकिन मैं जानती हूँ कि कोई चुप नहीं बैठेंगे, वो भी अपने अजीज को बताएंगे कि भाई ये बात है और किसी को बताना मत। इस तरह एक दूसरे को कहते कहते वो बात मतलब किस तरह उसका सार निकलता है, जवाब जरूर दीजिएगा। हमारे नंबर है 94-14-15-14-15। हेलो
1: जी, नमस्कार। गुड मॉर्निंग।
0: हाँ जी नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग सुरेश भाई, कैसे हो?
1: बहुत अच्छे जी, बस बिल्कुल बहुत अच्छे है
0: जी।
1: और अच्छी बातें भी हो रही है, और अच्छी बातें अभी अभी जो आपने बहन जी ने बताई, बहुत अच्छा लगा जी की मेहनत करने में कोई मेह नहीं है
0: जी जी।
1: ऐसे ही उसके ऐसे संघर्ष करके कचरा पोता और ये करके जो उसका पूरा जीवन अच्छा किया, तो ऐसे अभी मेहनत करने में कोई ऐसे नहीं। आज कई महिलाएं ऐसा काम कर रही हैं और खुद का गुजारा कर रही है और बच्चों को पाल रही है
0: जी जी, बिल्कुल
1: तो सही बात है, बहुत अच्छा लगा। तो इसमें कोई ऐसी नहीं है कि ये काम नहीं कर सकते हम, समस्या अनुसार करना चाहिए, करना पड़ता है
0: जी जी जी।
1: और कल एक कार्यक्रम आपका सुना था दीदी, हिंसा को रोके
0: जी जी,
1: वो भी बहुत अच्छा लगा कि जो महिला हो तो बस कुछ करना ही, घर का काम कीजिए और कुछ दखल मत कीजिए, पैसे की कोई ऐसा नहीं देना, खुद कुछ नहीं करना बस, तो ये क्या करना है, न्याय है। तो ये कल का कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा दीदी, और वो बहन जी ने कितना अच्छा करके एक वकील से मिलके उसका का वो किया, तो अच्छा लगा कल
0: जी जी। इसमें सुरेश भाई विशेष क्या सीखने को मिला इसमें, आपको क्या महसूस हुआ?
1: दीदी इसमें क्या है, मैं बताऊँ तो महिलाओं की भी पैसे की जरूरत पड़ती है
0: जी,
1: तो महिलाओं का भी खुद जब रखा है घर में, क्यों नहीं उसको हम लाए हैं, तो उसका भी ये भी हमारे घर का परिवार का हिस्सा है, तो इसके जितना हमारा हिस्सा है इतना इतना हिस्सा है उसका भी
0: जी जी।
1: तो उसको भी इसकी असर से पैसा देना चाहिए, कुछ लाना हो तो पैसा देना चाहिए, और नहीं लाना हो तो उसको खुद देना ही चाहिए कि आपको कुछ लेना हो तो
0: जी,
1: पैसे
0: जी,
1: में भी आप खुद ले लेना
0: जी तो जी, बराबरी का हिस्सा है जी,
1: बराबर का हिस्सा है। और जो ऐसे न करके पति मारते और इसको पीठ से कुछ ले देते तो ये न्याय नहीं है, इसके लिए तो कुछ सजा जरूर मिलनी चाहिए
0: जी जी जी जी जी। धन्यवाद। और आज के प्रश्न का जवाब देंगे
1: दीदी, आपका प्रश्न तो बहुत अच्छा है। कई लोग ऐसे होते हैं दीदी कि मैंने आपको कहा आपको किसी मत बताना
0: जी,
1: पर खुद बोल ही जाते हैं, सबको बताते जाते हैं, तो ये तो खुद बताते हैं और हमको मना करते हैं
0: जी जी जी।
1: ऐसा तो होना नहीं चाहिए।
0: तो जैसे कि मेन बात का क्या होता है, जैसे मैंने आपको कहा, आपने दूसरे को, दूसरे ने तीसरे को, तो मैंने कहा सबसे पहले वो बात बनी रहती है या फिर कुछ और उसकी प्रतिक्रिया हो जाती है, पूरा ही रूप बदल जाता है?
1: नहीं बनी रहती है, तो वो दूसरे को बताएगा ना, वो नहीं बताएगा दूसरे को, वो बताएगा
0: जी।
1: मैं बताऊँ तो कई हमारे गांव में एक इंसान है, एक लड़के है, तो कभी कभी हमारे पास आके तो बोलते है कि हम आपकी अच्छी बातें बताएंगे लेकिन आप किसी को मत बताना, लेकिन वो बात मुझे भी कही है, और लोगों की भी ये बात की इसने
0: जी जी।
1: तो ऐसा होता है, कई लोग ऐसा है, स्वभाव ऐसा होता है उसका कि हम कहेंगे आप दूसरे को मत बताएं, लेकिन जो आपने बताया वो भी दूसरे को तो जरूर बताएगा, ऐसा तो है नहीं
0: जी जी जी।
1: अच्छी बात है दीदी, बहुत अच्छा लगा
0: जी जी, बहुत बहुत आभार आपका। तो आइए भाई, हमारे श्रोता बंधु का फोन आया था कि मकई का सीजन चल रहा है, भुट्टे का सीजन चल रहा है, तो दीदी कुछ भुट्टे का कुछ सिखाओ ना, भुट्टा मतलब मकई पाक सीखना चाहते हैं, तो सोचा कि चलो एक को क्यों, सभी को सिखा देते हैं मकई पाक। तो आशियाना के किचन में आइएगा पेन और डायरी लेकर के, सामग्री लिख लेना अच्छी बात है, ताकि आप कभी भी किसी भी समय बना करके खा सकते हो। तो आप भुट्टे ले लीजिए 3, ठीक है, 3 भुट्टे लेने हैं। फिर आप लीजिए शक्कर 7 के अनुसार, इलायची पाउडर लेना है, और मावा लीजिएगा। देखिए मात्रा मैं नहीं बता रही हूँ, मात्रा आप अपने हिसाब से लीजिएगा, ठीक है। और ड्राई फ्रूट्स की कतरन लेनी है, भुट्टे, शक्कर, इलायची पाउडर, मावा, ड्राई फ्रूट्स की कतरन। बनाने का तरीका अब मैं आपको सिखा रही हूँ कि भुट्टे को आप छिलके निकाल दीजिए, और इसको भुट्टे को आप या तो छिन्नी में से कद्दूकस करिए, या फिर इसके दाने निकाल करके आप मिक्सर में थोड़ा क्रश करिए, ठीक है, लेकिन हाँ इसके छिलके आप फेंक देना, छिलके थोड़े से इसमें साफ करने में थोड़ा टाइम लगता है। अगर आप कद्दूकस करेंगे तो छिलके ऊपर रहेंगे और जो इसका कन है वो ही नीचे गिरेगा। मिक्सर में पीसेंगे तो फिर वो छिलके भी साथ में रहेंगे, तो छिलके आपको निकालना है और जो कन होते हैं ना उसको अब आप घी भी लेना है, घी डाल करके सिकाई करिए, मध्यम आंच पर अच्छी सी सिकाई करनी है। सिकाई करने के बाद अब आप चाशनी बनाइए, मावा को भी एक कढ़ाई में सेक दीजिए, थोड़ा सा फ्राई कर दीजिए, भूनिए, ठीक है। अब आप चाशनी बनानी है आपको दो तार की, थोड़ी सी कड़क चाहिए इसमें, ठीक है। दो तार की चाशनी बनाने के बाद अब आप चाशनी में से देखो कच्चा दूध डाल करके मेल तो आपको निकालना ही है, फिर चाशनी बन जाती है। तो चाशनी में आप ये मकई जो हमने सेक करके रख रखे हैं इसके कन को ये डालिएगा आप इसमें, और मावा भी डाल दीजिए और अच्छी तरह हिलाइए, अच्छी तरह हिला करके इलायची पाउडर भी डाल दीजिए, ठीक है। फिर से हिलाना है, गैस बंद करिए और एक थाली में घी लगा करके, चिकनाई लगा करके इस खीरे को उसमें उड़ेलिए, उड़ेल करके अच्छी तरह चारों तरफ सेट कर लीजिए। और जैसे ही ये थोड़े से जमने लगे तो मतलब पहले उड़ेल करके आपको ड्राई फ्रूट्स की कतरन ऊपर सजा देनी है, ठीक है, चारों तरफ भुरक देने हैं। उसके बाद जब ये आपको लगे हल्के हल्के हाथों से आप ड्राई फ्रूट्स की कतरन को दबा भी दीजिए ताकि वो चिपक जाएगी। फिर आप बस ये थोड़ी सी जमने लगे आप चाकू से जो भी साइज आप पसंद करते हो बर्फी के रूप में काट लीजिए। तो ये बन गया मकई पाक। फिर से दोहरा रही हूँ विधि को कि आप मकई के या तो दाने निकाल करके मिक्सर में क्रश करिए, बहुत बारीक पाउडर नहीं करना है, हल्का सा मोटा होना चाहिए, ठीक है। बाकी आपको इस तरह क्रश करना है, भले आप कद्दूकस करिए डायरेक्ट ही छीनी से मकई को लेकर के, तो छिलके ऊपर रह जाएंगे और अंदर वो खाली कान ही घिरेंगे। अगर मिक्सर में पीसते हैं तो फिर छिलके आपको झाटक करके साफ करना पड़ेगा, ठीक है। अब आप कढ़ाई रखिए गैस पर, गैस चालू करिए, घी डालिए और घी में इस कन को अच्छी तरह आप सेकिए, मध्यम आंच पर अच्छी तरह सेकना है। सेकने में थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन सोनी सोनी अच्छी खुशबू आने लगे तब तक आपको सेकते रहना है। फिर सिक जाए उसके बाद थोड़ा सा मावा को भी आप सेक लीजिए और फिर आप दो तार की चाशनी बनाइए। चाशनी बन गई हो तो चाशनी में आप ये कन डाल दीजिए, मावा डाल दीजिए, इलायची पाउडर डाल दीजिए और अच्छी तरह हिलाइए। हिलाने के बाद इसको आप एक चिकनाई लगा करके थाली में उड़ेलिए, उड़ेलने के बाद अच्छी तरह सेट कर दीजिए और ऊपर से आप ड्राई फ्रूट्स की कतरन को डाल करके हल्के हल्के हाथों से दबा दीजिए ताकि वो चिपक जाएगी, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा ये गाढ़ा लगे कि भाई हमारे ये जम रहे हैं मकई पाक थोड़ा सा जम रहा है तो आप चाकू से काट दीजिए, लेकिन अच्छी तरह फिट हो जाए फिर आप चाकू से काटोगे तो मज़ा नहीं आएगा। इसलिए थोड़ा सा जमने लगे और चाकू अंदर दबने लगे ऐसे आप जो भी साइज आपको पसंद हो बर्फी की तरह काट दीजिएगा। तो ये बन गया मकई पाक। आज बस मकई पाक ही बनाएंगे, मकई की बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन आज वृद्ध दिवस है तो उस पर भी बात करना ज़रूरी है। तो मकई पाक के साथ आपने और भी कुछ बनाया हो, सब्जी पूरी, भाई अभी तो श्राद्ध के दिन चल रहे हैं तो इस तरह की चीज़ें भी आप बना सकते हो। मकई का झाझरा आपको कल सिखाएंगे, कल नहीं तो सोमवार को सिखाएंगे, कल तो शनिवार है, ठीक है। तो जो भी आपने सब्जी पूरी जो भी बनाया है सब एक स्वच्छ थाली में सब कुछ रखिए, तुलसी पत्र और जल की स्वच्छ ग्लास भर के भी रखिए, ऊपर से स्वच्छ कवर ढक करके आप अपने इष्ट देव को भोग लगाइए और भोग लगाने के बाद अब आप पूरे परिवार सहित मेहमानों सहित आनंद ले सकते हो मकई पाक का। और प्रश्न का जवाब आपका अभी मिला नहीं है कि मान लीजिए मैंने आपसे कान में कुछ बात कही कि भाई किसी को बताना नहीं, आपने उस बात को किस तरह समझा वो मुझे नहीं पता, आपने दूसरे व्यक्ति को बता दी, उसको भी यही कहा आपने कि भाई बताना मत, अब उन्होंने किस तरह उस बात को ली समझी, उनको भी पता नहीं, उन्होंने तीसरे को, फिर इस तरह वाया वाया बात फैल जाती है, तो उसका सार क्या रहता है फिर, ये जवाब आपको देना है। नंबर हमारे है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हो और आज के प्रश्न का जवाब दे सकते हो। आइए फिर से सुनते एक गीत, सुनते रहो मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन।

0: ले बहू, इसे पी जा।
1: ये क्या है माँ जी?
0: ये काढ़ा है, इसे पीते ही तेरा गर्भपात हो जाएगा।
1: नहीं माँ जी, अब बस, मैं और गर्भपात नहीं होने दूंगी। इससे पहले भी आपने मेरी बच्ची की जान ली है, इस बार मैं आपको यह पाप नहीं करने दूंगी और ना ही इस पाप को मैं स्वयं करूंगी।
0: जुबान चलाती है, एक तो पोता दे न सकी, ऊपर से जुबान चलाती है। पोते के आस में बैठी हूँ, न जाने कब मेरी आँख बंद हो जाए।
2: क्या हुआ अम्मा, क्यों गुस्सा कर रही है, क्या बात है?
0: ये महारानी काढ़ा पीने से इनकार कर रही है।
1: मैं ये काढ़ा पीकर अपनी बच्ची की अब और हत्या नहीं कर सकती। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी बच्ची को नहीं मरने दूंगी। लड़का लड़का सुन सुन कर मैं तंग आ गई हूँ। मुझे बस मेरी बच्ची चाहिए, वो भी जीवित।
2: माँ ठीक ही तो कह रही है तुम्हारी बहू, बस अब बंद करो ये जानलेवा खेल। मुझे भी बच्ची ही चाहिए, मुझे लड़का और लड़की में कोई फर्क नहीं दिखाई पड़ता। आज के दौर में तो लड़कियां लड़कों से भी ज्यादा सफलता पा रही हैं। बस अब बंद करो ये खेल, सब बराबर ही तो हैं आज।
1: भ्रूण हत्या करना मतलब आप स्वयं अपनी बेटी की हत्या का अपराध कर रहे हैं। क्या आप जल्लाद हैं?
3: नहीं। प्यारे श्रोता बंधु, समय हो चला है आप सभी से अनुमति लेने का। आज के कार्यक्रम था आपने सुने ही हैं, काफ़ी अच्छे रहे हैं, बहुत ही सुंदर विचार आपको दिया है। तो सोनू जी की बात भी आपने सुनी है कि देखिए झाड़ू पोछा बर्तन कोई काम छोटा नहीं होता है, काम काम ही होता है। स्वाभिमान से जीना ये सबसे बड़ी बात होती है, तो स्वाभिमान से सभी को जीना है, न कि किसी पर डिपेंड रहना है। आपको रेसिपी भी अच्छी सिखाई है, मक्का पाक ज़रूर बना करके खाइएगा। और आज का प्रश्न था कि भाई मैंने आपको कान में कुछ बात कही कि भाई किसी को बताना नहीं, आपने दूसरे को बताई कि किसी को बताना नहीं, तीसरे को बताए बता दी, तीसरे व्यक्ति को पता चला, तो देखिए वो बात तो छोटी सी थी कि ये बात है, लेकिन उसकी रूपरेखा ही बदल जाती है। लास्ट तक पहुंचते पहुंचते जब वापस मेरे तक आती है तब सुनने को मिलता है कि अरे मैंने तो ये बात कही नहीं, पूरी रूपरेखा बदल गई। इसलिए बातों को समा करके रखिएगा, बातों को समाना सीखिएगा। किसी के सामने कहना नहीं है कि भाई जब मैं आपको कह रही हूं कि ये बात मैंने आपको कही है, किसी को बताना नहीं तो नहीं बताना है, क्योंकि उसको पाया ही खत्म हो जाता है। मेन बात तो खत्म हो जाती है, बात का बतंगड़ हो जाता है, सार नहीं वो विस्तार हो जाता है। इतनी सी बात इतनी फैल जाती है कि लोग न जाने क्या क्या बातें करते रहते हैं, फिर किन किन तरह की बातें हो जाती है उस व्यक्ति के प्रति। इसलिए ये यही संदेश देता है ये प्रश्न कि हमें बातों को फैलाना नहीं है। ठीक है, तो जवाब दिया है सुरेश भाई पिंडवाड़ा से जुड़े हैं, कंचन भाई मंडाली से, सुरेश भाई जोटाना से, रामा भाई वासना से। आप सभी ने विषय में चर्चा की है और आपने जवाब देने की भी कोशिश की है, लेकिन मेन बात यही है कि बात जो हम करते हैं वो पूरी रूपरेखा उसकी बदल जाती है और बहुत सारा विस्तार सामने आ जाता है, जबकि बात हकीकत में एक छोटी सी होती है। तो आप सभी जुड़े हैं, इसके लिए ढेर सारी तालियां। और अब मैं आपको माता पिता पर ही एक प्यारा सा भाव भजन सुनाऊंगी, आप लेंगे भजन का आनंद और मुझे देंगे इजाजत। कल फिर मिलेंगे तो कल जरूर जुड़िएगा और आज मुझे अनुमति दीजिएगा। तो राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, गणी खम्मा सा, खुदा हाफिज। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन। माता पिता सदगुरु, माता पिता गुरुदेव, मिलते ना बारंबार है, जिसने दुखाई आत्मा वो डूबते मंझधार हैं, जिसने करी सेवा वो हो जाते भव से पार है, मात पिता गुरुदेव को वंदन बारंबार है, वंदन बारंबार है। लोक और पर लोक सुधर गया, लोक और पर लोक सुधर गया,

लूण मरच सू रोटिया खादी, लूण मरच सू रोटिया खादी, पायो दूध मलाई को, माँ बाप की सेवा कर ले मत बन दास लुगा।

हवेली में तो करता न काम सगाई को, माँ बाप की सेवा कर ले मत बन दास लुगाई को, मत बन दास लुगाई को। खरी के ऊ तो खोट लागे समझ को चाले जोर नहीं, इन दुनिया में माँ बाप से बढ़कर दूजो और नहीं। उषा के वे सुन लो श्रोताओ हो, उषा के वे सुन लो श्रोताओ, लजा जो दूध मत माई को, माँ बाप की सेवा कर ले मत बन दास लुगाई को, मत बन दास लुगाई को। लोक और पर लोक सुधर गया मत कर काम बुराई को, माँ बाप की सेवा कर ले मत बन दास लुगाई।

0: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अपनी दिनचर्या का विश्लेषण करें, अपनी आदतों और कार्यों को देखें। जो आदतें आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं, उन्हें बदलें। मैं हूं आपका हम सफर आरजे रमेश। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: नमस्कार दोस्तों, रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर आप सभी का स्वागत है। जीना इसी का नाम है। दोस्तों, कहते हैं कि जीवन में कितना भी उतार चढ़ाव आए, अगर आप हर वक्त हर मोड़ पर सकारात्मक रहते हैं तो उसे कहेंगे वाह क्या जीवन जिया है इन्होंने। ऐसे ही कुछ अनुभवों के साथ आज हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं। आप हैं सुरेश कुमार जी। आप पिछले 3 दशकों से एक योगी जीवन जी रहे हैं, यानी कि ये नहीं है कि उन्होंने संसार को संन्यास कर दिया है, लेकिन अपनी भौतिक जिम्मेवारियों को निभाते हुए अपने जीवन को ब्रह्म कुमारी सेश्वरी विश्वविद्यालय के हेडक्वार्टर में शांतिवन में समर्पित करके अपनी योगी जीवन जी रहे हैं। इस योग की साधना से उन्होंने क्या प्राप्त किया है और उस उतार चढ़ाव में ये साधना उनके जीवन में कैसे मदद किया है, आइए आज हम जानते हैं। दोस्तों, सुरेश कुमार जी, आप 1990 में ब्रह्म कुमारी इसके संपर्क में आए हैं। मूलतः आप कर्नाटका कुर्ग डिस्ट्रिक्ट से हैं। आगे की कहानी उनके जुबानी हम सुनते हैं। स्वागत करते हैं सुरेश जी को। नमस्कार भाई जी।
2: नमस्कार
1: भाई जी। हम सबसे पहले आपकी जर्नी की ये कहानी जानना चाहेंगे कि आपकी जीवन की शुरुआत जो कुर्ग डिस्ट्रिक्ट में हुई है, और आपका बचपन कैसा रहा, आपने क्या पढ़ाई किया, और आपकी लौकिक परिवार, इसके बारे में आप संक्षिप्त में हमें बताएं।
2: देखिए, हमारा अलौकिक जन्म कर्नाटक से हुआ है। कुर्ग डिस्ट्रिक्ट पूरे दुनिया में फेमस है, क्योंकि हमारा जो फील्ड मार्शल जनरल करियप्पा, उनका भी जन्मस्थल वही है, मेरा भी वही जन्मस्थल है। तो बचपन में मुझे थोड़ा सा जीवन में खेल कूद में इंटरेस्ट ज़्यादा थे, तो एक अंदर से यही संकल्प था मुझे बड़े होने के बाद एक अच्छा काम करना है, थोड़ा एक सोशल सर्विस करना है। तो इसलिए मेरा प्राइमरी स्कूल और हाई स्कूल वगैरह कुर्ग में हुआ है। उसके बाद कुर्ग में पढ़ाई करते करते मुझे अंदर से यही हो रहा था, मुझे फौजी में भर्ती हो करके भारत का सेवा करना है, ऐसे अंदर से मुझे एक तड़फन थी।
1: तो बचपन से
2: ही
1: जी,
2: मेरा जो बैकग्राउंड परिवार है किसान परिवार में थे, तो इसलिए मुझे आगे पढ़ने के लिए प्रोसेस नहीं करते थे। तो हर एक को जो भी बोलते थे मुझे फौजी में जाने के लिए प्रोसेस करते थे, तो मुझे उसमें इंटरेस्ट आ जाता था। इसलिए मैंने सोचा पढ़ाई करना तो फौजी में जाने के बाद आगे पढ़ाई करेंगे। तो उसके बाद मैंने 10वीं पढ़ाई करने के बाद घर में नहीं रहा, घर से बाहर गए, बेंगलोर गए। तो बेंगलोर में 2 साल प्राइवेट जॉब करते रहा, उसमें बीच में 2 बार भी मैंने इंटरव्यू के लिए गया था, CRPF में गए थे, फिर BSF में गए थे, उसमें भी छोटे छोटे मिस्टेक कारण नहीं हुआ, फिजिकल मेडिकल सब हो जाता था, बाद में रिटर्न टेस्ट में फेल हो जाते थे। प्राइवेट जॉब में जब करने के गए, वहाँ एक भाई मुझे संपर्क में आया, वो केरल का भाई था, वो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का संपर्क में 2 महीने से आया हुआ था।
1: ये कौन सी साल की बात है? जो
2: 1990 की बात है,
1: 1990
2: के बात है। फिर मुझे उन्होंने ये कहा आपको मैं एक जगह में लेके जाऊंगा, वहाँ जाएंगे तो आप हमेशा जीवन में खुशी में रहेंगे और जीवन में बहुत आगे बढ़ेंगे और कभी टेंशन नहीं रहेगा जीवन में। तो मुझे बहुत अच्छा लगा उनका बात सुन करके, जीवन में और क्या चाहिए, पहले भी वही संकल्प था। तो मैंने सोचा कहाँ जाने में आऊँगा, ऐसे बोला। तो मैं कभी जाने से पहले ब्रह्म कुमारी इसका नाम भी नहीं सुना था। जब ये भाई ने मुझे लेके गया ब्रह्म कुमारी सेंटर पे, तो वहाँ जाते ही मैंने दीदी को देखा, सफ़ेद वस्त्रधारी दीदी को देखा, देखते मुझे ऐसा लगा ये अपना ही है, अपनापन महसूस हुई। मैंने सोचा पहले जब बचपन में थे मैंने क्रिश्चियंस को नंस को अगर देखते थे, तो मैंने सोचा क्रिश्चियंस में ऐसे नंस हो सकते हैं, हमारा हिंदू धर्म में क्यों नहीं हो सकते हैं, मेरे अंदर से ऐसे संकल्प चल रहा था। फिर वही मैंने सफ़ेद वस्त्रधारी को ब्रह्म कुमारी सेंटर में आके देखा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, अपनापन महसूस हुई। उसके बाद मुझे पहले लेसन ज्ञान के बारे में हमें बताया है।
1: जब आपको ये राजयोग मेडिटेशन परमात्मा का ज्ञान जो ब्रह्म कुमारी से मिला है, उसमें कौन सी बात ऐसी थी जिससे आपको ये निश्चय हुआ कि यही सत्य ज्ञान है, यही चीज है जिसको मैं ढूंढ रहा था?
2: तो जब बचपन में मुझे भक्ति में कोई इतना रस नहीं थी, मैंने अंदर से सोच रहा था कोई शक्ति है दुनिया में, क्योंकि इसलिए तो दुनिया में लोग भक्ति मार्ग में मंदिर मंदिर भटकते रहते हैं, मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, तो कुछ मन्नत मानते हैं, तो कुछ कईयों को सिद्ध हो जाते हैं, तो कुछ शक्ति होगा। और भगवान का नाम तो हमने भक्ति में तो सुना ही है, भगवान एक ही है, ये तो ना पता था, अनेक भगवान तो नहीं है, भगवान तो एक ही होंगे। भगवान का नाम बोलते हैं हम ऊपर की ओर देखते हैं, लेकिन एक तरफ तो दुनिया में मंदिर मंदिर भी भटकते रहते हैं, लेकिन कौन सी भगवान है, सच्चा है, किसको हम पूजा करना है, अंदर से वो एक तड़फन आती, एक खोज थी, कोई सच कोई होंगे ऐसा सोच करके। फिर मैंने जब ईश्वरी विश्वविद्यालय में आया तो मुझे कोर्स के लिए जो बेटा आया था, पहले खुद को परिचय मिले, उसमें मुझे संतुष्ट हो गए, क्योंकि उन्होंने मुझे ये कहा आप एक चैतन्य शक्ति आत्मा हो, आत्मा ये ब्रकुटी के बीच में बैठ करके अंकों द्वारा देखेगा, मुख द्वारा बात करेगा, कानों द्वारा सुनेगा, हाथों द्वारा काम करेगा, पैरों द्वारा चलेगा, ये एक चैतन्य शक्ति है, वो आप है। मैंने सोचा ये तो बहुत इतना अच्छा ईजी ज्ञान है, हमें स्कूल कॉलेज में कोई बताया नहीं, टीचर्स लोगों ने तो हम शरीर के बारे में तो सारा ज्ञान बता देते थे, हिस्ट्री ज्योग्राफी वगैरह बता देते, लेकिन शरीर के अंदर चैतन्य शक्ति आत्मा है इसके बारे में मुझे पहले बार मैंने सुना था, मुझे पहले सुनते ही मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी।
1: तो ये अपने कोर्स भी किया है और उस ज्ञान का अभ्यास करने लगे हैं, आपको ऐसा क्यों लगा कि मुझे अभी मेरा जीवन समर्पित करना है, और वो क्या मोड था, आप अपनी लाइफ को क्यों इस परमात्मा की कार्य के लिए समर्पित किए हैं?
2: जैसे बचपन मेरे को जो आर्मी में जाने का जो अंदर से दो तड़पन थी नहीं, तो उसका मुझे जैसे वो हम सोच रहे थे भारत देश का सेवा करेंगे, सोशल सर्विस करेंगे, मुझे लोग के घर में नहीं रहना है, घर से बाहर जा करके सोशल सर्विस करना है, देश का सेवा करना है, ऐसे अंदर से दो संकल्प है ना, उसके अनुसार मुझे एक समर्पण भावना अंदर से थी, तो मैंने सोचा आर्मी में जाएंगे तो भी एक समर्पण हो जाएंगे, देश के लिए समर्पण हो जाएंगे, ऐसे मुझे अंदर संकल्प था, तो ये बात मुझे बहुत अच्छा लगा, तो इसलिए मेरे को अंदर से ऐसा लगा अभी तो हम तो देश का सेवा कर रहे थे, तो मुझे ये पता चला वो ईश्वरी विश्वविद्यालय पूरा दुनिया में है, केवल भारत देश में नहीं है, कि दुनिया में 140 कंट्री में है, तो इसलिए हम लोग केवल भारत का सेवा नहीं करना है, पूरा विश्व का सेवा कर सकते हैं, इसलिए हम लोग जिस्मानी मिलिट्री वाले नहीं है अभी, हम लोग अभी रूहानी मिलिट्री वाले, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, तो इसलिए मैंने सोचा अभी इसमें समर्पित होकर के इस ज्ञान में आगे बढ़ करके विश्व का सेवा करेंगे, ऐसे अंदर से मुझे दृढ़ संकल्प किया था मैंने।
1: जी, ये जो आप 1995 से ब्रह्म कुमारीज के हेडक्वार्टर्स में समर्पित रूप से सेवाएं कर रहे हैं, तो अभी आप क्या सेवाएं करते हैं, क्या जिम्मेवारियां हैं?
2: 90 से 95 तक हमने जो 5 साल के अंदर माउंट आबू में 3 बार विजिट दिया थे, एक बार क्या हुआ 1994 में हमारा मैंगलोर सेंटर विजिट देने के लिए आए थे, तो वो मृत्युंजय भाई वरिष्ठ भाई, उन्होंने मुझे देख करके ये कहा आपको कोई बंधन नहीं है ना, आप कुमार है ना, आप माउंट आबू आ सकते हैं तो हमारे साथ तो आ जाओ, आपको मैं सेवा दूंगा, ऐसे मुझे कहा था उस समय। तुरंत मेरे को अंदर से फ्लैश हुआ जो मेरे को संकल्प था, मैंने जो समर्पित होने के लिए इसलिए भगवान ने इनको भेजा होगा, अभी मुझे माउंट आबू जा करके सेवा में उपस्थित होना है, अंदर से मेरे को एक प्रेरणा आ गई, तो इसलिए मैंने तुरंत 94 में वहाँ से माउंट आबू आ गया। माउंट आबू आने के बाद मुझे मृत्युंजय भाई साहब ने एजुकेशन विंग में उनके साथ मुझे सेवा दिया, मैंने सोचा माउंट आबू जाएं तो कुछ भी सेवा मैं कर सकता हूँ, मेरे को ऐसे कोई सिलेक्टेड सेवा नहीं है, भगवान की सेवा है, कुछ भी करो अमरली उसमें भागिया बन जाता है। आते मुझे उन्होंने गाड़ी चलाने के लिए सेवा दिया उसी समय 1994 में। उसके बाद में उस समय तो माउंट आबू में तो हमारे जो आश्रम में बहुत गाड़ियाँ वगैरह बहुत कम थे, तो उस समय भाई साहब के पास एक फिएट कार था, उस समय जो माउंट आबू जो हमारा ज्ञान सरोवर कैंपस है उसमें वैरायटी विंग्स का हमारा कॉन्फ्रेंस बहुत होता था, हर हफ्ते में दो कॉन्फ्रेंस होता था। उस समय MLA MPs गवर्नर्स मिनिस्टर को इन्विटेशन देने के लिए मृत्युंजय भाई निमित्त बनते थे, उनको मिलने के लिए उनको इन्विटेशन देने के लिए जयपुर जाना होता था, दिल्ली जाना होता था, उस समय फ्लाइट का व्यवस्था बहुत कम थी और ट्रेन भी मीटर गेज थी, ट्रेन की फैसिलिटी नहीं था, दिल्ली जयपुर जाना हो तो हम क्या करते थे बाई रोड चले जाते थे, उस समय अच्छा गाड़ी भी नहीं होते थे, फिएट कार थे, एम्बेसडर होते थे, उसी कार लेकर के हम लोग दिल्ली जयपुर जा करके मिनिस्टर्स को MLA MPs को गवर्नर को निमंत्रण देके आते थे। तो मैंने पहला बार माउंट आबू आके यहाँ गाड़ी चलाना शुरू किया।
1: जी, तो इस यात्रा में आपने क्या क्या सीखा है? जैसे एक आध्यात्मिक जीवन के लिए आप आए हैं, स्थूल कार्य तो हर कोई करना ही है, करते ही है, लेकिन आपकी स्व उन्नति में आपने ऐसी क्या चीजें सीखी है, क्या बदलाव आप देखते हैं इस आध्यात्मिक मार्ग पे चलने के कर?
2: जैसे मेरा यही लक्ष्य था, जब इस मार्ग में चलो तो मैं इस मार्ग के जो लक्ष्य है उसको पकड़ के चलना है। कार्य तो हर कोई व्यक्ति को जब तक जीना है तो तब तक कुछ न कुछ शरीर के अंदर काम करना ही है, इसलिए वो कर्म से हम रह नहीं सकते बिना कर्म से। तो इसलिए वो अंदर से सोच रहे तो कुछ भी कर्म करे लेकिन हमारा कर्म श्रेष्ठ हो जाए, उस कर्म के अंदर हमारा योग रहे, तो ऐसे अंदर से एक संकल्प थी। इसलिए मैंने क्या किया, जैसे ईश्वरी विश्वविद्यालय का नियम है जो कर्म योग करने का, हर कोई कर्म करते समय भगवान को याद में करना है, मुझे ये पहले कोर्स में बताया हुआ था, वो हमारा कर्म श्रेष्ठ होगा। इसलिए मैंने परमात्मा के साथ याद में रह करके कर्म करने के लिए मैंने अंदर से स्टार्टिंग से कोशिश किया था। इसलिए हमें इस ईश्वरी विश्वविद्यालय में मुझे ये पता चला सुबह से भी अमृत वेला होता है, तो अमृत वेला भगवान के साथ संबंध जोड़ने के लिए बहुत सहज समय होता है, ईजिली कनेक्शन मिल जाती है। इसलिए मैंने जब से ये 7 डेज कोर्स हुआ तब से मैंने सुबह सुबह 4 बजे से 5 बजे तक जो अमृत वेला का मेडिटेशन होता है ना, उस मेडिटेशन को मैंने पक्का करा दिया था स्टार्टिंग से, तो वो मुझे बहुत अंदर से बल मिल गई। और जो भगवान की जो महावाक्य है जो उसको मुरली कहते हैं उसमें भी मैंने पक्का कर लिया था, कुछ भी हो जाए सुबह अमृत वेला उठना है और मुरली क्लास सुनना है और सारे दिन में जो भी सेवा मिले वो भगवान के याद में करना है, ये अंदर से मैंने दृढ़ संकल्प किया था। कहीं भी रहे, भले माउंट आबू में रहे, बाहर जाए, तो गाड़ी लेके जावे, तो भी मुझे भगवान को याद में सेवा करना है, अंदर से एक संकल्प करके मैंने सेवा कर रहा था। ये अंदर से मुझे बहुत बल मिल गई और एकाग्रता भी हमारा अंदर बढ़ते गया। इसलिए कोई भी दिन में जो भी हमारा विघ्न रूप बनते वो भी विघ्न से मुक्त होते थे। इसलिए मुझे ये राजयोग जाना ये अंदर से बहुत एक अच्छा लगा मेरे को, इसमें एनर्जी मिलता है, ताकत मिलता है, तो इसके कारण से मैंने कोई भी कर्म करे भगवान की याद में करने के लिए शुरू करते थे स्टार्टिंग से। जब से माउंट आबू आया तब से मैंने इसको चालू रखा था, जैसे सुबह अमृत वेले उठना और मुरली क्लास सुनना है और सारे दिन जो भी हमें सेवा मिले उसका हम एक्यूरेट हो करके भगवान की याद में करना। इसमें अंदर हमें दिन में भले आप 500-600 किलोमीटर भी गाड़ी चलाए उसमें हमें थकान महसूस नहीं होता है, उसमें एनर्जी मिला हुआ रहता है, क्योंकि हम हर कर्म को भगवान को अर्पण करके हम कार्य शुरू करते हैं, तो हमें वो जर्नी पता नहीं चलता है, बहुत इजी हो जाता है, जैसे ऐसे लगता है हम घर में बैठे बैठे हैं, बैठे हुए ऐसे फीलिंग होता है।
1: अगर आप अपनी पूरी जीवन को समराइज करते हुए अगर एक शब्द में आप कहना चाहते हैं, आप अपने जीवन को क्या कहेंगे?
2: क्योंकि जो समर्पित जीवन है ना, ये हमारा जीवन एक अच्छा जीवन जीने का एक कला हमें यहाँ मिल गया है। इसलिए हर एक व्यक्ति को इस आध्यात्मिक ज्ञान को पकड़ के चलने से जीवन एक ऊंची स्थिति में जा सकते हैं, जीवन में कोई भी प्रकार का टेंशन में आने की जरूरत नहीं होगा, क्योंकि हमें एक दिशा मिल गया है ना, एक लक्ष्य मिलेगा, जीवन का लक्ष्य मिल गए, तो वो लक्ष्य के आधार से हम इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के ज्ञान को पकड़ के आगे चलने से हमारा जीवन सफल होगा, इसमें कोई भी प्रकार का हमारे लिए नुकसान नहीं है, हमारा जीवन एकदम सुंदर जीवन होगा, एक दैव गुण अंदर से बढ़ते जाएंगे, हमारा इस जो जन्म है वो हमारा जन्म सफल हो जाएगा।
1: बहुत सुंदर भाई जी, आपने इतनी सुंदर जर्नी को संक्षिप्त में बताया। भाई जी, जैसे आपने कहा कि कोई भी सेवा मिले तो आप करने के लिए तैयार थे और आपको यहाँ पे ड्राइविंग करने की जो सेवा मिली है, और जैसे आपने कहा कि कितना भी थकावट होता है, योग मतलब परमात्मा की याद में आप गाड़ी चलाते हैं, तो आप कितना भी लंबा सफ़र है आपको कोई मुश्किल नहीं लगता है। लेकिन 3 दशकों की आपकी इस यात्रा में कभी कुछ तो ऐसी बातें हुई होगी जो, क्योंकि सड़क पे जब चलते हैं हमेशा हम गलत है जरूरी नहीं है, हम जब सही भी जा रहे होते सामने से कुछ ना कुछ ऐसे हादसे होते हैं, तो कभी आपको ऐसी कोई परिस्थिति आई सामने और आपने इस आध्यात्मिक पढ़ाई या फिर इससे जो आपने सीखा है उससे आपने इस चीज़ को पार किया है?
2: तो एक अच्छी घटना है मेरे से हुई थी
1: जी,
2: तो आपको मैं सामने करना चाहता हूँ। एक बार क्या हुआ, अहमदाबाद से मैं अबरोड आ रहे थे, तो वहाँ से 3 घंटा लगता है अहमदाबाद से अबरोड आने के लिए। बीच में क्या हुआ, रात को हम ड्राइविंग कर रहे थे, तो भाई साहब भी हमारे बाजू में बैठे थे, तो रात को करीब 11:30 बजे थी, तो उस दिन कोई जरूरी काम थी तो हमें वहाँ रुकना ना पड़ा, इसलिए रात को हम जर्नी करके आ रहे थे। तो क्या हुआ, आधा डेढ़ घंटा जर्नी हो चुका था, उसके बाद क्या हुआ, हमारा हाईवे पे गाड़ी में बहुत कम गाड़ियाँ चलना शुरू हो जाते हैं। तो क्या हुआ, हम आगे चल रहे थे तो पीछे से एक कार वाले बहुत देर से हमारे पीछे पीछे आ रहे थे। तो हमने सोचा इनको आगे जाने दो बोल करके उनको मैंने साइड दिया था, फिर भी वो थोड़ा देर आगे जा करके फिर वापस गाड़ी स्लो करके कभी राइट में कभी लेफ्ट में आ रहे थे। कम से कम 5 किलोमीटर तक ऐसे आ रहा था। तो उसके बाद एक स्पीड ब्रेकर आया रोड पे, तो सिद्धपुर के पास में ही, तो मैंने गाड़ी को एकदम धीमे किया। तब तक ये गाड़ी पीछे जो आ रहे थे तो अचानक मेरा बाजू में आया, बाजू में आया तो मेरे को गाड़ी को रोकने के लिए कोशिश कर रहे। तो मैंने सोचा ये कोई पहचाने वाला तो है नहीं, कोई अनजान व्यक्ति है, अंदर तो 4 लोग बैठे हुए थे। मैंने जबरदस्ती गाड़ी को रोक, मैं सोचा उनका कुछ रास्ता भूल गया होगा, कुछ रास्ता पूछने के लिए आ रहा होगा, ऐसे सोच करके मैंने गाड़ी को थोड़ा साइड में स्टॉप किया। तो उस समय भाई साहब बाजू में बैठे हुए थे, लेकिन भाई साहब थोड़ा रेस्ट कर रहे थे। 5 मीटर दूर में वो कार स्टॉप किया था। फिर ड्राइवर उतर के मेरे पास आ करके पूछता है, आपके वजह से पीछे एक कार नीचे खड्डे में गया, अब गाड़ी के क्यों नहीं रोका, हम कब से आपको रोकने के लिए बोल रहे हैं, उसने मुझे कहा। ऐसे बोलते समय मुझे लगा ये तो ऐसे कुछ घटना हुआ ही नहीं है, हमारा गाड़ी को ऐसे नीचे खड्डे में गाड़ी कैसे जाएगा, हमारा गाड़ी टच भी नहीं हुआ, ऐसे इन्होंने हमारे ऊपर आरोप लगा रहा है, कुछ उनको हमारे से कुछ चोरी करना होगा, इसलिए उन्होंने ऐसे हमको बहानाबाजी कर रहे हैं, सोच करके मैं अंदर से संकल्प आया। फिर मैंने ग्लास आधा नीचे उतरा हुआ था, फिर ऐसे उन्होंने कहने के बाद उन्होंने मुझे क्या किया, अब गाड़ी से उतरो, अब ज़्यादा बात नहीं करो, अब मैं शूट करूँगा बोल करके उनके जॉब में पिस्तौल थे, वो पिस्तौल ले करके मेरे कान के पास ऐसे टिका दिया था। उस समय मैंने जो ड्राइविंग करते थे तो मैं मेडिटेशन अवस्था में थे, अंदर से कोई कन्फ्यूज नहीं था, कोई घबराहट नहीं थी, कुछ नहीं थी, मेरा अंदर से एकाग्रता भी बहुत अच्छा था। तो मैं मेडिटेशन करके हम अहमदाबाद से निकले हुए थे, तो दिन में रेस्ट भी मैं अच्छा किया हुआ था, कोई थकान भी नहीं थी, मैं एक्टिव होके गाड़ी चला रहे थे। उसी समय फिर इन्होंने ये ऐसा मेरे गाड़ी को रोका था, मेरे को पिस्तौल निकाल के मेरे कान के पास रखा। उसके बाद फिर मैंने भी डरा नहीं थी, मैं मेडिटेशन अवस्था में था, तो ये तो हमारा जैसे भाई है, ये क्या कर सकता है, हमारे पास ऐसा कुछ हुआ नहीं है घटना, या ऐसे डराने के लिए ऐसे दिखाएगा, सोच करके मैंने अंदर से कॉन्फिडेंस होकर के बैठे हुए थे। तो उसके बाद फिर उसमें अंदर 4 लोग थे, तो एक एक करके मेरे को गाड़ी से बाहर उतरने के लिए फोर्स कर रहे थे। तो मैंने अंदर से संकल्प आया, गाड़ी से उतरेंगे तो कुछ कर डालेंगे, इसलिए मुझे गाड़ी से कुछ भी हो जाए गाड़ी से हमें उतरना नहीं है, क्योंकि बाजू में भाई साहब बैठे थे, ये कुछ करके मुझे कुछ करके फिर गाड़ी में बैठ के गाड़ी ले चले जाएंगे, भाई साहब भी कुछ कर सकते हैं, तो बड़ा दुर्घटना हो जाएगी, मुझे कुछ भी हो जाए मुझे गाड़ी से उतरना नहीं है। अंदर से मेरे को भगवान का टचिंग हो रहा था, लेकिन मेरा लाइन क्लियर थी, कोई डर नहीं थे अंदर से, मैं उनको देख डरा भी नहीं था, मैं साक्षी होकर अपना भाई का समझ करके उनको देखा हुआ था। उस समय बाद में 3 व्यक्ति आकर के बोलते हैं, अब गाड़ी से उतरो नहीं तो गाड़ी बंद करो बोल करके, गाड़ी बंद करके गाड़ी की चाबी अपने पास ले लिया। गाड़ी के अंदर हम दोनों बैठे हुए थे, गाड़ी बंद हो गई, फिर भाई साहब की नींद खुल गई। तब तक भाई नींद खुल गया तो जब इंजन बंद हो गए, तो इंजन बंद होने के बाद फिर बाद में वो लोगों ने भाई साहब को देख लिया, गाड़ी की चाबी तो ऑलरेडी ले चुके थे, हम गाड़ी मूव नहीं कर सकते थे। उसके बाद क्या किया, वो लोगों ने हमारा गाड़ी के पीछे जा करके आसमानी को और फायरिंग किया। तो उस समय भाई साहब उनको देखा तो भाई साहब पता चला ये लोग ऑलरेडी चोर लोग हैं, ये कुछ लूटने के लिए आए हैं, हमें किसी की हेल्प लेना पड़ेगा बोल करके भाई साहब ने क्या किया, रोड पे उतर, डोर ओपन करके रोड पे आया। रोड पे आते समय पीछे से एक ट्रक वाला आया, उसको देख के भाई साहब उसको हेल्प लेने के लिए उनको रोकने के लिए बोला था। उस समय ट्रक वाला नजदीक आया, आकर के हमें भी देखा, और वो लोग पीछे गाड़ी के पीछे 3 लोग थे, तो ट्रक वाले को समझ में नहीं आया ये कोई आरटीओ वाले चेक करने के लिए आया होगा, सोच करके ये लोग सीधा चले गए, कोई एक्शन नहीं लिया। उसके बाद फिर बाद में भाई साहब क्या किया, पीछे मोड़ के देखा तो एक जीप वाले आए थे, वो हमारे गाड़ी के सामने खड़ा किया था। उस समय फिर भाई साहब इधर से उनके पास जाके बता रहे थे, ऐसे ऐसे हम लोग अहमदाबाद से आ रहे थे, हमारे सामने लोग गाड़ी रोक करके आसमानी का और फायरिंग किया, शायद कुछ लूटने के लिए आ रहे होगा, सोच करके समाचार बता रहे थे। मैंने अंदर से गाड़ी के अंदर बैठा हुआ था, सीट बेल्ट पहना हुआ था। उसके बाद ये लोगों ने क्या किया, इधर से मेरे को फायरिंग करके अपना गाड़ी बैठ कर चले गया। जैसे फायरिंग हुआ तो मेरे कान के पास ऐसे लगता था कोई इधर से कोई पत्थर फेंका, ऐसे फीलिंग हुआ, तो फायरिंग का आवाज़ भी सुनाई दिया था, तो यहाँ लगा तो मेरे को लगा ये तो उन्होंने फायरिंग किया, ऐसा लग रहा था। बाद में जैसे हाथ पकड़ के ऐसे देखा कान के पास, धीरे धीरे कोना आना शुरू हो गई थी, फिर बाद में जब जीप के साथ जो भाई साहब बात कर रहे थे, वो फिर बाद में भाई साहब में जो मोड़ के देखा तो मैंने हाथ पकड़ के मेरा सिर नीचे ऐसे वो करके मैं बैठा हुआ था। उसी समय फिर जीप वाला भी पूछा, ये लोग जब गए थे ये लोग फायरिंग किया ना बोल कर, मैं ढूंढ करके पूछ करके आता हूँ बोल कर गए, वापिस नहीं आया जीप वाला। उसके बाद मुझे लगा तो इंजर हो गया, अभी भाई साहब को लगा अभी खून निकल रहा है, अभी ऑफिस हॉस्पिटल जाना है, हॉस्पिटल जाना तो कहाँ जाना है क्या है कुछ पता नहीं है भाई साहब को। मेरे को जैसे खून आ रहा था कान के पास, जैसे मुंह में जैसे पानी भर हुआ था फीलिंग हो रहा था। जैसे भाई साहब नज़दीक आया, भाई साहब को मैंने चलो अभी हॉस्पिटल जाना तो वो एम्बुलेंस नंबर बताना पड़ेगा, पुलिस का नंबर बताना पड़ेगा बोल करके मैंने भाई साहब को पुलिस को नंबर बताया, 100 नंबर में करो पुलिस आ जाएंगे और 108 नंबर करो तो एम्बुलेंस आ जाएंगे। ऐसे मैंने भाई साहब बोलने के लिए जैसे मुंह ओपन किया तो मुंह के अंदर जो पानी समझा था वो खून भरा हुआ था मुंह के अंदर, वो क्या हुआ जैसे स्प्रे हो गया पूरा ऐसे सामने से। फिर भाई साहब उसको देखते बहुत घबराहट हो गया, भाई साहब को ये क्या हो गया अभी तो। फिर मैंने अंदर से संकल्प किया अभी कुछ ही वजह मुझे फायरिंग तो हुआ है, तो आत्मा तो विनाश नहीं होगा, शरीर तो फायरिंग किया तो शरीर को लगा है ना, लेकिन आत्मा जरा हमारा अविनाश है, मैं शरीर के अंदर पार्ट बजाने वाले आत्मा है, तो आत्मा ये शरीर छोड़ेंगे तो अगले जन्म में अच्छा पार्ट बजाएंगे। अंदर से मेरे को ये संकल्प तोड़ करके अंदर से कोई घबराहट नहीं थी, मैं आराम से शांति से बैठा हुआ था। फिर बाद में भाई साहब ने एम्बुलेंस को और हॉस्पिटल को फोन करने के लिए बोला, पुलिस को फोन किया तो 20 मिनट में एम्बुलेंस भी आ गया और पुलिस भी आ गई। तब तक मैंने अंदर से मेरा पूरा बेहोश नहीं हुआ था लेकिन खून नाक से और मुख से निकल रही थी, तो उसको फिर मैंने स्टेबल करके माइंड स्टेबल करके अंदर से कोई व्यर्थ संकल्प भी नहीं आया और एकग्रत होकर के मैं यौगिक तो होकर के भगवान के याद में भगवान के साथ मैं बिंदु बन करके भगवान के साथ में बैठने के लिए अभ्यास किया। उतना अनुभव करते 20 मिनट हुआ, तब तक एम्बुलेंस भी आ गए पुलिस भी आ गए। तो उसके बाद फिर मुझे एम्बुलेंस में बिठा करके फिर नज़दीक वाला हॉस्पिटल में लेके गए। फिर वहाँ जाने के बाद डॉक्टर ने बोला आपको ये ज़्यादा इंजर हो गया होगा इसलिए हमारे पास स्कैनिंग सिस्टम नहीं है, आपको वापिस मेसाणा में जाना है, वहाँ जाएंगे तो आपका इलाज हो सकता है ऐसे बोला। तब तक पुलिस भी आए थे, एम्बुलेंस भी साथ में, एम्बुलेंस में बिठा करके मुझे लेके गए थे। गाड़ी तो रोड पे खड़ी थी, गाड़ी खोलना पड़ा था, चाबी नहीं था हमारे पास। फिर मैंने भाई साहब को ये भी बोला था गाड़ी हम लोग हॉस्पिटल जाएंगे, चाबी हमारे पास नहीं है, वो लोग वापिस आ करके

0: बाद में उस हॉस्पिटल में वहाँ से कुछ ने एक्शन नहीं लिया डॉक्टर ने, बाद में डॉक्टर बोला अभी वापस मैसाणा में जाना है, वहाँ आपका ट्रीटमेंट हो सकता है। फिर पीछे से पुलिस वैन भी आए थे, हम भी एम्बुलेंस में बैठ करके मैसाणा में गए। मैसाणा में जाते वो रोटरी हॉस्पिटल में गए थे। वहाँ जाने के बाद में पुलिस बोला ये तो रोटरी हॉस्पिटल है, यहाँ कोई आपका इलाज हो नहीं सकता, यहाँ स्कैनिंग सिस्टम नहीं होगा, इसलिए आप यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करो, यह इमरजेंसी केस है, इसलिए आप अहमदाबाद ले चलो। फिर वहाँ से फिर अहमदाबाद एक घंटा जर्नी है मैसाणा से अहमदाबाद जाने के लिए अपोलो हॉस्पिटल में, फिर वहाँ हम गए थे। वहाँ जाते समय फिर बाद में लग रहा था मुझे अब एक घंटा जर्नी में कुछ भी हो सकता है, शरीर भी छूट सकता है, इसलिए मुझे भगवान के याद में रहना है, अंतमति स्वगति ऐसा सोच करके भगवान के याद में एक हाथ तो मेरा कान के पास ही, मेरा अंदर ऐसा लगता कान के अंदर खून जा रहा है, उसको बंद करके मैं रोकूं बोल करके एक हाथ में ऐसे बंद करके मैं बैठा हुआ था। फिर बाद में भाई साहब एम्बुलेंस में साथ में बैठे हुए थे, सब जगह में फोन करके मैसेज वगैरह बता दिया था ऐसे ऐसे हुआ है बोल करके। फिर बाद में अहमदाबाद में अपोलो हॉस्पिटल में अच्छा इलाज हुआ, इमरजेंसी इलाज हुआ, अच्छा हुआ, मेरा को कोई ज्यादा तकलीफ नहीं हुआ और लास्ट तक भी बेहोश नहीं हुआ था, मैं फुल कॉन्शियस में हूँ, लेकिन सारा हिस्ट्री मुझे पता है क्या क्या हुआ, कहाँ क्या हुआ, कितना बजे हुआ, मेरा अंदर साथ में कितना लोग थे, सब मुझे सब याद रहता, साथ में याद रहा। फिर बाद में 8 दिन का हॉस्पिटल का सफर हुआ, एक ऑपरेशन अच्छी हुई। वो जी ड्रामा अनुसार क्या हुआ, जो कान के पास जो बुलेट जो घुसी थी वो मुंह के अंदर आकर के लेफ्ट साइड में गले में फंसा हुआ था, तो मुझे हॉस्पिटल जाने के बाद स्कैन करने के बाद डॉक्टर ने मुझे बताया आपको यहाँ देखो गोली फंसा हुआ है, क्योंकि मुझे तब तक कुछ पता नहीं था, एम्बुलेंस में मैं सोते ही जा रहा था, मुझे कुछ पता नहीं था। बाद में हल्का सा दर्द जैसा फीलिंग हो रही थी, फिर बाद में डॉक्टर बताने के बाद फिर बाद में स्कैन पता चला आपको गोली यहाँ फंसी हुई है, अभी उसको निकालना है। फिर बाद में स्कैनिंग पूरा होने के बाद फिर बाद में डॉक्टर ने बताया अभी आपका ब्लड खून बहुत लॉस हो चुके हैं, कम से कम इतना 3 घंटा जर्नी में कम से कम 3 लीटर खून निकल गया मेरा बॉडी से, तो मेरे को बॉडी से गाड़ी से एम्बुलेंस नीचे उतरने के लिए एनर्जी नहीं थी, तो मेरे को हाथ पकड़ के फिर एम्बुलेंस में इसमें स्ट्रेचर में बिठा करके ऑपरेशन थिएटर में लेके गए थे। तो पहले स्कैनिंग वगैरह किया था, उसके बाद मेरे को स्टेबल करके ICU में भर्ती करके, फिर उस समय डॉक्टर भी आए थे, ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर भी आए थे, फिर नेक्स्ट डे तक के लिए वेट कर रहे थे क्योंकि खून वगैरह चढ़ाना है, इसलिए आपको कल ऑपरेशन होगा बोल करके। फिर बाद में ब्लड वगैरह खून वगैरह चढ़ा दिया था, नेक्स्ट डे 11 बजे से 1 बजे तक ऑपरेशन हुआ, उसमें स्टेबल आ गई। फिर बाद में वापिस 4 दिन ICU में थे और 4 दिन वार्ड में आ गया, 8 दिन में डिस्चार्ज हो गई और धीरे धीरे रिकवरी होते गए। लेकिन मेरा जैसे गोली कान के पास जो घुसी थी ना, यहाँ भी ऑपरेशन कर मतलब जो हड्डियाँ है वो थोड़ा डैमेज हो गई थी, उसको भी जॉइंट करके ये स्टिच किया था। अब लेफ्ट साइड में जो गले के पास थी जो बुलेट थी उसको निकलने के लिए ओपन करना पड़ा, उसको ओपन करके वहाँ भी स्टिच करके रखा था, इसके कारण इसको हीलिंग के लिए मुझे डॉक्टर ने 1.5 महीने तक मुंह बंद करके रखा था। 1.5 महीने ओनली जूस पे मैं रहा और जूस पीते रहा और मेरा हीलिंग अच्छा हो गया। फिर बाद में जूस पीने के साथ साथ में टैबलेट भी देते थे, वो टैबलेट को खाना पड़ता था, लेकिन मुझे मुंह तो ओपन नहीं करना है तो जूस के साथ टैबलेट को क्रश करके देते थे, मैं वो भी भगवान के याद में पीता था तो मेरे को ईजिली अंदर चले जाती थी, तो इसलिए मेरा हीलिंग जल्दी हो गया। सब कुछ जो भी हो इसका सार यही है, एक तो प्लस पॉइंट है मैं गाड़ी से उतरा नहीं है, वो दुर्घटना बड़ा दुर्घटना से बच गई, और दूसरा मेरा हीलिंग के कारण यही है मैं भगवान के याद से ये टैबलेट को मैं पीता था, इसलिए मेरे को हीलिंग जल्दी हो गई, मेरे को इसके अंदर का कोई तकलीफ ही मेरे को महसूस नहीं हुई, कोई दर्द का महसूस नहीं हुआ। हॉस्पिटल में मैं ऐसे 8 दिन रहा, मैं ऐसा लगता है मैं इस शरीर से नहीं रहा हूँ, मैं वतन में उड़ रहा हूँ, ऐसे जैसे फरिश्ते से उड़ रहा हूँ। जो भी हमारा सेवा करने के लिए नर्सेस लोग आते थे, ऐसा लगता था मेरे को ये फरिश्ते लोग मेरा सेवा करने के लिए आ रहे हैं, ऐसे भगवान ने मुझे भेजा है, इसे अंदर से मेरा संकल्प होता था। बाकी सबको भगवान का संदेश सबको मैंने बांटा था हॉस्पिटल में, सब लोग वंडर कर रहे थे ये तो पेशेंट है, ये तो गिफ्ट बांट रहा है, ऐसे उनको अंदर से ये होता था। मैंने सबको ये कहता था भगवान ने देखो मैं भगवान में याद में था इसलिए भगवान ने मुझे बचाया है, मेडिटेशन अवस्था में थे, इसलिए आप लोग भी इस ज्ञान को प्राप्त कर लो, आपका जीवन भी ऐसे निडर होकर के जीवन में जो भी विघ्न आएगा वो विघ्न से पार हो सकते हैं, ऐसे मैंने सबको संदेश देता था।
1: सच ए वंडरफुल स्टोरी, कितनी बड़ी परिस्थिति है लेकिन एक परमात्मा की याद और उनके प्रति जो विश्वास है और वो जो शक्ति उससे जो मिलती है, कैसे हम अपने जीवन में हर परिस्थिति को पार

0: करते हैं। कई बार हम जीवन में जब विकट परिस्थिति आते हैं, भगवान को कोसते हैं कि तूने मेरे को ही ये क्यों परिस्थिति दिया है, लेकिन वही जगह पे भगवान तू था, इसलिए मैं बहुत कुछ होने से थोड़े समय में बच गया। कितना अंतर है इस आलोचना में। तो बहुत बहुत शुक्रिया भाई जी, कैसे विषम परिस्थिति में सकारात्मकता के साथ हम अपने जीवन को फिर से एक नॉर्मल लाइफ में लेके आ सकते हैं। अब अपनी जीवन के उदाहरण उनसे हम सबके सामने रखा, बहुत बहुत शुक्रिया आपको।
1: थैंक यू।
0: जब परमात्मा को हम अपनी जीवन समर्पित करते हैं, हमारा जीवन कितना सुखमय और कितना सुंदर, कितना सरल, सहज बन जाता है कि हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की कोई थकान नहीं, कोई कंप्लेंट नहीं, कोई अपेक्षा नहीं है और संतुष्टता से ही भरपूर है हमारा जीवन। बहुत बहुत शुक्रिया आपको, आज आपकी जीवन से हमें ये जो बातें सीखने को मिली हैं, शुक्रिया आपको। दोस्तों, यहीं पे आपसे विदा लेते हैं और फिर मिलेंगे अगली कड़ी में एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: नमस्ते, राम राम और ओम शांति। मेरा नाम पवित्र मल्लिक और आप सुन रहे हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो रेडियो मधुबन 107.8 FM पर कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल यानी मारो गांव मारो अंचल। इस कार्यक्रम को लेकर जब हम गांव और अंचल में जाते सभी वर्ग से मिलते, चाहे किसान हो, चाहे हमारा आदिवासी लोकगीत हो, चाहे पंचायत हो, चाहे नरेगा हो, चाहे स्कूल हो, सभी से मिलते हैं क्योंकि एक सामुदायिक रेडियो है, सामुदायिक द्वारा प्रसारण होता है। तो हमें बहुत खुशी मिलता है सबसे मिलते, तो उनका भाव और भावना को जन जन तक पहुंचाने के लिए रेडियो मधुबन एक मंच देती है। चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे आस्था हो, चाहे विश्वास हो, चाहे स्वच्छता हो, चाहे कृषि हो, चाहे पशुपालन हो, सभी से मिलते। तो आज हमें खुशी है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की जो बगेरी कुआं में हम पहुँचे, क्योंकि यहाँ के जो देखभाल करते हैं हमारा माताएं बहन इतने सुंदर रूप में भाव और भावना को लेकर काम करते हैं और इसका यहीं से बगरी से पानी, फल, फ्रूट्स, सब्जियां जाती है, गन्ना, केला, सब चीज़ यहाँ लगा हुआ है कुआं में। और इसको देखभाल करने के लिए माताएं यहाँ के आसपास बगरी, चंडला, धमसरा, बीरबर आसपास लोकल लोग यहाँ पर आकर अपना जीविका निर्वाह अर्थ कर्म धंधा करते हैं, जिसको कुछ पैसा भी मिलता है और भावना इतना पैसा तो नहीं मिलता, लेकिन परमात्मा का जो कुआं घर है तो उसमें काम करते हैं। तो आज हमें खुशी है, एक गीत प्रस्तुत हो गया सब सामूहिक रूप में, सभी अपना अपना नाम बताएंगे, हमें खुशी होगा क्योंकि हमारा पहचान हमारा आवाज से होगा, भले हमारा वीडियो नहीं लेकिन आवाज लगेगा। तुम्हारा हूँ नाम
1: कुमारी, फुली कुमारी।
0: और पढ़ाई करती तुम फुली?
1: हाँ।
0: तुम बताओ?
1: जीजा बहन।
0: जीजा बहन बहुत अच्छा।
1: इंद्रा बहन।
0: इंद्रा बहन कहाँ से तुम? कौन सा गांव? बगेरी।
1: हाँ।
0: बगेरी, सब बगेरी के? सब बगेरी, तो हाथ उठाओ। वेरी गुड, सभी हमारा बहन अच्छा से सेवा कर रहे हैं, है ना? सबको खुशी मिलता है यहाँ पर, पैसा भी मिल जाता टाइम पर?
1: हाँ।
0: कोई दिक्कत नहीं?
1: नहीं।
0: कोई दिक्कत नहीं?
1: ना।
0: कोई दिक्कत नहीं बहन? घूंघट कर रखती है तो पता नहीं चलता है, यहाँ पर सास बैठे होंगे, है ना? सास है क्या ये? हाँ, इसीलिए तो होता है, बहुत अच्छा, हम भी सम्मान करते। चलिए एक प्रस्तुति होगी, एक लोकगीत, आदिवासी जो मिठास है आदिवासी गीत में, जो शुद्धता है, जो भोलापन है, जो अपनापन, वो बच्चे भी बड़ों को देखकर सीख जाते हैं, छोटे बच्चे भी बड़ों को देखकर सीख जाते हैं, शादी में, विदाई में, मेला में, गनगौर में जाते हैं। तो चलिए आज बगरी से एक प्रस्तुति सुनाएंगे, हमारा श्रोता मित्र ध्यान से सुने।

0: बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर प्रस्तुति के लिए। हमें बहुत खुशी है इस तरह कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर जब भाग लेते, क्योंकि एक सामुदायिक रेडियो है, सामुदायिक द्वारा सामुदाय के लिए प्रस्तुति करना थेमर वास्ते थेमर लिए और थेमर कार्यक्रम को हमें आगे बढ़ाते। तो इस तरह जब अपना आवाज जन जन तक पहुँचेगा, हमारा जो आदिवासी गीत में जो भोलापन जो आवाज सही में बहुत खुशी लगता है। हमारा श्रोता मित्र ध्यान से सुन रहे और इस कार्यक्रम में सभी लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले, और हमारा साथ फुली बहन जी है। फुली बहन, एक गीत जो गीत गाए हैं उसका अर्थ भावार्थ क्या है, व कौन सा समय में ये गीत गाते हैं, चाहे होली में कि दिवाली में कि शादी में ये जो गीत गाए, मुझे थोड़ा बहुत समझ आया, बाकी तो समझ नहीं आया, लेकिन आप बताना ठीक है, ये गीत किस ऊपर में गीत गाए, ये शादी का गीत ना विदाई का गीत, क्या गीत है?
1: शादी का
0: गीत। ये लड़का ना लड़की शादी के में गाते ना, दोनों का लड़का वाले ना लड़की में,
1: लड़की में,
0: लड़की जब जाती है शादी करके दूसरा घर में तो ये गीत गाती, क्यों गाते माँ बाप? लड़की छोड़ के जाते तो दुख लगता है इसलिए। तो श्रोता मित्र ध्यान से सुन, हमें जो जो आदिवासी लोग नहीं है जो सुन रहे जनरल लोग, तो उनको भी समझ में आएगा जो ये शादी का टाइम जो विदाई होती है, लड़की पराए घर जाते हैं, अपना घर बना देते हैं, पहले तो अपना घर से प्यार घर जा छोड़ कर जाते ससुराल घर, है ना। तो फूली तुम भी कभी जाएगी ना ससुराल घर, जाएगी तुम?
1: नहीं
0: नहीं जाएगी क्योंकि इतना दुख दुख देकर क्यों जाएगी भाई, माँ बाप दुखी हो जाते, इसलिए वो ठीक ही बोला, पढ़ा लिखी है इसलिए फूली बोला मैं नहीं जाऊंगी भाई तो ऐसे होना चाहिए, लेकिन क्या है समाज का रीति रिवाज को मानना पड़ता है, माँ बाप का भी कितना दिन रखेंगे, इसलिए माँ बाप का जो बोझ लगता है, लेकिन बोझ नहीं है, माँ बाप आपके पास माँ बाप रहेंगे तो बोझ लगेगा आपको?
1: नहीं
0: लगेगा, माँ बाप कभी बोझ नहीं होते, लेकिन समाज में जो रीति रिवाज है उसको मानना पड़ता है और जाना पड़ता है पराए घर, इसलिए लड़की को छोकरी को पराए सोचते हैं, लेकिन पराए नहीं है। फूली हमारा होशियार है, पढ़ा लिखा है, इसलिए बोलते भाई हम ससुराल घर नहीं जाएंगे, माँ बाप को दुख क्यों दूँ ऐसे। हाँ चलिए कार्यक्रम को यहीं पर रखते हैं, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद और एक प्रस्तुति होगी, क्योंकि हमारा जो आवाज में जो मिठास है एक के बाद एक गीत मिलेगा। जब भी आदिवासी अंचल में जाते हैं, चाहे बगरी हो चाहे धमसरा हो चाहे फूलाबाई खेड़ा हो चाहे भूला हो, जहाँ भी जाते हैं तो सभी बढ़ चढ़ हिस्सा लेते हैं। तो एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद और एक प्रस्तुति सुनेगी जीजा जी से जीजा तो जीजा भी हंस रही है, लेकिन वो भी अपना आवाज सुनाएगी, उनका दोस्त का साथ सुनते रहिए कार्यक्रम मेरा गाँव मेरा अंचल।

रेड लाइट होने पर हमेशा अपनी गाड़ी रोक लेना चाहिए और उसे ग्रीन होने पर ही आगे बढ़ाना चाहिए। ऐसा ना करके हम अपनी और दूसरों की जान खतरे में डाल सकते हैं। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

तो श्रोता मित्र ग्राम वासी खासकर हमारा इस प्रोग्राम को सुन रहे और हमें खुशी है इस तरह। मुझे तो इतना समझ में माउंट आबू गाड़ी चलाने का, लेकिन गाड़ी जब चलाते हैं इसमें हमें सीख भी मिलना चाहिए, बहुत दुर्घटना भी होता है गाड़ी में, जब सीट बेल्ट हो चाहे हेलमेट पहनना चाहिए और सड़क का जो नियम सरकार ने बनाया उसको भी मान कर चलेंगे तो हमारा सुरक्षा, क्योंकि आपको कोई घर में इंतजार कर रहा है इसलिए आपने ध्यान से चलाया गाड़ी। और इस ये तो मुझे लग रहा है गाड़ी चलाने जितना मजा है उतना सजा भी है, थोड़ा बहुत इधर उधर होगा तो गाड़ी एक्सीडेंट कर लेता है, जो एक्सीडेंट करने के बाद फिर घर वाले कितना इंतजार करते हैं भाई कब आएगा वापस अच्छा से, लेकिन हमें सड़क का जो नियम है उसको भी मानना चाहिए। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा कहते हैं, जितना सड़क का जो नियम कानून है कैसे चलाना चाहिए, कौन सा साइड में जाना है, क्या लाइट वगैरह दिखाना है, हॉर्न कब देना है, ये सब जानकारियाँ रहेगा तो हमें अपने को सुरक्षा महसूस कर पाएंगे और दूसरों को भी सुरक्षा दे पाएंगे। और इस गीत में भावार्थ भी क्या है वो भी सुनाएंगे, क्योंकि हमारा फुली भाई है ही है, फुली बहुत अच्छे से सुन रहे गीत को और साथ भी दे रहे थे। और ये गीत का भावार्थ क्या है माउंट आबू और जो अपना आदिवासी गीत में जो बात बताए किस उद्देश्य व किस अर्थ से लेते हैं भाई, इसका सीख क्या मिलती है, इस गीत का अर्थ क्या है, मैंने किस उद्देश्य से गाते हैं जो माउंट आबू गाड़ी चलाते हैं, इस मैंने तो सड़क सुरक्षा के बारे में बताया लेकिन आदिवासी जो गीत में क्यों गाते हैं गीत, मेला जाते तो गाड़ी में जाते हैं, अच्छा मेला में जैसे परिक्रमा लगाते हैं आबूराज परिक्रमा भी कराते हैं है ना, तो मेला में भी जाते तो गाड़ी चलाने का टाइम में ध्यान से चलाना चाहिए। तो और ये भाव को लेकर कुछ जो कि आदिवासी लोग तो समझ जाते होंगे ये गीत से, और जो लोग नहीं समझ पाते तो गाड़ी और माउंट आबू जब जाते तो ध्यान से, तो क्योंकि माउंट आबू का रास्ता तो कितना उगड़ पुगड़ है, तो उसको लेकर भी हमें सतर्क रहना चाहिए। चलिए एक ब्रेक लेते हैं, सभी को धन्यवाद देते हैं, सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गाँव मेरा अंचल रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। ये था खासकर बगरी स्थित जो माताओं बहनों का आवाज, यहाँ काम धंधा के लिए आते हैं, कुछ लेते हैं छोटा सी ब्रेक, एक छोटी सी बहन उनसे बात करेंगे लेकिन अल्प विराम का बाद।

0: रुक रुक, भाई साहब इधर आओ, कहाँ जा रहे हो जरा बताओ। लाल बत्ती में दिखता नहीं आपको, सामने लोग रोड क्रॉस कर रहे हैं फिर भी गाड़ी पकाए चले जा रहे हो हैं?
1: अरे हवलदार साहब, एक बार लाल बत्ती में निकल गया तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा।
0: ओए पहाड़ भले ही ना टूटे, लेकिन बेमतलब यमराज के रजिस्टर में एक नाम जुड़ जाएगा। इसीलिए जब भी लाल बत्ती हो तो बोलो पहले आप, समझे?
2: गाड़ी चलाते वक्त पहले आप का रूल अपनाइए और अपने शहर का ट्रैफिक स्मूथ बनाइए। ब्रह्मा कुमारीज के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
3: नमस्ते, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपको बगरी कुआं में पहुंचे और बगरी कुआं के जो माताएं गीत तो गाए, उनका गीत भावना को भाव को आप समझ गए होंगे, क्योंकि आदिवासी क्षेत्र में जो जाते हैं आदिवासी गीत न हो ये हो ही नहीं सकता। और इस कार्यक्रम को लेकर जब ब्रह्मा कुमारी का बगरी कुआं में पहुंचे तो माताओं का गीत सुने, इस तस्प से उसको जो केयर टेकर जो देखभाल करते एक भाई जी है तो उनको भी स्वागत करके, उनका परमिशन बिना हम तो यहाँ आ नहीं पाते थे, लेकिन वो बोल भाई ये उनका देन है, भावना है, बोला हमारा माता है बहन का भी आवाज आप जन जन तक सुनाइए, उनका भाव को उनका गीत को प्रोत्साहन दीजिए, क्योंकि लोग कल गीत में जो शुद्धता है वो आज देखने को मिल रहा, आप भी सुन रहे हैं। और इस कार्यक्रम को सजाने के लिए हमारा साथ एक भाई जी है जो केयर टेकर है, यहाँ के जो देखभाल करते हैं। हेलो, अपना नाम बताइए।
4: सुमित चौहान।
3: सुमित चौहान, वाह, कहाँ से आप आए?
4: यूपी।
3: यूपी से आए, वाह, इतना दूर से यूपी, मतलब ऊपर आप बुंदेलखंड से आए हैं। और यहाँ पर क्या आप कितना दिन से देखभाल कर रहे हैं?
4: काफी सालों से हो गए, 1.5 साल हो गया। यहाँ बाबा की सेवा करने में बड़ा मजा आता है। अच्छा लगता है।
3: जी जी, जी। बाबा का सेवा मतलब परमात्मा का काम है, शिव बाबा कहते हैं।
4: शिव ही शक्ति है, हर जगह शिव ही शक्ति है, बाबा की ये है वो है। आप बोलेंगे कि भगवान सिर्फ एक ही है, कोई भी हो, मतलब जितने अपने अनुभव से, जितना मैं बता रहा हूँ अपने अनुभव से, जितना मैंने सुना है, जितना मैंने सीखा है, मतलब भगवान सिर्फ एक ही है। मानते मतलब बहुत लोग हैं कि ये भगवान वो भगवान, राम सिर्फ एक ही हैं, शिव सिर्फ एक ही हैं।
3: तो उसी प्रेरणा से आप यहाँ पर सेवा दे रहे परमात्मा का काम में। और ईश्वर विश्वविद्यालय का जो बगरी स्थित में यहाँ पर केयर टेकर यूपी से आए हैं, और जैसे अपना इंट्रोडक्शन में बताया, और जो बगरी में आप देखे होंगे कितना एकड़, मुझे लगता है 4-5 एकड़ का जमीन है।
4: हाँ हाँ, कम से कम।
3: यहाँ से पानी, यहाँ पूरा मधुबन जो शांतिवन तलेटी जो ब्रह्मा कुमारी को पानी, शुद्ध पानी यहाँ से जाता है।
4: शुद्धता यहाँ की, शुद्धता अगर आएंगे यहाँ, वातावरण यहाँ का अगर देखेंगे, शाम को आप यहाँ का नजारा देखिए, फिर आपको पता चलेगा कि हाँ यहाँ कुछ शांति है। यह इसीलिए तो यहाँ सब कोई आता है, यहाँ राजस्थान में जो ब्रह्मा कुमारी आश्रम है, इसीलिए सब आते हैं कि यहाँ शुद्धता, पवित्रता और हरा भरा, मतलब जो देखने को यहाँ मिलता है, जब ही लोग, सब लोग यहाँ आते हैं। नहीं तो ऐसे कोई, देखो हर जगह जाते हैं ऐसे तो कोई जाता नहीं, जब यहाँ कुछ विशेष खास बात होगी जब ही तो यहाँ कोई आता है। इसीलिए बस
3: यहाँ पर हम देखे पूरा हरा भरा ग्रीनरी, जो प्रकृति का जो देखना है, पर्यावरण को देखना होगा तो यहीं पर देखो पर्यावरण कितना, सब चीज का फल, हर सीजन में फल फल मिलता होगा। मुझे लग रहा है जितना कटहल से लेकर आम से लेकर पपीता सब चीज मिलता है ना,
4: हर चीज है यहाँ पे, कोई चीज की कमी नहीं है। नींबू से लगा के आम जामुन वामुन कटहर हर चीज मिलेगा यहाँ पे। गुलाब, गुलाब के पौधे वौधे लगे हैं, बगिया लगा है गुलाब का पूरा, बाबा के लिए चढ़ते हैं गुलाब तो बाबा के लिए गुलाब लगाना पड़ता है।
3: और जब गर्मी का समय होता है तो लू लगता है तो गन्ना को कौन भूल पाएंगे,
4: गन्ना भी लगे हैं अपने पास गन्ना। सुबह सुबह बढ़िया आराम, जैसे आप तो रस पीते हैं, पहले तो शुद्धता थी, पहले मतलब दांत से तोड़ के बढ़िया चूहते थे,
3: अभी भी लोग करते हैं उस तरह।
4: अच्छा, उस तरह करते हैं अपन, नहीं अब तो काफी बदलाव हो गया है, अब मशीनें आ गई हैं, ऐसे वो हो गई हैं कि गन्ने का जूस निकालो ये करो, नहीं जो पहले का मतलब आदमी था तो खेतों से तोड़ा वहीं से चलाया चबाते हुए, बड़ा आराम से मजा आता था पहले, अब क्या है सब चीजें बदल गई हैं।
3: जी जी,
4: सब जैसे बदले वैसे आदमी भी बदल गए सब।
3: सुमित जी, आपका नाम बहुत प्यारा है, कौन रखा है?
4: ये मेरी मम्मी माताश्री।
3: अच्छा, और आपका पहचान दुनिया में नाम जो दिया उसी नाम से जानते लोग?
4: मेरे जो माँ बाप हैं वो भगवान का रूप है और मैं उन्हें भगवान मानता भी हूँ, उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया, मैं इतना बड़ा हो गए थी उनके लिए, यही मतलब मेरे लिए यही बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि मुझे पैदा करके मैं इतना बड़ा हो गया, अब मैं खुद उनके लिए कुछ कर पाऊँ ये मैं खुद करता हूँ, मतलब सोचता हूँ कि मैं उनके लिए कुछ करूँ।
3: इसलिए एक व्रत जिसको होता है तो माता पिता का सेवा, श्रवण कुमार जैसे काम करते हैं। और कोई भी लड़का हो चाहे लड़के हो।
4: माता श्री का प्यार ऐसा होता है, अगर बच्चे ने खाना नहीं खाया तो मना मना माता श्री खाना खिलाती है। देखो माँ का प्यार माँ ही का प्यार होता है, पिता तो डांट लेंगे पर माँ माँ ही होती है।
3: इसमें माँ का अवदान को कभी भूलने पे, एक तो घर में जैसे लोग की माँ है ब्रह्मा माँ भी है वो भी, तो तुम्हें वो माता सब पिता तुम्हें वो कहते भगवान को, तो भगवान भी माता
4: पिता तुम ही हो, पिता ये है वो सब, मतलब
3: परमात्मा का कृपा रहता है। तो बहुत अच्छा लगा, और जब सुमित से मिले तो एक इशारा से सभी माताओं को एकत्रित कर दिए, जो कि यहाँ का जो गार्डन को कहे जाए कुआं का जो खेती बाड़ी होता है उसको देखभाल करने के लिए यहाँ का लोकल लोग से हम जो गीत सुने बहुत मजा आया हमें भी, और आप लोग भी मजा आया होगा, क्योंकि एक लोकल में जो लोग का शुद्धता भोलापन है कभी उनको मौका मिलता नहीं, कहाँ पर मंच मिलता नहीं, क्यों जब वो इस तरह आकाशवाणी में आते हैं बा टीवी चैनल में आते हैं तो उनको भी खुशी लगता है, उनका परिवार भी सुन चलो हमारा बात को भी कोई सुन रहा है, हमारा आवाज़ को भी दुनिया सुन रहे हैं, क्यों हम क्या कहना चाहते चाहे गीत का माध्यम से हो। जैसे हमारा सुमित भाई अभी अपना दिल का बात रखा, माता पिता का अवदान को कभी नहीं भूल पाए, क्योंकि माता माता ही होता है, माता का स्थान कोई नहीं ले पाएगा, इनका ये भावना है। और हम सब माताओं का भी कदर करते हैं माता पिता का, क्योंकि उनका देन है। तो बहुत अच्छा महसूस हो रहा है इस कार्यक्रम को सुंदर रूप में सजाने के लिए, हमारा साथ सुमित जब इस तरह सजाए तो हमें खुशी लगा, और वातावरण प्रकृति का गोद में बसा हुआ है, प्रकृति है तो हमें, तो प्रकृति में जैसे पेड़ पौधा एक प्रकृति का देन है, पेड़ पौधा कुछ लेते नहीं वो देते रहते हैं, तो प्रकृति के बारे में पेड़ पौधा के बारे में क्या कहना चाहेंगे सुमित जी?
4: पेड़ पौधा देखो सबको लगाना चाहिए, पेड़ पौधे से क्या है जो हमारे ये वृक्ष देख रहे होंगे आप, आम का पेड़ कितने सारे फल दे रहे हैं, छोटा सा है अभी कितना सारे
3: 6 फुट 7 फुट है,
4: हाँ अब देखो कितने फल लगे हैं, अब यहाँ जो इतने पौधे लगे इनकी छाया देखो कितनी अच्छी, यहाँ ठंडक मतलब शुद्ध वातावरण यहाँ मिलता है, जो मतलब ये पौधा है जो लगाते हैं आप, कल तो देखो कूलर एसी और पंखे कोई काम के नहीं, जो शुद्ध मतलब जो पहले की जो वो पहले मतलब शुरू में क्या होता था कि मतलब आदमी मतलब खटिया डाल के सो जाता था, बढ़िया ठंडाता था आराम से, अब तुम 10 मिनट नहीं खड़े हो सकते बाहर, अब आदमी क्या है ना कि एसी की हवा कूलर की हवा पंखे की हवा बस यही है, अब जो शुद्ध कोई चलना नहीं चाहता, शुद्ध कोई लेना नहीं चाहता, बस अब मैं इतना ही कहूँगा कुछ नहीं है, बस यही है कि जो जैसा चलता है बस चलने दो,
3: सभी का सोच ऐसे होने से चलने दो भाई, हमारा जो पीढ़ी जो आएंगे
4: साथ वैसा सबका विकास
3: ऐसे हम चलते रहेंगे तो फिर हमारा जो आने वाला पीढ़ी को उनके लिए भाई तो रखना चाहिए ना, हमें पेड़ पौधा हम काटेंगे अपना लालच का चलते ग्रीडी होकर हम ले लेंगे, तो वृक्ष फल फूल सब काटेंगे तो क्या होगा,
4: ये जब
3: बारिश भी नहीं होगा टाइम
4: कुछ पर? कुछ टाइम पर ना बारिश होगी ना कुछ होगा, अभी देखा होंगे कितनी अभी जैसे यहाँ वहाँ के पेड़ पौधे कटे हैं, कितनी बारिश आई ये बह गया वो बह गया, बाढ़ आ गई ये हो गया, प्रगति फिर टाइम टाइम से कुछ देती भी नहीं ना, फिर ना बारिश देती ना कुछ देती, अगर जब बारिश नहीं होगी जब बारिश देगी, बारिश मतलब जब नहीं चाहिए तो बारिश देगी, पर यही है कि अब मैं यही कहूँगा कि ठीक है जो भी है
3: ठीक है, इतना नाराज आपने जो बात बताया बहुत अच्छा बात बताया, और फल फ्रूट
4: मेरी एक और बात है, मैं अपने मतलब जो मतलब आने वाली पीढ़ियों से ये कहना चाहूँगा कि आने वाले भविष्य में पेड़ पौधे लगाएं और प्रगति को बचाएं, और अगर ऐसा नहीं आप करते तो फिर आपका बहुत कुछ वो नुकसान और ये वो हो जाएगा, इसलिए कहता हूँ सबकी रक्षा का मतलब गौ माता की भी अपने माता पिता की सेवा करो, पेड़ पौधे लगाओ, आप मतलब अपने से बड़ों की इज्जत करो, आजकल तो इज्जत नाम की कोई चीज़ ही नहीं रह गई, आप जैसे देखते होंगे आदमी यहाँ गुटखा खा के थूक दिया वहाँ खा के थूक दिया, बड़े बड़े सयानों की कोई मतलब इज्जत ही नहीं है, अब
3: इसका कारण वजह क्या है क्यों ऐसा करते हैं, ये तो खराब है ना,
4: ये तो खराब है बस, वो क्या समझा है यही तो है ना कि मतलब संगत जैसी संगत करेंगे, जैसे हम आपसे मिले हमें अच्छा लगा कि आप मुझे अच्छी से शिक्षा दे रहे हैं, जैसे आदमी के साथ आदमी जैसा बैठेगा तो वैसा आदमी सीखेगा,
3: जैसे संग ऐसे रंग,
4: जैसे संग वैसे रंग
3: जैसे पानी
4: जैसा देश वैसा भेष,
3: जैसे पानी वैसे पानी,
4: वैसे पानी
3: जैसे पियेंगे तो ऐसे दूध पियेंगे तो क्या निकलेगा, और दारू पियेंगे तो क्या
4: निकलेगा, आजकल तो इतने शराब इतने स्टूडेंट हो रहे हैं वो हो रहे हैं सब ये शराब
3: सब तो हो रहा है, इसलिए कला क्लास का अच्छा दुनिया लाने के लिए हम सब अच्छे बनेंगे, इसलिए हमारा अच्छा सोच हो, हमारा सोच जब अच्छा होगा हमारा आउटपुट भी अच्छा होगा, जैसे इनपुट ऐसे आउटपुट, जो खाएंगे जो पहनेंगे जो देखेंगे जो सोचेंगे वही से निकलेगा, तो इसलिए हमारा सोच को अच्छा हो, और हमारा अच्छा सोच कैसे आएगा, हमारा अच्छा सोच कैसे हम अच्छा थिंक करें, इसलिए परमात्मा भगवान को याद करके अपना कर्म को श्रेष्ठ बनाएंगे तो अच्छा बन पाएंगे, तो इन शुभ भावना के साथ सुमित जी को देते इजाजत, फिर हम भी लेते हैं ब्रेक, ब्रेक के बाद और एक प्रस्तुति गीत सुने कहेंगे, माताएं बोलते हैं वंश और हमें और एक गीत गाना है, हमें और एक गीत गाना है बोल रहे हैं, माताओं को भी लेंगे, लेकिन अल्प विराम के बाद सुमित को बहुत बहुत धन्यवाद, सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा आंचल रेडियो मधुबन 107.8 FM.

0: चले कार्यक्रम के आगे बढ़ाते हैं। हमें खुशी आज बड़ों का साथ छोटे भी कम नहीं है, हमारे साथ दो छोटी कन्याएं हैं तो उनको भी स्वागत करेंगे। हेलो, क्या नाम है?
1: फुली कुमारी।
0: फुली कुमारी कौन सा क्लास में अभी? फुली
1: 11वीं में।
0: बस अगला साल तो आएगा 12वीं क्लास, और उसमें तो आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, है ना? अभी तो भी मेहनत करते हैं, और बाद में तुम्हारे घर में और कौन कौन है फुली?
1: पापा, मम्मी, बहने, भाई।
0: कितना भाई कितना बहन?
1: 7 बहने 1 भाई।
0: बाप रे, 7! हम तो पहले भी सुना था 7 बहन कम है, शक्तियाँ 7 शक्ति कम नहीं है, पूरा बहुत अच्छा परिवार है। और शक्ति सेना का, पांडव सेना और शक्ति सेना का साथ चल रहे, तो सबको अच्छा लग रहा है। और सभी पढ़ाई करते सभी बहन?
1: हाँ।
0: अरे वाह, पैसा कहाँ से आता है इतना बहन को पैसा? पापा क्या करते, पैसा कहाँ से लाते?
1: काम करते, पाइपलाइन का।
0: पाइपलाइन का काम, पैसा बहुत कमाते हैं। वाह, पाइपलाइन का काम करते हैं। चलिए, बहुत अच्छा लग रहा है। और फुली, तुम्हारा अच्छा दोस्त का नाम बताओ।
1: सोनिया।
0: सोनिया कौन सा क्लास हो?
1: 7वीं
0: क्लास। और कौन सा स्कूल का पूरा नाम बताइए फुली, तुम्हारा स्कूल का पूरा नाम?
1: राजकीय उच्च मध्य विद्यालय चंडेला।
0: हाँ, चंडेला। सरपंच गणेश राम है ना? गणेश राम पहले सरपंच था ना चंडेला का? बहुत अच्छा। चंडेला में और कौन सा गाँव बताओ?
1: तेलपुर, अम्बावीरी, गिरवर बाट और चनार।
0: अम्बावीरी
1: बोला
0: था? अरे वाह। और तेलपुर फली
1: बोल दिया।
0: अरे ये तो होशियार है मेरे से भी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। स्कूल में प्रिंसिपल कौन है चंडला का? सुनीता मैडम। सुनीता मैडम जानते हैं?
1: नहीं मैडम आए।
0: अच्छा, और एक छोटी सी कन्या है। हेलो, क्या नाम है?
2: सिरमी।
0: हाँ, कौन सा क्लास?
2: 7वीं।
0: स्कूल में क्या क्या मिलता बताओ?
2: कपड़े और खाने का।
0: वाह, बहुत अच्छा। माता जी गीत गाएंगे।

मैं हूं जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी ओंकारानंद सरस्वती जी परमात्मा मठ प्रयागपीठ से आप सभी सुन रहे श्रोताओं को ब्रह्मा कुमारी इसका सामुदायिक रेडियो स्टेशन से रेडियो मधुबन सुनते रहो मुस्कुराते रहो। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारा शुभ प्रेम। ओम शांति।

0: लटकाए हम। रेडियो मधुबन सुनते रहिए मुस्कुराते।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए। जीवन रोशनी कार्यक्रम के अंतर्गत आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वैसे दोस्तों, मान लीजिए 2026 में जो प्रॉमिसेस हमने अपने आप के साथ किया था कि हम ये करेंगे 2026 में, क्या दृढ़ निश्चय के साथ हम वो कर पा रहे, या फिर जो हमारे लक्ष्य है उसके लिए हम पहला कदम उठा चुके हैं, निरंतर प्रयास कर रहे हैं, ये चेक करने के लिए आज का ये कार्यक्रम है। क्योंकि दृढ़ निश्चय अगर हमारे अंदर होगा तभी ही हम उसे पूरे तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। तो आइए, आज हमारे मध्य हमारे एक्सपर्ट हैं प्रिया दीदी जी, जिनको आप जानते हैं, आप उन्हें कई बार सुन चुके हैं, तो इनसे बेहतर एक्सपर्ट कौन हो सकते हैं जो हमें दृढ़ संकल्प के इस मूल्य के बारे में सरल शब्दों में सरल तरीके से हमें एक्सप्लेन करेंगे। दीदी ने MBA कंप्लीट किया है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी उनके नस नस में बचपन से ही था, और उसे बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने समझा है और औरों को भी समझा रहे हैं। यूथ हो, चाहे वो एडल्ट्स हो, चाहे वो घर में रहने वाले पेरेंट्स हो, सबको वो सिखाते हैं कि आध्यात्मिकता को अपने जीवन में अपनाते हुए अपने जो निजी लाइफ है उसे कैसे जीना है बेहतर तरीके से, पॉलिश्ड तरीके से। तो प्रिया दीदी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में।
2: थैंक यू सो मच
1: जी। तो सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे, जो हम बात कर रहे हैं आज जो मूल्यों के बारे में, क्योंकि सपनों को अगर हकीकत में लाना है तो दृढ़ निश्चय होना बहुत जरूरी है
2: जी।
1: तो अगर हम दृढ़ निश्चय ये बात कहते हैं, ये तो बहुत भारी भरकम सा लग रहा है, आप इसे सरल तरीके से कैसे समझाना चाहेंगे?
2: जी, बहुत अच्छा जो मैंने सुन रही हूँ शुरू से ही आपने लिया है कि जनवरी में हम लोगों ने बहुत सारे रेजोल्यूशंस लिए हैं, प्रॉमिसेस किए हैं, खुद से किए हैं, लोगों से किए हैं, शायद खुदा से भी किए हैं।
1: फरवरी महीने में भी हमने किया है, जैसे प्रॉमिस डे और भी डेज थे।
2: हाँ जी बिल्कुल, लेकिन बात वही है कि दृढ़ निश्चय कितना है। तो सिंपल वर्ड्स में अगर हम देखें कि दृढ़ निश्चय माना कोई भी चीज पक्का करना, और पक्का करना इतना कि उसके ऊपर हमें पूरा निश्चय भी हो कि हाँ ये मैं करूँगा या करना ही है
1: जी।
2: तो इसको हम कहें कि कोई भी चीज़ जो मैं ठान लेता हूँ या अपने अंदर पक्का कर लेता हूँ, तो उसको हम कह सकते हैं कि दृढ़ निश्चय है। और दृढ़ निश्चय के लिए जैसे कि हम देखते हैं कि आज जो कमिंग जनरेशन है जिसको हम जेंजी कहते हैं
1: जी,
2: तो इनमें हमने देखा है खास, हालांकि ये पहले से ही हो रहा है, सिर्फ इन जनरेशन में नहीं आया है, उनके फादर मदर उनसे भी पहले से ये चीज शुरू हो गई है कि हमारे अंदर ये दृढ़ता की कमी बहुत ज्यादा आने लग गई है
1: जी।
2: हम बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करने लगे हैं अपने संकल्पों में, जो हम सोचते हैं वो हम बोलते नहीं, जो हम बोलते हैं वो हम करते नहीं हैं
1: जी।
2: तो ये चेंजेस अगर आते हैं तो एक मानवीय जो कैरेक्टर होता है, जो कि बहुत श्रेष्ठ अगर हम किसी का देखते हैं, चाहे वो स्वामी विवेकानंद जी का है या किसी भी व्यक्तित्व जो आज हम देखते हैं जो बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है और बहुत जो लोगों के दिलों पे है, तो उनका हमने देखा है कि दृढ़ निश्चय बहुत ज्यादा होता है
1: जी।
2: वो जो कहते हैं वो करते हैं, जो सोचते हैं वो करते हैं
1: जी।
2: तो एक ये बहुत बड़ा कारण है उनके जीवन का, दृढ़ निश्चय, जिसकी वजह से वो आज जहाँ है उनको आज पूरी दुनिया जो है सम्मान करती है
1: जी। दृढ़ निश्चय मतलब एक मानसिक स्तर पे हम सोच लेते हैं, संकल्प लेते हैं, जैसे आजकल कहते हैं कि आप अफर्मेशंस लो, मैनिफेस्ट करो, ये तो हम करते हैं कि हमें ये अचीव करना है, और उसके लिए बोलते हैं कि आप फेक उन चीजों को अपने दिमाग में लूप मोड में रिपीट करो जब तक आप इसको कर सकते हो, मेक कर सकते हो, तो ये तो करते हैं, लेकिन वो जो स्तर है वो सूक्ष्म में है, तो ये स्थूल में क्यों नहीं हो पाता है, प्रैक्टिकल में क्यों अचीव नहीं कर पाते?
2: क्योंकि जितने स्टेटमेंट आपने बोले हैं उसमें कुछ चीजें अगर आप नोट डाउन करें कि पहले ही आपने कहा फेक है, तो आपका माइंड जानता है ये फेक हो रहा है, जबकि माइंड को ये सूचना नहीं देनी है। इट्स अ माइंड गेम, इट इज वेरी साइंटिफिक एंड स्पिरिचुअल टू, कि माइंड को ये सूचना नहीं देना है कि फेक करना है जी, मैं नकली बोल रहा हूँ जी। हालांकि हम ये चीज उसे बोलकर नहीं बता रहे, लेकिन ये अंदर है,
1: सबकॉन्शियस माइंड में है।
2: हाँ, और तभी मुंह से निकला है कि ये फेक हम अभी कर रहे हैं जब तक कि ये अचीव हो जाए। और दूसरा सेंटेंस जो आपने कहा कि ये करेंगे हो जाएगा, लेकिन इसको प्रेजेंटली फील करना होता है कि ये मेरे साथ हो रहा है।
1: ओके, उसको फील करना।
2: हाँ,
1: लेकिन वो ये माइंड जानता है ना कि फेक कर रहे हैं, लेकिन
2: माइंड जानता है, लेकिन तभी जानता है जब आप इसको कह दो कि फेक कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जो हम देखते हैं, जो बोला गया है कि लॉ है एक दुनिया का जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, गुरुत्वाकर्षण का केंद्र कह सकते हैं, जो धरती के लिए भी बोला जाता है। तो आकर्षण का सिद्धांत ये कहता है कि आप जो सोच रहे हैं या चाहते हैं भविष्य में अचीव करने को, उसको इतना महसूस करें कि वो आपको प्रेजेंट में फील होने लगे कि वो आप कर रहे हैं।
1: जी,
2: फॉर एग्जाम्पल, जो एक रियल एग्जाम्पल भी था इसमें, कि एक व्यक्ति थे और उनका जो बेटा है वो बेसमेंट में जाता है, विदेश में बेसमेंट में स्टोर होता है
1: जी।
2: तो बच्चा नीचे जाता है और नीचे कुछ गंद सा बहुत पुराने टाइम का एक बास्केट है, डब्बा है, कार्टन टाइप है, उसको वो खोलता है कि क्या है इसमें। बच्चा छोटा ही है, अभी 5-7 साल का होगा, तो उसमें से वो एक पिक्चर उठाकर ले आता है जो पिक्चर उसके घर की है जिसमें वो रह रहा है
1: जी।
2: तो वो मिट्टी मिट्टी हो रखा तो उसको बहुत वो क्लीन करता है कि मेरे घर का पिक्चर इतना सुंदर है, यहाँ क्यों पड़ा है। तो वो बहुत कॉन्शियस है पापा से पूछने के लिए कि ये गंद में क्यों पड़ा है। तो वो ऊपर जाता है और पापा से पूछता है कि पापा ये नीचे क्यों है
1: जी।
2: तो पापा थोड़ी देर के लिए सुन हो जाते हैं और सुन होने के बाद बच्चे को एक कहानी सुनाते हैं कि बच्चे आज से 20 साल पहले
1: जी,
2: या कुछ साल पहले, एग्जैक्टली नॉट द 20 लेकिन कुछ साल पहले, काफी साल पहले, जहां मैं शून्य पे खड़ा था, तो तब मैंने ये घर देखा था, ये पिक्चर मुझे मिली थी
1: जी,
2: और ये पिक्चर मैंने अपने बेड के आगे लगा दी थी
1: जी,
2: ठीक है। और उसके बाद डेली जब उठता था, इस घर का देखता था और विजुलाइज करता था, मैं इस घर में घूम रहा हूँ और वो जो सी शोर फेसिंग था ऐसा कुछ, तो मैं वहां खड़ा हूँ और समुद्र की लहरों को देख रहा हूँ। और वो घर फिर उसके बाद मैंने बहुत मेहनत भी की, ऐसा नहीं कि सिर्फ सोचा, देखा, विजुलाइज किया, मैंने डाई हार्ड मेहनत की है और आज मैं उसी घर में खड़ा हूँ।
1: ओके,
2: तो यू हैव टू फील इट कि इट इज गोइंग ऑन प्रेजेंटली, वो मेरे साथ अब भी हो रहा है, ये माइंड को सूचना देना बहुत जरूरी है
1: जी।
2: उसके लिए आपको विजुअलाइज, सिर्फ बोलना इज नॉट कंप्लीट टास्क, यू हैव टू फील इट
1: जी।
2: ठीक है, कोई भी चीज अगर जिसको एफर्मेशन आप वर्ड दे रहे हैं, यू डोंट हैव टू अटर दैट कि आपने रिपीट कर लिया बार बार, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन अंदर से आंसू आ रहे हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही फेक है और आपको खुद भी फील हो रहा है और माइंड को पता नहीं फेक हो रहा है, क्योंकि इमोशंस उसके अकॉर्डिंग नहीं है
1: जी।
2: यू हैव टू क्रिएट द इमोशंस अकॉर्डिंग टू दैट कि वाकई में मैं बहुत खुश हूँ।
1: तो उसके लिए कुछ करना होगा
2: ना, उसके लिए विजुलाइज करना स्टार्ट कर दीजिए। आप किस चीज से खुशी होती है कि गुलाबों के बीच में मैं बैठा हूँ, गार्डन में हूँ, अगर आपको गार्डन पसंद है। लेकिन अगर आपको खेलना पसंद है तो बहुत सारे बच्चों के बीच में हूँ, क्रिकेट खेल रहा हूँ, एंड आई एम एंजॉयिंग,
1: ओके,
2: आई एम लिविंग द बेस्ट।
1: तो उसको विजुलाइज करना,
2: विजुलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इमोशंस उसके अकॉर्डिंग जनरेट हो वो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि हाँ बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन तीन चीजें कि जो आपने बोला वही आप देखें और वैसा ही फील करें। ठीक है, जैसे मैंने बोला मैं बहुत खुश हूँ पर मेरे चेहरे पे एक भी स्माइल ही नहीं है, तो मेरा जो इमोशन है वो मैच नहीं हो रहा है। ठीक है, तो मेरे को फील करना है कि यस मैं बहुत खुश हूँ, मेरे पास कोई रीजन नहीं है, लेकिन यू हैव टू क्रिएट इट। मैं खुश हूँ बिकॉज आई एम अलाइव, मैं खुश हूँ बिकॉज मैं आपके साथ हूँ, रेडियो में हूँ, लोगों के बीच में हूँ, आई एम वेरी हैप्पी। तो यू हैव टू क्रिएट दैट इमोशन।
1: ओके,
2: तो ये जो टास्क होगा जो 10 साल में होने वाला है वो बहुत फास्ट होगा।
1: ओके जी, तो कुछ और चीजों के बारे में पूछने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जैसे हम खुश रहने की बात कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये
2: जी।
1: बाकी चीजें तो अचीवमेंट्स है, स्थूल रूप में जॉब, ये सब हम कोशिश करते हैं और मिल भी जाता है, लेकिन खुश रहना बहुत इंपॉर्टेंट है और हम चाहते हैं हर दिन खुश रहें जो भी परिस्थिति हो, लेकिन नहीं रह पाते। तो जब परिस्थिति ऐसे हो प्रैक्टिकल लाइफ में
2: जी,
1: किसी की डेथ हो गई, परिवार में झगड़ा चल रहा है, कोई जमीन वगैरह की विवाद चल रहे हैं, तो उस बीच में कैसे खुश रह सकता है कोई?
2: जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मेरा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस मैं किसी की डेथ का ही दूंगी, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो लौट के नहीं आती है
1: जी।
2: क्योंकि जो ज़मीन का विवाद है उसमें भी कुछ ना कुछ हल निकल जाता है, या कहीं ना कहीं रास्ता मिल जाता है, चाहे जमीन नहीं मिलती है लेकिन कुछ तो मिलता है, नहीं मिलता है तो कम से कम एक तसल्ली मिलती है, लेकिन स्टिल यू आर अलाइव। लेकिन जब व्यक्ति ही जीवन से चला जाता है तो एक बहुत बड़ा धक्का है किसी के लिए। लेकिन उस समय भी हम ये जरूर सोच सकते हैं कि जो जैसे स्पिरिचुअल कंसेप्ट जो होता है, जो हम ब्रह्मा कुमारीज में भी समझाते हैं, और सिर्फ ब्रह्मा कुमारीज में नहीं पूरे वर्ल्ड वाइड में है, आप शास्त्रों में देखें, आप बाइबल में देखें, कुरान में देखें, तो सदा ही ये लिखा गया है कि जो मेरा था वो शारीरिक रूप में जीवित नहीं है, ओके फाइन आई लॉस्ट हिम, ठीक है, या हर, लेकिन वो जिंदा है
1: जी।
2: ये मानना एक खुशी दे देता है। जब हम किसी ऐसे घर में जाते हैं, सीरियसली जब हम किसी से मिलते हैं जिसका नियर एंड डियर वन जिन्होंने शरीर छोड़ा होता है, तो हम उनको यही कहते हैं कि वो जिंदा है। बस उन्होंने घर चेंज किया है। और अगर जैसे एक माता पिता होते हैं और उनका बच्चा जब बहुत ज़्यादा पढ़ लिख जाता है, विदेश में जॉब लग जाती है, तो माता पिता को खम्मी तो खलती है, लेकिन दे फील हैप्पी कि हाँ मेरा बच्चा

0: इसमें डेवलपमेंट कर रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है.
1: तो ये एक थॉट अपने मन में लाना
0: बहुत
1: जरूरी
0: है. लेकिन उसके लिए थर्ड पर्सन ही जो है वो ज्यादा हेल्पफुल होता है. सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन वो ज्यादा हेल्पफुल होता है, बिकॉज वो बहुत ज्यादा इमोशनली वीक एंड डाउन है. तो उस समय हम उनको यही बोलते हैं कि वो जिंदा है, बस घर छोड़ा है, किसी और के घर में प्रवेश किया है. वहां ढोल नगाड़े बज रहे हैं लेकिन आप रो रहे हो, और ये बहुत बड़ा अपशगुन है. तो जब ये बात वो पूरी तरह से अंडरस्टैंड करते हैं, दे अंडरस्टैंड्स कि आपका बेटा वहां जन्म ले रहा है और वहां तो बड़े नगाड़े बज रहे हैं, बड़े ढोल नताशे शुरू हो चुके हैं, और आप यहाँ रो रहे हो, तो वहां उसके लिए अपशगुन क्रिएट होगा. और वहां क्या हो सकता है उसके साथ प्रॉब्लम, वो आप यहाँ नहीं जान सकते क्योंकि हमें नहीं पता वो किस घर गया, लेकिन गया है. तो जब ये चीज वो समझते हैं तो दे ट्राई टू स्टॉप देमसेल्फ, एटलीस्ट कम होता है उनका,
1: क्योंकि जो जाता है उसको हमें हैप्पी जर्नी, सेफ जर्नी जो हम कहते हैं, तो दिल से निकलना
0: चाहिए. तो हम यही उनको बोलते हैं कि जैसे अभी महाली में अगर डेथ हुई है एक दो दिन में, तो हम उनको यही समझाते हैं कि 13 दिन तक 15 दिन तक सोल जो है वो आस पास है. आप रो कर दूसरे व्यक्ति के साथ दुख साझा कर रहे हैं, ठीक है, आप रो रहे हैं, आपको दुनिया समझा रही है, आपके पास कोई है जो आपके साथ बैठा है, ठीक है, आपका रोना देख रहा है, लेकिन उसके पास कोई नहीं है. वो आपको देख रहा है और वो बहुत रो रहा है, क्योंकि वो अपना रोना आपको शेयर भी नहीं करा सकता, आपको चुप भी नहीं करा सकता. तो इसीलिए आपको उसको फील करके ये याद रखिए कि आपको रोता हुआ देखकर वो कैसा कर रहा होगा फील. तो जब ये बात भी वो समझते हैं कि हाँ, मेरे रोने से नेचुरली मेरे से प्यारा था, चाहे वो जवान बेटा है, चाहे वो पति है या पत्नी है, तो जब वो ये चीज़ समझते हैं तो भी उनको थोड़ा सा लगता है कि हाँ, कि मुझे थोड़ा मतलब जो है कंट्रोल अपना करना चाहिए. तो उसके बजाय, क्योंकि वो जा रहा है, उसको जाना ही पड़ेगा, बिकॉज अभी वो उस मोड पे है
1: जी.
0: तो जब कोई घर से जाता है तो आप उसको गंदा बक्सा, गंदे कपड़े, गंदे खाना, ये बासी खाना ऐसा पैक करके देंगे?
1: बिल्कुल नहीं.
0: जब भी जाएगा तो आप उसको बढ़िया बेस्टेस्ट आप देंगे. तो अभी भी वो जा रहा है, तो यू हैव टू गिव योर बेस्टेस्ट, कि बेस्ट फीलिंग्स, बेस्ट थॉट्स जो भी है, उसको एनर्जी की जरूरत है, बिकॉज ही इज इन अ चेंज मोड. और जब हम चेंज मोड में होते हैं तो हमें एनर्जी चाहिए होती है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका प्रमोशन भी हुआ है, यू आर बिकमिंग द बॉस ऑफ दिस एफएम, ओके, तो भी आपको एनर्जी चाहिए
1: जी.
0: यू हैव टू अंडरस्टैंड द थिंग्स मोर, आपको और पेशेंस चाहिए, तो एनर्जी चाहिए होता है. तो ही इज ऑल्सो चेंजिंग द प्लेस, हर चीज चेंज होने वाला है, उसका कॉस्ट्यूम, उसका रिलेशंस, उसका घर, उसका प्लेस, उसकी ओनरशिप, हर चीज चेंज हो रही है. तो ही नीड्स द एनर्जी मोस्ट, उसको उस टाइम बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए. तो जब ये चीज भी समझते हैं जब वो, तो फिर वो अंडरस्टैंड करते हैं. हालांकि ऐसा मैं नहीं कहती कि वेरी फर्स्ट डे ही वो रोना बंद कर देते हैं, लेकिन फिर भी वो संभलते हैं
1: जी. बिल्कुल. तो ये संकल्प जो है ये बहुत ज़रूरी है. इस 2026 शुरुआत में ही हमें ये सारी चीज़ें दीदी से जानने को मिला कि कैसे कोई पर्सनल लॉस है, कोई चला गया है आपके लाइफ से, तो किस तरीके से आप उसके साथ सूक्ष्म रूप में, स्थूल रूप में पेश आएंगे, कैसे थॉट्स आप क्रिएट करेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी है. आइए जानते हैं दृढ़ निश्चय के बारे में. डिटर्मिनेशन बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में कोई भी चीज़ अचीव करने के लिए. तो दीदी से जानना चाहूँगी कि बहुत से श्रोता हैं और जो भी हमारे दोस्त जॉब करते हैं, तो ये कहते हैं कि 2-3 बार असफल होने के बाद वो हार मान लेते हैं
0: जी.
1: तो असफलता के बाद भी दृढ़ निश्चय को कायम रखना कितना ज़रूरी है और कैसे रखें?
0: अब इसके लिए तो मैं यही कहूँगी कि बस 4 घर मिलाइए,
1: 4 लोगों
0: से,
1: ओके,
0: और किसी का भी पता कर लीजिए जो कई बार असफल ना हुआ हो, एक ही बार में टॉप लेवल पे, हर चीज़ में टॉप लेवल पे रहा हो, ऐसा कोई व्यक्ति आपको नहीं मिलने वाला है
1: जी.
0: सबके साथ फेलियर्स अटैच्ड हैं, ठीक है. जैसे हम देखते हैं कि जिन्होंने बल्ब इजाद किया है तो वो 10,000 बार फेल हुए हैं
1: जी,
0: ठीक है. तो एक बहुत बड़ी संख्या है जो हम समझ सकते हैं, हम तो 10 ही बार हुए हैं, लेकिन क्या 10 बार फेल हुए तो फिर क्या लगे रहें? यस, लगे रहें, इफ यू थिंक द थिंग इज राइट, ये जो मेरा लक्ष्य है वो सही है, मैं सही दिशा पे हूँ, तो लगे रहने में कोई बुराई तो है ही नहीं. इसीलिए फेलियर हो रहा है तो ये भी एक चैप्टर है जो मुझे समझना है. तो जो एडिसन वॉटसन थे उन्होंने भी यही कहा था कि 10,000 बार फेल होने से मुझे ये पता चला कि 10,000 तरीके जो मैंने यूज किए थे उससे बल्ब नहीं बनता, उससे बल्ब नहीं जलता. तो उन्होंने उस फेलियर को भी चैप्टर काउंट किया कि इट वॉज अ लेसन फॉर मी कि इससे बल्ब नहीं जलेगा.
1: राइट.
0: ओके. तो अगर हम हर फेलियर को फेलियर वर्ड ना लें, दिस इज अगेन द फर्स्ट जो हमने बात किया कि मैं वर्ड्स को कैसे ले रहा हूँ. आई हैव गिवन माई माइंड कि मैं फेल हो गया हूँ, तो माइंड उसको और इमोशनली मुझे डाउन कर देगा.
1: ओके. डिप्लीट होता है तो उसमें yes. कोई मतलब हार्मोन्स और ये सब
0: सब कुछ पता नहीं, मल्टी मिलियन सेल्स हैं, आप गूगल कर सकते हैं कितना. वो सारे सेल्स आपके एक वर्ड से चेंज होने लग जाते हैं, वो सारे सेल्स नेगेटिवली चार्ज होने लगते हैं, हार्मोन्स भी नेगेटिव होने लगता है, सारा जो केमिकल सिक्रेशन है आपका स्टमक है सब कुछ नेगेटिव होने लगता है. और अगर आप बहुत दिन तक हैं तो डॉक्टर्स के पास जाना ही पड़ जाता है. तो इट्स अ वेरी बिग आपका साइन है ये
1: जी
0: कि आप फेलियर फेलियर फेलियर में ही सोच रहे हैं, तो डॉक्टर फिर मेडिसिन देने लगता है कि बच्चा ये खाओ. फिर धीरे धीरे डिप्रेशन आ रहा है, तो दैट मीन्स यू आर चार्जिंग योर बॉडी फुल्ली नेगेटिव, आपने कर दिया है. तो इसीलिए फेलियर को फेल कहकर माइंड को नहीं खिलाएं, उसको यही कहें कि इट वॉज अ चैप्टर एंड आई लर्न इट.
1: ओके.
0: तो फिर मुझे आगे बढ़ना है. जैसे कहा कि लक्ष्य मेरा सही है तो मुझे आगे बढ़ना है. हाँ, लक्ष्य में मुझे अगर लगता है कि नहीं तो फिर सलाह लेकर के हम आगे बढ़ सकते हैं, या जो उस लक्ष्य को प्राप्त कर चुके हैं मैं उनसे सीख सकता हूँ, सीख करके फिर मुझे आगे बढ़ना है
1: जी.
0: तो इसलिए अभी जो मुझे करना है कि विशेष जो मेरा फेलियर आ रहा है आगे भी होगा. लाइफ इज लाइक अ फेलियर एंड सक्सेस मिक्सचर है. कोई भी व्यक्ति एक बार में कोई भी टॉप पे नहीं बैठा है, कोई भी नहीं. चाहे वो विवेकानंद स्वामी जी हैं, चाहे वो हमारे प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर, कोई भी एक बार में ऊपर नहीं पहुंचा है
1: जी.
0: इनफैक्ट भगवान भी अगर हम देखते हैं तो वो भी पूरी दुनिया से गालियां जो हम देखते हैं वो इंसानों से खा रहे हैं, ठीक है. लेकिन भगवान भी फिर उनको अपना बच्चा समझ करके माफ करके आगे बढ़ते हैं, इसलिए ही इज वेरी पॉजिटिव
1: जी.
0: और हम भगवान तक को गाली दे रहे हैं इसलिए आई एम टोटली नेगेटिव. इसलिए अपना चेंज करना, इट्स टाइम टू चेंज आवर सेल्फ
1: जी.
0: कि मैं अपना वर्ड्स क्या बोल रहा हूँ, मैं सोच कैसा रहा हूँ, मैं देख क्या रहा हूँ. मैंने फेलियर सोचा है और अपने कमरे में फिर वही ऑरा एंड वही जो है मैं वाइब्रेशंस रिलीज कर रहा हूँ, तो वो मुझे वापस टकराएगा क्योंकि मैं बंद कमरे में हूँ. हाँ, ओपन में बैठा हूँ तो ओपन जैसे गार्डन या टॉप ऑफ द हिल बैठा हूँ और वहाँ कुछ सोच रहा हूँ, तो जो नेचर है वो मुझे गुड वाइब्स भेजती है आज भी.
1: ओके.
0: ठीक है, हालांकि नेचर बहुत डिस्टर्ब है लेकिन अब भी उसमें बहुत पावर है. तो जब ऐसा डाउन फील करते हैं तो जो चीज़ आपको पसंद है, पेट्स हैं, डॉग्स हैं, स्ट्रीट डॉग्स हैं, कुछ भी है, आपको क्रिकेट पसंद है, आपको टीवी पसंद है, आपको खाना पसंद है, हैव इट, उसके साथ बैठे और फेलियर को यही चैप्टर है और अब मुझे आगे बढ़ना है.
1: ओके. जैसे आज हम एक कॉलेज में गए थे तो कुछ स्टूडेंट्स ने ये शेयर किया कि फेल हो गए 10वीं में 12वीं में, सुइसाइडल जो थॉट्स थे वो भी आए कि सुइसाइड कर लेते हैं क्योंकि ताना माने लगते हैं लोग पड़ोसी, लेकिन उन्होंने ओवरकम किया और आज वो पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं. लेकिन हर बच्चे के साथ ऐसा नहीं होता,
0: नहीं होता.
1: क्योंकि बहुत सारे केसेस हम देख रहे हैं कि जस्ट कुछ परसेंटेज के कुछ मतलब 0.01 भी कम है तो भी वो लोग ये कदम उठा लेते हैं. तो उनको कैसे क्या कहेंगे, कैसे दृढ़ निश्चय के साथ फिर से चैप्टर शुरू करें नए?
0: इसमें बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं जो मैं समझती हूँ, क्योंकि मेरे 99.9 आए हैं लेकिन मेरा उम्मीद था कि 100 आ जाए. तो इसमें बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हैं कि मेरा जो मैंने मेरी मम्मी पापा ने मेरे लिए सोचा था, ठीक है. तो पेरेंट्स का बहुत बड़ा एक रोल होता है बच्चों के लिए. बच्चों के लिए हमेशा पेरेंट्स को बोलना चाहिए. जो मैंने अभी एक देखा था, मैं कहीं गई थी, आई फॉरगॉट द प्लेस, लेकिन वहाँ साइंटिस्ट हैं, मम्मा भी साइंटिस्ट हैं, फादर भी साइंटिस्ट हैं
1: जी.
0: और उन्होंने अपने बेटे को बोला हुआ है, इट वॉज इन 10th आई गेस, तो उन्होंने अपने बेटे को बोला था डोंट टेक द टेंशन. बच्चा थोड़ा स्ट्रेस में था बिकॉज ऑफ द मैथ्स
1: जी.
0: तो मम्मी पापा तो बहुत इंटेलिजेंट है, हेल्प भी होती ही होगी, स्टिल ही वॉज नॉट सो गुड इन मैथ्स. तो वो इतना स्ट्रेस में था और नहीं पता, वो अपने मम्मी पापा को पूरा शेयर नहीं किया. And he died. He jumped off of the building. तो parents shock में हैं क्योंकि उन्होंने कह दिया था कि stress नहीं लेना.
1: जी.
0: तो ऐसे भी बच्चे हैं. लेकिन चीजें फिर भी जुड़ी हुई हैं. एक अकेले का thought उसके साथ काम नहीं कर रहा है. Parents हैं लेकिन वो बहुत higher level पे बैठे हैं, scientist हैं. बच्चा देख रहा है कि भाई मैं तो जीरो हो रहा हूँ और मेरे मम्मी पापा क्या है. तो वो गैप को फील करना एक बहुत बड़ी जरूरी है
1: जी.
0: मेरे पापा बहुत बड़े मल्टीनेशनल कंपनी के मालिक हैं, एंड आई एम डूइंग नथिंग. तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा स्ट्रेस की बात हो जाती है
1: जी.
0: फिर मेरा फ्रेंड सर्कल क्या बोल रहा है, तेरे मम्मी पापा तो साइंटिस्ट है
1: जी.
0: और तू ऐसा, तो ये क्या चल रहा है. तो वो अकेला नहीं होता है, जब वो ऐसे थॉट्स में पहुंचता है, बहुत सारी चीजें जुड़ी हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि बच्चे डिस्कस कई बार करते हैं, कई बार नहीं करते हैं।
1: जी,
0: कुछ स्ट्रांग होते हैं कि खुद ही कोप अप कर लेते हैं, कुछ नहीं होते हैं। लेकिन मेरी यही रिक्वेस्ट है कि शेयर करें
1: जी।
0: अगर मेरे कम मार्क्स आए हैं, जीरो आए हैं, तो भी मुझे शेयर

0: सर्कल नहीं है, हेल्दी सर्कल नहीं है, तो फिर आप गॉड से बात करें, लेकिन लोगों को गॉड से बात करने में सबसे ज्यादा टफेस्ट लगता है.
1: तो गॉड को कुछ और रिलेशनशिप दे
0: फ्रेंड फ्रेंड, लेकिन वही है, ये लिंक लाने में ना टाइम लगता है, एक दिन से तो नहीं बनता है. तो इसीलिए हम उन्हें कहते हैं थोड़ा स्पिरिचुअल बने, स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े, या कुछ भी. आज ऑनलाइन इतना कुछ अवेलेबल है, दे डोंट नीड टू गो एनीवेयर. कोई टेंपल में जाकर आपको मेंबरशिप नहीं लेने की जरूरत है, या कहीं भी नहीं. आप गूगल करें एंड यू कैन गेट द वर्जन्स, यू कैन गेट द टाइप ऑफ मेडिटेशन.
1: एआई से भी बात कर सकते हैं,
0: बिल्कुल कर सकते हैं, बट मैं उसको उतना अच्छा नहीं लेती हूँ, बिकॉज इतनी दुनिया में इंसान है एंड स्टिल आई एम टॉकिंग टू अ कंप्यूटर. तो मेरा लेवल जो आगे जाए,
1: इंसान ढूंढना बहुत जरूरी
0: है, बहुत जरूरी है हमारी लाइफ में, है हमारी लाइफ में. हाँ, यू हैव टू चेक, पर मैं नहीं कर रहा हूँ. ये भी एक बहुत बड़ी मिस्टेक है कि मैं नहीं कर रहा हूँ,
1: क्योंकि हम शायद इंसानों को फेस करना नहीं चाहते.
0: हाँ, कर नहीं पा रहे हैं, करना नहीं चाहते हैं, उन्हें अपनी बात बताने से डरते हैं कि कहीं लीक आउट ना हो जाए.
1: लीक आउट के साथ साथ वो जज करते हैं, हमें उस तरीके से देखते हैं. हाँ, हर बार.
0: बिल्कुल, तो इसलिए एआई से बेटर है भगवान, कहीं ज्यादा बेटर.
1: राइट, कोई तुलना ही नहीं है,
0: कोई तुलना ही नहीं है, क्योंकि एआई कहीं ना कहीं एक ह्यूमन मेड ही है. और इसका जो आज भी साइंस ये कहता है कि वो एआई जो है वो बहुत एक बुरा जो है जगह बनाने वाला है, एक डिजास्टर क्रिएट कर देगा, एक आने वाले टाइम में बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है.
1: जी, क्योंकि सबकी इंफॉर्मेशन है.
0: यस, सबकी इंफॉर्मेशन है. तो इट्स बेटर टू क्रिएट मतलब एक हेल्दी सराउंडिंग, हम फ्रेंड सर्कल बना लें. ठीक है, लोग तो अपने डॉगी से भी बात करके खुश हो लेते हैं. ठीक है ना, तो यू हैव टू क्रिएट समथिंग, यू हैव टू फाइंड अ प्लेस कि कहाँ आप अपना शेयर कर सकते.
1: भगवान जवाब देते हैं क्या?
0: बिल्कुल देते हैं,
1: तुरंत, जैसे एआई देता है.
0: तुरंत चाहिए तो जैसे एआई आपके लिए एक्सेस इजी कर लिया है, आपने
1: अब प्रैक्टिस करके किया है.
0: हाँ, है ना. फॉर एग्जांपल, अगर मैं मोबाइल में नेट ही रिचार्ज नहीं कर रहा हूं, तो फिर मैं एआई से कुछ मांग सकता हूं?
1: नहीं.
0: तो आई हैव डन समथिंग टू गेट द एआई, तो भगवान के आंसर्स लेने के लिए मैंने कुछ किया है. बहुत मैं चाहता हूँ तुरंत दे दे, पर मैं कुछ ना करूँ, तो ऐसा नहीं.
1: मेरे लाइन भी क्लियर होना चाहिए.
0: हाँ, मेरे जवाब आने चाहिए, मैं कुछ नहीं करूँ, ऐसा नहीं होता, दुनिया में नहीं होता. आपको कुछ करना ही पड़ता है. एक डॉगी भी, उसको आप रोटी देते हैं तब वो पूछे लाता है.
1: राइट,
0: इसलिए कुछ तो करना होगा, तो आपको आंसर जरूर मिलते हैं.
1: जी जी, उसके बारे में तो हम आगे जानते रहेंगे. अभी मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जैसे अगर किसी युवा का सपना अलग है, उसके घर वाले अलग चाहते हैं, जैसे हम थोड़ा बहुत बात भी कर चुके हैं इसके बारे में, तो फिर क्या करें, कैसे समझाएं, कैसे दृढ़ निश्चय रखें उस परिस्थिति में?
0: मैक्सिमम हम देखते हैं कि युवा जो है वो थोड़ा हटके ही पेरेंट्स से सोचती है. कई युवा इसका बहुत अच्छा कर भी लेते हैं, जैसे अब मैं क्या नाम लूं, बहुत सारी हस्तियां हैं समाज में हम देखते हैं कि जिन्होंने पेरेंट्स ने कुछ और सोचा था, लेकिन भाई ने या बहन ने, जो भी बच्चे ने है, वो डिफरेंट सोचा है और बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच गए हैं. लेकिन कई हम जिनके हमारे पास न्यूज नहीं है, कई ऐसे भी हैं जो पेरेंट्स के अगेंस्ट गए हैं और गड़बड़ हो गई है.
1: जी, जी.
0: उनका लाइफ ही थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है. तो इसीलिए मेरा ये जो मानना है कि ठीक है, अगर आप पूरे दृढ़ संकल्पधारी हैं, आपको पक्का है कि आई विल डू इट 100%, तो कि फिर आप वो संकल्प को पूरा करने का अपने पेरेंट्स को भी, मैं तो कहूँ कि उनको समझाएं,
1: कन्विंस
0: करने की ताकत रखें. लेकिन जो इंडियन टेंडेंसी है कि पेरेंट्स जल्दी कन्विंस नहीं होते हैं, दैट्स टू, आई अग्री. लेकिन ये है कि कोशिश करें कि मम्मी को कन्विंस कर लें, क्योंकि मम्मियाँ हो जाती हैं. तो पेरेंट्स को ज़रूर आपकी पता हो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि समाज आज की डेट में सेफ नहीं है. तो इसलिए एक पेरेंट को ज़रूर अपने उसमें कॉन्फिडेंस में रखें. पापा भी मान जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है. आपको अगर पूरा पक्का 100% है कि मैं ये करूँगा, तो फिर पेरेंट्स को बोलकर आप उस चीज़ को ज़रूर पक्का पूरा कीजिए. लेकिन अगर आपको ही 100% नहीं है, तो फिर आपको थोड़ा सा पेरेंट्स को साथ में लेकर चलना चाहिए, उनकी भी बात माननी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू प्ले क्रिकेट, लेकिन दे आर फोर्सिंग मी टू फॉर द गवर्नमेंट जॉब्स. तो आप पढ़ें भी
1: जी,
0: लेकिन क्रिकेट भी खेलें. ठीक है, क्रिकेट खेलने के भी वो भी टाइम देंगे. अगर वो देख रहे हैं कि आप पढ़ रहे हैं, तो आपको वो क्रिकेट खेलने के लिए भी भेजेंगे. वो इतने भी नहीं है कि भाई नहीं जी पढ़ो, क्रिकेट को फेंकी दो, ऐसा नहीं है. कोई भी पेरेंट ऐसा नहीं है आज की डेट में. इसलिए पैरेलल में अगर लेके चलते हैं, वो सबसे बेस्टेस्ट है.
1: जी.
0: तो आप जहाँ अपना बढ़िया बेस्ट करेंगे, तो वहाँ आप आगे बढ़ सकते हैं. आपने क्रिकेट में अगर दिखाया कि आई कैन बी द टॉपर, ठीक है, अर्जुन अवार्ड या जो भी अवार्ड, आई डोंट नो मच अबाउट इट, तो जो भी आप चीज़ हासिल करेंगे, तो फिर वो आपके साथ आ ही जाएंगे, रह ही जाएंगे.
1: जी, बात क्रिकेट की हो रही है, तो मैं पूछना चाहूंगी कि कई बार समाज तुलना करते हैं आजकल, तो बोलते हैं देखो वो लड़की कितना अच्छा

0: क्रिकेट खेल रही है
1: जी
0: और तुम नहीं खेल पा रहे हो, तुम क्रिकेट में नाम नहीं कमा पा रहे हो क्योंकि अभी आईपीएल भी है, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ है इंडिया के लिए, तो
1: जी
0: आप नहीं कर पा रहे हो, तो उस समय कैसे रिएक्ट करना चाहिए, क्या रिस्पॉन्ड करना चाहिए?
1: बिल्कुल बिल्कुल, ये इंडियन पेरेंट मैं यही कहूँगी, लेकिन हैट्स ऑफ टू देम, मैं सलाम करती हूँ इंडियन पेरेंट को, क्योंकि इंडियन पेरेंटिंग जैसी पेरेंटिंग मैंने पूरे विश्व में नहीं देखी है।
0: बिल्कुल
1: उनके ताने ही हमारे आगे जाने का रास्ता है, जो मेरे साथ है। ताने किसको नहीं मिले हैं, सबको मिलते हैं। वो माँ बाप शायद इसी, जो कहें तलवार है उनका, यही उनका चाकू है, यही उनका तीर है, जिससे फिर वो बोल बोल के अपने बच्चे को तैयार कर रहे होते हैं आगे के तानों के लिए। अगर हम अपने पेरेंट्स के ताने सह जाते हैं तो समाज ताना नहीं देगा, और अगर पेरेंट्स के ताने हमसे सहे नहीं जा रहे हैं तो बी रेडी फॉर द समाज, वो ताना जरूर देगा। तो इसलिए पेरेंट्स को ऐसा नहीं समझिए कि वो शत्रु हैं, उनके ताने भी अगर वो आपके लाइफ के लिए, मैं देखती हूँ कि आपका मोटिव अचीव करने के लिए कह रहे हैं, तो उनके ताने भी फूल हैं। आप उनके तानों को समझिए कि वो क्यों दे रहे हैं, वो आपको कुछ बनाना चाहते हैं, वो आपका बिगाड़ने के लिए ताना नहीं दे रहे हैं। माएँ कहेंगी घुसा रहे मोबाइल में, यू नो ना मोबाइल में घुसने से तो लाइफ में कुछ बनेंगे नहीं, लेकिन हाँ आज टिकटॉकर भी बहुत सारे रील्स बना करके लाखों कमा रहे हैं,
0: राइट,
1: ठीक है ना। लेकिन जब आप लाखों कमा रहे होते तब तो नहीं वो ताना दे रहे,
0: नहीं
1: ठीक है ना।
0: अब बोलते क्या मोबाइल पे घुसे रहते हो, लेकिन जब रील्स बनाते, जब पैसे आते हैं और अच्छे क्रिएटिविटी के साथ रील्स बनाते हैं।
1: कॉमेडियन सेड सो कि पहले मैंने छुपाया था कि मैं कॉमेडी करता हूँ, तो मेरे मम्मी पापा को लगता था जॉब जाता है, और मैं जॉब जा भी रहा था। लेकिन जब कॉमेडी में पैसे आने लगे तो पेरेंट्स को जब मैंने दिया तो उन्होंने पूछा क्या करते हो आप, तो बोला मैं कॉमेडी करता हूँ। तो पेरेंट्स ने कहा कि कुछ भी करो बस पैसे कमा रहे हो तो ठीक है। तो अब वो आ गए ना आपके ट्रैक पे, तो इट्स नेसेसरी कि यू आर प्रोग्रेसिंग। तो पेरेंट्स कहीं नहीं जाते, वो आपके साथ ही आएंगे।
0: जी जी बिल्कुल, तो अगर आपको विश्वास है अपने ऊपर और आप दृढ़ संकल्प रखते हैं तो आगे बढ़ते जाइए, सब एक्सेप्ट करेंगे आपको। तो दृढ़ संकल्प और जिद, तो इस दोनों में क्या अंतर है? जिद करके हम बहुत सारी चीज़ें अचीव करना चाहते हैं, लेकिन कई बार जैसे आप कहते हैं, कह रहे थे कि असफल भी हो जाते हैं, मम्मी पापा की बात नहीं मानते, तो दोनों में क्या अंतर है और कैसे पहचाने?
1: कैसे पहचाने? जिद आप देखिए नेगेटिव है, और दृढ़ संकल्प उसका ऑपोजिट है, टोटली पॉजिटिव है, ठीक है ना। तो मेरी दृढ़ निश्चय कब जिद बन जाती है, तो ये कई बार मुझे नहीं पता चलता, लेकिन मेरा सराउंडिंग मुझे बताता है। क्योंकि जो जिद है वो ईगोइस्टिक है
0: जी,
1: और जो दृढ़ संकल्प है वो नॉन ईगोइस्टिक है। तो लोग मुझे बता देंगे कि आप, वो बोलेंगे पीठ पीछे भी बोलेंगे, मुंह पे भी बोलेंगे कि क्या है आपकी तो जिद है। तो ठीक है, एक ने का इट्स ओके, दो ने का इट्स ओके, लेकिन इफ एवरीवन इज सेइंग
0: ओके,
1: तो फिर समझ जाइए कि मैं ये बहुत ज्यादा रिजिडनेस क्रिएट कर रहा हूँ अपने में,
0: अगर हर कोई वही सेम फीडबैक दे रहा है।
1: हाँ, सेम फीडबैक दे रहा है। दूसरा, आपको वो रिस्पॉन्स गलत दे रहे हैं, यानी उतना वो आपके साथ मधुर बिहेवियर नहीं है उनका, और आपको भी लग रहा है कि मैं अपनी चीजों को जो कर रहा हूँ तो उसमें मुझे निगेटिव ज्यादा फील होता है, आपको भी होगा। लेकिन प्रॉब्लम बस यही होती है कि मुझे नहीं पता चलता है कई बार
0: जी।
1: तो आपका सराउंडिंग आपको बताता है, कुछ चीजें जो आपके साथ हो रही हैं वो आपको इशारा करती हैं कि जो ट्रैक है वो थोड़ा सा टिल्ट हो गया है
0: जी,
1: यानी पॉजिटिव से हल्का सा नेगेटिव की ओर अग्रसर हो रहा है। तो चीजें आपको बताती हैं, लेकिन चाहिए महसूस करने की शक्ति। इतना ओपन माइंडेड बनिए कि अगर किसी ने व्यू दिया है तो उसके व्यू को आपने समझने की क्षमता होनी चाहिए, क्योंकि जहां दृढ़ संकल्प को लेकर आप आगे बढ़ना चाहते हैं उसके लिए आपका ओपन माइंडेड होना बहुत जरूरी है।
0: ओपन माइंडेड का एक्चुअली क्या डेफिनेशन है?
1: माना आपको हर चीज सुनकर समझने की क्षमता।
0: ओके,
1: एक है कि मैंने बस अपनी, जो कहते हैं ना कि बस लठ गाड़ दी कि खूंटा यहीं गड़ेगा, मींस मैंने जो कह दिया सो कह दिया, अब मुझे नहीं पता, अब कि मैं किसी की नहीं सुनूंगा, तो इट इज रिजिडनेस, ये जिद्दीपना है।
0: ओके
1: ओके, तो ये चीज नहीं चाहिए। आपने लाठी यहीं गाड़नी है, ओके फाइन, लेकिन कोई एक व्यक्ति आया है कि बच्चे नीचे पत्थर है, आपकी लाठी ज्यादा गहरे में नहीं जाने वाली है, ठीक है। दूसरा व्यक्ति आया, बोला कि यहाँ लाठी गाड़ोगे तो फलाना आ जाएगा, उल्टा लड़ाइयां होंगी
0: जी,
1: तो उनकी इंफॉर्मेशन को मुझे समझना है। सिर्फ अपनी रिजिडनेस की मैं यहीं गाड़ू तो ये रिजिडनेस है
0: जी,
1: ठीक है। लेकिन उन्होंने कहा कि जो बातें बोली है वो इन्फो को आप समझिए, उनको टेक्निकली आप चेक कीजिए, लेकिन मैं सुन ही नहीं रहा हूँ, मुझे परवाह ही नहीं है, अब बोलते जाओ, मेरा दृढ़ संकल्प है कि मैं गाड़ूंगा, तो इट इज रॉन्ग।
0: ओके,
1: ठीक है ना। तो ओपन माइंडेड मीन्स सबको मुझे देखना है, सुनना है, समझना है, टेली करना है, ऐसा नहीं जो कह रहे हो कि भाई तुम गधे हो तो मैं स्वीकार कर रहा हूँ, नहीं स्वीकार मत करें
0: जी।
1: लेकिन चेक जरूर करें कि उन्होंने मुझे गधा बोला है तो किस बेसिस पे बोला है, व्हाट आई हैव डन रॉन्ग, मैंने कहा ऐसा नेगेटिव किया, चेक करना बहुत जरूरी है
0: जी,
1: तभी जो है एक टॉप पोजीशन पे बैठ पाएंगे। नहीं तो अगर अपने को चेक नहीं करेंगे, आप देखिए जो भी बहुत हायर लेवल पे है वो सुनते ज्यादा है और बोलते बहुत कम है।
0: अच्छा, लिसनिंग करना,
1: लिसनिंग पावर उनकी बहुत है, और लिसनिंग के लिए बोला गया है गोल्ड, और बोलने वाली पावर, टॉकिंग इज सिल्वर एंड लिसनिंग इज गोल्ड बोला गया है। तो मुझे सुनना है, सुन, हाँ मैं स्वीकार नहीं कर रहा हूँ लेकिन सुन जरूर रहा हूँ, समझ जरूर रहा हूँ। उन्होंने गधा बोला, मैंने स्वीकार नहीं किया कि मैं गधा हूँ, उनके कहने से मैं गधा नहीं बन जाता, लेकिन चेक जरूर करना है मेरे से क्या रॉन्ग हुआ।
0: ओके, कई बार हम कहते हैं कि ओपननेस या ओपन माइंड का मतलब ये है कि आप हर किसी को एक्सेप्ट करो, या जैसे आपने कहा स्वीकार कर लो, जो जैसा कहा अच्छा ठीक है।
1: okay. मैंने कहा स्वीकार नहीं करना, हाँ,
0: नहीं
1: है, करना है, सुनना है,
0: हाँ, सुनना है,
1: हाँ,
0: पर हम ये समझ लेते कई बार, लेकिन ये नहीं है।
1: ओपन माइंडेडनेस अपना सबका अपना अपना मीनिंग है डेफिनेशन से, लेकिन जो मेरा डेफिनेशन है कि मैंने सुनना सबका है,
0: ओके,
1: समझना सबका है,
0: करना,
1: हाँ, करना जो सही है,
0: सही है,
1: हाँ, उसके लिए भी मैं टेली कर लूँ जो मेरे फ्रेंड सर्कल है, मेरे फादर मदर है, या जो भी मैं समझती हूँ कि इंटेलिजेंट है, उनसे मैं टेली कर लूँ। मैं शायद इतनी इंटेलिजेंट नहीं हूँ कि ठीक है मैं सुन ली, समझ ली, बट मैं तो वही करूँगी। तो इट इज नॉट इंटेलिजेंट बना, इट इज लाइक रिजिडनेस। ठीक है, तो आप एक
0: सलाह भी लेना,
1: सलाह भी लेनी है
0: जी। ओके, अभी हम बात करते हैं कि कई लोग लक्ष्य तय करते हैं लेकिन बीच में उमंग गुस्सा जो है वो खत्म हो जाता है। मान लीजिए मुझे चाय छोड़ना है, क्योंकि कई बार मुझे लगता है कि दूध जो है वो मेरे बॉडी को सूट नहीं होता, तो उसमें क्या करें, दृढ़ निश्चय भावना रखना है, अनुशासन रखना है,
1: दोनों ही चाहिए,
0: दोनों ही चाहिए,
1: दोनों ही चाहिए, क्योंकि अनुशासन बहुत जरूरी है। इसीलिए बच्चों को स्कूल में शुरू से, नर्सरी क्लास से इनफैक्ट घर से
0: जी
1: अनुशासन, बड़ों का पैर भी छूना है, ठीक है, लेकिन अनुशासन की बस ऐसे भाग लिए दौड़ घर से ही शुरू हो जाता है
0: जी।
1: दृढ़ संकल्प अपनी जगह है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है। और हम देखते हैं कि मैं जो भी सोचती हूँ कि मुझे, जैसे अपने एग्जांपल लिया कि मुझे चाय छोड़ना है बिकॉज दूध मेरे लिए ठीक नहीं है बॉडी के लिए, तो वाकई में अगर मैं इस कंसेप्ट को माइंड को डाइजेस्ट करा देती हूँ कि दूध पीते ही नेगेटिव होता है, बाउलिंग सिस्टम गड़बड़ हो जाता है, या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम मेरा ठीक नहीं होता है, व्हाटएवर, इसको बहुत अच्छे से अगर मैं खिला देती हूँ तो ये हेल्प करता है।
0: okay.
1: तो मैं नहीं कहती कि एक दिन में छूट जाएगी, लेकिन अपने अंदर ये पक्का करिए कि मैं नहीं छोड़ रहा, ठीक है, नहीं छोड़ा जा रहा तो ओके, लेकिन कम तो कर सकता हूँ
0: जी।
1: तो एक स्टेप धीरे धीरे आगे बढ़ाइए। हम क्या एक बहुत बड़ा स्टेप फर्स्ट डे ले लेते हैं, वो किला हम सोच लेते हैं, अरे वाह इतना बड़ा किला बनाना है, मुझे छोड़ना है, ठीक है, तो एक दिन में किला नहीं बनता, ठीक है, छोटा छोटा स्टेप रखिए कि मैं, अच्छा मैं एक कप पीता था, अब मैं हाफ कप पीऊंगा या और पौना कप पीऊंगा, मैं एक चम्मच शुगर और एक चम्मच टी डालता था, लीव्स डालता था, अब मैं आधा आधा डालूंगा या पौना पौना डालूंगा, मतलब उसकी ना पावर को, इंटेंसिटी को कम कर दूंगा।
0: ओके
1: ओके, फिर ऐसे धीरे धीरे धीरे आप बढ़े तो वो किला जो है वो फिर जल्दी बन जाएगा, अदरवाइज एक पूरा किला एक ही दिन में लेने की कोशिश में शायद दिक्कत आ सकती है।
0: कई बार दीदी ऐसा होता है कि हम ना बहुत सारे ट्रिगर्स के बीच में रहते हैं, फ्रेंड सर्कल में रहते हैं, और फ्रेंड्स के साथ मिलके क्या करेंगे, चाय पियेंगे, बातें करेंगे, तभी बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है, ऐसे कहते हैं।
1: आज का तो यही है।
0: और बाकी थोड़ा एक्सट्रीमिटी में जाते हैं तो लोग बोलते हैं कि साथ में बैठ के दारू पी लीजिए, अल्कोहल की सेवन करते हैं लोग, तो उन ट्रिगर्स को कैसे समाप्त करें अपने मन से भी, मतलब ट्रिगर्स होते हुए भी हम ट्रिगर ना हो, वो कैसे करें?
1: आज का तो यही बहुत ज्यादा है, ठीक है। इनफैक्ट मैं अभी कहीं थी और उन्होंने कहा, शी इज क्वाइट, शी केम फ्रॉम जर्मनी एंड बहुत अच्छा है वो प्रोफेशन में, तो शी सेड कि आज की डेट में अगर हम पीते नहीं है मीन्स अल्कोहल तो आई एम नोवेयर, शी सेड सो, ठीक है। बट मेरा ये मानना है एक दिन ऐसा आएगा कि जो ये बोलेगा ना कि मैं नहीं पीता तो लोग उसको बहुत अप्रिशिएट करने वाले हैं, ठीक है, ये दिन आएगा और बहुत जल्दी ही आएगा, क्योंकि आज समाज में ये अल्कोहल ऐसे घुल गया है जैसे खून बॉडी में होता है ना, ऐसा अल्कोहल हो गया है, और अल्कोहल एक फैशन हर जगह बन चुका है, चाहे वो बर्थडे पार्टीज है, मैंने सुना एक 2 साल का बच्चा, 2-4 साल में भी होगा उसका बर्थडे है, लेकिन अल्कोहल इज देयर। अब वो बच्चा क्या देख रहा है, ठीक है, वो तो ये देख रहा है कि मेरे होटल में मेरा बहुत बढ़िया सा बर्थडे मनाया, बट अल्कोहल इज देयर. ठीक है, तो ठीक है, आज आपने उसे नहीं दिया बिकॉज ही इज इन योर कंट्रोल. चार साल का बच्चा तो मम्मी पापा के कंट्रोल में है, लेकिन जब वो 14 का होगा तो वेयर वुड ही स्टैंड.
0: जी
1: ठीक है ना. और मैं तो एक मेरा खुद का एग्जाम्पल है, सिस्टर है एक नोन है, वो मतलब तो पहाड़ों की है, तो कहती दादी हमें दिया करती थी कि बीड़ी सुलगा के ले आओ, तो हम एक दो सुट्टा मार के उनको दिया करते थे.
0: जी.
1: तो कहाँ से मारा, क्यों मारा, बिकॉज दादी मार रही है. तो दादी ने दिया कि जला के लेके आओ, पी के लेके आओ नहीं बोला है. लेकिन बड़ों में अगर ये सेंस हो कि अगर बच्चों को दे रहा हूँ तो बच्चा क्या ही करके रास्ते तक आएगा. इनफैक्ट वो जान भी रही है कि ये छोटी कैसे हो गई. तो बच्चा कहता है जलाते लाते लाते जल गई,
0: कब झूठ भी बोलने लगा.
1: हाँ, तो किसको क्रेडिट देना चाहिए, बच्चे को नहीं, बड़ों को. तो अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा पिए तो फिर ठीक है, कैरी ऑन द बिजनेस. लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं, ठीक है, एक टाइम आएगा, या मैं तो कहूंगी कभी भी नहीं पिए, इट्स नॉट अ गुड थिंग. ये हमारे भारत का कल्चर नहीं है. ठीक है, इट केम फ्रॉम आउटसाइड, और इसीलिए हम सभी चीजें जो कर रहे हैं वो गड़बड़ गड़बड़ कर रहे हैं. तो जो बाहर की है वो
0: एनवायरमेंट को भी सूटने होता है,
1: क्योंकि बाहर ये नेसेसरी शायद बन गई है बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर.
0: यस.
1: ठीक है, हमारे भारत में ऐसा कुछ नहीं है. इतना टेम्परेचर आईसी वो नहीं है जो हमें इसकी एक नेसेसिटी हो. ठीक है, तो हम चीजों को समझें, क्या चीज जरूरी है, और मेरा बच्चा, खास मेरा बच्चा, मेरी फैमिली, वो क्या हो रहा है. लोग बड़े खुश होते हैं, मैं तो अपने बेटे के साथ बैठ के पीता हूँ, तो बहुत अच्छी बात है. आप बेटे के साथ बैठे पीते हैं तो पोता क्या दिख रहा है, वो क्या देखेगा, या जो आने वाले बच्चे हैं वो क्या देखेंगे. बड़ी हैप्पी फैमिली है, दोनों बैठ के पी रहे हैं, लेकिन बाकी लोग क्या सोच रहे हैं, क्या करेंगे, वो भी पियेंगे. ठीक है, तो हमें अपने को रोकना होगा. इफ आई वॉन्ट चेंजेस इन द कमिंग जनरेशन, देन आई हैव टू चेंज माई सेल्फ.
0: जी, लेकिन कई बार मन साथ नहीं देता है, क्योंकि मन हो जाता है, हम कंट्रोल नहीं कर पाते. सिर्फ अल्कोहल की बात नहीं है, बहुत सारी चीजें जो हमने दृढ़ संकल्प रखा है शायद उसमें भी हम गड़बड़ कर देते हैं. मन में उमंग उत्साह कम हो जाती है या कंट्रोल नहीं कर पाते, तो कैसे करें.
1: वही सारी चीजें जुड़ी हुई है, एक दिन में किला नहीं बनेगा.
0: स्टेप बाय स्टेप,
1: स्टेप बाय स्टेप, एक छोटे छोटे बेबी स्टेप्स लीजिए. ठीक है, जैसे जिनको छुड़ाया जाता है, जो वहाँ जाते हैं ट्रेनिंग सेक्टर सेक्शंस में भी जाते हैं, जिनको अल्कोहल ड्रग्स वगैरह छुड़ाई जाती हैं, एक दिन में उन्हें ड्रग्स बंद नहीं करते, वो ड्रग्स देते हैं, लेकिन एक लिमिटेड अमाउंट में देते हैं, और धीरे धीरे उस लिमिट को भी कम करते चले जाते हैं. इस तरीके से उनकी ड्रग्स छुड़ाई जाती है. तो हम भी अगर छोड़ना चाहते, इट्स ऑल अबाउट द दृढ़ संकल्प. अगर मैं छोड़ना चाहता हूँ, जैसे कितने ही आते हैं आश्रम में, आते हैं हमारे सेंटर्स पे आते हैं, एंड दे वांट टू लीव इट बट दे आर नॉट एबल टू.
0: जी
1: ठीक है, तो आपको उसके लिए पहले अपने आप को चैप्टर्स देने होंगे कि मैं छोड़ना क्यों चाहता हूँ.
0: okay, क्योंकि क्वेश्चंस पूछना.
1: हाँ, okay. क्यों मेरे को इफेक्ट कर रहा है, मेरी बॉडी को इफेक्ट कर रहा है. ठीक है, चलो ठीक है. दूसरा, मेरा बच्चा, ये भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है. तीसरा, वो पैसा जो मैं इनमें स्पेंड कर रहा हूँ, मैक्सिमम लोग यही कर रहे हैं, अगर वो मैं घर में देता हूँ तो घर की चीजों में और बरकत होती है. चाहे वो किसी सेंस में, आपने खाने पीने की चीजों में खर्च कर लिया, बच्चों के लिए आप रसगुल्ले ले आए उसी पैसों से, तो बच्चे कितने खुश हैं. ठीक है, नहीं तो आपने उनके लिए सेविंग कर दी, चलिए मत खिलाइए रसगुल्ला डेली, मत लाइए कुछ भी, लेकिन आप उसे अमाउंट को सेव कर दीजिए
0: उनके फ्यूचर के,
1: पढ़ाई के लिए. कभी भी मंथ में उनका कुछ ना कुछ करिकुलम एक्टिविटीज होता है, वहां खर्चा पड़ जाता है, और जब पैसे बचे होंगे तो डोंट हैव टू थिंक मच. ठीक है, तो पहले मुझे अपने आप को कुछ चैप्टर्स देने होंगे, कुछ अपने लाइन्स बनाने होंगे, व्हाई आई वांट टू लीव इट. और उसको जब मैं इतना अच्छे से समझ जाऊंगा, ये मेरी ही तैयारी होगी.
0: जी.
1: बाहर की दुनिया पूरी लगी रहे, लेकिन जब तक मैं नहीं छोड़ना चाहती, वो मुझसे नहीं छुड़ा सकती. दिस और दैट वे आई गेट माय अल्कोहल. ठीक है, लेकिन मैंने अगर पक्का कर लिया कि यहाँ यहाँ यहाँ यहाँ चार पॉइंट्स हैं जो मेरे को नहीं पीना चाहिए, फर्स्ट डे नहीं छोड़ूंगा, इट्स वेरी मच ओके एंड अंडरस्टूड कि नहीं छूटता है. पीयर प्रेशर पड़ जाता है कि दोस्तों के बीच बैठ गए, मैंने कहा नहीं पीता हूँ, अरे थोड़ी तो पी लो, कल तक तो पूरी बॉटल पी रहा था, आज क्या हो गया. तो दे विल टॉक लाइक इट बिकॉज आप पीते थे एंड दे आर नॉट रॉन्ग, तो पिलाएंगे ही. लेकिन आप कुछ दिन के लिए या तो सर्कल को अवॉइड करें जब तक कि आप इतने एम्पावर हो जाएं कि उनको फेस कर सके. ठीक है, और अगर आप इतने एम्पावर नहीं है तो मैं तो यही कहूंगी कि उनको थोड़ा दिन अवॉइड ही करें. यही सबसे बेस्टेस्ट जो तरीका हो सकता है, उस पार्टीज में नहीं जाएं जहां अल्कोहल है, क्योंकि आई एम नॉट एबल टू कंट्रोल माई सेल्फ. जब मेरे को आ गया कि मैं अब चार पेग नहीं, सिर्फ एक पेग पे मैं कंट्रोल कर पा रहा हूँ, देन यू कैन ज्वाइन इट. लेकिन फिर भी बहुत गैप में, क्योंकि फिर वो हैबिट बनवा देंगे, ठीक है ना। तो ये अवॉइड करना पड़ेगा, अपने आप को रोकना पड़ेगा, सारी चीजों को छोड़ना पड़ेगा, फ्रेंड्स हैं, पार्टीज हैं,
0: थोड़े टाइम के लिए किनारा
1: करना पड़ेगा, अदरवाइज ये चीजें नहीं छूटती हैं।
0: तो ये सारे स्टेप्स हैं जिसमें आप अपने आप को दृढ़ता के साथ आगे बढ़ा सकते हैं आप जी। दीदी अभी हम बात करना चाहेंगे आपसे कि जो ऑफिसेस हैं, कार्यस्थल जहाँ पे हम कार्य करते हैं, वहाँ पर कई बार हमारे मेहनत का श्रेय किसी और को चला जाता है। कई बार हमें सब कुछ करने के बाद प्रमोशंस नहीं मिलते हैं, फिर स्ट्रेस है, उस बीच में लक्ष्य पर टिके रहने का क्या तरीका है, सकारात्मक खुद को कैसे रखें और फिर दृढ़ता के साथ
1: कैसे आगे बढ़े। तो पक्का है कि आपको उसी जॉब में रहना है, पहले तो यही पक्का कर लीजिए, क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा, ना प्रमोशन मिल रही है, ना फिर कोई इस तरह से मेरे को इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीमेंट कोई भी चीज ऐसा नहीं हो रहा है,
0: तो स्विच करने की जरूरत है कि नहीं, वो भी सोचना।
1: क्योंकि दृढ़ता का मतलब ही है कि मुझे वही टिकना है, कोई भी जो आपने सोचा है। तो अगर पक्का है कि मुझे यहाँ टिकना है बिकॉज ऑफ मेनी थिंग्स, इट कैन बी अकॉर्डिंग टू योर लिस्ट कि बेस्टेस्ट कंपनी है, टाइम लगाती है लेकिन इससे बेस्ट कंपनी मुझे नहीं मिलने वाली है,
0: टाइम टू टाइम घर जाते हैं,
1: हाँ मुझे अपना हॉलीडे, अपना मैं घर मैनेज कर लेता हूँ इस जॉब के साथ, फॉर एग्जांपल टीचिंग जॉब, तो व्हाई गर्ल्स डू दैट, क्योंकि उनको लगता है मैं हाफ ऑफ द डे आई कैन स्पेंड विद माय फैमिली, मैं घर भी मैनेज कर सकती हूँ, दैट्स व्हाई दे जॉइन इट। हालांकि टीचिंग जॉब इज नॉट सो ईजी जो हमें दिखती है, इट इज अ टफेस्ट,
0: प्रिपरेशन चाहिए
1: बहुत, लेकिन मुझे पता है कि ये मेरे लिए गुड इसलिए है क्योंकि मेरा और भी चीजें जो है वो पार्लर में गुड हो रहा है। तो पहले तो अपने आप के ये पक्का कर लीजिए कि हाँ यही मुझे रहना है, ये बहुत जरूरी है। अगर आपको ये पक्का नहीं है देन यू कैन गो ऑन, आप चेंज करें, लेकिन अगर मुझे पक्का है कि हाँ मुझे करना ही है, तो इंक्रीज योर एफिशिएंसी,
0: ओके,
1: फिर अपने पे काम करें, फिर अब बाहर नहीं कुछ करना है, कुछ ढूंढने या करने की जरूरत नहीं, अपने पे काम करना है कि मुझे मेरा क्रेडिट नहीं मिला, मुझे मेरा प्रमोशन नहीं मिला, मुझे लोगों का जो भी मुझे मिलना चाहिए था वो नहीं मिला है, लेकिन मैं अब इससे कुछ ऐसा आगे करूं जो मिले, तो उसके लिए मैं क्या करूं, वो पहले आप सोचें कि क्या करना है, और पॉजिटिव सेंस में ही सोचें तो वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वो लॉन्ग टाइम के लिए आपके साथ रहेगी
0: जी।
1: अगर नेगेटिव सेंस में कुछ करते हैं तो वो शॉर्ट टर्म पीरियड का होता है,
0: ओके,
1: तो इसलिए मैं पॉजिटिव सोचूं और अपने लिए ही कुछ एफिशिएंसी को या किसी भी तरीके से अपना लेवल जो बढ़ाने का है, मैं कोई कोर्स ज्वाइन कर सकता हूं जिससे मेरा लेवल, या मैं एग्ज़ाम्स दे सकता हूँ, जैसे गवर्नमेंट जॉब्स होते हैं तो उसमें एक आता है कि आप और फर्दर एग्ज़ाम्स देते हैं तो यू कैन आगे आप प्रमोट हो सकते हैं। तो मैं अगर मुझे अभी नहीं मिला है तो कभी नहीं मिलेगा, ये कहाँ लिखा है,
0: ओके, मतलब अप्रिसिएशन में भी ऐसा ही है, आप काम कर रहे हो आपको अप्रिसिएट नहीं किया जा रहा है, तो वो दृढ़ संकल्प और हैप्पीनेस वो कम हो जाती है,
1: बिल्कुल कम हो जाती है, ये मैं मानती हूँ। लेकिन यही बात याद रखिएगा कि क्या किसी और की अप्रिसिएशन की वजह से मैं जिंदा हूँ,
0: नहीं
1: नहीं। जंगल में जब फूल खिलता है उसे कोई नहीं देख रहा है, कोई भी नहीं, बट स्टिल वो खिल रहा है, अपनी पूरी ब्यूटी के साथ खिल रहा है, उसने उतने ही रंग बिखेरे हैं, उतनी खुशबू बिखेरी है, लेकिन उसे कोई नहीं देख रहा है, ठीक है। मैं भी फूल हूँ, एनर्जेटिक हूँ, बहुत अच्छा हूँ, आज मुझे कोई नहीं देख रहा है, ओके फाइन, हैव अफर्मेशंस कि आई विल प्रूव इट कि आई एम द बेस्ट,
0: ओके। हमारे जंगल में भले फूल खिल रहे हैं लेकिन हमारे इकोसिस्टम के लिए वो उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना गार्डन में फूल खिलते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत सही बात की है कि एक फूल का खिलना भी इस नेचर में कहीं ना कहीं जरूरी है
0: जी,
1: उसको बैलेंस करने के लिए। तो मैं यहाँ हूँ तो मैं हूँ क्योंकि फिर कोई ना कोई चीज मैं कर रहा हूँ जिसके लिए वो उनको मेरी जरूरत है,
0: मेरी हैप्पी रहना भी बहुत
1: ये मेरे लिए बहुत जरूरी है, काम तो मैं कर ही रहा हूँ ना, तो खुश रहकर करने में प्रॉब्लम क्या है,
0: अपने आप को समझाना है, समझाना या
1: समझाना नहीं है, ये करना ही है,
0: करना ही है
1: कि जब करना ही है तो रो के क्यों करूं, हंस के भी तो कर सकता हूँ, उन्होंने आज मुझे प्रमोट नहीं किया है लेकिन अगर मैं अपना EQ बैलेंस रखता हूँ, आज बड़ी कंपनीज में EQ बहुत काउंट होता है, इमोशनल क्वेश्चन, यानी इमोशनली हाउ स्ट्रॉन्ग यू आर
0: जी,
1: अगर आप उस चीज को बैलेंस कर पाते हैं तो क्या पता, क्योंकि आपने अपने अंदर अफर्मेशंस दिए हैं फॉर द सक्सेस, गुड थिंग्स, पॉजिटिविटी, और आप मुस्कुरा रहे हैं, यू आर डूइंग योर वर्क, कौन सा मिरेकल, इस दुनिया में तो मरे भी जिंदा हो जाते हैं
0: जी,
1: ठीक है ना। तो आप तो बहुत जिंदा हैं, बहुत अच्छी कंपनी में हैं, बहुत कमा रहे हैं, हेल्थ वाइज बहुत अच्छे हैं, आपके आगे स्कोप ही स्कोप है, ये आप पक्का अंदर कीजिए। आज नहीं मिला है कभी नहीं मिलेगा ऐसा नहीं।
0: कई बार हम दृढ़ संकल्प रखते हैं और पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं, अचीव भी कर लेते हैं। इन जनरल मैं पूछना चाहूँगी, जब पीआई की बात आती है तो कई बार लुक्स में मात खा जाते हैं, कई बार इंग्लिश में मात खा लेते हैं, फिर हम अपने कॉन्फिडेंस लूज कर लेते हैं। तो उस सिचुएशन में कैसे अफर्मेशंस रखना चाहिए?
1: पीआई
0: पर्सनल इंटरव्यू।
1: ओके ओके ओके, तो लुक्स में मात खाया और किस में मात खाया?
0: लुक्स में, इंग्लिश में, लैंग्वेज में,
1: ये दो बेसिस आपने लिए हैं। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। खास जैसे जब हम खास इंटरव्यूज देते हैं और लुक्स में हम नहीं हैं, लेकिन हमने बहुत सारे आईएएस ऑफिसर्स को देखा है, कंपनी के मालिकों को देखा है
0: जी।
1: लुक्स में जीरो है लेकिन स्टैंडिंग स्ट्रांग, बहुत बहुत शानदार खड़े हैं। तो लुक्स आर नॉट एवरीथिंग। हम देखते हैं लुक्स बहुत आगे अप्रिशिएट किए जाते हैं, जो बहुत सुंदर दिख रहा है उसको प्रेफरेंस बहुत जल्दी मिलती है, अप्रिसिएशन बहुत जल्दी मिलता है, लोग उसकी तरफ देखना पहले स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन मैंने ये भी देखा है कि जो सुंदर नहीं है, इस लैंग्वेज में अगर मैं कहूँ, सुंदर तो हर कोई है, भगवान ने अगर बनाया है तो कुरूप कोई नहीं है, सुंदर हर कोई है। और आज की डेट में तो ब्लैक ब्यूटी भी है जो बहुत टॉप लेवल पे है।
0: हाँ, बहुत तो सारे मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड के कॉम्पिटिशन्स भी।
1: हाँ, तो ब्लैक कलर को भी बहुत आज की डेट में अप्रिशिएट किया जाता है। हैव प्राउड ऑन योरसेल्फ। मुझे मेरी ही चीजों पे शक है तो फिर मैं आगे क्या करूंगा? जो भगवान ने मुझे दिया है, फॉर एग्जाम्पल आई एम हैविंग अ वेरी शॉर्ट हाइट, ठीक है, तो ऑफकोर्स यू कैन अज्यूम कि लोगों का, मैं दिखती ही नहीं हूँ जब भीड़ में होती हूँ, तो एवरीबडी सेज आप कहाँ हो, तो आई से प्राउडली कि मुझे देखने के लिए नजरें झुकानी पड़ती है
0: जी।
1: तो हैव समथिंग फॉर योरसेल्फ, कि मैं काली हूँ तो क्या हुआ दिल वाली हूँ। हैव समथिंग फॉर योरसेल्फ, डोंट फील डाउन। आपको बनाया है, आप गुणों को तो बढ़ा सकते, कलर को नहीं कर सकते। ओके फाइन, ठीक है ठीक है, बहुत सारी चीजें आ गई हैं, मेलानिन को हम कम कर सकते हैं, गो फॉर इट इफ यू कैन। लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा आपके अंदर अगर वो कॉन्फिडेंस है, आपके अंदर वो पावर है, वो एनर्जी है, वो गुण है, तो आप बहुत आगे, अपने कलर को बहुत पीछे छोड़कर आगे बढ़ सकते हैं
0: जी।
1: और इंग्लिश अगर स्ट्रांग नहीं है तो ठीक है, मैं समझती हूँ आज के एमएनसीज में प्रॉब्लम्स तो आती हैं, तो इंग्लिश के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐप्स भी हैं, सीखो आप बहुत सारी चीज़ें। आई एम नॉट प्रमोटिंग एनीथिंग, ठीक है, लेकिन सीखो सीखो, लाइफ इज टू सीखो, ठीक है, इसलिए सीखो, ठीक है, छोटा छोटा इंग्लिश सीखो, बड़ा एक दिन बन जाता है। और मैं जो मानती हूँ, पूरी इंग्लिश तो कहीं कोई नहीं बोल रहा भारत में, जो बोले कॉन्फिडेंस के साथ बोले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इंग्लिश हिंदी मिक्स करें, ठीक है, मिक्स करके अपना बोलना शुरू करें, लेकिन जो बोले कॉन्फिडेंस से बोले। आज आप देखिए कई हैं जो फॉरनर्स मेनली मैं देखती हूँ, दे वॉक इन बरमुडास विद चप्पल्स
0: जी,
1: लेकिन कॉन्फिडेंटली
0: जी,
1: उनका कॉन्फिडेंस देखिए, ठीक है, बनियन में है, बनियान पहनी हुई है, लेकिन कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस इज इम्पॉर्टेंट, नॉट योर आउटफिट, नॉट योर कलर, नॉट योर लैंग्वेज। आप कॉन्फिडेंट हैं वो कंपनी देख रही है, ठीक है, आप इमोशनली बहुत स्ट्रांग है वो कंपनी आपको मेजर करने वाली है। और हायर लेवल में तो ये सारी चीज़ें जो हायर कंपनीज हैं जो मैं देखती हूँ, वो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंस देती हैं कि आपका ईक्यू कहाँ है, कितना है, आप कितना बैलेंस्ड रहते हैं, आपका कितना अच्छा बोलने का कैपेसिटी है। इफ इट इज नॉट इन इंग्लिश देन मेरा हिंदी कितना स्ट्रांग है, मैं बोलते सामने आपको देखते ही मेरा शटर हो गया, हिंदी भी शटर हो गया, तो इट्स ना, तो फिर यानी फिर इंग्लिश तो आप भूल ही जाइए। आप बोल ही नहीं पा रहे हैं तो पहले अपना बोल सुधारें। जैसे बचपन में कहते हैं शीशे के आगे बोलें, जोर जोर से पढ़ करके बोलें, न्यूज़पेपर पढ़ें, ठीक है, तो इस तरीके से आप शुरू कर सकते हैं। आपका स्पीकिंग एबिलिटी शुड बी गुड,
0: मतलब दृढ़ संकल्प के साथ स्किल्स को भी बढ़ाएं।
1: हाँ, स्किल्स को भी बढ़ाएं, ये बहुत जरूरी है।
0: ओके जी, इस कार्यक्रम से विदा लेने से पहले एक आखिरी सवाल कि अगर हम दृढ़ निश्चय को मजबूत करना चाहते हैं और निखारना चाहते हैं, सबसे पहला कदम क्या लेना चाहिए?
1: टॉक टू योरसेल्फ, अपने से बात करें।
0: ओके,
1: क्योंकि मुझे ही करना है जो करना है, बाहर वाले मुझे आइडियाज देने वाले हैं, बाहर वाले मुझे गिराने वाले भी हैं, बाहर वाले मुझे अप्रिशिएट भी करेंगे, लेकिन मेरे ही कदमों पे तो करेंगे जो करेंगे, जो मैंने कदम लिया है। तो टॉक टू योरसेल्फ, व्हाट वुड बी माय नेक्स्ट स्टेप, मुझे क्या करना है। तो मेरी मेरे से बात होना ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट
0: मी टाइम.
1: मी टाइम, यस, वेरी नाइस वर्ड, मी टाइम. आई हैव कॉन्फिडेंस ऑन माई सेल्फ, आई हैव फेथ, आई शुड हैव फेथ ऑन माई सेल्फ. मुझे मेरे पे विश्वास होना चाहिए. जब मेरे को मेरे पे ही विश्वास नहीं है तो लोगों पे क्या होगा, या लोग मेरे पे क्या विश्वास करेंगे, मेरे को खुद पे ही नहीं है. तो ये मी टाइम बहुत जरूरी है, मुझे मेरे लिए जीना है पहले.
0: अगर मैं बार बार हार खाती हूँ तो मेरे पे विश्वास तो उठ ही जाता है, फिर खुद को कैसे समझे, क्या मतलब कैसे देखे कि मेरे अंदर कुछ है अच्छा ही कि नहीं.
1: वही मैंने जो कहा कि अगर हार हो रही है तो ये मुझे सिखाने के लिए हो रही है, लेकिन सदा ही हार नहीं होने वाली.
0: तो अलग अलग तरीका देखें.
1: हाँ, बिल्कुल बिल्कुल. हार आपके पास आती है आपको हराने के लिए, मारने के लिए नहीं आई है,
0: कुछ सिखाने के लिए.
1: सिखाने के लिए आई है, लेकिन आप उसको सीखने के अंदाज से देख रहे हो या आप उसको हार ही देख रहे हो, ये इम्पोर्टेंट. आपका नजरिया इज इम्पोर्टेंट. आप 4 बार फेल हुए हैं लेकिन फिर भी मेरे अंदर एक निश्चय है. ठीक है, जैसे अभी मुझे कोई हमारे एक ओम शांति रिट्रीट सेंटर है दिल्ली में, गुड़गांव में, तो वहाँ मुझे एक यूथ मिले और वो कहते हैं कि मेरे पास इतना फेलियर्स है, इतना फेलियर्स है, आई वॉज इन डिप्रेशन. तो उन्होंने कहा कि माई मम्मा गोज इन ब्रह्मा कुमारीज, तो मैंने भी सोचा चलो मैं चल कर देखता हूँ. तो आई एम फीलिंग क्वाइट ओके राइट नाउ, मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ, डिप्रेशन से बाहर आ चुका हूँ, अभी भी मैं सक्सेसफुल नहीं हुआ हूँ. ही सेड सो, कि मैं अभी भी सक्सेसफुल नहीं हुआ हूँ, लेकिन अब मेरे अंदर फिर से वो विश्वास आ गया है कि हाँ मुझे करना है और सक्सेस को हासिल करना है. तो बी लिटिल स्पिरिचुअल. आपको स्पिरिचुअलिटी इज हैविंग ट्रिमेंडस एनर्जी. वो पत्थर को पारस करने की शक्ति रखती है. तो मैं तो बहुत एक अजीज या भगवान का बहुत नियरेस्ट बच्चा हूँ, प्यारा बच्चा हूँ. उसने मुझे धरती पे नहीं फेंका है, उसने मुझे धरती पे भेजा है. हम हमेशा यही कहते हैं ना, भगवान ने भेजा है. तो भगवान ने मुझे भेजा है, फेंका नहीं है. तो मैं कुछ करने के लिए ही मुझे भेजा है. भेजा माना कुछ करने के लिए. तो मेरे डेस्टिनी में है. हाँ, वो पेजेस बहुत पीछे हैं और अभी मुझे उन्हें टर्न करना है.
0: कई बार क्या हमारे लक्ष्य को हमें फिर से रिवाइज करके देखना है और चेंज भी करना चाहिए.
1: करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए. आपको देखना है कि क्या चीजें मेरे से नेगेटिव हो रही हैं और चीजें कहाँ से कैसे जोड़ी जा रही हैं. तो कई बार हम देखते हैं कि जैसे जो इंजीनियर होते हैं वो किसी लाइन को ज्वाइन करते हैं लेकिन जॉब किसी और लाइन में लगती है. मेरा लौकिक भाई है जो मेरे बायोलॉजिकल ब्रदर हैं, तो ही वॉज इन डिफरेंट लाइन एंड नाउ ही इज डूइंग डिफरेंट जॉब.
0: लाइक हम इंजीनियर की पढ़ाई करने के बाद अब रेडियो
1: रेडियो में है, है ना. तो इस ऐसा नहीं है कि चेंजेस लाइफ में आएंगी ही
0: जी.
1: आपकी डेस्टिनी में है जो ना, वो आपको उस तरफ खींच रही है. तो वहाँ आपके कम नंबर हैं या वहाँ आप फेलियर हैं या यहाँ गड़बड़ हो गई है, लाइफ की डेस्टिनी में जो है वो आपको खींच रही है, वहाँ जीरो कर रही है ताकि आप इधर आ सकें.
0: ओके, तो इसलिए आपको रिवाइज करना भी जरूरी है. तो यहीं पर रुकते हैं हम. आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा आप हमें कॉल करके या मैसेज करके बता सकते हैं, 94-14-15-14-15. थैंक यू सो मच प्रिया दीदी, आपका
1: ओम शांति. थैंक यू सो मच, आपका भी और हमारे लिसनर्स का भी. थैंक यू,
0: धन्यवाद.
2: ईश्वर सत्य है.

घर के आंगन में राधा मोहन शरणम सत्यम शिवम सुंदरम आ सत्यम शिवम सुंदरम।

हंसते रहिए। आप सड़क पर चलते समय अपनी गाड़ी को कंट्रोल रखें और अपनी गाड़ी को धीरे धीरे चलाएं और हमेशा हेलमेट पहनते रहिए। रेडियो मधुबन।

नमस्कार, मेरा नाम है अमन वर्मा और इस समय आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और मैं इतना कहना चाहूँगा कि आपका अपने घर पर कोई इंतज़ार कर रहा है, इसलिए कृपया हेलमेट लगाकर अपनी मोटरसाइकिल चलाएं। याद रखिएगा,

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: किसी का एक लाइन ना, इवन अगर कल बीत गया, इट डजेंट मैटर, आज भी तो कोई ना कोई कुछ लाइन बोलेगा, आज भी तो लाइन्स आएंगी, आज भी तो बातें आएंगी। तो जब ऐसी कोई बात होती है, इवन अगर हमें उस टाइम याद नहीं रहता, हम उस पर रिफ्लेक्ट करके नेक्स्ट टाइम के लिए चेंज करते हैं अपने आप को।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

क्या आप जानते हैं साइबर फ्रॉडस्टर्स फिशिंग ईमेल को इस तरह से डिजाइन करते हैं कि वे वास्तविक दिखते हैं, लेकिन अगर आप उन ईमेल में दिए गए लिंक पर क्लिक करते हैं तो स्कैमर्स धोखाधड़ी कर सकते हैं। कभी भी असत्यापित लिंक पर क्लिक ना करें।

नमस्कार, मैं हूं बसवराज बबलेश्वर और आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

एम शांति, आज 4 जुलाई 2026 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि मनुष्य राम राज्य चाहते हैं। बापू गांधी भी इसीलिए कहते थे राम राज्य चाहिए, परंतु फिर पतित पावन सीताराम कह देते हैं। तो बाबा इस समय आकर के इस रावण राज्य का विनाश कराए राम राज्य की स्थापना करते हैं, और उसके लिए बाबा हम बच्चों को श्रीमत द्वारा श्रेष्ठाचारी बनाते हैं। बाबा कहते हैं तुम माताएं श्रेष्ठाचारी बनती हो, और इसीलिए स्वर्ग के गेट खुलवाते हैं बाबा माताओं के द्वारा। साथ ही साथ बाबा कहते हैं पास्ट इज पास्ट, जो बीता उसे भूलकर गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। विनाश के पहले पावन जरूर बनना है। भारत को स्वर्ग बनाने की सच्ची सच्ची सेवा में तत्पर रहना है। खान पान बहुत शुद्ध रखना है, पवित्र भोजन ही खाना है। तो आज बाबा ने हम बच्चों को ज्ञान की गुह्य बातें सुनाकर ज्ञान का तीसरा नेत्र खोला है, जिससे मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन और स्थूल वतन के भी आदि मध्य अंत को यथार्थ रीति जानते हैं। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, ज्ञान सागर बाप तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र देने आए हैं, जिससे आत्मा की ज्योति जग जाती है। आज की मुरली से प्रश्न है, बाप को करण करावन हार क्यों कहा जाता है? वह क्या करते हैं और क्या कराते हैं? उत्तर है, बाबा कहते, मैं तुम बच्चों को मुरली सुनाने का कार्य करता हूं। मुरली सुनाता, मंत्र देता, तुम्हें लायक बनाता और फिर तुम्हारे द्वारा स्वर्ग का उद्घाटन कराता। तुम पैगंबर बन सबको पैगाम देते हो, मैं तुम बच्चों को डायरेक्शन देता हूं। हम पैगाम देते हैं, बाबा हमें डायरेक्शन देता है। यही मेरी कृपा या आशीर्वाद है। बाबा जो डायरेक्शन देता है वही बाबा की कृपा व आशीर्वाद है। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, कौन आज आया सवेरे सवेरे। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, हम बच्चों को सवेरे सवेरे जगाने कौन आए हैं? कौन सवेरे सवेरे जगाने आए हैं? जो हमारा तीसरा ज्ञान का नेत्र एकदम खुल गया। सवेरे सवेरे जगाते जो हमारा ज्ञान का तीसरा नेत्र एकदम खुल गया। ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा द्वारा हमारा तीसरा नेत्र ज्ञान का खुला है। कहते भी है बाप ज्योति जगाने वाला है, परंतु वह बाप है ये कोई नहीं जानते हैं। ब्रह्म समाजी कहते हैं वह क्षमा है। ब्रह्म समाजी कहते हैं परमात्मा क्षमा है, ज्योति है। मंदिर में हमेशा वह ज्योति ही जगाते हैं, क्योंकि वह परमात्मा को ज्योति स्वरूप मानते हैं, इसलिए वहां मंदिर में दीवा जगाते ही रहते हैं। अब यह बाप कोई माचिस से दिया नहीं जगाते हैं, यह तो बात ही न्यारी है। बाबा कोई माचिस से दिया नहीं जलाते, बाबा कहे यह तो बात ही न्यारी है। गाया भी जाता है, ईश्वर की गति मत न्यारी है। तुम बच्चे अब समझते हो, बाप सदगति के लिए आकर ज्ञान योग सिखलाते हैं। सिखलाने वाला तो जरूर चाहिए ना, शरीर तो नहीं सिखलाएगा, आत्मा ही सब कुछ करती है। आत्मा में ही अच्छे बुरे संस्कार रहते हैं। इस समय रावण की प्रवेशता के कारण
मनुष्य के संस्कार भी बुरे हैं, अर्थात पांच विकारों की प्रवेशता है। देवताओं में ये पांच विकार होते नहीं। भारत में जब दैवी स्वराज्य था तो ये बुरे संस्कार नहीं थे, सर्वगुण संपन्न थे। कितने अच्छे संस्कार थे देवी देवताओं के, जो अभी तुम धारण करते हो। बाबा कहे, कितने अच्छे देवी देवताओं के संस्कार थे जो अभी तुम धारण कर रहे हो। बाप ही आकर सेकंड में सर्व को सदगति देते हैं, बाकी गुरु गोसाई आदि ये तो भक्ति मार्ग में चलते आए हैं, जो एक की भी गति सदगति नहीं कर सकते। बाप के आने से ही सर्व की सदगति होती है, बाबा ही आकर सर्व की सदगति करते हैं। परम पिता परमात्मा को बुलाते ही इसलिए है कि आकर पतित दुनिया का विनाश कर पावन दुनिया का उद्घाटन करो, वह दरवाजा खोलो। बाप आकर गेट खुलवाते हैं। परमधाम का गेट तो बाबा खोलते ही है, लेकिन नई दुनिया का गेट खुलवाते हैं। किसके द्वारा? शिव शक्ति माताओं द्वारा। वंदे मातरम गाई हुई है। इस समय की कोई भी माता की वंदना नहीं की जाती है, क्योंकि कोई भी श्रेष्ठाचारी माता नहीं है। श्रेष्ठाचारी उनको कहा जाता है जो योग बल से पैदा हो। लक्ष्मी नारायण को श्रेष्ठाचारी कहा जाता है। भारत में देवी देवता जब थे तो भारत श्रेष्ठाचारी था। इन बातों को मनुष्य तो जानते ही नहीं, वह अपने ही प्लान बना रहे हैं। गांधी भी राम राज्य चाहते थे, इससे सिद्ध है कि रावण राज्य है, भारत पतित है। परंतु राम राज्य स्थापन करने के लिए तो बेहद का बापूजी चाहिए, जो राम राज्य की स्थापना और रावण राज्य का विनाश करे। बच्चे कहते हैं रावण राज्य को अब आग लगनी है। सभी आत्माएं अज्ञान अंधेरे में सोए हुए हैं। तुम जानते हो हम भी सोए हुए थे। बाबा कहे, तुम बच्चे जानते हो, रियलाइजेशन है कि हम भी सोए हुए थे। बाप ने आकर जगाया है। भक्ति की रात पूरी हुई, दिन शुरू होता है। रात पूरी हो, अब दिन हो रहा है। बाप संगम पर आया हुआ है, बच्चों को दिव्य दृष्टि और ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं, जिससे तुम सारे विश्व को जान चुके हो। तुम्हारी बुद्धि में बैठा हुआ है कि बना बनाया अविनाशी ड्रामा है जो फिरता ही रहता है। अभी तुम कितना जग गए हो, सारा ज्ञान बुद्धि में आ गया। तो बाबा कहे, अभी तुम कितना जग गए हो, सारी दुनिया सोई हुई है। अभी तुम बच्चों को सारे विश्व के आदि मध्य अंत मूल वतन सूक्ष्म वतन स्थूल वतन का पता है। बाकी सारी दुनिया कुंभकर्ण की अज्ञान नींद में सोई हुई है। ये किसको पता नहीं कि पतित पावन कौन है। पुकारते हैं, हे पतित पावन आओ। ये नहीं कहते कि आकर सृष्टि के आदि मध्यंत का राज समझाओ। ये नहीं कहते हैं कि आकर सृष्टि के आदि मध्यंत का राज समझाओ। बाप कहते हैं, तुम्हें सृष्टि चक्र को समझने से ही चक्रवर्ती राजा बनते हो, याद से ही पावन बनते हो। यह भी जानते हो विनाश सामने खड़ा है, लड़ाई भी होनी है। बाकी कौरव पांडवों की लड़ाई नहीं हुई, कौरव पांडवों की लड़ाई नहीं हुई। पांडव कौन थे यह भी किसको पता नहीं है। सेना आदि की कोई बात ही नहीं। तुम्हारे तरफ है साक्षात पारलौकिक परम पिता, उस बाप से ही वर्षा मिलता है। तुम जान गए हो श्री कृष्ण की आत्मा 84 जन्म भोग अब फिर बाप से वर्षा ले रही है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है।
अब तुम बच्चों को विनाश के पहले सो तो प्रधान जरूर बनना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहना है। गाया भी हुआ है भगवान वाच, गृहस्थ व्यवहार में रहते ये एक जन्म पवित्र बनो। पास्ट इज पास्ट, यह तो ड्रामा में नोंद है। सृष्टि को सतो प्रधान बनना ही है, ये ड्रामा की भावी है। बाबा कहे भावी क्या है, होना क्या है, ये सृष्टि को सतो प्रधान बनना ही है। ईश्वर की भावी नहीं, ड्रामा की भावी ऐसी बनी हुई है। सो बाप बैठ समझाते हैं। आधा कल्प जब पूरा होता है तब बाप आते हैं। बाप कहते हैं जब रात पूरी हो दिन शुरू होता है तब मैं आता हूं। शिवरात्रि भी कहते हैं ना, शिव के पुजारी शिवरात्रि को मनाते हैं। गवर्नमेंट ने तो हॉलीडे भी बंद कर दिया है, नहीं तो कम से कम एक मास हॉलीडे चलनी चाहिए। शिव जयंती की एक मास हॉलीडे चलनी चाहिए। कोई को भी पता नहीं, शिव बाबा सर्व की सदगति करने वाला है। वही सर्व का दुख हरता सुख करता है। उनकी जयंती तो बड़े धूमधाम से एक मास सब धर्म वालों को मनानी चाहिए। कितनी वैल्यू है शिव जयंती की, ये बाबा महसूस कराते हैं कि परमात्मा इस संसार में आए कितनी बड़ी बात है, और उसकी जयंती हो तो कितनी धूमधाम से मनानी चाहिए, और वह भी एक मास तक, और सब धर्म वालों को मनानी चाहिए। खास भारत को बाप डायरेक्ट आकर सदगति देते हैं। जब भारत स्वर्ग था तो देवी देवताओं का राज्य था, उस समय और कोई धर्म ही नहीं थे। देवताएं विश्व के मालिक थे, कोई पार्टीशन आदि नहीं थे, इसलिए कहा जाता है अटल अखंड सुख शांति संपत्ति का दैवी राज्य फिर से हम प्राप्त कर रहे हैं। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा 5000 वर्ष पहले भी मिला था। सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य में कोई दुख का नाम नहीं था। गाया भी जाता है राम राजा राम प्रजा राम शाहूकार, बसे नगरी जिए दाता धर्म का उपकार है, वहां अधर्म की कोई बात नहीं। बाबा ने तुम्हें ब्रह्मा और विष्णु के बारे में भी समझाया कि इन दोनों का आपस में क्या संबंध है, ब्रह्मा और विष्णु का आपस में क्या संबंध है। ब्रह्मा की नाभि से विष्णु निकला, ये कैसा वंडरफुल चित्र बनाया है। बाप समझाते हैं ये लक्ष्मी नारायण ही अंत में आकर ब्रह्मा सरस्वती जगत अम्बा जगत पिता बनते हैं, जो दोनों फिर विष्णु अर्थात लक्ष्मी नारायण बनते हैं। बाप बैठ समझाते हैं जो भी चित्र देखते हो इनमें कोई भी यथार्थ नहीं है। जितने भी चित्र देखते हैं बाबा कहे उनमें कोई भी यथार्थ नहीं है। शिव का बड़ा चित्र बनाते हैं, वह भी अयथार्थ है। भक्ति के कारण बड़ा बनाया है, नहीं तो बिंदी की पूजा कैसे हो सकती। तो शिव बाबा का चित्र भी अयथार्थ है क्योंकि शिव बाबा तो वास्तव में बिंदी है। अच्छा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर के लिए भी समझ नहीं सकते हैं। त्रिमूर्ति ब्रह्मा कह देते हैं, ब्रह्मा द्वारा स्थापना विष्णु द्वारा पालना यह भी कहते हैं, परंतु ब्रह्मा तो स्थापना करते नहीं है। स्वर्ग की स्थापना ब्रह्मा करेंगे, पूछते बाबा। नहीं, स्वर्ग की स्थापना तो परमपिता परमात्मा ही करते हैं। यह आत्मा तो पतित है, इनको व्यक्त ब्रह्मा कहा जाता है। यही आत्मा पावन बन जाएंगी और चली जाएगी, फिर सतयुग में जाकर नारायण बनते हैं। तो प्रजापिता ब्रह्मा जरूर यहां होना चाहिए ना। चित्र फिर वहां दे दिए हैं, जैसे ये ज्ञान के अलंकार वास्तव में है तुम्हारे,
परंतु विष्णु को दे दिए हैं। नौधा भक्ति में भी साक्षात्कार होता है। मीरा का भी नाम गाया हुआ है ना। पुरुषों में नंबर वन भक्त है नारद, माताओं में मीरा गाई हुई है। तुम अभी नारायण अथवा लक्ष्मी को वरने के लिए यज्ञान सुन रहे हो। तुम्हारा ही स्वयंवर होता है, नारद के लिए भी दिखाते हैं। सभा में आकर कहा, हम लक्ष्मी को वर सकते हैं। अरे लक्ष्मी को वरने लायक तुम बन रहे हो, अभी तो हम बन रहे, पुरुषार्थ कर रहे, बाकी वह तो सब है भक्ति मार्ग की कथाएं। बाप रियल बात बैठ समझाते हैं। लक्ष्मी सतयुग में, नारद भगत द्वापर में। सतयुग में फिर नारद कहां से आया? राधे कृष्ण का ही स्वयंवर के बाद नाम लक्ष्मी नारायण पड़ता है, यह भी भारतवासी नहीं जानते हैं। कितना अज्ञान अंधियारा है। बाप है कल्याणकारी, तुमको भी कल्याणकारी बनाते हैं। अब विचार सागर मंथन करना चाहिए, औरों को भी कैसे समझाएं। तो बाप समझाते हैं कि चित्र आदि कैसे बैठ बनाए हैं। ब्रह्मा की नाभि से विष्णु निकला, उसको तो समझ नहीं पाए। मनुष्य ने चित्र बना दिया, गांधी की नाभि से नेहरू निकला। अब कहां वह विष्णु देवता, कहां ये मनुष्य? इन सब बातों को तुम बच्चे अब समझते हो, नंबर वार तुमको खुशी रहती है। बेहद का बाप हमको पढ़ा रहे हैं। यह तो कभी सुना नहीं था, क्योंकि गीता में तो श्री कृष्ण भगवान वाच लिख दिया है। भगवान कब आया, कब आकर गीता सुनाई? तिथि तारीख कुछ है नहीं। कल्प की आयु ही लाखों वर्ष कह देते हैं, कोई की भी बुद्धि में नहीं आता है। अब बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। बाबा कहते कोई की भी बुद्धि में आता ही नहीं है। अब बाप बैठ समझाते हैं। अब बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। ब्राह्मणों का झाड़ वृद्धि को पाता रहता है, पाते पाते अनगिनत हो जाएंगे। तुम बच्चे जानते हो वर्ण कैसे चक्कर लगाते हैं। हम ब्राह्मणों का वर्ण सबसे ऊंच है। हम हैं भारत के गुप्त सच्चे रूहानी सोशल वर्कर। परम पिता परमात्मा हमसे सेवा करा रहे हैं। हम रूहानी सेवा करते हैं, वह जिस्मानी सेवा करते हैं। दुनिया में लोग जिस्मानी सेवा करते हैं। तुमको कहते हैं तुम भारत की क्या सेवा करते हो? बोलो, हम है रूहानी सेवादारी। ये पूछते हैं ना कि कई समाज सेवी संस्थाएं हैं, इतनी समाज सेवा करते हैं, तो ब्रह्मा कुमारियां भारत की क्या सेवा करती है? बोलो, हम है रूहानी सेवादारी। स्वर्ग का उद्घाटन करा रहे हैं, स्थापना करा रहे हैं। शिव बाबा है करण करावनहार, जो करा रहे हैं वह करता भी है। क्या करता है शिव बाबा? मुरली कौन चलाता है? तो कर्म करता है शिव बाबा। मुरली चलाता है तो कर्म करता है। तुमको भी सिखलाते हैं कि ऐसे चलाओ। महामंत्र देता है, मुरली सुनाता है, महामंत्र देता है। कौन सा? मन मना भव। कर्म सिखलाया ना, फिर तुमको कहते हैं औरों को भी सिखलाओ। इसलिए करण करावनहार कहा जाता है। तुम बच्चे भी यही शिक्षा देते हो, बाप को याद करो और वर्षे को याद करो। यही तुम बच्चों को पैगाम पहुंचाना है। ऐसे नहीं दूसरे को पैगाम दे और खुद याद में न रहे, फिर क्या होगा? दूसरे पुरुषार्थ कर ऊंचे चढ़ जाएंगे, मैसेज देने वाले रह जाएंगे। याद का पुरुषार्थ न करने से इतना ऊंच पद नहीं पाते हैं। दूसरे याद की यात्रा से पावन बन जाते हैं। जैसे बाबा बांधेलियों का मिसाल देते हैं, वह याद में जास्ती रहती है, बिगर देखे भी पत्र लिखती है। बाबा हम आपके हो चुके हैं, हम पवित्र जरूर रहेंगे। बांधेलियां बाबा को कितना प्यार से पत्र लिखती है।
तुम बच्चों की है बाप से प्रीत बुद्धि, तुम्हारी ही माला बनी हुई है। विष्णु की माला और रुद्राक्ष की माला के ऊपर है मेरू। विष्णु की माला और रुद्राक्ष की माला के ऊपर है मेरू। माला उठाते ही पहले फूल और दो दाने हाथ में आते हैं, उनको नमस्कार करते हैं, फिर है सारी माला। तुम भारत को स्वर्ग बना रहे हो तो ये माला तुम्हारा ही यादगार है। बाबा कहे, तुमने ही भारत को स्वर्ग बनाया तो ये माला तुम्हारा ही यादगार है। बाप ने ये गीता ज्ञान यज्ञ रचा है, इसमें सारी पुरानी दुनिया स्वाहा होगी। बाप है मोस्ट बिलवेड फादर, तुमको भविष्य के लिए सदा सुख का वर्षा देते हैं, 21 जन्मों के लिए। जिन्होंने कल्प पहले वर्षा लिया है वह जरूर आएंगे ड्रामा प्लान अनुसार। बाप कहते, बच्चे सुखधाम चलना है तो क्या करो? बाप कहते, बच्चे सुखधाम चलना है तो पवित्र बनना है, मेरे को याद करना है, मांगना कुछ भी नहीं है कि कृपा करो व मदद करो, नहीं, हम तो सबको मदद करते हैं। पुरुषार्थ तो तुमको करना है, आशीर्वाद की बात नहीं। बाप कहते, मामेकम याद करो, याद करना तुम्हारा काम है, डायरेक्शन देना यही कृपा है, बाकी तो भल खाओ पियो घूमो फिरो, तुम्हें पवित्र भोजन ही खाना है। हम देवी देवता बनते हैं, वहां प्याज आदि थोड़ी होगा, सतयुग में प्याज आदि थोड़ी होगा, यह सब यहाँ छोड़ना है, यह चीजें वहां होती नहीं, देवताएं ये चीजें स्वीकार नहीं करते। जैसा सतयुग में बीमारी आदि होती नहीं, अभी देखो कितनी बीमारियां निकली है, वहां तमोगुणी कोई चीज होती नहीं, हर चीज सत्व प्रधान, यहाँ देखो मनुष्य क्या क्या खाते हैं। अब बाप बच्चों को कहते हैं, मुझे याद करो और संग तोड़ मुझ संग जोड़ो तो तुम पावन बन जाएंगे। और संग तोड़ एक मुझ संग जोड़ो तो तुम पावन बन जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माँ पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की, रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, पास्ट इज पास्ट, जो बीता उसे भूल कर गृहस्थ व्यवहार में रहते सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। विनाश के पहले पावन जरूर बनना है। दूसरी बात, भारत को स्वर्ग बनाने की सच्ची सच्ची सेवा में तत्पर रहना है। खान पान बहुत शुद्ध रखना है, पवित्र भोजन ही खाना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, स्थूल कार्य करते भी मनसा द्वारा विश्व परिवर्तन की सेवा करने वाली जिम्मेवार आत्मा भव। स्थूल कार्य करते भी मनसा द्वारा विश्व परिवर्तन की सेवा करने वाली जिम्मेवार आत्मा भव। कोई भी स्थूल कार्य करते सदा यह स्मृति रहे कि मैं विश्व की स्टेज पर विश्व कल्याण की सेवा अर्थ निमित्त हूं, मुझे अपनी श्रेष्ठ मनसा द्वारा विश्व परिवर्तन के कार्य की बहुत बड़ी जिम्मेवारी मिली हुई है। स्मृति से अलबेलापन समाप्त हो जाएगा और समय भी व्यर्थ जाने से बच जाएगा। एक एक सेकंड अमूल्य समझते हुए विश्व कल्याण के व जड़ चैतन्य को परिवर्तन करने के कार्य में सफल करते रहेंगे। एक एक सेकंड अमूल्य समझते हुए विश्व कल्याण के व जड़ चैतन्य को परिवर्तन करने के कार्य में सफल करते रहेंगे। आज का स्लोगन है, अभी योद्धा बनने के बजाय निरंतर योगी बनो। योद्धा बनने के बजाय
निरंतर योगी बनो। आज का व्यक्त इशारा है ज्वाला स्वरूप स्थिति में रह शक्तिशाली याद का अनुभव करो। उसके अंतर्गत बाबा कहते, जैसे दुखी आत्माओं के मन में यह आवाज शुरू हुआ है कि अब विनाश हो, वैसे ही आप विश्व कल्याणकारी आत्माओं के मन में यह संकल्प उत्पन्न हो कि अब जल्दी ही सर्व का कल्याण हो, तब ही समाप्ति होगी। विनाशकारियों को कल्याणकारी आत्माओं के संकल्प का इशारा चाहिए, इसलिए अपने एवर रेडी बनने के पावरफुल संकल्प से ज्वाला रूप योग द्वारा विनाश ज्वाला को तेज करो। अपने एवर रेडी बनने के पावरफुल संकल्प से ज्वाला रूप योग द्वारा विनाश ज्वाला को तेज करो। अच्छा ओम।